ओम शांति। हम सभी कितने भाग्यवान हैं कि हमें रोज परमात्म दुआएं मिलती हैं। रोज सवेरे जब हम उससे अपना नाता जोड़ते हैं, जब उसकी एनर्जी हमें मिलने लगती है, जब उसकी सेवाओं में हम दिन रात अपने को समर्पित कर देते हैं, तो हम उसकी दुआओं के पात्र बन जाते हैं। सोचो, जिन्हें भगवान की दुआएं मिल रही हों, वो स्वयं कितने महान बन जाएंगे। लेकिन हमें भगवान से दुआएं मांगनी नहीं है, अधिकार से प्राप्त करनी है। हम स्वयं को इतना योग्य बना दें, स्वयं को इतना महान बना दें, इतना आज्ञाकारी बना दें कि प्रभु दुआएं हमें स्वतः ही मिलती रहें। और जिनके साथ दुआएं होती हैं, उनकी जीवन की यात्रा सरल हो जाती है, उन्हें कदम कदम पर सफलता मिलती है, विघ्न, बीमारियां, अनेक बाधाएं उनको रोक नहीं पाती हैं, क्योंकि भगवान की दुआएं उनके साथ चलती रहती हैं। तो सोच लें, हम ऐसा क्या करें जो प्रभु प्रेम के पात्र भी बन जाएं और उसकी दुआओं के अधिकारी भी बन जाएं। इसी तरह हमें अनेक महान आत्माओं की दुआएं भी मिलती हैं। कलयुग में मनुष्य, गुरु, थोड़े सी महान आत्माएं किसी को दुआएं देती हैं। उनके पास भी बहुत ज्यादा अलौकिक बल नहीं होता और दुआएं लेने वाले भी पवित्र नहीं होते। हम स्वयं भी पवित्र हैं और दुआएं देने वाली अनेक महान आत्माओं ने अपने जीवन का पवित्रता से श्रृंगार किया है। तो महान आत्माओं की भी हम दुआएं लें। यदि हम उनसे बहस करेंगे, यदि हम उनका अपमान करेंगे, यदि हम उनके लिए कटु वचन बोलेंगे, तो सोच लें भला उनकी दुआएं हमें कैसे मिलेंगी। बड़ों की दुआएं तो बहुत बड़ी होती हैं, बड़ों की दुआएं तो बड़ा काम करती हैं। हम देख सकते हैं जिन बच्चों के साथ माँ बाप की दुआएं हैं, उन्हें सहज सफलता मिलती है। और जो बच्चे माँ बाप का अपमान करते रहते हैं, उनसे लड़ते रहते हैं, उनका सफलता का द्वार भी बंद हो जाता है। इसलिए हम ऐसे श्रेष्ठ कर्म करें, स्वयं को इतना ऊंचा उठाएं, दूसरों को सुख दें, ताकि हमें महान आत्माओं की दुआएं भी मिलती रहें। और साथ साथ हमें दुआएं प्राप्त करनी है उन सब से जो गरीब हैं, उन सब से जो असहाय हैं। जो असहाय हैं, उनकी मदद करना हमारा परम कर्तव्य है। जिनको कोई नहीं पूछता, उन्हें पूछना। जिनकी ओर कोई नहीं देखता, उनको मदद करना। ये हम सभी महान आत्माओं का पुनीत कर्तव्य है। तो आइए हम अपने जीवन को दुआओं से भरें, ताकि हमारी जड़ मूर्तियां जन्म जन्म सबको दुआएं देती रहें। हम अपने चेहरों को इतना दिव्य, इतना शांति और खुशी से भरपूर करें, ताकि भक्ति में हमारे चेहरे देखकर दूसरों के दुख दूर होते चलें, उनके तनाव समाप्त होते चलें। दुआओं के स्वयं को पात्र बनाएं और न केवल दुआएं लें, बल्कि हमें यहीं से दुआएं देने का सिलसिला भी प्रारंभ करना है। कोई हमें एक बद्दुआ दे, हम उसे 10 दुआएं दे दें। कोई हमारी एक बुराई करे, हम उसकी 10 महिमा कर दें। दुआएं देने की परंपरा हम यहीं से शुरू करेंगे, तो हमारी जड़ मूर्तियों से भी सबको दुआएं मिलती रहेंगी। तो आज सारा दिन हम स्वमान में रहेंगे, मैं वही हूँ जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है, जिनके द्वारा भक्तों को दुआएं मिल रही हैं, जिनके द्वारा भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं। अपने पूज्य स्वरूप को इमर्ज करेंगे और साथ साथ अभ्यास करेंगे कि ऊपर से सर्वशक्तिवान की किरणें मुझ में समा रही हैं।
फिर पवित्रता के सागर की पवित्र किरणें मुझ में समा रही हैं और मुझे अथाह सुख मिल रहा है। मैं अतीन्द्रिय सुखों की गहन अनुभूतियों में जा रही हूँ। इस तरह की गुड फीलिंग करते हुए आज के दिन को पूर्णतया सफल करेंगे। ओम शांति।

0: हेलो, हाँ हाँ पहुँचा दूंगा, समय से पहुँचा दूंगा।
1: इधरा इधरा इधरा, क्या पहुँचा दोगे? हैं, कहाँ पहुँचा दोगे? ओए मुझे तो लगता है ऐसे ही बीच रोड पे मोबाइल लेकर घूमोगे तो तुम ही ऊपर पहुँच जाओगे। ओए सड़क क्रॉस करते समय मोबाइल जेब में रखो और जहाँ मन किया वहीं से रोड क्रॉस कर लोगे। हैं, ओए ये जेबरा क्रॉसिंग क्या जेबराओं के चलने के लिए बनाई है? ओए जब भी रोड क्रॉस करना है तो जेबरा क्रॉसिंग से ही करना, क्या समझे? हाँ, मुझसे गाड़ी वाले तो क्या पैदल वाले भी नहीं बच सकते, क्योंकि ये है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं हवलदार कड़क।
2: पैदल यात्री सड़क क्रॉस करते समय हमेशा जेबरा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
3: सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सुप्रभात में आपका स्वागत रेडियो मधुबन पर। जो भी शक्ति आपको लक्ष्य की ओर ले जा सकती है, वह कहीं बाहर से खरीद कर लानी नहीं पड़ती, वह तो आपके अंदर ही है। इस एक शक्ति के अनेक रूप हैं, जिन्हें आप पहचान नहीं पाते। जोड़ने की शक्ति, सृजन शक्ति, संकल्प की शक्ति, दृढ़ विश्वास की शक्ति, इन सबसे बड़ी शक्ति है आपकी नवीनता, आपकी मौलिकता। इन सब विशेषताओं से ही आपका व्यक्तित्व बनता है। इसके पश्चात ही बहुत से लोग आपको अपना नेता मान सकते हैं, अग्रणी मान सकते हैं। अपने आप पर विश्वास रखें, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखेंगे तो ही लोग आपकी जय जयकार करेंगे। इसके सहारे ही आप ऊंचे उठ सकते हैं, आपकी सफलता के द्वार भी खुल सकते हैं। आपके पास बुद्धि है, शक्ति है, फिर आप क्यों दूसरे लोगों की ओर देखते रहते हैं? क्यों दूसरों से अपने को छोटा समझते हैं? यह तो मानवता का ही अपमान है कि इंसान हर जगह हर स्थान पर दूसरों से ही कुछ न कुछ मांगता रहे। ऐसे लोगों को मैं यह बता देना चाहती हूँ कि मांगे हुए विचार, उधार ली गई योजनाएं, दूसरों के किए गए निर्णय, अपने पर विश्वास न करके दूसरों पर विश्वास करना, छोटी छोटी बातों को समझने के लिए दूसरों से सहायता लेना, इससे आपके मन में सदा हीन भावना ही पैदा होगी। आज जब हम अपने चारों ओर नजर दौड़ाते हैं तो हमें साफ पता चलता है कि पुराने जमाने के तौर तरीके, पुराने फार्मूलों के आधार पर ही नई जिंदगी को जीना, यह सब कुछ क्या आपको आगे ले जाएगा? यकीन रखिए, यह सब कुछ तो आपको पीछे ही खींच सकते हैं, यदि आपके मालिक आपको इन पुराने तौर तरीकों को अपना लेने के लिए मजबूर करते हैं। तो आप अपनी बुद्धि को नष्ट करने की बजाय उनकी यह बात मानने से साफ इनकार कर दें, नहीं तो आप एक पुरानी जंगली मशीन बनकर रह जाएंगे जो किसी भी काम की नहीं होती।

ये संसार एक विशाल कुरुक्षेत्र है और हमारा जीवन एक महाभारत। हमारा कुरुक्षेत्र कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर है। अपनी महाभारत कभी हम शस्त्र के बिना लड़ते हैं, कभी शस्त्र के साथ, कभी अपने शत्रु के विरुद्ध और कभी अपने विरुद्ध। न्याय के लिए, सत्य के लिए, अधिकार के लिए। इस संघर्ष में हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारा विश्वास है, सबसे बड़ा शस्त्र हमारा कर्म है।

आप अपनी बुद्धि को क्यों नष्ट करना चाहते हैं? क्या आपको इस बात का पता नहीं कि इस संसार को नए नए तरीकों के कारोबार की अधिक आवश्यकता है? सारे संसार में लोग कारखानों, मिलों, फैक्ट्रियों में माल बनाते थे। सभी अपने अपने माल को बेचते थे। लेकिन आप उस आदमी को कैसे भूल सकते हैं जिसने यह सोचा था कि विज्ञापन के सिर पर तो हम अपने माल को घर घर पहुंचा सकते हैं। और आज आप देख रहे हैं कि पूरे विश्व में बढ़िया से बढ़िया माल बेचने के लिए बड़ी से बड़ी कंपनी को विज्ञापन का सहारा लेना पड़ता है। आज वही लोग अपने कारोबार में सफल हैं जो विज्ञापनों का सहारा लेते हैं। विज्ञापन के सहारे तो मिट्टी भी बेची जा सकती है। बढ़िया माल का तो कहना ही क्या है। यह रास्ता किसने खोला? केवल एक आदमी के मस्तिष्क ने। उसका लाभ भी आज पूरे विश्व के कारोबारी लोग उठा रहे हैं। इसे कुछ लोग यह भी कहते हैं कि पुरानी शराब नई बॉटलों में, यानी चीजें तो सब वही हैं, मगर विज्ञापनों ने उन्हें नया ढंग, नया रूप दे दिया है। जिन चीजों के नाम भी लोगों ने नहीं सुने थे, वे सब की सब हाथों हाथ बिकने लगी। यहाँ तक कि बच्चों ने भी उन चीजों का नाम रट लिया। इसे कहते हैं बुद्धि का कमाल। आज जिस मशीनरी को आप बहुत अच्छा समझते हैं, वही हो सकता है कि कुछ समय के पश्चात मिट्टी हो जाए। करोड़ों अरबों रुपयों की मशीनें जब पुरानी हो जाती हैं, तो बड़ी कंपनियां उन्हें सागर में फेंक देती हैं। जब भी नए मॉडल बाजार में आ जाते हैं, तो पुराने मॉडलों को मिट्टी के भाव बेचने पर मजबूर होना पड़ता है। मशीन कोई भी हो, जब वह पुरानी हो जाती है और उसके पश्चात नवीनतम मॉडल आ जाते हैं, तो बहुत तेजी से काम करते हैं। उन मशीनों से कहीं अधिक तेज काम होता हो तो वह मशीनें बेकार ही हो जाती हैं, अथवा उनकी कीमत कम हो जाती है। यह बात हम हर क्षेत्र में देखते हैं, यानी नए के आगे पुराना पिछड़ा नजर आता है। ऐसे कई लोग भी आज समाज में हैं जो नए मॉडलों की निंदा करते हैं। असल में वही लोग उन्नति के रास्ते का रोड़ा होते हैं। हमें नवीनता को स्वीकार करना चाहिए, बल्कि उसे और आगे बढ़ाना चाहिए। अगर हम पुरानी चीजों को ही पकड़ के बैठे रहेंगे, तो जमाना कहीं और आगे निकल जाएगा और हम वहीं के वहीं रह जाएंगे। हम अपनी उन्नति नहीं कर पाएंगे।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: अपने आप को देखे एंड प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर टुडे। आज सारा दिन में बातें आएंगी, लोग कुछ कुछ ऐसा करेंगे या कहेंगे विच विल नॉट बी अकॉर्डिंग टू द वे आई वॉन्ट देम टू बी। आज सारा दिन अवेयरनेस एंड चेकिंग, कौन ज्यादा पावरफुल है, बातें, सिचुएशंस और मी, किसका प्रभाव किस पर पड़ता है। आज सारा दिन सिर्फ चेकिंग, बात आई बात गई, मुझ पर उसका कितना प्रभाव पड़ा। दिस इज माई चेकिंग फॉर टुडे।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

आधुनिक युग की शक्ति के आगे रूढ़िवाद दम तोड़ देता है। जो लोग समय के साथ नहीं बदलते, उन्हें समय स्वयं बदल देता है, अथवा समय उन्हें पीछे छोड़कर आगे निकल जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि जो लोग पुरानी वस्तुओं, रीति रिवाजों और कामकाज के पुराने तौर तरीकों को ही पसंद करते हैं, उनके लिए

एयर कंडीशनर, पंखे, बिजली, टेलीफोन, जीवन के अनेक सुख कहां से देगा? यह सारे सुख आपको नवीनतम विचारधारा ने ही दिए हैं। ये सब के सब आविष्कार उन इंसानों ने ही किए हैं जो रूढ़िवाद के विरुद्ध थे। अतीत में भी और वर्तमान में भी संसार रूढ़ि मंजकों का ही कृतज्ञ है। यदि पुरानी प्रथाओं को तोड़ने वाले ना होते तो आज कोई भी आदमी इतिहास को पढ़ने का प्रयत्न नहीं करता। इतिहास स्वयं में ही एक बेकार विषय बनकर रह जाता। रूढ़िवाद और आधुनिक युग सदा से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। पुरानी हर चीज इतिहास बन जाती है और यही इतिहास नए युग की प्रेरणा बनता है। आधुनिक विज्ञान के सामने रूढ़िवाद कहाँ टिक पाता है? आप देख रहे हैं, कंप्यूटर ने हर रूढ़िवादी का भ्रम तोड़ कर रख दिया है। सालों के काम दिनों में पूरा करना और कई कई सौ आदमियों का काम एक ही कंप्यूटर मशीन द्वारा पूरा करना, क्या यह कम बात है?

0: ओए रुक कर,
1: रुक।
2: हाँ कहिए।
0: और जी कहना सुनना आपकी शादी में कर लेंगे, फिलहाल तो ये बताइए कि आपकी बेल्ट कहाँ है?
2: है तो ये देखिए।
0: ओए कमर की नहीं, मैं सीट बेल्ट की बात कर रहा हूँ। हवलदार कड़क से मजाक मत करो, बहुत महंगा पड़ेगा। हाँ, और उससे ज्यादा महंगा पड़ेगा ये बिना सीट बेल्ट की गाड़ी का चलान। ओए जल्दी ऊपर जाने का बहुत शौक है, हैं? ओ छोटू फाइन काटो इनका, 1200 रुपए सीट बेल्ट नहीं पहनने का और 2400 रुपए हवलदार कड़क से मजाक करने का। और ये है मेरी सड़क, मुझे कहते हैं हवलदार कड़क।
3: कार चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग करना चाहिए, इससे आप बड़ी दुर्घटना से बच सकते हैं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

नवीन प्रगति की इस तेज धारा ने पूरे रूढ़िवाद को एक झटके में बहाकर फेंक दिया है। मानव का अंतरिक्ष में प्रवेश और चांद पर जाकर एक नई दुनिया बसाने की ओर कदम बढ़ाने के सामने रूढ़िवाद क्या करेगा? रूढ़िवाद एक इतिहास है, एक अतीत है। इसे आधुनिक युग के रास्ते की दीवार मत बनाओ। वह तो अतीत की एक चिता है, एक ऐसे महापुरुष की चिता है जिसके ज्ञान रूपी प्रकाश से आप लाभ उठा सकते हैं। उस अतीत के ज्ञान के प्रकाश के सहारे आप आगे तो बढ़ सकते हैं, मगर इस चिता को ही मूलाधार मानकर उसे पकड़कर बैठे रहने का तो कोई लाभ नहीं। अतीत आपको कुछ नहीं दे सकता, वह तो केवल यादों की मिट्टी है जो अपनी इच्छा से अब हिल भी नहीं सकती। तो आप उसे सीने से लगाकर रोते हुए क्या पाएंगे? ऐसी कल्पना करना भी आपकी प्रगति के रास्ते का रोड़ा बन जाएगा। आगे देखिए कि क्या हो रहा है, पीछे झांकने से क्या मिलेगा। विश्व के महान आविष्कारक पुरानी प्रथाओं के गुलाम नहीं थे, उन्होंने पुरानी प्रथाओं को तोड़कर ही नई दुनिया में पांव रखा। क्या आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि उन रूढ़िवादियों और भोले भाले लोगों को लूटने वालों ने हर आविष्कारक को पागल तक कहा? कुछ एक को तो जेलों में भी बंद करवा दिया गया, मगर ऐसा करने से क्या वे लोग डर गए? नहीं, जो लोग केवल मानव सेवा के भाव से कुछ करते हैं उन्हें कोई डरा नहीं सकता, और न ही शत्रुओं की धमकियां उनका रास्ता रोक सकती हैं। उसका कारण एकमात्र यही होता है कि प्रकृति उनके साथ होती है और ईश्वर ही उनका रक्षक होता है। यही एक मूल मंत्र है, आगे बढ़ो और आगे बढ़ते जाओ, फिर आप जो कुछ चाहोगे वही पालोगे। यही एक मूल मंत्र है आपकी इच्छाओं की पूर्ति का और सफलता का। यदि अपने उद्देश्य में सफलता चाहते हो तो नए विचारों से डरो मत। अपने अंदर इतना आत्मविश्वास पैदा कर लो कि लोग आपसे प्रेरणा लें। तो इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे सुप्रभात में। रेडियो मधुबन सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

महिला स्वयं में है शक्ति और इसलिए आपकी सुरक्षा है आपके हाथ ही। कभी भी कहीं भी अगर आपको किसी प्रकार के खतरे का आभास हो तो डायल करिए 1090 या 1091। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

ओम शांति। नमस्कार, मैं आकाश मानिसार से नेशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन का एक वॉलंटियर मेंबर। आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8

0: सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् भगवद गीता, जिसमें भगवान वाच शब्द का जिक्र आया है, उसमें दिखाया गया है कि एक तरफ युद्ध के लिए कौरव तैयार हैं और दूसरी तरफ भगवान अर्जुन को सत्य ज्ञान सुना रहे हैं। वर्तमान समय मैं काल चक्र उसी प्रकरण की पुनरावृत्ति होते देख रहा हूं। एक तरफ साइंस द्वारा महाविनाश की तैयारी जोर शोर से चल रही है, तो दूसरी तरफ परमपिता परमात्मा शिव द्वारा सत्य ज्ञान सुनाकर पतित मनुष्यात्माओं को देवात्मा बनाने का दिव्य कार्य। प्रजापिता ब्रह्मा को कैसे विनाश और सतयुग का साक्षात्कार हुआ, जिसके पश्चात उन्होंने सर्वस्व त्याग कर श्रीमत पर चलने का संकल्प किया, इसका मैं स्वयं साक्षी हूं। हीरों को कोयले समान समझ अपने व्यापार को सेकंड में समेटने वाले ब्रह्मा बाबा में समय के साथ कैसे ये परिवर्तन आया, इस बात को और विस्तार से सुनते हैं आदरणीय चक्रधारी दीदी से, और जानते हैं जौहरी से त्यागी तपस्वी बनने की अद्भुत कहानी।
1: अब आप सुनेंगे ब्रह्मा बाबा से जुड़े हुए उनके जीवन के कुछ कहे अनकहे अनुभवों के पल, उन राजयोगियों के मुखारविंद से जिन्होंने साकार में प्रजापिता ब्रह्मा बाबा से

0: जैसे आपने कहा कि वो दादा लेखराज थे, फिर परमात्मा की प्रवेशता के बाद वो ब्रह्मा बने। जैसे हम ये देखते हैं कि ब्रह्मा बाबा के जीवन में पहले वो परमात्मा के परिचय से पहले वो एक बहुत बड़ा जौहरी था, दादा लेखराज के रूप से वो जाना जाता था। और जैसे उनको परमात्मा का ज्ञान मिला तो वो एक सादगी जीवन जीने लगे हैं। फिर भी ब्रह्मा बाबा को हम तो कहते हैं कि वो राजयोगी है, संत है, एक साधक थे, तपस्वी थे, लेकिन कोई जंगल में तो रहते नहीं थे, संसार में ही रहते थे और सारे काम भी करते थे। तो ये किस प्रकार का संन्यास और किस प्रकार की तपस्या करते थे?
1: ये मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिस समय बाबा को ये समझ में नहीं आता था तो बहुत वैराग्य जैसे आता था कि आखिर ये कौन बोलता है और कौन दिव्य साक्षात्कार मुझे कराता है। तो इस बात को जानने के लिए बाबा बनारस में अपने मित्र के यहाँ चले गए, क्योंकि उसका बड़ा बंगला था, हमने देखा है, और दोनों तरफ उनके पार्क था। पार्क में कुछ मरगोल से बने हुए थे संगमरमर के, तो बाबा सुनाते थे कि मैं मरगोल में जाकर बैठ जाता था और यही सोचता था ये कौन कौन है जो बोलता है, लेकिन मैं जान नहीं पाता था। तो वहां बाबा को दो दिव्य साक्षात्कार हुए थे। एक साक्षात्कार में उन्होंने देखा कि विश्व का महाभारी विनाश हो रहा और इस कदर बिल्डिंग्स गिर रही हैं जैसे ताश के पत्ते गिरते। हालांकि उस समय मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का फैशन नहीं था, लेकिन बाबा ने ऐसी बिल्डिंग गिरती हुई देखी जो बाबा ने अनुभव सुनाया हुआ था, उस समय का नोट किया हुआ जो हम पढ़ते और सुनते रहे। और कुछ समय बाबा ने इतना भयानक जब विनाश देखा तो कहा मैं सहन नहीं कर सका, खून की जैसे नदियां बह रही हैं, कहीं प्राकृतिक आपदाएं हैं, कहीं मारकाट है, कहीं भिन्न भिन्न भेदभाव में आकर लोग एक दो के साथ झगड़ रहे हैं। तो एक दृश्य ऐसा था बड़ा भयानक, लेकिन मेरी आंखों से अश्रु धारा बह उठी और मैं यही कह रहा था मैं नहीं सहन कर सकता प्रभु, ऐसा दृश्य मैं नहीं सहन कर सकता। इतने में बाबा के अनुभव में आया कि एक सुंदर जैसे एक वर्ल्ड ग्लोब है, ग्लोब के एक पार्ट में तो ये दृश्य चल रहा है जिसमें भयानक विनाश, इतने में ग्लोब का वो पासा पलटता है और दूसरी तरफ दिखाई दे रहा है एक इतनी सुंदर दुनिया जहां पर हीरे जवाहरात जड़ित महल है और सोने चांदी की जड़ित हर चीजें हैं, जहां ऐसा प्रतीत हो रहा है फूलों में भी एक ऐसी सुगंध है जो यहाँ के फूलों में नहीं है। पानी की नदी भी जैसे दूध की नदियां बह रही हैं, इतना स्वच्छ ट्रांसपेरेंट पानी है। पेड़ों से आवाजें ऐसे आ रही हैं जैसे म्यूजिक बज रहा है, पक्षी बोल रहे हैं जैसे कोई बात कर रहा है भाषण। ऐसे बाबा ने एक बहुत ही सुंदर ये दृश्य देखा, और जब ये दृश्य देखा तो बाबा ने, हम बच्चे को सुनाते थे कि जब ऐसा दृश्य देखा तो मैं खुश हो गया, लेकिन खुश होने पर फिर बाबा को एक बार एक दिव्य साक्षात्कार में एक आवाज आती, और वो आवाज है इस दुनिया के निर्माण के तुम्हें निमित्त बनना है। तब बाबा को और ही पसंद हो गया, मैं एक साधारण मनुष्य और मैं ऐसी सुंदर सृष्टि के निर्माण के निमित्त बनूं, ये कैसे हो सकता है। इस बात में बाबा की बुद्धि बहुत चलने लगी और यहां तक चलने लगी कि बिजनेस क्या करूंगा, इतनी सुंदर दुनिया, ऐसे सुंदर मनोहर दृश्य, ऐसी शांतमय जगत, जैसे उसका इतना आकर्षण कि मुझे ऐसा लगने लगा हीरे तो क्या है, ये तो कोयले हैं, मैं व्यापार करूंगा तो हीरों का करूंगा, और वो सच्चे ही। और वहां से ही बाबा ने अपने घर में भी पत्र लिख दिया और लिख करके यही कह दिया कि मैं अभी ये बिजनेस नहीं करना चाहते, और अपने पार्टनर को भी लिख दिया कि अभी मैं बिजनेस को समेटना चाहता हूं, मेरा जो हिस्सा बने वो आप मुझे दीजिए और जो आपका हिस्सा बने वो आप दीजिए। और बहुत सुंदर बाबा ने घर में भी पत्र लिखा था, उसमें शायद कुछ लाइनें मुझे याद आए। अलफ को अल्लाह मिला, बे को मिली बादशाह, आई तार अलफ की हुआ रेल का राय। ऐसे शब्द लिखे कि अलफ मानो स्वयं के लिए, मुझे तो अल्लाह मिल गया, बे मानो पार्टनर, उसको बादशाही, जो मेरी चली हुई बिजनेस और दुकान है ये उसको मिल जाए, और जो मेरा हिस्सा है वो मुझे देख। ये करके बाबा ने अपने बिजनेस, इतने बड़े बिजनेस को समेट ली। अब समेट कर बिजनेस, आप सोचिए, एक मनुष्य छोटी सी चीज को भी त्याग नहीं कर सकता, लेकिन बाबा की जो प्राप्तियां उसे दिव्य साक्षात्कार में हो रही थी, और जो एक अलौकिक अनुभूतियां होती थी, उस अनुभव को प्राप्त करने के लिए वो इतना साइलेंस में हो गए, इतना साइलेंस में कि किसी से बात नहीं करते थे। एक बार की बात तो यहां तक सुनाते हैं कि उनको बहू को उन्होंने कहा कि मुझे दूध दे दो, और वो जब दूध का गिलास लाती है तो बाबा वहां है नहीं। सारी जगह देखा कहाँ है बाबा, लेकिन थे नहीं। उनके लौकिक भाई उनके ढूंढने निकले कि कहाँ चले गए, तो बाबा एक छोटी सी पहाड़ी थी, उस पहाड़ी के ऊपर साइलेंस बैठे यही सोच रहे हैं वो कौन था, वो प्रकाश कैसी थी, वो दुनिया कैसी, ये भयंकर विनाश, ये सब मैंने क्या देखा। तो भाई ने चक्कर कहा कि लखीराज, क्या तुम पागल हो गए, कहाँ उठ के आकर बैठे। लेकिन बाबा को कोई जंगल में नहीं चला गया, लेकिन ज्ञान के जानने की और साक्षात्कार को पहचानने की इतनी खोज थी कि वो साइलेंस में जाके साक्षात्कार के देखे दृश्य ही देखते, और जैसे देह में रहते हुए भी बिल्कुल प्यारे उत्ते चले गए। कई बार उनकी पत्नी से हमने अनुभव सुना जो कहती है कि मैं ससुर से घूंघट निकालती थी, और जब मैं घूंघट निकाल कर उन्हें कुछ देने जाती तो मुझे सामने लगता है कि श्री कृष्ण मुरली बजा रहा है बैठा है सामने, तो मैं घूंघट को हटाकर श्री कृष्ण को देखती हूँ, तो उतने में फिर मुझे वही बाबा दिखाई देता है, फिर मैं घूंघट निकालती हूँ, तो मुझे लगता है मैं क्या करती हूँ। और बाबा को भी लगता है कि कभी बच्ची घूंघट उठाती है, कभी घूंघट निकालती है, ये क्या करती। तो आखिर बाबा ने कहा, बच्ची हटा दो इस घूंघट, इस पर्दे को हटा दो। अब बाबा ने उसे पर्दे को तो हटाने लिए कह दिया, वो तो सास के कहने पर फिर उसने बड़ देर से हटाया, लेकिन ना बाबा समझ पा रहा था ना बाबा के परिवार वाले ये समझ पा रहे। ये तो काफी समय बाबा ने अपने जीवन में इतना संयम, इतना नियम लाया, इतनी पवित्रता लाई कि हर एक को जब देखता था बाबा, तो देखते हुए उन्हें ऐसे देखने लगा ये सब चमकते हुए दिव्य सितारे हैं जो मस्तक में चमक रहे हैं, और सबको आत्मा की निगाह से देखने लगे। सबको लगता था कि बाबा पहले हमसे हंसते थे, खेलते थे, बोलते थे, अब तो कुछ न्यारे न्यारे हो रहे हैं, और बहुत न्यारे। यहां तक कि बाबा ने डायरियों की डायरियां लिखकर भरनी शुरू कर दी कि मैं आत्मा, यशोदा उनकी लौकिक पत्नी का नाम था यशोदा आत्मा, नारायण पुत्र का नाम था नारायण आत्मा। इस प्रकार आत्मा आत्मा लिखकर डायरियों की डायरियों पर, तो बाबा का आत्मिक अभ्यास इस कदर श्रेष्ठ और दिव्य हो गया कि बाबा देहों को देखता भी जैसे देह संबंध से नहीं देखता, उनको आत्मा के रूप से देखना। और बाबा के लौकिक बच्चे जो अभी छोटे भी थे वो जान नहीं पाए कि ये सब क्या है, वो ये कह देते हमारा दादा ना भगवान बन गया है, अब उन्हें मालूम नहीं पड़ता था कि ये कुछ और झलक दिखाई देती है, वो बच्चे स्पष्ट तो नहीं कर सकते ना। वो यही कहते थे हमारा दादा भगवान बन गया, और बाबा उनको कहते नहीं बच्चे मैं भगवान नहीं, भगवान तो दूसरा है, लेकिन बच्चों को क्या मालूम दूसरा कौन है और आप क्या। तो इस प्रकार बाबा ने जंगल में जाके तपस्या नहीं की, लेकिन बाबा ने घर में रहते हुए की, हर एक कोई आत्मिक दृष्टि से देख करके प्रत्येक कर्म इंद्रिय को कितना पवित्र बनाया, और देहधारियों में देह जगत में रह के विदेही स्थिति का निर्माण किया। ये कोई कम तपस्या नहीं है। तपस्वी तपस्या करने जाते हैं दुनिया से, वातावरण से दूर, ताकि ये दुनिया भूल जाए, लेकिन बाबा तो परिवार में थे, घर बार में थे, उसी संसार में थे, लेकिन सब कुछ होते हुए भी उनको देह और देहधारियों से जैसे संबंध नहीं था, आत्म दृष्टि और आत्मिक स्थिति का निर्माण, ऐसे थे बाबा, उनका ये जीवन था। हम बच्चे भी अब देखते थे, अब तो बहुत बाद में आए, पार्टीशन के बाद में यहाँ दिल्ली में आए, लेकिन कैसे बाबा को देखते थे तो ऐसा लगता था ये हमारा अपना है। किस बात से अपना है, आप सोचिए, छोटे छोटे बच्चे भी बाबा के पास आते थे वापस नहीं जाना चाहते, दम जाए नहीं, क्योंकि बाबा में इतना अपनेपन की महसूस होता, और बाबा को बच्चों से अपनेपन की महसूस। ये इस समय तक बाबा का रोल चला, लेकिन धीरे धीरे फिर से बाबा ने अपनी पहचान दी कि मैं कौन हूं, मैं आत्माओं का पिता हूं, मैं दिव्य प्रकाश हूं, ज्योति स्वरूप हूँ, जन्म पुनर्जन्म से न्यारा हूं, परम धाम का वासी हूं, ये साकार मूल सृष्टि और सूक्ष्म लोक से परे वो परम धाम है जहां का मैं वासी हूं। धीरे धीरे शिव बाबा ने अपनी पहचान, ऐसे ब्रह्मा बाबा को भी पहचान मिली, और ब्रह्मा बाबा के मुख से शिव बाबा के जो महावाक्य जो सुनने वाले थे उनको भी पहचान, पहचान ही नहीं, जो आत्माओं को शांति की तलाश, खुशी की तलाश थी, जीवन के आनंद की कमी महसूस होती थी, वो बाबा के संपर्क और संसर्ग में आकर के वो आत्माएं इन सब कमजोरियों से मुक्त होके सच्ची शांति का आनंद कर दे। आप सोचिए घर बार छोड़ना सहज, लेकिन बाबा
0: यही पूछने
1: के
0: वाली थी कि आज के संसार में इतना सब कुछ दुख होने के बावजूद लोगों को त्याग करना मुश्किल लगता है, लेकिन ब्रह्मा बाबा की जीवन में इतनी सुख संपत्ति और सब कुछ अच्छा था, फिर भी बाबा इतनी आसानी से एक सेकंड में त्याग कर दिया और इस सादगी जीवन को अपनाया। तो क्या उसके पीछे मोटिवेशन थी और कैसे कर पाए त्याग बाबा इन चीजों का?
1: क्योंकि बाबा को त्याग करने के लिए मूल बात यही आई कि जब मुख से ज्ञान सुनते थे और सामने वाले भी सुन रहे हैं, कोई बाबा को श्री कृष्ण रूप में देख रहे हैं, कोई श्री नारायण रूप में देख रहे हैं, और बाबा अपने कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण नहीं हूं, मैं श्री नारायण नहीं हूं, लेकिन वो कहते हैं छलिया छलता है हमको, है तो वही, क्योंकि वो तो दिव्य साक्षात्कार में देखते हुए उन्हें ऐसा प्रतीत होता था कि वही। और बाबा को इन सब हुए राज को जानने के लिए इतनी शांति में, इतनी साइलेंस की डेप्थ में चले जाना चाहते थे जहां उनको इन सब चीजों का आभास हो जाए। तो बाबा को ये सब जो शांति और आनंद की अनुभूति होती थी, तो बाबा को उसके सामने जो करोड़ों की संपत्ति वो तुच्छ सी प्रतीत होती। बाबा कई बार अनुभव सुनाते थे, मुझे लगता था ये कोयलों के व्यापार में क्या रखा है, हीरे मुझे कोयले देखने में आने लगे, और जो मेरे मुख से जो ज्ञान सुनाने वाला है वो जो रतन दे रहा है, रतन वो है व्यापार।

0: अब तो मुझे करना है तो उसका करना है, इनका व्यापार नहीं करना है। बहुत जल्दी बाबा ने अपने जीवन में ये सब कुछ छोड़ दिया। और कैसे उस तन को परमात्मा ने जब लिया, तो परमात्मा ने लेकर के उस तन की सारी बातें उनको सुनाई। क्योंकि एक बार ऐसा भी हुआ जब ब्रह्मा बाबा को ये आया कि मेरे मुख से जब बोलते हैं शिव बाबा तो बाकी बच्चे तो सुनते हैं, लेकिन मैं उनसे कैसे बोलूं, क्या ये सब कुछ है। तो ऑलमाइटी बाबा कुछ समय के लिए एक बहन के तन में प्रवेश हुए और प्रवेश होकर के ब्रह्मा बाबा को सुनाया कि मैं कौन हूं और मैं तेरे तन में प्रवेश होकर के तुझे निमित्त बनाया है नई सृष्टि के निर्माण करने के, कर्तव्य करने के लिए। तो केवल मात्र तुझे निमित्त बनना है, कार्य मेरा है, वो कार्य मैं करूं। लेकिन अब तुझे ये तन तेरा नहीं, ये तन तुझे मुझको देना है। तो बाबा ने कहा, ये शब्दों ने सहर्ष सब कुछ मेरा त्याग करा दिया, मेरा कुछ भी नहीं है। यहां तक कि अपनी जितनी प्रॉपर्टी थी, तो बाबा ने 8 बहनों का ट्रस्ट बना करके अपनी चल अचल संपत्ति उन्हीं के नाम सब कुछ कर दी और ट्रस्टी अब इस चीज को संभालेंगे, मेरा इससे कोई कनेक्शन। यहाँ तक बाबा हर चीज से निवृत्त हो गया। कई बार बहनें सुनाती थी कि हम एक बार बाबा के पास एक पैसा ले गए, क्योंकि पहले पैसा होता था गोल और बीच में छेद होता, तो बाबा को जाके दिखाया, बाबा बताओ ये क्या है। तो बाबा ने देख करके कहा, बच्चे ये नलके की वाशल होगी। तो कहा, नहीं बाबा ये वाशल नहीं है, ये पैसा है आज का। तो बाबा ने कहा, अरे आज इस दुनिया की सरकार की ये हालत हो गई कि तांबे का पैसा बना के उसके बीच में भी छिद्र बना दिया, और कहाँ सोने चांदी के सिक्के थे, कैसी सुंदर वो दुनिया थी। और परमात्मा यही कहता कि मुझे अभी सुंदर दुनिया बनाने के लिए मनुष्य को सुंदर बनाना, संसार को बदलने के लिए इंसान को बदलना, और इंसान को बदलने के लिए मैंने तेरे तन का आधार लिया, और मैं जो ज्ञान सुनाऊंगा वो मानव मात्र के जीवन का परिवर्तन है। तो बाबा का स्वयं का जीवन परिवर्तित हुआ और बाबा के मुख से ज्ञान सुनने वालों के जीवन में भी महान परिवर्तन आया। और जब इस परिवर्तन में विघ्न तो बहुत आए, क्योंकि सिंध जैसे देश में मीट मछली इस प्रकार का खाना और शराब आदि भी पीते थे, क्योंकि भाईबंद सोसाइटी के जो लोग थे वो विदेश में बिजनेस करते थे, कुछ समय विदेश में रहते, कुछ समय देश में रहते थे, धन वहां से लाते थे, ऐश्वर्य का जीवन जीते थे। लेकिन जिन माताओं बहनों ने बाबा के सम्मुख जाके बाबा के मुख से ज्ञान सुना, उनको लगे जीवन है तो यही है, अगर प्राप्ति है तो यही है। और जब उनके पति लोग आकर के देखा कि इनके जीवन तो बदल चुके हैं, तब पत्नियों ने कहा कि हम अमृत पीते हैं, अब विष का सेवन नहीं करेंगे। एक पवित्र सृष्टि के निर्माण करने के लिए परमात्मा का ऐलान, क्या पवित्र बन और योगी बन। तो जिन्होंने उस ज्ञान का रसास्वादन कर लिया वो उस चीज को छोड़ना नहीं चाहे, और बहुतों को बहुत से सितम सहन करने पड़े, कईयों को घर से निकाला गया। ये बातें बहुत फेमस हो गई दुनिया में, लेकिन आप सब समझते हैं कि किसी चीज के निर्माण करने के लिए, प्रथम कदम उठाने के लिए कुछ त्याग करना पड़ता है। एक भारत देश को स्वतंत्र करने के लिए कितनों ने जान की बाजी लगाई, कितने माँ के पुत्र फांसी के तख्ते पर चढ़े। कहानियां हैं कि जा रहा है और बेटा माँ से आशीर्वाद मांगता है, मैं भारत माँ के लिए युद्ध क्षेत्र में जा रहा हूं। माँ रोती है लेकिन बेटा कहते हैं, माँ ये फांसी का तख्ता नहीं, ये जयमाला भरने के लिए मैं जा रहा। इस प्रकार देश को स्वतंत्र कराने के लिए कितनों ने जान की बाजी लगा दी, और इस देश को स्वतंत्र नहीं राम राज्य बनाने के लिए, सुंदर सृष्टि बनाने के लिए, देव भूमि बनाने के लिए उन माताओं और बहनों ने और कुछ भाइयों ने अपने जीवन को संपूर्ण रूपेण समर्पित किया। और आज लोग ये बोलते हैं कि ब्रह्मा कुमारी के पास जाएंगे ना तो घर छूट जाए। वास्तव में घर नहीं छूटता है, ये प्रारंभ में जब प्रारंभ करना था तो कुछ ने अपने जीवन की बाजी लगाई थी। आज परमात्मा कहते हैं घर घर को स्वर्ग। अपने घर में खान पान की शुद्धि, आचार विचार की शुद्धि, वातावरण को शुद्ध करो, क्योंकि जब तुम्हारे घर स्वर्ग बनेंगे तब ये संसार स्वर्ग। ये ईश्वर का वचन, ईश्वर की आज्ञा इस समय हम सबको।
1: संसार को बदलने के लिए इंसान को बदलना, और इंसान को बदलने के लिए कैसे परमपिता परमात्मा शिव ने ब्रह्मा तन का आधार लिया और अपना कार्य किया। इस घटना को जब मैंने यानी काल चक्र ने देखा और समझा कि ये पाप की दुनिया तो समाप्त होने वाली है, नई सतयुगी स्वर्णिम दुनिया का शीघ्र आगमन होगा, जिसमें दुख अशांति व अप्राप्ति नहीं, सदैव सुख शांति समृद्धि का राज्य होगा। सभी मानव देवता तुल्य होंगे, सोने हीरों के महल होंगे, प्रकृति सतो प्रधान होगी, प्रकृति के सभी पांचों तत्व सुखदाई होंगे, कोई भी विकार नहीं होंगे, एक राज्य और एक भाषा होगी, जहां नर श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी समान होंगे। मानव से देवता बनने की पढ़ाई पढ़कर हम भी उसी दुनिया का हिस्सा

0: नमस्कार, स्वागत है आप सबका अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में। हु एम आई, ये सवाल लेकर हमने इस श्रृंखला को शुरू किया था। कौन हूं मैं, ये तलाश शाश्वत चल रही है, सदियों से तलाश रहा है मानव। धीरे धीरे अब लगता है कि पर्दा हटता जा रहा है, रहस्य खुल रहे हैं और इतना आसान सा जवाब हमारे सामने आया है कि मैं एक प्यार करने वाली पीसफुल आत्मा हूं, एनर्जी का एक आधार हूं, एक छोटा सा, एक हमने कहा था कि एक स्टार जो है वो एनर्जी मैं हूं। और फिर परमात्मा को जिसे हम तलाश रहे थे उसके बारे में भी जाना, पहचान हुई, शिव बाबा से मुलाकात हुई, इंटेलेक्चुअली हम बहुत कुछ समझ गए, सचमुच लॉजिकली लगा कि शायद यही सच है। लेकिन क्या प्रैक्टिकली आज अभी हम इसे अपना पा रहे हैं, या अभी भी कुछ सवाल है? चलिए उन्हीं सवालों को कुछ और आगे बढ़ाते हैं, जवाब तलाशते हैं। और हर बार की तरह हमारे साथ है इस पूरे सफर में ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: जो सोल कॉन्शियसनेस से शुरू करते हैं एक बार फिर, कि मैं ये शरीर नहीं, मैं ये नाम नहीं, मैं वो आत्मा हूँ जिसकी जो बेसिक क्वालिटीज है वो प्यार, शांति और हैप्पीनेस, खुशी की बात जो है, जो मैं बाहर तलाश रही थी वो मेरे अंदर ही है। इंटेलेक्चुअली बिल्कुल बातें समझ में आती हैं, सब कुछ क्लियर होता जा रहा है, जिस तरह का हमें रिस्पांस मिल रहा है हमारे दर्शकों से, सब ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छी बातें लग रही हैं, बहुत कुछ समझ में आ रहा है। लेकिन मेडिटेट करने की जो बात कही थी, अभी भी वक्त लग रहा है उस अनुभव तक जाने का। मतलब ये मैं और थोड़ा और गहराना चाहते हैं उस बात को कि अनुभव क्या होगा। हर एक का अनुभव क्या अलग अलग होगा, या अनुभव कैसे होगा, क्या होगा वो अनुभव?
1: मैं आत्मा हूँ, ये कोई सिर्फ सोचने की या सुनने की बात नहीं है, नहीं तो वो भी एक और एक लेबल हो जाएगा। जैसे अभी तक इतने सारे लेबल्स थे, मैं नाम हूँ, मैं प्रोफेशन हूँ, मैं रिलेशन हूँ, अब वो सारे लेबल्स हट गए तो मैं आत्मा हूँ। सो इट विल स्टिल बिकम जस्ट लाइक वन कॉन्सेप्ट, यू नो, एंड वी डोंट वॉन्ट इट टू रिमेन एज अ कॉन्सेप्ट, इट नीड्स टू बिकम एन एक्सपीरियंस। सो व्हाट डू आई डू टू मेक इट एन एक्सपीरियंस? फर्स्ट, जैसे आपने कहा कि इंटेलेक्चुअली लॉजिकली हमने समझ लिया है, तो ये भी सबसे पहले अब हर एक को अपने आप से पूछना पड़ेगा कि क्या लॉजिकली मैंने समझ लिया, क्योंकि कई बार कईयों के मन में लॉजिकली भी अभी तक वो क्वेश्चंस उठते हैं। तो फिर से एक बार थोड़ा सा उसको वो कर लेते हैं कि कैसे हम अपने आप से या अपने आप पे ये आंसर पर पहुंचे कि मैं एक शक्ति हूं। अभी तक जितने लेबल्स थे हमारे, उनको एक एक करके सिर्फ रिवाइज करते जाएं और अपने आप से पूछते जाएं, क्या मैं ये हूं या नहीं हूं? और अगर

0: नहीं हो तो जैसे हमने पिछली बार किया कि एक एक लेबल को हम हटाते जाएं, तो क्या मैं एक प्रोफेशनल हूँ? नहीं, वो मेरा रोल है. ओके, आउट. क्या मैं सिर्फ एक मदर हूँ, एक सिस्टर हूँ? नो, मैं तो इतने सारे रोल्स हूँ. सो दैट्स जस्ट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स माई रोल, सो दिस इज ऑल्सो नॉट मी. और फाइनली हम इस पर आकर पहुंचे कि शरीर, क्या मैं शरीर हूँ? और फिर हमने देखा कि इसके भी तो एक एक अंग के लिए हम कहते हैं ये मेरा है, तो मैं कौन हूँ? तब इस हम कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि आई एम नॉट, दिस इज ऑल माइन, ये सब कुछ मेरा है, मेरा शरीर, इसलिए हम कहते हैं. तो मैं कौन? मैं वो शक्ति जो इस शरीर को चलाती हूँ. प्योर एंड शक्ति है तो इटर्नल है, वो डिस्ट्रॉय नहीं होती. एंड मेरी क्वालिटीज क्या है? जैसे कई लोग कह रहे हैं मुझे नहीं लग रहा कि मैं पीसफुल सोल हूँ, यू नो आई डोंट फील, बिकॉज आई एम रेस्टलेस मोस्ट ऑफ द टाइम, आई गेट एंग्री मोस्ट ऑफ द टाइम, सो हाउ कैन आई से दैट आई एम अ पीसफुल सोल? इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू आस्क योर सेल्फ कि आपको अच्छा क्या लगता है, वॉट इज नेचुरल विद यू, वॉट आर यू कम्फर्टेबल विद. भले हम दिन में 10 बार गुस्सा करें, लेकिन हमें अच्छा क्या लगता है? शांति. तो हमें वही चीज अच्छी लगेगी जो हमारी अपनी प्रॉपर्टी है, जो मेरी अपनी नेचर है. इसलिए आप देखो ट्रैफिक जाम में खड़े हैं तो इतना कंफर्टेबल नहीं लगता. सी शोर पे जाकर बैठ जाओ, समुद्र के किनारे सनसेट हो रहा है वहां जाकर बैठ जाओ. क्यों? क्योंकि बाहर प्रकृति और अंदर हार्मनी में है. इट्स वेरी पीसफुल, इट्स वेरी क्वाइट, सो यू स्टिल यू फील दैट यू आर इन हार्मनी विद नेचर एंड यू वुड लाइक टू गो टू सच प्लेसेस. सो दैट्स अ प्रूफ दैट यू नो दिस इज व्हाट आई एम, दिस इज व्हाट आई लाइक. आई लाइक लव, आई नेवर लाइक कि कोई मुझसे नफरत करे. चाहे हम बहुत लोग हमें अच्छे नहीं लगते, लेकिन फिर भी हमें क्या चाहिए, क्या है सभी लोगों से?
1: कि सब मुझे पसंद करे, मुझे प्यार करे.
0: कोई अच्छा लगेगा कि कोई हमें बताए कि आप मुझे अच्छे नहीं लगते? तो हमें अच्छी नहीं लगेगी वो बात, हमें वो व्यक्ति अच्छा नहीं लगेगा फिर कि उसने ऐसा क्यों कहा. क्यों? क्योंकि मुझे प्यार चाहिए. तो मुझे प्यार क्यों चाहिए? क्योंकि वो मैं हूं. कहीं ना कहीं मैं अपने अंदर वो ढूंढ नहीं पा रही हूं अभी, तो मैं उसको बाहर ढूंढने की कोशिश कर रही हूं. तो मैं आत्मा अपने आप को ढूंढ रही हूं और है कुछ भी नहीं. आई एम जस्ट एन एम्बोडीमेंट ऑफ ऑल दीज क्वालिटीज, पीस, लव, प्योरिटी, हैप्पीनेस,
1: नॉलेज,
0: ब्लिस, अति इंद्रिय सुख जो है, जो सुख हम अभी तक बाहर ढूंढ रहे थे, बट है वो इन इंद्रियों से भी पार का सुख. तो ये मैं हूं. अब इसको एक्सपीरियंस करना है. अभी तक जो हम कर रहे हैं हम सुन रहे हैं, यू नो दीज आर जस्ट वर्ड्स, बट बाय लिसनिंग अच्छे लगेंगे सुनने में.
1: That's what I'm saying. Haan. Even listening is making me feel very comfortable.
0: Yes, but it will, yeah, because it's the truth, na? Jab hum kuch bhi sach sunte hain apne bare mein, it will feel comfortable. लेकिन वो सुनने तक नहीं रखना है. अब उसको एक्सपीरियंस तक लेके जाना है. हमने ये देखा कि हमारी बहुत सारी बिलीफ्स हैं. अब बिलीफ को
1: चेंज,
0: ट्रूथ बनाना है. सो व्हाट इज द ब्रिज बिटवीन बिलीफ एंड ट्रूथ इज एक्सपेरिमेंट एंड देन एक्सपीरियंस. मैं आत्मा हूं, ये भी एक बिलीफ है, लेकिन जिस दिन वो एक्सपीरियंस कर लिया उस दिन वो सत्यता है.
1: जैसे हमने कहा था कि हमने अज्यूम किया,
0: हाँ, हमने अज्यूम किया था. जैसे परमात्मा के लिए भी हमने अज्यूम किया. जिस दिन हमने उस परमात्मा को अनुभव कर लिया उसके बाद कोई प्रूफ नहीं.
1: फिर हम कहेंगे ना, therefore,
0: this is equal to this, right? तो जैसे आप अगर आकर कहें कि बाहर बारिश हो रही है, अब वो आपने अनुभव किया है, ठीक है, आपने देखा है. मैं अभी अंदर बैठी हूँ. सो नाउ इफ समबडी एल्स आस्क्स मी Is it raining outside? So I say, I believe it's raining outside. You know, because I've heard about it. तो मैंने सुना है. तो मैं कहती हूँ हाँ शायद बाहर बारिश हो रही है. Now I will go out and मैं उस बारिश की बूंदों को खुद से देखूंगी और खुद से फील करूंगी. And then I will say, I know it's raining outside. एक स्टेप है देखना, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट स्टेप है उसको फील कर लेना. देखने में भी धोखा हो सकता है, लेकिन फील करने के बाद ओके, द होल वर्ल्ड वन साइड एंड आई अलोन कैन स्टैंड एंड से कि बाहर बारिश हो रही है. सेम थिंग विद दिस, आई एम अ पीसफुल सोल. आई बिलीव आई एम अ पीसफुल सोल.
1: टुडे आई डू, बिकॉज यू नो लाइक इसका सारा लॉजिक, जैसे बारिश के लिए भी कहें क्योंकि मौसम ऐसा है, आप मान सकती हैं कि बारिश हो रही है,
0: right.
1: क्योंकि आपने एक्सपीरियंस नहीं किया. आई कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड नाउ कि आपका हर लॉजिक जो है वो कह रहा है कि आई एम अ पीसफुल सोल,
0: राइट.
1: लेकिन मैं खुद कहूँ कि आई एम अ पीसफुल सोल ओनली व्हेन आई
0: एम कहे भी लोगे आप लेकिन इट हैज टू कम फ्रॉम दैट कन्विक्शन. नहीं तो क्या होगा, आज आप कहोगे कि हाँ आई एम अ पीसफुल सोल, कल कहीं और आप डिस्कशन करोगे
1: और कोई क्वेश्चन कर देगा तो आप उतनी हाँ मैं नहीं कह पाऊंगी.
0: और किसी और के लिए है भी नहीं ये, कोई ये नहीं है कि हमें किसी और को कैसे कन्विंस करना है, लेकिन इट्स ऑल अबाउट कि जो मैं हूं तो मैं उसको अनुभव करूँ ना. हम बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं यू नो, एंड द बुक्स हैव वेरी गुड वर्ड्स, वेरी इंटेलेक्चुअल, एंड वी लिसन टू द बुक एंड वी से वाओ ना किस ऑथर ने कितनी अच्छे तरह से ये लिखा है, सोल के बारे में पूरी डिस्क्रिप्शन दे दिया, मेरे को तो पूरा अच्छी तरह से समझ में आ गया, अब तो मेरी जीवन बिल्कुल परिवर्तन हो जाएगी फ्यू डेज. And after that, you go to the market. जो सबसे ज्यादा आज बिकने वाली किताबें हैं, they are the self help books, the self transformation books, because everybody is looking for that transformation. They are selling very expensive books. They are selling, and people are buying the books. पढ़ते हैं, बहुत अच्छी लगती है. ऐसे लगता है after this I'll be another person. You know?
1: नहीं, इनफैक्ट अगर मैं कहूँ तो ऐसी किताबें हैं, ऐसे डिस्कोर्सेज हैं जो लगता है मेरी ही बात कह रहे हैं,
0: Absolutely.
1: मेरे ही जवाब दे रहे हैं. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बातों का जवाब मिल रहा
0: right.
1: है, लेकिन अल्टीमेटली उसके बाद फिर जिंदगी वैसे ही शुरू हो
0: जाती है. यस, क्यों? क्योंकि हमने उसको सुन लिया, समझ भी लिया, लेकिन उसको यहाँ तक रखा, उसको प्रैक्टिकल में अपने जीवन में अनुभव नहीं किया, तब तक वो मेरी प्रॉपर्टी नहीं बनेगी. तब तक वो उनकी प्रॉपर्टी है जिन्होंने उसके बारे में लिखा या बोला है, तो उन्होंने अनुभव किया होगा. लेकिन मेरी प्रॉपर्टी बनने के लिए आई विल हैव टू एक्सपीरियंस इट. सो लेट्स गो थ्रू अ फ्यू स्टेप्स टू सी हाउ टू एक्सपीरियंस इट, एंड दोज ऑफ देम हु आर वॉचिंग, ऑल आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, दे कैन एक्चुअली ट्राई एंड डू इट. साथ साथ करने की भी कोशिश करें, या इसको नोट भी करके रखें, बिकॉज दिस इज समथिंग लाइक यू नो स्टेप्स ऑफ एन एक्सरसाइज, जो इसको आप फिर बार बार कुछ दिन करेंगे, जब तक यू विल कम टू दैट therefore I am a peaceful soul, you know, once I have experienced it.
1: सबसे पहले हमें अपने वो जो बाकी सारे माइंडसेट्स हैं उन्हें भी एक तरफ करके we have to be ready that we want to experience.
0: Absolutely.
1: So actually उसके लिए भी हम कई बार तैयार नहीं होते हैं. हमें समझ में तो आ रहा है सब कुछ, लेकिन मैं अपने जिन बिलीफ पे खड़ी हूँ, जिन बातों को मैं अभी तक मानती आ रही हूँ, वो भी साथ साथ चल रहे हैं, तो कुछ देर के लिए, कुछ दिनों के लिए हमें एज्यूम, अगर एक चीज को कर रहे हैं तो हमें उसे ही एज्यूम करना पड़ेगा, बाकी चीजों को थोड़ा सा स्टैंड स्टिल पे रखना पड़ेगा.
0: अगेन इट्स एवरीबडीज चॉइस कि हम करना चाहते हैं कि ये नई अनुभव, लेकिन अगर आप अपने जीवन से क्रोध, दुख, अशांति, चिंता, परेशानियां, ये सारी नेगेटिविटीज, इन सबको हटाकर वॉट यू आर, इफ यू वॉन्ट टू बी दैट, देन ट्राई इट आउट, दैट्स ऑल. You know, it's not a question of you should do it or you have to do it. No, it's just that it's there inside you. It's like a locker. कि आपके locker में बहुत सारा पड़ा हुआ है, इतना सारा पैसा है, लेकिन आप बहुत कंजूसी से चल रहे हैं.
1: सिर्फ इसलिए.
0: So that's why, because you're not. That's why the whole series is self awareness. You're not aware that there is so much of there. Bank balance. तो इसलिए उसको खोल कर एक बार देख लेते हैं. एक बार देखकर फिर डिसाइड करना कि आप खर्च करना चाहते हो कि नहीं, लेकिन एक बार खोल के देखना चाहिए. नहीं तो ऐसा ना हो जीवन के एंड पे जाके पता चले कि इतना सारा था मेरे पास एंड मैंने पूरी अपनी जीवन, एंड दैट्स व्हाट इट इज, आई एम अ पीसफुल सोल एंड आई एम स्पेंडिंग द एंटायर डे इन एंगर, एंग्जायटी, सो मच ऑफ पेन, एंड देन थिंकिंग कि शांति कहाँ से मिलेगी, शांति तो मिलती नहीं है. इमेजिन सम डे टू सडनली रियलाइज, ओ इट वॉज देयर इन मी ऑल दिस व्हाइल. And then, if I come to know that, you know, during this journey, I did get opportunities.
1: Omens were there.
0: Yes.
1: And I'm reading Alchemist again. That's what I can see.
0: Right. That's what. Yes. Omens. Opportunity aayi thi. दरवाजे पे खटखटाया था. जवाब आपके हाथ में आ गया था. लेकिन आपने कहा अभी टाइम नहीं है, बाद में करेंगे. And you just put it aside. वैसे सारा दिन कहेंगे शांति चाहिए, खुशी चाहिए, ये चाहिए, और फिर ऊपर से कहेंगे 70 साल की एज के बाद खोजेंगे उसको. आई डोंट नो, देयर इज अ लॉट ऑफ इनर कॉन्फ्लिक्ट एंड इट्स जस्ट दैट टेक आउट अ लिटिल टाइम टू स्टॉप.
1: इट्स अ फियर आल्सो समवेयर, यू नो, एक्चुअली पीपल आर अफ्रेड. ये भी डर लगता है क्योंकि मैं भी अगर अपने आप को देखूं तो डर लगता था कि मैं करने की कोशिश करूंगी, मिलेगा नहीं मुझे. यू नो, कई बार ऐसा भी लगता है एक कि जो मेरे पास अपना है, जिस पे लेके मैं अभी तक चल रही हूँ, जी रही हूँ, किसी ना किसी तरह जी रही हूँ, वो भी छूट जाएगा.
0: yes.
1: और नया भी पता नहीं मिलेगा कि नहीं.
0: right.
1: शायद ये डर भी हो सकता है. मतलब
0: कभी भी परिवर्तन अगर करना हो ना तो उसमें डर होता है. आपने सर्कस में एक ट्रपीज होती है, आप एक तरफ से छोड़ते हैं और दूसरी तरफ जाकर पकड़ते हैं,
1: पकड़ नहीं पाई तो मैं नीचे,
0: तो बीच में गिर जाएंगे. अभी एटलीस्ट ये वाला जो परिवर्तन का, नॉर्मली परिवर्तन के लिए होता है आपको एक साइड छोड़नी पड़ेगी. यू नो, लेट गो ऑफ वन थिंग एंड देन होल्ड ऑन टू अनदर थिंग. हियर इफ यू आर स्केर्ड ऑफ लेटिंग गो ऑफ वन थिंग, ओके, कीप इट विद यू. इवन दैट ऑप्शन इज देयर, क्योंकि बट जस्ट कीप इट असाइड फॉर सम टाइम, डोंट लेट इट गो. पुराने बिलीफ सिस्टम्स, पुराना थिंकिंग पैटर्न, थोड़े दिन के लिए उसको साइड पे रखो, वो गुम नहीं हो जाएगा. अगर ये वाला पसंद नहीं आया, वो बहुत जल्दी वापस आ जाएगा. इट्स क्वाइट चैलेंजिंग, वो इतनी जल्दी वैसे भी नहीं जाता. सो कीप इट असाइड फॉर अ फ्यू डेज. ये वाले बिलीफ सिस्टम को एक बार ट्राई करके देखो, और अगर नहीं पसंद आया या इट डजंट वर्क फॉर यू, द ओल्ड वन इज स्टिल देयर.
1: क्योंकि ये अच्छा लग रहा है.
0: yeah.
1: ये लग रहा है कि मैं खुद कह सकती हूँ कि ये लग रहा है बहुत से दर्शक, क्योंकि तभी तो लोग बात कर रहे हैं, तभी तो लोग कहते हैं कि हमें अच्छी लग रही है आपकी बातें. तो आइए आज कोशिश यही करते हैं कि हम एक पॉजिटिव माइंड से इसकी तरफ बढ़ते हैं.
0: द फर्स्ट थिंग दैट वी वुड डू इज स्टेप बाय स्टेप चलते हैं कि वी हियर इट, हम सुनते हैं. जैसे रोज शाम को आप देख रहे हैं ये प्रोग्राम, तो वी आर लिसनिंग टू इट. एक इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हमने देखा थॉट्स कैसे क्रिएट हो रही है, इन्फॉर्मेशन अंदर फीड होती है. तो फर्स्ट स्टेप इज हम शब्दों को सुनते जा रहे हैं. आई एम अ पीसफुल सोल, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, ये अंदर कहीं ना कहीं बैठते जा रहा है. लेकिन सुनते सुनते ये याद रखना होगा कि ये सिर्फ शब्द है, इसको शब्द की तरह लें और अब इसके साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू करें. सो द फर्स्ट थिंग इज टू हियर इट और टू रीड इट. लोग पुस्तक पढ़ते हैं या कुछ सुनते हैं इस तरह से. सेकेंड स्टेप इज टू क्रिएट दैट थॉट, आई एम अ पीसफुल सोल. अभी तक सुना था, अब आप रात को सोने से पहले जब बैठेंगे या सवेरे उठकर कल मेडिटेशन करेंगे, तो पहले इस थॉट को कॉन्शियसली क्रिएट करेंगे. नाउ यू विल स्टार्ट थिंकिंग ऑन इट. यू हर्ड इट, now you start thinking on it and you create a thought consciously. बहुत सारी thoughts हैं जो हमें पता ही नहीं चलता कितनी सारी आ रही हैं. अब आप attention से बैठकर ये संकल्प रचेंगे, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति मेरी nature है. Start. So that's the second step, thinking of that, creating the thought. Third step is start seeing it. Seeing it in the sense, जब हम अपने मन को देखते हैं तो बहुत सारे थॉट्स हैं. हमने थॉट क्रिएट किया, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ. अभी क्रिएट करें और उस थॉट को देखें, आई एम अ पीसफुल सोल. धीरे कॉन्शियसली अटेंशन जब उस थॉट पर रखेंगे, धीरे धीरे आप पाएंगे कि जो दूसरी वाली थॉट्स थी वो अपने आप विदाउट एनी एफर्ट they will just pass away, just finish off, and you will reach a point jab aur koi thought nahi hogi. You will be left with that one thought, the rest of them have just crossed. Because it's a question of priority na. Bahut sari aa rahi thi lekin aapne apni attention kisko di?
1: I'm a peaceful soul.
0: Normally kya hota hai, hum create karte hain thought, I'm a peaceful soul. Aaj office mein kya karna tha, to hum फिर उस थॉट की तरफ अटेंशन दे देते हैं. अगर कि हाँ आज ये करना था, आज ये भी करना है, आई एम अ पीसफुल सोल, लेकिन उसने कल ऐसा क्यों कहा था. सो वी कांट गिव अटेंशन टू सो मेनी थॉट्स एट द सेम टाइम. एंड वैसे भी हमें ये याद रखना होगा कि ये थॉट हमारी नई नई रचना है अभी, जो छोटा बच्चा है अभी, तो इसके ऊपर हमें ज्यादा अटेंशन देना पड़ेगा. अगर हम वो ऑफिस के ऊपर भी उतना ही अटेंशन अभी देने लगे तो वो थॉट्स भी उतने स्ट्रॉन्गली आने लगेगी. लेकिन अगर हम सिर्फ एक थॉट क्रिएट करके उस पर अटेंशन दे, बाकियों की तरफ नहीं ध्यान दे, दे विल फिनिश. जैसे आपके घर में बहुत लोग आते जाते हैं सपोज, ठीक है, जो एक विशेष व्यक्ति आपको पसंद है, आप उसी की तरफ ध्यान देंगे ना, तो उसके साथ आप बात करेंगे. अब अगर प्रोसेस में कोई और आ गया, अब आपने इसको छोड़ के उससे बात करने शुरू कर दी तो वो भी तो बैठ जाएगा. अब अगर वो बैठ गया फिर आप उसको नहीं बोल पाओगे उठने के लिए, फिर आप इसकी तरफ भी अटेंड करोगे और उसकी तरफ भी अटेंड करोगे. लेकिन जब आपने चूज कर लिया कि आपको कौन पसंद है और आपको उससे ही बात करनी है, बाकी लोग आते जाते रहेंगे, देखेंगे ये तो बिजी है, ये तो इनके साथ बात कर रहे हैं, हम बाद में आएंगे, एंड दे विल गो. डोंट लेट देम सिट. सेम थिंग विद द माइंड. Try it. It's very simple. But it's just that we let everyone sit. Because we feel all of them are important. They are important. Office ka kaam important hai. Ghar ke log important hai. But 5 minute hi to liye hai sirf apne liye. It might take a couple of minutes. That's all. Usse zyada time nahi lag sakta. Kyunki 1 minute bhi bahut hota hai. 1 minute bhi bahut hota hai. Aur 1 minute se zyada nahi lagega. Lekin utna patience chahiye. Ye nahi ho raha. Main uth rahi hoon. Mere se nahi hota meditation. It requires little patience. To first hear it. Sun liya. Then think it, create kiya usko, then see it. Ab aapne jab usko apne mind ke screen par rehne diya thodi der, dheere dheere dheere, wo thought aapki subconscious mind mein baith jayega bilkul. Because now there is no other thought. And you reach the fourth stage, jab aap sirf ek thought nahi reh gayi hai, ki I am a peaceful soul, lekin it's actually you have started experiencing that peace because all the other thoughts have anyways gone away and you're just left with I am a peaceful soul. Abhi tak wo ek thought thi, dheere dheere wo ek anubhav banna shuru ho jayega ki you'll start feeling peace. Absolutely. Because aapne abhi tak usko dekha, ab aapne usko feel kiya. Barish, aap bahar gaye the, aapne pehle dekha, phir aapne usko feel kiya. And then you said, I know, now it's raining outside. Same thing with the thought. आप पहले उसको देख लेते हैं, धीरे धीरे जब और सारी थॉट्स खत्म हो जाती हैं, आप उसको फील करना शुरू कर देते हैं.
1: लेकिन बारिश को जो हम फील करते हैं, हमें पता है कि वो बारिश है, गीला हो रहा है. इस थॉट को हम फील करेंगे तो हमें क्या होगा?
0: यू विल फील एब्सोल्युटली सो पीसफुल. आप अभी aren't you, I can feel the vibration changing right now. अगर क्योंकि हम कोई भी और thought ले नहीं रहे हैं इस time. अगर आप सिर्फ एक minute के लिए बैठ गए इस thought को लेकर कि I'm a peaceful soul, and और सारी distractions खत्म हो जाती हैं, और फिर आप उस thought को भी create करना बंद कर देते हैं.
1: It just remains with you.
0: Then the feeling remains with you. Most important thing is feel कर लिया. चाहे वो एक मिनट के लिए फील किया, लेट्स इमेजिन कि वो एक मिनट के लिए रहा, उसके बाद सारा दिन वो गायब हो गया. ठीक है, लेकिन एक मिनट के लिए जब आपने फील कर लिया, दैट इज विक्ट्री फॉर यू, बिकॉज आपने ट्रुथ को टच कर लिया है. आपको ये पता चल गया है कि वो लॉकर में वो है. हो सकता है एक मिनट देखने के बाद वो लॉकर बंद हो गया. ठीक है, यानी यू जस्ट लॉस्ट इट, बट नाउ यू Got it.
1: I know it.
0: Yes. Now you know कि आपको तरीका आ गया कि इसको कैसे खोलना है. तो जितनी बार आप उसको प्रैक्टिस करेंगे वो ज्यादा देर खुलने लगेगा. पहली बार आधा मिनट.
1: कई बार ये शक आता है कि क्या आंखों का धोखा था, क्या वो सचमुच में वही था.
0: जितनी बार उसको एक्सपीरियंस करेंगे. सी अगेन, दिस इज वन थिंग जिसको हमें बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअलाइज करने का कोई फायदा नहीं है. हम कितना भी सोचे ना कि ये होगा या नहीं होगा, हो सकता है या नहीं हो सकता है, रहेगा या नहीं रहेगा, बुद्धि काम नहीं करेगी. दिस हैज टू बी डन, इट डजंट हैव टू बी थॉट अबाउट. यू नो मेजोरिटी पीपल आर थिंकिंग अबाउट इट.
1: यस, आई थिंक आई मी इंक्लूडेड.
0: या विद इट्स लाइक यू नो स्विमिंग करनी है. आप बच्चे को बाहर पूल के बाहर खड़े होकर नहीं बताते हो स्विमिंग ऐसे करनी है, ऐसे करनी है. थ्रो हिम इनटू द पूल. साइकिलिंग करनी है, गाड़ी चलानी है, ये सारी चीजें हमने कैसे सीखी? हमने चलाना शुरू कर दिया.
1: प्रैक्टिस करते गए.
0: नो बट यू नो देयर वाज नो थ्योरेटिकल ट्रेनिंग. क्या बाहर बैठकर आपको कोई लेक्चर दे रहा है कि साइकिल ऐसे चलती है? उन्होंने आपको साइकिल पे बिठा दिया, थोड़ी देर 5 मिनट पीछे से पकड़ा, उसके बाद तो आप चल पड़े. सेम विद दिस. वी डोंट नीड टू मेनी लेक्चर्स ऑन दिस कि आई एम अ पीसफुल सोल. हाउ एम आई अ पीसफुल सोल? एम आई अ पीसफुल सोल और एम आई नॉट अ पीसफुल सोल? डू इट, सी इट, फील इट फॉर योरसेल्फ. इट्स लाइक दैट. ये जितना भी सोचेंगे उससे नहीं होगा. ट्राई दिस आउट and you will have the answer and everyone will have the answer. Jo bhi ye karke dekhega, they will have the answer. That is for sure. Ke sun liya, उसको क्रिएट किया उस थॉट को, फिर थॉट को अपनी माइंड की स्क्रीन पर रख दिया, बाकी सारी थॉट्स चली गई, फिर उसको फील किया, क्योंकि वो काफी देर बैठा एक मिनट, तो उसको फील करना शुरू कर दिया. सो फोर्थ स्टेज इज फील इट. नाउ बिकॉज आई हैव सीन इट एंड आई हैव फेल्ट इट, सो नाउ आई नो इट. अब मुझे पता है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं. किसी ने बताया, किसी ने कहा, वो पता नहीं, अब मैंने महसूस कर लिया. एक बार टच कर लिया ना उसको, इवन इफ फॉर 2 seconds, अगर आपने टच कर लिया, आफ्टर दैट यू डोंट नीड एनीबडी. क्योंकि एक चीज जो एक बार टेस्ट कर लिया, बार बार उसकी प्रयास करके आप उसको बार बार टेस्ट कर सकते हो. द क्वेश्चन इज ऑफ ओनली गेटिंग इट दैट फर्स्ट टाइम. तो देन वी रीच दैट स्टेज ऑफ नो इट. अब मुझे पता है, नाउ दिस इज द ट्रूथ फॉर मी, कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं. अब जो आप कह रहे हैं ना कि अब ये कहीं गायब तो नहीं हो जाएगा, अब इसको हम सारा दिन करना शुरू कर देते हैं. स्टार्ट बीइंग इट बिकॉज यू आर अ पीसफुल सोल. आप हो ही. एंड यू नो व्हेन यू कम टू नो कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं, इट्स सच अ लिबरेशन. क्योंकि आपको ये पता चल जाता है कि मैं हूं शांति. तो मेरे से शांति कोई लेके जाने का, मेरी शांति नहीं है. मेरे से लेकर कौन सी चीजें जा सकती हैं जो मेरी है. लेकिन जो मैं हूं,
1: मुझे तो कोई नहीं लेकर जा सकता.
0: मुझे कोई अपने से तो लेके नहीं जा सकता है. तो इट्स नॉट दैट यू नो पीस इज माइन. नो, आई एम पीस. लॉट ऑफ डिफरेंस. लाइक सो मेनी थिंग्स आर माइन. ये सब चीजें मेरी हैं. इसीलिए हमने कहा डर रहता है कि किसी ना किसी दिन ये चली ना जाए. एंड वी लिव आवर लाइफ इन फियर. बट पीस इज नॉट माइन. शांति मेरी चीज नहीं है. मैं ही शांत स्वरूप आत्मा हूं. तो इसको कोई मुझसे लेकर नहीं जा सकता. देन आई स्टार्ट बींग इट. नो, सारा दिन में करते हुए अब मुझे पता चल जाता है ये पावर मेरे पास आ गई है. और ये शांति की जो शक्ति है, ये सारा दिन मेरे साथ यूज होती है. व्हेन आई कम अक्रॉस पीपल, माय इंटरैक्शंस, माय रिलेशनशिप्स, आई स्टार्ट यूजिंग दिस बिकॉज नाउ आई एम बीइंग पीस. यू नो, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, नॉट ह्यूमन डूइंग्स. ह्यूमन बीइंग, सो व्हाट आर यू गोइंग टू बी टुडे? I'm going to be a peaceful soul today because peace is my nature. So if I am a peaceful soul, wherever I go, whoever I meet, peace will just flow. तो मेरे सारे संबंध भी कैसे हो जाएंगे?
1: Comfortable.
0: Comfortable. So then I start being it, and then धीरे धीरे धीरे वो मेरी नेचर का एक स्वाभाविक हिस्सा बन जाएगा.
1: लेकिन बात बिल्कुल सच है कि जब इस बात के एहसास को हम लेकर चलते हैं कि who am I, you know, एक क्लैरिटी अभी तक ये थी कि जब इंटेलेक्चुअली हमें समझ में आता था या लॉजिकली कि who am I, तो उसके बाद एक्सपीरियंस करने की देर है. एंड आई थिंक वी कैन बी ऑन द पाथ विच वी बीन ऑल लुकिंग फॉर. सिस्टर शिवानी, अभी बहुत सी और बातें बाकी हैं, लेकिन हाँ, हर स्टेप जो है वो इम्पोर्टेंट होता जा रहा है. आज बहुत अच्छी तरह से आपने हमें ये बताया है कि किस तरह से हम उस अपने आप को महसूस कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.
0: ओम शांति.
1: ओम शांति. कौन हूँ मैं, ये हमने जाना. मैं वो शांत, प्रिय, प्यार करने वाली आत्मा हूँ. और इस एक्सपीरियंस को जो आज हमने सीखा है कि किस तरह से पहले हमने ये सुनना है, ये शब्द सुना, उसके बाद एक थॉट क्रिएट किया, और उसके बाद उसे महसूस किया. जब बाकी सभी जो थॉट्स आ रहे थे उन्हें आसपास आने जाने दिया, और वो थॉट एक कि मैं एक शांत प्रिय आत्मा हूं, वो हमारे साथ रह गया. अगर वो एक मिनट के लिए भी रह गया तो मुझे लगता है कि आगे का सफर आसान हो जाएगा, और शायद जिंदगी भर वो थॉट रह जाए क्योंकि वही मैं हूं. बहुत सी और बातें हैं आपके दिल में भी, हमारे दिल में, जो साथ मिलकर ऐसे ही शेयर करते रहेंगे. कुछ ऐसी बात है जो आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में शेयर करना चाहते हैं, आप हमें फोन कर सकते हैं या फिर ईमेल पर भी संपर्क कर सकते हैं. हमारे फोन नंबर है 9999 3 4 4 6 9 8 7 3 6 6 5, और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com. अगली कड़ी में कुछ और बातें करेंगे. ये जो रिश्ता अपने साथ बना है उसे और गहरा और सुदृढ़ करेंगे. फिर मुलाकात करेंगे अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में. अब दीजिए इजाजत. नमस्कार.
2: ब्रह्मा कुमारीज द्वारा राजयोग मेडिटेशन प्रत्येक सेवा केंद्र पर निशुल्क सिखाया जाता है. यह कोर्स 7 दिन प्रतिदिन 1 घंटे का है. भारत के बड़े शहरों से लेकर छोटे छोटे गांवों में हमारे 8,000 से अधिक सेवा केंद्र हैं। राजयोग सीखने के लिए और अपने नजदीकी सेवा केंद्र का पता जानने के लिए संपर्क करें 0999-344-555, 0999-344-666 और 0987-366-555। आप ईमेल द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है omshantistudio@gmail.com।

नमस्ते, मैं हूँ किरण शूद्र की सांगली और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। ध्यान मन को स्थिर करता है और आत्मा की गहराई में झांकने का मार्ग दिखाता है। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग राजस्थान, गुड मॉर्निंग गुजरात, गुड मॉर्निंग आप सभी को जो इस वक्त रेडियो मधुबन को सुन रहे हैं। जी हाँ साथियों, 18 सितंबर 2026 आज का तारीख है और जुम्मे का दिन है, विशेष दिन है और आशा करूंगा कि आप सभी को अच्छा लग रहा है। और आज जैसे कि शुक्रवार का खूबसूरत दिन है, शक्ति स्वरूपा का दिन है, तो निश्चित तौर पर हम सभी उस शक्ति को अनुभव करेंगे और आज के दिन को बेहतर और बेहतर बनाने का प्रयास हमारा जारी रहेगा। तो आइए, आज अंतर्राष्ट्रीय सम्मान वेतन दिवस है और विश्व बांस दिवस भी आज है। तो आप जानते हैं बांस की लकड़ियां जो हैं वो आज बहुत चर्चित में है और काफ़ी जो है उसमें स्ट्रेंथ है और वो घर बनाने से लेकर घर के चीज़ों को लेकर खाना भी हमारे जो है छोटे छोटे बांस के टुकड़ों से आजकल सब्जियां भी बनाई जा रही हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें यानी खाने से लेकर घर बनाने तक की जो चीज़ें हैं वो बांस की लकड़ियों से बनाई जाती है। तो आप देखते हैं बांस का क्या कमाल है, किस तरह की बातें उसमें हैं। आज के दिन याद करते हैं बांस बम्बू। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। आइए गुड़ीलाल जी आ गए हमारे साथ जुड़ने के लिए। हेलो
1: जी, नमस्कार भाई जी, नमस्कार।
0: नमस्कार जी, नमस्कार गुड़ीलाल जी, बोलिए।
1: उद्धार करो भगवान, तुम्हारी शरण में पड़ा। उद्धार करो भगवान, तुम्हारी शरण में पड़ा। प्रभु ये हो जाएगा तो मेरे को बहुत दिल के अंदर खुशियाँ छा जाएगी और सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जब आप आ जाते हैं तो हमारे दिल के अंदर शांति प्रदान हो जाती है। क्या कहना है आपके साथ में
0: हमारे
1: बातें और आपके मधुर मधुर वाणी में सब बातों को सुनते रहेंगे। धन्यवाद सर, सभी को प्यार भरा नमस्कार।
0: नमस्कार जी, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। चलिए आगे बढ़ते हैं और आप सभी को ले चलते हैं उद्धार करो प्रभु, ये गीत आपके नाम। प्रभु

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है और ढेर सारी खुशियों के साथ प्रभु मेरे मेरा जीवन का उद्धार कर दो, ये खूबसूरत गीत आपने सुना। और आइए जब हम लोग इस भाव से गीत गुनगुनाते हैं तो मन में कहीं ना कहीं समर्पण भाव भी आ जाता है। तो आइए प्रत्येक 18 सितंबर को प्रत्येक साल ये बांस दिवस वर्ल्ड बाम्बू डे के रूप में मनाया जाता है और जागरूकता बढ़ाने के लिए रोज़मर्रा के जीवन में इसका उपयोग बढ़ावा देने के लिए हर साल ये दिन मनाया जाता है। मुख्य रूप से पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया में विभिन्न उद्देश्यों के लिए बांस का उपयोग किया जाता है। अजी नमस्कार, ओम शांति जी, स्वागत है आपका।
1: ओम शांति, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, कैसे हो सर?
0: बढ़िया है, आप बताइए आप कैसे हैं?
1: बहुत अच्छे हैं, बैठे हैं सुबह से 4 बजे से, बारिश जोर से चल रही है।
0: चंद भाई ने बारिश को याद किया, बारिश आ गया है अभी।
1: हाँ, बहुत जोरों से चल रही है, कल भी हुई थी, बरसी हुई थी, आज सुबह से 4 बजे से शुरू हो गई है जोर से बारिश। बाहर निकलना मुश्किल है, ऐसा ही हाल है अभी। चलो अच्छा है, बारिश तो जरूरत थी किसान भाइयों को लिए, सबको लिए, आ गई है, अच्छा है। तो हमारे सभी मित्रों को आज का दिन की शुभकामनाएं, सर शुक्रवार है, सबको शुक्रिया। और सभी को हमारी तरफ से आज के दिन की भी शुभकामनाएं, हमारे नए मित्रों को भी शुभकामनाएं, हमारे गुड़ीलाल जी हैं, गुड़ीलाल जी हैं, गुड़ाराम जी हैं, जयराम जी हैं, और हमारे सगुनारायण जी हैं, सबको हमारी तरफ से शुभकामनाएं सर। और
0: जी, जी
1: का भी मेला चल रहा है अभी, और अंबाजी माँ का भी अभी आएगा थोड़े दिन में, अंबाजी
0: आएंगे,
1: तो हो सके तो रामदेव गिरी का एक गाना जरूर देना, सुना देना सर, गुजराती है सारे को मिले तो जरूर सुना देना। रणु जे मनड़ा मोया रामा, पीरे रणु जे मनड़ा मोया, ऐसा गाना है गुजराती।
0: जी जी,
1: नमस्ते, नमस्ते,
0: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, बहुत ही प्यारा सा गीत याद कराने के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं, और बारिश अच्छी से हो रही है। कुछ समय पहले कंचन भाई इस बात को लेकर थोड़ा सा दुखी हो रहे थे कि क्या होगा किसानों का, तो अब जो है ईश्वर ने आपकी सुन ली है, बारिश शुरू हो गई है। कल हमारे यहाँ भी अच्छी बारिश हुई, आज भी रात भर अच्छी बारिश हुई है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद ईश्वर का कि बारिश आपने भेजा। आइए आगे बढ़ते हैं और आप सभी को फिर से याद करते हुए और बम्बू दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हेलो जी, नमस्कार।
2: नमस्कार,
0: नमस्कार फिरोज जी, बोलिए कैसे हैं आप?
2: बस एकदम अच्छे हैं, और अभी रिमझिम रिमझिम पूरी रात भर से
0: पुआर चल रही है।
2: हाँ, और माहौल भी अच्छा है बारिश का,
0: बहुत ही सुंदर,
2: ऐसे ठंडक पसरी हुई है और गर्मी जो बुखारा था वो थोड़ा हल्का हो गया है इसका।
0: जी जी जी,

0: ये भजन सुनना है।
1: ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: ओम शांति।
1: ओम शांति। नमस्कार, आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर, नई किरण इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। ये थे फिरोज जी जो अपनी भावनाएं हमारे साथ साझा कर रहे थे पालनपुर से। तो मैं बात कर रहा था बांबू दिवस के बारे में, जैसे कि बांस के लाभों के बारे में अगर बात करें तो लोगों को इसकी जो है विशेषताओं को बताने के लिए यह दिन मनाया जाता है। इसमें 115 से अधिक जनरी और 1400 प्रजातियां शामिल हैं और 2021 में विश्व बांबू दिवस के 12वें संस्करण की थीम थी बांबू प्लांट, बांबू के पौधे लगाए जाएं। विश्व बांबू संगठन का मुख्य बेल्जियम में एक हेडक्वार्टर है जिसकी स्थापना 2005 में हुई थी और इसका इतिहास को अगर देखें तो औपचारिक रूप से 18 सितंबर 2009 को बैंकॉक में आयोजित किया गया था। विश्व बांबू संगठन ने 18 सितंबर को बैंकॉक में 2009 को पहली बार विश्व बांबू दिवस मनाने की घोषणा की। विश्व बांबू संगठन ने 8वीं विश्व बांस कांग्रेस में इस बात का ऐलान किया था। तब से हर वर्ष 18 सितंबर को दुनिया भर में विश्व बांस दिवस के रूप में मनाया जाता है जिसका उद्देश्य है इसकी जागरूकता को बढ़ाना और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना। वही इस दिन लोगों को इसकी खेती करने के लिए प्रेरित किया जाता है जिससे इसका विश्व स्तरीय उपयोग किया जा सके और प्राकृतिक संतुलन को स्थापित किया जा सके। हर वर्ष विश्व बांस दिवस को एक थीम के साथ मनाया जाता है ताकि लोगों में उमंग उत्साह बना रहे और बांबू की खेती करने के लिए लोगों को प्रेरणा मिले। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आप सभी को ले चलते हैं एक और सुंदर गीत जो अभी सुरेश जी ने याद करा। सुनते रहो, मस्कराते रहो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। मंदिर के आसपास खेले रहे गजानन, तो ये बहुत ही प्यारा सा भजन आप गीत सुन रहे थे। आइए, विश्व बांबू दिवस की बातें हो रही थी और बांबू से जुड़ी हुई कोई भी बात हो तो ज़रूर आप फ़ोन करके बताइएगा। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले फिरोज जी ने बताया कि वो शापुतारा में जब गए थे वहाँ पर बांबू की सब्जी उन्होंने खाई थी, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बांबू जो है सब्जी से लेकर क्या क्या चीज़ें उससे बनती हैं बांबू से, वो भी आप बता सकते हैं। जैसे बम्बू के लकड़ियों का कुर्सियाँ बनती हैं, डेकोरेशन के कहीं भी पंडाल लगाना हो तो उन्हीं बम्बू की लकड़ियों का उपयोग किया जाता है। आजकल लोहे का भी उपयोग किया जाता है, लेकिन पहले बम्बू के लकड़ियों का ही उपयोग करके पंडाल वगैरह बनाया जाता था। बड़ी बड़ी पंडालें भी इसी से बन जाती थी। और इसके साथ में आजकल जो है इसमें बांस में इथेनॉल है, तो वो पेट्रोल के अंदर भी यूज़ किया जा रहा है, ऐसा भी बताया जा रहा है। और उद्देश्य यही है बांस दिवस मनाने का, वर्ल्ड बांबू डे मनाने का, कि इसकी क्षमता और इसका अधिक विस्तार को प्राप्त कराना है। इसके अलावा दुनिया भर के क्षेत्रों में नए उद्योगों के लिए बांस की नई खेती को बढ़ावा देना है और सामुदायिक आर्थिक विकास और आदि के लिए स्थानीय स्तर पर पारंपरिक उपयोग को बढ़ावा देना है। विश्व बांस दिवस के दिन लोगों को बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए कहा जाता है। बांस के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि उन्हें शायद ही कभी दोबारा लगाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि एक बार लगाने से ये सबसे तेजी से बढ़ने वाला घास पौधा में से एक है। और बांस के कई उपयोग हैं जिनमें फर्नीचर, भोजन, जैव ईंधन, कपड़े और बहुत कुछ शामिल है। इसीलिए आवश्यकताओं को बनाए रखने के लिए बांस की खेती बहुत महत्वपूर्ण माना गया है और बांस का उपयोग सबसे ज़्यादा मुख्य रूप से पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया में किया जाता है। अब थीम की बात, 2021 की थीम की बात करें तो हर साल विश्व बांस दिवस एक थीम के साथ मनाया जाता है। एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है, खासतौर पर जब इसका सबसे अधिक उपयोग मानव भलाई के लिए किया जाता है। हेलो जी, नमस्कार।
1: हाँ जी सर, नमस्ते। सूरज भाई बोलता हूँ एक बार दोबारा। सर की जो आपने बांस की बात की, तो सर बांस तो कई सारे में उपयोग में आता है। मैं बताऊँ तो बांस से तो सर आप जो अगरबत्ती बनाते हैं उसको भी यूज किया जाता है, जो थोड़ी छोटी सी लकड़ी आती है इसमें बिल्कुल बारीक जैसी, तो इसकी भी अगरबत्ती में भी काम आती है जो धूप करने के लिए भगवान को। और दूसरा इसका बनता है सर, तो जब मैं बताऊं तो पहले जमाने में तो क्या था सर, तो बांस की ही जो ननानी को बाम के वो कोई गुजर जाते तो इसमें उसको तैयार करके उसमें ही ले जाते थे, क्योंकि आज तो देखो आज तो वो स्टील की आ गई हैं तो ऐसा नहीं है, लेकिन पहले जमाने में तो बांस की ही बना के ले जाते थे और अंतिम विधि में। और बांस में तो कई सारी गिनते को देखो, कोई ऐसे बर्तन बनने के लिए भी इसको यूज आता है, खेत में भी उसको कई खाद को भरने के लिए बनाते हैं और कई सारी इसमें वैरायटी चीजें बनती हैं, वो झूला भी बनता है और कोई रोटी रखने के लिए भी उसकी छोटी सी कटोरी बनती है, कई सारी चीजें बनती है बांस में। हेलो,
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी चीजें बन जाती हैं
1: जी। नमस्ते सर।
0: चलिए सुरेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, सब कुछ बांस के बारे में आपने काफ़ी कुछ बता दिया। आइए आगे बढ़ते हैं और बांस के बारे में, जैसे कि 2021 का थीम था एक जिम्मेवार नागरिक के तौर पर प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है और ख़ास तौर पर जब इसका सबसे अधिक उपयोग भलाई के लिए किया जाता है। विश्व बांस संगठन बांस के पौधे लगाने के महत्व पर सबसे ज़्यादा जोर देता है और बम्बू प्लांट बम्बू यानी बांस के पौधे लगाए जाए। अब देखिए, ये खजाना एक अनमोल प्रकृति का दिया हुआ खजाना है किसान भाइयों की। हेलो जी, नमस्कार।
2: हाँ नमस्कार, पालन से फिरोज भाई बोल रहा हूँ। और इसमें बांबू बांबू का जो है, बांबू के जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाती है बिल्डिंग के अंदर जो उसका पालक बांधते हैं, जो मजदूर लोग इसके ऊपर चढ़ के उसको प्लास्टर करते हैं, कलर काम करते हैं, तो ये बांबू सबसे ज्यादा काम में, ये बिल्डिंगों में भी काम आता है, जो सेंटिंग का काम करते हैं इनके अंदर ये लोग बांबू ज्यादा ये लोग रखते हैं, और इसमें जो मजदूर लोग काम करते हैं इनके लिए भी बहुत अच्छा रहता है। और कभी ये पालक बांधते हैं तो उसके सहारे सहारे पंद्रहवा माल भी होगा, तो उसके सहारे सहारे वो कलर काम है, पेंटिंग काम है, वो सब मजदूर लोग करते हैं
0: जी,
2: और रोजी रोटी कमाते हैं। और सबसे ज्यादा अपने गुजरात के अंदर भी अपना जो डांग जिला है पूरा बांबू से भरा हुआ है। जी
0: जी जी जी, शुक्रिया। नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। चलिए, बांबू को लेकर बातें हो रही हैं और मुझे लगता है कि आप सभी भी इस बात को समझ रहे हैं और जान रहे हैं कि बांबू का उपयोग कितना है और कैसे वो हमारे लिए काम करता है। तो भारत में इसका उपयोग किया जा रहा है, लेकिन ज़्यादा बांबू का उपयोग जो है विदेशों में किया जाता है, चाइना, हांगकॉन्ग, ये सब चीज़ें जो है यहाँ पर बांस का सही और समृद्ध तरीके से उसका उपयोग किया जाता है। तो चलिए इसके बारे में और जानकारी हासिल करते हैं, लेकिन अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक और सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत। और समाचारों की तरफ देख रहा हूँ, बस डाउनलोड होती ही आपको सुनाएंगे समाचार थोड़ी देर में। आप सुना है रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मस्कराते रहो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM। चलिए, हेमंत चौहान का बहुत ही खूबसूरत भजन आप सुन रहे थे। आई वक्त हो गया है समाचारों का। समाचार डाउनलोड हो चुके हैं, अब सीधे मैं आपको सीधे ले चलता हूं समाचारों की तरफ। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: मणि से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस का नाम और चुनाव चिन्ह निलंबित किया। दोनों गुटों को पश्चिम बंगाल उपचुनाव के लिए नया नाम और चिन्ह चुनने को कहा। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों के लिए UGC नेट जून 2026 परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी जारी की। बिहार, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, केरलम और राजस्थान में आज मूसलाधार बारिश की आशंका। टाटा सन्स ने एन चंद्रशेखरन को अगले 5 साल के लिए पुनः कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया। टाटा ट्रस्ट ने इसे अवैध बताया। और भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने तीसरे T20 मैच में अफगानिस्तान को 127 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम की। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा उपचुनावों में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के नाम और उसके आरक्षित फूल और घास चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल पर अंतरिम रोक लगा दी है।
2: निर्वाचन आयोग ने कल जारी अंतरिम आदेश में कहा है कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाला गुट और अरूप राय के नेतृत्व वाला गुट दोनों ही ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस नाम और पार्टी के आरक्षित फूल और घास चुनाव का चिन्ह इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। दोनों गुटों को आगामी उपचुनाव अलग अलग नामों और निर्वाचन आयोग की ओर से आवंटित चुनाव चिन्हों पर लड़ना होगा। यह व्यवस्था विवाद के अंतिम निपटारे तक लागू रहेगी। आयोग ने कहा है कि दोनों पक्षों की ओर से पेश दस्तावेजों और दावों से पता चलता है कि तृणमूल कांग्रेस में फिलहाल 2 प्रतिद्वंदी गुट हैं और दोनों खुद को वास्तविक पार्टी बता रहे हैं। आगामी उपचुनाव से पहले विवाद का अंतिम निपटारा संभव नहीं होने के कारण आयोग ने फिलहाल पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल को लेकर यह अंतरिम व्यवस्था की है। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में होगी। बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारी समिति को विधेयक के प्रावधानों के बारे में जानकारी देंगे।
3: संसद के दोनों सदनों ने 12 अगस्त को विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजने की मंजूरी दी थी। यह विधेयक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन से जुड़ा है। इसका उद्देश्य विदेशी अंशदान के इस्तेमाल में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है। संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य हैं। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल समिति के अध्यक्ष हैं। लोकसभा से तेजस्वी सूर्या, निशिकांत दुबे, ए राजा और सुप्रिया सुले, जबकि राज्यसभा से हर्षवर्धन श्रृंगला, संजय कुमार झा, प्रफुल्ल पटेल और मेनका गुरुस्वामी समिति के सदस्यों में शामिल हैं। समिति को शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक अपनी रिपोर्ट सदन में पेश करनी है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कौशलेंद्र।
1: वित्त मंत्रालय आज से नई दिल्ली में विकसित भारत की दिशा में भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर 2 दिन का सम्मेलन आयोजित करेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सम्मेलन में शामिल होंगे।
4: सम्मेलन में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव सौरभ गर्ग के सम्मेलन में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव सौरभ गर्ग विकसित भारत की यात्रा में विकास के परिणामों को मापने के महत्व पर विचार रखेंगे। वहीं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन सुशासन में नई प्रौद्योगिकी की भूमिका पर चर्चा करेंगे। सम्मेलन में देश के विकास से जुड़ी वित्तीय चुनौतियों और नीतिगत प्राथमिकताओं पर चर्चा होगी। इनमें अर्थव्यवस्था, कृषि क्षेत्र और ऊर्जा क्षेत्र के लिए वित्तीय व्यवस्था पर विचार किया जाएगा। आरजू की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सिद्धार्थ सिंह।
1: हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL आज बेंगलुरु में वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान, 2 सीट वाले तेजस विमान और HTT-40 प्राथमिक प्रशिक्षण विमान सौंपेगी।
5: कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रम पवन हंस लिमिटेड को ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपेंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इन विमानों और हेलीकॉप्टरों को शामिल किया जाना स्वदेशी क्षमताओं को मजबूत करने और विदेशी स्रोतों पर निर्भरता कम करने की दिशा में एक और कदम है। सरकार एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी डिजाइन, विकास और विनिर्माण को बढ़ावा देने को उच्च प्राथमिकता दे रही है। निशा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा के अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। परीक्षार्थी अपनी उत्तर कुंजी यूजीसी नेट की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन संख्या और पासवर्ड के जरिए देख सकते हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
6: आपको हर खबर से रखे अपडेट @AIRNews हिंदी और पब्लिक पर @AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन और उनके जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी का महीने भर चलने वाला राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान कल से शुरू हुआ। पहले दिन सेवा दिवस में देश भर में रक्तदान शिविर और आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनका जीवन जनसेवा से राष्ट्र सेवा के मंत्र और निरंतर समर्पण से जुड़ा रहा है। सेवा और सुशासन की इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के इन प्रयासों से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आकाशवाणी समाचार सेवा संकल्प अभियान पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज इसी कड़ी में प्रस्तुत है नक्सलवाद के अंत की दिशा में किए जा रहे प्रयासों पर विशेष रिपोर्ट।
7: छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में नक्सलवाद के अंत के बाद अब बंदूक की गोलियों की जगह एक बार फिर स्कूल की घंटियां सुनाई देने लगी हैं। बस्तर अंचल में सुरक्षा कैंपों को बदलकर शहीद वीर गुंडा धुर सेवा डेरा के नाम से आधुनिक जन सुविधा केंद्र बनाए जा रहे हैं। बस्तर ओलंपिक और बस्तर पंडुम जैसे आयोजन बदलते बस्तर की तस्वीर पेश करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जहां कभी टेरर था वहां अब टैलेंट को अवसर मिल रहा है।
8: हमने संकल्प लिया कि नक्सलवाद माओवाद को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे और आज पूरा देश नतीजा देख रहा है। जहां पर विकास की बात बोल तक नहीं सकते थे, ऐसे क्षेत्रों में हम विकास का संकल्प लेकर आगे बढ़े। बस्तर जैसे इलाकों में बम बंदूक नहीं, बस्तर ओलंपिक्स की धूम है। यानी जहां कभी टेरर था वहां टैलेंट को अवसर मिल रहा है।
7: सरकार की ठोस इच्छा शक्ति का ही परिणाम रहा है कि बस्तर में हजारों की संख्या में माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। इन माओवादियों को अब कौशल प्रशिक्षण देकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। बस्तर जिले के ऐसे ही एक आत्मसमर्पित माओवादी लखमू पोयाम ने बताया कि नक्सली संगठन में काम करते हुए उन्हें हमेशा जान का डर बना रहता था, लेकिन अब वे कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने के साथ ही सुकून की जिंदगी बिता रहे हैं।
9: अभी तो यहाँ सरेंडर करने के बाद हम लोग यहाँ रहते हैं, अभी अच्छा लग रहा है। उधर रहते समय तो कभी मर जाना है, गोली लगेगा बोल के उधर डर था। अभी यहाँ आराम से खाना है, पीना है, सोना है, काम करना है, सब लोगों के साथ मिलना है, ऐसे अच्छा लग रहा है यहाँ।
7: लखमू पोयाम जैसे सैकड़ों आत्मसमर्पित माओवादियों की यह कहानी बताती है कि बस्तर में नक्सलवाद के अंत के बाद अब विकास का सूर्योदय हो रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए रायपुर से मैं विकल्प शुक्ला।
1: भारतीय

0: जनता पार्टी आज पंजाब के पठानकोट से राज्यव्यापी नशा मुक्त पंजाब यात्रा की शुरुआत करेगी। ये यात्रा राज्य की सभी विधानसभा सीटों तक पहुंचेगी और नशे के खिलाफ अभियान को जन आंदोलन का रूप देने पर बल देगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन यात्रा को रवाना करेंगे। यात्रा 30 सितंबर को जालंधर में समाप्त होगी। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने कहा है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक और तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है। उन्होंने कहा कि देश की ऊर्जा जरूरतें आगे भी बढ़ेंगी और ऊर्जा सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। श्री क्वात्रा ने कहा कि भारत मध्य पूर्व, अफ्रीका, लैटिन अमरीका, यूरेशिया और अमरीका समेत विभिन्न क्षेत्रों से ऊर्जा प्राप्त करता है। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने रूस की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा के दौरान रूस के थल सेना मुख्यालय का दौरा किया। इस दौरान दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को और मजबूत करने, प्रशिक्षण गतिविधियों का विस्तार करने तथा सेनाओं की क्षमता विकास को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट संशोधन नियम 2026 अधिसूचित किया है। इसके अंतर्गत 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जारी 36 पृष्ठों वाला सामान्य पासपोर्ट अब जारी होने की तारीख से 5 वर्ष या बच्चे के 18 वर्ष की उम्र पूरी होने तक वैध रहेगा। इनमें से जो अवधि पहले पूरी होगी वही मान्य होगी। टाटा सन्स ने एन चंद्रशेखरन को 5 वर्ष के एक और कार्यकाल के लिए कार्यकारी अध्यक्ष बनाए रखने का फैसला किया है। टाटा सन्स के बोर्ड ने कल 4-1 के बहुमत से उनके कार्यकाल को बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। हालांकि 66% हिस्सेदारी रखने वाले टाटा ट्रस्ट ने इस मतदान को अवैध बताया है। मौसम विभाग ने आज बिहार, ओडिशा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, केरलम और राजस्थान में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है। वहीं उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, कर्नाटक और लक्षद्वीप में तेज हवाएं चलने का अनुमान है। अगले 2 दिन के दौरान तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरलम, माहे, पूर्वोत्तर के कुछ हिस्से और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी इसी तरह के मौसम की संभावना है। दिल्ली में आज बादल छाए रहने का अनुमान है। और अब खेल खबरों के साथ हैं शशांक कुमार।
1: भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने अफगानिस्तान से 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला 3-0 से जीत दी है। दिल्ली में कल तीसरे और अंतिम मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 127 रन से हराया। भारत के 221 रन के जवाब में अफगानिस्तान की पूरी टीम 94 रन पर सिमट गई। अभिषेक शर्मा ने शानदार 108 और संजू सैमसंग ने 50 रन बनाए। 30 गेंद में शतक लगाकर अभिषेक T20 में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। अभिषेक को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। उधर जापान में एशियाई खेलों में वर्तमान चैंपियन भारतीय महिला क्रिकेट टीम क्वार्टर फाइनल में जापान से आज सुबह 10:30 से खेलेगी। हरमनप्रीत कौर भारतीय टीम का नेतृत्व करेंगी। खेलों का औपचारिक उद्घाटन कल होगा और प्रतियोगिताएं 4 अक्टूबर तक चलेंगी।
0: जम्मू कश्मीर सरकार ने पुंछ जिले के मेंढर इलाके के बेहरी कासब में आधुनिक जनजातीय पर्यटन गांव विकसित करने को मंजूरी दी है। इस परियोजना का उद्देश्य क्षेत्र की समृद्ध जनजातीय संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
3: धन्यवाद जागृति। सेमिकॉन इंडिया 2026 के उद्घाटन की खबर आज प्रकाशित सभी अखबारों की सुर्खी है। दैनिक जागरण ने लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दुनिया का भारत पर बढ़ रहा भरोसा, वैश्विक बाजार में पहुंच रही देश की सेमीकंडक्टर चिप। जनसत्ता के शब्द हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार भारत को भरोसेमंद चिप विनिर्माण का केंद्र बना रही है। पंजाब केसरी लिखता है, भारतीय चिप की दुनिया भर में सप्लाई शुरू, दूसरे चरण में लक्ष्य $30.5 मिलियन। अमरीकी संसद में रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 100% शुल्क लगाने वाले विधेयक के पारित होने की खबर को अखबारों ने प्रमुखता दी है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, ट्रंप को मिला 100% टैरिफ वाला हथियार। अमर उजाला लिखता है, टैरिफ पर अमरीका की दो टूक, भारत अपने हित खुद तय करेगा। हिंदुस्तान ने 1 अक्टूबर से जन्म और मृत्यु पंजीकरण के नए नियम की खबर दी है। पत्र लिखता है, पंजीकरण के नियमों को सख्त बनाने वाला कानून 1 अक्टूबर से देशभर में लागू होगा। पंजीकरण में दो वर्ष से अधिक की देरी होने पर पंजीकरण के लिए प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट का आदेश आवश्यक होगा। दैनिक भास्कर की विशेष खबर है, पढ़ाई के बाद नौकरी में काम आएगी अपार आईटी, डिग्री देख सकेंगे नियुक्ता, मंत्रालय ने निजता नीति बदली। पंजाब केसरी ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के परीक्षा कार्यक्रमों के जारी होने पर लिखा है, जेई मेन यूजीसी नेट परीक्षा की डेट शीट जारी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रस्ताव को नवभारत टाइम्स ने प्रमुखता दी है, सीसीटीवी की निगरानी में बिके दवा, सरकार लाई प्रस्ताव, फुटकर दुकानों में ही सीसीटीवी अनिवार्य होगा, थोक दवा दुकानों को बाहर रखा गया।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस का नाम और चुनाव चिन्ह निलंबित किया। दोनों गुटों को पश्चिम बंगाल उपचुनाव के लिए नया नाम और चिन्ह चुनने को कहा। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों के लिए यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी जारी की। बिहार, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, केरलम और राजस्थान में आज मूसलाधार बारिश की आशंका। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया चलती गाड़ी में चढ़ने का प्रयास ना करें, यह जानलेवा हो सकता है। रेल के डिब्बों की छत पर बैठकर यात्रा ना करें, क्योंकि ओवरहेड वायर्स में 25,000 वोल्ट का करंट है। इनके संपर्क में आने से आपकी जान को खतरा हो सकता है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। और बातें हो रही हैं खास बांबू के बारे में। बांस का महत्व जो है वो बहुत ज़्यादा है, और अभी फिलहाल हमारे फिरोज जी ने भी याद करके बताया कि बांबू के लकड़ी का ही बांसुरी भी बना हुआ है, जो कृष्ण जी ने बजाया था। तो ये उन्होंने बहुत अच्छी बात याद कराई, बांसुरी भी बांस की लकड़ी से ही बनती है। हेलो जी, नमस्कार।
1: हेलो जी, नमस्कार भाऊ जी, नमस्कार।
0: जी जी जी।
1: खुशियाँ अगर पानी है, खुशियाँ अगर पानी है तो माँ को याद करो। आज शुक्रवार भी है
0: जी,
1: और माँ का गाना भी आपने सुना दिया, तो सुन करके भी मैं मन में हो गया मन में हो गया मतलब मैं आनंदित हो गया। आनंद रहने के लिए मैंने ये गाना सुन करके आपको दे रहा
0: हूँ।
1: खुशियाँ पानी है तो माँ को याद करो।
0: धन्यवाद
1: सभी को, मेरा प्यार भरा
0: नमस्कार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। माँ को याद करो, ये आपने याद किया है। चलो अब बात करते हैं बांबू के बारे में। बातें हो रही थी जैसे बांसुरी भी बांबू की लकड़ी से बनते हैं, और बांस प्रकृति के सबसे अनमोल खजाने में से एक है, और इसका हमारे जीवन में कई तरह से उपयोग होता है। इसका प्रयोग गांव देहात में पहले कच्चे घर बनाने में सबसे ज़्यादा उपयोग होता था। आज भी कहीं कहीं छप्पर डाले जाते हैं तो उसमें भी उसका प्रयोग होता है। शहरी ज़िंदगी भी इससे अछूती नहीं है, शहरी घरों में लकड़ी के फर्नीचर में इसका उपयोग होता है। इसके अलावा इसका उपयोग बच्चों के खिलौने बांसुरी, हाथगाड़ी, बुज़ुर्गों की लाठी, पुलिस वालों के डंडे, घरों में उपयोग होने वाली सीढ़ी, घर की चारपाई, शादी विवाह में मंडप और दुल्हन की डोली, अन्य बहुत तरीक़ों से ये हमें जीवन से जुड़ा हुआ है। ऊंची बांस की लग्गी से आम तोड़ना भी आम बात है। जीवन के साथ मना आम तोड़ने के लिए भी बम्बू की लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है। हाँ, ये हमारे जीवन साथी के रूप में बम्बू काम करता है, किसी न किसी उपयोग में जुड़ा हुआ है जीवन के कुछ पहलुओं में। लेकिन जीवन के अंतिम समय में भी ये हमारे जीवन के साथ ही रहता है। कई जगह इसके कपड़े भी बनाए जाते हैं। सबसे आश्चर्य की बात है,

में सारे बम्बू लगा दो और फिर आपको कभी भी वापस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ता, ये अपने आप आते ही रहते हैं। और फिर इसका उपयोग आप अलग अलग चीज़ों में बनाकर बेच सकते हैं और इसका पूरा ज़िंदगी भर जो है बिना मेहनत के आप जो है लगाने वाली जो मेहनत है वो नहीं होगा, बाकी इसका जो है ग्रो होता रहता है, ऊपर ऊपर से आप काटते जाए और उसको बेचते जाए ऐसा। तो ये एक रेगुलर इनकम देने वाला बहुत ही अच्छा खेती है। तो ये थी कुछ खास बातें बाम्बू दिवस पर आपके लिए बाम्बू के खेती के बारे में। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, नई किरण इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुना। चलिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान वेतन दिवस के बारे में भी बातें करते हैं, जो आज है 18 सितंबर को ये दिन मनाया जाता है। इसका उद्घाटन संस्करण 2020 में मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय सम्मान वेतन दिवस का उद्देश्य मूल के काम

के लिए समान वेतन प्राप्त करना और महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ भेदभाव सहित सभी प्रकार के भेदभाव के खिलाफ दीवारों को तोड़ने की बात इसमें बताई गई थी। ऐसा बताया जाता है 15 नवंबर 2019 को 18 सितंबर के ही दिन अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस के रूप में इसका प्रस्ताव किया गया था। और इस प्रस्ताव में 105 सदस्यों द्वारा ये सहप्रायोजित किया गया, साथ ही श्रमिकों और संगठनों और व्यवसायियों के योगदान को मान्यता देने का संकल्प के समान वेतन प्राप्त करने के लिए ईपीईसी के कार्य का योगदान स्वीकार किया गया। वेतन समानता की बात अगर कहें तो कई बार हम देखते हैं कि बच्चों के लिए वेतन कम होता है, महिलाओं के लिए कम करते हैं, पुरुषों के लिए थोड़ा ठीक ठाक, और फिर ऑफिसर के लिए ज़्यादा, सुपरवाइज़र के लिए ज़्यादा। तो इस तरह के जो चीज़ें होती हैं, इन सभी चीज़ों को देखकर ये असमानता जो है उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। तो इसी बात को लेकर यहाँ पर विचार विमर्श किया गया था। तो आइए आगे बढ़ते हुए एक और सुंदर गीत आपके लिए, और ये गीत आपके लिए

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का फिर एक बार स्वागत है और बड़ा प्यारा सा गीत आप सुन रहे थे। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वेतन समानता के बारे में बातें कर रहे थे। लगभग 21वीं सदी में प्रवेश कर चुके हैं हम, लेकिन आज भी मानसिकता में बदलाव जरूरी है। आज भी महिलाओं और लड़कियों को विशेष उनके चीज़ों को देख कर या उनको कम वेतन दिया जाता है, समान काम लिया जाता है, लेकिन वेतन कहीं ना कहीं आगे पीछे कर दिया जाता है। तो विकसित देश की परिभाषा है कि जिसके लिए कि एक पहल शुरू किया जाए। हर साल 18 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस मनाया जाता है और यह बताया जाता है कि विश्व भर में महिलाओं को समान काम के लिए कम वेतन दिया जाना एक आम बात मानी जाती है। ये जानकर आश्चर्य होगा कि संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार समूची दुनिया में आज भी महिलाओं को पुरुषों से करीब 23% वेतन कम मिलता है। महिला और पुरुष के बीच इस खाई को कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक करीब 257 साल लग सकते हैं। जिस तरह से असामान्य वेतन महिलाओं को दिया जाता है, इसमें भेदभाव की खाई और भी अधिक गहरी होने लगी है। लोगों को जागरूक करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला संगठन द्वारा स्टॉप टेरिबरी अभियान चलाया जा रहा है। तो ये चीज़ें जो है भारत में भी इसका जो है असर हुआ है और इस पर काम किया जा रहा है। महात्मा गांधी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ अपनी लड़ाई के दौरान माना कि महिलाओं की मुक्ति के बिना भारत को विदेशी शासन से मुक्ति नहीं मिल सकती। आज हम एक आर्थिक सशक्त महाशक्ति बनने का सपना देखते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि हमारा सपना तब हकीकत में बदल सकता है जब तक हमें समान काम के लिए समान वेतन नहीं मिलता। विश्व आर्थिक मंच पर कहना है कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर भुगतान में 100 साल लगेंगे। विश्व आर्थिक मंच की ग्लोबल जेंडर गैप 2020 ने भारत को 153 देशों में से 112वां स्थान दिया था। 2018 की तुलना में 4 स्थान कम है। तो इस तरह की बातें अगर हम देखते हैं तो ये खाई कैसे मिट सकती है, इसके बारे में आज भी एक चिंताजनक सवाल हमारे बीच में आता है। तो इसीलिए इस पे काम करने की ज़रूरत है। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। कबीर दा के खूबसूरत गीत आप सुन रहे हैं। चलिए, विश्व बांस दिवस की और अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस की आज के दिन की ढेरों शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं करते हैं। चलिए, अब आज के दिन जन्मे उन लोगों के बारे में। आज खाखा हाथरसी का जन्मदिन है और उत्तर प्रदेश के विशेष हाथरस के रहने वाले भारत के बहुत ही पॉपुलर हिंदी हास्य कवि थे। हिंदी हास्य का व्यंग्यता कविताओं का पर्याय माना जाता है काका हाथरसी। काका हाथरसी की शैली की छाप उनकी पीढ़ी के अन्य कवियों पर भी पड़ रही थी। वर्तमान में भी अनेक लेखक व्यंग्य कवि काका की रचनाओं की शैली अपनाकर लाखों श्रोताओं और पाठकों का मनोरंजन करते हैं। उनकी रचनाएं समाज में व्याप्त दोषों, कुरीतियों, भ्रष्टाचार और राजनीतिक कुशासन की उनकी और सबका ध्यान आकर्षित करती है। भले ही काका हाथरसी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी हास्य कविताएं, जिन्हें वे फुलझड़ियां कहा करते थे, सदैव हमें गुदगुदाती रहेगी। तो आइए, 18 सितंबर की ये आज के दिन इनका जन्म 1906 को हाथरस उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो आप उनके बारे में जानते ही हैं, बहुत ही पॉपुलर कवि है और इनकी कहानियाँ, इनकी कविताएं जो है लोगों को गुदगुदी देकर समाज का आईना बनकर सामने आता था। काका नामकरण भी, वैसे तो काका हाथरसी का असली नाम तो प्रभुलाल गर्ग था, लेकिन उन्हें बचपन में नाटक आदि में भी काम करने का मौका मिला था और शौक भी था। एक नाटक में उन्होंने काका का किरदार निभाया और बस तभी से प्रभुलाल गर्ग काका नाम से प्रसिद्ध हो गए। 14 साल की आयु में काका फिर अपने परिवार सहित ग्लास के हाथरस वापस आ गए। यहाँ उन्होंने एक जगह मुनीम की नौकरी कर ली और इसी दौरान मात्र 16 वर्ष की अवस्था में काका की शादी रतन देवी से हो गई। काका की कविताओं में यही रतन देवी हमेशा काकी बनी रही, लेकिन इन्हीं दिनों दुर्भाग्य से फिर इनका साथ इनका हाथ पकड़ लिया। विवाह के कुछ ही दिनों पर बाद फिर काका की नौकरी छूट गई और एक बार फिर से काका ने कई दिन काफ़ी गरीबी में या मुफलसे में गुजारे। और काका हाथरसी संगीत के प्रेमी तो थे ही, इसके साथ ही साथ उन्हें चित्रकारी का भी बहुत शौक था। उन्होंने कुछ दिनों तक व्यवसाय के रूप में चित्रशाला भी चलाई, लेकिन वहाँ भी नहीं चली। तो इसके बाद अपने एक मित्र के सहयोग से संगीत कार्यालय की नींव रखी। इसी कार्यालय से संगीत पर संगीत पत्रिका प्रकाशित हुई। इसका प्रकाशन आज भी अनवरत जारी है। काका की पहली निम्न कविता इलाहाबाद से छपने वाली पत्रिका गुलदस्ता में छपी थी। गुटा करती है मेरी हसरते दिन रात सीने में, मेरा दिल घुटते घुटते सख्त होकर सिल न बन जाए। इसके बाद काका की और भी कई कविताओं का लगातार प्रकाशन होता रहा और इस तरह से काका हाथरसी ने हस्तरस से ओतप्रोत कविताओं का साथ साथ संगीत का भी पुस्तकें लिखी। संगीत पर भी उनकी बहुत ज़्यादा संपादन रहा। काका के कारतूस और काका की फुलझड़िया जैसे स्तंभों से अपने पाठकों को प्रश्नों के उत्तर देते हुए वे अपनी सामाजिक जिम्मेवारियों के प्रति सचेत रहते थे। उनकी प्रथम प्रकाशन जो है 1933 में गुलदस्ता नाम से मासिक पत्रिका के रूप में छपने लगी। तो ये थी कुछ खास बातें काका हाथरस के बारे में। आप सुनाए हैं रेडियो माधुबन 107.8 FM पर। जी हाँ, नई किरण इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आप। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

चलिए मित्रों, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। इसके साथ ही आज के दिन जन्मे उन लोगों के बारे में बात करते हैं जिनका जन्मदिन आज है। भारतीय हास्य कवि काका हाथरस जी, आज के दिन 1906 को उनका जन्म हुआ। हिंदी साहित्य के बहुत ही पॉपुलर गीतकार, समीक्षक और राजनीतिक श्रीकांत वर्मा जी का भी जन्म आज ही के दिन 1931 को हुआ था। लोकसभा की पहली महिला सचिव स्नेहलता श्रीवास्तव, 1957 में इनका जन्म आज ही के दिन हुआ था। हिंदी फिल्मों की बहुत ही पॉपुलर अभिनेत्री शबाना आजमी, 1950 में इनका जन्म आज ही के दिन हुआ। भारतीय अभिनेता विनय राय, 1979 में इनका जन्म आज ही के दिन हुआ। भारतीय अभिनेत्री सनाया ईरानी, 1983 में इनका जन्म आज ही के दिन हुआ। और इसके साथ में आंध्र प्रदेश के राजनीतिक दल YS कांग्रेस के राजनीतिक बाला शोरी वल्लभ नेनीगी, 1968 में इनका जन्म आज ही के दिन हुआ। मॉरिशस के पहले प्रथम मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गवर्नर जनरल शिव सागर राम गुलाम, 1900 में इनका जन्म आज ही के दिन हुआ था। तो चलिए, जिनका भी जन्मदिन आज है उन सभी को रेडियो मधुबन करता है हैप्पी बर्थडे टू यू।

चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर मिलेंगे शाम 4 बजे सफर कार्यक्रम में। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते खमा गणिसा, जय हिंद जय भारत, ओम शांति। सुनते रहो मुस्कराते रहो।

संतान सप्तमी के पावन पर्व पर हर बच्चे के जीवन में खुशियों की बहार हो, हर बच्चे के जीवन में खुशियों की बहार हो, माता पिता का आशीष सदा साथ हो, हर आंगन में प्रेम और संस्कार हो, हर आंगन में प्रेम और संस्कार हो। तो आप सभी को संतान सप्तमी की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ समय सुबह का तब बनता है खास जब आती है उषा अचाना के साथ। आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा घणी सा। आज का दिन हर उस माँ की दुआ के नाम जिसकी दुनिया उसकी संतान से शुरू होकर उसी की मुस्कान पर ख़त्म होती है, कैसे जरा विचार करेंगे। और जी हाँ, दाल, दाल में मसूर, मसूर की दाल किस तरह फ़ायदा करती है, कौन सी बीमारियाँ ठीक करती है, ज़रूर जानेंगे। और खुशनुमा जीवन की ढेर सारी बातें भी करेंगे। तो भला व्यंजन कैसे भूल सकते हैं, अभी गणपति जी के दिन चल रहे हैं तो गणपति जी के क्या चढ़ाया जाता है प्रसाद में, भोग में, वो ही रेसिपी देने वाली हूँ। अब आप थोड़ा सा अनुमान लगाइए कि आज मैं क्या सिखाने वाली हूँ। और आज का टंग ट्विस्टर तो बहुत ही सुंदर रहेगा। तो ये सब कुछ सुनेंगे आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: मैं जानकी हिमलानी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हम शपथ लें कि आज के बाद जब कभी भी हम गाड़ी चलाएंगे तो स्पीड का ख्याल रखेंगे, खुद का भी ख्याल रखेंगे और सामने वाले का भी ख्याल रखते हुए हेलमेट पहन करके ही अपनी गाड़ी को चलाएंगे।
1: रेडियो मधुबन।
2: संतान सप्तमी की पुनः आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आशियाना कार्यक्रम में फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। संतान की कुशलता और उन्नति के लिए इस व्रत का काफी महत्व होता है, उसे हम मुक्त भरण संतान सप्तमी भी कहते हैं। कैसे, तो आइए आज के विचार का विस्तार इस प्रकार करेंगे। देखिए, दुबली दुबड़ी सप्तमी को मुक्त भरण संतान सप्तमी कहा जाता है। दुबली दुबड़ी सप्तमी यानी संतान सप्तमी पर संतान की कुशलता और उन्नति के लिए व्रत किया जाता है। इस व्रत का काफी महत्व है, इसे मुक्त भरण संतान सप्तमी भी कहते हैं। ये व्रत संतान के समस्त दुख परेशानी के निवारण के उद्देश्य से किया जाता है। संतान की कुशलता और उन्नति के लिए इस व्रत का काफी महत्व होता है, इसे मुक्त भरण संतान सप्तमी भी कहते हैं। ये व्रत संतान के समस्त दुख परेशानी मिट जाए, इसके लिए माता पिता दोनों ही व्रत करते हैं। संतान सप्तमी व्रत भाद्र पद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि माने आज सप्तमी है तो मनाया जाता है। ये व्रत मुख्य रूप से विवाहित महिलाओं द्वारा ही किया जाता है और कहा जाता है कि संतान सप्तमी के दिन व्रत रखने से जिन महिलाओं को संतान नहीं है उन्हें भगवान शंकर और माता पार्वती के आशीर्वाद से गणेश जैसे तेजस्वी संतान की प्राप्ति होती है, ऐसी किंवदंति है। तो यहाँ पर मुझे एक दृष्टांत याद आ रहा जो आपको बताना चाहूँगी। एक साहूकार था, उसके साथ बेटे थे। बेटों के विवाह के फेरों के पूरा होने से पहले बेटे मर जाते थे। इस प्रकार 6 बेटे मर गए। डरते डरते 7वें बेटे का विवाह मांडा। सब बहन बेटियों को बुलाया। सबसे बड़ी बुआ पिहर आते समय मार्ग में एक कुम्हार के यहाँ रुकी। उसका मन बुझा हुआ था, कोई खुशी नहीं थी। कुम्हार ढाकनी गढ़ रहा था। बुआ ने पूछा, तू क्या कर रहा है? वह बोला कि गांव के साहूकार के बेटे का विवाह है, उसी के लिए ढाकनी गढ़ रहा हूँ, पर उसका बेटा मर जाएगा। बुआ ने पूछा कि बेटा नहीं मरे, इसका कोई उपाय नहीं है क्या? कुमार ने बताया कि यदि बींद की कोई बुआ दुबड़ी साते का व्रत करे, ठंडा खाए, कांटा फांसे, बींद के सारे नेग उल्टे करके गालियां देती रहे, फेरे के समय कच्चा दूध और तांत का फंदा लेकर बैठ जाए, आधे फेरे होने के बाद एक सांप बींद को डसने आएगा, तब उसके सामने कच्चा दूध का करवा रख दे, जब सांप दूध पीने लगे तो उसे तांत के फंदे में फंसा ले, जब सर्पिणी उसे छुड़ाने के लिए आए तब बुआ उससे वचन ले कि तू मेरे सब भतीजों को जिंदा कर, उनको बहुए दे, तो ही मैं तेरे पति को सांप को छोड़ूंगी। सारी बात सुनकर बुआ वहां से रवाना होकर पीहर में अपने घर में गालियां देती हुई घुसी। सब उसके इस व्यवहार से अचंभित रह गए, पर कोई कुछ नहीं बोला। आखिर बुआ जो ठहरी, सारे नेग उल्टे करती गई। घर की अन्य औरतें कोई कुछ बोलती तो भी ध्यान नहीं देती। जिद करके बारात भी पिछले दरवाजे से निकलवाई। उसी समय सामने का द्वार टूटकर गिर गया। सब उसकी प्रशंसा करने लगे। अब तो जैसा वह कह रही थी वैसे ही सब मान रहे थे। फिर जिद करके बारात में सम्मिलित भी हो गई। साहूकार फिर भी नाराज ही था। उसने कहा, ये जाएगी तो मैं नहीं जाऊंगा, वैसे भी मैं जाता हूं तो मेरे बेटे मर जाते हैं। वो नहीं गया। बारात को मार्ग में बरगद के जो बरगद का पेड़ आता है, बरगद के पेड़ की छाया में से निकालने लगे तो गालियां देते हुए उसने बारात को धूप में से ही निकालने की जिद की। उसकी जिद के चलते जब बारात को धूप में से निकालने लगे तभी एक बहुत बड़ी डाल टूटकर गिर गई। सब फिर से बुआ जी की प्रशंसा करने लगे। फिर दूल्हे को बुआ की जिद के कारण दुल्हन के घर के पिछले द्वार से अंदर ले गए, तभी आगे का दरवाजा टूटकर गिर गया। फिर वह गालियां देती हुई फेरे में भी बैठ गई। जब सांप आया तो उसने उसे फंदे में फंसा लिया। जब सर्पिणी उसे छुड़ाने आई तो बुआ बोली, है सर्पिणी, मैं तेरे पति को तब छोड़ूंगी जब तू मेरे सारे भतीजे को जीवित कर देगी, उनको बहुए भी दे देगी, तो मुझे वचन दे। सर्पिणी बोली, मैं तुझे वचन देती हूँ, ऐसा ही होगा। बुआ ने सांप को छोड़ दिया। धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। सब बुआ जी से खुश हो गए। जब बारात लौटने लगी तो मार्ग में दुबड़ी साते एक वृद्धा के रूप में मिली। उसने भी दुबड़ी साते की पूजा व्रत करने के लिए कहा। बुआ ने कहा, मैं दुबड़ी सात की पूजा करना चाहती हूँ, व्रत कराऊंगी, पर कैसे कराऊं, समझ में नहीं आ रहा है। वृद्धा मुस्कुराती हुई वहां से चली गई। उसके जाने के बाद पूजा के बारे में सोचती हुई जब बुआ गाड़ी में से उतरी तो देखा कि वहां दुबड़ी सात का पाटिया मंडा हुआ रखा था। पूजन सामग्री भी रखी हुई थी, ताजा दूब उगी हुई थी। पूजा करने की विधि तो उसे पता ही थी। उसने पूरे मनोयोग और श्रद्धा के साथ पूजा की, बायना निकाला, काटा फंसाया और कथा कही। बारात गांव में पहुंची। जब साहूकार ने सातों बेटों को जीवित देखा तो उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ। सारे बेटे साहूकार के पैर पड़ने लगे तो साहूकार बोला, बेटा आज यदि तुम पुनः जिंदा हो सके हो तो अपनी बुआ के कारण। ये जीवन तुम्हारी बुआ का दिया हुआ है, इसलिए सब इनके पैर पड़ो। बाद में साहूकार ने सारे गांव में ढिंडोरी पिटवा दी कि अपने बच्चों के जीवन की रक्षा के लिए हर कोई दुबड़ी सात का पाटिया मांडेगा, व्रत करेगा, पूजा करेगा, बायना निकालेगा, कांटा फंसाएगा और कहानी सुनेगा। तो इस तरह आज के दिन ये जो संतान सप्तमी दिवस है जो मनाया जाता है और माताएं बहनें इस तरह व्रत करती है। तो ये हुआ आज का विचार। और आइए सुनते फिर से एक गीत। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।
3: ओम शांति। नमस्कार, मैं आकाश मानिसार से नेशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन का एक वॉलंटियर मेंबर। आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में देंगे आपको बहुत ही सुंदर घरेलू उपाय। मसूर किस तरह फायदे करती है दाले में, देखिए मसूर भी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। घरेलू उपाय मसूर किस तरह फायदे करती है दाले में, देखिए मसूर भी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है मसूर की दाल। तो मसूर कैसे हमारी हेल्थ के लिए फायदा करता है, कौन सी बीमारियां ठीक करता है जानेंगे आप। नेत्र ज्योति, ठीक है, देसी घी में मसूर की दाल छोक करके और तल कर खाइएगा, इससे नेत्रों का प्रकाश बढ़ेगा। नेत्र ज्योति बढ़ानी है तो देसी घी में मसूर की दाल को छोकिए, ठीक है, और फिर खाइएगा, इससे आँखों का प्रकाश बढ़ता है। अगर वोमिटिंग की शिकायत है, वात पित्त कफ है, तो किसी कारण से अगर वोमिटिंग होती हो, ऐसी स्थिति में मसूर का आटा, अनार का रस और शहद समान मात्रा में मिलाकर पानी के साथ लीजिएगा। वोमिटिंग होती हो किसी भी वजह से तो मसूर की दाल का आटा, अनार का रस और शहद तीनों ही बरोबर बरोबर मात्रा में लेनी है, फिर इनको मिला करके पानी के साथ लीजिएगा तो वोमिटिंग की शिकायत तुरंत ही बंद हो जाएगी। खूनी बवासीर की शिकायत है तो सुबह ही सुबह भोजन में मसूर की दाल के साथ खट्टी छाछ माने मट्ठा पीजिएगा, इससे खूनी बवासीर ठीक हो जाएगा। खूनी बवासीर की शिकायत है तो सुबह ही सुबह खाली पेट भोजन में, भोजन हम लेट करते हैं लेकिन भाई जब खूनी बवासीर है तो सुबह ही सुबह खाली पेट मसूर की दाल लीजिएगा और इसके साथ खट्टी छाछ पीजिएगा, इससे खूनी बवासीर ठीक हो जाएगा। सौंदर्य और चर्म रोग में भी मसूर बहुत फायदा करता है, कैसे, तो मसूर को पीस करके उसका लेप या उपटन करिएगा, इससे चेहरे का रंग निखरेगा और अनेक चर्म रोग दूर हो जाएंगे। तो मसूर पीस करके उसका लेप या फिर उपटन करिए और चेहरे मतलब लगाइएगा, ठीक है, इससे चेहरे का रंग निखरेगा और अनेक चर्म रोग ठीक हो जाएंगे। फिर लास्ट उपाय है, मसूर के सेवन से बहुमूत्र, कब्ज, गैस ट्रबल, मुख पाक या छाले मतलब मुंह के छाले समझ लीजिए आप, गले की सूजन, वेदना, प्रदर और सूजन, इन सब में राहत मिलती है मेरे प्यारे श्रोता बंधु मसूर के सेवन से। बहुमूत्र, कब्ज, गैस ट्रबल, मुख के छाले, गले की सूजन, वेदना, प्रदर और सूजन, इन सब

भी में काफी लाभ करता है मसूर। तो इस तरह आप मसूर को ले सकते हैं और इन बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। कैसे लेना है वो आपने जाना है। और आइए अब आज के टंग ट्विस्टर की तरफ बढ़ते हैं। आज का टंग ट्विस्टर है जो आपको अधिक से अधिक 3 बार बोल के सुनाना है और कम से कम 2 बार तो बोलना ही है। गणपति के गुण गिनते गिनते गणपति के गणपति गुण गिन गए, गणपति के गुण गिनते गिनते गणपति के गण फिर गणपति बन गए। यह आज का टंग ट्विस्टर है। जवाब देने के लिए नंबर रेडियो मधुबन का है 94-14-15-14-15। और फिर से एक ब्रेक लेकर के पुनः लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

अगर कहीं भी आग लगने की देनी हो जानकारी तो तुरंत कॉल कीजिए फायर ब्रिगेड के इमरजेंसी नंबर पर. डायल कीजिए 101 अपने फोन से. सजग रहिए, सुरक्षित रहिए. रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी.

0: संतान की परवरिश किसी साधना से कम नहीं और माता पिता की सेवा किसी आराधना से कम नहीं। संतान सप्तमी की पुनः आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: आवाज आ रही है अभी?
0: हाँ जी आ रही है। सुभाष भाई
1: अभी ऑफ एयर है या ऑन एयर है?
0: अभी ऑन एयर है।
1: फिर भी से बोल दो, फिर मैं कोशिश करूँगा टंग ट्विटर के।
0: संतान की परवरिश किसी साधना से कम नहीं और माता पिता की सेवा किसी आराधना से कम नहीं, क्या कहेंगे आप?
1: जो दीदी बहुत अच्छा विषय है, पर सबसे पहले आपको सभी रेडियो मधुबन परिवार और सभी श्रोते भाई बहनों को आज की दिन के और सुभाष भाई का प्यार भरा नमस्कार, सभी को नमस्कार। और विषय के बारे में थोड़े में बोलता हूँ। देखो माता पिता तो भगवान जैसे श्रेष्ठ, उनके कारण ही ये हमें पृथ्वी और सब कुछ, पृथ्वी का पांचों तत्व का सौंदर्य देखने को मिलता है, जीवन जीने को मिलता है। उनका बहुत महान है कर्तव्य, पर लेकिन संतानों ने अगर माँ बाप के कर्तव्य का पालन किया और श्रेष्ठ संस्कार धारण किया तो माता पिता का नाम रोशन किया तो बच्चे भी माता पिता को गर्व होगा, तो दोनों ही श्रेष्ठ है। पर माता पिता का बच्चों को बड़े करना ये एक कर्तव्य है और उनकी सेवा करना बच्चों का भी कर्तव्य है। तो सभी को नमस्कार और टंग ट्विस्टर कोशिश करता हूँ गणपति के गुण गिनते गिनते, गणपति के गण फिर गणपति बन गए, गणपति के गुण गिनते गिनते, गणपति के गण फिर गणपति बन गए। तो कुछ गलती हो तो माफ कर देना
0: जी, गलती आपने दोनों लाइन सेम बोली है, फिर भी चलिए कोशिश की है, पर आपको कम से कम दो बार और अधिक से अधिक तीन बार बोल के सुनाना है। दोनों ही लाइन आपने सेम बोली है, आप ध्यान से सुनिएगा, मैं सुना रही हूँ। गणपति के गुण गिनते गिनते, गणपति के

0: गणपति गुण गिन गए। गणपति के गुण गिनते गिनते गणपति के गण फिर गणपति बन गए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
1: नमस्कार, ओम शांति।
0: जी ओम शांति। बहुत अच्छी कोशिश की, आभार आपका। तो ये थे सुभाष भाई महाराष्ट्र से। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में आज का विषय आपके समक्ष रख चुकी हूँ, संतान की परवरिश किसी साधना से कम नहीं और माता पिता की सेवा किसी आराधना से कम नहीं। क्या कहेंगे आप? हेलो।
2: हाँ जी नमस्ते।
0: हाँ जी नमस्ते। नमस्ते सुरेश भाई। ओम शांति। गुड मॉर्निंग।
2: बस अच्छे हैं, बैठे हैं, काम कर रहे हैं। आज गुरुवार शुक्रवार है, तो शुक्रवार तो हमारे लिए खास होता है, जैसे शनिवार होता है।
0: अच्छा।
2: टर्म टेस्टर, हाँ, टेस्टर है दीदी। ये हमको भी बहुत अच्छा एक बोलने का तरीका सिखाता है, क्योंकि ऐसे शब्द जो बोलना कठिन है, फिर भी हम कोशिश तो हरदम करते रहते हैं कि जरूर बोलना ही चाहिए।
0: जी जी जी।
2: तो और दूसरा की बारिश के भी हमारी सुबह 4 बजे से शुरू हुई, अभी बस थोड़ी देर पहले बंद हुई। बहुत बारिश आई, बहुत बारिश
0: जी यहाँ पर भी थी।
2: हाँ यहाँ आपको भी, वहाँ राजस्थान में भी हमने सुना है कि बहुत बारिश है
0: जी।
2: तो चलो मैं आपको पहले टर्म टेस्ट का सुना दूँ कि बहुत अच्छा, जो गणपति जी का त्योहार भी चल रहा है, इस पर आपने गणपति का जो टर्म टेस्ट सुनाने की
0: बात की,
2: तो हम सुना देंगे दीदी की।
0: जी।
2: गणपति जी के गुण गिनते गिनते गणपति के गणपति गुण गिन गए। गणपति के गुण गिनते गिनते गणपति गण फिर गणपति बन गए। गणपति के गुण गिनते गिनते गणपति के गणपति गुण गिन गए। गणपति के गुण गिनते गिनते गणपति गण फिर गणपति बन गए। गणपति के गुण गिनते गिनते गणपति के गणपति गुण गिन गए। गणपति के गुण गिनते गिनते गणपति गुण फिर गणपति बन गए।
0: बहुत सुंदर।
2: और विषय आज क्या दीदी?
0: आज संतान सप्तमी दिवस है, तो संतान की परवरिश किसी साधना से कम नहीं और माता पिता की सेवा किसी आराधना से कम नहीं। क्या कहेंगे आप?
2: बिल्कुल सही बात है दीदी। आप देखो, बच्चों के लिए माता पिता इतनी कोशिश करते हैं, इतना कष्ट उठाते हैं कि जो इससे बनता है वही सभी प्रयास माता पिता करते हैं, बच्चों के लिए बड़ा करते हैं, उसको पैसे की जरूरत है पैसे ला के देते हैं, नौकरी में लगाते हैं, और कितने सारे कष्ट उठाते हैं वो, उसको बनाते गिनाते, और कई सारे मेहनत करके भी बच्चों को बढ़ाते हैं, क्योंकि मेरा बच्चा आगे जाए और एक अच्छा जॉब करे, अच्छा उसको कोई जॉब मिले, अच्छा साहब बने, ऐसी सबको माता पिता को देती है, खुश रहती है। लेकिन बाद में वही बच्चा यदि हम हर अस्कर देखते हैं, जब कोई बच्चा बड़ा हो जाता है तो माता पिता को पहचाने के भी इनकार कर देते हैं। कई कई बार ऐसा होता है, वृद्धाश्रम में भेज देते हैं और माता पिता की सेवा नहीं करते दीदी। लेकिन हमको ये समझना कि इतनी कष्ट उठाए कि बच्चों को हमने बड़ा किया, तो बच्चों को समझना चाहिए कि हमारे माता पिता ने कितनी कष्ट किया, हमको पढ़ाया लिखाया। तो आज इससे माता पिता की सेवा करने का मौका मिलता है तो जरूर करना ही चाहिए, क्योंकि मैंने तो दीदी मेरी बात करूँ तो मैंने मेरे माता पिता की बहुत सही, कि मुझे कोई दीदी ऐसा वो नहीं है कि मैंने सब कुछ मेरे माता जी को मैंने किया है, इतना जितना बना इतना मैंने सेवा की है। इसीलिए देखो दीदी, और माता पिता को भी आपको पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, कितना कष्ट उठा के हमको इस दुनिया में लाए हैं, तो इसका गुण कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि माता पिता भगवान से भी आगे हैं, पहले माता पिता और बाद में भगवान
0: जी।
2: लेकिन आज के बच्चे थोड़ा दूरी पर जा रहे हैं और माता पिता की सेवा भी नहीं करते, तो कम से कम सेवा तो नहीं करते, कहना भी नहीं मानते, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चों को माता पिता का ख्याल रखना है, जब तक वो है तब तक, मैं तो दीदी यही कहूंगा बस। माता पिता की जो सेवा, माता पिता आपको बड़ा करते हैं, इसका आप जरूर इसको जो लास्ट टाइम में उसकी सेवा कीजिए, लास्ट तक पूछिए, ऐसा ना लगे कि मेरा बेटा ऐसा निकला
0: जी।
2: नमस्ते।
0: बहुत बहुत आभार सुरेश भाई। तो ये थे सुरेश भाई जोटाना से, बहुत ही सुंदर बात आपने कही है। अब आप भी जुड़ सकते हैं और अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं। हेलो।
3: हेलो दीदी नमस्कार।
0: हाँ जी नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
3: बुरीलाल जी।
0: अच्छा बुरीलाल जी, कैसे हो? स्वागत आपका। जी हाँ अब पहचानने में आई, जब आप खिलखिला के हंसते अच्छा, हैं तो अच्छा, पता चल
3: जाता है। हमारे घर बरसात हो रही है, 4 बजे से बरसात चालू है
0: जी।
3: और मौसम तो ऐसा ही चलता है, बरसात के अंदर बरसात, ठंड के मौसम में ठंड चलती है, गर्मी के मौसम में गर्मी चलती है, ये सब कुदरत का काम है, कुदरत करता रहता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
3: अपना कर्तव्य अपने को निभाना है।
0: बिल्कुल,
3: इसलिए माँ बाप का फर्ज था संतान को पैदा कर दी, और माँ बेटा संतान के फर्ज रहता है माँ बाप की सेवा करना
0: जी।
3: माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे तो उनका फर्ज कैसे निभाएंगे
0: जी,
3: और माँ बाप अपने संतान की सेवा नहीं करेंगे तो संतान कैसे उत्पन्न होगी और उनका संचालन कैसे चलाएंगे, संसार का नियम है ये तो
0: जी,
3: ये नहीं चलेगा कैसे चलेगा, इसलिए अपना परवरिश तो करते ही रहना है, दोनों का फर्ज एक दूसरे को साथ में निभाना है
0: जी,
3: जिससे ये परिपाटी चलती रहती है। और माँ बाप तो सबसे बड़े है ये दुनिया के अंदर, जमीन है आसमान है सारा कुछ, पृथ्वी के अंदर तो बोलते हैं माँ बाप के अलावा दूसरी चीज है क्या
0: जी,
3: सबसे बड़ी चीज माँ बाप है, और माँ बाप का फर्ज माँ संतान को उत्पन्न करना और संतान का परवरिश करना चाहिए, माँ बाप का फर्ज है
0: जी,
3: उनका तो वही करना ही क्या कर
0: जी,
3: ये मेरे कहने का मतलब है।
0: अच्छा, और आज का टंग ट्विस्टर बोल के सुनाएंगे?
3: मुंह में डाल दे तो भी मैं कोशिश करता हूँ।
0: अच्छा, गणपति के गुण गिनते गिनते गणपति के गणपति गुण बिन गए, गिन गए, ठीक है, गणपति के गुण गिनते गिनते गणपति के गण फिर गणपति बन गए,
3: गणपति के गुण गिनते गिनते गणपति बन गए,
0: गणपति के गणपति गुण गिन गए, गणपति के गुण गिनते गिनते गणपति के गण फिर गणपति बन गए।
3: गणपति के गुण गिनते गिनते गणपति बन गए, गणपति के गुण गिनते गिनते गणपति बन गए, गणपति के गुण गिनते गिनते गणपति के गुण गणपति बन गए। पूरा भी नहीं आता है मगर ठीक है
0: जी जी जी, चलिए अच्छी कोशिश की इसके लिए,
3: करके बात तो कर रहा हूँ मैं।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और कोशिश कर रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है,
3: कभी हार नहीं होती है, मगर क्या करना, जैसे जैसे करके समय तो पास करना, समय मिल गया तो आपसे बात कर रहा हूँ मैं।
0: जी जी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, फिर भी आपके लिए तालियां, कहते ना कि कोशिश करना भी बहुत बड़ी बात होती है। चलिए, ये थे भूरीलाल जी मानपुर से, और आइए अब यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद पुनः लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 107.8 FM।

नमस्कार, मैं हूं सुरेश कुमार जांगड़ा, हरियाणा पुलिस सेवा सुरक्षा सहयोग। हरियाणा पुलिस व होमगार्ड आपकी सेवा में हर समय तत्पर है। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में खुशनुमा जीवन की बातें चल रही है और आज का टंग ट्विस्टर भी बहुत ही अच्छा है, तो आप जुड़ सकते हैं, टंग ट्विस्टर भी बोल के सुना सकते हैं। विषय बहुत ही सुंदर है, इसमें आप अपने बात को रख सकते हैं। आज का विषय है संतान की परवरिश किसी साधना से कम नहीं और माता पिता की सेवा किसी आराधना से कम नहीं। हेलो, हमारे श्रोता बंधु जुड़ चुके हैं। हेलो
1: हेलो उषा बहन जी, कंचन भाई बोलता हूँ।
0: हाँ जी कंचन भाई, नमस्ते, कैसे हैं आप?
1: बस बहन जी, गणपति जी का उत्सव चल रहा है हमारे यहाँ, मेरे दुकान के सामने अभी आरती की तैयारी हो रही है, लाइट जली गई थी। देखो ना, मैं खेत में जाता था तो बिल्कुल निराश था और बार बार रेडियो पे भी बातें करता था कि बारिश नहीं आई, क्या करें
0: जी।
1: तो आपने बोला था कि भाई बारिश आ जाएगी, विश्वास रखिए।
0: तो देखो आ रही है बारिश,
1: तो 12 बजे से ही बारिश शुरू हुई, तो अभी तो ठीक है लेकिन 8 बजे तक लगातार बारिश आई है।
0: अच्छा, चलो बारिश की जरूरत भी है।
1: हाँ अभी जरूरत है, कुओं तालाबों में नदियों में पानी हो।
0: जी जी जी,
1: भगवान की प्रार्थना करते हैं।
0: बिल्कुल।
1: और सिस्टम तो मैंने लिख लिया है, फिर बाद में थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा तो बाद में सुनाऊंगा, लेकिन विषय क्या है?
0: विषय है संतान की परवरिश किसी साधना से कम नहीं और माता पिता की सेवा किसी आराधना से कम नहीं, क्या कहेंगे?
1: हाँ, संतानों की परवरिश साधना से कम नहीं
0: जी, और माता पिता की सेवा किसी आराधना से कम नहीं।
1: हाँ, ये तो बिल्कुल बात है। क्या है कि माता पिता की संतान, माता पिता है न संतानों की, जब संतान छोटे होते हैं, पैदा होते हैं, सब नहीं ये करते हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे, हम जब बूढ़े हो जाएंगे तब हमारे ये ऐसा हमारे काम आएंगे, लेकिन हमारी फर्ज में आता है, माता पिता के फर्ज में जो आया था वो नहीं ये कर सकते थे। कितना सीने से कोरे किया, कितना चलना सिखाया, कितना ये किया है
0: जी।
1: तो जब हमारी बारी आए तब माता पिता की सेवा करनी ही चाहिए। कई लड़के ऐसे हैं, कई युवा ऐसे हैं कि भाई वृद्धाश्रम में माता जी भेज देते हैं एक बीबी के कहने पर कि भाई ये तो ऐसा कर रहे हैं, खांसते हैं, रात भर सोने नहीं देते, ऐसा कर, तो ये नहीं करना चाहिए। बीबी को भी बोलना चाहिए, पत्नी को भी बोलना चाहिए कि भाई हमारा माता पिता है, हमारे लिए उन्होंने क्या नहीं किया
0: जी,
1: तो खुल के बोलना चाहिए बहन जी, नहीं कि भाई ऐसा हो जाएगा भी तो पत्नी चली जाएगी, ऐसा कहा नहीं मानूंगा तो ऐसा हो जाएगा, ये दिमाग से निकाल देना
0: जी।
1: हाँ, श्रवण कुमार को देखिए, श्रवण की तो भाई हमें ऐसा नहीं करना है लेकिन समझाना है कि अपने माता पिता को कोई ऐसा करे तो
0: जी,
1: तो ऐसा थोड़ी समझ देनी, नहीं समझे, समझ नहीं है, कई को समझ है। देखो हम कई सालों से हम माता पिता के कई बोलते हैं कि हम माता पिता हमारे पास, लेकिन हमने घर बनाया, संडास बाथरूम सभी की व्यवस्था की, तो हमने ये वो माता पिता को मैंने बोला कि इधर आ जाओ, तो ना बोले कि हमारा तो जो घरसाड़ है जो नहीं पुराने पुराना घर है वही सब, तो हमने तुरंत इस घर में संडास बाथरूम की आंगन में व्यवस्था कर दी और हम ये घर बंद रखा और उसके पास हम रहे
0: जी।
1: तो माता पिता के पास नहीं रहता, माता पिता को हमारे पास नहीं रखता। इसकी पुरानी यादें है, पुराना घर है, महल में कैसे आई, तो ये भूलना नहीं है, शॉर्ट करके
0: बता
1: दिए समय नहीं शरीर के माध्यम से। और दूसरे दोस्तों को भी सभी दोस्तों को आप
0: जी। चलिए, बहुत बहुत आभार। तो ये थे कंचन भाई मंडाली से, आपने भी अपनी बात को अच्छी तरह रखी है। अब आप भी जुड़ सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। आज संतान सप्तमी दिवस है और विषय भी आज का बहुत ही सुंदर है कि संतान की परवरिश किसी साधना से कम नहीं और माता पिता की सेवा किसी आराधना से कम नहीं। आज का टंग ट्विस्टर भी बहुत ही सुंदर है, गणपति के गुण गिनते गिनते गणपति के गणपति गुण गिन गए, गणपति के गुण गिनते गिनते गणपति के गण फिर क्या बन गए, गणपति बन गए। हेलो,
2: हाँ नमस्कार दीदी, पानीपुर से फिरोज भाई बोल रहा हूँ।
0: हाँ जी नमस्ते फिरोज भाई, कैसे हैं आप?
2: बस एकदम अच्छे हैं
0: जी।
2: और गणपति के गुण गिनते गिनते गणपति के गण गिनते गिनते फिर गणपति बन गए, गणपति के गुण गिनते गिनते गणपति के गण गिनते गिनते फिर गणपति बन गए।
0: जी तीन बार बोलना है, दो बार और बोलिए।
2: गणपति के गुण गिनते गिनते गणपति के गण गिनते गिनते फिर गणपति बन गए, गणपति के गुण गिनते गिनते गणपति के गण गिनते गिनते फिर गणपति बन गए, गणपति के गुण गिनते गिनते गणपति के गण गिनते गिनते फिर गणपति बन गए।
0: काफी फिर भी चलिए कोशिश अच्छी की है, शब्दों का तो बहुत ही ऊपर नीचे हुआ है। लाइन पूरी उड़ा दी। हाँ जी
2: हेलो।
0: हाँ जी
2: तो के दूसरा के देखो के अपने चारों धाम की यात्रा मक्का मदीना हज पढ़ने को जा, उससे भी बेहतर अपने माँ बाप की सेवा करने में है। और माँ बाप की सेवा करने से इनके इनके इनके पैरों के नीचे जन्नत है, इनके पैरों के नीचे स्वर्ग है। जी
0: जी
2: हेलो।
0: हाँ जी सुन रही
2: हूँ। जिसने भी माँ बाप को सरसोड़ा है उनका भी वही वही हाल होता है कि ये पीपल पान खरंता हस्ती कुपड़ियो मुझ विच कुट विच से धीरे बापुड़ियो।
0: जी
2: तो एक गीत बोलता हूँ।

0: बिल्कुल जी
1: बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज भाई, बहुत सुंदर। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे फिरोज भाई पालनपुर से, बहुत ही सुंदर आपने गीत भी सुनाया है। और आज का टंग ट्विस्टर अलका जी काबरा कपासन से सुनाना चाहते हैं, उनके द्वारा सुनेंगे।
2: गणपति के गुण गिनते गिनते गणपति के गणपति गुण गिन गए, गणपति के गुण गिनते गिनते गणपति के गण फिर गणपति बन गए, गणपति के गुण गिनते गिनते गणपति के गणपति गुण गिन गए, गणपति के गुण गिनते गिनते गणपति के गण फिर गणपति बन गए, गणपति के गुण गिनते गिनते गणपति के गणपति गुण गिन गए, गणपति के गुण गिनते गिनते गणपति के गण फिर गणपति बन गए।
1: क्या बात है, बहुत सुंदर। अलका जी के लिए भी ढेर सारी तालियां। और अब आप भी जुड़ सकते हैं, विषय में भी आप अपनी बात रख सकते हैं। नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और आज के विषय में भी आप अपनी बात रख सकते हैं। संतान की परवरिश किसी साधना से कम नहीं और माता पिता की सेवा किसी आराधना से कम नहीं। बहुत सुंदर विषय है, क्या सोच रहे हैं आप लोग? इतना सुंदर विषय है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ना चाहिए आप सभी को। चलिए खैर, तो संतान की परवरिश किसी साधना से कम नहीं, बिल्कुल सही है। बच्चे को पालना, जन्म दे करके बड़ा करना कोई मासी का घर नहीं है। कहना बहुत सरल लगता है लेकिन बच्चे के पालना करना बहुत, उसमें पूरा ही वो कहते हैं ना कि अपना जीवन लग जाता है। बच्चा बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद भी बच्चे को परवरिश देनी ही पड़ती है। सही रास्ते पर चल रहा है नहीं चल रहा है उसका मार्गदर्शन करना पड़ता है। बाकी बच्चा जन्म लेता है तब से लेकर देखो, सबसे ज़्यादा त्याग कौन करते आप सभी जानते हैं, माँ करती है ना। हला गिला में सूती माता, सुखा में थने सुलायो रे, सारा घर को काम बिगाड़ियो, थने कदी न रुलायो रे, लूण मरच सू रोटियाँ खादी, पायो दूध मलाई को, माँ बाप की सेवा कर ले, मत बन दासिल गाई को। तो मतलब कितना त्याग करना पड़ता है, समय पर बच्चे को नहलाना धुलाना खिलाना पिलाना सुलाना, हर बात का अटेंशन देना पड़ता है। कहीं बच्चे ये तो नहीं कर रहा है, कहीं मिट्टी तो नहीं खा रहा है, कहीं वो तो नहीं कर रहा है, चौकीदारी करनी पड़ती है कि खेल रहा है बच्चा तो कहीं इधर उधर गिर न जाए, कहीं ठोकर न लग जाए। एक माँ का तो कलेजा कैसा होता है आप सभी जानते हैं ना। तो ये एक बहुत बड़ी साधना है, खुद के नींद का त्याग करके, खुद के सुख सुविधाओं का त्याग करके पूरा अटेंशन अपने बच्चे के प्रति रहता है। तो ये एक साधना ही है। और जब बच्चे बड़े होते हैं, समझदार होते हैं, उनकी शादी करवा दी जाती है, माता पिता धीरे धीरे वृद्ध होने लगते हैं, तो वो ही वापिस रिटर्न शुरू हो जाता है। बच्चों को माता पिता का ख्याल रखना पड़ता है। कहते हैं ना, बच्चे और बुजुर्ग एक जैसे होते हैं। बच्चों को भी प्यार और विश्वास चाहिए और बुजुर्गों को भी प्यार और विश्वास चाहिए। बुजुर्गों को यह नहीं कि आप इतनी महंगी साड़ी या इतने महंगे कपड़े लेके आ जाओ, ये फैसिलिटी दे दो वो फैसिलिटी दे दो, नहीं। बुजुर्गों को क्या चाहिए? आपका प्यार, आपका विश्वास, आपका साथ। थोड़ा समय उनको भी दीजिए भाई। माता पिता ने पूरा जीवन बच्चों को दिया है और बुढ़ापे में क्या करते हैं बच्चे? समय नहीं है हमारे पास, किट्टी में जाएंगे, उधर उधर जाएंगे, भले पार्टियों में जाएंगे, घूमने जाएंगे, लेकिन माता पिता के साथ बैठने का टाइम नहीं होता है। तब सबसे ज़्यादा दुख माता पिता को इसी बात का होता है कि बच्चे कम से कम बैठ कर इतना तो कहे कि कैसे हो बाबूजी, कैसी हो मम्मा, खाना खाया और सब ठीक चल रहा। अरे इतना सा पूछ लो तो माता पिता का तो दिल वैसे ही गदगद हो जाता है कि बहुत हो गया, हमारे बच्चे ने हमको पूछ लिया। ये सबसे बड़ी खुशी है, भले वो उन्होंने खाया नहीं खाया, भले सुख सुविधा है नहीं है, लेकिन उनको क्या लगता है कि चलो हमारे बच्चे ने पूछा हमें से। तो ये एक आराधना है कि जब आपको ज़रूरत पड़ी तो माता पिता ने पूरा समय दिया आपको, तो अब माता पिता को ज़रूरत है तो आप भी थोड़ा सा बोलिए। समय की व्यस्तता है, सभी समझते हैं, माता पिता भी समझते हैं, वो भी चाहते हैं कि बच्चे बहुत तरक्की करें, बहुत आगे जाए, लेकिन उसी में से कुछ पल आप निकाल करके अपने माता पिता को दीजिएगा। तो दिल से आशीर्वाद निकलेगा, अंदर से दुआएं निकलेगी कि हमारा बच्चा हमारी केयर करता है। खाली पूछ के चले गए ना, किया तो कुछ नहीं, लेकिन कितना दिल में ठंडक पहुंच गई कि वाह चलो हमारा बच्चा हमसे बातचीत करता है, हमारे पास चलो 5 मिनट बैठता है, ये हमारे लिए बहुत है। इसलिए पूरे दिन आप कुछ भी करिए, काम करिए, काज करिए, टाइम मिले ना मिले, रात को जब घर में आते हैं तो एक बार अपने माता पिता के पास ज़रूर बैठिएगा, उनसे ज़रूर पूछिएगा कि कैसे हो बाबूजी, कोई तकलीफ तो नहीं ना, कोई दवाइयाँ चल रही हो तो पूछिए कि भाई आपके दवा है, ख़त्म तो नहीं हुई, ख़त्म हुई हो तो आप बोल देना, मैं ले आऊँगा। कितनी खुशी मिलती है। और खाना नहीं खाया तो प्यार से थोड़ा डांट भी लीजिए, समय पर खाना खाइए, दूध पिया कि नहीं पिया, दूध पिया करिए आप, बुढ़ापे में दूध की बहुत ज़रूरत रहती है। ऐसे आप थोड़े से अधिकार से अपने माता पिता के साथ इस तरह प्यार से पेश आएंगे तो माता पिता को अच्छा लगेगा कि देखो हमारे बच्चे कितनी केयर करता है। अब इसमें आपका गया क्या है, कुछ गया नहीं ना, क्योंकि माता पिता की परवरिश मतलब उनका ख्याल तो आपको रखना ही है। लेकिन जब आप बैठते हैं, बोलते हैं, तो दिल से आशीर्वाद उनका निकलता है। तो कहते हैं कि किसके भाग्य की रोटी किसको मिलती, कुछ नहीं कह सकते। मैं कितनी भी कमाती हूँ लेकिन ज़रूरी थोड़े ना है कि मेरे भाग्य की मुझे मिल रही है। घर में पहले देखे संयुक्त परिवार थे, तब कोई एक भाई, जैसे चार चार बेटे होते थे, एक बेटा थोड़ा सा भोला निकल जाता था, वो कामकाज नहीं कर पाता था, तो फिर भी पूरा परिवार उसको निभाता था। क्या कहते थे, अरे भाई किसके भाग्य की रोटी मिल रही क्या पता। इसलिए माता पिता के साथ भी आप अच्छी तरह मतलब रहिए, उनको वृद्धाश्रम भेजने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि आज हम कर रहे हैं कल हमारे साथ भी हो सकता है। और समय निकाल करके माता पिता के साथ बैठिए, उनसे पूछिए, उनका हाल पूछिए, यही आराधना है। इसलिए अभी फिरोज भाई ने कहा ना कि भाई मक्का मदीना जाओ या नहीं जाओ, माता पिता के चरणों में चारों धाम है, तो बिल्कुल चारों ही धाम माता पिता के चरणों में ही है। आप नहीं जाओगे एक समय कहीं देव स्थान पर तो भी चलेगा, वो ईश्वर को भी पता है कि वो अपने माता पिता के सेवा में व्यस्त है, कोई बात नहीं। और उल्टा ईश्वर को भी खुशी होती है कि चलो अपने माता पिता की केयर कर रहा है। ठीक है, तो बस इस विषय को यही समाप्त करते हैं और आइए आज के टंग ट्विस्टर की तरफ बढ़ते हैं। आज का टंग ट्विस्टर है, बहुत ही सुंदर है, जिसको मैं दोहरा रही हूँ। गणपति के गुण गिनते गिनते गणपति के गणपति गुण गिन गए। ध्यान दीजिएगा, लाइनों में मिस्टेक हो रही है तो आप सुनिएगा अच्छी तरह, फिर से स्टार्ट कर रही हूँ। गणपति के गुण गिनते गिनते गणपति के गणपति गुण गिन गए। गणपति के गुण गिनते गिनते गणपति के गण फिर गणपति बन गए। ठीक है, क्योंकि टंग ट्विस्टर में एक शब्द भी आगे पीछे हो जाता है तो वो फिर टंग ट्विस्टर का मजा ही किरकिरा हो जाता है। टंग ट्विस्टर का मतलब ही है कि आप थोड़ा सा फास्ट बोले और थोड़ा सा नीट एंड क्लीन बोले, बाकी कोई बात नहीं। बहुत जने अटक जाते हैं, अटक रहे हैं, फिर भी कोशिश करते रहिएगा, हम तो यही कहेंगे। ठीक है, और आइए फिर से एक ब्रेक लेकर के लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: बहू बहू जल्दी तैयार हो जा, हमें डॉक्टर के पास जाना है।
1: जी आई माँ जी।
0: अरे जल्दी कर, इतनी देर से अभी अभी लगा रखा है।
1: जी माँ जी आ गई, चलिए।
0: नमस्ते डॉक्टरनी जी।
2: नमस्ते नमस्ते, बैठिए। जच्चा बच्चा दोनों ठीक है?
0: डॉक्टरनी साहिबा, हमें अपनी बहू का वो क्या कहते हैं जो टीवी पर देखकर पता चल जाता है कि लड़का है या लड़की, अपनी बहू का पता करना है।
2: सोनोग्राफी? मगर क्यों?
0: लड़की हमको नहीं चाहिए ना, इसलिए अगर पता चल जाएगा तो तुरंत निपटा देंगे।
2: मगर ऐसा करना तो गलत है। और बहू क्या तुम भी यही चाहती हो?
1: जी वो न, न,
0: अरे तू चुप रह बहू, तू क्या जाने।
2: देखिए भ्रूण हत्या एक कानूनन जुर्म है, इससे आपको उम्र कैद भी हो सकती है। और आजकल तो लड़कियां लड़कों से आगे बढ़कर काम कर रही हैं, जैसे सुनीता विलियम, कल्पना चावला, इंदिरा गांधी और मैं खुद एक सफल डॉक्टर हूँ।
3: आजकल हमारे समाज में भ्रूण हत्या तेजी से बढ़ रही है, उसे हमें रोकना होगा। यह कानूनी अपराध है, इसके लिए आप सभी को उम्र कैद भी हो सकती है।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में समय हो चला है आप सभी से आप सभी को बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी सिखाने का। तो जैसा कि आपको बताया था कि अभी गणपति के दिन चल रहे हैं, तो गणपति जी के भोग में क्या चढ़ता है वो ही रेसिपी आपको सिखाऊंगी। लेकिन आपने तो ऑप्शन ही नहीं दिया, चलिए हम अपनी पसंद की सिखा देते हैं। हेलो,
1: हाँ नमस्ते, ओम शांति दीदी।
0: हाँ जी नमस्ते सगुना बहन, ओम शांति। हाँ जी कैसे हो?
1: बहुत अच्छे हैं अभी तो
0: जी। तो आज का टंग ट्विस्टर सुनाएंगे?
1: विषय तो समाप्त हो गया।
0: हाँ जी विषय तो समाप्त हो गया।
1: यार अभी हाल में बैठी मैं आराम से, अब मैं फोन करूँ तो विषय समाप्त हो
0: गया। जी तो
1: टंग ट्विस्टर सुनाने की कोशिश करती हूँ।
0: हाँ जी करिए।
1: गणपति के गुण गिनते गिनते गणपति के गणपति गुण गिन गए, गणपति के गुण गिनते गिनते गणपति के गण फिर गणपति बन गए, गणपति के गुण गिनते गिनते गणपति के गणपति गुण गिन गए, गणपति के गुण गिनते गिनते गणपति के गण फिर गणपति बन गए।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत बहुत आभार आपका। बहुत ही अच्छा सुनाया आपने सगुना बहन।
1: हाँ दीदी, अब क्या है कि लिख के सुनाना पड़ता है, ऐसे तो याद नहीं रह रहता है।
0: जी जी जी
1: तो लिख के भी सुना देती।
0: चलिए अच्छी बात है, थैंक यू। हाँ जी तो ये थे सगुना बहन झोटाना से, और अब आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ पेड़ा। गणपति जी के पेड़े का भी प्रसाद चढ़ता है, ठीक है? तो पेड़े के लिए सामग्री आप ले लीजिए, मावा लेना है, और फिर आप लीजिएगा शक्कर, और बस चारोली लेनी है आपको, ठीक है? तो ये हो गई सामग्री, जिसको मैं फिर से दोहरा रही हूँ। मावा, थोड़ा सा घी भी ले लीजिएगा, और आपको शक्कर लेनी है, पीसी हुई भी लेनी है शक्कर, दो पीसी हुई लेनी है, ठीक है? और चारोली। अब बनाने का तरीका भी साथ ही साथ आपको सिखा रही हूँ। आप क्या करेंगे, जो मावा आपने लिया है, ठीक है, उसको आप अच्छी तरह कद्दूकस कर लीजिए, या फिर मावा बनाने का भी तरीका आपको सिखाई देती हूँ। आप कढ़ाई, मोटे पेंदे वाली कढ़ाई रखिएगा गैस पर, दूध डालिएगा, दूध को हिलाते जाइए हिलाते जाइए हिलाते जाइए, वो जब तक गाढ़ा नहीं हो जाए तब तक हिलाते जाइए, ठीक है? और जब सारा दूध सूख जाए और वो गाढ़ा हो जाए तो वो मावा हो गया, ठीक है? तो फिर ये मावा बन गया है। बहुत टाइम लगता है इसमें और बहुत ध्यान रखना पड़ता है, थोड़ा सा भी नीचे चिपक गया तो फिर वो जलने की स्मेल आएगी, इसलिए मोटे पेंदे वाली ही कढ़ाई लेनी है। लोहे की हो तो अच्छी बात है, दूसरी हो तो भी मोटा पेंदा हो, ठीक है? और हिलाते रहे लगातार। फिर ये मावा बन गया, अब इसमें आप पीसी हुई शक्कर मिला दीजिएगा और मस्त मिक्स कर दीजिएगा। मिक्स करने के बाद देखिए संचा आता है पेड़ा बनाने का, उस संचे में थोड़ा थोड़ा मावा भरते जाइए और बस वो पेड़े का आकार ले लेगा। उसके बाद आप चारोली चिपका दीजिए, तो ये बन गए पेड़े। सारे पेड़े इस तरह बनाना है आपको। फिर अगर संचा नहीं है तो आप छोटी सी, जैसे चूड़ी होती ना सिंपल, वो पतली होती है लेकिन उभरी हुई चाहिए, तो ऐसी कोई रिंग हो, ऐसा कोई, भले आप ढक्कन ले सकते हैं, डीप ढक्कन, उसमें भी आप मावा भर सकते हैं। और मावा भर करके उसमें से निकाल दीजिए, पहले आप चिकनाई लगा दीजिए घी की, फिर उसमें मावा भरिए, फिर निकालिएगा और फिर आप चारोली चिपका दीजिए, तो भी बन गया पेड़ा। तो बनाने कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, पर बस मावा बनाने की मेहनत है। अगर सीधा मावा ला रहे हैं तो इस तरह आप बना सकते हैं, ठीक है? और अपने इष्ट देव को भोग लगाकर, गणपति जी को भोग लगा करके आप फिर ग्रहण कर सकते हैं। आइए फिर से एक ब्रेक लेकर के लौटते हैं, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

प्यारे श्रोता बंधु, समय हो चला है आप सभी से अनुमति लेने का। आज का कार्यक्रम तो आपने सुना ही है, काफ़ी अच्छे रहे हैं। सुंदर सा जो विचार दिया है उस पर जरूर गौर करेंगे, और नुस्खे भी बहुत ही सुंदर दिए हैं कि मसूर के दाल कैसे फ़ायदा करती है, कौन सी बीमारियां ठीक करती है, आपने जाना है। खुशनुमा जीवन की बातें भी बहुत ही अच्छी हुई, तो रेसिपी में जो आपको पेड़े बनाना सिखाया है ज़रूर बना करके खाइएगा, बच्चे बहुत पसंद करते हैं पेड़े को। और आज का टंग ट्विस्टर भी बहुत ही सुंदर था, गणपति के गुण गिनते गिनते गणपति के गणपति गुण गिन गए, गणपति के गुण गिनते गिनते गणपति के गण फिर गणपति बन गए, गणपति के गुण गिनते गिनते गणपति के गणपति गुण गिन गए, गणपति के गुण गिनते गिनते गणपति के गण फिर गणपति बन गए, गणपति के गुण गिनते गिनते गणपति के गणपति गुण गिन गए, गणपति के गुण गिनते गिनते गणपति के गण फिर गणपति बन गए। तो मैं खुद के लिए भी तो तालियां बजाऊंगी, कभी कभी खुद के लिए भी बजा देना चाहिए, है ना। तो बजा दी। आप देखिए बहुत ही अच्छी तरह सुनाया है सुरेश भाई जोटाना से, तीन बार पूरा बोला आपने और एकदम सही बोला है, और सगुना बहन ने और अलका जी काबरा कप्पासन से, तो आप तीनों के लिए। सगुना बहन ने दो बार बोल के सुनाया लेकिन कहीं अटके नहीं और स्पीड में बोले, अच्छा बोले। और फिर कोशिश की है सुभाष भाई महाराष्ट्र से, भूरीलाल जी मानपुर से, और कंचन भाई मंडाली से, कंचन भाई ने तो नहीं सुनाया, फिरोज भाई पालनपुर से, फिरोज भाई भी पूरी लाइन भूल गए थे, लेकिन आप सभी के लिए और आप सभी विषय में जुड़े इसके लिए ढेर सारी तालियां। आज का मीठा मोती है, जीवन में आए तनाव के लिए किसी की शिकायत न करें, बल्कि स्वयं के मन को उस विपरीत परिस्थिति के लिए तैयार करें, ठीक है। और अब मैं आप सभी से अनुमति चाहूंगी, कल फिर मिलेंगे। कल क्या है, जी हाँ कल शनिवार है, गणपति के दिन भी चल रहे हैं और कल राधा अष्टमी भी है, तो कल भजन की थीम रहेगी गणपति और राधा रानी के भजन, ठीक है। तो आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ करके भाग लीजिएगा और भजन जरूर सुनाइएगा। और अभी मैं आपको एक गीत सुनूंगी, आप लेंगे गीत का आनंद और मुझे देंगे अनुमति। आप सभी को राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, घनी खम्मा सा, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 107.8 FM। माता पिता परमात्मा मिलते ना बारंबार है, माता पिता परमात्मा मिलते ना बारंबार है, जिसने दुखाई आत्मा वो डूबते मंझधार है, जिसने करी सेवा वो हो जाते भव से पार है, माता पिता परमात्मा को वंदन बारंबार है, वंदन बारंबार है। लोक और पर लोक सुधर गया, लोक और पर लोक सुधर गया, मत कर काम बुराई को, माँ बाप की सेवा कर ले, मत बन दास बुराई को, मत बन दास बुराई को। आला गिला में सूती माता सुखा में थने सुलायो रे, आखागर को काम बिगाड़ियो थने कदीन रुलायो रे, लूण मरच सू

मत बन दास बुराई को। बड़ो हुओ जद आस बंधी रे, सारा ही दुख मिट जावेला। बड़ो हुओ जद आस बंधी रे, सारा ही दुख

में तो करता न काम सगाई को, माँ बाप की सेवा कर ले, मत बन दास बुराई को, मत बन दास।

0: सेवा कर ले मत बन दास बुराई को, मत बन दास बुराई को। लोक और पर लोक सुधर गया मत कर काम बुराई को, माँ बाप की सेवा कर ले मत बन दास बुराई को, मत बन दास बुराई को।
1: आप रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 FM हबरता रेडियो ने मुस्कुराता रेडियो।

0: दोस्तों, जीवन में मुस्कुराना कितना जरूरी है और मुस्कुराते हुए लोग कितने अच्छे लगते हैं। कभी कोई उदास होता है तो ढूंढते हैं कुछ ऐसे लोगों के पास जाएं ताकि हमारी चेहरे की रेखाएं बदल जाएं, मुस्कान आ जाए। ऐसे लोग हमारे इर्द गिर्द होते हुए भी हम कभी ये नहीं सोचते हैं उनके जीवन में उन्होंने ऐसा क्या किया जो उनका जीवन इतना सुखमय है या फिर इतना खुशहाल है या सदा मुस्कुराहट उनके चेहरे पे होती है। यही सारी रहस्यों को जानने के लिए आज हम कार्यक्रम लेके आए हैं। जीना इसी का नाम है। दोस्तों, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर लगातार आप इस कार्यक्रम के जरिए कुछ योगियों के अनुभवों को सुन रहे हैं। उनके जीवन में वो परिवर्तन कैसे आया और वो अपने जीवन को इस तरीके से कैसे बनाया ताकि लोगों को लगे कि वाह, क्या जीवन जिया इन्होंने। तो दोस्तों, आज हम स्वागत करते हैं आदरणीय रुपेश भाई जी को। आप ब्रह्म कुमारी मुख्यालय में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और उनकी जो अलौकिक यात्रा है कब और कैसे कहां शुरू हुई जानते। रुपेश भाई, आपको रेडियो मधुबन में बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और हमारे सुनने वाले सभी श्रोताओं को भी मैं दिल से नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ आज के सुंदर से कार्यक्रम में।
0: जी, तो रुपेश भाई, हम सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि आप अभी वर्तमान में तो एक अलौकिक जीवन जी रहे हैं, लेकिन आपकी जो जीवन की यात्रा कब और कहाँ से कैसे शुरू हुई, आपने कौन से परिवार में जन्म लिया, आपके भाई बहनें, और आपने जब जन्म लिया तो समय का क्या माहौल था, आपके परिवार में धार्मिक थे या अध्यात्म के रुचि रखने वाले थे, तो ये सारी बातें हम जानना चाहेंगे।
1: जी जी, मेरा जन्म छत्तीसगढ़ बिलासपुर में हुआ। तब तो MP हुआ करता था मध्य प्रदेश। 8 फरवरी 1976 में बर्थ हुआ मेरा और एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। पिताजी अकाउंटेंट थे और घर का माहौल ठीक है, सामान्य रूप से भक्ति भाव वाला ही था। माताजी बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक थे और हम 4 भाई बहन हैं, 3 भाई एक बहन और मैं सबसे छोटा हूँ उनमें। तो छोटा होने के नाते वैसे सबका लाडला रहा छोटे को वैसे भी बहुत प्यार मिलता है। तो बिलासपुर में रहना हुआ, उसके बाद पिताजी का ट्रांसफर

0: समझना, और संसार के लिए मैं ऐसा क्या करूं जो जिसकी आज संसार को जरूरत है। तो एक चीज विशेष लगती थी कि आज जैसे एक नैतिक मूल्यों का ह्रास होता चल रहा है समाज में। आज धन है, वैभव है, भौतिकता से हम संपन्न होते चल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आध्यात्मिक रूप से, कहीं ना कहीं नैतिक रूप से एक मनुष्य नीचे की ओर जा रहा है। तो इस बात की ओर ज्यादा ध्यान जाने के कारण लगा कि क्यों ना कुछ नैतिक या आध्यात्मिक रूप से किया जाए, लेकिन उसका मार्ग क्या हो ये पता नहीं था। और ईश्वर की भी एक तलाश, सत्य की एक तलाश बहुत तीव्र रूप से मेरे अंदर आ गई थी, ना जाने कहां से। वो कहते हैं ना, कई बार गॉड का कुछ कॉल होता है तो एक भूमिका वो बना रहे होते हैं, तो सत्य क्या है, ईश्वर क्या है, ये जानने की बहुत ज्यादा इच्छा उत्पन्न होने लगी। तो कभी मैं पहाड़ पे चला जाता था, कभी एकांत में चला जाता था और अपने अंदर से ही कोशिश करता था कि वो चीज निकल करके आए। कभी गुरुओं से मिलना होता था, लेकिन वो चीज आ नहीं पा रही जिसकी मुझे तलाश थी। जानता भी नहीं था कि क्या चाहिए एग्जैक्टली, लेकिन फिर भी जिससे मुझे संतोष मिले, तृप्ति मिले। और तभी एक प्रदर्शनी लगी हुई थी ब्रह्मा कुमारी की ओर से। मम्मी तो वैसे भी इन सब चीजों में रुचि रखती थी, तो उन्होंने वो देखा, प्रवचन हुआ, फिर उन्होंने कहा कि यहाँ ऐसा ऐसा है, आप चलें। फिर जब ब्रह्मा कुमारी में आना हुआ तो पहले दिन से ही एक परिवर्तन,
1: मम्मी के साथ में
0: जी वो लेकर के आई, तो हम फिर साथ आए, फिर ब्रह्मा कुमारी के बारे में जाना। और जिसकी फिर तलाश थी ना, एक कहें कि प्यास थी, एक अतृप्ति थी अंदर जो जागृत हुई थी, वो लगा कि नहीं, वो यहीं से मुझे सब कुछ प्राप्त होगा। तो अंदर की एक तृप्ति, अंदर की जो एक प्यास का बुझना, उसकी अनुभूति मुझे यहाँ
1: जी। तो जैसे आप आए थे ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में, तो उस समय आपकी क्या उम्र थी?
0: उस समय मैं था 15-16 ईयर्स की एज थी मेरी, और उसके 2 साल के बाद ही फिर मैंने ये निर्णय कर लिया कि मुझे अब जैसे पूरी तरह से अध्यात्म के रंग में रंगना है अपने जीवन को इस मार्ग में, क्योंकि एक था, एक जो चाहना थी कि नहीं कुछ ऐसा किया जाए जिसकी जरूरत है आज समाज को। अंदर से मेरी भी एक रुचि अध्यात्म की ओर एक बढ़ी गई थी, तो भगवान को जानना, खुद को जानना और खुद को विश्व की सेवा में लगाना, ये
1: आदर्श भी थे आपके जीवन।
0: वैसे विवेकानंद जी को मैं बहुत पढ़ा करता था और वो बहुत ही जैसे प्रभावित किया करते थे, लगता था कि जीवन हो तो ऐसा जैसे ईश्वर का नाम ही है ना, जीना इसी का नाम है, तो लगता था कि सच में जीना तो इनका ये है, ऐसा होना चाहिए जीवन जो अपने लिए नहीं, क्योंकि कितने सक्षम थे, कितने योग्य थे, कितने बुद्धिमान थे विवेकानंद जी, लेकिन वो चाहते तो क्या कर सकते थे, लेकिन उन्होंने समाज की सेवा को चुना या मानव जाति की सेवा को चुना और अध्यात्म को के पद को चुना, क्योंकि उन्हें भी लगता था कि अध्यात्म ही हमारी नींव है, यही हमारी संस्कृति है, और ये जब तक भारतवासियों के लोगों के जीवन में नहीं आएगा तब तक हम भारत को विश्व गुरु नहीं बना सकते, एक विकसित राष्ट्र नहीं बना सकते। बाहरी तौर से विकसित भले हो जाएं, लेकिन पहले विकसित तो अंतर मन से होना है, तो मेरे आदर्श रहे, उनको मैं बहुत पढ़ा करता था। और यहाँ विद्यालय से जुड़ने से पहले एक बार मन ये भी मैंने बना लिया था, मैं रामकृष्ण मिशन ज्वाइन करूंगा, क्योंकि वो मेरे आदर्श थे, मुझे अच्छा लगता था, लगता था कि उनकी एक बात, वैसे बहुत सारी बातें हैं उनकी, लेकिन एक बात बहुत दिल को छूती थी, वो कहा करते थे कि हम इंसान हैं और यदि हम भी जीव जंतुओं की तरह, वनस्पतियों की तरह पैदा हुए हैं, हम भी बड़े हुए, हमारा भी विवाह हुआ, हमारी भी 2-4 संतानें हुई और हम भी काल कल्वित हो गए, मृत्यु के ग्रास बन गए, तो हम में और जीव जंतुओं में क्या अंतर रहा? आप इंसान हैं, मानव हैं और जीव मंडल के सर्वोच्च प्राणी हैं, तो जरूर आपको जीवन में कुछ ऐसा करना चाहिए जो लगे कि मैंने समाज के लिए, मानव जाति के लिए कुछ किया। तो वो बात बहुत छूती थी और इसीलिए संन्यास या आध्यात्म की ओर चलने की और रुझान जो है वो तेज हो गई थी।
1: So, जब आप और आपकी माताजी दोनों कोर्स वगैरह करने लगे और ज्ञान मार्ग में चलने लगे, तो फिर बाकी आपके पूरी परिवार वाले आपके सपोर्ट में थे?
0: धीरे धीरे उन सब ने ज्वाइन कर लिया।
1: अच्छा, क्योंकि माँ की बात माननी पड़ेगी।
0: हम लोगों का पूरा परिवार, हमारा कोर्स जो है लगभग 1 महीने चला। अच्छा। वो इसलिए क्योंकि जस्ट 2-3 दिन का कोर्स होता था, उसके बाद एक ज्वाइन कर लेता था, तो फिर से पहले से वो कहते थे अच्छा ये आ गए, फिर से पहले से शुरू करते हैं, फिर 3-4 दिन के बाद दूसरा, तो ऐसे करके लगभग 1 महीने तक वो पूरा ही साप्ताहिक कोर्स हम लोगों का चलता रहा। और सभी ने बहुत हृदय से स्वीकार किया, क्योंकि लगता है सत्य को सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती, सत्य में शक्ति होती है, सत्य हमें अनुभूति कराता है, सत्य हमारे हृदय को छूता है। तो वही स्थिति हम सबकी थी, कोई मन में द्वंद्व नहीं, कोई मन में प्रश्न नहीं, सभी ने सत्य

0: को हृदय से स्वीकार किया कि नहीं, सचमुच यही जीवन जीने का सही मार्ग है और इसी की आवश्यकता आज हर एक इंसान को है, यदि आप सुख शांति में जीवन जीना चाहते हैं तो।
1: जी, तो जैसे आपने कहा कि आप 15-16 साल की उम्र में इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के संपर्क में है और आपको ये ज्ञान बहुत ही स्पष्ट और सही लगा कि यही जीवन का सही मार्ग है। फिर आपने वो भी कहा कि उसके 2 साल के बाद आपने ये भी संकल्प कर लिया कि मुझे अभी जीवन को मानवता की सेवा में समर्पित करना है, तो फिर क्या आपको आसानी से अनुमति मिल गई थी?
0: जैसे मैंने एक शब्द यूज किया था कि भगवान का जब एक बुलावा होता है ना, एक जो गॉड्स कॉल है वो इतना तीव्र होता है कि उसके रास्ते में आने वाले सारे व्यवधान दूर हो जाते हैं। जैसे हम भक्ति में देखा करते थे ना कि जस्ट श्री कृष्ण के फादर उनको लेके बस यमुना में चल पड़ते हैं बस, और वो यमुना नीचे रास्ता बनाती चलती है क्योंकि वो एक ईश्वरीय लीला दिखाते हैं। तो यहाँ पे भी मुझे लगता है कि ये मेरा अपना प्रयास नहीं था, ठीक है अंदर की मेरी एक चाहना एक प्यास थी जो मुझे ये मार्ग मिला, लेकिन ईश्वर की कहीं ज्यादा इच्छा थी। मुझे वो लगता है कि नहीं ये मेरा है और इसकी जरूरत मुझे है, मुझे ऐसा लगता है, इसलिए इतना प्रबल था। मैं आपको बताऊं, मैं बुक वर्म था, मतलब मेरे हाथ में किताब होती होती थी। इवन प्ले ग्राउंड में भी ना, मैं जब फुटबॉल खेला करते थे हम लोग तो मैं गोलकीपर बन जाता था, वो इसलिए ताकि मैं अपने किताब के साथ
1: गोल पकड़ते थे या फिर साथ,
0: अब जो बॉल है नहीं नहीं वो तो यदा कदा ही आएगा, वो कभी बीच में रहता है यहाँ वहां रहता है, जब मेरे पास आएगा तो मैं अलर्ट हो जाऊंगा। तो कभी हमारे टीचर भी कहा करते थे, किसी कोई पूछता था कि रुपेश कहाँ मिलेगा, तो कहते थे कि देख लेना जा करके, जिसके हाथ में किताब हो वो रुपेश है। मतलब ऐसी मेरी छवि थी, किताब से जुड़ा हुआ, इतना बुक वर्म, और ऐसा कि नहीं बनना है तो एक अच्छा डॉक्टरी का भी पेशा, इसलिए कि वो सेवा भाव है ना, कि औरों के लिए सेवा है, औरों के हम काम आते हैं। लेकिन वही मैंने कहा ना, जो ऐसा बुक वर्म हो, किताब से इतना चिपका हुआ हो, जिसको ऐसा उसके अंदर ये भाव डाल देना कि नहीं इससे भी कहीं ज्यादा जरूरत किसी और चीज की है, मुझे या संसार को है, क्योंकि नैतिकता और आध्यात्मिकता आज के समय की पुकार है। और जब जब समय की पुकार होती, कितने ऐसे युवक थे जो अच्छे अच्छे फील्ड में रहे होंगे, जब देश को आवश्यकता थी, महात्मा गांधी जी ने या सुभाष चंद्र बोस ने जब पुकारा कि अब मातृभूमि को तुम्हारी जरूरत है, उन्होंने भी तो त्याग किया ना, उनके भी मन में सपने थे, कोई डॉक्टर बनना चाहता होगा, कोई और कुछ करना चाहता होगा, यदि उन्होंने वो त्याग नहीं किया होता तो देश आज भी आजाद नहीं होता। तो यही भाव मन में था कि आज संसार को, वो भी एक विकृतियों से जकड़ी हुई है ना, अब उसे भी आजाद कराने की जरूरत है, तो किसी ना किसी को तो सामने आना पड़ेगा, क्यों नहीं मैं।
1: मुझे तो कोई भी द्वंद नहीं लगता है इस बात में, क्योंकि भले आप फिजिकल डॉक्टर नहीं बन पाए लेकिन आप एक स्पिरिचुअल डॉक्टर बन पाए, लोगों की चेहरे पे मुस्कुराहट से दिल की दर्द को दूर करने का काम करते हैं।
0: जी शुक्रिया, ये भी परमात्मा का आशीष है।
1: जी, तो जैसे आप अभी समर्पित हुए हैं और आपको वो प्रेरणा थी कि मुझे देश की सेवा करना है, जब समय के अनुसार जब देश ने जिसको जैसे पुकारा और वो देश की सेवा करने चले, तो जब आप ईश्वरी विश्वविद्यालय में आए और अब बहुत ही छोटी उम्र में थे, वेरी यंग एज, उसमें बहुत ही रेबेलियस थिंकिंग भी होती है, क्रांतिकारी विचार ऊर्जामयी होते हैं, और ऊपर से आप मेडिटेशन करते हैं तो और भी ज्यादा ऊर्जा का संचार होता है।
0: जी जी,
1: तो क्या कार्य करते थे आप और क्या क्या सीखा आपने समर्पित जीवन में?
0: जब मैं वहां से चला था, मन में एक भाव आया, जैसे हमने इस सत्य ज्ञान को समझा, तो कि अब ये जीवन ईश्वर के लिए या विश्व सेवा के लिए है। तो जब मैं वहां से चला छत्तीसगढ़ से माउंट आबू के लिए कि अब समर्पित होना है, तो मन में एक ही भाव था कि वहां ईश्वर के घर में जो भी कार्य मिलेगा, जो भी सेवा मिलेगी, वो सेवा हम करेंगे, लेकिन रहेंगे ईश्वर के पास ही, उसके साथ ही, खुद को जानेंगे समझेंगे, ईश्वर को समझते हुए ईश्वर की सेवा करेंगे। तो कोई ऐसी चीज थी नहीं कि हम पर्टिकुलर कि हाँ ये चीज हमें मिले तो हम जाएंगे या हमें ये स्थान मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मन में यही था कि जो होगा ईश्वर जो देंगे, जो कहते हैं ना कि ईश्वर जैसे बिठाए जो खिलाए, ऐसा एक भाव मन में था। तो आए तो किचन से शुरुआत है। जैसे हमारे यहाँ उस समय ज्ञान सरोवर का निर्माण हो रहा था और जो भी आते थे पहले किचन में ही जाते थे, तो किचन की सेवाएं, तो वहां पे किचन में रह करके मैंने अपनी सेवाएं शुरू की। और बड़े भाग्यशाली रहे कि हमारे वरिष्ठ भ्राता आदरणीय सूर्य भाई जी, उनकी देख रेख में इस अध्यात्म की गहराई में उतरने का बहुत सुंदर अवसर मिला। तो किचन की सारी सुंदर सेवाओं को सीखते सीखते वही सेवाएं करते करते आगे बढ़ते चले। फिर तो और बहुत सारी, आप जानते हैं कि मुझे लगता है कि जो ईश्वर को समर्पित रहते हैं ना, इस भाव से रहते हैं कि आपको मुझे जैसे यूज करना है आप करो, तो वो उसके लिए खुद ही मार्ग खोलने लगते हैं। और मुझे ऐसा लगता है जैसे नहीं, एक छोटा बच्चा होता है, वो नहीं सोचता कि उसको क्या करना है, ज्यादा नहीं सोचता, उसके पेरेंट्स सोचते हैं कि हाँ मतलब इसको किस स्कूल में डालना है, कहाँ ले जाना है, क्या कराना है, तो पेरेंट्स सोचते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मैंने खुद को ऐसे अर्पित करके रखा भगवान को कि आपको जो कराना हो आप कराना, मैं अर्पित हूँ। तो उन्होंने हर प्रकार के और मार्ग खोलते गए मेरे लिए, चाहे वो अच्छा प्रवचन करने की बात हो, लोगों के बीच जाने की बात हो, और मैं उतना नहीं किया करता था, लेकिन हाँ अलग अलग जो रैलियां होती हैं उन सब में भाग लेने की बात हो, इन सब का द्वार उन्होंने ही खोला। तो मुझे लगता था कि मेरा एक दोस्त आया जब मैं यहाँ सरेंडर हो गया था, तो 3-4 साल के बाद, वो भी थोड़ा सा जुड़ा हुआ था, उसने देखा कि मैं किचन में काम कर रहा हूँ, तो उसने कहा रुपेश तू जीवन भर किचन में ही काम करता रहेगा ऐसे। तो मैंने तो खैर इस विषय में सोचा नहीं था, लेकिन मुझे ये लगा कि शायद इसने भगवान को, अध्यात्म को, सेवा भाव को नहीं समझा है। जहाँ सेवा भाव होता है ना, वहाँ छोटे कार्य बड़े कार्य ये नहीं होते, वहाँ छोटा बड़ा कुछ होता ही नहीं। सेवा अपने आप में ही बड़ी चीज है, समर्पण अपने आप में ही बड़ी चीज है। तो ईश्वर ने फिर बहुत कुछ दिया, बहुत आगे बढ़ाया। मैं समझता हूँ कि विश्व के मंच पर आने का उन्होंने भाग्य दिया। तो आप ईश्वर को अर्पित होते हैं, ईश्वर आपके लिए सारे मार्ग खोल देता है, मैं तो ऐसा अनुभव करता
1: हूँ। तो रुपेश भाई ये बताइए कि आपको कौन सी ऐसी चीजें लगी कि अगर मैं संस्था में नहीं आया होता तो शायद ही मैं ये चीजें सीख पाता, और ये आपकी योगी जीवन की ये जो 40 वर्ष रहे हैं, इसमें आपने कौन सी ऐसी प्राप्तियां या अपने जीवन में वो परिवर्तन देखते हैं?
0: देखिए, यदि जीवन में अध्यात्म नहीं है तो भले ही आप संसार में हैं, अच्छे से आप आगे बढ़ जाते हैं, बड़े पदों पर पहुंच जाते हैं, आपके पास धन धान्य हो सकता है, सुविधाएं हो सकती हैं आपकी योग्यता के आधार पर, लेकिन मुझे लगता है जब तक जीवन में अध्यात्म नहीं होता या ईश्वर नहीं होते, तो वो चीजें आपको सुकून नहीं देती। वो आपके अहम को बढ़ाती हैं, वो आपके मैंपन को बढ़ाती हैं, वो आपकी तृष्णाओं इच्छाओं को और भी ज्यादा बढ़ाती चलती हैं। फलतः व्यक्ति भागता ही रहता है उन चीजों के पीछे, 99 का चक्कर जिसको कहते हैं, एक और चाहिए, एक और चाहिए, थोड़ा और चाहिए, थोड़ा और चाहिए, ये सारी चीजें उसके अंदर आ जाती हैं। लेकिन जैसे ही व्यक्ति इस मार्ग से में से जुड़ता है, तो वैसे ही ना उसके अंदर एक तृप्ति और संतोष आ जाता है। वो आगे से आगे बढ़ता ही है, उन्नति करता है, लेकिन संतोष के साथ करता है, खुशी के साथ करता है, इच्छा और चाहनाओं के साथ नहीं करता। मुझे लगता है कि यहाँ आने के पश्चात, वहां मैं जितना ज्यादा महत्वाकांक्षी था, तो यहाँ भी वो उसका रूप परिवर्तित हुआ, लेकिन उसमें एक समर्पण का भाव, उसमें एक ये भाव जागृत अवश्य हो गया कि नहीं, ईश्वर को अर्पित करके अब मुझे जीवन को आगे बढ़ना है। तो ये जो समर्पणता का भाव है, ये जो नम्रता का भाव है, या जहां से आपने शुरुआत की थी कि आप मुस्कुराते रहते हैं, या आपके जीवन में एक सुंदर मुस्कान है जिसे आप बांटते रहते हैं, तो मुझे लगता है ये चीजें शायद मैं यदि यहाँ नहीं होता तो ये चीजें मेरे जीवन में नहीं होती, जो निरंतर मुझे लगता है ये भगवान के द्वारा दिया हुआ एक गिफ्ट है, बहुत बड़ी गिफ्ट है। बहुत सारी लिस्ट हो सकती है कि उन्होंने क्या क्या दिया, लेकिन एक ये चीज, जिसे मैंने कहीं पढ़ा था कि आपके चेहरे पे जो आपकी मुस्कान है वो ईश्वर का हस्ताक्षर है, इसे किसी भी कारण से मिटने ना दें। तो मुझे लगता है कि भगवान ने परमानेंट मार्कर से ये हस्ताक्षर मेरे चेहरे पे कर दिया है, और ये प्राप्ति मुझे यही हो सकती थी, आध्यात्मिक जीवन से ही हो सकती थी, वहां मैं ये नहीं कर सकता था।
1: अगर ऐसा गिफ्ट मिलना है, परमात्मा का हस्ताक्षर आपके चेहरे पे, तो लोगों को क्या करना चाहिए?
0: मुझे लगता है कि केवल एक चीज यदि सभी कर लेना, अपने आप को अर्पित करें उन्हें मन से, हम तेरे हैं। भक्ति में वैसे भी हम गाते थे ना, तेरा तुझको अर्पण, और ये भी कहते हैं जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम, लेकिन केवल गाते हैं। मुझे लगता है केवल एक चीज ये कर लेना, अपने आप को अर्पित कर दे, हम तेरे हैं तुम्हारे हैं, ये भाव ही मुस्कान ले आता है। फिर वो कहते हैं कि ठीक है तू चिंता मत कर, मैं बैठा हुआ हूँ। तो कोई आपके लिए सब कुछ कर रहा है, नहीं बड़े से बड़ा कार्य है, जिम्मेवारी है, और भगवान कह रहे हैं तू चिंता मत कर मैं बैठा हुआ हूँ, तो क्या होगा, चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी, आप हल्के हो जाएंगे, क्योंकि व्यक्ति बोझिल होकर के अपने मुस्कान को भूल गया है ना, ये काम है वो काम है, ये करना है वो करना है, और इसने हमारी मुस्कान को छीन लिया है। बस इसने जीवन दिया है उसे करने दें, और निमित्त भाव से ट्रस्टी बन करके चलते चले ना, आपकी मुस्कान हमेशा कायम रहेगी।
1: वो कौन सा मोड़ था या कौन सा पल था जिस दिन आपको या उस समय आपको लगा कि यही जीना है, इसी को जीना कहते हैं या जीना इसी का नाम है?
0: शुरुआत में मैं पुनः चलूंगा, जब मुझे ये ज्ञान प्राप्त हुआ, हम लोगों का कोर्स जैसे मैंने कहा थोड़ा सा लंबा ही चला, लेकिन मुझे लगता है पहले ही दिन जब कोर्स हुआ और मैं बाबा के रूम में बैठा, मेडिटेशन रूम में, जहां परमात्मा से एक रूबरू, मुझे एक गहरी फीलिंग थी कि ये ट्रांसलेट नहीं है लेकिन खुद भगवान ही सामने बैठे हुए हैं। और आपको विश्वास नहीं होगा, और शायद लोगों को भी, अपने हमारे दर्शकों को भी हो सकता है इन पे विश्वास हो ना हो, लेकिन अध्यात्म में ये चीजें बहुत होती हैं कि बस वहां मेडिटेशन करते करते ना इतने आंसू मेरे अंदर से आने लगे, इतना आंसू इतना आंसू इतना आंसू, मुझे खुद भी लग रहा था कि आंसू क्यों आ रहे हैं, लेकिन बाद में ये रियलाइज हुआ कि व्यक्ति के आंसू राइट तभी आते हैं जब उसका मिलन उस चीज से हुआ हो जिसकी तलाश उसको सदियों से हो। आपका बच्चा यदि वर्षों से बिछड़ गया है और जब वो आपको मिलेगा तो आपकी फीलिंग कैसी होगी, क्या आप अपने आंसू रोक पाएंगे, कोई कहे ना कहे लेकिन वो स्वतः ही बाहर आते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि जिस ज्ञान के, जिस सत्य के, जिस परमात्मा को मुझे तलाश थी ना, वो मुझे मिल गया, और सचमुच वो मिला तभी वो आंसू आए ना। किसी ने कहा नहीं कि चलो तुम रो क्योंकि मेडिटेशन में बैठने के बाद रोना होता है, ये किसी ने कहा नहीं, ये स्वतः स्फूर्त था। और उसी दिन मैंने ये निर्णय कर लिया कि नहीं, कि यही सत्य और इसी मार्ग पर चलते हुए इस सत्य का साक्षात्कार सभी को कराना है। वो एक सबसे बड़ी एक टर्निंग पॉइंट थी मेरी लाइफ की, जो एक मेडिकल की ओर बढ़ने वाला एक स्टूडेंट एक ऐसे आध्यात्मिक डॉक्टर बनने की ओर बढ़ चला, जो मन में जो विकृतियां है लोगों के उसे दूर करने में कुछ अपना योगदान दे सके।
1: बहुत सुंदर। मुझे लगता है आंखों की जो आंसू है वो हमारी इमोशन का एक एक्सप्रेशन है
0: जी।
1: जरूरी नहीं व्यक्ति दुखी होता है तभी वो आंसू बहाता है, कभी खुशी में भी आंसू आते हैं, कभी जब संतुष्ट हो जाता है, जैसे आपने कहा जिनसे हम बिछड़े हुए हैं और ढूंढ रहे ढूंढ रहे ढूंढ रहे, और जब अचानक मिलता है तो वो शब्द नहीं आते हैं, वो इमोशन आंसू के रूप में एक एक्सप्रेशन होता है कि आपसे मिलके हमें खुशी हुई या तृप्त हुए हैं, और जो हमारा जो खोज था वो खत्म हुआ है और हम अभी मिल गए हैं। बाद में धीरे धीरे फिर वो बातें आने लगती है।
0: वो पहले तो वो जो भाव है उस भावना में हम बह जाते हैं, और वो बहुत सुखद अनुभूति होती है। हाँ। क्योंकि उसमें कोई व्यापार नहीं है, वो कोई लेन देन नहीं है, वो बहुत शुद्ध, जैसे एक स्मृतियां हैं, शुद्ध भाव है, हृदय के भाव है, जिसमें बहना व्यक्ति के लिए यादगार होता है और जीवन को बदलने वाला होता है पूरी तरह से।
1: So, अगर आप अपनी पूरी जीवन यात्रा को देखते हैं और कोई एक शब्द से अगर आप कहते हैं कि आपका पूरा जीवन उसे जुड़ा हुआ है, तो वो कौन सा शब्द है जो आपके पूरे जीवन को दर्शाता है?
0: एक शब्द यदि ढूंढ के मैं कहूँ तो मुझे लगता है कि परमात्मा साथ,
1: कंपेनियन ऑफ गॉड
0: जी। ये मुझे लगता है कि मैं अपने पूरे जीवन को यदि थोड़ा सा डिस्क्राइब, मतलब इस रूप में करना चाहूँ कि कौन सी ऐसी चीज रही जिसने मुझे छुआ, मुझे बदला, या जिसके साथ मैं हमेशा रहना चाहूंगा, या जिसे मैं अपनी पहचान बनाना चाहूंगा, वो यही कि एक ऐसा शख्स जो भगवान के साथ रहता है, जो भगवान का दोस्त है, जो भगवान का मददगार है, जो भगवान की इच्छाओं आशाओं को पूर्ण करने वाला है, या फिर जैसे ईश्वर की जो सृष्टि है, ईश्वर चाहते हैं कि मेरे सभी बच्चे सुखी हों, संसार स्वर्ग हो, तो उसके उस कार्य में मदद करने वाला, तो मैं सोचता हूँ कि इस रूप में मैं खुद को ज्यादा कनेक्टेड फील करता।
1: थैंक यू सो मच रूपेश भाई, बहुत ही लाइट मोड में बहुत ही गहरी बातों को, और जीवन की वो चंद पल जहाँ पे भी आपकी टर्निंग पॉइंट्स रहे हैं आपके जीवन को दर्शाने वाले, उन सारी बातों को हमारे साथ शेयर किया। और मैं समझती हूँ कि आज की युवा भी उन चीज़ों से कनेक्ट कर पाते हैं और प्रेरणा ले पाते हैं आपके जीवन से। बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस कार्यक्रम में आने के लिए।
0: जी, दिल से आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मुझे स्टूडियो में बुलाने के लिए, और हमारे सभी रेडियो मधुबन के श्रोताओं से जुड़ने के लिए दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी श्रोताओं का भी दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, यहीं पे हम विराम लेते हैं, फिर मिलते हैं अगली कड़ी में। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: ओ भाई साहब इधर आओ, कहाँ जा रहे हो जरा बताओ। लाल बत्ती में दिखता नहीं आपको, सामने लोग रोड क्रॉस कर रहे हैं फिर भी गाड़ी पे चले जा रहे हो हैं?
1: अरे हवलदार साहब, एक बार लाल बत्ती में निकल गया तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा।
0: ओए पहाड़ भले ना टूटे, लेकिन बेमतलब यमराज के रजिस्टर में एक नाम जुड़ जाएगा। इसीलिए जब भी लाल बत्ती हो तो बोलो पहले आप, समझे?
2: गाड़ी चलाते वक्त पहले आप का रूल अपनाइए और अपने शहर का ट्रैफिक स्मूथ बनाइए। ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
3: अभी बजे हैं दोपहर के 12। एक मिनट का हो आत्मचिंतन।

0: अभी आप सुनेंगे रेडियो मधुबन पर साप्ताहिक अंत कार्यक्रम का पुनः प्रसारण। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज हम सभी के मध्य बहुत दिनों के बाद दीदी उर्मिला जी जुड़े हैं, और दीदी जी को तो आप सभी जानते ही हैं, लेकिन थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय इस प्रकार से है कि दीदी ने MA इन इंग्लिश किया है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में, और आप प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज के साथ 1981 में जुड़ी और 1985 से समर्पित रूप से आप सेवाएं कर रहे हैं लगातार 41 वर्षों से। वर्तमान समय आप माउंट आबू में राजयोग शिक्षिका, संपादिका ज्ञानामृत मासिक पत्रिका और सह संपादिका हैं आप त्रैमासिक हरियाली पत्रिका के। तो बहुत सारे युवाओं को आप प्रेरित करते हैं देश के कोने कोने में तथा विदेशों में भी जाकर के आपने आध्यात्मिक यानी कि हमारे सनातन संस्कृति को जन जन तक आपने पहुंचाया। तो बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम फिर से दीदी से अभी जुड़ चुके हैं और बात करेंगे हम समाने की शक्ति के बारे में, क्योंकि कल है गणेश पूजा। गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य पर हम गणेश जी को घर लेकर के आते हैं, उनकी पूजा करते हैं और उनका बड़ा पेट भी होता है, और कहते हैं कि वो सब बातें शायद समा लेते हैं या फिर लड्डू खा करके बड़ा पेट है, ये हम दीदी जी से जानेंगे। और समाने की शक्ति और सामना करने की भी जो शक्ति है, पावर टू फेस भी है, तो उसके लिए क्या क्या जरूरत है उसके बारे में हम जानेंगे, यानी कि गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य पर खास ये कार्यक्रम है जीवन रोशनी। उर्मिला दीदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: शुक्रिया जी, आपने हमें याद किया।
0: जी दीदी, बहुत देर से याद किया इसलिए क्षमा चाहिए, लेकिन सौभाग्य की बात है कि खास मौके पर आपके मार्गदर्शन हम सभी श्रोताओं तक पहुंचाएंगे। तो आपसे जानना चाहेंगे, जैसे गणेश जी को बुद्धि की देवता के रूप में और माना जाता है, इसके साथ साथ विघ्न विनाशक के रूप में, शिव जी के पुत्र के रूप में हम उन्हें जानते हैं, तो उनके अंदर पावर टू फेस सामना करने की शक्ति के साथ साथ समाने की शक्ति भी होता है, तो आप इसे कैसे डिफाइन करना चाहेंगे?
1: ओम शांति। हमारे एक वरिष्ठ भ्राता जी,
0: जी
1: रमेश शाह, उन्होंने एक बार एक आर्टिकल लिखा था। उन्होंने कहा था कि गणेश जी का गणेश जी नाम तो बहुत अच्छा है, लेकिन इनका नाम असल में गुणेश होना चाहिए। गुणेश मतलब गुणों का देवता,
0: जी,
1: क्योंकि इनके हर एक्शन में कोई ना कोई गुण, कोई ना कोई शक्ति झलकती है।
0: जी,
1: अभी जैसे अभी आपने पेट की बात की थी कि इतना बड़ा पेट है, समाने की शक्ति है। लड्डू खाते हैं तो हजम हो जाते हैं, पेट इतना बड़ा नहीं होता है
0: जी।
1: लेकिन वास्तव में तो ये सब कुछ अपने भीतर समाने की शक्ति का प्रतीक, और ये शक्ति बहुत बड़ी है
0: जी।
1: समाने की शक्ति की एक्सप्लेनेशन ये नहीं है कि आप बात को भीतर ले जाओ और भीतर ही भीतर घुटते रहो। एक्सप्लेनेशन ये है कि आप बात को भीतर ले जाओ और उसको ऐसी गहराई में दबा दो कि जब तक उसकी जरूरत ना हो तब तक आपको वो दिखाई ना दे।
0: जी,
1: जैसे समुद्र में कितना सारा कचरा जाता है, समुद्र ना तो उसको ऊपर रखता है ना दिखाई देता, समुद्र एकदम स्वच्छ अपना तल रखता है
0: जी।
1: तो इसी तरह हमारा फेस एकदम शाइनिंग हो, पॉजिटिव हो, मुस्कुराता हुआ हो, बेशक हमें हर बात का पता हो। कोई व्यक्ति है, हमें उसकी कमजोरी का पता है कि जो सामने से आ रहा है ना, इसमें ये कमजोरी है, लेकिन हमारे फेस में बिल्कुल ना दिखाई दे कि हमको इसकी कमजोरी का पता है, जिसको कहते हैं समाने की शक्ति, क्योंकि उस समय जरूरत ही नहीं है उस बात को उभारने की
0: जी।
1: हाँ, कभी हमें उसको कोई शिक्षा देनी है मीठी सी, मौके पे प्यार से, तो वो एक मीठी गोली की तरह से हम बहुत प्यार से उसको वो चीज देंगे, उसको भी वो मीठी लगे, कड़वी ना लगे। कड़वी लगेगी तो फेंक देगा, एक्सपेक्ट नहीं करे, एक्सेप्ट नहीं करे
0: जी। तो उस समय अपने मन में क्या चिंतन चलाना होगा जब उसको सामने देखते हुए पता होते हुए भी?
1: वो क्या है कि मन में ये चिंतन रहता है कि ये भी एक आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, परमात्मा का बच्चा है, और मुझे भगवान ने आज्ञा दी है कि सबके गुण देखो, किसी में 99 अवगुण हो तो एक गुण जरूर होता है, तो अगर मैं सचमुच बुद्धिमान हूँ तो मैं इसमें से कोई गुण ढूंढ के दिखाऊं, ये मेरे लिए चुनौती है। दुनिया कहती है कि इसमें बड़े अवगुण है, पर मैं इस चुनौती को स्वीकार करूं कि मैं इसमें से गुण ढूंढूं और उस गुण का चिंतन करूं और उस गुण के आधार पर इसको अप्रिशिएट करके इसको आगे बढ़ाऊं।
0: जी बिल्कुल, तो इस चिंतन के साथ उस आत्मा से, उस व्यक्ति से हमें
1: हाँ
0: मिलना है।
1: उसे मिलना है, बात करनी है, पास बिठाना है, जो भी है।
0: जी, और दीदी गणेश जी को विघ्नहर्ता भी कहते हैं, तो लेकिन जीवन में जब कोई विघ्न सामने आता है तो क्या हर बार वो विघ्न बाहर से हटेगा या फिर हमें उसके सामने खड़े होने की शक्ति भी अपने अंदर जगाना पड़ेगा?
1: क्या है कि विघ्न वैरायटी होती है, लेकिन किसी भी विघ्न को हम किसी भी स्थूल या भौतिक शक्ति से अगर हटाएंगे तो वो टेम्परेरी हटेगा, फिर वापस आ जाएगा। हमें या तो विघ्न को जंप मार के पार करना है, एक तरीका तो ये, जैसे भाई जहाज ऊपर उड़ता है, पहाड़ों को क्रॉस कर जाता है, पहाड़ देखता ही रह जाता है, सोचता था मैं इसके आगे आऊंगा, उसकी मनसा ही पूरी नहीं हुई, बहुत बड़ा पेड़ है, हवाई जहाज उसके ऊपर से भी क्रॉस कर गया। या तो हमारे में ये वाली शक्ति, दूसरी ये शक्ति है कि हम अपना कोई एक्शन ना लें लेकिन हमारे वाइब्रेशन, हमारे नयन, हमारी मुस्कान इतनी पॉजिटिव और इतनी पावरफुल हो कि सामने वाला सामने खड़ा ही ना रह सके, उसको लगे कि अरे मैं किसका विरोध कर रहा हूँ और क्यों विरोध कर रहा हूँ, इस विरोध का तो कोई मीनिंग ही नहीं, तो वो अपने आप ही हट जाए। और तीसरा तरीका ये है, ये सबसे अच्छा है, कि हर समय अगर हमारी सबके लिए शुभकामनाएं हैं तो विघ्न आएगा ही नहीं, ये गारंटी है।
0: ओके, सबके लिए शुभकामनाएं, कैसे? अपने जो शत्रु भी है, मतलब जिसने जो,
1: हाँ,
0: उसके लिए भी,
1: उसके लिए भी अगर हम अच्छा सोचते हैं, उसके लिए भी कहते हैं कि तुमने जो किया वो बहुत अच्छा किया, क्योंकि तुम्हारे क्रम से मेरी बड़ी प्रोग्रेस हो गई, तुम्हारी निंदा से मैं बड़ी मजबूत हो गई, और तुम्हारे विघन डालने से मेरा हतम्बल बहुत बढ़ गया, तुम बहुत अच्छे हो, बेशक ऐसे दो चार कर्म और करो ताकि मैं और आगे बढ़ू। हम उसको ऐसे वाइब्रेशन देते हैं ना तो वो आता ही नहीं है सामने।
0: सही बात है। तो इस प्रकार से हम अपने स्मृति पटल पर ये सारे विचार चला सकते हैं। जी, और गणेश चतुर्थी और पावर टू फेस, जैसे सामना करना है परिस्थितियों को, तो किस तरह से ये आध्यात्मिकता और मानवीय संबंध इसके साथ जुड़ी हुई है?
1: जब हम किसी भी चीज का सामना करते हैं तो हमको एक बात का ध्यान रखना है, व्यक्ति का सामना कभी भी नहीं करना है, क्योंकि जो व्यक्ति है वो संसार की बहुमूल्य दौलत है, प्रॉपर्टी है। मान लीजिए मैं उस व्यक्ति का कुछ नुकसान करता हूँ तो संसार का नुकसान होता है, चोट पहुंचाई तो भी नुकसान है, हर्ट किया उसको तो भी नुकसान है, और उसको छिना झपटी की तो भी संसार का ही नुकसान है, संसार की एक एसेट है, संसार का एक व्यक्ति है, तो फिर हम सामना कैसे करें? असल में हमको सामना करना है उसके भीतर जो दुर्गुण है उसका।
0: ओके,
1: जी। अगर मैं कुछ बिगाड़ना ही चाहती हूँ तो उसके भीतर मौजूद दुर्गुण का बिगाड़, मेरे में इतनी सुख संपर्क शक्ति होनी चाहिए। अब जैसे मेरे सामने एक पेशेंट है, मैं डॉक्टर हूँ, अगर मैं पेशेंट को कहूँ तुम्हारी आंख में दर्द है, चलो आंख ही खत्म कर देते, कान में दर्द है कान ही खत्म कर देते, मैंने बड़ा नुकसान कर दिया। मुझे तो आंख की बीमारी खत्म करनी, कान की बीमारी खत्म करनी, कान रहे तो वो व्यक्ति रहे, लेकिन उस व्यक्ति के भीतर कुछ ऐसी नेगेटिविटी है जिनके कारण वो मुझे भी और किसी और को भी तंग करता होगा
0: जी,
1: तो मेरा फोकस उस नेगेटिविटी के ऊपर, मुझे उसको खत्म करना
0: जी, ना कि व्यक्ति को दूर कर देना है, उसको गलत
1: ना उसे घृणा करनी है, ना उसको दूर करना है, ना उसकी कोई किसी से चुगली करनी है, ना किसी और का सहयोग लेकर के उसका कोई अहित करना है, क्योंकि मैं संसार का कल्याण करने वाली हूँ, अहित करने वाली नहीं। मुझे तो एक तिनका भी नहीं तोड़ना संसार का, अगर मैं एक फूल का पत्ता भी तोड़ती हूँ तो भी संसार का नुकसान, तो मैं नुकसान करने नहीं आई हूँ, मैं इसका फायदा करने आई, और मनुष्य का तो मैं नुकसान कर ही नहीं सकती क्योंकि वो तो एक बहुत बहुमूल्य चीज है, परमात्मा की प्रकृति के बने संसार, तो उसके भीतर कुछ जो नेगेटिविटी है मुझे उसको खत्म करना है। अब उसको खत्म करने के लिए अब आपको तरीके ढूंढने, आपको पहले तो ये देखना है कि आप इसको कैसे खत्म कर सकते हो, क्योंकि हर एक की बुराई एक तरीके से खत्म नहीं होती है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, बहुत बहुत साल पहले की बात है, मैं एक बार बस में सफर कर रही थी, उस जमाने में अपनी गाड़ियां अपने पास नहीं होती थी, कहीं भी आना जाना बसों में होता था
0: जी।
1: मेरे आगे वाली सीट पे एक व्यक्ति बैठा था और बीड़ी या सिगरेट कुछ पी रहा था
0: जी।
1: तो जब बस चलती है ना तो आगे का धुआं पीछे आता है
0: जी,
1: और वो धुआं मेरे ऊपर आ रहा था पूरा, मैं पिछली सीट पे थी। मैंने बहुत प्यार से कहा, मैंने कहा भाई साहब ये धुआं ना मेरी तरफ आ रहा है, तो आप थोड़ा सा बंद कर सकते हैं? क्यों, मैं तो पीऊंगा। तो मैं चुप हो गई, बस मुझे तो कहना ही था, मानी है ना मानी। उसके बाद मैंने सोचा कि वाणी से कई बार ना व्यक्ति के अहंकार को चोट लगती है, क्योंकि और भी बस में बैठे लोग इसको देख रहे हैं, इसको लगा होगा कि बहन जी की बात मैंने मान ली तो लोग कहेंगे बड़ा कमजोर है, बहन जी ने कहा और मान लिया, तो इसके अहंकार को चोट लगी है। चलो इस पे ना सूक्ष्म संकल्पों का प्रयोग करती है। मैं पीछे बैठी बैठी सोचती रही, मैंने कहा बाबा ये आपका बच्चा है, धुएं से इसका भी नुकसान हो रहा है, मेरा तो हो रहा है, मेरे से ज्यादा तो इसका हो रहा है, तो इसको सद्बुद्धि मिले तो ये इसको त्याग करे। और बहुत सारी बस में और भी सवारियां हैं, बेशक बोली नहीं लेकिन बस में पॉल्यूशन तो फैल ही रहा है
0: जी,
1: तो इसको सद्बुद्धि मिले, इसका पुण्य का खाता जमा हो, ये भी तो एक अच्छी आत्मा है, परम धाम से आई तो बहुत अच्छी आत्मा थी
0: जी।
1: ऐसे में चिंतन करती रही करती रही, कुछ समय बीता और उसने जेब से बंडल भी निकाला, माचिस भी निकाली और मुझे दिखा के कहता देखो बहन जी मैं इनको बस बाहर फेंक रहा। तो उसने मुखवाली तो बीड़ी फेंकी फेंकी, वो बंडल और माचिस भी फेंक। तब मुझे लगा कि व्यक्ति के लिए हम अगर शुभ सोचते हैं तो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, टाइम तो लगता है
0: जी।
1: एक तो होता है कि आपने थप्पड़ मारा और आदमी ने तुरंत काम कर दिया, लेकिन वो प्रभाव अच्छा नहीं है, उसके मन में आपके लिए घृणा आ जाती है, आपके नजदीक जीवन में वो कभी नहीं आएगा। लेकिन ये जो तरीका है इसमें आपने उसका दिल जीता है, आपने उसके दिल में अच्छाई को एक तरह से इंजेक्ट किया है और बुराई को बाहर निकाला है और वो अपने आप इसके लिए तैयार हुआ है, मेरी तरफ से कोई जबरदस्ती नहीं, अब वो जीवन भर ये काम दोबारा नहीं करेगा। तो ये तरीका सबसे बेस्ट है, बुराई का सामना करो, बुरे व्यक्ति का नहीं। कहते हैं जेल में लिखा होता है पाप को मारो पापी को नहीं
0: जी, बिल्कुल बिल्कुल, पाप को मारो पापी को नहीं को। जी बहुत सुंदर बात है दीदी। दीदी अक्सर हम चाहते हैं कि जीवन में जो मुश्किलात हैं वो समाप्त हो जाए, लेकिन क्या वास्तविक शक्ति मुश्किल के समाप्त होने में है या फिर उसके रहते हुए भी शांत रहने में और मजबूत बनने में है?
1: हाँ, क्योंकि जीवन की मुश्किलातें कभी खत्म नहीं होती है, ये तो आप पक्का रख लो जब तक आप जिएंगे
0: जी।
1: आपके अगर एक आंख ठीक हो गई तो दूसरी में दर्द हो जाएगा, अगर आपका एक बच्चा ठीक हो गया तो दूसरे की प्रॉब्लम आ जाएगी, इधर वाला पड़ोसी ठीक है तो इधर वाला कुछ खटर पटर कर देगा, और ऑफिस में सब कुछ ठीक है तो घर में कुछ हो जाएगा, एक रिश्तेदार ठीक है तो दूसरे रिश्तेदार में कुछ हो जाएगा, समस्याएं चलती रहेंगी। समस्याओं के चलते हुए जीना सीखो और खुश होकर के जीना सीखो। एक व्यक्ति था, एक महात्मा जी के पास गया, उसने कहा महात्मा जी मेरे जीवन में बहुत समस्याएं हैं, मैं क्या करूं, आप कोई तरीका बताओ ना समस्याएं खत्म हो जाए, मुझे रात को नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, चैन नहीं मिलता। तो महात्मा जी ने कहा तुम पहले मेरा एक काम करो फिर मैं तुम्हारा करूंगा। तो क्या करना है? तो बोला कि एक बाड़ा है बहुत बड़ा, उसमें मेरे 100 ऊंट खड़े हुए
0: जी,
1: तो कुछ ऊंट बैठे हैं तो सबको बिठा दो और जब सारे बैठ जाए तो आके सो जाना
0: जी।
1: तो व्यक्ति गया, जब गया तो 20 ऊंट बैठे हुए थे और बाकियों को नकेल पकड़ के बिठाने लगा, कच कच करके बिठाना पड़ता है ना ऊंट को थोड़ी आवाज करके, तो 20 में से 10 ऊंट खड़े हुए
0: जी।
1: अभी 10 बैठे नहीं थे, उससे पहले 10 खड़े हो गए। अब फिर उसने जोर लगाया कि किसी तरह से, तो अभी 15 बैठे तो वो पहले के 10 बैठे और खड़े हो गए, तो 15 ही बैठे। फिर जोर लगाता रहा, कभी इधर से बिठाए कभी उधर से बिठाए, तो ले दे के सुबह तक केवल 40 ऊंट बैठे, सुबह हो गई सोया नहीं
0: जी।
1: और महात्मा जी ने जब उसके सामने गया तो पूछा ऊंट बैठ गए? बोला नहीं बैठा, सारी रात में लगा रहा। बोला समस्याएं भी ऐसी हैं, 2 को बिठाओगे 4 खड़ी हो जाएंगी, 4 को बिठाओगे 6 खड़ी हो जाएंगी, अगर तुम सारी समस्याएं बैठ जाएं फिर मैं चैन से सोऊं ये इंतजार करोगे तो कभी नहीं सो सकोगे, समस्याओं को रहने दो, तुम चैन से सोना सीखो, जितनी तुमसे मैनेज होती है मैनेज करो, बाकियों को छोड़ दो, कुछ समस्याएं तुम्हारे मैनेज करने से होंगी, कुछ समस्याएं अपने आप होंगी और कुछ समस्याएं किसी और के सहयोग से होंगी, सारी समस्याएं तुमसे नहीं सुलझेंगी, इसलिए डिटैच रहो।
0: तो ये याद रखना है,
1: ये याद रखना कि सारे ऊंट कभी नहीं बैठेंगे,
0: सारे ऊंट कभी नहीं बैठेंगे, ये हमें याद रखना है। कितना प्यारा एग्जाम्पल और इजी एग्जाम्पल है, ये याद रखने के लिए सहज है एकदम जी। अगर पावर टू फेस को सरल भाषा में समझना है और इसे डेली लाइफ में कैसे हम पहचान सकते हैं कि कहाँ पर सामना करना है कहाँ पे संभालना है?
1: मान लीजिए आप रास्ते चल रहे हो, प्रकृति का भी तो कई बार सामना होता है ना, तेज आंधी आ गई तब तो आपको सामना करना है, सामना करने का मतलब है अपना बचाव करना है। अच्छा, कोई सांप बिच्छू आ गया, बचाव करना है, समाना थोड़े उस समय। लेकिन मान लीजिए किसी व्यक्ति ने चलते हुए आप पे ताना मार दिया कि देखो कैसे घोड़े की तरह से उछलता हुआ जा रहा है, उस बात को आपको समाना है
0: जी,
1: उस बात को आपको एक तरह से लेट गो कर देना है
0: जी,
1: उस बात को चित्त पे नहीं रखना है। करोड़ों मुख हैं, करोड़ों बातें, मैं किस किस को चित्त पे रखूं, मेरा चित्त इतना बड़ा है ही नहीं, काम की बातें रखूं कि फालतू बातें रखूं
0: जी।
1: तो कोई बात नहीं है, उसको मैं जैसा दिखा उसने बोल दिया, तो लेकिन मैं जो हूं वही हूं, उसके कहने से थोड़े मैं कुछ बन जाऊंगा। तो ये बात को आपको समझना है। अच्छा, मान लीजिए कोई व्यक्ति बिना ही बात आपके सामने आपके रास्ते में टेढ़ी बांकी गाड़ी चला रहा है, तो अब आप क्या करेंगे? अब उसका आप सामना नहीं कर सकते। तो गाड़ी पे टेढ़ा स्कूटर यूं ले जा रहा है, यूं ले जा रहा है, आपको किनारा पकड़ना है। आप समझ जाओ कि इसका बैलेंस नहीं है माइंड का
0: जी।
1: सामना करूंगी तो नुकसान मेरा होगा, मुझे किनारा पकड़ के जो पैसेंजर रोड पड़ा है मैं वहां से निकल जाऊं चुपचाप। तो अगर कोई ऐसा टेढ़ा बांका आदमी है तो किनारा करने में कल्याण, सामना मत करो, मैं कोई कम हूं क्या, मैं भी तुमको देख लूंगा,
0: आपको तो ओवर स्पीड के कारण खुद एक्सीडेंट हो सकता,
1: आपका नुकसान हो जाएगा
0: जी। तो इस तरीके से आप परख सकते हैं डेली लाइफ में कहां पर आपको फेस करना है
1: और कहां पे आपको समाना
0: है जी। दीदी, जैसे विघ्नहर्ता हमारे बप्पा हैं, गणपति जी हैं, हम पूजा करते हैं तो हम उनसे ये सब सीखते हैं, भगवान से सीख के अपने गुण अपने अंदर धारण करनी होती है। तो देवी देवताएं जो दिखाया गया है कि वो भी युद्ध कर रहे थे असुरों से, दानवों से, तो उसके लिए भी साहस की जरूरत पड़ती होगी, धैर्यता की जरूरत पड़ती होगी। तो साहस का मतलब क्या डर का बिल्कुल नहीं होना है, या फिर डर के बावजूद भी सही कदम उठाना, इसको साहस कहते हैं?
1: देखो, साहस का मतलब ये होता है कि किसी भी काम को करने के लिए एक दृढ़ संकल्प और प्लस आत्मविश्वास कि मैं ये काम कर सकता हूं। जैसे कोई व्यक्ति डूब रहा है और मैं किनारे खड़ा देख रहा हूं, तो मेरे में एक तो ये आत्मविश्वास है कि मैं बहुत अच्छा तैराक हूं, मैं डूब नहीं सकता
0: जी,
1: और दूसरा मेरे में ये साहस है, मेरे में हिम्मत है कि मेरा शरीर बहुत स्वस्थ है, मैं इसको पकड़ करके अगर कंधे पे भी लादना पड़े, पेट पे बिठा तो मैं इसको बिठा के ला सकता हूँ, मेरे में शारीरिक मजबूती भी है, मेरे पास अच्छी तैराकी भी है, और प्लस मेरे भीतर एक दया और एक परोपकार का भाव भी है, कल्याण का भाव भी है, डूबते को बचाना ये मेरा कर्तव्य है। ये सारी भावनाएं मिक्स होती है, हिम्मत भी है, कौशल भी है, कल्याण की भावना भी है, तब वो साहस पैदा होता है। मान लो मैं तैराक हूं ही नहीं
0: जी,
1: साहस नहीं पैदा होगा। मान लो मेरे में दया भावना नहीं है, मरता है तो मरने दो, तो भी मैं वो काम नहीं करूंगी। मान लो मैं बहुत किसी जमाने में तैराक थी और अब बहुत शारीरिक रूप से कमजोर हूं, तो भी मैं नहीं कर पाऊंगी। तो साहस के लिए कई चीजें चाहिए, युक्ति भी चाहिए, कौशल भी चाहिए, दृढ़ संकल्प भी चाहिए, और एक ऊंचा लक्ष्य भी चाहिए। जैसे मुझे एक राक्षस को मारना है, तो क्यों मारना है? क्योंकि वो कईयों को खा रहा है, रोज उसको एक आदमी चाहिए खाने के लिए, रोज एक आदमी 365 दिन के 365 आदमी मरे, इससे अच्छा ये एक ही ना मर जाए
0: जी।
1: तो मेरे सामने एक ऊंचा लक्ष्य है, तो उस ऊंचे लक्ष्य के कारण मैं उस राक्षस को मारने को तैयार हुई हूं। अगर आप स्थूल रूप में भी राक्षस मारने की बात सोचे, तो मेरे अंदर साहस है, मेरे अंदर युक्ति भी है, मुझे उसकी कमजोरी का पता है, तो मैं उस युक्ति को उसकी कमजोरी को ध्यान में रख करके और उससे भिड़ जाती हूँ और मान लो उसको मार देती
0: हूँ,
1: तो ये मेरा साहस है। लेकिन साहस के साथ एक शब्द है दुस्साहस
0: जी। ओके जी,
1: तो दुस्साहस क्या होता है? कोई काम करने का मेरे अंदर दृढ़ संकल्प भी है, उमंग भी है और मेरे में ताकत भी है, लेकिन वो कर्म गलत है। जैसे चार लड़के आपस में बात कर रहे हैं कि आज ना अपन रात को 12 बजे जो मॉल है ना इसमें घुसेंगे और कुछ ना कुछ तो सामान लेके आएंगे, तो उनमें से एक लड़का अलग खड़ा हो जाता है, कहता है मैं नहीं जाऊंगा। तो ये चारों कहते हैं क्यों भाई, तेरे में इतना भी साहस नहीं, क्या तू इतना डरपोक है? वो कहता है मेरे में साहस तो है पर मेरे में दुस्साहस नहीं
2: जी,
1: क्योंकि ये दुस्साहस का काम चोरी करना। अच्छा मान लीजिए क्लास के दो स्टूडेंट कहते हैं कि अभी जब टीचर आएगा ना तो उस टीचर का ना एक नाम निकाला है, वो उसके सामने बोलेंगे, बोलते हुए निकलेंगे, वो सुनेगा। एक कहता है मैं नहीं बोलूंगा। वो पूछते हैं क्यों तुम टीचर से इतना डरते हो? हम तो इससे बिल्कुल भी नहीं डरते। वो कहते हैं मैं डरता नहीं हूं लेकिन मैं ये दुस्साहस नहीं करूंगा, आखिर तो मेरा गुरु है पूजनीय है
2: जी।
1: तो मैं ये दुस्साहस नहीं करना चाहता। तो अगर वो काम नैतिकता के विरुद्ध है, अगर मैं फिर भी उसे करती हूं तो वो दुस्साहस है, वो साहस नहीं। साहस वो तब तक है जब तक वो कर्म नैतिक
0: जी। तो इसे परख के हमें डिसाइड
1: करना है। हाँ, अपने साहस को तब यूज करना है
0: जी, बिल्कुल। और इसके साथ साथ कई बार हमें पता होता है कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन जैसे दोस्तों के प्रेशर में आकर के, फेल्यूर या फिर रिजेक्शन के डर से, और फिर लोगों की ओपिनियन का डर, ईगो के कारण भी हम रुक जाते हैं। तो उस समय अपने इस करेज, साहस को कैसे फिर एक्टिवेट करें, अपने आप को अपना सोमान कैसे याद दिलाएं?
1: हाँ, पहले मुझे एक घटना ये याद आ गई कि आज ही मैं एक समाचार सुन रही थी। दिल्ली में कोई प्रोफेसर था जो गाना बजाना करता था और उसके घर के नीचे कुछ लोग 7-8 बैठ के शराब वराब पी रहे थे और हल्ला मचा रहे थे। तो जो नीचे आया और उसने बोला कि भाई तुम यहाँ हल्ला मत मचाओ, ऊपर पढ़ने में बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है। तो वो आठों ही उसको मारने लग पड़े और पीट पीट के उसको मार ही दिया
2: जी।
1: कल की खबर है। अब ये आठों लड़के, क्योंकि कोई 19 साल का था, 20 साल का था, 22 का था, शरीर

0: ताकत तो थी, लेकिन और वो प्रोफेसर तो थोड़ा एज वाला था। अब इनके इस क्रम को हम साहस का क्रम नहीं कह सकते, क्योंकि इन्हें तो पकड़ा जाएगा, जेल हो जाएगी। साहसी व्यक्ति की तो महिमा होती है, कई लोग आग में जलते व्यक्ति को अंदर जाके बचा के ले आते हैं
1: जी,
0: आपने देखा होगा। कई बार कई लोग कोई फिसल करके गिर गया, उसको तुरंत उठा लेते हैं, हॉस्पिटलाइज कर लेते हैं, ये साहस का क्रम है। तो बचाने वाला कर्म साहस का माना जाएगा, मारने वाला, हाँ अगर आप दुश्मन को मार रहे हो बॉर्डर के ऊपर, चार दुश्मन आपके सामने और आप अकेले हो, अकेले ने चारों को मार गिराया, तब वो साहस माना जाएगा, क्योंकि आप देश की रक्षा कर रहे हो। लेकिन आप देश के नागरिक को जो आपको एक अच्छी बात सिखा रहा है और फिर आप अपने अहंकार, अपनी इंद्रियों की गुलामी, उसके कारण अगर किसी का नुकसान करते हो, तो वो साहस नहीं माना जाता। अभी आपने कहा कि साहस के लिए वो मनोबल या स्वमान कैसे पैदा करें। एक तो हमारे ना कुछ संस्कार होते हैं जन्मजात, जो हमें मोटिवेट करती है। मान लो हमने अपने पिता को ऐसे करते देखा, मान लो हमने अपने दादा के बारे में ऐसी स्टोरी सुनी है, तो हमारे खून में वो चीज होती है। बाकी कोई करे या ना करे, लेकिन मैं जरूर करूँगा, ये मन में आता है। दूसरा, अगर हमने कुछ ऐसा पॉजिटिव साहित्य पढ़ा होता है
1: जी,
0: और उस समय कोई घटना याद आ जाती है कि अमुक समाज सेवी ने उसको कैसे बचाया था, या अमुक देशभक्त ने कैसे किसी को बचाया था, तो वो घटना भी हमें मोटिवेट करती है
1: जी।
0: और कई बार अगर हम ऐसे चिंतनशील, जो मतलब जब हमारे सामने सिचुएशन नहीं है, पर तब भी हम मन में चिंतन कर रहे होते हैं कि देखो इस जीवन की वैल्यू क्या है, इस जीवन की वैल्यू यही है कि हम किसी के काम आए। अगर हम किसी के काम ही नहीं आए, तो ये तो पत्थर ही है, पत्थर किसके काम आता है, पड़ा रहता है। तो अगर हमारा चिंतन श्रेष्ठ है, तो उस समय उस चिंतन की बदौलत भी हम अकेले भी उस क्रम में कूद जाते हैं
1: जी।
0: अगर ये चीजें नहीं है, तो फिर हम किसी के बहकावे में भी आ जाते हैं, देखा देखी किसी बाकी भाग गए तो मैं भी भाग जाऊं, फिर हम ये भी कर लेते हैं
1: जी। बिल्कुल, तो इस प्रकार से जैसे दीदी ने कहा, तो आप अच्छे साहित्य पढ़िए, अच्छे लोगों की स्टोरीज पे ध्यान दीजिए, ताकि आपके
0: अंदर साहस पैदा
1: हो। यस जी दीदी, क्या अपनी गलती स्वीकार करना, किसी को माफी मांगना, या जरूरत पड़ने पर ना कहना भी हिम्मत का हिस्सा है?
0: बहुत बड़ी हिम्मत का हिस्सा है अपनी गलती को एक्सेप्ट करना। मैंने अभी अभी एक आर्टिकल लिखा है
1: जी,
0: कि मैं एक स्कूल में गई, तो वहां एक बहन थी जो ब्रह्मा कुमारीज की स्टूडेंट नहीं थी, पर जुड़ी हुई थी
1: जी।
0: तो हमें देखते ही हमारे पास आ गई, दीदी दीदी, तो उसका मुंह देख के हमको लगा थोड़ी उदास है। हमने कहा भी क्या हुआ, तो उसने कहा दीदी बात ये है कि आज मैं स्कूल में 10 मिनट लेट आई
1: जी,
0: और प्रिंसिपल ने मुझे कहा कि तुम 10 मिनट लेट आई है तो अच्छी बात नहीं है, थोड़ा सख्त लहजे में बोला, तो मुझे रोना आ गया
1: जी।
0: तो मैं तब से अभी तक रो ही रही थी, अभी जब आप आए तो आपको देख करके मैं आपके पास आ गई
1: जी।
0: तो हमने उसको तो थोड़ा उस समय तो प्यार दिया, पुचकारा, कोई बात नहीं है, कल से तुम टाइम पे आना, ऐसे ऐसे। पर बाद में मेरा चिंतन चला कि तो हमने गलती की और ऊपर से हम रोए, तो डबल गलती हो गई
1: जी।
0: अगर हम गलती करते हैं तो हमको कहना चाहिए कि सर आपने मेरा ध्यान खींचवाया, कल से मैं 5 मिनट पहले हूँ, मैं आपकी बड़ी आभारी, जो हमारा ध्यान खींचवाता है उसके लिए तो हम थैंकफुल होते हैं।
1: राइट।
0: और अगर हम रोते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि देखो आगे से मुझे कुछ मत कहना, नहीं तो मैं रो पड़ूंगी। मैं चाहे गलत करूं या कुछ भी करूं, पर मुझे कहना मत
1: जी,
0: छुई मुई। तो वो व्यक्ति तो आधारित है, कोई मुझे पुचकारे, कोई मुझे प्यार दे, मेरे आंसू पहुंचे, मुझे धैर्य बंधाए। तो मैंने मन में सोचा 25 साल की हो गई है, लेकिन रोने का काम तो 2 साल का बच्चा भी कर लेता है
1: जी।
0: तो इसने अभी तक वही सीखा, तो 25 साल में और क्या सीखा
1: जी। सही बात है, तो जब भी हम रोए तो इस कहानी को हम याद करें।
0: तो इसलिए रोना बहादुरी नहीं है, आंसू पहुंचना बहादुरी है।
1: सही बात,
0: रोने वालों की तो लंबी लाइन, हम भी उसमें लग गए तो आंसू कौन पहुंचे।
1: अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी,
0: एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी, रियलाइज करना, और सामने वाले को थैंक्स देना कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने आज मेरी जिंदगी की एक कमी निकाल दी, जैसे कांटा निकाल दिया, आगे से मैं कभी भी लेट नहीं हूँ।
1: राइट,
0: ये बहुत जरूरी,
1: मतलब अपने नजरिया परिवर्तन करना बहुत जरूरी, ये सब घिसा पीटा चीजें, रोना
0: रोना धोना, शिकायत करना, हमारा प्रिंसिपल बड़ा सख्त है, पता है डांट मार दी, अरे तुम टाइम पे नहीं आओगे, टीचर होगे तो बच्चे टाइम पे कैसे आए,
1: तो कंप्लेंट्स नहीं,
0: हाँ कंप्लेंट्स नहीं करनी
1: जी। दीदी नो कहना कई बार डिफिकल्ट लगता है, इसके लिए भी हिम्मत चाहिए। तो कैसे पता चलेगा कहाँ नो करना है और कैसे करना है?
0: भाई मैं अपने जीवन का आपको एक एग्जांपल दे सकती हूँ
1: जी।
0: जिन दिनों में कॉलेज में थी तो मेरी एक सखी थी, बड़ी अच्छी प्यारी पक्की सखी थी। सामने उसका घर ए गली में, बीच में सड़क जाती थी
1: जी।
0: संस्कार तो अपोजिट थे एक दूसरे के। मैं ज्ञान में चलती थी, सिंपल थी, वो बड़े घर की, बड़े अमीर घर की थी, तो पैसे वाली थी, तो प्यार बहुत था, कोऑपरेटिव थी एक दूसरे की। उसके दिल की बात वो मुझे ही आके सुनाती थी, मैं उससे एक दो साल बड़ी और एक दो क्लास आगे थी
1: जी।
0: तो पहले हम क्या करते थे कि कॉलेज जाते थे तो टिफिन नहीं लेके जाते थे, केले खाते थे। 50 पैसे में उस जमाने में 4 केले आते थे बड़े बड़े
1: जी।
0: 2 केले वो खाती थी, 2 में हमारा पेट भर जाता था
1: जी।
0: फिर उसने कहा नहीं अपन टिफिन लेके आया करेंगे, ठीक है फाइनल हो गया। टिफिन लेके आई वो, मैं भी लेके आई, दोनों ने खोला, लोन में बैठे रिसेस में। मैंने पूछा तुम क्या लेके आई हो, मैंने झांक के देखा, समझ में नहीं आया वो क्या लेके आई। और उसने देखा तो मेरा तो पराठा था और आलू की सब्जी थी। तो मैंने कही क्या चीज है, कुछ नहीं लग रही है। बोलिए ना अंडे का कुछ बनाओ, तो मेरे पास मत बैठ। कहती क्यों? मैंने कहा देख हवा तेरे अंडे को छू के फिर मेरे पराठे को छूएगी तो मैं तो नहीं बैठूंगी। तो बोली मैं तो तुमको छोड़ के नहीं जाऊंगी। मैंने कहा मैं तेरे को छोड़ के जाऊंगी। तो मैं उठ के ना दूर एक पेड़ था उसके नीचे जाके बैठ गई शांति से
1: जी।
0: बाबा के याद में मैंने खाया और फिर टिफिन धुलाई करके फिर मैं आई। तो मुझे कहती है ना खाने में बिल्कुल मजा नहीं आया। मैंने कहा क्यों क्या हुआ? कहती है कि तू उठ के चली गई। मैंने कहा दोनों में से एक चीज चुन ले, चाहे अंडा चाहे मैं, कौन प्रिय? अंडा प्रिय है तो मैं कभी पास नहीं बैठूंगी, मैं प्रिय हूँ तो अंडा नहीं लाएगी। बोले मैं अंडा छोड़ दूंगी। ठीक है कल से हम साथ साथ बैठे, अंडा छोड़ दिया। तो ये ना कहने की आप में ताकत होनी चाहिए। जो चीज मेरे अनुकूल नहीं है मुझे नहीं चाहिए, चाहे मेरी फास्ट फ्रेंड है चाहे कोई भी हो, अंडे के साथ मेरा समझौता जीवन में कभी हो ही नहीं सकता
1: जी।
0: तो जब मेरी दृढ़ता होगी तो वो व्यक्ति झुकेगा, और अगर मैं झुक गई तो वो तो और ज्यादा अकड़ेगा। आज अंडा लाई कल नॉनवेज भी लाएगी
1: जी। बिल्कुल। तो इस प्रकार से
0: अपने उसूलों पर दृढ़ रहिए। जिंदगी उसूल का नाम है, जिंदगी कोई लिज लीजी चीज थोड़ी है कि आप इधर लुढ़क गए उधर लुढ़क गए।
1: दृढ़ता अपनी धारणाओं पे दृढ़ता जी। तो हम सिर्फ फेस्टिवल्स में भगवान को देवी देवताओं को याद नहीं करते, लेकिन उनके गुणों को समझ के अपने अंदर धारण करने की बात।
0: बिल्कुल। अभी आप देखिए ना देवी देवताओं के सामने भी कैसी कैसी बातें हैं। ये दुर्गा मैया बैठी हुई है, राक्षस आता है कहता है तू मेरे महल की रानी बन जा, मैं तेरे को जेवर दूंगा, मैं तेरे को सैकड़ों दासियां दूंगा, तुम ये हथियार क्यों लेके बैठी हुई हो? वो अपने लक्ष्य पे दृढ़ है, उसे ना महल चाहिए ना दासियां चाहिए ना सोना जेवर चाहिए ना 36 प्रकार का व्यंजन चाहिए। उसको चाहिए नैतिकता की स्थापना
1: जी,
0: उसको चाहिए असुरों का संहार। तो वो किसी प्रलोभन में नहीं आती, अपनी लक्ष्य पे दृढ़, और वो असुरों का संहार करती। अगर वो लिजली जी हो, छुई मोई हो, तो एक मिनट में उनके पंजे में आ जाएगी, फिर वो करे क्या की मानवता की
1: जी।
0: तो देवताओं के जीवन में आप देखोगे श्री कृष्ण जी, गेंद चली गई यमुना में, बच्चे कहते हैं गेंद चाहिए, अब वो साहसी है और पता है इसमें कालिया नाग है, उसके कारण सारा यमुना का जल जहरीला हो गया, गांव वाले इस पानी को यूज नहीं कर सकते, कालिया नाग को मारना बहुत जरूरी है
1: जी।
0: तो वो एक नैतिक उद्देश्य को लेकर के यमुना जी में प्रवेश करता है
1: जी,
0: और अपने साहस के कारण उसको मारता भी है और वो मुक्त होती है जहर से। तो मान लीजिए हमने स्टोरी को सिर्फ सुना, अच्छी बात है ना, सुनने वालों से तो सुनने वाले भी अच्छे हैं, पर अगर मैं ऐसा साहस अपने जीवन में पैदा करूं कि मेरा इष्ट श्री कृष्ण अगर ऐसा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती
1: जी,
0: तो तब हम कहेंगे कि हमने कृष्ण जी को इष्ट सही तरीके से माना है, दुर्गा जी को इष्ट सही तरीके से माना है
1: जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए गणेश चतुर्थी के दौरान आप अपने इष्ट के लिए क्या करना चाहते हैं, उनसे क्या सीख रहे हैं, वो भी आप हमें ज़रूर बता सकते हैं 9414151415 इस नंबर पर व्हाट्सअप करके। और दीदी पूछना चाहेंगे कि अगर कोई व्यक्ति लगातार मान लीजिए क्रिटिसिज्म कर रहा है या हम अपोजिशन फेस कर रहे हैं और उस समय अपने जो कॉन्फिडेंस है, साहस है, धैर्यता है, उसे कैसे बना के रखें?
0: कई लोग हमारी क्रिटिसिज्म अपने स्वार्थ के कारण करते हैं। जैसे मान लीजिए ऑफिस में 2 लोग हैं, वो व्यक्ति मेरी क्रिटिसिज्म करता है कि कल को इसकी प्रमोशन ना हो, या तो ये थोड़ा सा डाउन आ जाए, या तो ये लेट आए, या तो कोई गलती करे, या तो अपना काम करना बंद

0: ये जो करता है इसको करने दो, मेरा कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मैं अपने काम में एक्यूरेट हूँ, मैं अपनी हर चीज में एक्यूरेट हूँ, और ये एक मेरे धैर्य की परीक्षा है। तो मैं उतावली नहीं बनूंगी, मैं बदला नहीं लूंगी, प्रतिशोध नहीं लूंगी, इस वाले आचरण को फॉलो नहीं करूंगी, ये मेरा गुरु थोड़े है जो मैं इसको फॉलो करूं। मेरे गुरु तो मेरे उसूल है, या मेरे से और बहुत बड़े लोग हैं जिनसे मैंने अच्छी बातें सीखी, तो उन्होंने मुझे यही सिखाया कि किसी की चीप हरकत से ना तो इरिटेट हो, ना अपनी हिम्मत छोड़ो, और ना ही अपने लक्ष्य से डामाडोल हो, और ना ही उस व्यक्ति से बदला लो।
1: जी,
0: उचित समय की प्रतीक्षा करो धैर्य से, और उसके लिए सुभावना रखो।
1: जी,
0: ये भटका हुआ इंसान है, इसके लिए सुभावना रखो, एक समय आएगा वो जरूर बदलेगा, हो ही नहीं सकता कि वो ना बदले। तो आप थोड़ा सा जल्दबाजी से रुकिए, थोड़ी सी प्रतीक्षा कीजिए, हो सकता है भगवान ने आपके लिए कोई और बड़ी अपॉर्चुनिटी डिस्गाइज में भेजी हो। ये जो व्यक्ति है ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन के आया है।
1: राइट,
0: जैसे मैंने आपको बताया था एक बार कि हमारे यहाँ एक रामलोचन भाई था।
1: जी,
0: तो रामलोचन भाई जब ज्ञान में चला कलकत्ता में, तो उसके बाद दिल्ली में आया।
1: जी,
0: दिल्ली में एक जगह इसकी नौकरी लगी, अब ऑफिसर का ऑफिस था, उसमें इसको थोड़ा बहुत कुछ काम था। तो ये बाबा का पक्का बच्चा था, और जैसे ही 10:30 बजते थे जहां भी होता था योग में बैठ जाता था।
1: जी,
0: तो कुछ लोगों ने कहा चलो इसकी शिकायत करते हैं, इसको निकलवा देते हैं, किसी और को नौकरी मिल जाएगी। तो अफसर को बता दिया कि आपने किस बाबा को रख लिया है, तो जब देखो ध्यान में बैठा रहता है, काम धाम क्या करेगा। बोला अच्छा ऐसा है, कब कब ध्यान में बैठता है। बोला आज आप आ जाना 10:30 बजे, आपको दिखाएंगे। 10:30 बजे वो कुछ काम कर रहा था और ऐसे ध्यान में बैठ गया।
1: जी,
0: और अफसर ने देख लिया, तो अफसर ने उसको बुलाया, तो तुम क्या कर रहे थे। बोला देखो जी, इस ऑफिस के बड़े आप हो, हम आपको सलाम करते हैं ना, दुनिया का बड़ा परमात्मा, तो दिन में 3-4 बार उसको भी हम सलाम करते हैं, 10:30 बजे, 12 बजे, 5 बजे, तो उसको सलाम करने का टाइम था, मैं तो उसको सलाम करने गया था, 2 ही मिनट का टाइम होता है, सलाम करके मैं वापस आ गया। तो बोले ये तुम कैसे सलाम करते हो, थोड़ा ज्ञान सुनाया। पर तो ऑफिसर ने क्या कहा, तू वहां की नौकरी छोड़ के ना तू मेरी पर्सनल सेवा में आ जा, उसकी प्रमोशन कर दी। लोगों ने तो सोचा था इसको नौकरी से हटवा देंगे, पर हो गई उसकी प्रमोशन। तो कई बार क्रिटिसिज्म गुप्त रूप में आपकी उन्नति का साधन बन जाए,
1: इसीलिए आप
0: घबराइए मत,
1: घबराइए मत, रखिए। और उस
0: अगर वो क्रिटिसिज्म राइट है, जैसे मान लीजिए मेरा ऑफिस में आने का टाइम 10 बजे का है, मैं रोज 10:30 बजे आती हूँ, तो मुझे बदलना पड़ेगा, क्योंकि मैं गलत
1: हूँ।
0: लेकिन मैं गलत नहीं हूँ, फिर भी मेरी स्वार्थवश शिकायत हो रही है, तो फिर मुझे मस्त रहना है, निश्चिंत रहना।
1: जी, अगर जो बार बार अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, उस समय अपने आप से कैसे बात करेंगे, क्योंकि
0: धैर्य स्थिति के साथ रखना है। धैर्य को अगर हमने खो दिया, हमारे चेहरे पे शिकन आ गई, तो वो खुश हो जाएंगे कि देखो हमने इसको हिला दिया, हमारी जीत हो गई। तो धैर्य ऐसे रखना है बहन जी कि जीवन में पेपर तो आते ही है, एक बात तो ये भी मेरा पेपर है, दूसरी बात बोया हुआ बीज उगता है, हो सकता है मैंने पिछले जन्म में किसी को ऐसे किया होगा, वो बीज उग गया, जितने दिन मैंने किया उतने दिन करके वो फल भोग करके मेरी मुक्ति हो जाएगी। तीसरी बात, मालूम नहीं कब कौन शरीर छोड़ दे, क्या पता है क्रिटिसिज्म करने वाला कल सुबह उठे ना उठे, तो कोई बात नहीं, सहन करने में क्या जाता
1: है।
0: चौथी बात, क्या पता मैं रहूं ना रहूं, तो क्या जाता है सहन करने, कुछ भी स्थाई नहीं है यार। सूर्य उगता है, दोपहर होती है, सांझ हो जाती है, तो जीवन में कोई भी बात स्थाई नहीं है, ना महिमा स्थाई है, ना ग्लानी स्थाई, तो फिर मैं क्यों भयगा।
1: सही बात है, तो अपने आप से ऐसे बातें करनी है, लेकिन जब चीजें हमारे हिसाब से नहीं होता है तो सबसे पहले धैर्य क्यों टूट जाता है, धैर्य रखने और चुपचाप सब कुछ सहन करने में क्या अंतर है।
0: चलो आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ।
1: जी,
0: धैर्य मानव की पहचान है, धैर्य टूटना मतलब मानव जाति से डाउन आ जा। एक किसान बीज बोता है, कितना धैर्य रखता है।
1: जी,
0: एक माँ बच्चे को जन्म देती है, पालती है, कितना धैर्य रखती है कि एक दिन ये 20 साल का बड़ा होगा, जब वो जन्मा तब तो बिल्कुल छोटा सा है, पर उसको धैर्य, ये तो नहीं कहती है कि दिन में 20 साल का हो जाए, हर रोज कितनी मेहनत करती है।

0: पेड़ को सींचने वाला कितनी मेहनत करता है, किसी बीमार की सेवा करने वाला कितना धैर्य रखता है, नहीं नहीं इसका घाव ठीक होगा, मुझे रोज दवा लगानी, धैर्य से चलेगा
1: जी।
0: एक बार एक बंदर आदमी के बगीचे में घुस गया और उसने बहुत सारे आम तोड़ ली, तो आदमी ने उसको बहुत पीटा
1: जी।
0: तो बंदर ने अपने सरदार से जाके शिकायत की कि आदमी ने मुझे बहुत मारा। तो बंदर ने कहा आज से आदमी के बगीचे में जाना बंद, हम अपना बगीचा लगाएंगे। तो जंगल के सारे बंदरों को इकट्ठा किया और सबको काम दिया सरदार ने, एक एक गड्ढा खोदो। तो जंगल में तो फ्री जगह पड़ी होती है, एक एक बंदर ने अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा गड्ढा खोद लिया। फिर बोला पेड़ों के नीचे जो आम की गुठलियां पड़ी वो चुनके लाओ। सब चुनके ले आए, बोला एक एक गड्ढे में एक एक गुठली डालो और जो पेड़ों के नीचे मिट्टी खाद वाली मिट्टी पड़ी है वो उठा उठा करके गुठली के ऊपर डालो
1: जी।
0: वो काम भी कर दिया। फिर बोला नदी से पानी लेके आओ, अब इसमें पानी डालो
1: जी।
0: और एक गड्ढे का मालिक एक बंदर
1: जी,
0: उसमें पेड़ उगेगा, उसी को देखभाल करनी है, उसी को उसकी खाद निकालनी है, उसी को पानी डालना है और फिर जब फल लगेंगे तो वो वही खाएगा। आदमी के बगीचे में जाने की जरूरत ही नहीं। तो बंदर बैठ गए, सुबह हो गई कुछ नहीं निकला गड्ढे में से, अगली शाम हो गई कुछ नहीं निकला, अगली सुबह हो गई, बोला हमारे साथ धोखा हुआ है, अरे हमारी तो गुठली भी गई, कम से कम हम गुठली को तोड़ के उसकी गिरी तो खा लेते। तो सारे बंदरों ने फटाफट वो गुठली निकाली, गिरी निकाली, खा गए और फिर भाग गए
1: जी।
0: आज तक बंदर बगीचा नहीं लगा पाए
1: जी।
0: बंदरों को कोई काम नहीं है
1: जी।
0: स्कूल उनको नहीं जाना, सिलेंडर उनको नहीं भरवाना, बिजली बिल उनको नहीं देना, किसी की ब्याह शादी में नहीं जाना, गर्मी सर्दी के कपड़े नहीं बनवाना, खाली घूमते जंगल खाली पड़ा है, पानी भी है, खाद भी है, गुठली भी है, क्यों नहीं लगा पाते
1: जी।
0: सिर्फ एक ही चीज नहीं, धैर्य।
1: धैर्य
0: और आदमी में धैर्य। मैं उस दिन दिल्ली में थी तो गाड़ी में बैठी थी तो ड्राइवर बैठा था
1: जी,
0: भयंकर भीड़ थी, कहता है दीदी ड्राइवर में कुछ और हो या ना हो धैर्य बहुत अच्छी। मैंने कहा तुमने 16 आने की बात कही,
1: सही बात है,
0: अगर धैर्य नहीं होगा ना वो रोज गाड़ी ठोकेगा, और धैर्य होगा तो इतना धीरे धीरे निकालेगा, कभी उसकी गाड़ी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, और एक्सीडेंट होते ही तब जब धैर्य नहीं,
1: तो जीवन भी वैसा ही,
0: जीवन भी वैसा ही,
1: एक्सीडेंट तब होगी अगर धैर्य नहीं होगा तो जी। दीदी जैसे आपने बंदर की बात कही और परिणाम तुरंत नहीं मिलता, पेशेंस बनाए रखने चाहिए, तो इसके लिए मन को ट्रेन कैसे किया जा सके, धैर्यता रखो।
0: हाँ, क्योंकि मन बहुत जल्दी उतावला हो जाता है, मन को तुरंत चाहिए, और आज के जमाने में तो जल्दबाजी इतनी है, बात मत पूछो, क्योंकि साइंस ने दिखा दिया बटन दबाओ चीज हाजिर, तो वो व्यक्ति भी सोचता है मैं संकल्प करूं और चीज हाजिर हो जाए
1: जी।
0: फिर हम कहानियां सुनते हैं, भारत में तो एक परी थी, उसने कहा कि तुम इस कागज को ऐसे मोड़ दो तो तुम्हारी सब चीजें, तो हम कहानियां सुन सुन के भी हम थोड़े से ऐसी हो गई कि शायद चीजें फटाफट हाजिर हो जाती
1: है,
0: लेकिन वो कहानियों की बात अलग है, साइंस की बात अलग है, रियल जिंदगी की बात अलग है। तो हमको ये देखना है कि रोज के जीवन में कितनी चीजें बटन दबाते ही नहीं होती हैं। रोटी को आप पहले आटा गूंथते हो, तवे पे डालते हो, पलटते हो, फिर फूलती है, टाइम तो लगता है ना। चावल चूल्हे पे रखते हो, धीरे धीरे पकते हैं, अगर आपने तेज आंच कर दी तो जल जाएंगे पर पकेंगे नहीं। सब्जी भी ऐसे ही होती है, कपड़े भी ऐसे ही धीरे धीरे धुलते हैं, कोई भी काम, झाड़ू भी ऐसे धीरे धीरे लगती है, अगर आप मकान को पेंट करवा रहे हो तो ब्रश से धीरे धीरे करते हो, ऐसे थोड़े है कि पूरा कनस्तर दीवारों पे उलेंड दिया और पेंटिंग हो गई, ऐसे कभी नहीं होता है। जीवन की कितने खाना खाते हो, चबा चबा के एक टुकड़ा खाते हो, ऐसे थोड़े है कि पूरी रोटी निकल जाते हो, नुकसान हो जाए
1: जी।
0: तो जीवन की हर क्रियाएं धीरे धीरे पेशेंस के साथ
1: जी। तो ऐसे हम बात कर सकते हैं अपने आप से, दीदी ने जैसे कहा एक साथ अगर खाना पूरा खा ले तो भी तबीयत खराब, तो ये बहुत बड़ा एग्जांपल है, धीरे धीरे चीजें करनी है,
0: धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल
1: दिए जी। बिल्कुल, तो रिश्तों में जो सामने वाला अगर हमारी बात नहीं समझ रहा है, तुरंत रिएक्शन देने की बजाय जैसे आपने कहा कि पेशेंस को बना के रखना है, तो पेशेंस का अर्थ है इंतजार करना, इंतजार के दौरान अपनी इनर स्टेबिलिटी को बना के रखना। तो इनर स्टेबिलिटी को बना के रखने के लिए, क्योंकि इंसान है और मन जैसे भटकता है तो बार बार उस इंसान के बारे में सोचना, उस स्मृतियों में जाना, या अगर धोखा दिया है या किसी ने चीटिंग किया है तो उन बातों के ऊपर मन चला जाता है, तो हाँ, कैसे अपनी इनर स्टेबिलिटी को बना के रखे?
0: जाता है मन तो बार बार जाता है। देखो कल मैं क्लास कराने गई तो किंदौर की बहन आई हुई थी, उसने कहा कि मेरा पति 2.5 महीने मैं उसके साथ रही, पर वो तो बिल्कुल ही राक्षस आदमी था, मारपीट बहुत करता था, मैं उसको छोड़ के आ गई। छोड़ के तो आ गई हूँ, मैं जाना भी नहीं चाहती, लेकिन बार बार मेरा मन कहता है मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो मैंने उसको कहा कि देखो व्यक्ति चलते चलते ठोकर खाता है, गिर जाता है, तो गिरने के बाद क्या करता है, फिर खड़ा होकर के दौड़ता है। अगर वो वहीं खड़ा होकर कहता रहा इस पत्थर ने मुझे ठोकर क्यों मारी, इसने ठोकर क्यों मारी, तो उसकी तो गति ही रुक जाएगी। ठोकर लग गई, लग जाती है, जीवन है, गलतियां हम भी कर देते हैं, दूसरे भी हिसाब किताब भी होती है। लेकिन गिरना बुराई नहीं है, पर गिर के उठना अगर हम छोड़ देते हैं तो वो बुराई है।
1: जी,
0: गिर के उठो और फिर दौड़ो, अभी जिंदगी बहुत शेष है, क्योंकि तो आई 20-22 साल तक मैंने, डॉक्टर थे रेडियोलॉजिस्ट
1: जी,
0: और अपनी जॉब भी करती है। मैंने कहा तुम तो अपने पांव पे खड़ी हुई हो, तो तुमको बार बार उस बात को याद करने की क्या आवश्यकता है, जो बीत गया उसको फुल स्टॉप लगाओ, आगे बढ़ो। लेकिन व्यक्ति आगे तब बढ़ता है जब आगे उसको कुछ सार्थक कर्म दिखाई देता है
1: जी।
0: अगर वो किसी सार्थक लक्ष्य को नहीं लिए हुए ना, तो फिर पीछे मुड़ता है। एक कोरबा की बहन आई थी हमारे पास
1: जी,
0: 50 साल की उम्र में डॉक्टर पति ने उसको तलाक दे दिया। 50 साल की उम्र कोई तलाक देने की होती है? 2 बच्चे, एक बेटा एक बेटी, वो भी जॉब कर रही थी, मतलब बड़े हो गए थे
1: जी।
0: तो मैंने पूछा क्यों दिया, बोला हॉस्पिटल में कोई नर्स थी, उसने इनको बहला लिया, फुसला लिया, इनका पैसा देखा और तलाक हो गया। बोली तलाक के बाद मैं ना तो दुखी हुई ना रोई, ठीक है जाओ, और मैंने अपने जीवन का एक लक्ष्य लिया इधर एमपी में और छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसे एरियाज हैं जिनको हम कहते हैं आदिवासी एरिया
1: जी।
0: तो बोली मैंने अपने बच्चों को कहा बेटा तुम जॉब कर रहे हो, दोनों भाई बहन घर संभालो, मैं आदिवासियों की सेवा में जा रही हूँ। तो कुछ महिलाओं को हमने ग्रुप बनाया
1: जी,
0: और हम आदिवासी बस्तर एरिया में एक बिल्कुल इंटीरियर जगह में गए, वहाँ की जो महिलाएं थी उनको पढ़ना सिखाया, सिलाई सिखाई, और जब प्रसूति होती थी तो वो कुछ और ही तरीके से प्रसूति करवाते थे, बड़ा तकलीफ देह तरीका था, तो वो भी इजी तरीके से बच्चे के जन्म के टाइम कुछ करना होता है, वो भी सिखाया। तो ये सब मैं करती रही, कई समय बीत गया। कुछ लोग ऐसे भी थे जो थोड़ा सा नमक उनको दे जाते थे, बदले में शहद ले जाते थे। हमने उनको बताया शहद बहुत महंगा है, नमक के बदले शहद मत दो
1: जी।
0: तो ऐसे करके उनका जीवन स्तर उठाया, तो गवर्नमेंट तक हमारी बात पहुंची और फिर राष्ट्रपति ने हमको पुरस्कार दिया। तो अगर मैं वहां बैठी रोती रहती तो क्या होता,
1: राष्ट्रपति पुरस्कार नहीं
0: मिलता। हमारी पूरी टीम को मिला, वो मधुबन आई, पूरी उसने स्टोरी सुनाई, तो बोली उस जगह का हमने नाम रखा अबूझमाड़, जहां मैंने काम किया अबूझमाड़, मतलब जिसको कोई पूछता ही नहीं था, जिसकी कोई जान पहचान ही नहीं थी
1: जी।
0: और वो एक लक्ष्य पूरा करके उस जगह का मैं फिर घर आई। घर आई तब तक वो जो नर्स थी उसने पति को छोड़ दिया था
1: जी,
0: तो वो फिर आया भटकता हुआ कि मुझे रख लो। तो मैंने बच्चों को कहा भाई तुम्हारा बाप है रखो, तो उसको हमने फिर जगह दे दी, बैठक में ठीक है रहो, पहले जैसा तो अभी नहीं रहेगा संबंध, लेकिन 2 रोटी मिलती रही। वो तो चली गई सब कुछ लेकर के, पैसा वैसा जो
1: जी।
0: तो जिस व्यक्ति के जीवन में एक लक्ष्य होता है, समाज की सेवा करूं, दूसरों के दुख दूर करूं, वो अपना दुख भूल जाता है। नहीं तो वो बैठा बस बार बार ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, भाई सोचने से क्या होगा, कहीं जीवन को अच्छे लक्ष्य में नियोजित करो ना
1: जी। जी बिल्कुल, तो इस प्रकार से आप दूसरा रास्ता ढूंढना शुरू करिए, और यूनिवर्स हो या भगवान, जिनके ऊपर भी आप विश्वास करते हैं, वो आपके लिए ज़रूर दूसरा रास्ता खोल के रखे होंगे जी। तो दीदी, गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य पर पावर टू फेस और समाना और धैर्यता, इन सभी चीज़ों को हमें अपनाना है, इसके साथ साथ करेज भी चाहिए। एक बात पूछना चाहेंगे कि अगर कोई वर्क प्लेस में या घर पे कोई बार बार ना हमारे कंधे पर बंदूक चला रहा है, हमें प्रोवोक कर रहा है कि आपको गुस्सा है या आपके द्वारा किसी और को नुकसान पहुंचाने की कोशिश, तो उस समय हमें कैसे जवाब देना है, कैसे फेस करना है उस परिस्थिति?
0: महाराष्ट्र में एक संत हुई
1: जी,
0: नामदेव जी, शायद नामदेव जी उनका नाम,
1: हाँ जी नामदेव जी।
0: तो कुछ लोगों ने कहा कि नामदेव को गुस्सा नहीं आता और इनको गुस्सा दिलाना है। तो एक दिन वो जो एंटी पार्टी था उनके पास एक गरीब आदमी आया, बोला मेरी बेटी की शादी है मुझे पैसा चाहिए। बोला पैसा हम तेरे को भरपूर देंगे, तू नामदेव को गुस्सा दिलवा दे
1: जी।
0: तो बोला ठीक है। तो था ब्राह्मण, सुबह सुबह गया नामदेव के पास, खाना खाना है खाना खाना है। नामदेव ने कहा आजा भैया बैठ जाओ, सबका स्वागत करते थे, बिठाया पत्नी ने खाना परोसा। अब हुआ क्या कि पत्नी खाना परोसने के लिए ऐसे झुकी तो वो आदमी कूद करके पत्नी की पीठ पे बैठ गया, क्योंकि उसको तो गुस्सा दिलाना था। तो जैसे ही वो पीठ पे बैठा, पत्नी ने उसको ऐसे पीछे से संभाल लिया जैसे बच्चे को संभालती, और नामदेव भी पास में ही बैठा था, इसको गिरने मत देना। बोला हाँ जैसे मैं अपने बच्चे को संभालती हूँ ना ऐसे संभालूंगी, गिरने नहीं दूंगी, गुस्सा फिर भी नहीं आया। तो उस आदमी को तो आखिरी तरीका अपनाने पे भी गुस्सा नहीं आया, तो उसने फिर माफी मांगी, बोला असली बात ये है कि मुझे पैसा चाहिए था और उन्होंने ये शर्त रखी थी, तब मैंने ये तकनीक अपनाई कि जब पत्नी की पीठ पे बैठूंगा तो गुस्सा आएगा, तो बहुत ही बेहुदी हरकत है, फिर भी आपको गुस्सा नहीं आया। तब नामदेव ने कहा कि तुम उनको जाकर के बोल देना कि नामदेव को गुस्सा आया था, ताकि तेरे को पैसे मिल जाए
1: जी। तो ये है जीवन की महानता है।
0: हाँ।
1: और इसके साथ साथ गुस्सा कैसे ना आए, कैसे हम रिएक्ट ना करें, रिस्पॉन्ड करें।
0: हाँ।
1: वो कला सीखने की बात है। दीदी लगता है कि फ्यूचर तो अनसर्टेनिटी है ना, तो धैर्यता रख के क्या होगा और पेशेंस रख के, मतलब धैर्यता रख के क्या होगा, अगर सामने वाला ने आज हमें कुछ बोला, इंसल्ट किया है, तो ईंट के जवाब तो पत्थर से देना चाहिए।
0: देखिए मेरे लिए सबसे अमूल्य चीज मेरी मानवता, मेरे गुण और मेरी आंतरिक शांति
1: जी।
0: अगर मैंने इनको ही बेच दिया तो फिर मेरे पास बचेगा कि, तो सामने वाला तो बेच के खड़ा हुआ है और मेरे लिए ये चीजें बड़ी अमूल्य हैं, तो बेशक मुझे सहन करना पड़े, झुकना पड़े, लेकिन मुझे अपनी इन चीजों को बचा के रखना है, अपनी मानवता को, अपने मूल्यों को, अपनी आंतरिक स्टेबिलिटी को। और फ्यूचर अनसर्टन नहीं है, जिसका आज अच्छा है उसका कल भी अच्छा हो
1: जी,
0: क्योंकि कल आज की ही परछाई है।
1: तो इसलिए आज को अच्छा करना है,
0: आज को अच्छा करना है, आज को मुझे बिगाड़ना नहीं है, आज बिगड़ गया तो कल भी बिगड़ेगा,
1: कल या फिर कोई भी जन्म हो सकता
0: हाँ,
1: है। इसलिए इस जन्म में और आज
0: आज आज को मुझे मूल्यों के आधार पे, मानवता के आधार पे, अपनी कॉन्शियसनेस के आधार पे अच्छे से जीना
1: जी। तो दीदी राजयोग मेडिटेशन भी क्या हमारे सामना करने की शक्ति, समाने की शक्ति, साहस, धैर्यता, इसको बढ़ाने में सहायक है?
0: हाँ बहुत सहायक है, क्योंकि राजयोग मेडिटेशन की सबसे बड़ी खूबी ये है कि हम इसमें अंतर्मुखी होकर के सबसे पहले अपने आप की चेकिंग करते हैं, दूसरे ने क्या किया वो बात बाद में है, पहले मैं अपने को देखूं कि मेरे भीतर क्या चल रहा है, मैं क्या सोच रहा हूँ और क्या मेरी सोच ठीक है। अगर यही सोच लोगों को दिख जाए तो वो लोग मुझे किस श्रेणी में रखेंगे। तो मेडिटेशन अंदर शक्ति पैदा करता है, पॉजिटिव सोच देता है, बात को उलझाना नहीं लेकिन बात का समाधान करना है, इसके ऊपर हमारा फोकस करवाता है। अगर मैं उलझाने लगूं, जैसे ईंट का जवाब पत्थर से मान लो हम देते हैं, तो वो तो और ज्यादा उलझ गई, पीढ़ियों की दुश्मनी हो गई, अब उसमें मेरा बेटा आपका बेटा इन्वॉल्व हो जाएगा, मेरी अगली पीढ़ी आपकी पीढ़ी इन्वॉल्व हो जाएगी। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे इसको यहीं स्टॉप करना है। कीचड़ उछाला, आपने उछाला, मैंने उछाला, ये तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, मुझे लंबी नहीं करनी है, मुझे उसको स्टॉप करना है। तो मेडिटेशन कहता है स्टॉप, स्टॉप करो और मित्रता का हाथ बढ़ाओ
1: जी, बिल्कुल।
0: तो हाँ, तो इससे क्या होता है कि हमारा मनोबल बढ़ता है, परमात्मा के प्रति हमारा विश्वास है, तभी मेडिटेशन होता है, और हमको अच्छाई में विश्वास है, अच्छाई जीतेगी
1: जी।
0: मेडिटेशन कहता है भले थोड़ा टाइम लगेगा पर जीतेगी अच्छाई,
1: बिल्कुल। तो इस विश्वास के साथ अपने जीवन को निखारने की कोशिश करेंगे। और दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य पर हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने सिखाया और गाइड किया।
0: सभी भाई बहनों को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई, और इस गणेश चतुर्थी पे कुछ नवीनता करें, ऐसी हमारी शुभकामना है, क्योंकि सदा की तरह मनाते आएंगे तो वही पाएंगे जो हमेशा पाते आए
1: जी।
0: लेकिन इस बार कुछ नवीनता करना, गणेश जी का कोई ना कोई गुण अपने जीवन में धारण करने का दृढ़ संकल्प अवश्य कर।
1: जी, तो श्रोताओं दीदी जी का यहीं पर धन्यवाद करते हैं। दीदी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हम सभी के साथ दीदी उर्मिला जी थे। और आज के कार्यक्रम से आपने क्या सीखा या क्या अच्छा लगा या आप क्या करने वाले हैं? हर परिस्थिति में आप नहीं डरेंगे या साहस रखेंगे, धैर्य रखेंगे। तो इस प्रकार से अगर आपके मन में कोई संकल्प है तो आप हमें 94-14-15-14-15 पर भेज सकते हैं। तो आप अपने इनर पावर को बिल्कुल कमज़ोर करने नहीं दीजिएगा। और जब जब अगर आपको लगे कि कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा अपने आप को डाउन महसूस कर रहे हैं तो ये कार्यक्रम आप बार बार सुन सकते हैं। सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM। मुस्कुराते रहिए। नमस्ते। अभी आप सुन रहे थे साप्ताहिक अंत कार्यक्रम का पुनः प्रसारण। रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। ध्यान मन को स्थिर करता है और आत्मा की गहराई में झांकने का मार्ग दिखाता है। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: ओम शांति। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बातें मुलाकातें इस कार्यक्रम में। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे, और आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ विशेष मेहमान जिन्हें आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, बीके किरण जी हैं, और आप विशेष पंचकुला में अपना ब्रह्म कुमारीज का सेंटर संभालते हैं। काफी लंबे समय से इस आध्यात्मिक क्षेत्र में आपने काम किया है और कर रहे हैं, और साथ ही साथ आपकी विशेषताओं में आप गीत भी गुनगुनाते हैं। तो आपके बहुत सारे गीत नए आपने बनाए, कुछ एल्बम्स आपने बनाए हैं जो संस्था को डेडिकेट किया है, और आज हम लोग आपके बारे में और आपके कुछ विशेषताओं के बारे में और पंचकुला के बारे में कोशिश करेंगे कि हम लोग आपसे अच्छी बातें सुन पाए। तो आप सभी की तरफ से विशेष हमारे आज के मेहमान जिन्हें आप देख रहे हैं उनका बहुत बहुत दिल से स्वागत है। नमस्ते जी, किरण जी, स्वागत है आपका।
1: नमस्कार। ओम शांति।
0: ओम शांति जी, ओम शांति जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छे
0: जी। जी जी, चलिए हमारे साथ हिमाचल से आर्टिस्ट संतोष जी भी जुड़ गए हैं अपना हारमोनियम के साथ। ओम शांति संतोष जी। और मैं चाहूंगा कि दीदी के स्वागत में एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप छोटा सा डेडिकेट करें, एक मुखड़ा एक अंतरा उनके स्वागत में।
2: जरूर।
0: आप हिमाचल से हैं और आप पंचकुला से हैं, बहुत ही नजदीक हैं शायद।
2: ओम शांति
0: जी। ओम शांति।

0: ओम शांति।
1: ओम शांति जी,
0: अरे
1: बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत ही प्यारा संगीत आपने सुनाया, बहुत बहुत शुभकामनाएं
0: ओम
1: आपको, अच्छा
0: शांति।
1: लगा हमें। और हमारे साथ कुछ मेहमान, वरुण जी और शिवम जी, रामलाल जी, सभी ने याद भेजा है। बीके, बीना जी, रीना जी, सभी ने याद भेजा है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं सभी को। आइए मैं सीधे आपको बीके किरण जी से जोड़ना चाहूंगा। नमस्ते, स्वागत है आपका। और मैं चाहूंगा वर्तमान में आप किस जगह पे हैं, थोड़ा सा बताइए अपने उस स्थान के बारे
0: ओम शांति।
1: में। ओम शांति।
0: वर्तमान समय लगभग 11 साल से मैं पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के अंदर रायपुर आली एक कस्बा है, जहाँ
1: अच्छा,
0: पर सेंटर सेंटर के जिम्मेवारी बाबा ने दी है, परमात्मा ने दी है, तो वो संभाल रहे हैं। और 11 सालों से यहाँ पर सेवा शुरू हुई और परमात्मा ने जैसे ड्यूटी लगाई तो यहाँ पर आना हुआ। ज्यादा बड़ा कस्बा तो नहीं है, पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के अंदर छोटा सा कस्बा है जहां पर मैं अभी वर्तमान में रह रही हूँ। वैसे 25 साल से समर्पित जीवन ब्रह्मा कुमारीज में टीचर के रूप में बिताया। अम्बाला से ज्ञान मिला और अम्बाला कैंट के विभिन्न सेवा केंद्रों से होते हुए 11 साल से रायपुर रानी सेवा केंद्र की जिम्मेवारी संभाल रही।
1: जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया, धन्यवाद, शुक्रिया आपका। आइए आगे बढ़ते हुए मैं चाहूंगा कि पंचकुला में या विशेष जहां पर आप हैं, वहां पर किस तरह का खास बात, जैसे कहते हैं ना, हर जगह की अपनी खूबसूरती होती है, अपनी एक विशेष शैली होती है, तो मैं चाहूंगा कि वहां की कुछ ऐसी यूनिक चीजें बताएं कि वो स्थान को रिप्रेजेंट करें।
0: पंचकुला ट्राई सिटी में एक शहर है जिसमें मोहाली, चंडीगढ़ और पंचकुला एक साथ
1: हाँ
0: ही है। और वहां से लगभग 25 किलोमीटर दूर ये कस्बा है जहाँ रायपुरानी, जहाँ मैं रह रही हूँ। और ये बहुत मशहूर है, एक किला है यहाँ। ये रायपुर रानी एक रानी के नाम से मशहूर है, जहाँ तक सुना गया है कि यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी आए थे इस कस्बे के अंदर। तब यहाँ राजा का राज्य था और जब गुरु गोविंद सिंह जी आए तो राजा ने उनको ज्यादा भाव नहीं दिया, ज्यादा सम्मान नहीं दिया। और जब वो थोड़ा आगे चले गए तो उनको पता चला कि ऐसे ऐसे संत आए थे, तो रानी को पता चला, तो रानी यहाँ से पैदल निकल के गई उनके पास, उनके पीछे पीछे गई। और रानी ने बहुत सम्मान दिया और सम्मान के साथ उनको महल में लेके आई थी। तो गुरु गोविंद सिंह ने उनको ये कहा कि आज से ये रायपुर आपके नाम से मशहूर हो जाएगा, तो इसीलिए रायपुर रानी कहा गया। पहले ये सिर्फ रायपुर था लेकिन इसके बाद ये रायपुर रानी बन गया। और यहाँ पर एक गुरुद्वारा भी है जहाँ पर गुरु गोविंद सिंह के नाम से, जब वहां जो जहाँ वो रुके थे वहां पर गुरुद्वारा है और सभी लोग जाते हैं, काफी मशहूर है।
1: जी, अच्छा, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, आप इस ब्रह्मा कुमारी संस्था से कैसे जुड़े, क्या कोई कहानी रही या फिर आपके परिवार में से कोई थे जिनको देखकर आपको आना?
0: हाँ, ब्रह्मा कुमारी इसके बारे में एक्चुअली हमें कुछ भी नहीं पता था, मैंने कभी सुना भी नहीं था अपनी लाइफ में कि ब्रह्मा
1: जी
0: कुमारी से कोई संस्था है। अचानक से एक्चुअली पापा एयरफोर्स में थे तो उन्होंने जाना शुरू किया, उनके कोई मित्र थे जिन्होंने उनको बताया और उन्होंने जाना शुरू किया। और हमें नहीं पता था एक्चुअली, जब वो घर में आते थे तो वो बातें बताते थे लेकिन ना हमें पता था ब्रह्मा कुमारी क्या है, ना उससे पहले हमें हम किसी ब्रह्मा कुमारीज को हमने कभी देखा भी, सफेद साड़ी वालों को हमने कभी नहीं देखा था। लेकिन जब पापा आकर बताते थे सेंटर से कि ये सुनाया, ऐसे ऐसे दीदियां रहती हैं वहां पे, तो हमारा भी मतलब इंटरेस्ट जागा कि हम भी जाकर देखें। तो पापा
1: अच्छा
0: मम्मी तो
1: अच्छा
0: जाते थे कोर्स करने के लिए और हम संडे के संडे जाते थे, लेकिन छोटे थे, मैं एक्चुअली क्लास 1 में पढ़ती थी तब, और भी भाई
1: अच्छा
0: बहन
1: अच्छा
0: छोटे थे तो हम संडे को वैसे ही देखने जाते थे। और सेंटर का माहौल बहुत अच्छा लगता था, बहुत पीसफुल लगता था, पर ज्ञान समझ नहीं आता था, ना ही हमें सुनने का इंटरेस्ट था, बस वैसे ही चले जाते थे। फिर धीरे धीरे बहुत सारे लोग यहाँ से जुड़ने लगे संस्था से, तो वहाँ संस्था सेंटर से एक भाई आते थे हमारे घर पे आके वो कोर्स करवाते थे, तो जब वो कोर्स करवाते थे उनकी बातें में बहुत अपील करती थी, प्रैक्टिकल लगती थी, तो हम उनसे बहुत सारे सवाल पूछते थे और उन सवालों का जवाब भी हमें मिलता था। तो जब सवालों का जवाब मिलता था तो हमारा और इंटरेस्ट बढ़ता गया, अगले दिन के लिए हम और सवाल इकट्ठे कर लेते थे, भक्ति से जुड़े, समाज से
1: अच्छा
0: जुड़े बहुत सारे सवाल, तो वो सवालों का जवाब, हर सवाल का जवाब मिलता था। और जो वो प्रैक्टिकल में हमें होमवर्क दे के जाते थे, जब हम वो करते थे तो हमें बहुत अच्छा फील होता था और वो प्रैक्टिकल लगता था। तो ऐसे धीरे धीरे हमारा इंटरेस्ट बढ़ने लगा और हमने सेंटर जाना शुरू कर दिया। और सेंटर जाते रहे, वैसे तो कॉलेज में जाते थे तो छुट्टी नहीं होती थी, तो संडे के संडे जाते थे, लेकिन फिर पापा की ट्रांसफर हो गई बैंगलोर और मैं तब बीए फर्स्ट ईयर कर चुकी थी, और मुझे था कि मेरे पास म्यूजिक सब्जेक्ट था और
1: अच्छा
0: म्यूजिक मेरा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट था। और जब ट्रांसफर बैंगलोर हो गई तो वहाँ कर्नाटक म्यूजिक और यहाँ हिंदुस्तानी म्यूजिक, वहाँ भाषा की बड़ी प्रॉब्लम थी और मुझे ग्रेजुएशन करना था म्यूजिक में, तो यहाँ अंबाला में कृष्णा दीदी थे, तो मैं जा रही थी, तो उन्होंने मुझे एक बात कही कि आप सेंटर पे रुक जाओ। मैंने कहा दीदी अभी तो मुझे पढ़ना है, तो कहते कोई नहीं सेंटर पे
1: बिल्कुल
0: रह के पढ़ लो। तो मैंने कहा सेंटर पे रह के पढ़ सकते हैं क्या, तो बस ऐसी बात हुई और उसके बाद मैं चली गई बैंगलोर। पर
1: अच्छा
0: बैंगलोर में
1: अच्छा
0: जाके देखा कि लैंग्वेज की बहुत प्रॉब्लम है, और मुझे वो दीदी की बातें याद आती थी कि यहीं रह के पढ़ लो, उन्होंने तो वैसे ही कह दिया था। तो मैंने पापा को कहा कि मैंने पढ़ना है आगे, और एक्चुअली सारा परिवार ज्ञान में होने के कारण खान पान की भी धारणा थी, तो हॉस्टल में अलाउड नहीं करते थे, तो दीदी को फोन किया कि ऐसे ऐसे मैं चाहती हूँ कि मैं वहीं आके पढ़ूँ, तो क्या मैं सेंटर पे रह सकती हूँ। तो उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया, छुट्टी दी कि आप सेंटर पे रह के पढ़ सकते हो, और मैंने 2 साल सेंटर पे रह के ही ग्रेजुएशन कंप्लीट की और कॉलेज जाती थी, और मुझे सेंटर का बहुत सहयोग मिला। हाँ वैसे अलाउ नहीं करते, लेकिन मुझे 2 साल सेंटर पे रहने को मिला और ब्रह्मा कुमारीज के बारे में बहुत अच्छे से समझने को मिला। उसके पहले शायद मैं इतना नहीं समझ पाई थी, हाँ लेकिन उस जब मैं रही सेंटर पे तो ब्रह्मा कुमारीज की दिनचर्या, ब्रह्मा कुमारीज का रूटीन, ब्रह्मा कुमारीज का लक्ष्य सब मुझे क्लियर हुआ। और ग्रेजुएशन
1: बिल्कुल
0: करते करते मैंने अपने आप से डिसाइड कर लिया कि मुझे यही जीवन जीना है। हाँ ग्रेजुएशन के बाद मैंने ब्रह्मा कुमारी ही बनना है, तो इस तरह से ये लक्ष्य मैंने डिसाइड किया। क्योंकि जब नजदीक से देखा बहनों की लाइफ तो पता चला कि इससे अच्छा जीवन हो नहीं सकता। जब हम समाज के लिए, देश के लिए और परमात्मा के लिए कुछ कर पाए, अपने जीवन को श्रेष्ठ बना पाए, ऐसा जीवन और कहीं मिल नहीं सकता, इसलिए ऐसा डिसीजन मैंने उसी टाइम ले लिया था।
1: जी, चलिए, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। आशा करूंगा हमारे सभी दर्शक मित्रों को भी अच्छा लग रहा है, और डॉक्टर संगीत जी भी आ गए हैं, संगीत रघुवंशी जी।
2: ओम
1: नमस्ते,
2: शांति।
1: ओम शांति।
2: ओम
1: कैसे हैं
2: शांति।
1: डॉक्टर साहब? चलिए, बहुत ही अच्छा लग रहा है आप लोगों को यहाँ देखकर, क्योंकि हमारे साथ आज के सारे ही गेस्ट जो हैं संगीत में माहिर हैं और गीत गुनगुनाने का शौकीन है। तो मैं चाहूंगा कि डॉक्टर संगीत रघुवंशी जी, मैं चाहूंगा थोड़ा सा एक आध गीत, कोई भी जो आपके मन के भाव हो, वो आज किरण जी को सुनाएंगे, क्योंकि हमेशा किरण जी को सुनते हैं हम लोग। जी

0: पीछे मन दौड़ने लगता है। हो गया।
1: वाह, बहुत बढ़िया चलिए, बहुत ही खुशी हुई। और आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए हमें, आप किस तरह की सर्विसेज अभी दे रहे हैं?
0: मैं डेंटल सर्जन हूँ और करीब करीब सभी प्रकार की सर्विसेज यहाँ पर हम प्रोवाइड करते हैं। मैं गाजियाबाद में करता हूँ प्रैक्टिस,
1: जी,
0: और एक साल से करीब करीब मैं इस ज्ञान में आया हूँ।
1: क्या बात है। अच्छा, मैं चाह रहा था कि क्या डेंटल कैंपेन भी लगा सकते हैं पब्लिक सेवा के लिए, सर्विसेज के लिए?
0: लगा सकते हैं, पहले
1: जी
0: ये लायंस क्लब वगैरह के थ्रू या रोटरी के थ्रू करीब
1: अच्छा,
0: करीब काम की वजह से टाइम नहीं मिल पाता।
1: हाँ। चलिए, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि वैसे जनरल कैंप जो है लगते हैं, आई कैंप्स लगते हैं, पर बहुत कम देखा कि डेंटल का कुछ कैंपेन ऐसा लगा हो लोगों को
0: नहीं
1: जागरूक
0: सर, डेंटल कैंप बहुत लगते थे।
1: करने।
0: जब मैं कॉलेज में था, जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, उस दौरान
1: जी
0: कम
1: जी
0: से कम
1: जी
0: मैंने करीब 7-8 कैंप्स तो तभी किए थे मैंने फाइनल ईयर में इंटर्नशिप में।
1: अच्छा,
0: और उसके बाद जब प्रैक्टिस में आया तो प्रैक्टिस में भी काफी कैंप्स किए, बहुत ज्यादा कैंप्स किए थे मैंने,
1: ओके।
0: काफी कॉमन है डेंटल कैंप तो। और ये
1: चलिए,
0: आपका स्कूल्स में लगता है, स्कूल डेंटल हेल्थ प्रोग्राम बोलते हैं SDHP,
1: अच्छा, हाँ
0: तो वो
1: हाँ
0: भी
1: हाँ
0: काफी लगाए थे हम लोगों ने।
1: चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। आइए
0: जी
1: आगे बढ़ते हैं, मैं फिर से किरण जी से जोड़ना चाहूंगा आप सभी को।
0: ओम
1: किरण जी, मैं
0: शांति।
1: चाहूंगा कि ओम शांति, आध्यात्मिक जीवन शैली को सभी लोग चाहते तो अपनाना, लेकिन थोड़ा कहीं ना कहीं एक का छोटा सा गैप रहता है कि भाई अभी नहीं, बाद में करेंगे, अभी नहीं, बाद में करेंगे। तो वो चीज आपके लाइफ में ऐसा नहीं हुआ कि आपको बाद में करना चाहिए सब कुछ, इतना जल्दी कर लिया आपने?
2: एक्चुअली जब प्राप्ति अभी चाहिए तो फिर करना बाद में हो, ऐसा तो हो नहीं सकता ना।
1: बिल्कुल
2: कहते हैं
1: बिल्कुल,
2: जब करेंगे तभी मिलेगा, जैसा करेंगे वैसा मिलेगा, जितना करेंगे उतना मिलेगा। तो करना तो पहले होता है और
1: जी
2: प्राप्ति
1: जी
2: बाद में होती है। तो ऐसा कभी लगा भी नहीं, और बचपन से ही जैसे मन में एक चाहत थी कि वो जीवन नहीं जीना जो दुनिया जी रही है, कुछ अलग से कुछ कुछ करना है, समाज के लिए कुछ करना है, कुछ अलग सा जीवन हो, लेकिन पता नहीं था कि क्या करना है। तो एक
1: बिल्कुल,
2: मन में एक मतलब शादी को लेकर भी डर था कि नहीं शादी नहीं करानी है, तो लेकिन क्या करना है ये भी नहीं पता था, क्योंकि उस समय शादी ना कराना, आज तो बच्चे रहते हैं लेकिन उस समय बहुत बड़ी बात होती थी। तो
1: बिल्कुल,
2: मन में था और भगवान ने वो रास्ता दिखाया, और उस रास्ते पे चल के बहुत अच्छा लगा कि जो मेरे मन की इच्छा थी वो मेरी पूरी हुई, और इस जीवन में चलते हुए इतनी प्राप्ति हुई है, इतना कुछ मिला है कि हम ये सोच भी नहीं सकते। क्योंकि जब हम अपना जीवन एक सही दिशा में जीते हैं तो उस दिशा में हमें अनेक प्राप्तियां होती है, और वो जीवन के उम्र के अंतिम पड़ाव में हमें प्राप्ति नहीं चाहिए, प्राप्ति पूरे जीवन
1: जी
2: में चाहिए। तो जब हर समय हमें शांति चाहिए, सुख चाहिए, खुशी चाहिए, प्यार चाहिए, आनंद चाहिए, तो अंतिम पड़ाव में क्यों करना है, करना भी तो तभी है ना। तो इसलिए जब करेंगे तो मुश्किल नहीं है, कोई भी कार्य जब हम दूर से दूसरों को करते हुए देखते हैं तो शायद वो मुश्किल लगता है, लेकिन जब हम खुद से उस क्षेत्र में कार्य करते हैं, हाँ किसी कार्य को करने के लिए जब हम ठान लेते हैं तो फिर मुश्किल नहीं लगता है। और मुझे अपनी लाइफ में कभी कोई मुश्किल ऐसी नहीं आई। हाँ परीक्षाएं तो बहुत आती है, परिस्थितियां तो बहुत आती है, लेकिन ऐसा नहीं
1: बिल्कुल,
2: लगा कि मैं इसको कर नहीं पाऊंगी या मैं इस रास्ते पे चल नहीं पाऊंगी, बल्कि मुझे ये रास्ता बहुत सहज लगता है। और मैं तो हर किसी को यही कहूंगी, करके देखो, चल के देखो, अपने आप सहज होता जाएगा। दूर से देखने से मुश्किल लगता है, पर पर जब इस मार्ग पे उतरते हैं तो सहज होता जाता है, तो सबके लिए सहज
1: बिल्कुल
2: है।
1: चलिए, बहुत अच्छी बात है आपने बताया। और कई लोग ऐसे मानते हैं कि वे अच्छा कर्म करो, दिल साफ रखो, तो इन सभी चीजों की जरूरत पड़ती है क्या?
2: गाइडेंस तो बहुत जरूरी है ना,
1: जी
2: और सही गाइडेंस आध्यात्म के अलावा कहीं से मिल नहीं सकती। ये आध्यात्मिक ज्ञान है जो डायरेक्ट परमपिता परमात्मा हमें, हम बच्चों को गाइड करते हैं, हम आत्माओं को गाइड करते हैं, जीवन जीने की सही कला सिखलाते हैं, और वो सही कला सीख कर ही तो हम कुछ कर पाते हैं। और जब तक हम आध्यात्म को जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, उसको अपने लाइफ में अडॉप्ट नहीं करेंगे, तब तक वो जीवन हम नहीं जी पाएंगे जो हम चाहते हैं,
1: जी
2: सेटिस्फेक्शन
1: जी
2: नहीं होती। और मैं ये देखती हूँ कि हम जो जीवन जी रहे हैं हम पूरी तरह से सेटिस्फाइड हैं, और जो आत्मा की जरूरत है, आध्यात्म का मतलब ही है आत्मा की जरूरत की पूर्ति। दुनिया वाले शरीर की जरूरत तो पूरी कर रहे हैं, लेकिन आत्मा की जरूरत कौन पूरी करेगा? उसके लिए तो परमात्मा से ही जुड़ना होगा, और परमात्मा की सही पहचान आध्यात्म के द्वारा, ब्रह्मा कुमारीज के द्वारा दिया जा रहा है। तो सभी जरूर सुने, समझें, और उसको एडॉप्ट करके चलेंगे तो बहुत कुछ प्राप्त कर सकते।
1: जी, चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताया, और आशा करूंगा कि हमारे सभी दर्शक मित्र जो हैं आपकी बातें सुनकर कहीं ना कहीं अपनी आध्यात्मिक चेतना को फील कर रहे होंगे और उसको इम्प्रूव करने के लिए काम भी करेंगे आगे चल के। तो एक और बात मैं पूछना चाहूंगा, जहाँ पर जैसे कुछ लोग हमारे जो है मोटिवेशनल होते हैं, जिनको देख के हमको लगता है कि हमें बहुत ज्यादा प्रेरणा मिलता है, तो हम उस मार्ग को या उनकी बातों को अपने लाइफ में अपनाते हैं, तो आपके जीवन में ऐसा कौन व्यक्ति रहे जिनको देखकर आपको बहुत मोटिवेशन मिला और आप उनके पद चिन्हों पर चलते हुए आगे बढ़े?
2: एक्चुअली सारी दीदियां ही मेरे लिए मोटिवेशन रही हैं, लेकिन जब मैंने इस मार्ग पे मैं चली तो
1: जी
2: मुझे नारी शक्ति का पहले पता नहीं था कि नारी शक्ति क्या क्या कर सकती है। जब इस आध्यात्मिक मार्ग पे आए तो पता लगा कि नारी कितना सशक्त होकर कार्य कर रही है, उसके पहले नहीं पता था। तो एक नारी,
1: अच्छा
2: हाँ जी, तो अपने जैसे हमारे कृष्णा दीदी हैं, और वो प्रजापिता ब्रह्मा के टाइम से ही ज्ञान में है, उनकी शक्ति को देखा, उनके सेंटर चलाने के ढंग को देखा, लव एंड लॉ के बैलेंस को देखा, और उनके संरक्षण में पले बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना, और उनसे प्रेरणा लेके इस जीवन को, इस मार्ग पर लाया, और आज आज वो हमारे बीच है और हमें कदम कदम पे गाइड करते हैं। कहीं भी कुछ भी जरूरत होती है तो उनकी गाइडेंस लेते हैं, और उनकी गाइडेंस से ये जीवन बहुत सरल, सहज और आसान होता चला जाता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जीवन में कई बार हम लोग जो है ना, कुछ और भी चीजें होती हैं, जैसे कि हम लोग कुछ गुरु हैं या फिर लीडर्स हैं, उनको देख के भी हमें मोटिवेशन मिलता है। तो ऐसे किसी गुरु या फिर किसी को पढ़ा होगा आप, उनके बारे में थोड़ा सा बताइए, उनसे आपने कुछ सीखा या जाना?
2: एक्चुअली कभी इस जन्म में ना भक्ति की ना गुरु की याद, लेकिन किसी के भी अच्छे विचार जो प्रैक्टिकल हैं वो तो मोटिवेट करते ही हैं, और उन विचारों को अगर हम अपने जीवन में स्थान देते हैं तो हम प्रैक्टिकल में फील करते हैं कि उन विचारों का कितना बड़ा रोल होता है हमारे जीवन में। तो सभी का सम्मान है, लेकिन प्रॉपर मैं किसी गुरु को कभी भी ऐसे फॉलो नहीं किया। सभी का सम्मान है, हर आत्मा का अलग अलग पार्ट है, रोल है, और जिनकी जो बातें अच्छी लगती है वो सुनते हैं, समझते हैं, और उसको प्रैक्टिकल जब जीवन में लाते हैं तो उससे बहुत कुछ प्राप्ति होती है।
1: जी, चलिए, काफी अच्छी बात आपने बताया, और किस तरह से आपने सभी दीदियों को देखकर आपको मोटिवेशन मिला, इसकी वजह से आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे। तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं चाहूंगा कि आप एकाध गीत भी आप गुनगुनाएं, थोड़ा सा हमें भी अच्छा लगेगा। संतोष जी भी
0: जरूर
1: मुस्कुरा रहे हैं कि भाई दीदी को सुनने को मिलेगा।
2: अपने एल्बम का ही एक गीत है, एल्बम
1: जी
2: का नाम ही है जब से तेरा प्यार मिला, और गीत भी
1: जी
2: है जब से तेरा प्यार मिला, मैं वही थोड़ा सा गुनगुनाती हूँ।
1: जी स्वागत।
2: जब से तेरा प्यार मिला दिल रहता है खिला खिला,

0: चलिए बहुत बहुत सुनकर बहुत ही आनंद आया आपके गीत को सुनकर, अच्छा लगा हमें। चलिए आगे बढ़ते हुए मैं चाहूंगा कि अब जैसे कि पंचकुला के बारे में आपने ऐतिहासिक बातें तो बताई, वहाँ का जीवन शैली या फिर वहाँ पर किस तरह के ज्यादा लोग रहते हैं, यूथ के बारे में कुछ प्रोग्राम्स वगैरह आप सोशल एक्टिविटीज सेंटर के माध्यम से या किसी और एक्टिविटीज के साथ आप एनजीओ के साथ जुड़ के कुछ सेवाएं करते हो तो उनके बारे में बताइए।
1: हाँ, एक्चुअली ये कस्बा है जिसके अंदर लगभग 84 गांव हैं। तो
0: अच्छा।
1: वो, हाँ जी, एक ही इसी कस्बे के अंदर छोटे बड़े लगभग 84 गांव हैं। और
0: अच्छा।
1: ये 84 गांव की जिम्मेवारी, सेवा कहें, बाबा ने दी है। तो गांव गांव में जाके प्रदर्शनी लगाते हैं, या नशा मुक्ति का प्रोग्राम करते हैं, या लोकल जैसे कॉलेज है, कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, यूथ के लिए सेंटर पे भी प्रोग्राम अरेंज करते हैं। अभी हमने एक पद यात्रा निकाली थी अपने ही जोनल, सब जोनल लेवल पे। तो बहुत अच्छे प्रोग्राम हुए जिसमें यूथ के लिए भी प्रोग्राम हुए, महिलाओं के लिए भी प्रोग्राम हुए। और ये पद यात्रा लगभग 8-10 सेंटरों को कवर करते हुए रायपुरानी पहुंची थी। और लगभग 6-7 प्रोग्राम यहाँ सेंटर पे, स्कूल में, कॉलेज में हुए। बहुत अच्छा रहा, लोग जुड़ते जा रहे हैं। और सबको पता है कि ब्रह्मा कुमारी जो कार्य कर रही हैं वो कार्य बहुत अच्छा है, प्रैक्टिकल है, और सभी इस कार्य में अपना सहयोग भी पूरी तरह से देते हैं। और काफी लोगों का जो इस एरिया में नशे की काफी लत है लोगों की, तो जो भी लोग छूटते हैं वो नशे से मुक्त होते जा रहे हैं और औरों को भी मुक्त करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो टाइम टू टाइम हम ये प्रोग्राम अरेंज करते हैं, गांव में भी जाते हैं और सेंटर पे भी
0: अच्छा,
1: सभी को बुलाते हैं।
0: चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया, लोगों को नशा मुक्त करने का अभियान आप चला रहे हैं अपने गांव में कस्बों में। निश्चित तौर पे ये बहुत जरूरी है आज के समय में, और सरकार भी इसके लिए खास सोशल जस्टिस विभाग जो है ब्रह्मा कुमारी संस्थान को इस वर्ष के लिए विशेष प्रोजेक्ट दिया है जिसमें 10 करोड़ लोगों को नशा मुक्त बनाने का संकल्प है।

0: दे के हमें अगर बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हर बार कोशिश करके बहुत बार ये चीज़ें जो है ऐसा लगता है कि हर बार हम लोग पीछे रह जाते हैं।
1: नहीं, पॉजिटिविटी भी एक एक खुराक है। और जहां तक मैं समझती हूँ, अगर ब्रह्मा कुमारीज में जो ज्ञान दिया जा रहा है वो
0: जी
1: संपूर्ण
0: जी
1: पॉजिटिव है, और पॉजिटिविटी क्रिएट करता है ये सभी को पता है। लेकिन जब तक इस ज्ञान की रेगुलरिटी ना हो, जब तक हम रेगुलर तौर पे इस ज्ञान को नहीं सुनेंगे, तो जीवन की परिस्थितियों से लड़ने की जो ताकत चाहिए, जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती है और वो हमें नेगेटिव कर देती है। और कई बार ऐसा देखा गया है कि परिस्थितियों का सामना न कर सकने की वजह से लोग ज्ञान से भी दूर हो जाते हैं। लेकिन ये ज्ञान वो शक्ति क्रिएट करता है, शक्ति जनरेट करता है। अगर हम इस ज्ञान को सही रीति समझ जाते हैं और इसको रेगुलर तौर पर, जैसे शरीर के लिए भोजन कितना जरूरी है, पानी कितना जरूरी है, इसी तरह से ये ज्ञान आत्मा के लिए, मन के लिए बहुत जरूरी है। और हम शरीर को तो खुराक रेगुलर तौर पर देते हैं, तभी इससे कार्य ले पाते हैं, इसको चला पाते हैं। इसी तरह से अगर मन को, आत्मा को खुराक मिलती रहे पॉजिटिविटी की, हाँ, तो ये हर शहर में जो सेंटर खुला है, ये इसीलिए खुला है, हाँ, ताकि हर किसी को वो खुराक मिले। तो हर कोई आधा घंटा निकाल कर अगर सेंटर पे आते हैं तो वो पॉजिटिव वाइब्स को फील भी करते हैं और उससे एनर्जाइट होते हैं, और वो एनर्जी लेकर अपने जीवन को भी सही दिशा में ले जाते हैं, चाहे परिस्थिति कोई भी आए। लेकिन परमात्म शक्ति उनके जीवन में कार्य करती है और परिस्थितियों से लड़ने की ताकत उन्हें मिलती है, हिम्मत और उत्साह उनके जीवन में बढ़ता जाता है। तो एक समय ऐसा भी आता है कि
0: जी
1: शुरू शुरू में तो ऐसा लगता है परिस्थितियां बहुत है, लेकिन एक समय ऐसा भी आता है कि परिस्थितियां बहुत होती है पर व्यक्ति को फर्क नहीं पड़ता। हाँ, उसकी स्थिति इतनी ऊंची हो जाती है कि परिस्थितियों का असर उसकी लाइफ में नहीं पड़ता। लेकिन वो रेगुलर तौर पर अगर हम उन सेंटर से जुड़े और पॉजिटिविटी की खुराक लेते रहे, तो तभी हो सकता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताया। आशा करूंगा कि ये बातें जो है हमें याद रखना है, और रेगुलर अगर पॉजिटिविटी को हम लोग धारण करते हैं या सुनते हैं, निश्चित तौर पे वो असर होता है। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि हम लोग बहुत अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति भी हैं, समझदार हैं, अध्यात्मक भी कुछ सुनते हैं, लेकिन फिर भी वो ऐसा हो जाता है कि सिचुएशन के टाइम पे वो चीज़ें एक्शन में नहीं दिखाई देता। तो वो ऐसे सिचुएशन को या ऐसे परिस्थिति में आप क्या कहना चाहिए?
1: एक एक तो है सुनना और दूसरा है उसको समझना। अगर हम, क्योंकि सुनते तो लोग भी हैं, कोई सत्संग में जा रहे हैं,
0: जी
1: कोई कहीं जा रहे हैं, बहुत कुछ सुनते हैं, लेकिन जो सुनते हैं उसका असर हमारे मन पर कितना है। आप देखिए, कोई किसी की बात जब हमारे मन को छू जाती है तो हमारे जीवन में परिवर्तन हो जाता है। किसी की कोई नेगेटिव बात भी अगर हमारे मन को छू जाती है तो हमारा जीवन नेगेटिव की तरफ परिवर्तित हो जाता है। तो मन को छूना बहुत जरूरी है। तो मैं ये समझती हूँ कि जो भी हम सुनते हैं उसको हम समझने का प्रयास करें, और जब उसको समझ लेते हैं और वो बातें हमारे मन को टच करती हैं, तो उन बातों का असर परमानेंट रहता है। बाकी सुना हुआ तो भूल भी जाता है, उसका असर भी खत्म हो जाता है, लेकिन जो बात हमारे मन तक पहुंच जाती है, अंतर मन तक पहुंच जाती है, उसका असर शायद लाइफ में कभी भी खत्म नहीं होता है, और उससे हमें शक्ति
0: जी
1: मिलती रहती है।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताया। और हमारे सोलंकी सर जो हैं वो भी याद कर रहे हैं, और बड़े प्यार से ओम शांति ब्रह्मा कुमारी किरण बहन जी, आपका बहुत बहुत सराहनीय कदम और प्रेरणादायक कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लग रहा है, महत्वपूर्ण है और उत्साहवर्धक है। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं लिख के भेजा है। थैंक यू कर्नल साहब, बहुत ही अच्छी बातें आपने लिख के भेजा, धन्यवाद। चलिए, अब फिर से मैं चाहूंगा कि अगर आपके मानस पटल पर जो हमें देख रहे हैं, आपको कोई सवाल दीदी से पूछना है तो वेलकम है। आप कमेंट सेशन में आप कोई सवाल पूछना हो तो पूछिएगा जरूर, आपको टाइम देते हैं। 2 मिनट का, और तब तक हम लोग संतोष

0: ओम शांति।
1: ओम शांति। थैंक यू संतोष भाई, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया। और रमेश काका जो है विशेष आपको याद कर रहे हैं, बाबा संतोष भाई जी, वेरी मोटिवेशनल सॉन्ग का
0: थैंक
1: है। आप अफ्रीका में रहते हैं और रेडियो मधुबन को रेगुलर इस कार्यक्रम को सुनते हैं, देखते भी हैं। सोलंकी सर ने भी आपके लिए बहुत शुभकामनाएं दी हैं, बहुत ही अच्छा गीत आपने सिलेक्टेड सॉन्ग्स। चलिए अब मैं चाहूंगा कि दीदी से एक बहुत ही प्यारा सा संदेश सुन के हम कार्यक्रम को पूरा करते हैं। जी किरण जी, स्वागत है और एक संदेश सुनाइए।
2: ओम शांति।
1: ओम शांति।
2: मैं सभी सुनने वालों से यही चाहूंगी, यही शुभ भावना, शुभ कामना है कि आप रेडियो मधुबन सुनकर अपने जीवन को भी मधुबन जैसा बनाए, मधुरता और मतलब एक त्याग और मधुरता का संगम। तो ये रेडियो मधुबन जो कार्य कर रहा है, बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, बहुत प्रेरणादायी कार्य कर रहा है, बहुत अच्छा लोगों को मोटिवेट कर रहा है। तो ये रेडियो मधुबन का भी बहुत बहुत धन्यवाद, रमेश भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, और सभी को बहुत प्यारा प्यारा गीत भी सुना रहे हैं, और सभी भाई बहनों को एक मंच से उनका परिचय करवा रहे हैं। तो इस रेडियो मधुबन के लिए मेरी बहुत शुभ भावना, शुभ कामना है कि आप सदा आगे बढ़ते रहें, सदा उन्नति करते रहें, बहुत ऊंचे मकाम तक पहुंचे, और सुनने वाले भी सभी के जीवन में बहुत सुख, शांति, खुशी, प्रेम, आनंद का झरना सदा बहता रहे। ओम शांति।
1: ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच किरण दीदी जी, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें आपने अपने अनुभव के हमारे साथ साझा किया। और निश्चित तौर पे हमारे जो मित्र हैं जो सुन रहे थे उन सभी को भी कहीं ना कहीं आपकी बातों से मोटिवेशन मिला होगा। और खास करके युवा साथी जो यंग गर्ल्स हैं, अगर वो प्रोग्राम सुन रहे हैं तो कई बार उनको ऐसा लगता है कि हम अपना पढ़ाई भी जारी रखें या फिर अध्यात्म करें या फिर करियर को बनाएं, ऐसी बहुत सारी समस्याएं उनके मन में रहती हैं। लेकिन आपको सुनने के बाद शायद उनको रास्ता मिल गया होगा कि ऐसा नहीं है, हम लोग अगर चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं और हमारी जो इच्छा शक्ति हो उसको प्रबल करें और अध्यात्म की तरफ आपको आना है तो आपको कोई रोक नहीं सकता, आप उसके लिए भी रास्ता निकाल सकते हैं। तो चलिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं फिर से एक बार, किरण दीदी एंड संतोष जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं करते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, ओम शांति।
2: ओम शांति।

0: वो कुछ 70 और 75 के आसपास होंगी, लेकिन जीवन से भरपूर थी। मैं उन्हें आजी कहती थी। उनके चांदी जैसे चमकते बाल, आत्मविश्वास से भरा चेहरा, उनकी गुनगुनाती खुशियां बिखेरती हंसी मैं कभी भूल ही नहीं पाई। जब भी मैं उनसे मिलती उन्हें गुनगुनाते पाती।
1: सोने जैसा रंग है मेरा, चांदी जैसे बाल।
0: और उनका ये उल्टा गाना सुनकर मैं मुस्कुरा देती तो वे कहती, क्या हुआ, जो मेरा रंग गेहुआ और बाल सफेद हैं तो। अरे देख, चांद पर भी तो ऊबड़ खाबड़ गड्ढे हैं। फिर अपने पोपले मुंह से हंसते हुए मुझे ही चढ़ाने लगती। उनकी उस हंसी में कुछ तो था जो मुझे उनकी ओर खींचता था। मैं धीरे धीरे उनके करीब होती चली गई। मैं जितना जितना उनसे मिलती उतने ही उनके जीवन के पन्ने मेरे सामने खुल जाते। उनके जीवन का हर पन्ना एक अलग रंग लिए हुए था। उन रंगों में रंगी मैं आज फिर उनके पास जा बैठी। उनके बारे में सब कुछ जानने का निश्चय कर मैंने धीरे से पूछा, आजी आपकी आंख को क्या हुआ है? क्योंकि उनकी एक आंख हमेशा बंद रहती थी। मेरे पूछे प्रश्न पर उन्होंने अपनी दूसरी आंख सहलाते हुए कहा,
1: कुछ खास नहीं रे, जब मैं बच्ची थी तभी ब्याह दी गई। मेरी सास को मेरी आंखें बहुत पसंद थीं। एक दिन उन्होंने अपने हाथ से बनाया काजल मेरी आंख में डाला और मेरे आगे अंधेरा छा गया। मैं वहीं गिर पड़ी। जब होश आया तो एक झरोखा बंद हो चुका था।
0: मैं उन्हें देखती रही। इतनी बड़ी बात कोई हंसकर कैसे बता सकता है? परंतु उन्होंने बताया था, लेकिन कदाचित अपने जीवन के इस पन्ने में छुपा सच वे बहुत खूबसूरती से अपनी हंसी के पीछे ढक चुकी थी। मैंने फिर पूछा, और आपका ये हाथ? उनका बायां हाथ पीछे की ओर मुड़ा हुआ था। वो फिर मुस्कुराई, बोली,
1: अरे कुछ नहीं, एक दिन मैं खाने में नमक डालना भूल गई। जब मेरे पति खाना खाने बैठे तब मुझे ध्यान आया। मैं भागती हुई गई और उनकी थाली में नमक रखा, लेकिन जल्दबाजी में डिब्बे का ढक्कन ढीला लग गया और सारा नमक थाली में गिर पड़ा।
0: मैंने पूछा, फिर?
1: अरे फिर क्या, पति ने मेरा हाथ मरोड़ दिया।
0: तो आप किसी डॉक्टर के पास?
1: अरे नहीं रे, मुझ मुई को कौन ले जाता डॉक्टर के पास।
0: मैंने आश्चर्य से उनकी ओर देखा, लेकिन उनके चेहरे पर कोई शिकायत न थी। मैंने उनसे उनके बच्चों के बारे में पूछा तो बोली,
1: है ना, इसी बगीचे में खेलते सारे मेरे ही तो हैं।
0: और आपके पति?
1: वे तो भगवान के पास खुशी से रह रहे हैं। अब मेरे जैसी एक आंख और एक हाथ वाली के साथ रहने से तो अच्छा ही है। है कि नहीं?
0: कितने दिन हुए आपके पति को गुजरे? मैंने सहानुभूति से पूछा।
1: हुए होंगे यही कुछ 15-16 साल।
0: तो तब से आप अकेली रहती हैं?
1: अकेली? अरे अकेली कैसे, तुम सब तो हो मेरे साथ। अब वैसे भी जिंदगी तो इम्तिहान लेती ही रहती है, तो क्या हमें जीना छोड़ देना चाहिए?
0: फिर थोड़ा गंभीर होते हुए बोली,
1: तुमने चींटियों को गौर से देखा है कभी? वो अपने भार से 50 गुना ज्यादा वजन उठाकर भी नहीं दबती। हम तो फिर भी इंसान हैं, क्यों दुख दर्द के नीचे दबे रहे?
0: इतना कहकर वे अपने जीवन की किताब को समेटते हुए उठ खड़ी हुई। मैं उन्हें जाते हुए देखती रही। कहीं पढ़ी कुछ पंक्तियां याद हो आईं कि कुछ लोग रंगोली की तरह होते हैं, जहां भी जाते हैं अपने रंग छोड़ जाते हैं।
1: आज उन आजी ने भी मेरे मन में अपने अमिट रंग छोड़ दिए थे। दोस्तों, ये बेहद खूबसूरत लघु कथा आप सुन रहे थे जिसका शीर्षक था जीना इसी का नाम है, जिसे लिखा है अनघा जोग लेकर जीने। सच है, जीना इसी का नाम है। आजी उम्र में, शारीरिक उम्र में एक्चुअली हमसे बड़ी होती हुई हमको बहुत बड़ा सबक देती हैं। हम कम उम्र वाले होते हुए, अपरिपक्व होते हुए भी थक जाते हैं, हार जाते हैं परिस्थितियों से, मगर आजी का जो चरित्र अनघा जोग लेकर जी ने गढ़ा अपनी लघु कथा के माध्यम से, ये बहुत बड़ा मोटिवेशन है। और मुझे लगता है कि अनघा जोग लेकर जी की कलम को वरदान प्राप्त है कि वो जो भी लिखेंगी वो सिद्ध हो जाएगा। चाहे वो संरक्षक हो, तेरी मेरी कहानी हो, या आज की जो लघु कथा मैंने पढ़ी जीना इसी का नाम है। कमाल की रही तीनों कथाएं। आपको जानकर खुशी होगी कि अनघा जोग लेकर जी ने कुछ उपन्यास भी लिखे हैं। बाकी कैसी लगी आपको जीना इसी का नाम है, आप जरूर अपने फीडबैक, कमेंट शेयर कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं हमारे साथ, और शेयर जरूर करें इन लघु कथाओं को ताकि इनमें छिपे छोटे बड़े संदेश जो हैं वो मानवता के काम आते रहें और संवेदनाओं का प्रवाह बना रहे। मैं अमित वाधवा इस वादे के साथ आपसे इजाजत लेता हूं कि अगले पड़ाव पर एक नई कहानी, लघु कथा लेकर फिर आपके बीच में आऊंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, रखिए अपना बेहतर ख्याल। अमित का बहुत बहुत नमस्कार।
2: नमस्कार, मैं हाकम खान आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं माने आवे पिया जी हिचकी, मारो वादी लो चितारे माने आवे हिचकी। सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए संपर्क करावे हमारे टेलीफोन नंबर है 9001313752, 9001313752, ये हमारे टेलीफोन नंबर है। मधुबन रेडियो की तरफ से प्रसारण किया जा रहा है राजस्थानी लोकगीत आवे माने।
3: अभी बजे हैं दोपहर के 2:01 का यह समय स्वयं को और परमपिता परमात्मा को दो।

0: नमस्ते दोस्तों, पता है जब मैं छोटा था तो मुझे कीड़े मकोड़ों से बहुत डर लगता था। एक बार जब क्लास में मेरे कंधे पर एक मकड़ी गिरी तो मैं इतनी जोर से चीखा कि मेरी क्लास के सभी बच्चे डर गए। सुना दोस्तों, बादल गरज रहे हैं, लगता है बारिश होने वाली है।
1: सुमी, दीपू और बेला आज मीना के घर पे इकट्ठा हुए हैं, चलो हम भी वहीं चलते हैं।
2: क्या हुआ सुमी, तुम डर क्यों गई?
3: चाची, जब भी बादल गरजते हैं ना तो ऐसा लगता है जैसे पूरा का पूरा आसमान ही गिर जाएगा। मैं तो बहुत डर जाती हूँ।
4: इसमें डरने की क्या बात है सुमी, बारिश से पहले बादल तो गरजते ही हैं।
2: दीपू, हम सभी को किसी न किसी चीज से डर लगता है, तुम्हें भी तो किसी चीज से डर लगता होगा, है ना?
5: हाँ, सांपों से। एक बार मैंने एक सांप को अपने घर के बाहर रेंगते हुए देखा। वो था तो मुझसे बहुत दूर, मगर उसे देखते ही मैं सीधा अंदर भागा माँ के पास।
6: अगर ध्यान से चलो और सांपों से दूर रहो तो वो बिना वजह किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते। दीपू,
4: सो तो है। बेला दीदी, अब इतनी बड़ी हो गई हैं, आप तो किसी भी चीज से नहीं डरती होंगी, है ना?
6: दीपू, मैंने आज तक ये बात किसी को भी नहीं बताई, लेकिन मुझे गहरे पानी से बहुत डर लगता है। कुआं, नदी, तालाब, इन सब के पास जाते ही मेरे पांव कांपने लगते हैं।
7: चाची, मैं अब जल्दी ही तैरना सीखूंगी, इससे मेरे पानी का डर छू हो जाएगा।
2: और तुम अपने डर को छू करने के लिए क्या करोगी सुमी?
3: चाची, मैं तो जोर जोर से गाऊंगी।
8: जोर से गाऊंगी, शोर मचाऊंगी।
2: और तुम दीपू?
4: मैं तो अपने पास हमेशा एक डंडा रखूंगा, सांपों को दूर रखने के लिए।
3: अरे मीना, तुमने तो हमें बताया ही नहीं, तुम्हें किस चीज से डर लगता है?
9: मुझे जब मैं और राजू छोटे थे ना सुमी, हमें अंधेरे से बहुत डर लगता था।
2: राजू, मीना, याद है तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे डर को कैसे छू किया था?
10: हाँ माँ।
6: तुम्हारे पिताजी ने ऐसा क्या किया था मीना, हमें भी बताओ ना।
4: हाँ मीना,
3: बताओ ना।
9: सुनो, जब हम पहुँचे घर के अंदर, कमरे में था घना अंधेरा, टप टप टप कुछ टपक रहा था, जोर से धड़का दिल ये मेरा।
11: छत बाबा ने बटन दबाया, बल्ब ने उजियारा फैलाया, हंसे सभी हम जोर जोर से, क्योंकि नल था खुला हुआ।
9: थर थर थर हम लगे कांपने, क्योंकि हिली थी ये धरती, झांका जब खिड़की से बाहर, रेल थी वो छुक छुक करती।
12: और उस दिन के बाद से जब भी हमें डर लगता है हम इसी किस्से को याद करते हैं।
3: चाची, आपको कभी भी डर नहीं लगा?
2: सुमी, एक बार मुझे बहुत डर लगा था रानी को देखकर।
4: रानी को देखकर?
3: ओफो दीपू, सुनने दो ना, सुनाइए ना चाची।
2: तो सुनो, रानी को पैदा हुए सिर्फ एक हफ्ता हुआ था। वैसे तो रात को जब भी रानी नींद से जागती थी तो उसकी आवाज सुनकर मेरी भी आँख खुल जाती थी, लेकिन उस रात वो बिना हिले बिल्कुल चुपचाप लेटी रही।
4: फिर क्या हुआ चाची?
2: फिर मैंने रानी को पास से देखा, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं हिल रही थी। जब मैंने उसे छुआ तो जाकर उसने जरा सा पैर मारा, लेकिन वो छुए बिना हिलडुल ही नहीं रही थी।
6: चाची, आप तो काफी घबरा गई होंगी।
2: मेरा तो दिल ही बैठ गया बेला। यही नहीं, रानी ने दूध तक पीना बंद कर दिया, याद है ना मीना?
9: हाँ माँ। पता है बेला दीदी, वैसे तो रानी को जब भी भूख लगती थी वो रोने लगती थी,
2: मगर उस दिन ना ही रानी के मुंह से आवाज निकली और ना ही वो हिली डुली। पता है बच्चों, जब मैंने रानी को गोद में लिया तो वो बिल्कुल ठंडी लग रही थी। रानी को इस हालत में देखकर मैं सचमुच डर गई।
11: फिर आपका डर कैसे छू हुआ माँ?
2: राजू बेटा, मैंने सोचा मेरा डर तो तभी छू होगा जब मुझे ठीक से पता चल जाए कि रानी को हुआ क्या है। मैं उसे तुरंत डॉक्टर बाबू के पास ले गई।
6: चाची, फिर डॉक्टर बाबू ने रानी का इलाज किया है ना?
2: नहीं बेला, डॉक्टर बाबू ने हमें बताया कि रानी की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है और उसका अस्पताल में इलाज कराना जरूरी है, इसलिए मैं और मीना के पिताजी रानी को अस्पताल ले गए। वहाँ के डॉक्टर ने कहा कि रानी को अस्पताल लाकर हमने बहुत समझदारी का काम किया। रानी की हालत काफी गंभीर थी।
3: फिर तो रानी ठीक हो गई ना चाची?
2: हाँ सुमी, रानी ठीक हो गई। अस्पताल के डॉक्टर और नर्स बहन जी ने रानी का इलाज किया और उसकी जान बचा ली।
4: और आप रानी को घर वापस ले आए, है ना चाची?
2: नहीं दीपू, रानी का पूरा इलाज करने के लिए हमें उसे अस्पताल में 2 दिन तक रखना पड़ा।
7: पर रानी को हुआ क्या था चाची?
2: रानी को ठंड लग गई थी बेला। डॉक्टर ने कहा कि पैदा होने के कम से कम 1 महीने तक के नवजात बच्चों का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। उस उम्र के बच्चों में बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी नहीं होती।
7: तो चाची, हमें कैसे पता चल सकता है कि बच्चे को कोई बीमारी है?
2: घर में सभी को इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए बेला। जैसे अगर बच्चा दूध पीना छोड़ दे, या हिलना डुलना बंद कर दे, या उसका शरीर छूने में ठंडा लगे,
7: तो उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, है ना चाची?
2: यही नहीं बेला, कभी कभी उन्हें उल्टियाँ भी आ सकती हैं, या वो सुस्त हो जाते हैं, या उन्हें बुखार चढ़ जाता है। इन सभी को खतरे के लक्षण मानकर बच्चे को तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए, नहीं तो बीमारी जानलेवा भी साबित हो सकती है।
3: माँ, आपने अच्छा किया जो रानी को समय पर अस्पताल ले गई। आपके इस डर ने ही रानी को बचा लिया।
7: तुमने ठीक कहा मीना, चाची के डर की कहानी सुन के मैंने तो ठान लिया है।
2: क्या ठान लिया बेला?
7: चाची, कविता दीदी है ना?
2: कविता दीदी?
7: मेरी मौसी जी की बेटी। जब उनका बच्चा पैदा होगा, मैं पहले महीने में इस बात का ध्यान रखूंगी कि मुन्ने को ठंड ना लगे, और उस पर पूरी नजर रखूंगी ताकि अगर कोई खतरे के लक्षण दिखाई दे तो तुरंत उसका इलाज करवा सके।
2: और तुम यही बात अपनी कविता दीदी को भी समझा देना। नवजात शिशु में खतरे के लक्षण दिखते ही डॉक्टर की सलाह जरूरी है।
7: जरूर समझाऊंगी चाची।
3: अरे, अब तो बादल भी नहीं गरज रहे, बारिश भी रुक गई है। मीना, तुम्हारे साथ बात करते करते मैं तो अपना डर भूल ही गई।
12: देखा सुमी, कितना मजा आया।
8: मजा आया, डर को भगाया।
0: तो समझे दोस्तों, अगर 1 महीने या उससे छोटी उम्र के बच्चे में कोई भी खतरे के लक्षण दिखाई दे तो उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना बहुत जरूरी है। अब चलो चलकर देखते हैं मीना और मिट्ठू क्या कर रहे हैं।
3: होता जब बच्चा बीमार दिखते हैं कई आसार।
8: ठंडा शरीर ना हिले डुले, ले जाओ अस्पताल बिना भूले।
0: क्या कविता बनाई मीना और मिट्ठू ने मिलकर। अब एक गाने का मजा भी लेते हैं।

0: गाना तो सचमुच कमाल का था। अब चलते हैं मीना की क्लास में।
1: क्या कहा, क्यों?
0: अरे भाई खेलना नहीं है। चलो जल्दी चलो।
2: बच्चों आज हम खेलेंगे एक नया खेल। मैं आपको तीन चार कड़ियां बता के एक पहेली पूछूंगी और आपने मुझे बताना है उसका सही जवाब, ठीक है?
3: जी बहन जी।
2: आज की पहली कड़ी है एक मशहूर इमारत के बारे में। पहली कड़ी, दिल्ली की मशहूर इमारत भारत की है शान, जिसने बनवाया था उसको था वो मुगल सुल्तान। कोई बता सकता है इसका नाम?
4: पता है मैंने ना,
5: ये होगा, क्या होगा वो, क्या होगा?
6: दूसरी कड़ी बताइए ना बहन जी।
2: ठीक है गोलू, दूसरी कड़ी सुनो बच्चों। सामने इसके जामा मस्जिद, पीछे यमुना बहती, आजादी के दिन तो सबकी नजरें इस पर रहती।
7: समझ गया बहन जी, इंडिया गेट।
2: इंडिया गेट तो सही जवाब नहीं है मोनू।
8: हाँ बहन जी, क्योंकि इंडिया गेट ना तो यमुना के पास है ना ही जामा मस्जिद के, इसलिए इंडिया गेट सही जवाब नहीं हो सकता।
2: बिल्कुल सही कहा कृष्णा ने। तो बच्चों सोचो सही जवाब।
7: अगली कड़ी बताइए ना बहन जी।
2: ठीक है मिली, तीसरी कड़ी बताती हूँ। तो सुनो बच्चों, तीसरी कड़ी, जब लहराता इस पे तिरंगा लगता खूब कमाल, आम भी है और खास भी है, ये रंग है इसका लाल।
6: मैं समझ गई बहन जी, लाल किला।
2: शाबाश मीना, बिल्कुल सही जवाब। तो मजा आया बच्चों?
3: बहुत मजा आया बहन जी।
0: भाई मजा तो हमें भी खूब आया। अब मुझे इजाजत दीजिए, जल्दी ही मिलेंगे एक नई कहानी, नए गीत और एक नए खेल के साथ। तब तक अपनी प्यारी मीना को चिट्ठी लिखना मत भूलना, चाहे वो आपके सुझाव हो, आपके विचार हो या आपके अनुभव।
6: और मेरा पता है मीना की दुनिया, यूनिसेफ, पोस्ट बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 110003।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक हमारे आसपास का छठा पाठ बूंद बूंद दरिया दरिया पृष्ठ 51 बात पुरानी। यह है 650 साल पुराना घड़सीसर। सर यानी तालाब। इसे जैसलमेर के राजा घड़सी ने लोगों के साथ मिलकर बनवाया था। इसके दोनों तरफ पक्के घाट, सजे हुए बरामदे, कमरे, बड़े हॉल और न जाने क्या क्या था। यहाँ लोग मिलते जुलते थे, जलसे होते थे और गाने बजाने का प्रोग्राम भी होता था। इसके घाट पर बनाए गए स्कूल में आसपास के बच्चे पढ़ने आते थे। सभी इस बात का ध्यान रखते थे कि तालाब गंदा ना हो और सफाई में भी हाथ बटाते थे। मीलों तक फैले इस घड़सीसर में बारिश का पानी इकट्ठा होता था। तालाब इस तरह बनाया गया था कि जब वह पानी से भर जाता तब बाकी पानी बहकर नीचे बने हुए तालाब में चला जाता। जब वह भी लबालब भर जाता तो पानी तीसरे तालाब में चला जाता। इस तरह 9 तालाब एक दूसरे से आपस में जुड़े थे। पूरे साल पानी की कोई परेशानी नहीं होती थी, पर आज घड़सीसर जैसे उजड़ सा गया है। 9 तालाबों के रास्ते में मकान और कॉलोनियां बन गई हैं। यहाँ इकट्ठा होने वाला पानी अब तालाब की तरफ न जाकर बेकार बह जाता है। पृष्ठ 52 अल बिरूनी की नजर से। 1000 से भी ज्यादा साल पहले एक यात्री भारत आए। इनका नाम था अल बिरूनी। अल बिरूनी जिस देश से आए थे उसे आजकल उज़्बेकिस्तान कहते हैं। अल बिरूनी ने बहुत ही बारीकी से चीजों और जगहों को देखा और उनके बारे में लिखा, खास तौर से वे जो उन्हें अपने देश से अलग लगें। चलो देखें कि अल बिरूनी उस समय के तालाबों के बारे में क्या लिखते हैं। उन्होंने लिखा है, यहाँ के लोग तालाब बनाने में तो माहिर हैं। अगर हमारे देश के लोग इन्हें देखेंगे तो हैरान ही रह जाएंगे। बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों को लोहे के कुंडों और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते हैं। इन चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियों की लंबी कतारें होती हैं। लोगों के उतरने चढ़ने के रास्ते अलग अलग होते हैं। यहाँ कभी भीड़ लगने से परेशानी नहीं होती। तो ये लिखा था अल बिरूनी ने। आज इतिहास पढ़ने वाले लोगों को अल बिरूनी की किताबों से उस जमाने के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। यहाँ एक डाक टिकट का चित्र है जो 1973 में छपा था, जब अल बिरूनी के जन्म के 1000 साल पूरे हुए थे। देखो और पता करो। अपने स्कूल के आसपास के इलाके को देखो। क्या वहाँ कच्चा मैदान, पक्की सीमेंट से बनी सड़कें, नालियाँ आदि हैं? इलाका किस तरह का है, जैसे ढलान वाला, पथरीला या किसी तरह का? तुम्हें क्या लगता है, बारिश का पानी बहकर कहाँ कहाँ जाता होगा? जैसे जमीन में, नालियों में, पाइपों में, गड्ढों में आदि। बूंद बूंद की कीमत। राजस्थान में जैसलमेर के अलावा बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां साल में बहुत ही कम दिन बारिश होती है। यहां की नदियों में भी साल में कई महीने पानी नहीं रहता। पृष्ठ 53। सोचो, ऐसे में भी यहां के ज्यादातर गांवों में पानी की कमी क्यों नहीं थी? लोग बारिश की हर बूंद की कीमत जो जानते थे। पानी को इकट्ठा करने के लिए तालाब और जोहड़ बनवाए जाते। यह एक सांझी यानी सबकी जरूरत थी, इसलिए इंतजाम में भी सभी जुड़े रहते, चाहे व्यापारी हों या मजदूर। तालाब में से कुछ पानी जमीन सोख लेती और इस तरह जमीन से आसपास के कुओं और बावड़ियों में भी पानी पहुंच जाता। आसपास की जमीन भी नम और उपजाऊ हो जाती। घर घर में भी बारिश का पानी इकट्ठा करने का इंतजाम होता। यहाँ एक चित्र दिया गया है, उसे देखकर बताना है कि छत पर बरसने वाला पानी जमीन के नीचे बने टैंक में कैसे पहुंचेगा। तुमने क्या कभी बावड़ी देखी है? यहाँ एक बावड़ी का चित्र है। चित्र को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि सीढ़ियां जमीन के नीचे कई मंजिल तक जा रही हैं। पानी ऊपर से खींचने की बजाय लोग खुद पानी तक पहुंच सकते थे, इसलिए कुछ लोग इसे सीढ़ीदार कुआं भी कहते हैं। पुराने जमाने में लोग काफिले बनाकर लंबे सफर करते थे। अक्सर लोगों का मानना था कि प्यासे यात्रियों को पानी पिलाना बहुत अच्छा काम है, इसीलिए कई जगह बहुत ही सुंदर बावड़ियां बनाई गई थीं। पृष्ठ 54। पानी से जुड़े रिवाज। आज भी कहीं कहीं कई सौ साल पुराने पानी के स्रोत हैं, जैसे बावड़ी, तालाब, नौला, धारा आदि, जिनसे लोगों की पानी की जरूरत पूरी होती है। यहाँ उत्तराखंड का एक फोटो दिया गया है। पानी से जुड़े हैं कई रिवाज, त्योहार और जश्न। कई जगह तो आज भी बारिश से तालाब भरने की खुशी में आसपास मेले का माहौल हो जाता है। यह उत्तराखंड की एक दुल्हन है जो ब्याह के बाद नए गांव में आई है। वह झरने या तालाब पर जाकर सिर झुकाती है। आज शहरों में इस रिवाज का एक मजेदार रूप दिखता है। दुल्हन घर ही में किसी नल के पास जाकर पूजा करती है। पानी से ही तो जिंदगी जुड़ी है ना। पृष्ठ 55। क्या तुम्हारे यहाँ पानी के लिए कुछ खास बर्तन इस्तेमाल होते हैं? यहाँ देखो, इस सुंदर कुंडों वाले तांबे के बर्तन में पानी भरा जा रहा है। दूसरे चित्र में चमकदार पीला पीतल का घड़ा है। पानी भरने की जगह सुंदर मूर्तियां भी बनाई गई हैं। क्या तुमने कभी पानी की जगह पर कोई सुंदर इमारत बनी देखी है? कहाँ? पता करो, क्या तुम्हारे घर या स्कूल के आसपास तालाब, कुआं या बावड़ी बनी है? उसे देखने जाओ और पता भी करो। यह कितना पुराना है? किसने बनवाया होगा? इसके आसपास किस तरह की इमारत बनी है? पानी साफ है या नहीं? क्या इसकी सफाई होती है? यहाँ से कौन कौन पानी भरते हैं? क्या कभी यहाँ कोई त्योहार मनाया जाता है? पानी कहीं सूख तो नहीं गया? पृष्ठ 56। जरा सोचो, 1986 में जोधपुर और आसपास के इलाकों में जब सूखा पड़ा था, तब भूली बिसरी बावड़ियों को एक बार फिर से याद किया गया। मोहल्ले के लोगों ने मिलजुल कर बावड़ी में से 200 ट्रक से भी ज्यादा कूड़ा निकाला। बावड़ी ने फिर से प्यासे शहर को पानी पिलाया। इसके लिए चंदा भी मोहल्ले वालों ने ही दिया। कुछ साल बाद फिर से अच्छी बारिश हुई और पानी की परेशानी कम हुई, पर अब फिर से बावड़ी को भुला दिया गया है। चर्चा करो। पुनीता के मोहल्ले में दो पुराने कुएं हैं। उसकी दादी बताती हैं कि लगभग 15-20 साल पहले तक उनमें पानी था। क्या कुएं सूखने की कुछ वजह ये हो सकती हैं? चर्चा करो। कई जगह मोटर लगाकर जमीन का पानी निकाला जा रहा है। तालाब जिनमें बारिश का पानी इकट्ठा होता था अब नहीं रहे। पेड़ों के आसपास और पार्क में भी जमीन को सीमेंट से पक्का कर दिया गया है। क्या तुम कोई और वजह भी सुझा सकते हो? हाल की बात, आज लोग पानी का इंतजाम किस किस तरह से करते हैं? चर्चा करो। तुम्हारे यहाँ जिस तरह पानी आता है उस पर सही का निशान लगाओ। अगर किसी अलग तरीके से आता है तो अलग से कॉपी में लिखो। पृष्ठ 57। एक बच्चे ने कहा, हमारे मोहल्ले में दिन में दो बार जल बोर्ड का टैंकर आता है। पानी के लिए लंबी लाइन लगती है और रोज झगड़े होते हैं। एक बच्ची ने बोला, हम कुएं से पानी भरते हैं। पास के कुएं एक साल पहले सूख गए। अब काफी दूर चलकर जाना पड़ता है। कई कुओं पर तो जात के नाम पर पानी लेने भी नहीं देते। एक बच्ची बोली, मेरे यहाँ दिन में आधे घंटे के लिए पानी आता है। हम लोग दिन भर के इस्तेमाल के लिए टंकी में पानी भर कर रखते हैं। एक बच्ची बोली, हमारे यहाँ तो दिन भर नल में पानी आता है। एक बच्चा बोला, मेरे यहाँ हैंड पंप लगा है, लेकिन उसका पानी काफी खारा है। पीने के लिए तो पानी खरीदना ही पड़ता है। एक और बच्चा बोला, हमने जल बोर्ड के पाइप में टुल्लू पंप लगाया है, कोई परेशानी नहीं। एक और बच्चा बोला, हमारे घर में बोरिंग के पाइप में मोटर लगी है, लेकिन बिजली ही नहीं होती तो क्या करें। एक बच्ची बोली, हम नहर से ही पानी भरते हैं। पृष्ठ 58। चर्चा करो। जिंदगी का हक तो सभी का है, फिर जीने के लिए या पीने भर के लिए पानी मिल जाए, क्या यह हक हर एक को मिल रहा है? ऐसा क्यों है कि कुछ लोगों को तो खरीदकर ही पानी पीना पड़ता है? पृथ्वी पर तो पानी सभी का है, साझा है। कुछ लोग गहरा बोरिंग करके जमीन के नीचे से ज्यादा पानी खींच लेते हैं, यह कहां तक सही है? तुमने क्या ऐसा कहीं देखा है? कुछ लोगों को जल बोर्ड के पाइप में टुल्लू पंप क्यों लगाना पड़ रहा होगा? इससे दूसरे लोगों को क्या परेशानी हो रही होगी? तुम्हारा क्या कुछ ऐसा अनुभव है? पानी के बिल को देखकर बताओ, ये बिल कौन से दफ्तर से आया है? तुम्हारे यहाँ अगर बिल आता है तो कहाँ से आता है? इस बिल में दिल्ली जल बोर्ड के नीचे दिल्ली सरकार क्यों लिखा होता है? बिल किसके नाम से है? कितने महीनों के कितने पैसे देने पड़ रहे हैं? क्या तुम्हारे यहाँ पानी के पैसे चुकाने पड़ते हैं? क्या तुम्हारे यहाँ अलग अलग इलाकों में पानी का रेट अलग है? बड़ों से पता करो। पृष्ठ 59। यह मुमकिन है। आज कई संस्थाएं पानी के इंतजाम में लगी हैं। वे लोग बुजुर्गों से मिलकर यह जानने की कोशिश करते हैं कि उनके जमाने में पानी का इंतजाम किस तरह का था। वे पुराने तालाबों की मरम्मत करते हैं और नए तालाब भी बनाते हैं। चलो देखें कि तरुण भारत संघ नाम की एक संस्था ने दड़की माई की मदद कैसे की। यहाँ दड़की माई का चित्र है। ये है दड़की माई। राजस्थान के अलवर जिले के एक गांव में रहती हैं। इस गांव की औरतों का पूरा समय घर के कामों और जानवरों की देखभाल में चला जाता था। कभी कभी तो जानवरों के लिए कुओं से पानी खींचने में पूरी रात लग जाती थी। जब गर्मियों में कुएं सूख जाते तो गांव छोड़ना पड़ता। दड़की माई ने पहल की और लोगों ने संस्था के साथ मिलकर तालाब बना लिया। जानवरों के चारे पानी की परेशानी कम हुई और ज्यादा दूध मिलने लगा। लोगों की कमाई भी बढ़ी है। वे लोग अब दूध का मावा बनाकर भी बेचते हैं। तुमने इस तरह की क्या कोई खबर पढ़ी है? लोगों ने मिलकर पानी की परेशानी को कैसे दूर किया? क्या किसी पुराने तालाब या बावड़ी को फिर ठीक करके इस्तेमाल किया? हम क्या समझे? पोस्टर बनाओ। पृथ्वी पर पानी सभी का है, साझा है। कुछ और ऐसे ही नारे सोचो और साथ ही चित्र भी बनाकर अपना एक सुंदर पोस्टर बनाओ। एक पानी का बिल लाओ, उसे देखकर बताओ ये बिल किस तारीख से किस तारीख तक का है, इस बिल के लिए कितने पैसे भरने पड़ेंगे, इसके अलावा बिल में और क्या क्या देख पा रहे हो, जैसे मरम्मत, टूट फूट आदि पर हुआ खर्च। बूंद बूंद दरिया दरिया। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक का ये 6 पाठ, प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।
1: धुंधला जाए जो मंजिले, एक पल को तू नजर झुका, झुक जाए सर जहां वही मिलता है रब का रास्ता, तेरी किस्मत

0: खुदा।
1: अमीक्षा तुझे पता है मुझे ना रात में बहुत डर लगता है अंधेरे से।
2: हाँ मुझे भी लगता है, ऐसा लगता है कि हमारा कोई पैर ना खींच ले।
1: लेकिन असलियत में तो ऐसा होता ही नहीं है।
2: कुछ भी नहीं होता ऐसा।
1: फिर डर क्यों लगता है?
3: अरे क्या नहीं होता असलियत में।
1: अरे दीदी हमें रात को बहुत डर लगता है अंधेरे से।
3: अंधेरे से डर लगता है?
1: हाँ।
3: ओके, तो आप लोग यानी रात को किस किस चीज से डर लगता है उस बारे में बात कर रहे हो?
1: हाँ।
3: चलिए तो एक काम करते हैं, इसी के बारे में आज सब बच्चों से बात कर लेते हैं। डर तो भाई सबको लगता है, ऐसा कोई भी नहीं है जिसको डर नहीं लगता, चाहे छोटे हो या बड़े हो। और आज डर के बारे में बात करने के लिए बच्चों की दुनिया कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। और हमारे साथ कौन कौन है आज स्टूडियो में?
1: रूहानी,
2: अमीक्षा, अनुष्का।
3: तो अनुष्का आपको किस चीज से डर लगता है?
2: मेरे को तो कॉकरोच से बहुत डर लगता है।
3: कॉकरोच से डर लगता है?
2: हाँ।
3: वो अच्छा नहीं लगता, छोटा सा है इसलिए डर लगता है या फिर ऐसा दिखता है वो?
2: नहीं, जब हम हाथ धोने जाते तो ना डायरेक्ट निकल जाता है छेद में से।
3: हाँ ये तो है, उड़ने वाला भी होता है ना कॉकरोच।
2: हाँ वो उड़ के दीवार पे चिपक जाता है।
3: डर लगता है ना अपने ऊपर ना आ जाए। और रूहानी को किस चीज से डर लगता है?
1: मुझे तो किसी से डर नहीं लगता, इंसेक्ट्स में से।
3: किस चीज से लगता है? किसी से?
1: अंधेरे से।
3: अंधेरे से लगता है?
1: और वो भी अब ज्यादा नहीं लगता, पहले तो मुझे बहुत डर लगता था। मेरे पापा रात को ही मुझे किचन से पानी लेने भेजते थे, फिर मैं लाइट बंद करके तुरंत भाग जाती थी, पीछे भी नहीं देखती थी,
3: फटाफट जल्दी जल्दी पानी लेके आके।
1: मेरे को ऐसा लगता था अभी लाइट चालू करूंगी ना तो कोई मेरे को देख रहा होगा अंधेरे में से। एक तो उसी रात को मैं इतने डरावने डरावने वीडियो देख के ही जाती हूँ वहाँ पे, तो और डर लगता है।
3: डर लगता है, अब डर की वजह पे भी बात करेंगे। पहले बताओ अमीक्षा आपको किस चीज से डर लगता है?
2: दीदी मुझे अगर मैं हॉरर मूवी देख लूँ ना तो मुझे रात को बहुत डर लगता है, मुझे नींद ही नहीं आती।
3: हॉरर मूवीज देखने से डर तो लगता है, तो एक बात बताओ फिर हॉरर मूवीज क्यों देखते हो?
1: मजा भी तो आता है
2: इसीलिए।
3: मजा आता है डरने में?
1: हाँ।
3: पर उसको देख के तो डर लगता है ना, तो उसमें मजा कैसे आता है?
2: देखने में मजा आता है।
1: डर तो रात में लगता है ना, मूवी के टाइम तो मजा आता है।
3: मूवी में लगता है अब आगे क्या होगा।
1: हाँ,
3: आगे कौन कहाँ से निकलेगा।
2: भूत भूत दिख जाता है तो उसके ऊपर हंसते हैं, पर डर फिर हमें रात को लगता है।
3: अच्छा उस वक्त हंसी आती है?
2: हाँ।
3: और रूहानी को?
1: मेरे को भी वही लगता है, वो मूवी ना इंटरेस्टिंग लगती है इसलिए देखने में मजा आता है।
3: इंटरेस्टिंग क्या लगता है उसमें?
1: अरे जैसे अभी क्या होने वाला, इसके बाद क्या होगा, कोई सीरियस पॉइंट हो गया, कोई ट्विस्ट आ गया तो इसके बाद क्या होगा, इसलिए
3: सस्पेंस।
1: हाँ।
3: और आपको अनुष्का?
2: मुझे भी ऐसी हॉरर मूवीज से डर लगता है।
3: तो हॉरर मूवी देखते हो आप की फिर नहीं देखते हो?
2: फिर देखते है, फिर रात को बहुत डर लगता है।
3: अच्छा आप लोग साथ में बैठ के देखते हो सब लोग, कि अकेले अकेले यूट्यूब पे ऐसे देख लेते हो?
1: यूट्यूब पे देखती हूँ क्योंकि कभी कभी कोई छोटा सा शॉर्ट आ जाता है ना, जैसे कि इस मूवी में ये हुआ, फिर वो ना एकदम ट्विस्ट पर ही छोड़ देते हैं शॉर्ट को, इसलिए फिर मुझे वो मूवी सर्च करके देखनी पड़ती है।
3: पता है ऐसे वीडियोस बनाते इसीलिए हैं ताकि आप में एक क्यूरियोसिटी पैदा हो, आप सोचो क्या होगा इसमें आगे, और आप जाके वो उसके मूवीज के व्यूज और बढ़ाओ और देखो। प्रमोशन के लिए तो बनते हैं ऐसे वीडियोस।
1: लेकिन मैं कभी कभी देखती हूँ, हमेशा नहीं देखती।
3: बिल्कुल, इंटरनेट की दुनिया है ही ऐसी, सच में बड़े भी वीडियोस जब रील्स देखते हैं तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद देखते जाते हैं ना। और अनुष्का आप किसके साथ देखते हो?
2: मैं तो मेरे भाई के साथ देखती हूँ।
3: आपका भाई बड़ा है आपसे कि छोटा?
2: बड़ा।
3: तो डर नहीं लगता फिर आपको उस वक्त?
2: लगता है थोड़ा थोड़ा।
3: थोड़ा थोड़ा लगता है? और फिर
2: कभी कभी अचानक से कोई आ जाता है ना, अचानक से नीचे से निकल जाता है तो बहुत डर लगता है।
3: तो डर लगता है अचानक से जब कोई निकल जाता है, अब तो डर लगता है। अमीक्षा को?
2: मेरे को तो वही हॉरर मूवी से डर लगता है।
3: देखते किसके साथ हो बैठ?
2: मैं अकेले देखती हूँ।
3: अकेले देख लेते हो? और अकेले हंसी भी आती है उसको देख के?
2: हाँ।
3: अरे बाप रे। और उसके बाद रात को लगता है डर?
2: हाँ।
1: मुझे डरना और डराना भी पसंद है।
3: डरना डराना पसंद है?
1: हाँ।
3: किसको डराना पसंद है?
1: जैसे रेडियो मधुबन में बहुत सारे लोगों को डराती हूँ मैं। नकली सांप लेके आई हूँ मैं
3: डराने के लिए।
1: और उससे लोग डरते भी है।
3: घर पे भी डराते हो और दोस्तों को?
1: हाँ, मेरी दादी जी तो अभी

0: डरती है, पकड़ने को भी तैयार नहीं है. वो बोलते है अब इसको सामने लाया ना तो फेंक दूंगी घर से बाहर.
1: उनको अच्छा नहीं लगता होगा ना वो सांप देखने में, ऐसे रबर वाला सांप होता है.
0: हाँ.
1: और अनुष्का, आप वो हॉरर मूवी से डर लगता है तो कभी ऐसा लगा आप लोगों को कि डर लगता है तो फिर नहीं देखे या छोड़ दे, ऐसा लगा कभी?
0: हाँ, कभी कभी लगता है ऐसा, फिर बाद में मन हो जाता है फिर से देखने का.
1: फिर से देखने का मन हो जाता है,
2: फिर वापस चालू कर लेते हैं.
1: बस थोड़ी देर के लिए लगता है, मतलब ऐसा कि नहीं देखे. फिर दोबारा देखने पर लगते आते हो. तो यानी जब आप मूवीज नहीं देखते थे तब भूतों से डर लगता था?
0: तब तो सिर्फ अंधेरे से डर लगता था, तब तो हमारा मन ही भूत बना लेता था अपने आप ही.
1: अनुष्का को जब आपने मूवी नहीं देखी थी तब, ऐसी कोई हॉरर मूवी नहीं देखी थी?
2: हाँ, हमको भी अंधेरे से डर लगता है ऐसे.
1: अंधेरे से
2: रात को बाहर भी नहीं निकलते. मेरे भाई बोलते हैं भूत काट लेगा क्या आगे से आके. ऐसे बोलते हैं
1: भाई, बोलते हैं.
2: हाँ, उनको वो डर नहीं लगता है.
1: भाई को नहीं लगता?
2: हाँ, अंधेरे से डर नहीं लगता.
1: ओके, तो वो आपको चिढ़ाने के लिए, आपको डराने के लिए बोलते हैं ऐसा? अमीक्षा को भी कोई ऐसे बोलता है?
2: मेरी बहन मुझे डराती थी पहले, जब मैं छोटी थी तब है ना, मुझे बोलती थी भूत आ जाएगा, भूत तेरा पैर खींच लेगा, भूत ऐसे ऐसे करके मुझे डर पैदा करते थे.
1: बहुत छोटे थे आप तब?
2: हाँ.
1: तो फिर आप डरने लगे धीरे धीरे ना?
2: हाँ.
1: कोई ऐसे बार बार बोले तो डर लगने लगता है ना?
0: मेरी दादी जी भी किससे सुनाती थी, वो पीपल के पेड़ के नीचे ना भूत नहीं लटकी होती है, इसलिए मेरे को डर लगता था रात को पेड़ों के नीचे जाने से.
1: इसलिए कोई किससे सुना दे, कोई डरा दे तो फिर डर लगने लगता है.
2: और गांव में तो पीपल के पेड़ के नीचे ही सोते हैं सब लोग खटिया डाल के.
1: गांव में तो सोते हैं खटिया डाल के. ये भी सही बात है, यानी कि डरने वाली कोई बात नहीं है ना. लगता है आप लोग को रियल में भूत होते हैं ऐसे डरावने डरावने जैसे मूवीज में दिखाते हैं?
2: भूत नहीं होते, वो आत्मा होती है भटकती हुई. हाँ, आत्मा मेरे अंकल ने देखी थी, वो हमको बता रहे थे कि हमारे गेट है ना उसके सामने एक आत्मा भटकती, उनने छत पे से देखा था रियल में.
1: अच्छा.
2: हाँ. हमको भी डर लगता है, तब से हमको ज्यादा डर लगता है
1: जब से अंकल ने देखा.
2: वो तो बोल भी रहे थे कि है ना भी आएगी तो हम तुमको भी दिखाएंगे, हमने तो मना बोल दिया हमको नहीं देखना.
1: हमको नहीं देखना भाई, सही बात है, क्यों देखेंगे है ना, डर लगेगा.
2: उनने तो पूरे 4 बार देख लिया है.
1: अच्छा.
2: हाँ, एक तो उनके घर के बाहर देख लिया है आंखें काली काली, और एक तो है ना हमारे गेट के बाहर देख लिया, कभी कार के पीछे ऐसे आगे. हाँ, ऐसे देखा है.
1: तो उनको डर नहीं लगता?
2: नहीं, वो तो देखते हैं तो चले जाते.
3: किसी किसी को दिखता है, किसी किसी को नहीं दिखता.
1: तो उनको ऐसा नहीं लगा हो सकता कोई खड़ा होगा वहाँ पे?
2: कोई नहीं खड़ा था रात के 12 बजे, वो तो काम करके आए थे अपना.
1: अच्छा. ऐसा नहीं हो सकता कोई खड़ा हो और फिर गलती से लगा हो कि ये तो कोई भूत है मगर कोई इंसान ही खड़ा हो, ऐसा हो सकता है?
2: नहीं, कोई नहीं था, पूरी गली सो रही थी.
1: अच्छा, कोई नहीं था. बस वो दिखा और गायब हो गया. ओके, ठीक है. रूहानी
0: दीदी, मेरे तो पापा ने बोला है कि हमारे घर में ही है, हमारे पितरों के जो होते हैं ना वही आत्मा है, घर में ही है. क्योंकि ना एक बार ना पापा ने बोला था कि हमारे घर में जो पेंटिंग्स है ना उनमें है, तो उन्होंने जब पेंटिंग्स बाहर निकाली ना तब उस खिड़की में ही छेद हो गया. अच्छा. और खिड़की के बाहर वाला पेड़ अपने आप गिर गया, और पापा ने बोला कि इतनी सारी आत्माएं थी कि बाहर निकली ना इतने प्रेशर से तो पेड़ ही गिर गया नीचे. और एक बार मेरी 2 दोस्तें मेरे घर पे आई थी ना और नीचे पड़ा हुआ नींबू लेके गई थी, तो वो जैसे ही अपने घर में गए उसको बुखार हो गया बहुत तेज.
1: अच्छा. देखो, गुड एनर्जी और बैड एनर्जी तो हम सब जानते हैं, फील भी करते हैं, है ना. कोई हमसे बहुत अच्छे से बात करते हैं या फिर बहुत पॉजिटिव होते हैं तो हमको अच्छा फील होता है उनके साथ, है ना. और कुछ लोग बहुत ऐसे गुस्सा कर रहे होते हैं, बिल्कुल उनका मूड भी खराब रहता है एकदम, वो कमरे में आते हैं तो ऐसे नेगेटिव एनर्जी फील होती है ना. होती है आप लोगों को फील?
0: हाँ.
1: होती है ना. तो मतलब पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी तो होती है, ज़रूरी नहीं है कि आपको वो, मतलब वो फीलिंग मतलब बच्चों को भी होती है और बड़ों को भी होती है. लेकिन इतना डरावना जैसे मूवीज़ में दिखा देते हैं चीज़ें, वैसी लगता है रियल लाइफ में होती हैं?
0: नहीं, वैसी तो नहीं होती, उससे तो बहुत ही कम डरावनी होती है. असलियत में.
1: मूवीज में कैसे दिखाते हैं, बहुत डरावना दिखाते हैं ना.
0: हाँ, जैसे चेहरे में इतना सारा खून लगा है, वो पूरा आसमान में उड़ रहा है वैसा.
2: हाँ, ड्रेस भी पूरी फटी हुई है और उसके सामने जैसे चाकू मार दिया, खून खून ऐसे
1: खून खून निकल रहा है.
2: हाँ,
1: वो मेकअप भी कैसे करते है ना, ऐसे डरावना सा
0: जैसे कोई मर के सड़ गया हो.
1: कैसा अजीब सा लगता है. वो बाल भी ऐसे कर देते हैं खड़े, और पता नहीं
2: बाल ऐसे नीचे कर देते हैं. वो जो हमारे अंकल ने देखा था ना, हाँ. बाल भी ऐसे ही किए हुए थे.
1: अच्छा, चेहरे
2: चुड़ैल थी, क्योंकि हमारे एक अंकल है ना, वो तो अभी गांव गए, उनके घर में एक है ना दीदी थी जो है ना चूल्हे पर कुछ बना रही थी, तो आग उनके लग गई थी, तो वो वहीं पर तड़प के मर गई थी, इसलिए उनकी आत्मा हमारे गले में घूमती है.
1: कभी कभी बहुत ऐसे हादसे हो जाते हैं ना, उससे भी डर.
2: गलती से उनके साड़ी थी ना वो वहाँ पर लग गई थी. और दीदी, अगर है ना किसी आत्मा को शांति नहीं मिलती ना, तो जिसने अगर मारा हो ना, उसके पीछे प्रेत पड़ा रहता, पीछे पड़ा रहता है.
1: ओके.
2: मारा तो किसी ने नहीं था, वैसे भी उनका खुद से जल गया था.
1: कभी कभी ऐसी चीजें हो जाती हैं, बहुत ऐसी घटनाएं, बहुत दुखद घटनाएं हो जाती हैं, उससे सबको डर भी लगता है फिर, और बहुत परेशानी भी होती है. तो उसके लिए क्या करना चाहिए, ऐसे में बताओ क्या करना चाहिए, ऐसा कुछ पता चलता है तो.
0: उसके लिए जैसे उसके साथ कुछ हुआ, वो दूसरे के साथ ना हो, ऐसा कर सकते.
1: हाँ, ध्यान रख सकते हैं, और हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, थोड़ा मेडिटेशन कर सकते हैं
2: कि उसकी आत्मा को शांति मिले.
1: हाँ, कि वो अच्छे से रहे, शांति मिले, सब ठीक रहे, है ना. ऐसी ऐसी चीजें कर सकते हैं, क्योंकि ये सब चीजें हमारे हाथ में है, है ना. तो ऑलवेज ऑलवेज हम भगवान जी को अपने साथ रख सकते हैं, है ना, दोस्त बनाकर. और आप लोगों को बड़े भाई बहनों के साथ जैसे रहना पसंद है ना, वो लोग ध्यान भी रखते हैं ना, तो बड़ा भाई बनाकर भी रख सकते हैं अपना, तो वो फिर हमारा ध्यान रखेंगे डेंजर में, है ना. फिर डर भी कम लगेगा, ऐसा हो सकता है.
0: हाँ, हो सकता है.
1: तो सकता है, है ना. और थोड़ा मूवी देखना कम कर सकते हैं क्या.
0: अभी तो नहीं देखते, हम पहले देखते थे,
2: अभी तो हमने बंद कर दी.
1: ऐसी मूवी देखना बंद कर सकते हैं ना.
2: हाँ.
1: क्योंकि ऐसी मूवी देख के एंटरटेनमेंट तो होता है थोड़ा सा, और फिर डर लगता है ढेर सारा, और लगता ही रहता है. उसको ठीक करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है ना.
0: मैंने एक मूवी देखी थी, उसका मुझे अभी तक याद है, इतनी डरावनी थी. वो जब पहले पहले देखते थे तब तो मैं किचन में ही नहीं जाती थी रात को. फिर एक दो तीन चार महीनों बाद मेरे को थोड़ा थोड़ा डर कम हुआ था.
1: कितना समय लग गया ना. वही तो. और कभी कभी क्या होता है, जैसे हमारा माइंड कॉन्शियस अलग है और सब कॉन्शियस माइंड अलग होता है ना. सब कॉन्शियस माइंड में क्या होता है, जो हमारे ब्रेन की कई चीजें ब्रेन कैप्चर कर लेता है, हमें पता नहीं चलता, पर वो अंदर रहती हैं, तो वो हमारी डर बना देती हैं, बुरी आदतें बना देती हैं. और फिर ना आपको पता नहीं चलेगा, आप बड़े हो जाओगे, आप भूल जाओगे मूवीज के बारे में, मगर जो डर है वो आपके सब कॉन्शियस में बैठ गया है, तो वो फिर इतना ईजिली कभी कभी नहीं जाता है. अब मूवीज भी भूल जाओगे,
2: वो दीदी सालों तक अपने माइंड में रहता ही है.
1: तो हमारे जो सब कॉन्शियस है ना, बहुत पावरफुल है, इसलिए वो थोड़ी देर की बात नहीं होती, बहुत समय तक आपके माइंड में सब कॉन्शियस उसको पकड़ के रखता है, उसको छोड़ता नहीं है. इसलिए तो कहते हैं कि आप जो देख रहे हो, जो पढ़ रहे हो, है ना, और देखना आईज का तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होता है. तो कुछ और वीडियोस हैं ऐसे जो देख सकते हो आप ऐसी मूवीज की बजाय, कुछ और एंटरटेनिंग जो आपको पसंद भी आए, जो आपको अच्छा भी लगे, जो इसमें आपको क्यूरियोसिटी भी हो, क्योंकि उस मूवीज में ऐसा लगता है ना, अब क्या होगा, आगे क्या होगा, तो ऐसा कुछ और हो सकता है इसका रिप्लेसमेंट अगर हम सोचें तो.
0: हाँ, हम टीवी पर एक सीरियल देखते हैं, श्रीमद् रामायण.
1: हाँ,
2: ऐसा वो दीदी बहुत अच्छी है, उसमें ना श्री राम की कहानी आती है, उससे हम लोगों को पता भी चलता है कि क्या हुआ था उनके साथ,
0: और उसमें एपिसोड्स भी आते हैं जो एक ट्विस्ट पर छोड़ते हैं, तो हम अगले दिन वही देखते हैं.
1: हाँ, आगे क्या होगा उसमें भी ऐसा लगता है ना.
0: हाँ, और एक और सीरियल है, वो तेनाली रामा की है, जो अपनी बुद्धिमत्ता से काम करता है और महाराज कृष्ण देव राय को खुश करता है.
2: पर इन लोगों के बीच में एक दुश्मन भी होता है उनका.
1: अच्छा.
2: जो है ना वो नहीं कर रहा, वो उनको राजा के पास मतलब पहुंचाते तो है सच, पर वो उनको झूठ कह देते हैं, वो उनके दुश्मन.
1: अच्छा, मतलब वो फसाना चाहते हैं.
2: हाँ.
1: फिर वो ऐसे नए नए आइडियाज निकालते होंगे ना.
0: हाँ, हर बार दुश्मन ना राजा को ही मारना चाहता है ताकि वो सिंहासन ले सके.
1: सिंहासन लेने के लिए तो राजा भी अटैक करना पड़ेगा. तो फिर उनको बचाते कौन है?
0: तेनाली रामा.
1: नए नए आइडियाज निकाल के. आपने देखा है अनुष्का तेनाली रामा?
2: नहीं.
1: नहीं देखा? वैसे इंटरेस्टिंग कहानियां होती हैं उनकी बहुत, और वो इतने क्रिएटिव आइडियाज निकालते हैं जो हमें भी नहीं सोचने में आते कभी कभी, है ना?
0: हाँ.
1: तो मजा आता है वो देखने में. कभी भी कोई चीज अगर आपको ऐसा लगे ना कि बसंत भी आ रही है लेकिन नुकसान भी कर रही है, तो ऐसे में आपको क्या पसंद आ रहा है पहले वो पता करो. जैसे हॉरर मूवीज में पसंद आता है ट्विस्ट, हॉरर मूवीज में पसंद आता है सस्पेंस, है ना? तो ये चीजें कहीं और कहाँ मिल सकती हैं उसको ढूंढो जो आपको फायदा भी करे और आपको मजा भी आए, तो आपका रिप्लेसमेंट हो जाएगा आसान. ठीक है? तो इसको कोशिश करके देखना. कभी कोई चीज जिसमें मजा भी आए लेकिन लगे ये अच्छी नहीं है, तो मजा किस चीज में आ रहा है, क्या अच्छा लग रहा है, उस पॉइंट को पकड़ो और फिर वो पॉइंट और कहाँ मिल सकता है उसको ढूंढो, है ना? आपके पास तो इंटरनेट है, आज मम्मी पापा है, दोस्त, कितनी बड़ी दुनिया है, बहुत चीजें पता कर सकते हो, है ना? तो डर लगता है हमको ये वाली चीजों से, इसको हम कर सकते हैं ठीक. वैसे हर डर को हम जीत तो सकते ही हैं, है ना?
0: और अनुष्का का कॉकरोच वाला डर कैसे भगाए?
1: हाँ, अनुष्का को क्या लगता है बताओ, अगर डर भगाना है तो क्या कर सकते हैं आप लोग बताओ? अच्छा, क्या लगता है आपको, अनुष्का को अगर कॉकरोच का डर भगाना है तो क्या करना चाहिए, क्या लगता है आप लोग को?
0: हम सोच रहे हैं कि अनुष्का को ये करना चाहिए कि कॉकरोच भी तो इतना छोटा सा है, अनुष्का से ज्यादा तो कॉकरोच को ही डर लग जाता होगा कि इतनी बड़ी इंसान ने मेरे पे पाव रख दिया तो मैं मर नहीं जाऊंगा,
2: इसलिए वो भाग के चला जाता होगा.
1: वो अनुष्का के पास ही आ जाए तो भाग के, फिर उसको तो इसलिए डर लगता है मेरे पास आ गया तो उड़ के,
2: तो ये भाग जाएगी.
1: तो फिर उसका डर कैसे भागेगा? और क्या कर सकते हैं बताओ, और कैसे
0: भागे? उसे बॉटल में लेके बाहर छोड़ देना चाहिए कॉकरोच को.
1: हाँ, लेकिन अगर डर लगेगा तो बॉटल में कैसे उसको लेंगे, फिर तो देख के डर लग रहा है, उसके पास कैसे जाएंगे?
2: उसको रोज वही कॉकरोच दिखाएंगे, देखने से उसका थोड़ा थोड़ा डर ठीक होने लगेगा.
1: क्या लगता है आपको अनुष्का?
2: गिलास लेके उसके ऊपर डाल के एक ढक्कन लगा के छोड़ दो बाहर, वैसे गिलास का मुंह तो ज्यादा ही बड़ा है.
1: अच्छा, तो आपने किया है कभी ऐसा?
2: कभी कभी.
1: हाँ, कर लेते हो तब तो आप?
2: डर तो लगता है थोड़ा बहुत,
1: पर डरते डरते भी कर लेते हो. वाह, वेरी गुड, ब्रेव हो आप, डरते डरते कर लेना, ब्रेवरी है भाई.
0: इसको ना ऐसी मूवी दिखानी चाहिए जिसमें दिखाया जाए कि कॉकरोच को भी इंसानों से कितना डर लगता है.
2: इससे उसका डर धीरे धीरे कम होता जाएगा और आगे जाके ये कॉकरोच से डरेगी नहीं, उसको देख के बोलेगी तू मेरे से डरता है, मैं तेरे से नहीं डरती.
1: ये भी बोला जा सकता है कॉकरोच को कि तुम मुझसे डरते हो, मैं तुमसे डरती नहीं हूँ, है ना? तुम तो इतने से हो और मैं कितनी बड़ी हूँ, तुम क्या कर सकते हो, बस यहाँ उड़ सकते हो और चल सकते हो. उसे बातें करनी पड़ेंगी लग रहा है मुझे.
0: अगर कॉकरोच सुन पाता तो.
1: हाँ, तो कॉकरोच क्या कहता बताओ, सुन लेता तो?
2: सुनता कैसे, कान तो दिखते ही नहीं है. उसके पास कान होते भी है कि नहीं पता नहीं.
1: ये तो साइंस में पता चलता है आप लोगों को, अगर आपको साइंस में इंटरेस्ट है तो इंसेक्ट्स के बारे में तो उसमें भी पढ़ाई होती है.
2: साइंस में तो है ना, मेरा भाई जब गया था लाइव वहाँ पर जहाँ पर साइंस के प्रोजेक्ट ऐसे कुछ रखे थे, तो वहाँ पर कोई केमिकल था, उसमें एक मरी हुई मछली डाल दी थी ताकि वो है खराब ना हो, क्योंकि बदबू मारता है. ऐसे है ना, वो केकड़ा ऐसे कुछ डाले थे, छोटे छोटे सांप ऐसे डाले थे. और दीदी वो नहीं होता वो स्नेल, वो केमिकल में डाल के हमें हमारी क्लास को या फिर जिसके भी चैप्टर्स होते हैं ना, तो टीचर्स फिर हमें लैब ले जाके बताती है.
1: लैब में ये सब चीजें रखी होती है ना, केमिकल्स यूज होते हैं.
2: बायो लैब में, केमिस्ट्री लैब में,
1: राइट, बायोलॉजी में भी पढ़ते हो,
2: फिजिक्स में.
1: फिजिक्स में अलग तरह की पढ़ाई है, केमिस्ट्री में अलग है, बायोलॉजी में अलग है. चलो किसी दिन उसके बारे में बात करेंगे. मुझे लग रहा है आप लोग को साइंस में भी बहुत इंटरेस्ट है.
0: जब हम छोटे थे ना तब लैब के बाहर से जाते थे तो खिड़की में से हमें स्केलेटन दिखता था, तो हम वहीं से भाग जाते थे, वो देखो स्केलेटन ऐसे करके
2: हड्डी का ढांचा. बोलते थे अरे उसके अंदर तो भूत है, भागो भागो, सब लोग भाग जाते थे.
1: कौन डराता था? आप लोग डराते थे?
0: नहीं, हम खुद ही बोल देते थे और खुद ही भाग जाते,
1: खुद ही बोल के खुद ही भाग जाते थे।
2: स्केलेटन को मेरा भाई बोलता है वो देख हड्डी का ढांचा।
1: हाँ, तो लग रहा है मुझे साइंस के बारे में भी हमको एक एपिसोड में बात करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आपके पास बहुत सारी बातें हैं। लेकिन फिलहाल तो वक्त हो गया है जाने का, बहुत मजा आया बात करने में, और मुझे लग रहा है हमें डर लगता है, तो भाई इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, भाई सबको डर लगता है ना किसी ना किसी चीज से। तो इसमें कभी भी कोई ऐसा फील करने की बात नहीं, अरे मैं तो बहुत ऐसी हूँ या मुझे तो बहुत डर लगता है, कोई बात नहीं, सबको किसी ना किसी चीज से डर लगता ही है। और आप डर भगाने की कोशिश भी कर रहे हो ना, भगा नहीं भी पा रहे हो, तब भी इसका मतलब है आप बहुत ब्रेव हो। और डर कभी होता है ना तो वो धीरे धीरे जाता है, कभी कभी एकदम से नहीं भी जा पाता है, कोशिश करते रह सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल अपने फ्रेंड्स को गुड बाय करने का टाइम आ गया है, मिलेंगे बच्चों की दुनिया के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है ध्वनि पुस्तक संक्षिप्त बुद्ध चरित्र कक्षा 8 के लिए हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक अध्याय 2 अभी निष्क्रमण
1: पृष्ठ संख्या 18
0: अभी निष्क्रमण गृह त्याग शाक्त पुत्र सिद्धार्थ को विविध प्रकार के आमोद प्रमोद तथा भोग विलासों द्वारा लुभाने का प्रयत्न किया गया था, परंतु उसे उनमें न शांति मिली न सुख। जैसे कोई सिंह विषाक्त वाण के लग जाने पर बहुत बेचैन हो जाता है, वैसे ही राजकुमार बेचैन हो गया था। इसलिए उसके मन में शांति प्राप्ति के लिए वन की ओर जाने की इच्छा हुई। उसने अपने कुछ घनिष्ठ मित्रों को साथ लिया और वन जाने के लिए महाराज से आज्ञा मांगी। आज्ञा प्राप्त कर राजकुमार सिद्धार्थ अपने मित्रों के साथ राजभवन से निकला। सुंदर घोड़ों पर सवार होकर वह सुदूर वन प्रांतर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने जुते हुए खेतों को देखा। खेतों में हल से उखड़ी हुई घास तथा अन्य खरपतवार देखे। हल की जुताई से मरे हुए कीड़े मकोड़ों को देखकर राजकुमार का हृदय द्रवित हो गया। उसका मन शोक से भर गया। वह विह्वल होकर घोड़े की पीठ से उतर गया और धरती पर इधर उधर घूमने लगा। राजकुमार का मन जन्म और मृत्यु के विषय में सोचते सोचते बहुत ही व्याकुल हो गया। मन को एकाग्र करने की

0: इच्छा से राजकुमार ने अपने मित्रों को वहीं रोक दिया और स्वयं सामने जामुन के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करने लगा। थोड़ी देर ध्यान करने से वह कुछ स्थिर हुआ। वह राग द्वेष से मुक्त होकर तर्क संगत विचारों में डूब गया। धीरे धीरे उसने मानसिक समाधि प्राप्त की और उसे शांति और सुख का अनुभव हुआ। धीरे धीरे सिद्धार्थ के मन में सांसारिक जीवन की गति स्पष्ट होने लगी। उसे लगा लोग अज्ञानवश ही जरा व्याधि और मृत्यु की उपेक्षा कर रहे हैं। वह सोचने लगा, क्या मैं इन्हीं की तरह इनकी उपेक्षा करूं? नहीं, मेरे लिए यह उचित नहीं होगा। इस प्रकार के विचारों से उसका अहंकार समाप्त हो गया। अब वह हर्ष संताप और संदेह से मुक्त था। इस समय वह न निद्रा में था न तंद्रा में। अब उसके मन में किसी के लिए न राग था और न द्वेष।
1: पृष्ठ संख्या 19।
0: इस मानसिक समाधि से सिद्धार्थ की बुद्धि जब निर्मल हो गई तो उसे भिक्षु वेश में एक पुरुष दिखाई दिया। वह और किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा था। सिद्धार्थ ने उस पुरुष से पूछा, आप कौन हैं? तो उसने बताया, मैं जन्म मृत्यु से डरा हुआ एक सन्यासी हूं। मैं मोक्ष की खोज में हूं। अपने पराये के प्रति समान भाव रखते हुए अब मैं राग द्वेष से मुक्त हो गया हूं, अतः अब विचरण ही करता रहता हूं। कभी किसी वन प्रांतर में रहता हूं, सभी आशाओं से मुक्त, संग्रहशीलता से मुक्त, अनायास जो कुछ मिल जाए उसे ही खाकर मैं मोक्ष की खोज में घूमता रहता हूं। कभी किसी पेड़ के नीचे, कभी किसी निर्जन देवालय में और कभी किसी पर्वत पर। यह कहकर वह सन्यासी राजकुमार के देखते देखते अंतर्ध्यान हो गया। उस सन्यासी के अदृश्य हो जाने के बाद राजकुमार सिद्धार्थ को बहुत ही प्रसन्नता हुई। उसे विस्मय भी हुआ। उसे धर्म का ज्ञान प्राप्त हो गया था, इसलिए उसने अब अपने मन में घर त्यागने का संकल्प कर लिया। जितेंद्रिय राजकुमार ने वहीं से वन जाने का प्रयत्न नहीं किया, वरन वह प्रसन्नता पूर्वक अपने मित्रों को साथ लेकर नगर की ओर चल पड़ा। राजकुमार जब अपने राजभवन की ओर जा रहा था तो राजमार्ग में किसी राजकन्या ने उसे देखा और हाथ जोड़कर कहा, हे विशाल नयन, आप जिस स्त्री के पति हैं वह निश्चित ही निवृत्त है, सुखी है। राजकुमार को इस निवृत्त शब्द के श्रवण मात्र से परम शांति का अनुभव हुआ और वह निर्वाण के विषय में सोचने लगा। राजकुमार इसी भाव के साथ सीधा राजसभा में पहुंचा। वहां मंत्रियों के बीच राजा वैसे ही सुशोभित हो रहे थे जैसे देवताओं की सभा में इंद्र। राजकुमार ने हाथ जोड़कर पहले राजा को प्रणाम किया और फिर सविनय निवेदन किया, हे नरदेव, मैं अब मोक्ष प्राप्ति के लिए संन्यास लेना चाहता हूं। आप कृपा कर मुझे आज्ञा प्रदान करें, क्योंकि यह निश्चित है कि एक ना एक दिन मेरा और आपका वियोग होगा। अतः अभी जाने की आज्ञा प्रदान कर मुझे उपकृत करें। राजकुमार के वचनों को सुनकर राजा उसी तरह कांप गए जिस तरह कोई वृक्ष हाथी की रगड़ से कांप जाता है। उनका गला भर आया। उन्होंने कुमार का हाथ पकड़कर कहा, हे तात, इस तरह के विचारों को तुम त्याग दो। अभी संन्यास लेने का समय तो मेरा है। तुम तो पुरुषार्थ करो, राजलक्ष्मी का भोग करो, गृहस्थ धर्म का पालन करो और युवावस्था में सुख भोगने के बाद तुम तपोवन में प्रवेश करना। यह तुम्हारे संन्यास ग्रहण करने का समय नहीं है।
1: पृष्ठ संख्या 20।
0: इसी पृष्ठ पर एक चित्र है जिसमें राजकुमार घोड़े पर बैठा है और पीछे उनके पिताजी उनसे अनुनय याचना कर रहे हैं। राजा ने तरह तरह के तर्क देकर राजकुमार को समझाया, परंतु राजकुमार ने उनके सभी तर्कों को निरस्त कर दिया। अंत में कहा, यदि आप मेरी चार बातों को पूरा कर दें तो मैं आपको वचन देता हूं कि मैं तपोवन नहीं जाऊंगा। वे चार बातें हैं, मेरी मृत्यु ना हो, मैं सदा रोग मुक्त रहूं, मुझे कभी बुढ़ापा ना आए और मेरी संपत्ति सदा बनी रहे। राजकुमार सिद्धार्थ की इन असंभव बातों को सुनकर महाराज शुद्धोदन चकित हो गए। उन्होंने उसे बहुत समझाया और कहा, हे पुत्र, ऐसी उठपटांग बातें मत करो, मेरा हृदय फटा जा रहा है। देखो, तर्कहीन बातें करने वाला व्यक्ति सदा उपहास का पात्र होता है, अतः तुम इस विचार को छोड़ दो।
1: पृष्ठ संख्या 21।
0: परंतु राजकुमार ने उनकी एक भी बात न मानी और अंत में कहा, न सही मेरी बातों में कोई तर्क, किंतु मुझे लगता है जिस घर में आग लग गई हो उससे निकल जाना ही श्रेयस्कर है। जब मेरा आपका वियोग निश्चित है तो धर्म पालन के लिए उस वियोग को मैं अभी क्यों ना चुन लूं? नहीं तो मृत्यु तो अलग करेगी ही। राजकुमार की इस प्रकार की निश्चय भरी बातें सुनकर मंत्रियों ने भी उसे बहुत समझाया। राजा ने आंखों में आंसू भरकर उसे रोकना चाहा, परंतु उसने किसी की एक भी बात न मानी और अपना निर्णय सुनाकर अपने महल की ओर चल दिया। जैसे ही राजकुमार अपने महल में पहुंचा, उसे सुंदर स्त्रियों ने घेर लिया। उस तेजस्वी राजकुमार को देखकर वे मोहित हो गईं, पर राजकुमार पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह अपने कक्ष में गया और सोने के आसन पर बैठ गया। अब भी वह परमार्थ सुख की प्राप्ति के लिए घर से निकल जाने के विचारों में डूबा हुआ था। विचार करते करते राजकुमार का मन सब कुछ छोड़कर चलने के लिए उतावला हो गया। वह निःशंक भाव से उठा और झट से अपने कक्ष से बाहर आ गया। वहां राजकुमार ने सोते हुए अश्वरक्षक छंदक को जगाया और कहा, हे छंदक, तुम शीघ्र कंथक यानी घोड़े को ले आओ, मैं अभी अमृत प्राप्ति के लिए जाना चाहता हूं। आज मेरे हृदय में संतोष है, बुद्धि में दृढ़ निश्चय है और मेरा लक्ष्य मेरे सामने है। लगता है मेरे जाने का समय आ गया है। अश्वरक्षक छंदक राजा की इच्छा तो जानता था, लेकिन उसने चुपचाप राजकुमार की आज्ञा का पालन किया। वह शीघ्र ही अश्वशाला में गया और वहां से वेगवान अश्व कंथक को ले आया। राजकुमार ने घोड़े के शरीर पर हाथ फेरा और कहा, हे तुरंग श्रेष्ठ, तुम पर सवार होकर हमारे राजा ने अनेक शत्रुओं को जीता है। अब तुम ऐसा करो जिससे मुझे अमृत पद की प्राप्ति हो। इसका लाभ तुम्हें भी होगा, तुम्हें पुण्य मिलेगा। इसलिए तुम मेरे हित के लिए और जगत के कल्याण के लिए मुझे शीघ्र ही यहां से निकाल ले चलो। इस प्रकार उस श्वेत अश्व को समझाकर राजकुमार उस पर सवार हो गया। ऐसा लगता था जैसे कि शरदकालीन मेघ पर सूर्य सवार हो गया हो। वह घोड़ा इस तरह चलने लगा जिससे किसी प्रकार की आवाज ना हो, कोई परिजन जागे नहीं। बिना हिनहिनाए वह शीघ्र राजभवन के द्वार पर आ गया। राजमहल के द्वार अपने आप खुल गए, सभी प्रहरी सो गए और राजकुमार अपने दृढ़ संकल्प के साथ अपने हितैषी पिता, प्रिय पुत्र अनुरक्त गृह लक्ष्मी और अन्य प्रियजनों को त्याग कर नगर से बाहर निकल गया।
1: पृष्ठ संख्या 22।
0: यहां एक चित्र है जहां सिद्धार्थ पलंग पर बैठे हैं और अपनी पत्नी और पुत्र राहुल से बातचीत या विमर्श कर रहे हैं। राजकुमार सिद्धार्थ ने एक बार नगर की ओर मुड़कर देखा और घोषणा की, जन्म और मृत्यु के पार देखे बिना मैं अब इस कपिलवस्तु नगर में प्रवेश नहीं करूंगा। सूर्य के घोड़ों के समान यह घोड़ा भी किसी दैवी प्रेरणा से द्रुत गति से चला जा रहा था। उदीयमान सूर्य की किरणों से जब तारे मलिन होने लगे, तब तक वह राजकुमार को लेकर नगर से कई योजन दूर निकल आया था। छंदक की वापसी। थोड़े समय बाद भार्गव ऋषि का आश्रम दिखाई दिया। आश्रम के पास निश्चिंत भाव से अभी अनेक हिरण सोए हुए थे। वृक्षों पर पक्षी शांत बैठे थे। आश्रम की यह शोभा देखकर राजकुमार प्रसन्न हुआ। उसे लगा कि वह कृतार्थ हो गया। उसकी सारी थकान जाती रही। आश्रम के द्वार पर पहुंचकर तपस्या को सम्मान देने के लिए वह विनम्र भाव से घोड़े की पीठ से उतर गया। घोड़े से उतरकर राजकुमार ने पहले अपने घोड़े को सहलाया, उसे पुचकारा और कहा, हे वत्स, तुमने मुझे पार उतार दिया है। फिर स्निग्ध दृष्टि से छंदक को निहारते हुए कहा, हे सौम्य, गरुड़ के समान द्रुत गति से चलने वाले इस घोड़े के साथ साथ दौड़कर तुमने जो मुझमें भक्ति दिखाई है, उसने मेरा मन जीत लिया है। मैं तुमसे पूरी तरह संतुष्ट हूं, क्योंकि तुम्हारे मन में इसके लिए किसी फल की कामना नहीं है। मैं और क्या कहूं, तुमने मेरा प्रिय कार्य किया है। अब तुम घोड़े को लेकर लौट जाओ, मुझे मेरा गंतव्य मिल गया है।
1: पृष्ठ संख्या 23।
0: इतना कहकर राजकुमार ने प्रत्युपकार के रूप में अपने सारे आभूषण उतारकर छंदक को दे दिए। उन्होंने दीपक के समान चमकने वाली एक मणि अपने मुकुट से निकालकर उसे दे दी और कहा, हे छंदक, राजा को यह मणि देकर मेरी ओर से बारंबार नमस्कार करना और उनके शोक निवारण के लिए मेरा यह संदेश कहना, हे तात, मैं स्वर्ग की तृष्णा से या वैराग्य भाव से या क्रोध से तपोवन नहीं आया हूं। मैं जरा और मरण के नाश का मार्ग खोजने के लिए यहां आया हूं। शोक त्याग के लिए निकलने वाले व्यक्ति के लिए किसी को शोक नहीं करना चाहिए। मैं अपने पूर्वजों की परंपरा का ही अनुसरण कर रहा हूं, अतः आप मेरे लिए शोक न करें। मृत्यु रूपी शत्रु के रहते हुए जीवन का क्या भरोसा, इसलिए युवावस्था में ही मैंने कल्याण का मार्ग चुन लिया है। राजकुमार ने फिर छंदक से कहा, हे सौम्य, इसी तरह की और भी बातें करके तुम राजा को समझाना। तुम मेरी बुराई भी करना, क्योंकि दोष दर्शन के कारण स्नेह छूट जाता है और स्नेह समाप्त होने से शोक समाप्त हो जाता है। राजकुमार की ये बातें सुनकर छंदक बहुत व्याकुल हो गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर भरे गले से कहा, हे स्वामी, स्वजनों को दुख देने वाले आपके इन विचारों से मेरा मन दलदल में फंसे हाथी के समान व्यथित हो रहा है। आपके इस निर्णय से किसे कष्ट नहीं होगा? कहां कोमल शैया पर सोने योग्य यह शरीर और कहां यह कंटकाकीर्ण कठोर तपोभूमि? न जाने मैं आपको यहां तक कैसे ले आया। यदि मैं अपने अधीन होता तो आपके निश्चय को जानकर मैं इस अश्व को कभी ना लाता। आप अपने वृद्ध पिता को इस प्रकार मत छोड़िए। आप अपनी दूसरी माता मौसी को भी मत छोड़िए। देवी यशोधरा का त्याग मत कीजिए। अपने अबोध पुत्र को मत त्यागिए। यदि आपने अपने स्वजनों और राज्य को त्यागने का दृढ़ निश्चय कर ही लिया है तो भी आप मुझे न त्यागिए। आपके चरणों में ही मेरी गति है। जैसे सुमंत राम को वन में छोड़ आए थे, वैसे ही मैं आपको वन में छोड़कर नगर नहीं लौट सकता।
1: पृष्ठ संख्या 24।
0: इस पृष्ठ पर एक चित्र है जिसमें राजकुमार सारथी छंदक से वार्तालाप कर रहा है और वो वन में जाने की बात उससे कर रहा है। वो ये भी कह रहा है कि वो जाकर राजा को क्या कहे। उसने अपने वस्त्रों और आभूषणों का परित्याग कर दिया है और अब वो तपोवन में जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब सुनते हैं पाठ।
1: पृष्ठ संख्या 25।
0: उसने आगे कहा, हे तात, आपके बिना यदि मैं नगर लौट जाऊंगा तो महाराज मुझसे क्या कहेंगे, अंतःपुर की रानियां क्या कहेंगी। यदि मैं झूठ मूठ ही आपकी बुराई करूंगा तो भी उस पर कौन विश्वास करेगा। इसीलिए हे दयालु, आप करुणा कर मुझ पर प्रसन्न हो और घर लौट चलें। छंदक की इन बातों को सुनकर कुमार ने बड़े धैर्य और शांति के साथ उसे पुनः समझाया और कहा, छंदक, स्नेह के कारण चाहे हम स्वयं स्वजनों को न छोड़ें, फिर भी वे एक ना एक दिन मृत्यु के कारण छूट ही जाते हैं। जिस माता ने मुझे कष्टपूर्वक गर्भ में धारण किया, वह माँ अब कहाँ है और मैं कहाँ हूं। जैसे रात को पक्षी एक वृक्ष पर एकत्र होते हैं और प्रातःकाल फिर अलग हो जाते हैं, उसी तरह सब लोग मिलते हैं और फिर विलग हो जाते हैं। इसीलिए तुम संताप छोड़ो और नगर लौट जाओ। यदि तुम्हारा मन ना माने तो फिर तुम मेरे पास चले आना। अभी तो तुम कपिलवस्तु लौट जाओ और मेरी प्रतीक्षा कर रहे लोगों को समझाओ। तुम उनसे कहना कि मेरे प्रति मोह को त्याग दें। मैं जन्म मृत्यु का रहस्य जानकर अवश्य ही कपिलवस्तु लौटूंगा और यदि मुझे लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ तो मैं जीवित नहीं रहूंगा। राजा सिद्धार्थ के वचनों को सुनकर कंथक अश्व की आंखों से भी आंसू बहने लगे और वह जीव से अपने स्वामी के चरणों को चाटने लगा। राजकुमार ने भी उसे सहलाते हुए कहा, हे कंथक, रो मत, तुमने आज अच्छा कार्य किया है, उसका सुफल तुम्हें अवश्य मिलेगा। ऐसा कहकर राजकुमार ने छंदक के हाथ से स्वर्ण जड़ित कृपाण ले ली, उससे अपने केश काटे और मुकुट फेंक दिया। राजकुमार ने अपने सारे अलंकारों का त्याग किया और स्वर्णिम वस्त्रों को त्याग कर वन वस्त्र धारण करने की इच्छा की। तभी एक शिकारी प्रकट हो गया जो काशाय वस्त्र धारण किए हुए था। सिद्धार्थ ने उस शिकारी से पूछा, हे सौम्य, इस हिंसक धनुष के साथ ऋषियों के काशाय वस्त्र आपको शोभा नहीं देते। यदि आपको इन वस्त्रों से मोह ना हो तो आप मेरे शुभ वस्त्रों को ले लें और अपने ये काशाय वस्त्र मुझे दे दें। सिद्धार्थ की बातें सुनकर शिकारी ने कहा, यदि आपको मेरे काशाय वस्त्र अच्छे लगते हैं तो ले लीजिए और अपने वस्त्र मुझे दे दीजिए। दोनों ने परस्पर वस्त्र बदले। इसके बाद शिकारी चला गया। यह सब देखकर छंदक आश्चर्यचकित रह गया। छंदक ने काशाय वस्त्रधारी राजकुमार को विधिवत प्रणाम किया। काशायधारी सिद्धार्थ ने उसे प्रेम पूर्वक विदा किया और अकेला आश्रम की ओर चल पड़ा। राज्य से विरक्त अपने स्वामी को इस प्रकार जाते देखकर छंदक फूट फूट कर रोने लगा और भूमि पर गिर पड़ा। थोड़ी देर बाद होश आने पर वह फिर उठा और कंथक से लिपट कर रोने लगा। धीरे धीरे साहस बटोर कर वह कपिल वस्तु की ओर चलने लगा। कभी रोता, कभी बिलखता, कभी गिरता और कभी उठता, वह धीरे धीरे कपिल वस्तु की ओर चलता चला गया।
1: पृष्ठ संख्या 26।
0: तपोवन प्रवेश। जाते हुए छंदक को विदा कर जब सिद्धार्थ ने किसी सिद्ध योगी की तरह आश्रम में प्रवेश किया तो उनके स्वरूप से सारा आश्रम अभिभूत हो गया। उनके शरीर पर कोई राज चिन्ह नहीं था, फिर भी सभी आश्रम वासियों की दृष्टि उनकी ओर अनायास ही आकृष्ट हो गई। जो किसान अपनी स्त्रियों के साथ खेत की ओर जा रहे थे वे सिद्धार्थ की ओर देखते रह गए। जो ब्राह्मण कुमार हाथों में समिधा और फूल लिए हुए लौट रहे थे एकटक कुमार की ओर देखते रह गए और अपने मठ की ओर जाना भूल गए। काशाय वेशधारी सिद्धार्थ को देखकर आश्रम के मोर प्रसन्न होकर बोलने लगे। चंचल नेत्र वाले मृग चरना भूल कर उनके सामने आकर खड़े हो गए और गायों के थनों से स्वतः दूध चूने लगा। आश्रम के ऋषि मुनियों ने जब दूर से ही सिद्धार्थ को देखा तो चकित हो गए और कहने लगे, क्या यह आठवां वसु है या अश्विनी कुमारों में से ही कोई एक है जो स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गया है? इस तरह इंद्र के समान शरीर वाले इस कुमार ने सहसा सूर्य के समान अपने प्रकाश से सभी के मन को प्रकाशित कर दिया। आश्रम में प्रवेश करने के बाद आश्रम वासियों ने सिद्धार्थ का स्वागत किया, उनका अभिनंदन किया और कुशल समाचार पूछे। सिद्धार्थ ने भी सभी आश्रम वासियों का अभिनंदन किया। मोक्ष चाहने वाले कुमार ने स्वर्ग चाहने वाले आश्रम वासियों के साथ बातचीत की और तपोवन का निरीक्षण किया। उन्होंने आश्रम की सारी गतिविधियों की जानकारी प्राप्त की और तपस्या के विविध रूपों के विषय में चर्चा की। प्रारंभिक परिचय के बाद उन्होंने आश्रम के तपस्वी साधकों से कहा, आज मैं पहली बार आश्रम देख रहा हूं, मैं यहां के नियमों से नितांत अपरिचित हूं, कृपया आप बताइए कि आपका लक्ष्य क्या है, आप क्या कर रहे हैं। तब एक तपस्वी ने उन्हें विभिन्न प्रकार की साधनाओं के विषय में बताया और उनके फलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कुछ तपस्वी पक्षियों की तरह बीन बीन कर अन्न चुगते हैं, कुछ मृगों की तरह तृण चरते हैं, कुछ बांबियों में सांपों के साथ रहकर वायु पर ही जीवित रहते हैं, कुछ जटाधारी साधु मंत्रों से अग्नि में आहुति देते हैं, कुछ जल में प्रवेश कर मछलियों के साथ रहते हैं। इस प्रकार विविध प्रकार के कठोर तप बहुत समय तक करने के बाद श्रेष्ठ साधक स्वर्ग प्राप्त करते हैं तथा निकृष्ट साधक पुनः धरती पर जन्म लेते हैं। अंत में तपस्वी ने कहा, दुख के मार्ग पर चलने से ही सुख मिल सकता है और सुख ही धर्म का मूल है।
1: पृष्ठ संख्या 27।
0: राजकुमार सिद्धार्थ ने तपस्वियों की सारी बातें ध्यान से सुनी, परंतु उन्हें इनकी बातों से संतोष नहीं हुआ। उन्होंने मन ही मन कहा, विविध प्रकार की ये तपस्याएं दुख रूप ही हैं और इन तपस्याओं का फल स्वर्ग है, किंतु जब सब कुछ परिवर्तनशील है तब इन आश्रम वासियों का परिश्रम भी स्थायी फल देने वाला नहीं हो सकता। उन्हें लगा कि जैसे कुछ लोग इस लोक में सुख पाने के लिए कष्ट भोगते हैं, वैसे ही ये लोग स्वर्ग में सुख भोगने के लिए कष्ट भोग रहे हैं। यह निंदनीय तो नहीं है, परंतु बुद्धिमानों को कुछ ऐसा करना चाहिए कि फिर करने के लिए कुछ न बचे। राजकुमार ने आगे सोचा, यदि इस लोक में शरीर पीड़ा सहना धर्म है तो निश्चित ही शरीर के सुख को अधर्म कहना चाहिए। उन्हें लगा यह शरीर तो मन के अधीन है, मन के अनुसार ही यह कर्मों में प्रवृत्त है और उनसे निवृत्त होता है, अतः मन का दमन करना ही उचित होगा। इस तरह का विचार करते करते शाम हो गई। फिर धीरे धीरे उन्होंने उस वन में प्रवेश किया जहां यज्ञ का धुआं फैला हुआ था। अग्निहोत्र की पूर्णाहुति दी जा रही थी, ऋषिगण एकत्रित थे, उनके मंत्रों के स्वरों से देव मंदिर गूंज रहा था और सारा वातावरण हवन की सुगंध से परिपूर्ण था। राजकुमार सिद्धार्थ ने इस आश्रम में कई दिन बिताए।

0: उन्होंने यहां पर चल रही सारी तप विधियों का गहन अध्ययन और परीक्षण किया, किंतु उन्हें इन तप विधियों से संतोष नहीं मिला। अतः एक दिन उन्होंने इस तपोवन को छोड़ देने का निश्चय किया। कुछ ही दिनों में राजकुमार सिद्धार्थ के रूप, व्यवहार और विचारों से उस तपोभूमि के सभी निवासी ऐसे प्रभावित हो गए थे कि जब वे आश्रम से जाने लगे तो सभी उनके पीछे पीछे चलने लगे। जब सिद्धार्थ ने देखा कि सभी आश्रमवासी उनके पीछे पीछे चले आ रहे हैं तो वे रुके और एक सुंदर वृक्ष के नीचे बैठ गए। सारे आश्रमवासी उन्हें घेर कर खड़े हो गए। उनमें से एक वृद्ध साधु ने बड़े आदर के साथ उनसे कहा, हे तात, आपके आने से यह आश्रम हरा भरा सा लगने लगा था और अब आपके जाने से यह सूना सूना सा होता जा रहा है, इसलिए आप इसे न छोड़ें। यह निकट ही ब्रह्मर्षियों, राजर्षियों और देवर्षियों द्वारा सेवित हिमालय है। चारों ओर पवित्र तीर्थ स्थान है। क्या आपने इस आश्रम में किसी को नकारा या संकुचित विचार वाला देखा है, किसी को अपवित्र देखा है जिसके कारण आप यहां रहना नहीं चाहते? आपको जब तक अच्छा लगे तब तक आप यहीं रहें। ये तपस्वी अपनी तपस्या में आपको सहायक बनाना चाहते हैं। आपके यहां रहने से इन सब का अभ्युदय होगा।
1: पृष्ठ संख्या 28।
0: उस वृद्ध तपस्वी के विनय वचनों को सुनकर राजकुमार ने कहा, हे तपोधन, आप सबने मेरे प्रति ऐसे भाव व्यक्त करके मुझे जो स्नेह और आदर दिया है उससे मैं अभिभूत अभिभूसा हो गया हूं। आप लोगों को छोड़ने में मुझे भी वैसा ही दुख हो रहा है जैसे अपने बंधुओं को छोड़ने पर होता है, किंतु आप सबका धर्म स्वर्ग के लिए है और मेरी अभिलाषा मोक्ष की है, इसीलिए मैं तपोवन को छोड़ना चाहता हूं। यहां के प्रति मेरे मन में ना अरुचि है और ना ही मैंने यहां कोई अपकार दुराचार देखा है। आप महर्षि सदृश हैं, पूर्व युग के अनुरूप धर्म में प्रतिष्ठित हैं, परंतु इसमें मेरी कोई रुचि नहीं है, इसीलिए मैं यहां से जा रहा हूं। इस तरह तपस्वी कुमार के मनोहर, अर्थयुक्त और स्निग्ध वचन सुनकर सभी अत्यंत संतुष्ट हुए। तभी उनके बीच से एक भस्म लगाए तपस्वी बोला, हे प्राज्ञ, आपका निश्चय सचमुच ही प्रशंसनीय है। आपने युवावस्था में ही जन्मगत दोषों को देख लिया है, इसीलिए आपने स्वर्ग का नहीं अपितु अपवर्ग यानी मोक्ष का मार्ग चुना है। आप निश्चित ही विचारवान हैं। यदि आपका यही निर्णय है तो आप शीघ्र ही विंध्य कोष्ठ नामक स्थान पर जाइए। वहां अराड मुनि निवास करते हैं। आप उनसे तत्व ज्ञान सुनिए और यदि आपको रुचिकर लगे तो स्वीकार कर दीजिए, परंतु आपको देखकर मुझे लग रहा है कि आप में जो अगाध गंभीरता है, जो तेज है तथा जो लक्षण है, उसके कारण आप स्वयं उस पद को प्राप्त करेंगे जो पहले किसी अन्य ऋषि महर्षि ने प्राप्त नहीं किया है। यह सुनकर राजकुमार ने सबको नमस्कार किया। सभी आश्रमवासी तपस्वियों ने विधिवत उन्हें प्रणाम किया और फिर राजकुमार आश्रम से बाहर निकल आए और आश्रमवासी धीरे धीरे लौट गए। पृष्ठ संख्या 29। अंतःपुर विलाप। अपने स्वामी के तपोवन जाने के बाद अश्वरक्षक छंदक धीरे धीरे अपने घोड़े के साथ कपिल वस्तु की ओर जाने लगा। स्वामी के विरह में वह अत्यंत व्याकुल था। अश्रु थम नहीं रहे थे। जाते समय जिस मार्ग को उसने केवल एक रात में पूरा किया था उसी मार्ग को अब पूरा करने में उसे 8 दिन लगे। यद्यपि घोड़ा कंथक चल रहा था, पूर्ववतः अलंकृत भी था, फिर भी शोक भाव के कारण वह अत्यंत मलिन और निस्तेज लग रहा था। जब से उसके स्वामी तपोवन गए हैं तब से घोड़े ने न घास खाई है न ही पानी पिया है। इस तरह धीरे धीरे दोनों ने कपिल वस्तु में प्रवेश किया। यहां एक चित्र है जहां अंतःपुर विलाप का दृश्य दिखाया गया है। अब सुनते हैं पाठ। पृष्ठ संख्या 30। कपिल वस्तु के वन उपवन जलाशय आदि सब कुछ कुमार के विरह में अरण्य के समान दिख रहे थे। राजकुमार के बिना दोनों के लौटने पर नगरवासियों ने वैसे ही आंसू बहाए जैसे प्राचीन काल में राम के बिना उनके रथ को देखकर अयोध्या वासियों ने आंसू बहाए थे। लोगों को उन पर खीज आ रही थी और वे कह रहे थे, पूरे नगर और राष्ट्र को आनंद देने वाले कुमार को तुम कहां छोड़ आए हो। बेचारा छंदक सबको यही कहता कि मैंने कुमार को नहीं छोड़ा, वरन वे ही मुझे निर्जन में रोता हुआ छोड़कर चले गए। छंदक की बातें सुनकर नागरिक कहते, तुमने उन्हें किस वन में छोड़ा है, हम सब वहीं जाएंगे क्योंकि उनके बिना यह नगर तो वन के समान हो गया है। नगर की जो स्त्रियां अपने घरों के झरोखों से झांक रही थीं, वे राजकुमार के बिना घोड़े को देखकर रोने लगीं। अश्रुपूर्ण नेत्रों के साथ कंथक ने जब राजमहल में प्रवेश किया तो आर्त स्वर में हिनहिनाकर उसने अपना दुख प्रकट किया। उसकी हिनहिनाहट को सुनकर राजमहल के सभी पक्षी और घोड़े आर्तनाद करने लगे। इस कोलाहल को सुनकर लोगों को लगा जैसे राजकुमार लौट आए हैं। वे जिस स्थिति में थे उसी स्थिति में बाहर आ गए, परंतु जब उन्हें ज्ञात हुआ कि राजकुमार नहीं आए हैं तो सभी दुखी हो गए और रोने लगे। रानी गौतमी बिलख बिलख कर रोने लगीं। अंतःपुर की अनेक स्त्रियां शोक के कारण चेतना शून्य हो गईं। यह सब कुछ देख और सुनकर यशोधरा शोक और क्रोध से भरकर छंदक से बोली, रे छंदक, रात को मुझे विवश सोती छोड़कर तुम मेरे मनोरथ को कहां छोड़ आए हो। अरे निर्दयी, अब तुम क्यों रो रहे हो, तुम हमारे हितैषी हो और तुम्ही ने इस कुल का नाश कर दिया। अरे यह कंथक अब क्यों हिनहिना रहा है, रात के अंधेरे में जब यह कुमार को लेकर गया था तब क्या यह गूंगा हो गया था। यशोधरा के वचन सुनकर छंदक और भी रोने लगा, फिर जैसे तैसे अपने आप को संभाल कर बोला, हे देवी, आप कंथक की निंदा ना करें न ही मुझे दोष दें, क्योंकि हम उस रात विवश थे। राजा के आदेश को जानते हुए भी मैं किसी दैवी प्रेरणा से घोड़ा ले आया और बिना थके रात भर उनके पीछे चलता रहा। घोड़े के चलने पर भी उसके खुरों से किसी तरह की ध्वनि नहीं हुई। राजभवन और नगर के सभी द्वार अपने आप खुल गए और सभी प्रहरी सो गए। इस सब को कोई दैवी विधान ही मानना चाहिए। तभी तो राजकुमार ने अपना मुकुट फेंका और काषाय वस्त्र धारण कर लिए। हे देवी, इस सब के पीछे ना मेरी इच्छा थी ना घोड़े की, लगता है यह सब कुछ दैवी प्रेरणा से ही हुआ है। पृष्ठ संख्या 31। छंदक के मुख से राजकुमार के जाने की यह अद्भुत कथा सुनकर अंतःपुर की सभी स्त्रियां विषाद से भर गईं और फूट फूट कर रोने लगीं। मौसी गौतमी बिलख बिलख कर रो रही थीं और कई बार मूर्छित हो जाती थीं। यशोधरा रो रो कर कहती थीं कि मैं ही अभागिन हूं, तभी तो वे मुझे छोड़कर गए हैं। मेरी न स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा है और न कोई और, मैं तो बस यही चाहती हूं कि वे मुझे इस लोक या परलोक में किसी प्रकार भूले नहीं। हाय, उस मनस्वी का रूप ही सुकुमार था, उसका हृदय तो अत्यंत कठोर और निर्दय था, तभी तो वे अपने बाल पुत्र को छोड़कर चले गए हैं। मेरा हृदय अवश्य ही पत्थर या लोहे का बना है, तभी तो फट नहीं रहा। इस तरह विलाप करते करते यशोधरा मूर्छित हो गईं और अंतःपुर की अन्य स्त्रियां भी बिलख बिलख कर रोने लगीं। पुत्र को प्राप्त करने के लिए राजा शुद्धोदन देव मंदिर में हवन आदि अनुष्ठान कर रहे थे, परंतु जब उन्होंने सुना कि छंदक और कंथक लौट आए हैं और कुमार ने संन्यास ग्रहण कर लिया है तो वे व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। राजा शुद्धोदन रो रो कर कहने लगे, मुझे आज दशरथ से ईर्ष्या हो रही है, जो अपने पुत्र राम के वन जाने पर तत्काल

और कहा, हे नरवीर, आप शोक छोड़िए, धैर्य धारण कीजिए, आप असित मुनि की भविष्यवाणी याद कीजिए। उन्होंने कहा था कि इस कुमार को न स्वर्ग रोक सकता है न चक्रवर्ती राज्य, फिर भी हमें प्रयत्न करना चाहिए। आप आज्ञा दीजिए, आप कहें तो हम वहां जाएं जहां कुमार गए हैं, उन्हें समझाएं और बुला लाएं। राज पुरोहित और मंत्रियों की बातें सुनकर राजा ने तुरंत उन्हें जाने की आज्ञा दी और कहा, शावक के लिए उत्सुक पक्षी की तरह अपने पुत्र के लिए मेरा हृदय छटपटा रहा है। आप लोग शीघ्र जाइए और मेरे पुत्र को ले आइए। राजा की आज्ञा प्राप्त कर राजपुरोहित और मंत्रीगण राजकुमार की खोज में शीघ्र ही नगर से निकल पड़े। पृष्ठ संख्या 32। कुमार की खोज। राजा शुद्धोदन की आज्ञा पाकर राजपुरोहित और राजमंत्री दोनों शीघ्र उस वन की ओर चलने लगे जहां छंदक और कंथक राजकुमार सिद्धार्थ को छोड़ आए थे। कुछ समय बाद वे भार्गव आश्रम के पास पहुंचे। उन्होंने अपना राजसी वेश त्याग दिया और सामान्य नागरिक के रूप में आश्रम में प्रवेश किया। अंदर जाकर उन्होंने आचार्य की अभ्यर्थना की और अपने आने का प्रयोजन बताया। राज पुरोहित और राजमंत्री की बातें सुनकर आचार्य भार्गव ने कहा, राजकुमार यहां आए थे, वे युवक अवश्य हैं परंतु अबोध नहीं है। वे यहां कुछ समय रहे थे परंतु बाद में मोक्ष की खोज में अराड मुनि के आश्रम चले गए हैं। आचार्य की बातें सुनकर राज पुरोहित और मंत्री ने उनसे आज्ञा ली और वे पुनः राजकुमार की खोज में आगे निकल गए। रास्ते में उन्होंने एक वृक्ष के नीचे कुमार को बैठे देखा। लगता था कि कुमार ने कई दिनों से स्नान नहीं किया है, फिर भी उनका शरीर वैसे ही चमक रहा था जैसे कि बादलों के बीच सूर्य चमक रहा हो। कुमार को देखते ही वे दोनों रथ से उतरे और जैसे वनवासी राम को मनाने वामदेव और वशिष्ठ चित्रकूट गए थे, वैसे ही दोनों कुमार को मनाने वहां गए। पुरोहित और मंत्री ने कुमार और कुमार ने पुरोहित और मंत्री की अभ्यर्थना की। यहां एक चित्र है जहां सिद्धार्थ को एक वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करते हुए दिखाया गया है। वो बैठे हैं और राजपुरोहित और राजमंत्री दोनों उनसे निवेदन कर रहे हैं कि वे वापस चलें। पीछे एक राजरथ दिखाई पड़ रहा है। अब सुनते हैं पाठ। पृष्ठ संख्या 33। दोनों कुमार की आज्ञा प्राप्त करके उनके पास बैठ गए। वृक्ष के नीचे बैठे कुमार को पुरोहित ने समझाया, हे कुमार, आपके वियोग से दुखी राजा ने जो कहा है उसे पहले आप सुनिए। धर्म के प्रति आपकी आस्था और आपके भविष्य को मैं जानता हूं, परंतु आपने असमय ही वन का आश्रय लिया है, उसके कारण मैं शोक की आग में जल रहा हूं। इसलिए मेरे प्राणों की रक्षा के लिए आपको घर लौट आना चाहिए। जैसे वायु मेघ को उड़ा देता है, सूर्य जल को सुखा देता है और अग्नि घास को जला देती है, वैसे ही शोक मुझे जला रहा है। अतः आप घर लौट चलिए और राज सुख भोगिए। समय आने पर वन जा सकते हैं, अभी तो लौट चलिए। मुझ मरणासन्न की उपेक्षा आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जीवों पर दया ही सभी धर्मों का मूल है। पुरोहित ने आगे कहा, देखिए, धर्म के लिए वन जाना अनिवार्य नहीं है। सभी प्रकार के सुख भोगते हुए भी अनेक गृहस्थ राजाओं ने मोक्ष प्राप्त किया है। ध्रुव के अनुज बलि और वज्रबाहु, विदेहराज जनक और राम ऐसे ही राजा थे। इसलिए आप भी इन्हीं की तरह ज्ञान और राजलक्ष्मी दोनों का सुख एक साथ भोगिए। मेरी तो यही इच्छा है कि मैं आपको राज्याभिषेक करूं और स्वयं सहर्ष वन को चला जाऊं। हे कुमार, राजा

ये अश्रुसिक्त वचनों को सुनकर आपको राजा के स्नेह को मान देना चाहिए, जैसे भृगपुत्र परशुराम ने, दशरथ पुत्र राम ने तथा गंगा पुत्र भीष्म पितामह ने अपने पिता की आज्ञा मानी थी, वैसे ही आपको भी अपने पिता की आज्ञा माननी चाहिए। आपका पोषण करने वाली माता अभी जीवित है, पर वे उसी तरह निरंतर क्रंदन करती रहती हैं जैसे अपने बछड़े के ना रहने पर गाय रोती रहती है। हंस से वियुक्त हंसिनी की तरह व्याकुल अपनी पत्नी के साथ आप स्नात कीजिए, अपने अबोध पुत्र को अपना प्यार दीजिए। नगर तथा अंतःपुर के सभी लोग शोकाकुल हैं, अपने दर्शन से उनका शोक दूर कीजिए। राज पुरोहित के इन वचनों को सुनकर कुमार सिद्धार्थ ने सविनय उत्तर दिया, हे तात, मैं पुत्र के प्रति पिता के प्रेम को जानता हूं और यह भी जानता हूं कि राजा का मेरे प्रति विशेष प्रेम है। यह जानते हुए भी जरा, व्याधि और मृत्यु से डरकर ही मैंने लाचारी में स्वजनों को छोड़ा है। संयोग के बाद वियोग अवश्यंभावी है, इसलिए मैं स्नेही पिता को अभी छोड़ रहा हूं, अन्यथा अपने प्रिय स्वजनों को कौन नहीं देखना चाहेगा। मेरे कारण राजा को शोक हुआ, यह मुझे अच्छा नहीं लगा, परंतु मिलन स्वप्न के समान होता है और वियोग के दिन शाश्वत हैं, इसमें संताप का कोई कारण नहीं। संताप तो अज्ञान के कारण ही होता है। पृष्ठ संख्या 34। कुमार ने आगे कहा, मनुष्य पूर्व जन्म के स्वजनों को छोड़कर यहां आता है और फिर यहां स्वजनों को छोड़कर चला जाता है। जब गर्भ से लेकर सभी अवस्थाओं तक मृत्यु सामने खड़ी है तो मोक्ष के लिए किसी काल विशेष की क्या प्रतीक्षा। राजा मेरे लिए राज्य छोड़ना चाहते हैं, यह उनकी उदारता है, किंतु मेरे लिए यह अपथ्य के समान अग्राह्य है। धर्म की खोज में मैं वन में आया हूं, मेरे लिए अब अपनी प्रतिज्ञा को तोड़कर घर लौटना उचित नहीं होगा। मैं अब घर और बंधुओं के बंधन में पड़ना नहीं चाहता। राजकुमार की बातों को सुनकर राजमंत्री ने भी उन्हें समझाया। उन्होंने कहा, हे कुमार, धर्म में आपकी निष्ठा अनुचित नहीं है, परंतु वृद्ध पिता को दुख देकर धर्म का पालन भी उपयुक्त नहीं है। आप प्रत्यक्ष सुख को छोड़कर अदृश्य लक्ष्य के लिए वन में चले आए हैं, उसमें कोई बुद्धिमानी नहीं है। कुछ लोग पुनर्जन्म को ही नहीं मानते, ऐसी स्थिति में प्रत्यक्ष प्राप्त लक्ष्मी का उपभोग करना ही उचित है। शास्त्रों का विधान है कि संतान उत्पत्ति द्वारा पितृ ऋण, वेदों के अध्ययन द्वारा ऋषि ऋण और यज्ञों के द्वारा देव ऋण से मुक्त होना ही मोक्ष है। इसलिए हे सौम्य, यदि आपकी रुचि मोक्ष में है तो शास्त्रानुसार आचरण कीजिए, इससे आपको मोक्ष भी मिलेगा और पिता का शोक भी नष्ट हो जाएगा। आपको तपोवन से घर लौटने में किसी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले भी अपनी प्रजा के अनुरोध पर राजा अम्बरीश वन से घर लौट आए थे। इसी प्रकार राम और शाल्व देश के राजा द्रुम भी वन से घर लौट आए थे। अतः धर्म के लिए वन से घर लौटने में किसी प्रकार का दोष नहीं है। राजमंत्री के तर्कों को सुनकर राजकुमार ने कहा, मैं इस विषय में दूसरों की बातों पर विश्वास नहीं करता। तपस्या और शांति से जो तत्व ज्ञान मुझे होगा, मैं उसे ही स्वीकार करूंगा। राम जैसे पहले के राजाओं के जो उदाहरण आपने दिए हैं, वे मेरे लिए प्रमाण नहीं है। इसलिए यदि सूर्य पृथ्वी पर गिर पड़े, हिमालय चलायमान हो जाए, तो भी मैं बिना तत्व ज्ञान प्राप्त किए घर नहीं लौट सकता। मैं जलती हुई आग में प्रवेश कर सकता हूं, पर असफल होकर घर में प्रवेश नहीं कर सकता। इस प्रकार अपनी बातें स्पष्ट रूप से कहकर राजकुमार वहां से उठकर आगे चले गए। राजपुरोहित और राजमंत्री राजकुमार के दृढ़ निश्चय को सुनकर बहुत दुखी हुए। कुछ समय तक वे राजकुमार के पीछे पीछे चले, फिर निराश होकर नगर की ओर लौटने लगे। उन्होंने राजकुमार की गतिविधि के बारे सूचना देने के लिए कुछ गुप्तचरों को नियुक्त किया।
राजा से अब क्या कहेंगे, कैसे उन्हें समझाएंगे। यही सोचते सोचते वे कपिल वस्तु की ओर चलने लगे। पृष्ठ संख्या 35। बिंबसार से भेंट। राज पुरोहित और राजमंत्री को छोड़कर राजकुमार आगे चलते गए। कुछ समय बाद उन्होंने उत्ताल तरंगों वाली गंगा को पार किया और धन धान्य से संपन्न राजगृह नामक नगर में प्रवेश किया। चारों ओर से पर्वतों से सुरक्षित और पवित्र तप्त कुंडों से युक्त इस नगर में उन्होंने वैसे ही प्रवेश किया जैसे कि स्वर्ग में स्वयंभू ब्रह्मा ने प्रवेश किया था। शिव के समान दृढ़व्रती राजकुमार के गांभीर्य तथा तेज के कारण नगर के लोग उन्हें विस्मय से निहारते रहे। उनका ऐसा प्रभाव था कि जो लोग जा रहे थे वे रुक गए, जो रुके हुए थे वे उनके पीछे पीछे चलने लगे, जो जल्दी जल्दी जा रहे थे वे धीरे धीरे चलने लगे और जो बैठे थे वे खड़े हो गए। किसी ने आगे बढ़कर अपने हाथों से उनकी पूजा की, किसी ने सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और किसी ने मधुर शब्दों में उनका अभिनंदन किया। उनको देखकर जो लोग सुसज्जित थे, विचित्र वेशभूषा धारण किए हुए थे, वे लज्जित हो गए और जो वाचाल थे वे मौन हो गए। उनकी भ्रिकुटी, ललाट, मुख, नेत्र, शरीर, हाथ पैर, चलने की गति, जो भी जिसने देखी वह वही देखता रह गया। उस प्रत्यक्ष धर्म की मूर्ति के सामने सभी ठगे से रह गए। मगध के राजा बिंबसार ने जब अपने महल से उन्हें और उनके पीछे पीछे चलने वाली भीड़ को देखा तो उन्होंने इसका कारण पूछा। राज कर्मचारियों ने राजा को बताया कि वह शाक्य राजपुत्र परिव्राजक सिद्धार्थ हैं। इनके विषय में ब्राह्मणों ने यह भविष्यवाणी की थी कि यह या तो परम ज्ञान को प्राप्त करेंगे या चक्रवर्ती सम्राट होंगे। यह सुनकर राजा ने अपने अनुचरों को आज्ञा दी, जाओ और पता लगाओ वह कहां जा रहा है। राजा की आज्ञा के अनुसार राज कर्मचारी राजमहल से बाहर आए और परिव्राजक वेशधारी सिद्धार्थ के पीछे पीछे चलने लगे। उन्होंने देखा कि परिव्राजक की दृष्टि स्थिर है, वाणी मौन है, गति नियंत्रित है, वे भिक्षा मांग रहे हैं। भिक्षा में जो कुछ मिलता है वह उसे ही स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पृष्ठ संख्या 36। भिक्षा में मिले अन्न को लेकर वे एक पर्वत पर गए। एकांत निर्झर के पास बैठकर उन्होंने भोजन किया और फिर पांडव पर्वत पर जाकर बैठ गए। काषाय वेशधारी सिद्धार्थ पर्वत पर वैसे ही सुशोभित हो रहे थे जैसे कि उदयाचल पर बाल सूर्य प्रकट हो गया हो। राज कर्मचारियों ने यह सब देखकर राजा बिंबसार को सूचित किया। बिंबसार ने अपने साथ कुछ अनुचरों को लिया और वे स्वयं बोधिसत्व यानी सिद्धार्थ से मिलने के लिए चल पड़े। वहां पहुंचने पर बिंबसार ने देखा कि बोधिसत्व पर्यंक आसन में शांत भाव से बैठे ऐसे लग रहे हैं जैसे कि बादलों की ओट से चंद्रमा चमक रहा हो। राजा धीरे धीरे उनके निकट गए और कुशल क्षेम पूछी। कुमार ने भी यथोचित उत्तर दिया। फिर राजा आज्ञा प्राप्त कर एक शिलाखंड पर बैठ गए और उनसे वार्तालाप करने लगे। राजा बिंबसार ने उनसे कहा, हे कुमार, आपके कुल से हमारा पुराना प्रेम संबंध है। हे मित्र, मेरी बात सुनिए। आपका सूर्य वंश महान है और आपकी अवस्था अभी नई है। फिर क्यों आपकी बुद्धि स्वाभाविक क्रम तोड़कर राज्य में ना रमकर भिक्षावृत्ति में रमी है? आपका शरीर तो अभी लाल चंदन के लेप के योग्य है, काषाय वस्त्र धारण करने लायक नहीं है। अभी आपके हाथ प्रजा पालन के योग्य हैं, भिक्षा मांगने योग्य नहीं है। हे सौम्य, यदि आप स्नेहवश अपने पिता का राज्य पराक्रम से प्राप्त करना नहीं चाहते, पिता के बाद राज्य प्राप्ति तक प्रतीक्षा नहीं कर सकते, तो आप मेरा आधा राज्य ले लीजिए और भोगिए। आप मेरे साथ मैत्री कीजिए। यदि आपको अपने कुल के अभिमान के कारण मुझ पर विश्वास नहीं है तो मेरी प्रबल सेना की सहायता से शत्रुओं को जीतिए। आप इन दोनों विकल्पों में से किसी एक पर
अपनी बुद्धि स्थिर कीजिए और धर्म, अर्थ और काम का सेवन कीजिए। यदि संपूर्ण पुरुषार्थ प्राप्ति की इच्छा है तो त्रिवर्ग यानी धर्म, अर्थ और काम का सेवन कर अपना जन्म सफल कीजिए। आप धनुष चढ़ाने लायक अपनी भुजाओं को इस प्रकार व्यर्थ न कीजिए। ये मानधाता के समान तीनों लोगों को जीतने में सक्षम हैं, फिर पृथ्वी की तो बात ही क्या। निश्चय ही यह सब कुछ मैं स्नेहवश ही आपसे कह रहा हूं, ना ऐश्वर्य के राग से और ना अभिमान से। आपको भिक्षु वेश में देखकर मुझे दया आती है और रोना भी आता है। जब तक बुढ़ापा आपके रूप को नहीं मिटा देता, तब तक विषयों को भोगिए। हे धर्मप्रिय, समयानुसार ही धर्माचरण करना चाहिए। पृष्ठ संख्या 37। इस प्रकार मगध के अधिपति ने विविध प्रकार से राजकुमार को समझाया, परंतु वह कैलाश पर्वत के समान अटल रहा और जरा भी विचलित नहीं हुआ। काम निंदा। मगध राज के मुख से अपने लक्ष्य के लिए प्रतिकूल बातें सुनकर भी सिद्धार्थ ने शांतिपूर्वक निर्विकार भाव से उत्तर देते हुए कहा, हे हर्यंक वंशी राजा, आपने अपने मित्र के पक्ष में जो कुछ भी कहा है वह आश्चर्यजनक नहीं है। पूर्वजों की मैत्री को सज्जन अपनी प्रीति परंपरा से और भी बढ़ाते हैं। सचमुच जो धनहीन मित्र की भी सहायता करता है वही सच्चा मित्र कहलाता है। इसलिए हे राजन, मित्रता और सज्जनता के कारण मैं आपको उत्तर तो नहीं दे सकता, परंतु अनुनय अवश्य करना चाहता हूं। मैं तो जरा और मृत्यु के भय से ही मोक्ष की इच्छा से धर्म की शरण में आया हूं। इसलिए मैंने काम को त्यागा है और उसी के साथ अपने बंधुओं को भी छोड़ा है। मैं सांपों से, वज्रपात से या प्रचंड अग्नि से भी उतना नहीं डरता जितना मैं विषयों से डरता हूं। काम अनित्य है, वह ज्ञान रूपी धन का चोर है, वह मोह पाश में बांधता है। जैसे पवन प्रेरित अग्नि ईंधन से तृप्त नहीं होती, वैसे ही विषय तृषित व्यक्ति कभी विषय भोगों से तृप्त नहीं होता। जैसे अनंत नदियों के गिरने से भी समुद्र की तृप्ति नहीं होती, वैसे ही काम के भोग से मनुष्य को कभी तृप्ति नहीं मिलती। देखिए, देवों द्वारा स्वर्ण की वर्षा किए जाने पर सभी द्वीपों को जीतने के बाद और इंद्र का आधा शासन प्राप्त करने के बाद भी मानधाता को तृप्ति नहीं मिली। विषयों का चिंतन भी अमंगल है, इसीलिए सज्जन काम का त्याग करते हैं। यह जानकर भी इस काम के विष को कौन ग्रहण करेगा। आप जानते हैं कि संगीत की आसक्ति से हिरण मरते हैं, रूप की आसक्ति से पतंगे जल जाते हैं, मांस के लोभ से मछलियां प्राण देती हैं। आसक्ति का परिणाम ही विपत्ति है। इसीलिए मैं मानता हूं कि इनसे दूर रहना ही बुद्धिमानी है। मैं जानता हूं ना राजा सदा हंसता रहता है और ना दास सदा संतप्त रहता है। मेरे लिए राजा और दास दोनों ही बराबर हैं। संपूर्ण पृथ्वी को जीतकर भी सम्राट अपने निवास के लिए एक ही पुर चुनता है। राजा भी एक जोड़ा वस्त्र पहनता है और एक ही शैया पर सोता है। शेष सब कुछ तो मात्र दिखावा है, मद है। पृष्ठ संख्या 38। संतोष हो जाने पर मनुष्य को यह सारा संसार निरर्थक लगने लगता है। इसलिए मैं जानबूझकर कल्याण के मार्ग पर प्रवृत्त हुआ हूं। आप मित्र होने के नाते कामना कीजिए कि मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूं। मैं न तो क्रोध से वन में आया हूं, न पराजित होकर किसी फल विशेष की इच्छा से आया हूं। इसलिए मैं आपकी बात नहीं मान पा रहा हूं। मैं तो संसार रूपी वाण से धायता होकर शांति पाने की इच्छा से निकला हूं। मुझे तो स्वर्ग का राज्य भी नहीं चाहिए, इस पृथ्वी के राज्य की बात ही क्या। हे राजन, आपने कहा था कि त्रिवर्ग का संपूर्ण रूप से सेवन करना ही परम धर्म है। आपकी यह बात मुझे अनर्थकारी लगती है, क्योंकि त्रिवर्ग नाशवान है और संतोषप्रद भी नहीं है। मैं तो परम पद उसे मानता हूं जिसमें न जरा है, न भय है, न रोग है, न जन्म है
न मृत्यु है, न व्याधि है, और जिसके पाने के बाद भी कुछ करणीय नहीं रहता है। यमराज सभी को किसी भी अवस्था में बलात् खींच लेता है, इसलिए कल्याण के लिए वृद्धावस्था की प्रतीक्षा करना उचित नहीं है। हे राजन, अब मुझे ठगा नहीं जा सकता है। मैं वह सुख नहीं चाहता जो दूसरों को दुख देकर प्राप्त किया जाता है। मैं यहां आया था और अब मोक्षवादी अराड़ मुनि

अपनी रक्षा करें। कुमार भिक्षु के ये आशीर्वचन सुनकर मगधराज ने बड़े अनुनय के साथ हाथ जोड़े और कहा, आप अपना अभीष्ट प्राप्त करें, कृतार्थ हों और समय आने पर मेरे ऊपर भी अनुग्रह करें। अच्छा, ऐसा ही हो, कहकर सिद्धार्थ वहां से वैश्वंतर आश्रम की ओर चले गए। मगधराज भी सिद्धार्थ के परिव्राजक के रूप में विस्मित होकर अनुचरों के साथ राजगृह की ओर लौट गए। प्रश्न एक, सिद्धार्थ को निर्वाण के विषय में पहली प्रेरणा किस प्रकार मिली? दो, राजकुमार ने तपोवन न जाने के लिए राजा के समक्ष क्या क्या शर्तें रखी? पृष्ठ संख्या 39। तीन, छंदक कौन था? सिद्धार्थ ने उसे नींद से क्यों जगाया? चार, सिद्धार्थ से अलग होने पर छंदक और कंथक की दशा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। पांच, तपोवन में सिद्धार्थ ने तपस्वियों को क्या करने के लिए कहा? छह, वन से लौटने के संबंध में राजमंत्री के तर्क सुनकर सिद्धार्थ ने क्या कहा? सात, बिंबसार ने सिद्धार्थ की सहायता के लिए क्या प्रस्ताव रखा? यहां अध्याय 2 समाप्त होता है। संक्षिप्त बुद्ध चरित्र। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 8 की हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक संक्षिप्त बुद्ध चरित्र का ध्वनि पाठ। वाचन स्वर अजीत होरो। निर्माण सहयोग सौम्या मलिक। ध्वन्यंकन विकास सांगवान। निर्माण वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।

0: नमस्कार, आप सुन रहे FM पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सफर इस कार्यक्रम में। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए, आज 19 सितंबर है, गणेश चतुर्थी, गणेश उत्सव की शुरुआत होती है आज। और विशेष आज बात करें तो सुनीता विलियम्स, कुंवर नारायण, श्रीपद दामोदर, सत वेलकर, सैयद फजल अली खां, इन सभी का जन्मदिन है। और इसके साथ ही बलवंत राम मेहता, सरस्वती प्रसाद, विष्णु नारायण भातखंडे, पी शीलू एओ रफीदौल्ला, इन सभी का पुण्य दिवस है। तो आइए आज के इस कार्यक्रम में कुछ खास बातें आपसे शेयर करूंगा और कुछ खास लोगों की जीवन कहानी से आपको रूबरू कराने वा। कहते हैं प्रयास फिर से प्रयास, और तब तक प्रयास जब तक जीत न हासिल हो जाए, यही सफलता का मूल मंत्र है। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर, जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत के साथ। सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
1: नमस्कार, मैं हाकम खान आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, माने आवे पिया जी हिचकी, मारो वादी लो चितारे माने आवे हिचकी। सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए संपर्क करावे हमारे टेलीफोन नंबर है 9001313752, 9001313752, ये हमारे टेलीफोन नंबर है। मधुबन रेडियो की तरफ से पसंद किया जा रहा है राजस्थानी लोकगीत आवे माने हिचकी। हमारा संगीत कला केंद्र है जहां हमारे संगीत बच्चे सिखलाई लेते हैं। बच्चों को संगीत सिखलाई के लिए हमारे को कमाईचा, खड़ताल, ढोलक, हारमोनियम सिखाया जाता है। तो संगीत सिखलाई के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम में जरूर हमारे संपर्क करें। संगीत निर्देशक हाकम खान

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: सड़क पर से रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय दोनों तरफ पहले देखें, फिर अपना वाहन रेलवे क्रॉसिंग से पार करें। रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय उचित नियमों का पालन करें, इसमें आपकी व रेलवे की सुरक्षा है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हैं। और बातें कर रहे थे हम लोग 19 सितंबर की, और सुनीता विलियम इनका जन्मदिन है आज, और कुंवर नारायण जी, श्रीपद दामोदर और सैयद फजील अली। तो आइए इनमें से कुछ लोगों की जीवन कहानी से मैं रूबरू कराऊंगा, और सबसे पहले सुनीता विलियम्स के बारे में बात करते हैं। जी हाँ, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के माध्यम से अंतरिक्ष जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला है। ये भारत के गुजरात के अहमदाबाद से ताल्लुक रखती है। इन्होंने एक महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में 194 दिन और 18 घंटे रहकर नया विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है। उनके पिता दीपक पंड्या अमेरिका में एक डॉक्टर हैं। आइए विस्तार से जानते हैं सुनीता विलियम के बारे में। आज ही के दिन 19 सितंबर 1965 को अमेरिका के ओहियो राज्य में यूक्लिड नगर स्थित क्यूलैंड में इनका जन्म हुआ। उनके पिता डॉक्टर दीपक एन पंडा एक जाने माने तांत्रिक वैज्ञानी एमडी हैं, और जिनका संबंध भारत के गुजरात राज्य से है। सुनी यानी सुनीता, इनकी माँ बोनी जालोकर पंड्या है, और सुनीता विलियम एक बड़ा भाई जया थॉमस पंड्या और एक बड़ी बहन डायना और डायना एन पंड्या है। जब सुनीता एक वर्ष से कम की थी तो तभी पिता 1958 में अहमदाबाद में अमेरिका के बोस्टन में आकर बस गए थे। ढेर सारे चाचा चाची और चचेरे भाई बहनों को छोड़कर ज़्यादा खुश नहीं थे, लेकिन परिवार के पिता दीपक को उनके चिकित्सक पेशे में प्रोत्साहित किया और सब जो है वहाँ अहमदाबाद छोड़कर वहाँ बैठ गए। और यहाँ पर शिक्षा और दीक्षा की बात करें तो सुनीता विलियम मूलतः मैनचेस्टर की निवासी है, और उन्होंने माइकल जे विलियम से विवाह किया है। और मैनचेस्टर से ही हाई स्कूल पास करने के बाद 1987 में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की नौसैनिक अकादमी से फिजिकल साइंस में बीएस की उपाधि प्राप्त की, और उसके पश्चात 1995 में उन्होंने फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में एमएस की उपाधि हासिल की है। और फिर उसके बाद उनका चयन हुआ नासा में। 1998 में उनका अमेरिका में विशेष रूप से नासा में चयन हुआ और ट्रेनिंग शुरू हो गई। सुनीता भारतीय मूल की दूसरी महिला है जो अमेरिका के अंतरिक्ष मिशन पर गई, और सुनीता विलियम ने सितंबर अक्टूबर 2007 में भारत का दौरा भी किया। 1998 से नासा से जुड़ी सुनीता ने अभी तक कुल 30 अलग अलग अंतरिक्ष यानों में 2770 उड़ानें भरी हैं। साथ ही सुनीता सोसाइटी ऑफ एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट, सोसाइटी ऑफ पायलट टेस्ट इंजीनियरिंग, अमेरिका हेलीकॉप्टर एसोसिएशन जैसे संस्थाओं से भी जुड़ी है। वहीं इनके बारे में और जानकारी हासिल करते हैं थोड़ी देर में। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर, जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: ओम शांति, मैं हूँ मोनिका पटेल और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी जो है इसी तरह से जो है हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जो ईश्वरीय ज्ञान जो है ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय ज्वाइन करके प्राप्त करते रहिए मेरी तरह। और सदा सदा आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और सुनीता विलियम के बारे में बात कर रहे थे। नासा में जुड़ने के बाद काफ़ी अलग अलग संस्थाओं से जुड़कर वो वहाँ संस्थाओं से जुड़ी और जिसके बाद व्यक्तित्व की अगर हम लोग बात करें तो सुनीता विलियम महिला एक व्यक्ति अनेक, व्यक्तित्व अनेक ऐसा कहा जाता है। इनकी सच्ची कहानी ये है। सुनीता विलियम नौसेना पोत चालक, हेलीकॉप्टर पायलट, परीक्षण पायलट, पेशेवर नौसैनिक, गोताखोर, तैराक, धर्मार्थ दंड जुटाने वाली, पशु प्रेमी, मैराथन धाविका और अब अंतरिक्ष यात्री और विश्व कीर्तिमान धारक है। एक साधारण व्यक्तित्व से ऊपर उठकर सुनीता ने अपनी असाधारण संभवता को पहचाना और कड़ी मेहनत तथा आत्मविश्वास के बल पर उसका भरपूर उपयोग किया। अपनी असाधारण सफलता से उन्होंने उन लोगों के लिए एक प्रतिमान तैयार किया है जो उनके पदचिन्हों पर चलना चाहते हैं। ये सफलता उन्होंने अपने स्नेही और सहयोगी परिवार व मित्रों के सहयोग से प्राप्त की है। सम्मान और पुरस्कार कार्य क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों से उन्होंने नेवी कमेंडेशन मेडल 2, नेवी एंड मैरिन कप अचीवमेंट मेडल, ह्यूमैनिटेरियन सर्विस मेडल जैसे कई सम्मानों से सम्मानित किया गया है उन्हें। सुनीता विलियम को सन 2008 में भारत सरकार द्वारा विज्ञान और अभियांत्री के क्षेत्र में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो ये थी कुछ खास बातें सुनीता विलियम के बारे में। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और ढेर सारी शुभकामनाएं।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हैं। अब बात करते हैं एक और शख्सियत के बारे में, कुंवर नारायण जी के बारे में। जी हाँ, कुंवर नारायण जी की बारे में अगर बात करूँ तो हिंदी के ये भी एक बहुत ही सम्मानित कवियों में इनका नाम आता है। कुंवर जी एक विशेष व्यक्ति और हिंदी साहित्य की भयानक गुटबाजी के परे सर्वमान्य है और उनकी ख्याति सिर्फ एक लेखक ही नहीं बल्कि कला की अनेक विधाओं में गहरी रुचि रखने वाले रसिक विचारक के समान भी है। कुंवर नारायण को अपनी रचनाशीलता में इतिहास और मिथक के माध्यम से वर्तमान को देखने के लिए जाना जाता है। उनका रचना संसार इतना व्यापक और जटिल है कि उनको कोई एक नाम देना संभव नहीं है। फिल्म समीक्षक तथा अन्य कलाओं पर भी अनेक लेख नियमित रूप से पत्र पत्रिकाओं में छपते रहते हैं। अपने अनेक अन्य भाषाओं के कवियों का हिंदी में अनुवाद किया है और उनकी स्वयं की कविताओं और कहानियों के कई अनुवाद विभिन्न भारतीय और विदेशी भाषाओं में छपे हैं। आत्मजयी का 1989 में इतलवी अनुवाद रोम में प्रकाशित हो चुका है। युग चेतना और नया प्रतीक तथा छायानट के संपादक मंडल में भी कुंवर नारायण है। तो आइए इनके बारे में बात करते हैं। 19 सितंबर 1927 को कुंवर नारायण का जन्म उत्तर प्रदेश के फौजाबाद

जिले में हुआ। कुंवर जी ने अपनी इंटर तक की परीक्षा विज्ञान वर्ग के अभ्यर्थी के रूप में प्राप्त की थी, किंतु साहित्य में गहरी रुचि होने के कारण वे आगे साहित्य के विद्यार्थी बन गए। लखनऊ विश्वविद्यालय से 1951 में अंग्रेजी साहित्य में एमए किया और 1973 और 79 तक वे संगीत नाट्य अकादमी के उप पीठाध्यक्ष भी रहे। कुंवर जी ने 1975 से 1978 तक आज्ञे द्वारा संपादित मासिक पत्रिका से संपादक मंडल के सदस्य रूप में कार्य किया। कुंवर नारायण की माता, चाचा और फिर बहन की असमय ही टीबी के कारण मृत्यु हो गई थी, जिसकी वजह से उनकी मुश्किल थी थोड़ी शुरुआत में, लेकिन बीमारी से उनकी बहन ब्रहरानी की मात्रा 19 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हो गई। इससे उन्हें बड़ा कष्ट और दुख पहुंचा। कुंवर नारायण के अनुसार मृत्यु का साक्षात्कार व्यक्तिगत स्तर पर था और सामूहिक स्तर पर भी था। दूसरा विश्वयुद्ध खत्म होने के बाद 55 में पोलैंड गया था और विश्वनाथ प्रताप सिंह भी गए थे उनके साथ में। वहाँ उन्होंने युद्ध में विध्वंस को देखा और तब से जो है अगले 27 साल उनका जो है 27 साल की उम्र में उन्होंने ये सारी चीज़ें देखी। इसलिए वे अपने लेखन में जी जी विषय की तलाश करता हूँ। मनुष्य की जो जीविषा है, जो जीवन है, वो बहुत बड़ा यथार्थ है। लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में पारस्नातक करने पर कुंवर नारायण ने पुस्तैनी ऑटोमोबाइल बिजनेस में काम करना शुरू कर दिया, लेकिन बाद में आचार्य जेबी कृपलानी, आचार्य नरेंद्र देव, सत्यजीत रे से प्रभावित होकर उनकी रुचि फिर से साहित्य की ओर आ गई। तो इस तरह से आई इनके बारे में और बातें आपसे करूंगा, लेकिन आपको अभी ले चलता हूं एक बहुत ही प्यारा सा गीत की तरफ। और ये गीत आपके लिए अभी हमारे सभी लिसनर्स विवा जी, अर्शिदा जी, जैनाब जी, अंजिता जी, खुशी जी, सुगना बहन, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ में हमारे सुरेश जी एंड पार्टी, सारे सुरेश भाई और सुभाष जी जलगांव से, उपाराम जी विशेष कोदड़ा से, भूपत सिंह जी सिद्धपुर से और मदन जी, सभी को कंचन भाई और हमारे उमेश सिंह जी और सभी को याद करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। लखमारा लाखनी से उदयाराम जी और रमेश जी राधनपुर से, उन्हें भी याद करते हैं। बहुत समय के बाद उन्होंने फ़ोन किया था, लेकिन रेडियो रेगुलर सुनते हैं, बस फ़ोन कम करते हैं, ये उन्होंने बताया है। तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं करते हैं। ये प्यारा गीत आपके नाम, सुनते रहो मस्कराते रहो।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। जी हाँ, ये कुंवर नारायण जी की बातें चल रही थी और आत्मजयी उनको कहा गया है, क्योंकि मृत्यु संबंधित शाश्वत समस्या को कठोपनिषद का माध्यम बनाकर अद्भुत व्याख्या के साथ इन्होंने लोगों के बीच में उस बात को रखा। इसमें नचिकेता अपने पिता की आज्ञा मृत्यु के वो दादा मिति अर्थात मैं तुम्हें मृत्यु को देता हूँ को शिरोधर करके यम के द्वारा द्वार पर चला जाता है, जहाँ वो 3 दिन तक भूखा प्यासा रहकर यमराज के घर लौटने की प्रतीक्षा करता है। उसके इस साधना से प्रसन्न होकर यमराज उसे 3 वरदान मांगने की अनुमति देते हैं। नचिकेता इनमें से पहला वरदान ये मांगता है कि उसके पिता वज्रस्रव का क्रोध समाप्त हो जाए। इस तरह से ये बातें जो हैं उन्होंने बड़ी यूनिक तरीके से लिखे, जिसके लिए उन्हें याद किया जाता है। उनके संग्रह परिवेश हम तुम के माध्यम से मानवीय संबंधों की एक विराल व्याख्या हम सब के सामने आई है। और कुंवर नारायण ने हिंदी के काव्य पाठ में एक नई तरोताजगी पैदा की थी। नचिकेता के इस कथन को आधार बनाकर कुंवर नारायण जी 2008 में आई उनका ब्रजस्वा के बहाने, उसमें उन्होंने पिता ब्रजवास के मन में जो उल्डेना चल रहा है उसे अत्यधिक सात्विक शब्दावली में काव्य रंग रूप में सजाया है। और विराल विशेषता यह है कि अमृत को एक आध्यात्मिक सूक्ष्म संवेदना शब्दावली देकर नए उत्साह परक जीविषा को वाणी दी, जहां एक और आत्मजयी में कुंवर नारायण ने मृत्यु जैसे विषय का निर्माण किया है, वहीं इसके ठीक विपरीत इस व्रज सभा के बहाने कृति में अपनी विधायक संवेदना के साथ जीवन के आलोक को रेखांकित किया है। संगीत नाट्य अकेडमी से भी जुड़े और फिर और उसके उपाध्यक्ष से बनाए गए और संगीतकारों के संपर्क में और निकट आने का अवसर उनको मिला और संगीत से पुराना नाता रहा है। और वो कहते हैं मैं फयाज खां, ओमकार नाथ ठाकुर, अच्छन महाराज, शंभू महाराज आदि से अक्सर मिलता जुलता था। उनके सानिध्य ने मेरे साहित्य संस्कृति को समृद्ध किया। फिल्म फेस्टिवल पर भी लिखता रहा हूँ। विष्णु करे, विनोद भारद्वाज और प्रयाग शुक्ल के साथ मिलकर हमने सोचा कि हिंदी में फिल्म समीक्षक अपेक्षा है। दरअसल बचपन से ही मुझे सिनेमा देखने का शौक रहा और हजरतगंज लखनऊ में 3 सिनेमा हॉल थे जिनमें रोज शाम को सिनेमा देखा करते थे। 40, 50 और 60 की ये बात है। साहित्य अकेडमी का विशेष सदस्य बने और फिर उसके बाद सिनेमा में रुचि के कारण सिनेमा पर वो लिखते रहे और विशेष कविता संग्रह, कहानी संग्रह, समीक्षक विचार संकलन जो है काफ़ी लंबा इनका साहित्य जगत है और समलोचना और पुरस्कार तो इनके लिए बहुत छोट

0: हुए। उनका साहित्य में दिया गया योगदान हमेशा याद रखा जाएगा, अविस्मरणीय है। कवि अशोक वाजपेयी लिखा करते हैं, लिखते हैं संगीत, सिनेमा, कविता और दर्शन पर पकड़ रखने वाले साहित्यकार कुंवर नारायण हमेशा याद आएंगे। तो ये थी कुछ खास बातें कुंवर नारायण जी के बारे में। आप सुना है रेडियो मधुबन पर, जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को। चलिए आगे बढ़ते हुए एक और गीत आप सभी के लिए। आप सुना है रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
1: से है पहले कनाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई, तेरा मुझसे

तेरा मुझसे है पहले कनाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई, तेरा मुझसे

तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई, तेरा मुझसे है पहले।

तेरा मुझसे है पहले कनाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई, तेरा मुझसे है पहले।

तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई, तेरा मुझसे है पहले।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, 107.8 एफएम पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आइए कवर्नर

बहन जी की कहानी सुनकर बड़ा अच्छा लगा होगा आपको, क्योंकि व्यक्ति ही ऐसे थे और इतने विधाओं में लिखना नचिकेता और उनकी कहानियां जो है बड़ी पॉपुलर रही है। शायद आपने पढ़ी होगी तो शायद आपको उनकी कहानियां या उनकी बातें, उन कैसे लेखक थे ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब आखिरी में एक और शख्सियत के बारे में बात करते हैं, सैयद फजल अली खां के बारे में। अली के बारे में, भारतीय न्यायाधीश थे जो भारत के दो राज्य आसाम और उड़ीसा के राज्यपाल रहे और 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं। सैयद फजल अली का जन्म आज के दिन 1886 को 19 सितंबर को हुआ। एक कुलीन जमींदार परिवार में उन्होंने कानून का अध्ययन किया और अभ्यास करना शुरू किया और आखिरकार उन्हें न्यायपालिका में जो है पद मिल गया। और सैयद अली का क्रामिक रूप में पहले खान साहब और बाद में खान बहादुर की उपाधि उनको दी गई और 1918 में सैयद फजल अली को ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर का अधिकारी भी बनाया गया और 1941 की नए साल की सम्मान सूची में नाइट की उपाधि भी दी गई और 1 मई 1942 को वायसराय लॉर्ड द्वारा अपने नाइटहुड के साथ निवेश किया गया। 1947 में भारत आज़ाद हुआ, नई व्यवस्था के तहत सैयद फजल अली 1952 और 56 तक उड़िया के राज्यपाल उड़ीसा के रहे और 56 से 59 तक आसाम के राज्यपाल रहे। आसाम के राज्यपाल के रूप में सेवा करते हुए सैयद फजल अली की मृत्यु हुई। आसाम में रहते हुए उन्होंने असंतुष्ट नागा आदिवासियों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए कड़ी मेहनत की। उन्होंने मोको कांचुंग में नागा हार्टलैंड में पहला कॉलेज खोला जिसे आज उनके सामने उनके समान फजील अली कॉलेज के नाम से जाना जाता है और 2010 में कॉलेज में अपनी 50वीं वर्षगांठ मनाई थी। सैयद अली को उनके राज्य पुनर्गठन आयोग का नेतृत्व किया गया था और भारत के राज्य के पुनर्गठन के बारे में सिफारिशें की थी। उनकी सेवाओं के लिए उन्हें भारत सरकार द्वारा देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण भी दिया गया था। तो ये थी कुछ खास बातें सैयद फजल अली खां के बारे में। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत के साथ ढेर सारी खुशियां। और चलिए वक्त हो गया है आपसे इजाजत चाहने का, लेकिन एक और गीत के बाद। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए, सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए, लिखे

लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए, सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए, लिखे जो खत तुझे।

0: जन्नत ये दामन है, लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए, लिखे जो खत तुझे।
1: मैं कमलेश माउंट आबू ढूंढे गाँव की रहने वाली भूसा और मैं सुन रही हूँ रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनता
2: नमस्कार। आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हैं और चलिए एक छोटी सी कहानी के साथ हम कार्यक्रम को पूरा करेंगे। बहुत पुराने समय की बात है, एक राजा ने जानबूझकर एक बड़ा सा चट्टान रास्ते के बीच में रखवा दिया। वही वो पास के एक बड़े से झाड़ी में छिप गया। वो ये देखना चाहता था कि आखिर कौन वो चट्टान रास्ते से हटाता है। उस रास्ते से बहुत से लोग आने जाने लगे, लेकिन किसी ने उस चट्टान को हटाना ठीक नहीं समझा। यहाँ तक कि राजा के दरबार के ही बहुत से मंत्री और धनी व्यापारी भी उस रास्ते से गुजरे, लेकिन किसी ने भी उसे हटाने ठीक नहीं समझा। उल्टा उन्होंने राजा को ही इस बाधा के लिए जिम्मेवार ठहराया। बहुत से लोगों ने राजा पर सड़कों को साफ न रखने के लिए जोर जोर से आरोप लगाया, लेकिन उसमें से किसी ने भी पत्थर को रास्ते से हटाने के लिए कुछ नहीं किया। तभी एक किसान सब्जियों का भार लेकर आया। शिलाखंड चट्टान के पास पहुंचने पर किसान ने अपना बोझ नीचे रखा और पत्थर को सड़क से बाहर धकेलने का प्रयास किया। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार उसे सफलता मिली। जब किसान अपनी सब्जी लेने वापस गया तो उसने देखा कि सड़क पर एक पर्स पड़ा था, जहां पत्थर पड़ा था वहां पर। पर्स में कई सोने के सिक्के और राजा का एक नोट था, जिसमें बताया गया था कि सोना उस व्यक्ति के लिए था जिसने सड़क से चट्टान को हटाया था। दोस्तों, कहानी ये सीख देती है कि इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में हमारे सामने आने वाली हर बाधा हमें अपनी परिस्थिति को सुधारने का अवसर देती है, और जबकि असली शिकायत करते हैं, आलसी शिकायत करते हैं हमेशा, दूसरे अपने दयालु हृदय, उदारता और काम करने की इच्छा के माध्यम से अवसर पैदा कर देते हैं। तो है ना कमाल की बात। आप सुना है रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। जी हाँ, सफ़र इस कार्यक्रम को, और आज के इस सफ़र कार्यक्रम में इस कहानी के साथ आपको काफ़ी सीख मिल गया होगा। तो फिर से एक बार आप सभी को ढेरों शुभकामनाओं के साथ मैं यही कहूँगा कि हमेशा कामयाब होना है तो अच्छे मित्र बनाएं, और सबसे अधिक सफल होना है तो आपकी बुराई करने वालों की संख्या भी ज़्यादा होनी चाहिए। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर, जी हाँ, सफ़र इस कार्यक्रम को। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं अगले कड़ी में कुछ नई बातें लेकर। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत।

107.8 FM रेडियो मधुबन सुन रहे हैं आप, और रेडियो मधुबन पे समय हो गया है कार्यक्रम युवा मंच का। जी हाँ दोस्तों, 107.8 FM आपका अपना रेडियो मधुबन है, और इस कम्युनिटी रेडियो में हम आपके लिए लेकर आते हैं अलग अलग विषयों के कार्यक्रम। और अभी जो विषय का कार्यक्रम है

0: जहाँ पर हम युवाओं की बात करते हैं, युवाओं से जुड़ी हुई चीज़ों की बात करते हैं, और कई बार बात करते हैं कि हमारा समाज हमारे युवाओं को क्या सपोर्ट दे सकता है ताकि वो निश्चिंत होकर आगे बढ़ सके। इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ जो अतिथि मौजूद हैं युवा मंच में, इस मंच पे आज मौजूद हैं रवि महाजन जी। रवि महाजन एक ऐसे युवा हैं जो आज के समय का जो एक सबसे चर्चित विषय है, जहाँ पर हम डिजिटल पेमेंट की बात करते हैं, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ की बात करते हैं, ऑनलाइन बुकिंग्स की बात करते हैं, और जब भी कोई चीज़ होती है तो हम कहते हैं कि अरे भैया कौन जाके लाइन लगाएगा, हम ऑनलाइन बुक कर लो ना, ऑनलाइन निकाल लो ना, ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दो ना। तो ऐसे ही विषयों में जब इतनी टेक्नोलॉजी हमारे को सुविधा प्रदान कर रही है, उसी समय कुछ लोग ऐसे हैं जो अच्छी चीज़ों के अंदर भी बुराई ढूंढ लेते हैं, और ऐसे ही बुराइयों करने वालों को पकड़ने के लिए सरकार को साइबर सिक्योरिटी विभाग बनाना पड़ता है। तो महाराष्ट्र में साइबर सिक्योरिटी विभाग में कार्यरत रवि महाजन हैं, जो साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट हैं, और सबसे पहली बात तो वो युवा है। बहुत बहुत स्वागत है रवि जी आपका।
1: नमस्ते, ओम शांति।
0: कैसे हैं रवि भाई?
1: बस बढ़िया।
0: तो जैसा कि मैं हमारे श्रोताओं को बता रहा था कि एक ऐसा विषय जो आज के समय का बजवर्ड है, साइबर साइबर साइबर, किसी को भी कहो डिजिटल साइबर,
1: राइट।
0: और बहुत बार तो सरकार इस बात को प्रमोट करती आती है कि भैया आप ऑनलाइन चीज़ों का इस्तेमाल करें, अभी कैश कम यूज़ करें, डिजिटल कैश यूज़ करें,
1: राइट,
0: और बुकिंग के लिए लाइन नहीं लगाएं, डिजिटली करें,
1: राइट।
0: जैसे तो इस समय पर आप लोगों की उपयोगिता बहुत बढ़ जाती है,
1: राइट।
0: तो क्योंकि ये मंच युवाओं का मंच है, तो मैं युवाओं की ओर से आपको ये पूछना चाहूँगा कि ये जो फील्ड है, ये आपने कैसे चुनी, अपने बारे में कुछ बताइए और इस फील्ड के बारे में बताइए।
1: हाँ जी, नाम रवि महाजन। मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट में साइबर फॉरेंसिक डिवीजन एज अ साइंटिफिक ऑफिसर, जिसे हिंदी में कहते हैं वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में मैं कार्यरत हूँ।
0: जी,
1: नागपुर डिस्ट्रिक्ट में हूँ
0: जी।
1: और कई मीन्स बहुत सारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जैसे ईडी, सीबीआई, एनआई, एटीएस महाराष्ट्र, क्राइम ब्रांच और पुलिस स्टेशन और ऑल महाराष्ट्र, जिसमें तांत्रिक जो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के लिए जो भी हेल्प दिया है, तो नियर अबाउट 12 साल का एक्सपीरियंस जो है तो इसी फील्ड में, जिसमें इन्वेस्टिगेशन, साइबर सिक्योरिटी, साइबर फॉरेंसिक, इंसिडेंट हैंडलिंग, तो इस सब चीज़ों में
0: काम करते हैं।
1: हाँ,
0: तो मेरा ये सवाल है कि ये जो फील्ड है, थोड़ी सी सुन करके बहुत सारे लोग इस साइबर के मतलब इंटरनेट के द्वारा होने वाले अपराधों से पीड़ित रहते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। एक रोज़ कभी ना कभी कोई भी अखबार उठा लो, आज इनके इंटरनेट के द्वारा धोखाधड़ी करके 50 लाख उठा लिए, इसको ये नुकसान कर दिया, या कभी किसी की फ़ोटो कुछ उटपटांग बना के डाल दी, कई बार तो बहुत ज़्यादा भी सीरियस हो जाते हैं। तो आपने इस फील्ड को कैसे चुना?
1: तो फील्ड में चुनाव तो नहीं, लेकिन अपन कहते हैं ना कि एक नदी की एक जैसे बहाव होता है, लेकिन बहाव में भी एक एकाग्रता होती है, राइट
0: जी।
1: तो उस बहाव से मैं इस फील्ड में आ गया, और जो फील्ड मैंने चुन लिया तो उसको बहुत अच्छे तरीके से उसको बिल्डअप किया, और उसमें अपना 100% जो है, जैसे कि बोलते हैं एकदम स्टिक, तो उस टाइप में मैं इस फील्ड में से बहता गया, और हर पॉइंट पर मैं एक एनालाइज करता रहा, साइबर सिक्योरिटी फील्ड में हो चाहे साइबर फॉरेंसिक, इंसिडेंट हैंडलिंग, ये सब चीज़ों में मैं परफेक्ट बनने की मैंने कोशिश किया।
0: क्या पढ़ाई करनी पड़ती है अगर कोई साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में जाना चाहता है?
1: इसमें तो एक कंप्यूटर आपका बेसिक होना चाहिए, मास्टर डिग्री होना चाहिए, या बी कंप्यूटर होना चाहिए, इंजीनियरिंग या समथिंग कुछ साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड। अभी मास्टर डिग्री भी बहुत सारे गवर्नमेंट ने, अभी यूनिवर्सिटीज़ ने ओपन किया है एक साइबर सिक्योरिटी अलग सा डिपार्टमेंट, उन्होंने बहुत सारे भारत में ऐसी यूनिवर्सिटी जैसे
0: ब्रांच खोली
1: है, यस, ब्रांच अलग से ब्रांच खोली है, जैसे नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी है, उसके बाद इसमें भी एक आपका सिक्योरिटी मास्टर इन साइबर सिक्योरिटी, मास्टर इन साइबर फॉरेंसिक, तो ये ऐसे अलग अलग ब्रांचेस, स्पेशल ब्रांचेस यूनिवर्सिटीज़ ने निकाले।
0: तो मैं महसूस होता है कि जैसे बहुत सारे तो विभाग हैं सुरक्षा के लिए सरकार ने बनाए हैं, चाहे वो भारतीय सेना हो या फिर पुलिस विभाग हो, राज्य की पुलिस हो, सीआरपीएफ हो, लेकिन ये एक ऐसा विभाग है जैसे कि वो कंप्यूटर पे बैठ के ज़्यादा काम करना होता होगा।
1: राइट राइट राइट, कंप्यूटर पे बैठ के काम, दैट इज़ द अनदर थिंग, लेकिन यहाँ पे दिमाग भी, जैसे शारीरिक प्लस मानसिक, इसका दोनों का बैलेंस आपको रखना पड़ता है।
0: ओके।
1: और रिजल्ट जो रहता है साइबर सिक्योरिटी के लिए, जिस आप एनालिसिस करें हर चीज़, तो उसके लिए पेशेंस भी बहुत जरूरी है।
0: ओके, धीरे रखना पड़ता है।
1: तो ही रिजल्ट अपने को आ सकता है।
0: बिल्कुल सही बात दोस्तों, जैसे आप सुन रहे हैं कि साइबर सिक्योरिटी माना खाली कोई हाथ में डंडा लेके रखवाली नहीं करनी है बंदूक लेके, लेकिन बुद्धि के घोड़े दौड़ाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपने एक शब्द मुझे अभी थोड़ी देर पहले कहा कि जैसे एविडेंस, उसको बारे में कुछ कहा, तो दूसरा आपने एक साइंटिफिक स्टडी करने फॉरेंसिक का शब्द यूज किया। फॉरेंसिक का माने क्या होता है?
1: फॉरेंसिक जैसे हम कहते हैं कि अगर कुछ एक चीज है, जैसे उसमें हम जैसे हम पीएचडी करते हैं, तो एक सब्जेक्ट में हम क्या करते हैं, पीएचडी करते हैं, राइट। तो फॉरेंसिक एक ऐसी चीज है जिसमें आपको ओवरऑल नॉलेज चाहिए होता है, जैसे कंप्यूटर सिक्योरिटी का नॉलेज चाहिए होता है, राइट। आपको प्रोग्रामिंग का नॉलेज चाहिए, आपको डेटाबेस का नॉलेज चाहिए, आपको नेटवर्किंग का नॉलेज चाहिए, राइट। तो अलग अलग जो मीन्स कोडिंग का नॉलेज चाहिए, अलग अलग जो डोमेन है सिक्योरिटीज के बाद में मीन्स व्हाट एवर रिलेटेड टू कंप्यूटर,
0: ओके।
1: सो इस सब मिला के वो फॉरेंसिक, साइबर फॉरेंसिक ये बनाए। मीन्स कल समझो हमारे जैसे हमारे यहाँ पे भी क्राइम रजिस्टर होता है,
0: ओके,
1: राइट। जैसे डेटा थेफ्ट होता है,
0: जी जी जी,
1: डेटा थेफ्ट होता है किसी कंपनी से, तो वो रजिस्टर होता है,
0: केस बनता है।
1: हाँ, जैसे पेट्रोल पंप के कुछ अलग फेक पेट्रोल पंप में चिप लगाते हैं तो प्रोग्रामिंग असेंबल हो जाती है। तो जैसे पेट्रोल में आपको समझो 99-100 रुपीज का पेट्रोल डालना है,
0: जी जी,
1: तो कई बार ऐसा देखा गया कि 60 रुपीज का ही आपको पेट्रोल मिला है, बाकी 40 का मिला है। तो ये दैट इज द प्रोग्रामिंग,
0: कंप्यूटर की छेड़छाड़,
1: राइट। प्रोग्रामिंग करके वो छेड़छाड़ करना चिप में, और उसकी तो फायदा उनको ही होता है, लेकिन नुकसान तो
0: जनता को होता है। तो ये भी साइबर सिक्योरिटी में आता है?
1: हाँ, ये भी साइबर सिक्योरिटी
0: माना कंप्यूटर से जुड़े हुए,
1: कंप्यूटर फॉरेंसिक में आता है, जैसे कोडिंग एनालिसिस उसमें हम करते हैं, राइट। जैसे डेटा थेप में हम अलग अलग जो डोमेन रहते हैं, जैसे उसने अगर किसी एम्प्लॉय ने डेटा चुराया है तो किस फॉर्म में चुराया, बाय ईमेल चुराया है, बाय सोशल मीडिया एप्लीकेशन चुराया है, कुछ रिमोट डेस्कटॉप एप्लीकेशन से चुराया है, या लोकल उसका कुछ अकाउंट ऐसा है कि उस पर उसने अपलोड किया है डेटा कंपनी का। तो ऐसे अलग अलग जो केसेस है, तो बहुत सारा उसमें हमको डेटा देखना पड़ता है, अलग अलग फाइल्स हजारों में लाखों में कुछ फाइल एनालाइज करना
0: पड़ता है,
1: राइट।
0: ये तो बहुत मुश्किल काम है दोस्तों, क्योंकि स्थूल रूप से जो चीज़ दिख रही है आंखों के सामने, तो कैसे न भी कैसे हम देख लेते हैं कि भाई यहाँ पर ये हथियार इस्तेमाल हुआ है या और कोई चीज़ें, लेकिन जब कंप्यूटर की बात होती है तो ये सबकी बात सबके बस की बात नहीं होती है, क्या कहेंगे आप,
1: राइट।
0: तो जैसे मैं आपको पूछ रहा था कि हमारे दोस्त अगर साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में जाना चाहते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छा आपने बताया कि अलग अलग विश्वविद्यालय में इसके कोर्स होते हैं, और उस कोर्स को हम जाके परस्यू कर सकते हैं, और कोर्स को करने के बाद में फिर क्या करना पड़ता है,
1: राइट। तो कोर्स स्टार्टिंग करने से पहले आप नेटवर्किंग के जो कंसेप्ट है, कंप्यूटर के जो बेसिक कंसेप्ट है, तो उसकी थोड़ा एकदम डिटेल में आपने जाना चाहिए। फिर उसके बाद जो भी साइबर सिक्योरिटी स्पेशल कोर्सेस है, जैसे इसी काउंसिल की साइबर इन इथिकल हैकिंग, राइट, उसके बाद साइबर इन इंसिडेंट हैंडलर, राइट, सर्टिफिकेट, तो अलग अलग प्रोफेशनल सर्टिफिकेट जो है वो अवेलेबल है, CHFI, हैकिंग एंड फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, राइट। लेकिन ये जो ये सब सिक्योरिटी के लिए बहुत ये सर्टिफिकेशन की बहुत मदद होती है। तो आप मास्टर डिग्री प्लस सर्टिफिकेशन प्लस आपका बेसिक नॉलेज नेटवर्किंग का, तो आप एक अच्छे एक्सपर्ट, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बन सकते हैं।
0: मैंने एक ओवरऑल 360 डिग्री आइडिया होना भी जरूरी है, और साथ साथ में कुछ ना कुछ स्पेशलाइजेशन भी हमारे को होना चाहिए,
1: राइट, जो ग्लोबली एक्सेप्टेड हो, ऐसे सर्टिफिकेट हमने करने चाहिए ताकि हम भारत में भारत की कंपनियों को अच्छे से इंफ्रास्ट्रक्चर दे सके जो ग्लोबल लेवल पे होते हैं,
0: कंपेटेबल,
1: यस।
0: माना कि क्योंकि क्राइम का जो है अब एक बॉर्डर भी क्रॉस हो चुकी है, कि कई बार ऐसे पता चलता है कि विदेश से हमारे मोबाइल में व्हाट्सएप आता है, फिर कोई लिंक आ जाता है, फिर कोई और कुछ हो जाता है। बीच में एक अखबार में मैंने पढ़ा था कि जैसे एक संगठित अपराध कहा जाता है, एक अपराध की श्रेणी है जहाँ पर जानबूझ करके अपराध किया जाता है, तो साइबर क्राइम में भी काफ़ी सारे संगठित अपराध हो रहे हैं, बहुत सारे लोग मिल के फेक कॉल सेंटर चला के मिल करके लोगों को बुद्धू बनाने का काम करते हैं,
1: राइट राइट। जैसे कि हम देखते हैं पेपर में, हम न्यूज़ पढ़ते, जैसे राजस्थान में भरतपुर है, मेवाड़ है, उसके बाद हरियाणा में कुछ डिस्ट्रिक्ट है, झारखंड में कुछ डिस्ट्रिक्ट है, तो ऐसी कुछ जगह है जहाँ पे ये एक सिस्टम चलता है, और वो टीम रहती है, पाँच से छः जने की टीम रहती है, फिर एक स्क्रिप्ट बोलता है इसके साथ में, सामने वाले के
0: टेलीफोन
1: पे, यस, टेलीफोन पे स्क्रिप्ट बोलता है, तो वो जैसे वो डिजिटल हिप्नोटिज्म करता है आपको, राइट।
0: इन सब मिल करके हाँ, आपको एक तरफ धकेल
1: तो आपको वो टाइम नहीं देते हैं। तो आप जैसे उनको ओटीपी बताएंगे या जो फ्रॉस्टर है वो आपको लिंक भेजेंगे, वो लिंक आप एक्सेस करेंगे, वो लिंक एक्सेस करने के बाद आपको वो बोलेंगे कि आप एक एप्लीकेशन है एनी डेस हो या कोई रिमोट डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो वो इंस्टॉल करने लगाते और आपको चांस भी नहीं देते हैं राइट।
0: तो आप
1: अवेयर तो बहुत सारे बैंक कर रहे हैं, बहुत सारे न्यूज़पेपर में भी आता है कि आप ये मत करो वो मत करो ऑनलाइन में मीन्स कुछ कुछ एप्लीकेशन डाउनलोड मत। लेकिन हम उस वक्त बहुत हमें अवेयर रहने की ज़रूरत है कि सामने वाला जो बंदा है वो मुझे लिंक क्यों डाउनलोड करने लगा है राइट। अगर हम परमिशन देते हैं कोई भी लिंक को, जैसे बीच में बहुत सारी केसेस हुए जैसे फेक लोन ऐप राइट, तो वो जो लिंक तो रैंडमली इंस्टाग्राम पे आते थे, फेसबुक पे आती थी, व्हाट्सएप पे आते थे, तो जैसे ही हम डाउनलोड करते तो हमारा जो पूरा जो डेटा है मोबाइल का, तो उसमें गैलरी में जो भी पिक्चर हो गए, जो भी कॉन्टैक्ट्स हो गए, व्हाट एवर द कंटेंट इन मोबाइल फोन, तो सब एक्सेस वो हैकर्स को फ्रॉस्टर को मिल जाता है। तो फिर उसमें बाद में अगर आप उसको पैसे नहीं देते हैं स्क्रिप्ट के बाद, जैसे आप बोलते हैं वो फ्रॉस्टर बोलता है राइट
0: जी,
1: तो जैसे सामने वाले से पैसे नहीं आ रहे हैं तो आपको ब्लैकमेल करता है। तो आपको जो फोटो एडिट, जो आपकी जो फोटो है चाहे कोई फीमेल हो, तो उसका जो अल्ट्रेशन ऑफ बॉडी जो है, तो वो कुछ पिक लगा के, वल्गर पिक लगा के वो उनको ब्लैकमेल करते हैं
0: जोड़ तोड़ कर।
1: तो ऐसे समय में अपन खबरदारी रखने की एक नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाके पहले कंप्लेन करना है राइट। हर डिस्ट्रिक्ट में एक साइबर सेल ओपन हुआ है, या अभी जैसे गवर्नमेंट में एक प्लेटफॉर्म ओपन किया है 1930, आप कॉल तुरंत करेंगे तो आपका पेमेंट भी फ्रीज हो सकता है तुरंत।
0: मैंने अगर हम फाइनेंशियल फ्रॉड के शिकार हुए हैं तो हाँ, उसको रोक सकते हैं।
1: ओके। अगर आप उन सोशल मीडिया के मीन्स शिकार हो गए राइट, हमारी पिक्चर से समथिंग कुछ है, तो हम cybercrime.gov.in पे हम जाके वहाँ पे पहले दर्ज कराइए राइट। फिर बाद में लोकल पुलिस स्टेशन पे जाइए, और साइबर सेल डिस्ट्रिक्ट का हर सेल होता है साइबर सेल, तो वहाँ पे भी जाके हम कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं और तुरंत एक्शन हो सकती है।
0: चलिए बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके। और दोस्तों, युवा मंच कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और हमारे साथ मौजूद है रवि महाजन, एक्सपर्ट हैं और सबसे पहले वो एक प्रतिभाशाली युवा हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं। और जहां पर हम बात कर रहे हैं कि कैसे अच्छी चीज़ों के लिए बनाए गए जो साइंस के साधन हैं उनको भी लोग दुरुपयोग करके किस प्रकार से मिसयूज़ कर लेते हैं और समाज को, व्यक्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए गीत याद आ रहा है, वो गीत सुनते हैं और फिर लौट कर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए पेश है लता मंगेशकर जी की आवाज़ में झूठ बोले कौवा काटे, ये गीत सुनते हैं और फिर लौट कर आएंगे। रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्कार, गुड इवनिंग। 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, और दोस्तों कार्यक्रम चल रहा है युवा मंच। दोस्तों, युवाओं के मंच युवा मंच पे आज हमारे साथ मौजूद हैं रवि जी, जो एक प्रतिभाशाली युवा हैं और साथ साथ में एक साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट।
1: हाँ जी,
0: स्वागत है सर आपका वापस से।
1: हाँ जी,
0: तो जैसा हम बात कर रहे थे कि साइबर सिक्योरिटी के अलग अलग चीज़ें हैं, उसके महत्व है कि किस प्रकार से हम लोग एक दूसरे को साइबर के होने वाले अपराधों से बचा सकते हैं, और अगर किसी को इस फील्ड में जाना तो क्या कर सकते हैं। आगे मैं चलना चाहूँगा और पूछना चाहूँगा कि साइबर सिक्योरिटी की जो इश्यूज हैं, तो उसमें युवाओं का भी कई बार नाम आ जाता है। कई बार हम पढ़ते हैं कि इस बच्चे ने ये गेम का एप्लीकेशन डाउनलोड किया, फिर अपने पिताजी के या माताजी के अकाउंट से 6 लाख रुपया उसमें चले गए, या ऐसे कुछ कुछ ऐसी चीज़ें भी आती हैं आपके पास कुछ?
1: राइट, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, क्योंकि आजकल जो जैसे स्पॉन्जेस गेम जैसे पबजी है, राइट, उसके बाद में जैसे स्नेक के कुछ गेम्स हैं, राइट, तो जब हम ये खेलते हैं, राइट, जैसे ग्रुप में खेलते हैं, तो रैंडमली हमारे ग्रुप में, जैसे फेसबुक के ग्रुप में होगा, तो रैंडमली हमको वो ऐड कर देते हैं, राइट। तो ऐड होने के बाद हमको तो मज़ा तो बहुत आता है
0: जी,
1: लेकिन उसमें कुछ ऐसी लिंक वो डाल देते हैं और सब एक्सेस कर लेते हैं।
0: सब एक्सेस कर लेते हैं?
1: यस, सब मीन्स जैसे जैसे हमने फेक लोन्स के बारे में पहले देखा कि हमारा डेटा पूरा हैक हो जाता है, राइट, एक्सेस हो जाता है हैकर्स को। तो सामने वाला वही करता है कि एक लिंक जो है, एक स्पाइवेयर लिंक उसमें डाल देता है, राइट, जो ग्रुप में डाल देता है, और वो सभी उसको ऐसे लगता है कि ये कुछ नया गेम्स है, राइट, या कुछ गेम के रिलेटेड है वो लिंक। तो जैसे कि इम्पर्सनेशन हो जाता है, तो जब वो लिंक एक्सेस करते हैं तो अपना जो भी उस ग्रुप में है वो सबका डेटा वो एक्सेस कर लेता है, और उसके बाद एक इंडिविजुअल जो टारगेट होता है कि बाबा जैसे उसे कहा जाता है कि तुम ये टास्क करो और नहीं करोगे तो आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, राइट, एक ब्लैकमेलिंग, जो डिजिटली अपहरण जो बोलते हैं, राइट, डिजिटली अपहरण। तो इस कंसेप्ट से वो हर टास्क, जैसे अभी हम देख रहे हैं, जैसे टास्क फ्रॉड होता है, जैसे अलग अलग इस पे, जैसे आपको व्हाट्सएप पे अचानक कोई भी नंबर से मैसेज आ जाता है।
0: मेरे को तो कल के दिन में 3 मैसेज आए थे इसी जगह से, दो तो अंतर्राष्ट्रीय नंबर थे।
1: राइट, तो ऐसे कोई ऐप होते हैं, जैसे वो ऐप हर सेकंड नया नंबर जनरेट होता है वो ऐप से, और वो ऐप से व्हाट्सएप भी हम उसको ओटीपी की जरूरत नहीं होती, कुछ नहीं होते, वो ऑथेंटिकेशन हो जाता है थर्ड पार्टी एप्लीकेशन थ्रू, राइट। तो उससे हम वो नंबर से हम व्हाट्सएप इंस्टॉल कर सकते हैं और उसका यूज कर सकते हैं। तो आपको, आपने देखा होगा, हर मीन्स बहुत सारे भारतीयों के नंबर में मोबाइल के व्हाट्सएप में अचानक एक कुछ नंबर आता है और वो कहता है कि हाय हेलेना, या कुछ फीमेल का नाम एक अट्रैक्टिव करने के लिए कि आप, मैं एक लिंक भेज रही हूँ, आप ये लिंक सब्सक्राइब करोगे, राइट, या शेयर करोगे तो आपको 150 रुपये मिलेगा या 300 रुपये मिलेगा।
0: मैं एक ऐसा ही मैसेज कल आया था, मैं कल के दिन में मेरे पास,
1: राइट,
0: और जब पहले से उन्होंने खाली लिखा हेलो,
1: राइट,
0: और हेलो लिखा तो वैसे मैंने जैसे बताया कि 2 विदेशी नंबर मेरे व्हाट्सएप पे आए,
1: राइट,
0: तो 2 विदेशी नंबर आए तो मैंने तो उसको ब्लॉक लिस्ट कर दिया,
1: राइट।
0: उसके बाद में जो भारतीय नंबर आया,
1: राइट,
0: तो भारतीय नंबर आया तो मेरे को, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था किसी एक का मैं व्हाट्सएप आएगा,
1: राइट,
0: तो मुझे लगा हो सकता है उनका हो, तो उसने खाली हेलो ही लिखा,
1: राइट।
0: तो मैं सोचा कि भैया ये मेरे को उस व्यक्ति ने तो नहीं मैसेज किया है,
1: राइट।
0: और मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, मेरे हाथ में ही मोबाइल है अभी,
1: राइट।
0: तो इसमें पहला लिखा था कि हेलो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, फिर मैंने जवाब नहीं दिया। फिर अगले दिन सुबह दोबारा आया, हेलो गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू,
1: राइट।
0: तो मैंने उसको लिखा हु इज दिस, कौन है आप, कौन है, तो उसने लिखा आई एम अनिका पटेल फ्रॉम DDB मीडिया वर्ल्ड वाइड, कैन यू प्लीज गिव मी 2 मिनट इन योर प्रीसियस टाइम। मैंने लिखा कि आप यहाँ लिखिए जो भी आपको चाहते हैं, क्योंकि मैंने इंटरनेट पे सर्च किया DDB मीडिया वर्ल्ड वाइड क्या है,
1: राइट,
0: तो वहाँ पर कुछ एक वेबसाइट दिखी मेरे को, तो ऐसा हो सकता है कुछ काम है, मीडिया वाले हैं हम लोग भी,
1: राइट।
0: तो बाद में उसने लिखना शुरू किया कि हमारी कंपनी ऐसे लोगों को ढूंढ रही है जो कि रिव्यू लिखेंगे, उसके बदले आपको पैसा मिलेगा। मैंने लिखा कि आप गलत नंबर पे मैसेज कर रहे हैं और आप कृपया अपनी नंबर लिस्ट में से नंबर निकाल दीजिए,
1: राइट।
0: पर उसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा, उसने लिखा नहीं नहीं मैं आपसे कोई ज्वाइन करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, आप एक बार ट्राई तो करो ना, ये करो ना वो करो करके, फिर मैंने उसको ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया,
1: राइट राइट। जैसे कि आप देखेंगे कि जैसे आप अवेयर, मीन्स इसमें अवेयरनेस बहुत जरूरी है, जैसे कोई भी लिंक आते हैं, राइट, कोई भी लिंक आती है तो वो मालवेयर बेस है कि उसमें कुछ एक कोडिंग छुपी हुई है, तो ये हमें एनालिसिस करना चाहिए पहले, क्योंकि जैसे हम वो स्क्रिप्ट हमें देते हैं राइट, तो वन बाय वन तो हमें एक एक मैसेज हमने पहले एनालिसिस करना है, हमारा विवेक आपको जागरूक रखना है राइट,
0: वो लिंक टेम्पटिंग भी बहुत होता है राइट, ऐसा लगता है कि नहीं करके देखते ना क्या होगा
1: राइट राइट करके, यस यस यस, आपको करना भी है तो बहुत सेफली कीजिए, वो लिंक लीजिए, उसके बाद उसको अपने पीसी पे ओपन कीजिए वो लिंक राइट, वो लिंक ओपन करने के लिंक ओपन मत करिए, उसको कॉपी करके जो कुछ वेबसाइट है स्टैंडर्ड वेबसाइट जैसे

0: में
1: ओके
0: ये दो वेबसाइट है एंड्रॉयड के लिए राइट, तो हम ये जो लिंक उसमें डाल सकते हैं तो मालवेयर पे उसमें अगर मालवेयर छुपा है तो लिंक आपको इन्फॉर्मेशन दे देगी। ये एक तरीका है। और दूसरा एक अपना एक खुद का एक समझ होता है कि बाबा हम सब्सक्राइब कर रहे हैं और मुझे 150 रुपये मिलेगा, और बाद में वो कहते हैं कि हम तुम दोबारा सब्सक्राइब शेयर करोगे तो आपको 3,000 मिलेंगे राइट। तो हम ये तो बड़ी लालच है, तो ये लालच में हम ना खोए, हम हमारा थोड़ा विवेक जागरूक रख के हम अपना जो जो टाइम जो मोमेंट है वो बचा सकते हैं, और हम घर वालों हम अपनी सुरक्षा और घर वालों की एक डिजिटल सेफ्टी अपने हो सकती है।
1: यूथ जो घर में है जो अभी मेरे रेडियो को सुन रहे हैं और जो घर में रहते हैं यूथ, तो उनका क्या रोल हो सकता है घर के अंदर साइबर सिक्योरिटी के?
0: उनका तो बहुत रोल हो सकता है, क्योंकि एक युवा जो है वो हर ये घर में समय सबका मोबाइल हैंडल करता है, या वाईफाई सिक्योरिटी जो है जैसे वाईफाई वो इंस्टॉल करता है तो उसका सिक्योरिटी वो जो इंस्टॉल करने वाला है उसके पास ही उसका पासवर्ड वगैरह सब कुछ होता है, और वो इतना वीक होता है तो बहुत मिस कोई उसने मोबाइल नंबर डाल दिया होता है या समथिंग कुछ @@123 समथिंग कुछ जो कि बहुत इजीली हैकेबल है राइट। तो आप वाईफाई का एक्सेस आपके हाथ में लीजिए, आप खुद का क्रेडेंशियल एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड उसको दीजिए 10 कैरेक्टर विथ डिजिट एंड ऑल राइट स्पेशल कैरेक्टर। तो एक अगर आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखेंगे स्ट्रॉन्ग क्रेडेंशियल रखेंगे तो आपका जो भी डिवाइसेस है वो हैक नहीं होंगे राइट।
1: तो ये रोल युवा ही प्ले कर सकते हैं।
0: हाँ ये रोल ये क्योंकि युवा को ये मालूम होता है ये जो डिजिटल चीजें है कि बाबा वाईफाई में जो कुछ है जो भी कुछ कंटेंट है।

0: कैसे वर्क करते हैं, वो तो युवा को ही जानकारी होती है, अरे क्योंकि उसने बहुत सारे कोर्सेस किए, वो अपने आप जो आजकल ऐप भी आ रहे कि हम कितना घंटा सोशल मीडिया पे बिता रहे, कितना घंटा कंप्यूटर पे बिता रहे, राइट, तो
1: वेलबींग
0: वो
1: के
0: दे
1: लिए।
0: देता है। तो युवा नियर अबाउट 20 आवर्स, जैसे एक सर्वे में आया कि सोशल मीडिया पे नियर अबाउट 18 to 20 आवर्स हो,
1: मतलब 24 घंटे में से 18 घंटे सोशल मीडिया पे।
0: राइट राइट यार, इसलिए राइट।
1: ओ, ये मुझे भी चेक करना पड़ेगा फिर खुद
0: तो
1: का।
0: ऐसे कुछ ऐप्स है वो आप इंस्टॉल कीजिए, जो कि बहुत जरूरी है, ताकि हम घर वालों की तरफ भी हमारा लक्ष्य हो, क्योंकि बहुत सारे ऑनलाइन फ्रॉड हो गए, अगर हम इतनी इतनी 18 से 20 घंटे हम इसमें ही बिजी रहेंगे, तो हम घर वालों के डिजिटल गैजेट पे कब ध्यान रखेंगे। अगर उनके साथ कोई फ्रॉड होता है तो आपको समझ में ही नहीं आएगा,
1: क्या क्या
0: राइट।
1: शिक्षाएं हैं जो अपने माता पिता को बता सकते हैं युवा, क्या सिखा सकते हैं
0: उनको
1: फ्रॉड से बचने के लिए?
0: फ्रॉड से बचने के लिए जैसे कि नॉर्मल चीज़ें, जैसे कोई भी लिंक डाउनलोड करने को बोलता है, राइट, तो वो माता पिता को ना बताना चाहिए कि आपको अगर कोई कॉल आता है तो उनको अगर बैंकिंग का कुछ डिटेल या कार्ड का डिटेल मांगता है तो वो देना ही नहीं चाहिए। फ्रॉड तीन तीन बातों से होता है, तो आपको फ्रॉडस्टर आपको डिटेल्स आपके खुद की मांगेगा, राइट, लेकिन प्रीवियस पहले वो बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें आपको कहेगा, सर आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी है, जो कि आपकी सच में रहती है, राइट, इंश्योरेंस पॉलिसी रहती है
1: अच्छा,
0: बैंक,
1: हमारी जानकारी उनके पास आ जाती
0: हाँ
1: है।
0: उनके पास आ जाती है बाय थर्ड पार्टी, जो डेटा ब्रिच कहते हैं उसको, राइट। तो हर मीन जैसे पीछे मूवी की जो एप्लीकेशन था उसमें जो भी जितने भी कस्टमर थे उनका सब डेटा हैक हो गया, राइट, तो उसको उनको रैंडमली कॉल आने लगा, राइट। तो ऐसी सब जो चीज़ें होती हैं तो इसमें हम अवेयर कर सकते हैं हमारे पेरेंट्स को कि कोई लिंक आए, कोई ओटीपी मांग रहा है या कोई बैंक डिटेल्स मांग रहा है, जहाँ पे ऐसा सस्पिशियस लग रहा है तो वहाँ पे शेयर करना ही नहीं चाहिए, राइट। ये हुई पहली बात। दूसरी बात होती है जैसे हम सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, राइट, तो एक फेक प्रोफाइल हमारे सामने आता है, उसको हम हैंडलिंग करते हैं, और जो कुछ स्क्रिप्ट होती है तो उसमें हम बहते चले जाते हैं, तो कब रुकना है, कौन सा प्रोफाइल वेरीफाई करना है, इसकी जानकारी बच्चों ने माँ बाप को देना चाहिए, पेरेंट्स को देना चाहिए, ताकि वो फ्रॉड से बच सकें।
1: बस
0: जैसे बहुत
1: सके।
0: सारे आजकल मैट्रिमोनियल फ्रॉड से या समथिंग, जैसे हमारी सेम प्रोफाइल, जैसे मुझे एक इंसिडेंस याद आता है, राइट, तो मेरा जो एक ऑफिसर होते हैं तो उनका फेसबुक क्लोन हुआ, उनका जो सेम अकाउंट फर्स्ट ने ये किया तैयार किया, और उस अकाउंट से जो भी हमारे म्यूचुअल फ्रेंड थे उनको पैसे मांगने लगा, और उसने लगा कि मैं मीटिंग में हूँ तो मुझे अभी तुरंत 5,000 भेज दो, ये मेरा UPI है, और बहुत सारे लोगों ने उसको पैसा भेजा,
1: बहुत सारे लोगों को भेज दिया
0: हाँ
1: ऐसा।
0: राइट। क्योंकि हम इसमें सिक्योरिटी हमने ये लेना चाहिए कि हमारा फेसबुक प्रोफाइल जो है हम लॉक ही नहीं करते, राइट, तो हमारा सब म्यूचुअल फ्रेंड की लिस्ट उसके पास
1: रहती है।
0: ऑलरेडी मॉनिटरिंग हो जाती है और वो सबको मैसेज भेजते रहता है,
1: आप ये
0: तो
1: कह
0: ये
1: रहे हैं तो
0: छोटी
1: मुझे याद आ
0: छोटी।
1: रहा है कि मेरे भी फेसबुक में बना ऐसे ऐसे लोगों के फ्रेंड रिक्वेस्ट आते हैं जिनको मैं ऑलरेडी फ्रेंड हूँ, तो उसी नाम से दोबारा तिबारा
0: राइट, तो ये
1: भी रहता
0: समझ के चलने का, और हम अपने सर्च करना चाहिए कि सेम नाम से कितने अकाउंट्स हैं और उनका ओरिजिनल अकाउंट कौन सा है, तो सामने वाले का जो अकाउंट है उसको भी हमने जानकारी देना चाहिए कि बाबा इसमें
1: आपके नाम पे 3 अकाउंट चल
0: हाँ
1: रहे हैं।
0: तीन अकाउंट से, तो आपका दो
1: ओ
0: अकाउंट की
1: गॉड,
0: आप रजिस्टर कर सकते हैं पुलिस स्टेशन में, तो वो दो अकाउंट जो रहेंगे वो ब्लॉक कर सकते हैं पुलिस स्टेशन से,
1: पुलिस
0: साइबर सेल
1: स्टेशन में
0: से।
1: कैसे रजिस्ट्रेशन करें?
0: साइबर सेल में आप जो जो कुछ इंश्योरेंस है उसका फेसबुक आईडी, जो आईडी का जो लिंक है वो आप दे सकते हैं, उसमें एक एप्लीकेशन लिखी उसमें वो फेसबुक लिंक आप कॉपी पेस्ट कीजिए और वो सबमिट कर दीजिए साइबर सेल को, वो ब्लॉक कर देंगे।
1: चलिए, तो सरकार ने भी काफी इस बारे में सोच मतलब चर्चा चला रखी है, प्रोविजन
0: हाँ गवर्नमेंट की तो बहुत सारे जो
1: है।
0: प्रोग्राम्स है, हर महीने में जैसे अक्टूबर में एक साइबर सिक्योरिटी सप्ताह होता है, पूरा मंथ होता है, पूरी जागरूकता होती है, लेकिन कई बार हम एक एक नॉर्मली उसको ले लेते हैं कि चलिए ये तो चलता ही रहता है, लेकिन ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 90% हम उस पर आधार डिजिटल सब जो जैसे हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, राइट, तो हर एक इस पे गैजेट है, हमारे घर में पहले कुछ भी नहीं था, आज सब हर हर एक के पास मोबाइल है, हर एक के पास PC है, हर एक के पास
1: स्मार्ट
0: दस
1: टीवी
0: दस अकाउंट है सोशल मीडिया के, हर एक स्मार्ट TV,
1: है
0: तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं,
1: जिम्मेदारी
0: राइट।
1: आ जाती है हर
0: यस
1: एक।
0: यस यस
1: तो चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातें करते हुए, और आपने अच्छा अभी जो अवेयरनेस दी कि यूथ क्या रोल प्ले कर सकते हैं अपने परिवार के अंदर, जहां अपने माता पिता को गाइड कर सकते हैं, उन्हें सिखा सकते हैं कि कैसे आपको लिंक पे क्लिक नहीं करना है, या फिर कोई अनजान व्यक्ति या जान का व्यक्ति भी अगर कुछ मांगता है डिटेल्स जो कि आपके व्यक्तिगत हैं, तो डिटेल्स को आपको शेयर नहीं करना है। आपके फेसबुक प्रोफाइल को भी लॉक करके रखना है, अगर लॉक करेंगे तो लोगों को पता नहीं चल जाएगा कि आपके फ्रेंड्स कौन है, फिर वो आपके फ्रेंड्स को कॉन्टैक्ट करके बुद्ध बनाने का प्रयास नहीं करेंगे।
0: राइट राइट,
1: तो बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातें करते हुए, लेकिन समय हो रहा है कि एक ब्रेक लें और श्रोताओं को समझने का मौका दें जो अभी तक हमने बताया है। जब तक श्रोता इस बात पर एनालाइज करते हैं, तब तक उनको एक गीत सुनाते हैं। सुनाएं गीत, बताइए आप आपके पसंद एक बुरा मत सुनो है, ये बुरा मत सुनो, बुरा मत करो, बुरा मत देखो, तो बुरा मत सुनो वाला गीत है जो मोहम्मद रफी जी की आवाज में है। मैंने भी सुना नहीं है, 1969 का गीत है। आइए सुनते हैं ये गीत और फिर लौट कर आएंगे 107.8 FM पर। दोस्तों हमारे साथ बने हुए रवि महाजन, साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट हैं और एक प्रतिभाशाली युवा है। आप सुनिए गीत, फिर लौट कर आते हैं

0: कोई दोस्त हमारे साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आइए बात करते हैं। हेलो नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं? लगता है फोन कट गया है। तो थोड़ी देर पहले जब हम ब्रेक में गाना सुन रहे थे तब भी हमारे एक दोस्त ने फोन किया था, जो माउंट आबू के अपने जो अंधजन विद्यालय है वहाँ से फोन किया था। बहुत ही छोटे से दोस्त थे और बहुत प्यारी उनकी आवाज़ थी, और उन्होंने बताया कि किस प्रकार उनको एक गाना सुनना है जो देशभक्ति से जुड़ा हुआ गाना है। और जो दोस्त हमें अभी कॉल करना चाह रहे थे वो दोबारा कॉल कर सकते हैं, हम फिर से उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। तब तक चलते हैं रवि जी के पास।
1: हाँ जी,
0: तो रवि भाई, आपने जैसे परिवार के अंदर युवाओं के रोल के बारे में काफ़ी चीज़ें बताई, हमारा ध्यान खिंचवाया कि युवा कौन सा ऐसा रोल प्ले कर सकते हैं जिससे बहुत सुरक्षा में सहायता हो सकती है। फिर भी अगर हो जाता है, और जैसे आपका विभाग है लोगों को सहायता करता है, आपने वेबसाइट के बारे में बताया और एक नंबर के बारे में बताया कि जहाँ पर कॉल करके हम सहायता ले सकते हैं, पर ये जो प्लेटफॉर्म है जैसे सोशल मैसेजिंग के एप्लीकेशंस हैं उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे, जैसे व्हाट्सएप है या टेलीग्राम है, इनमें भी कुछ खतरे हैं?
1: राइट राइट, जैसे देखो अभी तो इतने प्लेटफॉर्म्स निकले हैं, राइट। जैसे नॉर्मल तो है, जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, राइट, इंस्टाग्राम है, तो ऐसे टेलीग्राम है, सिग्नल्स है,
0: जी
1: राइट,
0: जी
1: वी चैट है, उसके बाद स्नैपचैट है, बहुत सारे ऐसे चैटिंग एंड डेटिंग एप्लीकेशन है। तो ये एप्लीकेशन जितना जाओगे तो ये जो जंजाल है, ऐपों का जंजाल, तो ये बहुत बड़ा जंजाल है। तो इसमें हम एक वर्चुअल वर्ल्ड जो है उसके साथ हम बात कर रहे हैं, हमें मालूम नहीं आगे वाला पर्सन कौन है, क्या है, राइट, लेकिन फिर भी हम ट्रस्ट उस पर कर रहे हैं, राइट,
0: जी जी जी
1: फिर भी हम ट्रस्ट कर रहे हैं और उसके साथ बातें कर रहे हैं, उसके साथ अपनी निजी इन्फॉर्मेशन, निजी
0: पूरी
1: जीवन
0: जानकारी,
1: का,
0: अपना चित्र, आवाज,
1: यस
0: वीडियो।
1: यस यस पूरा। जैसे आजकल जैसे फाइनेंशियल क्राइम में जैसे देखा जाता है, तो फ्रॉस्टर वालों की भी एक स्क्रिप्ट हर महीने में अलग अलग चेंज होती है, हर 2 महीने में,
0: इस सुनने
1: राइट
0: में बड़ा फनी लगता है
1: राइट राइट
0: कि
1: राइट
0: जैसे मैंने आपसे पहले भी एक साइबर एक्सपर्ट आए थे, बात किया था, तो वो मुझे बता रहे थे कि जैसे हम पढ़ाई करने के लिए, इंजीनियरिंग करने के लिए लाखों रुपया खर्च करके लोग पढ़ते हैं, ऐसे साइबर क्राइम करने वाले जो फ्रॉडस्टर होते हैं, जो धोखाधड़ी करते हैं, उसके लिए भी वो पैसे दे के ट्रेनिंग लेते हैं।
1: राइट राइट राइट उनका तो एक जैसे नाइजीरियन रहते हैं, नाइजीरियन तो नाइजीरियन में ऐसा देखा गया है कि वहाँ पे क्लासेस होती है, राइट, तो यहाँ पे भी ऐसे
0: अपराध
1: क्लासेस
0: करने की भी
1: जहाँ पर
0: क्लासेस लोग
1: क्लासेस
0: ले रहे हैं
1: होती
0: मतलब।
1: हैं। तो वही फोर्स से हमने भी एक सिक्योरिटी के भी क्लासेस हमने ओपन करना चाहिए, उसका अवेयरनेस हमने बढ़ाना चाहिए, ताकि हमारे साथ, हमारे निजी जीवन के साथ या हमारे घर वालों के निजी जीवन के साथ कोई
0: खिलवाड़ नहीं कर
1: खिलवाड़ ना
0: सके,
1: हो, राइट, तो ये हमें ख्याल में
0: राइट।
1: रखना चाहिए, राइट। तो इसमें अलग अलग जो फ्रॉस्टर होते हैं, हर जैसे कि देख रहे कि पहले जैसे कोरोना में था, कोरोना में इलेक्ट्रिसिटी बिल जो था, इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको एक लिंक भेजी जाती थी, अगर आपने पैसा नहीं दिया, राइट, तो आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, इलेक्ट्रिसिटी वो कट की जाएगी, तो आप डर जाते थे, राइट। तो वहाँ पे
0: ऐसे
1: जो
0: बात
1: लिंक
0: होती
1: रहती थी वो HTTP, उसमें हमें एक कॉमन एक लिंक होती है HTTP, और एक HTTP विथ यस होती है, तो हमें वो फर्क समझ में नहीं आता है और हम वो एक्सेस कर लेते हैं और पेमेंट भी कर देते हैं, राइट। तो ये जो छोटा छोटा एक ये होता है कंसेप्ट, तो हमें सीखना चाहिए या अवेयर, उसके बारे में अवेयर होना चाहिए,
0: पर
1: फिर
0: बहुत
1: बाद में
0: मुश्किल
1: फेंक लो
0: लगता
1: ना,
0: है मेरे को ये,
1: राइट।
0: मतलब जैसे मैंने को भी कुछ ना कुछ तो जानकारी रहती है, पर कभी कभी ऐसा लिंक आ जाता है, कोई पूछ लेता है। कई बार हम लोग लोगों को कहते हैं, मतलब आपसे ही ये सवाल है ये, कि लोग कहते हैं कि अच्छा जो सरकार के लिंक होते हैं, .gov.in वाले होते हैं, तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं, बाकी में नहीं करना चाहिए। पर मैंने कुछ दिन पहले देखा था कि किसी गाड़ी चलाई और गाड़ी में कुछ फाइन लगा,
1: हाँ जी
0: फाइन लगने के बाद मैसेज आया, व्हाट्सएप या SMS आया, और उसमें एक लिंक था, तो वो शॉर्ट URL था bit.ly करके, तो वो खोलने से तो सरकार की वेबसाइट पे जा रहा था,
1: अच्छा
0: लेकिन जैसे कि उस व्यक्ति ने कुछ दिन पहले किसी साइबर एक्सपर्ट से सुना था कि भी आपका जो URL है
1: हाँ
0: .gov.in नहीं होगा तो आप नहीं खोलना, तो उसको bit.ly दिखा, तो उसको लगा ये
1: राइट
0: फ्रॉड मैसेज है।
1: राइट राइट
0: तो
1: राइट
0: दोनों में फर्क करना में बहुत मुश्किल।
1: राइट राइट इसीलिए हमने जो वेरीफाई जो है, जैसे हमने कहा कि हर एक वेबसाइट जो है वो वेरीफाई करनी चाहिए कि उसका सोर्स कहाँ से है, राइट, उसका कंटेंट क्या क्या है, उस वेबसाइट में कंटेंट क्या क्या है, राइट। जैसे आप गवर्नमेंट की वेबसाइट देखोगे तो एक ऑथराइज वेबसाइट आपको प्रॉपर वहाँ पे जो भी सांकेतिक चिन्ह है या कंटेंट है वो आपको एक ऑफिशियली वो सब आपको, जैसे विजुअल आप जाओगे जैसे cybercrime.gov.jaoge तो आपको

0: अलग अलग टैब देखेंगे बराबर राइट, तो दैट इज वेबसाइट। तो हमने वो जो यू आर एल है वो वेरीफाई करना चाहिए फिजिकली, वो डाल टाइप करके वो देखना चाहिए राइट। तो उसमें जैसे कि हम बता रहे थे इलेक्ट्रिसिटी बिल की स्क्रिप्ट फ्रॉस्टर ने शुरू की, फिर बाद में फेक लोगों ने ऐप की उन्होंने शुरू किया, फिर अभी लेटेस्ट वाला जो है जैसे हमारा बहुत बढ़िया काम जो है अपने भारत में हो रहा है, जैसे राम मंदिर का एक बहुत उद्धार हो रहा है, पुनर्निर्माण हो रहा है राम मंदिर का, तो उसके अकॉर्डिंगली भी फ्रॉस्टर इतने जागरूक हो गए कि उन्होंने अभी लिंक भेजना शुरू किया है कि हमें ये लिंक पे भेजो डोनेशन, आपको आपको आने की जरूरत नहीं, आप ऑनलाइन भेज सकते, तो लिंक भेज रहे और चंदा जमा कर रहे हैं।
1: तो ऐसे जो लिंक आ रहे हैं आजकल व्हाट्सएप में कि श्री राम जी के मंदिर के निर्माण के लिए डोनेशन करिए, तो कई बार इसमें फेक भी होंगे,
0: ये सब फेक ही होता है क्योंकि एक ऑथराइज जो है ये लिंक ऑलरेडी दिया है गवर्नमेंट ने,
1: गवर्नमेंट ने दिया,
0: यस दिया है, तो वहाँ पे भी आप या आपके डिस्ट्रिक्ट में हर डिस्ट्रिक्ट में कोई संस्था ऐसी है कि वो घर जा जाकर उन्होंने प्रोवाइड किया है जो कुछ डिटेल्स है, यस डोनेशन के लिए, तो आप पहले एक वेरीफाई कर लीजिए और बाद में आप पेमेंट कर लीजिए ताकि आपका जो
1: कुल मिला के काफी जागरूकता का स्तर भी काफी होना चाहिए, हाँ जी, कभी भी खतरे में आ सकते,
0: हाँ जी
1: राइट। तो आपने जैसे ही सोशल ऐप सोशल मैसेजिंग वाले जो ऐप हैं उसके बारे में बताया कि लिंक्स वगैरह आते हैं और इससे फ्रॉड होते हैं,
0: हाँ
1: जो व्यक्तिगत सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं,
0: हाँ हाँ,
1: उनकी क्या क्या सुरक्षा की टिप्स देना चाहेंगे?
0: सुरक्षा की टिप्स जैसे व्हाट्सएप की सुरक्षा टिप्स, आपका मोबाइल जो है राइट, आपका जैसे हम किसी की भी हाथ में मोबाइल दे देते हैं जो हमारा पहचान का नहीं होता है कई बार, एक जैसे मुझे एक इंसिडेंस याद आता है कि एक बंदे ने दूसरे बंदे को 2 मिनट के लिए मोबाइल दे दिया और उसने ऐसा कहा कि मुझे सिर्फ घर पे कॉल करना है राइट, लेकिन उसने वो कॉल लगा रहा था और साइड बाय वो क्या कर रहा था, उसमें एक एप्लीकेशन एक लिंक वो डाल रहा था जिससे वो पूरा डेटा मॉनिटर हो सके, उसको बोलते हैं स्पाईवेयर राइट, जिसने एपीके डाल दिया और वो पूरा जो डेटा था उसका वो मॉनिटर हो गया पूरा राइट,
1: मोबाइल मॉनिटरिंग
0: राइट राइट। तो ऐसे कुछ अगर हम सामने वाले के हाथ में मोबाइल देते हैं राइट, तो हमारा जो निजी इन्फॉर्मेशन वो चला जाता है राइट, हमारे क्रेडेंशियल अगर वीक है तो सोशल मीडिया के जैसे हम फेसबुक में अपना मोबाइल नंबर डालते हैं, बर्थडे डालते हैं राइट, नॉर्मल चीज़ें बहुत सिंपल चीज़ें, हम क्रेडेंशियल वीक रखते तो अकाउंट हैक होना ही है राइट, तो ये छोटी छोटी बातें हैं, तो उसमें हमें बहुत बारीकी से ध्यान देना चाहिए।
1: तो जैसे अपने सोशल मीडिया का बताया, तो मोबाइल का जो हैंडलिंग है,
0: हाँ हाँ,
1: तो इसमें क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण है, जैसे पासवर्ड या ऐसा क्या कुछ करना चाहिए?
0: मोबाइल का तो पासवर्ड तो अपने को
1: क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए,
0: मोबाइल का पासवर्ड तो रखना ही है अपने को, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना है, और हैंडल करते वक्त हमारा पासवर्ड जो है वो किसी को न दिखे, ताकि अगर आप कहीं जाते हो समझो मोबाइल छोड़ के गए और किसी दूसरा उस मोबाइल का वो अगर उसको पासवर्ड वो देख लेता है आपका, तो पुनः डाल सकता है और वो एक्सेस कर सकता है आपका मोबाइल राइट। और उसके बाद आप कुछ जैसे कंप्यूटर भी आप यूज करें सोशल मीडिया राइट, तो आप आपकी नॉर्मल कि मैं बार बार क्यों खोलूं, तो मैं वो सेव पासवर्ड करके रखता हूँ राइट, तो उसमें से भी हैकर्स जो है फ्रॉस्टर जो है वो वहाँ से पासवर्ड ले सकते हैं और आपका अकाउंट हैक कर सकते हैं राइट। इंस्टाग्राम पे भी आपके बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं आजकल।
1: इंस्टाग्राम पे किस प्रकार के फ्रॉड होते हैं?
0: इंस्टाग्राम पे वही है जो स्पॉन्जी स्कीम जैसे फेक लोन ऐप के जो लिंक्स आती है राइट, तो वही पे सबसे ज़्यादा जैसे हमारे हम देखते हैं कि एक बंदे ने एक फेक प्रोफाइल बनाया राइट, एक लेडीज का फेक प्रोफाइल बनाया और उसके अकॉर्डिंगली मीन्स मैंने जैसे पहले कहा कि वर्चुअल जो रियलिटी वो अलग है राइट, हम कोई भी अकाउंट के एक्सेस उनको देते फॉलो कर लेते राइट, कुछ आगे से रिक्वेस्ट आते हैं उनको हम फॉलो कर लेते और उसके अकॉर्डिंगली वो आपको लिंक भेजता है राइट, तो आपका जो इंस्टाग्राम का जो आईडी है उसके रिलेटेड जो भी आपका ईमेल है वो सब उसके पास वो क्रेडेंशियल जाती है राइट, तो वो एक्सेस करने के बाद आपका इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो जाता है और उसका ओटीपी वो डाइवर्ट कर लेता है और जो कुछ इन्फॉर्मेशन है वो सब वो एक्सेस करता है और फिर बाद में जो कुछ फ्रॉड हो तो बाद में अपने को पता चल ही जाता है,
1: मुश्किल हो जाता है।
0: हाँ जी,
1: तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज युवा मंच में आप आए और साइबर सिक्योरिटी के बारे में अलग अलग जो विषय हैं उसके संबंधित, उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें बात किया। एक विषय जो अभी और भी दो दिन से चल रहा है इंटरनेट पे, मैंने अखबार में पढ़ा था कि डीप फेक,
0: राइट,
1: तो सचिन तेंदुलकर के नाम से एक न्यूज़ आई थी कि सचिन तेंदुलकर की आवाज़ और चेहरे का इस्तेमाल करके किसी ने वीडियो बनाया था, जो कि वास्तविकता में सचिन जी ने रिकॉर्ड नहीं किया था। फिर उन्होंने इस बात की कंप्लेन की, माननीय प्रधानमंत्री ने जी ने भी कुछ समय पहले ये कहा था कि डीप फेक वीडियो जो है, तो इसका इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालना चाहिए।
0: राइट, जैसे कि हम सेलिब्रिटीज देखते हैं, रश्मिका मंथाना का जो कुछ मीन्स उनके निजी जीवन के साथ भी खिलवाड़ हुआ, राइट,
1: कोई किसी ने उनका वीडियो, उनका चेहरा और शरीर किसी का,
0: उसके बाद सारा तेंदुलकर का देखा हमने, उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी का देखा जो गरबा खेलते हुए, यस, तो प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छे तरीके से देश को जागरूक किया, क्योंकि ये सब जो टेक्नोलॉजी से, राइट, और ये अभी उसके टूल्स आएंगे मार्केट में, ये दैट इज द जेन्युइन और नॉट, राइट, वो फेक है या रियल है, वो अभी टूल्स तो धीरे धीरे आएंगे, लेकिन
1: तो कोई इन चीजों का अगर शिकार हो कि जैसे किसी का वीडियो किसी ने या फोटो को ऐसा बना दिया कि दिखता आपके जैसे पर आप हो नहीं, पर कुछ गड़बड़ करते हुए आपका वीडियो बना, मतलब ऐसे बना दिया कंप्यूटर के अंदर,
0: राइट,
1: तो उसमें क्या एक्शन लेना चाहिए आम जनता को?
0: उसमें पहले एक्शन, वैसे जो लीगल एक्शन हो तो होने ही चाहिए, क्योंकि फर्स्ट प्रेफरेंस अपना यही चाहिए कि पहले पुलिस स्टेशन जाए या साइबर सेल जाए, वहाँ पे तुम्हारी जो कंप्लेंट है, वो जो आईडीज है, या वो जो कौन से प्लेटफॉर्म पे, वो जो एआई बेस जो हमारा वॉइस जो है या कुछ पिक्चर्स है, वाट एवर जो कुछ है, वो सबमिट जो स्क्रीनशॉट लेके या लिंक लेके वो सब पुलिस स्टेशन को देना चाहिए, ताकि वो अटक से वो ब्लॉक कर सके।
1: तो दोस्तों, आज युवा मंच में हमारे साथ मौजूद थे साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट रवि महाजन, और आप एक प्रतिभाशाली युवा हैं और अपने समाज के लिए महाराष्ट्र पुलिस में कार्यरत हैं और साइबर सिक्योरिटी के लिए लोगों को अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। तो बहुत कुछ जाना आज हमने, सोशल मीडिया के बारे में, सोशल मैसेजिंग ऐप के बारे में, मोबाइल कैसे इस्तेमाल करना इस बारे में भी जाना, ऐसे ही अच्छी अच्छी जानकारी आपने दी हमको, बहुत बहुत शुक्रिया आपका,
0: थैंक यू।
1: तो सर, विदा लेते हैं आज युवा मंच कार्यक्रम में, आज इतना ही, और एक गीत पेश करेंगे देश के इस सेवक के नाम, धरती हिंदुस्तान की, जो देशभक्ति का गीत है। और कुछ समय पहले हमें कॉल किया था हमारे माउंट आबू के जो अंधजन विद्यालय है वहाँ से अर्जुन है, अर्जुन 9 साल के हैं, और उन्होंने ये गाना हमसे डिमांड की थी, तो वो गाना पेश करते हैं, फिर मिलेंगे, सुनते रहिए, मुस्कराते रहिए रेडियो मधुबनी।

कहना होगा, देश प्रेम की प्रबल धारा में हर मन को बहना होगा। अरे जिसे लगे ये तिरंगा पराया, वो मेरा देश छोड़कर जाए। अगर हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदुस्तानी बनकर ही रहना होगा, हिंदुस्तानी बनकर ही रहना होगा।

बहने दो, मत फैलाओ देश में दंगा, रहने दो। अरे लाल और हरे रंग में मत बांटो हमको, लाल और हरे रंग में मत बांटो हमको, मेरे छत पे भी एक तिरंगा रहने दो।

0: रुक, भाई साहब इधर आओ, कहाँ जा रहे हो जरा बताओ। लाल बत्ती में दिखता नहीं आपको, सामने लोग रोड क्रॉस कर रहे हैं फिर भी गाड़ी पे कहे चले जा रहे हो हैं?
1: अरे हवलदार साहब, एक बार लाल बत्ती में निकल गया तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा।
0: ओए पहाड़ भले ही ना टूटे, लेकिन बेमतलब यमराज के रजिस्टर में एक नाम जुड़ जाएगा। इसीलिए जब भी लाल बत्ती हो तो बोलो पहले आप, समझे?
2: गाड़ी चलाते वक्त पहले आप का रूल अपनाइए और अपने शहर का ट्रैफिक स्मूथ बनाइए। ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी

0: वो क्या होता है?
1: अरे टिकू नहीं पता क्या? इसमें पता है लोग धुएं में अपनी फिक्र उड़ा देते। अरे गाना नहीं सुना क्या तूने?
2: हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया।
0: अच्छा तो फिर मेरे नंबर कम आए तो क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूँ?
1: अरे कोई भी कर सकता है, तंबाकू तो बड़ा ही कूल होता है।
3: ऐसी बातें बचपन में होती हैं, युवावस्था में या और बड़े होने के बाद भी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तंबाकू या धूम्रपान व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य के साथ शारीरिक सेहत पर बहुत बुरा असर डालता है। बीड़ी, सिगरेट, गुटखा इत्यादि के सेवन से कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। धूम्रपान करने से धमनियां कमजोर होने लगती हैं और कोरोनरी हार्ट डिजीज या स्ट्रोक भी हो सकता है। सलाह लीजिए डॉक्टर की और हिम्मत बढ़ाइए अपनों की। रेडियो मधुबन द्वारा जानकारी जनहित में जारी।
4: गुड इवनिंग, नमस्ते। रेडियो मधुबन 107.8 FM में आप जुड़े हैं आपके फेवरेट कार्यक्रम उड़ान के साथ। तो चलिए अगले गीत से पहले एक कुछ प्यारी बातें और कर लेते हैं।
5: इसमें आज होगा आपके लिए सवाल जिसका जवाब देंगे आप 9414151415 पर। कर्ज से जुड़ा जाल है। कर्ज एक प्रकार से कहीं ना कहीं जाल बुन देता है, इसीलिए इस छोटी सी कहानी को भी हम आप तक पहुंचाने वाले हैं जो सिखाने योग्य है। सीखने हम इसे हर पल सीख सकते हैं। यदि कर्ज जैसी चीज़ों के जाल में फंस जाए तो इसे उतारने के लिए और कर्जा लेते हैं और फिर उसी चक्रांत में फंसते रहते हैं। तो चलिए हमको मन की शक्ति देना इस गीत से उड़ान कार्यक्रम को शुरू करते हैं। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

दूसरों के जय से पहले अपनी जय करें। चलिए दोस्तों, उड़ान कार्यक्रम के साथ आप सभी दोस्त मेरे जुड़े हुए हैं और आज के सवाल के साथ आप दोस्तों को जरूर जोड़ना चाहूंगी, क्योंकि आप सुन रहे उड़ान रेडियो मधुबन पर। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

चलिए दोस्तों, ढूंढ कर एक मजेदार पहेली मिली है, तो क्यों नहीं ये पहेली आपके लिए मैं पूछ लेती हूँ आप सभी दोस्तों से। मेरी गर्दन है लेकिन सिर नहीं, मेरी बाहें हैं लेकिन हाथ नहीं, मैं कौन हूँ? झटपट बता दो। मेरी गर्दन है लेकिन सिर नहीं, मेरी बाहें हैं लेकिन हाथ नहीं, मैं कौन हूँ? झटपट बता दो। 9414151415 पर बता दो। लियो टॉल्स्टॉय की एक खूबसूरत कहानी आपके लिए। माँ ने आलू बुखारे खरीदे, गुठली की बात हो रही है, बच्चों को खाने के बाद दूंगी, यही सोचा उन्होंने। आलू बुखारे मेज पर प्लेट में रखे थे। वान्या ने आलू बुखारे कभी नहीं खाए थे, उसका मन उन्हें देखकर ललचार गया। जब कमरे में कोई नहीं था, वो अपने आप को रोक न सकी और एक आलू बुखारा उठाकर खा लिया। खाने के समय माँ ने देखा कि प्लेट में एक आलू बुखारा कम है। उन्होंने बच्चों के पापा से पूछा कि इस बारे में आपको किसी ने कुछ बताया? खाते समय पिता ने पूछा, बच्चों तुम में से किसी ने इनमें से एक आलू बुखारा तो नहीं खाया? सबने एक स्वर में जवाब दिया, नहीं। वान्या का मुंह लाल हो गया, लेकिन वो फिर भी वान्या का मुंह लाल हो गया पर वो बोला नहीं। नहीं, उनसे जब उसे पूछा गया तो उसने बोला, नहीं मैंने नहीं खाया। इस पर बच्चों के पिता बोले, यदि तुम में से किसी ने आलू बुखारा खाया तो ठीक है, पर एक बात है, मुझे डर है कि तुम्हें आलू बुखारा खाना नहीं आता। आलू बुखारे में गुठली होती है, अगर वो गलती से कोई निगल ले तो एक दिन में वो मर जाता है। वान्या डर से सफेद पड़ गई पर बोला नहीं, नहीं मैंने तो गुठली खिड़की से बाहर फेंक दी थी। सब एक साथ हंस पड़े क्योंकि वान्या ने ही खाया था। और फिर वान्या रोने लगी क्योंकि आलू बुखारा उसे उसके अंदर एक लालची बना लेकर आया था। खैर, जीवन में छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है, वान्या के जीवन में भी हुई, लेकिन उसने सबक सीख लिया, आगे वो ऐसी गलती कभी नहीं करेगी। और शिव चित्रकार है ये गीत मैं आप तक पहुंचा रही हूँ उड़ान में। पुनः आज की जो पहेली है वो दोहरा देती हूँ जो हमने आपके लिए चुन के लाई थी। मेरी गर्दन है लेकिन सिर नहीं, मेरी बाहें हैं लेकिन हाथ नहीं, झटपट बता दूं मैं कौन हूँ? 9414151415 में बता दो। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है? हमारे बीच एक श्रोता गण भी है। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।

0: प्रकृति बेटा, पृथ्वी पर तुम्हें क्या करना है तुम्हें पता है ना?
1: मुझे लोगों को प्यार से इंस्पायर और लाइफ के लिए एजुकेट करना है, ताकि वो नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग कर इस पृथ्वी को बचाए रखें।
0: इसमें तुम्हारी मदद करेंगी ये तीन चीजें। पहली टियारा ऑफ फ्लावर्स, जो तुम्हें हमेशा हैप्पी और एनर्जेटिक रखेंगे। दूसरा ये बैज ऑफ लाइफ, जो लोगों को पर्यावरण के लिए लाइफ जीवन शैली की याद दिलाएगा। जब वे प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति उनकी रक्षा करेगी। तुम ये बैज उन लोगों को भी दे सकती हो जो हमारे प्लैनेट की बेहतरी के लिए योगदान करते हैं। और तीसरा ये बैग ऑफ होप, जब भी कोई एनवायरनमेंट को हार्म करे तो तुम इसमें से इको सस्टेनेबल अल्टरनेटिव निकाल कर उसे देना।
1: ओके, अब मैं अपने मिशन पर चलती हूँ।

हरदम हरदम वेलकम बैक दोस्तों, रेडियो मधुबन 107.8 एफएम में आप जुड़े हैं आपके फेवरेट कार्यक्रम उड़ान के साथ। मैं हूं आपकी दोस्त मोना। आगे बढ़ते हैं और आपको अमेजिंग जानकारी के साथ भी जरूर जुड़ाते हैं। जीवन में ट्रैवल एक ऐसी चीज है जो सभी को पसंद आती है और विश्व पर्यटन दिवस के उपलक्ष्य में भी

0: हफ्ते में ही आ रहा है। इसी उपलक्ष्य में कई बातें हमारे सामने आती हैं कि पर्यटन अलग अलग देशों की संस्कृति, परंपराओं, पहनावे और खान पान के बारे में जानकारी प्राप्त करने में मदद करता है। कभी सोचा है हमने कि घूमने जाना सिर्फ मौज मस्ती नहीं होती है, बल्कि इसके साथ कई चीजें रोचक तथ्यों के साथ जुड़ी रहती है। अब हम कहीं जाते हैं तो वहां पर ये रोचक चीजें क्यों हैं, उसके इतिहास को समझने, उसे जानने और उसकी परख करने, और हमें हमारे भारत में क्या मिलता है उसके साथ उसको जोड़ने में मदद मिलता है, और यही चीज टूरिज्म हम तक पहुंचाता है। और सबसे बड़ी बात है कि यदि हम किसी भी किले, मंदिर, संग्रहालय, पुराने भवन, स्मारक केवल देखने के लिए नहीं बल्कि वहाँ पर कहानी सुनते हैं, तो कोई भी इन कहानियों को सुनकर उस जो कहते हैं पर्दे के पीछे क्या है उसे समझने की कोशिश कर सकता है, जान सकता है। तो चलिए इसके साथ साथ पुनः एक बार और, मेरी गर्दन है लेकिन सिर नहीं, मेरी बाहें हैं लेकिन हाथ नहीं, मैं कौन हूँ? हमारे सुभाष जी ने कॉल करके जवाब जरूर दिया और उन्होंने कमीज कहा, जिसे शर्ट भी कहते हैं, और कोई भी चीज़ जो वस्त्र ऊपर का होता है उसको कहा जाता है। सही है या नहीं थोड़ी देर बाद ज़रूर पता चलेगा, लेकिन उससे पहले एक कहानी, एक जो गीत है वो ज़रूर मैं आप तक पहुँचाऊँगी, क्योंकि आप जुड़े हैं उड़ान के साथ। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।
1: गौर से सुनो रेखा, तो कहोगी कि

0: सुनो मैं
1: था। तब श्याम नाम के एक साहूकार ने उसे देखा और पीछे से उसे आवाज लगाते हुए कहने लगा,
0: अरे धर्मेंद्र सुनो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। बड़े बदतमीज हो, जानबूझकर मुझसे बचकर निकल रहे थे।
2: श्याम भैया आप माफ करना भैया, मैंने आपको देखा नहीं, वरना मेरी इतनी हिम्मत कहाँ कि मैं आपको देखकर यहाँ से निकल जाऊँ। मेरे मन में आपके लिए बहुत इज्जत है।
0: बंद करो ये झूठी कहानियां बनाना। मुझे पता है कि तुमने मेरी आवाज सुनी, पर जानबूझकर मुझे अनदेखा करके यहाँ से तुम जा रहे थे। तुम चाहे जितना भी बच लो, मुझसे बचकर तुम जा नहीं सकते हो।
2: श्याम भैया मैं सच बोल रहा हूँ,
0: आप मुझे बहुत गलत समझ रहे हैं। मैंने आपको सच में नहीं देखा, मेरा पूरा ध्यान उस घर पर ही था। मैं भी बिल्कुल ऐसा ही घर बनाने की सोच रहा हूँ, लेकिन मैं इसके परिसर की दीवार की ऊंचाई को बार बार देखकर सिर्फ यही सोच रहा था, ये दीवार तो बहुत छोटी है। इतनी छोटी सी दीवार कूदकर चोर आसानी से घर में घुस सकता है, इसलिए मैं सोच रहा था कि अपने घर की जो दीवार है उसे मैं इससे ज्यादा ऊंची बनाऊंगा।
3: बातें बनाना बंद करो धर्मेंद्र, मैं समझता हूँ कि तुम बातें बदलने की कोशिश कर रहे हो। ये बताओ, अपने व्यवसाय के लिए 10% ब्याज पर 50,000 रुपए लिए थे, ये याद है या मेरी तरह इस बात को भी भूल गए हो? मुझे मेरे पैसे वापस दे दो, वरना अच्छा नहीं होगा।
2: अरे भैया शांत हो जाओ आप, पैसे की चिंता छोड़ दो और जो मैं कहता हूँ उसे बहुत ध्यान से सुनो। हाल ही में मेरी मौसी का देहांत हो गया है, उनकी कोई भी संतान नहीं है। उन्होंने वसीयत में लिखा है कि मैं उनकी पूरी संपत्ति का कानूनी वारिस हूँ। अब आप अपने मन से खुद सोचो, क्या आपके पैसे चुकाना मेरे लिए कोई बड़ी बात है?
0: क्या तुम सच बोल रहे हो? अगर ऐसा है तो मैं थोड़ा इंतजार और करता हूँ। अब तुम्हारे घर की बात करते हैं। मेरे ख्याल से परिसर की दीवार की ऊंचाई लगभग ठीक है। मुझे यकीन है कि कोई कितना भी प्रयास क्यों न कर ले, लेकिन वो इस दीवार पर नहीं चढ़ सकता है।
2: अरे क्या बात कर रहे हैं भैया आप,
0: अरे कोई भी अनजान इंसान इस दीवार पर आराम से चढ़ सकता है? नामुमकिन, कोई इंसान इस दीवार पर चढ़ ही नहीं सकता।
2: आप ऐसी बात कर रहे हैं, अगर मैं इस दीवार पर चढ़कर दिखा दूं तो?
0: लगा ली आपने 50,000 रुपए की शर्त, बताइए आपको शर्त मंजूर है?
3: तुम्हें खुद पर इतना भरोसा है
0: तो ठीक है, मैं तुमसे शर्त लगाता हूँ, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर पाओगे।
3: मुझे इतना तो भरोसा है ही।
0: तो ठीक है, अगर मैं ये शर्त जीत गया तो आप मुझे 50,000 रुपए देंगे और कभी अपना कर्ज वापस नहीं मांगेंगे।
1: धर्मेंद्र ने उस दीवार पर चढ़ने के कई प्रयास किए, पर वो दीवार चढ़ने में असफल रहा। आखिर वो जमीन पर गिर पड़ा। उसे देखकर श्याम ने कहा,
0: मैं शर्त जीत गया, लाओ मुझे 50,000 रुपए दे दो। तुम शर्त हार गए हो।
2: हाँ भैया
0: आप शर्त जीत गए हैं, मुझे आपको 50,000 देने हैं और आपको 50,000 लेने हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा हिसाब बराबर हो गया। तो अब मुझे आपको पैसे देने की कोई आवश्यकता नहीं है।
3: हाँ हाँ अब तुम्हें मुझे पैसे देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है।
0: अरे रे रे नहीं नहीं नहीं, वो कैसे? 50,000 तो मैं जीता हूँ ना, और 50,000 पहले के, तो कुल हुए 1,00,000 रुपए और फिर ब्याज की राशि। मुझे धोखा देने की कोशिश मत करो, चलो अब सीधे से मेरे पैसे निकाल दो।
2: मैं आपको धोखा नहीं दे रहा हूँ श्याम भैया, आपको 50,000 लेने हैं और मुझे 50,000 देने हैं, तो हुआ ना हिसाब बराबर?
0: नहीं नहीं नहीं, तो मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हो, चलो मुखिया जी के पास, वही फैसला करेंगे अब।
1: श्याम और धर्मेंद्र दोनों मुखिया जी से मिलने गए। मुखिया जी बहुत गुस्सैल थे, उनकी बात ना मानने वालों को वो अक्सर कोड़े मारने की सजा देते थे। उस दिन सुबह से उनसे मिलने आए लोगों की भीड़ लगी हुई थी, वो बेहद थक गए थे। उतने में ये दोनों भी अपनी समस्या लेकर उनके पास आ गए। उन्हें देखकर मुखिया जी और गुस्सा हो गए।
4: क्या हुआ, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? तुम सब आपस में लड़

0: मुखिया जी को समझाने की कोशिश करने लगा। आखिर सवाल 50,000 रुपए का था।
1: अरे ऐसी बात नहीं है भाई, 50,000 बराबर कैसे हो गए? आप पूरी बात समझे ही नहीं। ए तुम पागल हो क्या? मैंने क्या कहा तुम्हें समझ नहीं आया? 50,000 बराबर होते हैं, अब चलो जाओ यहाँ से।
0: मुखिया जी को श्याम पर बेहद गुस्सा आया, क्योंकि वो उनकी कोई बात मानने को तैयार ही नहीं था। वो और गुस्सा हो उससे पहले धर्मेंद्र श्याम को वहाँ से ले गया और आगे जाकर उसने कहा,
1: देखो श्याम भैया, मैंने तो पहले ही कहा था 50,000 के बराबर होते हैं। मुखिया जी ने भी यही कहा ना, अगर आप फिर भी उन्हें परेशान करेंगे तो आपको कोड़े मारने की सजा देंगे, जिससे आपको बहुत परेशानी होगी।
0: धर्मेंद्र की बात सुनकर श्याम अंदर से कांपने लगा। कोड़े खाने की सजा के बारे में सोचकर ही वो डर गया था। उसने सोचा कि मौका मिलने पर वो धर्मेंद्र को अच्छा सबक सिखाएगा और फिर वहाँ से चला गया। अपनी चतुराई पर खुश होकर धर्मेंद्र वहाँ से तो निकल गया, लेकिन आगे जाते ही उसकी मुलाकात गोपाल नाम के एक और साहूकार से हो गई। उसे आते देख गोपाल ने कहा,
1: अरे धर्मेंद्र कहाँ गायब थे? तुमने मुझसे 2 साल पहले 70,000 लिए थे, वो तुमने अब तक वापस नहीं किए। मुझे अभी के अभी तुरंत ब्याज सहित मेरे पैसे वापस कर दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
2: अरे चाचा, मैं आपको आपके पैसे देने ही वाला था, लेकिन उस घर में रहने वाले बूढ़े दादाजी ने वो पैसे मांग लिए। अभी मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि उनके पास अभी थोड़े कम पैसे हैं, वो 70 पूरे होते ही लौटा देंगे। आइए उनसे पूछते हैं पूरे हुए या नहीं, आइए मेरे साथ।
0: धर्मेंद्र ने गोपाल को अपने साथ ले लिया और दोनों उस बूढ़े के घर के पास चले गए। बूढ़ा सो रहा था, उन्होंने बूढ़े को सोता हुआ पाया तो दरवाजा खटखटाया। एक छोटी लड़की ने आकर दरवाजा खोला, जो उस बूढ़े की पोती थी। धर्मेंद्र ने उससे पूछा,
2: अरे बेटा, तुम्हारे दादाजी ने उस दिन कहा था अभी 70 हुए नहीं, अब तो 70 हो गए या नहीं? मुझे मेरे पैसे दे दो, मुझे बहुत जरूरत है।
3: अरे क्या बताऊं आपको, 70 नहीं 80 हो गए, पर जाने का नाम ही नहीं लेते। महाकंजूस है मेरे दादाजी, इतना जमा करके रखा है पर किसी को कुछ नहीं देते।
0: इतना कहकर उस लड़की ने गुस्से में दरवाजा बंद कर दिया। हालांकि गोपाल ने गलतफहमी में बूढ़े आदमी की उम्र को उसकी आय समझ लिया। इस बात का फायदा उठाकर धर्मेंद्र ने गोपाल से कहा,
2: अरे चाचा, आपने अपने कानों से सुना या नहीं, उस लड़की ने अपने दादा को क्या कहा? क्या अब भी आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है?
1: अरे ऐसी बात नहीं है, मुझे विश्वास है। मूल 70 और ब्याज 10 पूरा वसूल कर तभी यहाँ से चलेंगे। परेशान मत हो, जब तक ये उठ नहीं जाता तब तक हम लोग यहीं खड़े रहकर इसकी प्रतीक्षा करते हैं।
2: अरे गोपाल चाचा, मुझे पास के गांव में कुछ काम है, मैं वहीं जा रहा था कि आपने मुझे बीच रास्ते में रोक लिया। आप यहीं रुककर इनसे पैसे ले लो, मैं जब तक गांव जाता हूं और अपना काम पूरा करके वापस आता हूं।
0: गोपाल को बातों में उलझाकर धर्मेंद्र ऐसा अभिनय करने लगा जैसे वो जा रहा हो, लेकिन आगे क्या होगा वो देखने के लिए वो पास के पेड़ के पीछे छिप गया। कई घंटों की प्रतीक्षा के बाद गोपाल कंटाल गया और आखिरकार बूढ़े को जगाने का प्रयास करने लगा।
1: अरे चाचा उठो, और धर्मेंद्र ने जो आपको पैसे दिए हैं वो मुझे दो, उसने कहा है आपसे पैसे लेना है। अरे उठो चाचा, चाचा अरे उठो ना।
0: गोपाल उस बूढ़े को जगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस बूढ़े को लगा कि उसे कोई बिल्ली या कुत्ता परेशान कर रहा है, इसलिए उसने गुस्से में जोर से उसे लात मार दी। गोपाल धड़ाम से गिर पड़ा और चिल्लाने लगा,
1: हे भगवान मार डाला रे।
0: उसकी चीखें सुनकर बूढ़ा नींद से उठ गया और उसने उठते ही गोपाल को देखा।
1: अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे लात मारने की? तुम्हें सोना है तो पहले मुझे मेरे पैसे दे दो और सो जाओ, मुझे कोई शौक नहीं यहाँ बैठने का।
4: पैसे? कौन से पैसे, क्या कह रहे हो बेटा तुम?
1: हे भगवान, आपकी पोती ने कहा तो कि अब तो 80 हो गए हैं, आपने धर्मेंद्र से 80,000 लिए थे ना, वो पैसे मुझे लेने हैं।
4: अरे रे रे बेटा, मुझे 80 साल हो गए हैं, 80,000 रुपए नहीं हुए, वो मेरी उम्र के बारे में बता रही थी, पैसे नहीं। और मैं तो किसी धर्मेंद्र को नहीं जानता हूँ, तुम्हें गलत फहमी हुई है। अब तुम यहाँ से जाओ, मुझे परेशान मत करो, तुमने पहले ही मेरी नींद खराब कर दी है, जाओ यहाँ से अब तुम।
0: गोपाल को धर्मेंद्र पर उसे गुमराह करने के लिए बहुत गुस्सा आया और वो धर्मेंद्र को ढूंढने निकल पड़ा। इस तमाशे को देखकर धर्मेंद्र को अपनी चतुराई पर बहुत गर्व महसूस हो रहा था। थोड़ी ही देर के बाद उसकी मुलाकात एक और साहूकार सुमित से हो गई और सुमित ने भी उससे पैसे वापस मांगे।
5: अरे धर्मेंद्र, तुम मेरे पैसे कब दोगे जो तुमने कई साल पहले लिए थे? तुम तो कब से नजर ही नहीं आते।
2: अरे भाई, तुमने मिलने में देर कर दी, मैंने अभी अभी सबका कर्ज चुकाया है, मेरे पास अब बिल्कुल पैसे नहीं है। तुम थोड़ी देर पहले मिलते तो तुम्हारे भी दे देता, तुमने देर कर दी।

0: मेरी बात सुनो धर्मेंद्र, मैं पहले से बहुत परेशान हूँ। एक तो मुझे लोगों से इतने सारे पैसे लेना बाकी है, और दूसरा मेरी शादी भी नहीं हो पा रही। हालांकि तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं, बस मेरा कर्ज चुका दो ब्याज सहित, बस और मुझे कुछ नहीं चाहिए, समझे ना तुम। लाओ मुझे मेरे पैसे वापस कर दो, यहाँ चुपचाप मत खड़े रहो।
1: अरे जरूर, मैं तुम्हारा कर्ज चुका दूंगा, लेकिन एक दोस्त के नाते मुझे ये तो बताओ कि तुम्हारी शादी क्यों नहीं हो पा रही है, क्या वजह है इसके पीछे?
0: क्या बताऊं भाई, लड़कियां बहुत देखी, कोई तैयारी नहीं होती। मैं जहां भी जाता हूं मुझे एक ही बात सुनने को मिलती है कि हम अपनी बेटी की शादी इतने मोटे आदमी से कभी नहीं करेंगे।
1: अरे रे भाई, ये क्या बोल दिया, तुम्हारे पास तो काफी पैसा है, और लड़की वालों को और क्या चाहिए भला।
0: अगर ऐसी बात है तो तुम ही मुझे ढूंढ कर ऐसी लड़की दो ना जो मुझे स्वीकार कर ले, मैं उससे तुरंत शादी कर लूंगा।
1: वाह वाह वाह वाह, ये हुई ना बात। वो देखो, वो घर देख रहे हो ना, उसमें सरिता नाम की एक अमीर महिला रहती है। उसकी एक बेटी है जिसका नाम राखी है, और वो अपनी बेटी की शादी करने के लिए तुम्हारे जैसा अमीर लड़का ही ढूंढ रही है। तुम जाओ और अपनी किस्मत को आजमा लो, अगर किस्मत अच्छी होगी तो तुम्हारी शादी तुरंत हो जाएगी, अगर ना भी हो तो उदास मत होना, बहुत सी लड़कियां तुम्हारे इंतजार में रहेंगी।
0: धन्यवाद भाई, मैं अभी जाता हूँ और बात करके आता हूँ, अगर बुरा ना मानो तो तुम भी चलो।
1: अरे नहीं, मैं नहीं चल सकता वहाँ पर, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। मैंने एक बार उससे कहा था कि वो अपने कुत्ते को बांध कर रखे, वो मुझ पर बहुत चिल्लाई थी, मैं आया तो वो मना कर देगी।
0: अच्छा, इसका मतलब उसे कुत्ते बहुत पसंद हैं?
1: पसंद हैं? अरे वो तो उनसे और बंदरों से बहुत प्यार करती हैं। जब उसकी कोई तुलना कुत्ते और बंदर से करता है तो उसे गर्व महसूस होता है।
0: मेरी बात मानो तो एक बार तुम भी वहाँ पर ऐसे ही तारीफ करना।
2: यकीन नहीं होता, ये तो बहुत अजीब बात है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं उसे प्रभावित कर सकता हूँ?
1: अरे बिल्कुल कर सकते हो, एक बार अपने भाग्य को आजमा कर तो देखो, वो जरूर हाँ कह देगी। पर एक बात, तुम उसकी तुलना कुत्ते और बंदरों से करना बिल्कुल मत भूलना, उनसे तुलना करना जरूर, और हाँ मुझे शादी में बुलाना मत भूलना।
0: जरूर जरूर, अब मुझे जाने दो।
3: इस बातचीत के बीच सुमित कर्ज के बारे में भूल ही गया और उत्साह में सरिता से मिलने चला गया। बेचारा जानता नहीं था कि सरिता को कुत्तों से और बंदरों से सख्त नफरत थी, वो उन्हें देखते ही चिढ़ जाती थी। धर्मेंद्र सुमित को फंसाकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। बेचारा सुमित सरिता से मिलने पहुँचा।
4: कौन हो तुम, किससे मिलने आए हो, क्या करने आए हो यहाँ?
3: उसकी गुस्से भरी आवाज सुनकर सुमित ने सहमी सी आवाज में उसे उसके घर आने का अपना इरादा बताया। सरिता को उसकी बात सुनकर और गुस्सा आया।
4: लगता है तुम मेरे बारे में ठीक से नहीं जानते, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझसे मेरी बेटी का हाथ मांगो? पर ठीक है, तुम्हें एक मौका देती हूँ, मैं तुमसे दो सवाल पूछूंगी, तुमने सही जवाब दिए तो तुम्हारे प्रस्ताव के बारे में सोचूंगी।
0: बिल्कुल, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप जो भी सवाल पूछे मैं उसके सही सही जवाब दूं।
3: ठीक है, लोग कहते हैं कि मेरी बेटी दुनिया की सबसे सुंदर लड़की है, तुम्हारा क्या कहना है, क्या तुम भी ऐसा ही मानते हो, बताओ?
0: हाँ हाँ, आपकी बेटी की सुंदरता के पूरे शहर में चर्चे होते हैं, ऐसा मैंने सुना है, और आपकी बेटी बिल्कुल बंदर की तरह है।
3: धर्मेंद्र की सलाह के अनुसार भोला सुमित सरिता को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा था। उसका जवाब सुनकर सरिता का गुस्सा आसमान छूने लगा, लेकिन फिर भी उसने दिमाग ठंडा रख के दूसरा सवाल पूछा। ठीक है, अब ये बताओ, अगर मैं शादी के बाद तुम्हारे घर आऊं तो तुम मेरे साथ कैसा व्यवहार करोगे?
0: अरे चिंता मत करो सासू माँ, मैं आपके साथ बिल्कुल एक कुत्ते जैसा व्यवहार करूंगा, आपको कुत्ते जितना सम्मान भी दूंगा, आप बिल्कुल परेशान मत होइए।
3: अब सरिता को इतना गुस्सा आया कि वो रसोई में जाकर गर्म करछी लेकर लौटी और करछी सीधे सुमित की पीठ पर लगा दी। उसकी पीठ पर करछी के कई निशान बन गए।
4: अरे मूर्ख, तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो? अगर मैंने तुम्हें इस इलाके में फिर से देखा तो मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगी, भागो यहाँ से।
3: सरिता ने सुमित को घर से बाहर भगा दिया, वो इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सका। वो गुस्से में वहाँ से निकलकर बाकी साहूकारों से मिला और उनसे चर्चा करने लगा। सभी साहूकारों ने मिलकर जाकर सीधे राजा से धर्मेंद्र की शिकायत करने का फैसला किया। उनकी शिकायत को सुनकर राजा ने सैनिकों को धर्मेंद्र को ढूंढकर कैद करने और उसे अदालत में लाने का आदेश दिया।
5: क्या ये सच है धर्मेंद्र कि तुमने सभी साहूकारों के पैसे लौटाने के बजाय उन्हें मूर्ख बना दिया?
1: ये सच है महाराज, मैंने अपना कारोबार चलाने के लिए सारे साहूकारों से कर्ज लिया, मैं इसे सिर्फ एक निवेश के रूप में लेता हूँ, और मुनाफा होने पर इसे वापस कर देता हूँ, लेकिन ये तीनों साहूकार गरीब लोगों के ब्याज के रूप में तगड़ी रकम वसूल कर रहे हैं। उन्हें सबक सिखाने के लिए मैंने उनसे कर्ज लिया और उन्हें मूर्ख बना दिया ताकि वो भी उन गरीबों का दर्द समझ सकें। यदि आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है तो आप मुझे कड़ी सजा दे सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया। मैंने इनको सबक सिखाया है, अब आगे आपकी जैसी आज्ञा, मुझे सब मंजूर है महाराज।
5: गरीब लोगों से मूल और साधारण ब्याज से ज्यादा पैसे वसूल करना बहुत बड़ा अपराध है। मैं इस तरह की चालबाजी कभी माफ नहीं करता, लेकिन तुम्हें इनकी करतूतों को सबूत के साथ मेरे सामने लाना चाहिए था। मैं इन्हें उसी समय दंड देता।
1: मैंने आपकी मदद लेने के लिए सोचा था महाराज, पर मैं छोटा आदमी हूँ, आप तक पहुँच भी नहीं पाता। आखिर ये सब आपके सामने खुद ही आ गए। कृपया इन्हें कानून के अनुसार दंडित किया जाए, क्योंकि ये उच्च ब्याज दर वसूल कर रहे हैं और गरीब लोगों को हद से ज्यादा ब्याज के लिए परेशान कर रहे हैं। महाराज आपसे अनुरोध है, इन्हें उचित से उचित दंड दिया जाए।
5: शाबाश धर्मेंद्र, शाबाश। इस मुद्दे को मेरे ध्यान में लाने की तुम्हारी कोशिश की मैं सराहना करता हूँ। मैं आदेश देता हूँ कि इन तीनों साहूकारों का दिया हुआ कर्ज माफ किया जाए और इन्होंने जिसको पैसा दिया है उन गरीबों के दस्तावेज उन्हें लौटा दिए जाएं।
3: राजा ने धर्मेंद्र को बड़ी राशि पुरस्कार के रूप में दी, क्योंकि उसने गरीब लोगों को अनावश्यक ब्याज देने से बचाया। उस दिन से बाकी सभी साहूकार भी साधारण ब्याज पर ही धन देने लगे।
6: देखा किस प्रकार कर्ज लोगों की जिंदगी भी खराब कर देता है और किस प्रकार हम और आप बुद्धिमान तरीके से अपने पैसे को, धन को इन्वेस्ट करके कर्ज से मुक्त हो सकते हैं, छोटा छोटा धन राशि बचा सकते हैं। और जिस प्रकार कई बार हमें म्यूचुअल फंड्स इत्यादि की जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है या फाइनेंशियल शिक्षाएं हैं वो हमें यूट्यूब इत्यादि से तो मिलती रहती है, उससे भी हम शिक्षा प्राप्त करें। तो चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद तुरंत लौट कर आते हैं। आप सुन रहे उड़ान रेडियो मधुबन पर, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: से कर लो।
1: चलिए, सेवा तो करना जरूरी है, और साथ ही साथ आज की पहेली का जवाब हमारे एक हमारे फिरोज जी और फिरोज जी की जो ग्रैंड डॉटर है, जी हाँ, उनकी नातनी जो नतिन है, वो भी अक्सर कॉल करती हैं और वो भी आपसे बात कर सकती हैं, लेकिन ये कॉल कुछ कारणों से कट जा रहा है जो मुझे उससे बात नहीं हो पाई, लेकिन मैं फिर भी अभी कोशिश करती हूँ। नमस्कार।
2: हाँ, अब बोलूँ क्या?
1: हाँ जी, अब बोलिए आप। थैंक यू कॉल करने के लिए हमें दोबारा।
2: हाँ
1: बोलो।
2: बोलूँ
1: जी, सब लोग सुन रहे हैं।
2: आरंभ है प्रचंड, बोले मस्त को के झुंडे, आज जंग की घड़ी है, तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दाने, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, बोले मस्त को के झुंडे, आज जंग की घड़ी है, तुम गुहार दो। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों के पीड़ हो या पांडवों का नीड हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की है बस नहीं, किसी पे कोई बस नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं, तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाने आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड।
1: थैंक यू, थैंक यू बहुत।

0: चलिए, बहुत अच्छे से उसने गीत गाया, और मेरी गर्दन है लेकिन सर नहीं, मेरी बाहें हैं लेकिन हाथ नहीं, मैं कौन हूँ? और सभी ने जवाब दिया शर्ट कमीज, बिल्कुल, और यही सही जवाब है। कल मिलने का वादा है, ठीक शाम, कल नहीं, कल तो शनिवार है, सोमवार को मिलने का वादा है, ठीक शाम 6 बजे। तब तक के लिए उड़ान से कहूँगी गुड बाय, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।
1: Hello, I'm Alexander, diplomat from Russia, and you are listening FM Radio Madhuban. Keep listening and keep smiling. You can also tune radiomadhuban.in on internet, even Russia, even everywhere.
2: आप हो रेडियो मधुबन 107.8 FM, हबरता रेडियो ने, मुस्कुराता रेडियो।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 FM पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माय विलेज माय एरिया और अपना लोक भाषा में कहते हैं मारो गांव मारो अंचल। सही में कार्यक्रम का नाम ही अपना गाँव और अपना अंचल। जिस गाँव और जिस अंचल में रहते हैं पले बड़े और यहाँ तक पहुंचे वो गांव और अंचल कभी नहीं भूल पाते। तो सरकार का जो मंशा है जो रेडियो स्टेशन दिया है आसपास में जो गतिविधि हो रही सब तक पहुंचाने के लिए एक मंच आज राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय चंडला में और बच्चों का बारी बारी हुनर व प्रतिभा सुनने को मिलेगा। पहला प्रस्तुति हम सुनने जा रहे हैं एक प्रार्थना के रूप में और इस कार्यक्रम को साधने के लिए हमारे साथ 6 छात्राएं हैं तो वो भी अपना बात को रखेंगे नाम का साथ अपना नाम और वो कौन सा गांव से आते हैं और कौन सा क्लास।
1: मेरा नाम सुपना कुमारी है, मैं कक्षा 9 में पढ़ती हूँ, मैं अंबावेरी से आती हूँ।
2: मेरा
3: नाम अंजू कुमारी है, मैं कक्षा 11 में पढ़ती हूँ, मैं बगेरी से आती हूँ। मेरी स्कूल का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चंडीला।
0: तो चलिए बहुत सुंदर प्रस्तुति के लिए हम आज आपका पास बात कर रहे हैं खासकर ईश्वरीय विश्वविद्यालय और राजकीय विद्यालय का सहयोग से। तो जैसे बच्चे अपना प्रस्तुतियाँ देंगे, सुगना रेडी?

0: निर्वाचन प्रस्तुति के लिए कार्यक्रम का पहला गीत में ही बच्चे अपने के लिए अपना देश का अपना भाव और भावना को माँ सरस्वती तक पहुँचा दिए और इस तरह कार्यक्रम जब होता है बच्चे पढ़ कर भाग लेते हैं और अपना भाव और भावना को देते हैं अर्पण करते हैं तो समर्पित रूप में अपना जीवन को जब त्याग करते हैं तब भगवान भी खुश हो जाते हैं बच्चों का गीत को देखकर उनका सुर ताल का साथ लय का साथ भावना भी है भाव भी है जैसे घर में अगरबत्ती करते हैं नमस्ते करते हैं पूजा पाठ करते हैं तो हमारा छह छात्र जो सुकुना अंजु सभी को नाम का साथ धन्यवाद देते हैं पहला प्रस्तुति के लिए और छोटे बच्चे भी हमारे साथ इस कार्यक्रम को जोड़ेंगे लेकिन और कोई विराम के बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गाँव मेरा आंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर तो खास कर अंजु बड़े होकर क्या बनेगी
1: टीचर
0: क्यों क्योंकि
1: पढ़ाते हैं
0: तो बच्चा मिट्टी को जैसे रूप देंगे उस तरह बनता है जैसे कारीगर क्या करता है कारीगर अच्छा से सुंदर देते हैं लकड़ी हो चाहे मिट्टी हो उसको सुंदर रूप दे देते हैं तो शिक्षक भी बच्चों को सुंदर रूप में रूप देकर डॉक्टर इंजीनियर टीचर बना देते हैं तो इसलिए टीचर शिक्षक का महत्व ज़्यादा है सैनिक टीचर और किसान ये तीनों देश का ज़्यादा और पूरा मेन रोल करते हैं पूरा पिलर है उनका बिना हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा सैनिक जो कि बॉर्डर में सैनिक काम क्या करता है जो फौजी में देश को रक्षा करते हैं हाँ और किसान हमको अन्न देते हैं और शिक्षक हमें अच्छा शिक्षित कराते हैं बहुत बहुत धन्यवाद लेते हैं छोटा सा

0: चले कार्यक्रम को
1: आगे बढ़ाते हैं। अपना कड़ी में बच्चे आवाज को सुन लिए क्या कर ले और अच्छा गीत सुने प्रार्थना के रूप में और हमारे रेडियो मधुबन तरफ से भी गीत सुने। तत्पश्चात और एक प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए गोड्डा गुड़िया दोनों आए हैं, तो सुनते हैं उनका आवाज से क्या बोलना चाहेंगे। अपना नाम बताएंगे। हेलो, नाम बताइए। और कौन सा क्लास? पहले का प्रस्तुत सुनेंगे। सभी बच्चे साथ दे रहे हैं हमारा कार्यक्रम को सुंदर में पूरा अपने को कंट्रोल करके बैठे हैं चुपचाप। और हमारा तीन छात्र और छात्रा दोनों मिलकर गीत गाएंगे। सुना
2: पहुंच गई चंडीगढ़।

भारत है मेरा घर, कहाँ भी नहीं गए, सब घूम कर आकर अपना घर में पहुँच गए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला कार्यक्रम के लिए हम लोग और छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनको भी स्वागत करेंगे कि बच्चे सच्चे होते हैं, मन के सच्चे, दिल के सच्चे, प्यारे प्यारे लगते हैं। और बच्चे भी आए, हम भी कभी बच्चे थे लेकिन आप तो बड़े हो गए, हमारा बच्चे कम नहीं है। आपने अपना नाम बताएंगे प्लीज, अपना नाम बताओ। हेलो जी, हाँ यशोदा, चेतना, आत्मा तो चेतना है कि नहीं? अरे यशोदा बिना हमारा कुछ अस्तित्व नहीं है ने? मधु, वाह मधुबन, रेडियो मधुबन से हम आए और मधु हमारा इस कार्यक्रम को सजा रहे। और एक गुड़िया किंजल, बस सभी के लिए ताली बजा दो भाई, ये तीनों बच्चे के लिए। सुना कौन सा गीत सुनाएंगे? कविता हाथी राजा, वाह हाथी तो राजा है, जंगल का राजा हाथी है, जंगल का राजा हाथी है। हाथी कभी देखा है? चित्र में नहीं, फोटो में नहीं, हाथी देखा है? कितना पैर है उसके हाथी का? चार। कितना पैर है? सभी बच्चे हाथी देखें? असली असली असली देखें? कब? जंगल में ना गांव में? गांव में हाथी आता है? अरे क्योंकि चंडला का बाजू में तो बड़ा बड़ा पहाड़ है, जंगल है, हो सकता आ सकता है, लेकिन कोई भी पालतू हाथी भी आता है। चलिए हाथी राजा के बारे में सुनेंगे, सभी सुनेंगे बच्चे? चलिए सुनते हैं हाथी राजा।

0: बाह, तुम्हारा नाम बताओ?
1: राजकुमार।
0: अरे बाह, राजकुमार। राजकुमार हमारा होबनहार बच्चा है और राजा बनेगा। बड़े होकर क्या बनेगा? राजा बनेगा ना, डॉक्टर बनेगा? क्या बनेगा?
1: डॉक्टर।
0: हाँ हाँ, राजकुमार हमारा राजा बनेगा और डॉक्टर भी बनेगा। डॉक्टर का काम क्या होती है?
1: सुई लगाता।
0: अरे बाप रे, सुई। बहुत होशियार बच्चा हमारा राजकुमार। अरे बैठ जाता है सिर्फ, राजा तो बैठता नहीं है, राजा तो पूरा शासन करता है ना। तुम्हारा अच्छा मैम कौन है?
1: ममता मैडम।
0: अच्छा, क्या बात है, ममता मैम उनका अच्छा मैम है। क्या ममता मैम क्या सिखाते हैं?
1: गिनती।
0: गिनती सिखाते हैं और राजा बनने के लिए तरीका बताते हैं, डॉक्टर बनने के लिए तरीका बताते हैं, है ना। बहुत अच्छा है। राजकुमार के लिए क्या करेंगे, जोर से ताली बजाएंगे। राजकुमार हमारा खुशी खुशी लग रहा है तुमको? सब ताली बजा कर खुशी करा दिए। ताली बजाने से कोई पैसा नहीं लगता है, एक्सरसाइज हो जाता है और चेहरा में गोलाप फूल जैसे खिलता है। सबका चेहरा देखो कितना खिलखिला रहा है ना, जैसे कमल फूल खिलता है ना। कमल फूल कैसे खिलता है देखो बच्चे, ऐसे करो हाथ। अरे वाह, कमल फूल दो दो हाथ अंगुली से इशारा से करो, देखो कितना सुंदर लग रहा है ना। कमल फूल ऐसे खिलता है, कमल फूल जैसे हमको भी बनना है। कैसे बनना है? कमल फूल जैसे
1: बनना है।
0: हाँ देखो बच्चे आज कितना खुशी से बोले, कमल फूल जैसे सब सहन करता है, कीचड़ पानी सब उनके साथ रहकर पूरा उपराम, सबसे अलग। हमारा राजकुमार भी सबसे अलग है, सभी मैम उनको याद करते, सभी सर उनको याद करते ना
1: जी।
0: क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास गुण है, विशेषता है। बहुत अच्छा बच्चे, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा इस कार्यक्रम को सजाने के लिए और दो बच्चे है, तीन बच्चे, वो भी सुनाएंगे। लेकिन आओ और बच्चे सुनाएंगे कुछ,
2: हसीना
0: सुनाएंगे कुछ इस कार्यक्रम को। अगला कड़ी में सुनाएंगे हसीना हमारा साथ। कौन सा क्लास में हसीना है?
3: फाइव,
0: फिफ्थ क्लास। तो सुनाओ
3: नानी।

0: क्या बात, प्यार प्यार मतलब कितना खुशी का बात, ताली बजा प्यार के लिए। प्यार में सब कुछ समय होता है, जब प्यार से कोई काम करेंगे, प्यार से याद करेंगे, प्यार से पढ़ेंगे, प्यार से बुलाएंगे, चुटकी में सब काम हो जाता है। और हमारा गुड़िया, हमारा परी आज प्यार सबको लुटा रहा है, गीता माध्यम से, कविता का माध्यम से। कौन सा फल लिपा, कौन सा गांव से आती गुड़िया, तुम कहाँ से आती?
1: गिरवर बोर्ड से।
0: अरे बाप रे, गिरवर बोर्ड से आती, इतना दूर से आती है, वाह, गिरवर बोर्ड से। और बड़े होकर क्या बनेगी गुड़िया तुम?
1: डॉक्टर।
0: हाँ डॉक्टर, डॉक्टर का काम सुई लगाना होता है, इंजेक्शन देना होता है। और इस कार्यक्रम को सुंदर रूप में सजाए, और प्यार प्यार भरा, दिल भरा कविता का माध्यम सबका मन मुग्ध कर दिया। हमारा श्रोता सुन रहे इस कार्यक्रम को, और ये तो चंडला का आवाज, विद्यालय के भुवनहार बच्चे ममता मैम और एक मैम हमारा साथ इस कार्यक्रम में आए हैं, तो उनको भी हालो करेंगे। मैम आप अपना परिचय देंगे?
2: मेरा नाम संगीता शर्मा है और मैं इसी विद्यालय में अध्यापिका हूँ, पहले से पांचों को हिंदी पढ़ाती हूँ। और ये बच्चे अच्छे अच्छे कविता बोल रहे हैं, इनको सिखाइए मैंने। और मुझे पढ़ाने का बहुत ही शौक है, मुझे पढ़ाना बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, छोटे छोटे बच्चों से पढ़ाना है, इनको नॉलेज देना। और इनको, मैं से सांस्कृतिक प्रभारी भी हूँ, तो नाच गाने वगैरह करवाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं खुद भी गायिका हूँ, गाती हूँ गाना।
0: बच्चों का आवाज को सुनकर मैम भी अपने आवाज को रोक नहीं पाएंगे क्योंकि मुझे मालूम है, क्योंकि बच्चे सच्चे होते हैं और बड़े भी तो सच्चे बना देते हैं। और इस कविता का माध्यम से प्यार कितना सीमेंट का काम करता है, जोड़ना है प्यार, जैसे ईंट और रेती को सीमेंट दे देंगे तो दोनों को पूरा बराबर जोड़ देता है, कभी टूटता। तो इस कविता का माध्यम से सभी बच्चे भाग लिए। और मैम इस कविता का माध्यम से कुछ कहना चाहेंगे? मैम एक जो कविता सुनाई बच्ची, प्यार वाला कविता, वो कविता का महत्व थोड़ा बताइए, आपका, आप तो बच्चों को सिखाते हैं।
2: ये कक्षा 5 का पहला ही पाठ है, तो मैं इनको, मैंने पढ़ाया और रोज ही प्रार्थना के जस्ट बाद ये कविता मैं बुलवाती हूँ। तो ये बच्चे क्या है, इन कविताओं को बोलते हैं और इनको सबको करीब करीब याद हो चुकी है। तो इसमें नानी का जो प्यार वो बताया है, नानी दादी हमें पहले कैसे कहानी सुनाती थी, प्यार करती थी, है ना। तो उससे बच्चों का क्या होता था, संस्कार के विकास होते थे, है ना। जैसे उन्होंने, नानी हमें प्यार से बताती थी कि ये संसार पूरा किसने बनाया, ईश्वर ने, ईश्वर ने बनाया ना। और ईश्वर, तो ईश्वर को हमको ध्यान रख करना चाहिए, ईश्वर ही हमको सबसे जुड़ने का और इस संसार से जुड़ने का प्रेम सिखाता है, है ना। तो इसलिए नानी का और दादी का बच्चों के संस्कार निर्माण में बहुत ज्यादा अहम रोल होता है। और इसी में दो लाइन मैं बच्चों के ऊपर गाना गा देती हूँ, क्योंकि बच्चे मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं बच्चों के लिए ही गाना गा।

0: के सच्चे धन्यवाद।
1: चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बच्चे का शुरुआत कर दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैम को भी धन्यवाद और हमारा ममता मैम को भी धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए। ममता बहन का आवाज भी लेंगे अंतिम समय में।
2: लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक बाद पुनः मिलेंगे, सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा आंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: ओए रुक, ओए रुक रुक, कुछ सुनाई नहीं देती। और ये पुकार है आपकी गड्डी की, तो कह रही है कि बिना पिए मेरे को चलाओ। और ये पुकार आपके बच्चों की भी हो सकती है, तो जो सलामत घर पहुंचना हो तो बिना पिए गाड़ी चलाना, समझे? चलो निकल लो अब। और हाँ, हैप्पी जर्नी मेरी तरफ से अवलदार कड़क। हाँ, जो आपको कहता है डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। और ठीक ना? ठीक।
1: ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
2: नमस्ते। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए और एक बोलते बोलते फिर और एक प्रस्तुति करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें खुशी मिल रहा है। बच्चे सच्चे होते हैं और बढ़ चढ़ कर अपना भाव और भावना को देते हैं, क्योंकि उनको मौका मिलता नहीं। आज मौका मिला है रेडियो मधुबन उनका बात को रखने के लिए एक मंच दे रही है, जिस मंच का माध्यम से, जिस स्टेज का माध्यम से अपना भाव को जन जन तक पहुँचाते हैं। और आदिवासी गाँव में रहते हैं बच्चे, इस तरह आकाशवाणी में आने के लिए उनको कोई पूछता नहीं था, तो रेडियो मधुबन ब्रह्मा कुमारी आज उनका बात को रखने के लिए उनको मंच दे रहे, माइक दे रहे, तो पुनः और एक प्रस्तुति के लिए रेडी है। हमारा सभी गुड़िये आए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे सभी? अपना नाम क्या बताया था?
3: अंजू
2: शुभना। चलिए सभी मिलकर एक प्रस्तुति करेंगे। ओके।

0: वाह वाह बोल रहे हैं सर बच्चे, बहुत अच्छा सुंदर प्रश्न देते हैं, धन्यवाद देते हैं।
1: इस तरह बच्चे को जब मान के मिलते हैं आगे आकर अपना बात करते हैं, कोई बड़े अपना लक्ष्य मिलते हैं, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई पुलिस बनेंगे सभी बड़े होकर,
0: लेकिन लेकिन मेहनत जरूरी है। विद्यार्थी जीवन में मेहनत करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, बिना मेहनत से कुछ नहीं होने वाला है। इसमें पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई तब तक विद्यार्थी पढ़ाई का जीवन में पढ़ाई करना है और बड़ों का बात मानना चाहिए, है ना।
2: मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

0: चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अंतिम प्रस्तुति की ओर हम चल रहे हैं और आप सब सुन पा रहे रेडियो मधुबन पर राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय चंडला का आवाज अंतिम प्रस्तुति में उन्होंने स्वागत करते हैं, शुरू करेंगे।
1: चंडा पड़ा अंबर

धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए और आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और इसी बात को लेकर। बहुत खुशी लगा, सभी को नाम का साथ धन्यवाद देते हैं। सभी बच्चे बोलो रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो।

नमस्कार, मैं हूँ शिप्ला, डिस्ट्रिक्ट मोहाली, स्टेट पंजाब से। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहें, मुस्कुराते रहें।

0: रुका ओए त्रिदेव त्रिमूर्ति, एक बाइक पे तीन हैं और तुम लोगों को शर्म नहीं आती? और बाइक एक और एक साथ तीन चढ़े जा रहे हो, और तीन लोगों का जाना अलाउड नहीं है बाइक पे, मालूम नहीं तुमको? और अपनी नहीं तो इस बाइक की सोचो बेचारी, तीन के बोझ की मारी।
1: सर बहुत जरूरी मैच है सर आज।
0: ओए तुम्हारे मैच की तो, ओए एक बाइक पे तीन जा रहे हो, और कुछ हो गया तो सीधे हमेशा के लिए क्लीन बोल्ड हो जाओगे, ओए जिंदगी के स्टैंप उखड़ जाएंगे। ओए ये ट्रैफिक है भाई, यहाँ तो कोई फ्री हिट भी नहीं मिलती, ठोको ताली। ओए मुझसे कोई नहीं बच सकता क्योंकि ये है मेरी सड़क, और मुझे कहते हैं हवलदार सड़क।
2: याद रखें, एक बाइक पर कभी दो से ज्यादा लोग एक साथ न जाएं, यह एक दंडनीय अपराध है। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
3: हंसो मत, बोलो

0: पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, जीना सीखा। रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
1: लाइफ इज अ डांस, डांस विद जॉय एंड एंथुसियाज्म, अर्थात ये जीवन को हमेशा उमंग और उत्साह के साथ जियो। दैट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। इंग्लिश में एक बहुत अच्छा स्लोगन है जिसे हमको प्रेरणा मिलती है कि हर पल हर क्षण हमें उमंग उत्साह में रहना है, और वो बहुत सुंदर स्लोगन है, आई ऑलवेज कंप्लेन दैट आई हैड नो शूज अंटिल आई सॉ अ मैन हु हैड नो फीट। मैंने हमेशा कंप्लेन की कि मेरे पास जूते नहीं है, जब तक मैंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जिसके पैर ही नहीं थे। तो देखो, हमें अपने भाग्य पर कितना नशा होना चाहिए, कितना नाज होना चाहिए कि ईश्वर ने हमें इतना सुंदर जीवन दिया है, तो क्या हमें दुखी होना चाहिए क्या? नहीं, हर पल हर क्षण वी हैव टू डांस विद जॉय एंड एंथुसियाज्म। तो आज मैं आपको एक बहुत सुंदर डांस सिखाने वाला हूँ। सभी करेंगे डांस? इसको कहते हैं पीकॉक डांस। पीकॉक जब खुशी में होता है ना तो कितना वंडरफुल डांस करते हैं, वही डांस मैं आपको भी सिखाता हूँ। और वो कैसे करना है? वाह मेरा जीवन वाह। जब आप ये डांस करते हो तो एक तो इट पंप्स इन अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन टू योर लंग्स, और दूसरा मन में भी जो आपको विचार मिलते हैं वो बहुत एंथुसियास्टिक और मोटिवेटिंग होते हैं। तो मैं आपको एक एक बोलता रहूंगा, वैसे आप करते रहना, ठीक है? करेंगे सभी? ओके, चलिए। वाह ईश्वर वाह, वाह मेरा जीवन वाह, वाह मेरे फैमिली मेंबर्स वाह, वाह मेरे मम्मी डैडी वाह, वाह मेरे ब्रदर्स सिस्टर्स वाह, वाह मेरा ऑर्गेनाइजेशन वाह। स्टूडेंट्स बहुत खुशी से कह सकते हैं वाह एग्जाम्स वाह, वाह मेरी पढ़ाई वाह, वाह ये दिन वाह, वाह वाह वाह। तालियां बजाइए। तो हर दिन सुबह उठकर ये पीकॉक डांस जरूर जरूर करना।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: अपने आप को आज देखते हैं, हर रोज कुछ बातों को हमने एक ही तरह से रिएक्ट किया और करते करते वो मेरी आदत बन चुकी है। आज एक नया तरीका, अ न्यू वे ऑफ रिस्पोंडिंग, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मुझे खुशी, सेहत और सुंदर रिश्ते देगा, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मेरे लिए कंफर्टेबल एंड रॉयल होगा। आज अपनी किसी एक आदत, अपनी किसी एक रिएक्शन को चूज करते हैं एंड देखें अपने आप को कि आज उसी परिस्थिति में अपने आप को एक नए तरह से रिस्पॉन्ड करते हुए देखें। धीरे धीरे अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग, एक नया पैटर्न क्रिएट होना शुरू हो रहा है। दिस इज द पावरफुल बीइंग।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

किसी की जिंदगी में कोई दुर्घटना घटित न हो, ये हम सभी चाहते हैं। पर अचानक अगर कोई विपत्ति आ जाए तो घबराइए नहीं, तुरंत कॉल कीजिए अपने शहर की पुलिस को। डायल कीजिए 100 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

मैं कमलेश माउंट आबू ढूंढे गांव की रहने वाली भूसा और मैं सुन रही हूँ रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनता रहो और मुस्कुराता रहो।

0: नमस्कार, मैं हूं अनूप जलोटा और आप मुझे इस वक्त सुन रहे हैं रेडियो मधुबन में। भक्ति भजन आप सुनते हैं, उसका आनंद लेते हैं। एक भजन जो मैं बहुत प्रेम से गाता हूं, उसकी एक लाइन आपको सुनाता हूं। मैया मोरी मैं नहीं मां खायो, ये भजन मुझे बहुत प्रिय है, आप भी सुनिए। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: जरा नजरों से कह दो जी,

0: नमस्कार, मैं हूँ हरमीत सिंह।
1: दुनिया बनाई मैंने हाथों से।
0: वन ऑफ द मीत ब्रदर्स अंजन, म्यूजिक डायरेक्टर्स एंड सिंगर्स फ्रॉम द फिल्म ओ माई गॉड।
1: मिट्टी से नहीं, जज्बातों से।
0: और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: ना ना मैं तेरी गुजरिया ना तू मेरा दीवाना।
1: नमस्कार, मैं हूँ पार्श्व गायिका श्रद्धा पंडित। आप सुन रहे हो रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप, और कार्यक्रम है लव यू जिंदगी। जिंदगी से प्यार वैसे तो सभी को होता है, लेकिन दोस्तों कभी कभी कुछ ऐसे मौके आते हैं जब हम वो प्यार करना भूल जाते हैं और हमें एहसास कराना पड़ता है कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है। और समझ लीजिए, लव यू जिंदगी ऐसा कार्यक्रम ही नहीं, ऐसा मौका भी है। तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग, अपने इमोशंस को पढ़ेंगे, खुद को बेहतर जानेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हमारे एक्सपर्ट्स। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं कल्पना जी का, जो कि ग्लोबल अस्पताल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप साइकोथेरेपिस्ट भी हैं, आप स्पिरिचुअल काउंसलर भी हैं, और आप अनेक एपिसोड्स के माध्यम से हमें गाइड करते रहते हैं। ये आपको बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद आयुषी जी, बहुत अच्छा लग रहा है फिर से एक बार श्रोताओं से रूबरू होते हुए। हम जो कुछ भी लाइफ में सीखते हैं, जब उसे दूसरों के साथ शेयर करते हैं, तो जो खुशी मिलती है, संतोष मिलता है, वही वो चीजें हैं जो हमें अपने रेडियो के श्रोताओं से जोड़े रखती हैं।
0: बिल्कुल। और हमारे साथ जुड़ गए हमारे दूसरे एक्सपर्ट ट्रिनिटी जी, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं और साथ साथ जाने माने एंकर और आरजे भी हैं। ट्रिनिटी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार आयुषि जी, कल्पना जी नमस्कार। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है लव यू जिंदगी के और एपिसोड में वापस जुड़ के, और मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जितना हमारे श्रोता मित्रों को हर एपिसोड में कुछ नया सुनने और समझने को मिलता है, इस एपिसोड में मुझे भी कुछ नया सुनने और समझने को मिलेगा, और इसलिए खुशी होती है हर बार इस कार्यक्रम
0: जुड़ने के लिए। और जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में बातचीत की थी इमोशनल अवेयरनेस के बारे में और रेटिंग सिस्टम के बारे में, आपने बताया था कल्पना जी किस प्रकार से हम अपने

0: इमोशंस को रेट करते हैं कि हम 2 पे हैं कि 5 पे हैं कि 8 पे हैं। हम जो बातचीत कर रहे थे उसके आखिर तक हम एक क्वेश्चन पे आके रुके थे कि अगर मान लीजिए जेलसी है या मुझे कोई ऐसी चीज है जो पसंद नहीं आ रही है या मुझे ऐसा लग रहा है ये क्यों मुझसे आगे बढ़ गया या मैं कहाँ रह गई, वो कंपैरिजन आ जा रहा है, उसको रेट करने से क्या फर्क पड़ता है? मतलब मुझे पता है मैं जेलस हूँ या फिर कभी कभी मैं अवेयर नहीं हूँ कि मैं जेलस हूँ, सामने वाला ही गलत लग रहा है, तो इसको रेटिंग करने से क्या मदद मिलती है या डील कैसे किया जाता है, कुछ इस बारे में अगर आप कंटिन्यू करें।
1: जी बिल्कुल, जब आपके अंदर कोई भी नेगेटिव इमोशंस होती है, चाहे वो खुद के लिए हो चाहे किसी और के लिए, जब उसकी इंटेंसिटी को हम पहचानते हैं, जैसे आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको बुखार आया है, तो डॉक्टर पहले आपका बुखार नापते हैं कि कितना है भाई, 98 है, 100 है, 101 है, 102 है, जिस हिसाब से आपका बुखार है उसकी इंटेंसिटी उस तरह से पहचानी जाती है। उसी तरह से कोई भी नेगेटिव इमोशन जो मेरे प्रति क्रिएट होता है, जो दूसरे के प्रति क्रिएट होता है, जब उसकी इंटेंसिटी का पता चलता है, तब हम उसे कैसे हैंडल करना है, कैसे उसे कम करना है, किस लेवल से कहाँ तक ले आना है, ये समझ हमें डेवलप होती है। तो इसलिए इंटेंसिटी का जानना जरूरी है। दूसरी बात, नेगेटिव इमोशन चाहे वो अपने लिए हो चाहे वो दूसरे के लिए हो, नुकसान ही करता है, उसका हमें फायदा होता ही नहीं। तो ऐसे इमोशंस क्रिएट करने की बजाय अगर हम उन्हें रिप्लेस करें, नेगेटिव इमोशंस को रिप्लेस करें, जैसे हम हमेशा कहते आए हैं कि एंगर, हमें गुस्सा आता है, हम एक्सप्रेस करते हैं बोल के, चिल्ला के, डांट के, किसी भी तरह से, उसकी भी एक इंटेंसिटी होती है। बट अगर एंगर को हमें रिप्लेस करना है तो किस से कर सकते हैं कि हमारा पर्पस भी फुलफिल हो, जिस बात के लिए हम गुस्सा कर रहे हैं वो बात दूसरों की समझ में भी आ जाए लेकिन हमें गुस्सा भी नहीं करना पड़े। तो हमने कई बार इस इमोशनल एक्सप्रेशन के बारे में चर्चा की है जिसे हम असर्टिवनेस कहते हैं, कि अपनी बात खुलकर स्पष्ट रीति से कहे भी लेकिन बिना विचलित हुए, बिना गुस्सा किए, बिना अग्रेशन के, शांत भाव से वो बात जैसी है वैसी कहेगी। सो उसको असर्टिवनेस कहते हैं। तो यह बात आती है, इंटेंसिटी इसलिए जानना है क्योंकि हमें उसे रिप्लेस करना।
0: ओके, दैट्स वंडरफुल। और ये जो आपने एग्जांपल दिया बुखार का, सच में हम वहां तो नापते हैं लेकिन मन में वो नापतोल करना है ये तो आइडिया ही नहीं आता, कि हमको ये आंकना भी है कि क्या लेवल है उस गुस्से का या जेलसी का, और उससे डील करने में फर्क पड़ता है आपने जैसा बताया। श्रीनिधि जी, या मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि क्या आपने कभी ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट किया है या कुछ ऐसा इमोशंस को ऑब्जर्व करके कोई रिप्लेसमेंट किया है?
2: सबसे पहले तो कल्पना जी ने जो बात कही, मैं समझता हूँ ये हमें से लगभग ज्यादातर लोग कर पाने में सक्षम होते हैं, सिर्फ हमें वो पैमाना नहीं मिलता, अगर वो मापदंड मिल जाता है, स्केल मिल जाता है, तो हम अपने आप को स्केल पे नापने में सक्षम है। और सिर्फ छोटे बच्चे ही होते हैं शायद कोई ऐसी समझ में ना आए, मगर ज्यादातर एडल्ट्स जो होते हैं या टीनेजर्स भी अपने इमोशंस को बहुत अच्छी तरीके से ऑन स्केल प्रेजेंट कर सकते हैं। आम बातचीत में जो इतनी ज्यादा समझ नहीं भी रखता हो वो भी व्यक्ति अक्सर अपने इमोशनल स्टेट के बारे में बता देता है, खासकर ऐसे समय पर जब हम नेगेटिव इमोशंस से जूझ रहे हैं या उन इमोशंस के कब्जे में हैं। तो अक्सर सिंपल सा क्वेश्चन ये बात कही जाती है तो लोग आके को दाज मेरा मूड खराब है, मेरे कुछ मत बोलो आज, ये लोग कुछ कहते हुए नजर आते हैं। कभी कभार लोग बोलते हैं आज मेरा मूड बहुत ही खराब है, मेरे से बिल्कुल बात मत करो, ये भी चीज सुनता है लोग बोलते हैं। जैसे चिड़चिड़ापन है, चिड़चिड़ापन इरिटेशन देखने को मिलता है, और उससे थोड़े और लेवल पे लोग थोड़ा गुस्सा करते हैं, आंखों से दिखाते हैं या चेहरे पे लोग नजर आता है, फिर उससे थोड़ा और गुस्सा होता है तो व्यक्ति गुस्सा मुंह से बोलना शुरू करते हैं, नाचना बोलना लगना या फिर ऊंची आवाज में बोलना, ये सारी चीजें देखते हैं। इसी के एक और लेवल पे अगर हम देखते हैं तो व्यक्ति हाथ पैर चलाने लग जाए, उससे एक और लेवल। तो मैं समझता हूँ ये रेटिंग्स हम सभी स्वाभाविक रीति से लोगों में देखते हैं, इनका पारा कितना चढ़ा हुआ है, टेम्परेचर नापा जा सकता है। लोग कहते भी हैं उदासी के लिए भी आज थोड़ा मन ठीक नहीं है, ये बहुत ही बेसिक लेवल, उसके बाद में नहीं थोड़ा मैं उदास फील कर रहा हूँ। तो कभी कभार तो लोग बिल्कुल ही चेहरे पे वो शक्ल पे नजर आने लगती है कि सामने वाला पूछ लेता है कि आज ठीक नहीं लग रहे हो, उदास उदास से लग रहे हो, मायूस लग रहे हो, क्या बात है।
0: पता
2: चल, एक बार लोग सामने से बोल देते कि आज मैं बहुत उदास हूँ, मेरा मन ही नहीं लग रहा किसी चीज में, तो ये भी लोग कहते हैं और ये कहने का जरिया हमने खुद तय किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास वो स्केल नहीं है। नेचुरली कल्पना जी बेहतर बता सकें कि वो अपने प्रैक्टिस में क्या चीजों को देखते हैं, लोग जब अपने स्केल में कहाँ अपने आप को स्केल पे फिट करते हैं, बट स्वाभाविक रीति से भी हम एक स्केल को जानते हैं और अपने शब्दों में हम अलग अलग तरीके से उन्हीं फीलिंग्स को कम, थोड़ा बीच में, थोड़ा ज्यादा और एकदम एक्सट्रीम पे हम ये रीड करना चाहते हैं। हम खुद एक्सपीरियंस करते हैं तभी भी, और हम सामने वाले के भी भाव से, हाव से, उनके हाव भाव से इन चीजों को माप लेते हैं या भाप लेते हैं, ऐसा कहना स्वाभाविक है। और जब रिप्लेसमेंट करने की बात कल्पना जी कह रहे थे, तो ये रिप्लेसमेंट कभी व्यक्ति खुद करता है, कभी कभार वो दूसरों से मदद लेता है। और मैं समझता हूँ कई मामलों में मैंने अपने दोस्तों से मदद ली है, जब मेरा मूड खराब है या फिर मैं उदास महसूस कर रहा हूँ या आज मन नहीं लग रहा है, तो मैंने अक्सर ये चीजें कही है मेरे आस पास के मेरा मन नहीं लग रहा है, खाली खाली सा लग रहा है या थोड़ा बेचैनी सी हो रही है। अब ये चीजें जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो सामने वाले आपके मूड को बेहतर करने के लिए प्रयास करते हैं, वो कुछ आपको पॉजिटिव सुनाए, बेचैनी हो रही है तो वो आपको कुछ रीअश्योरेंस देंगे, अगर आप चिंतित हैं तो फिर वो आपको चिंता का कारण पूछेंगे और उसे निवारण करने का प्रयास करेंगे। और कभी कभार हम स्वयं भी अपने आप को ये चीज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप ट्रेन पकड़ने जा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि भाई रेलवे स्टेशन पहुंचना बहुत ही मुश्किल लग रहा है, गाड़ी धीरे धीरे चल रही है, हो सकता है आप ट्रेन मिस कर जाएं, तो आपके मन में बेचैनी है और उस समय पर आप एंग्शियस हो जाते हैं। मगर ऐसे समय पर जब आप देख रहे हैं कि मैं अंदर से बेचैन हो रहा हूँ, तो मैं अपने आप को याद दिलाता हूँ, और मैंने अनेकों बार ये चीज की है, मैं अपने आप को याद दिलाया, देखो ट्रेन तो मैं पकड़ ही लूंगा, चाहे दौड़ के पकड़ना पड़े पकड़ लें। और मन फिर से कुछ चीज कहता है नहीं पकड़ा तो, फिर मैं अपने मन को समझाता हूँ कोई बात नहीं, अगर नहीं पकड़ना होगा तो पकड़ेंगे,
0: जैसे क्वेश्चन आंसर, एक डिस्कशन चल रहा है मन के साथ,
2: मैं रिप्लेस कर रहा हूँ उस क्वेश्चन के लिए, कुछ और आंसर दे रहा हूँ, फिर एक प्रश्न आ रहा है उसके लिए
0: श्योर कर रहे हैं उसे,
2: उस एंजाइटी को रीअश्योरेंस के साथ रिप्लेस कर रहा हूँ, मैं श्योर कि हाँ मैं पकड़ ही लूंगा, कोई बात, हो सकता है आज ट्रेन लेट हुई हो सकता है मैं टाइम पे पहुंचा हूँ। अनेक ऐसी चीजें हैं जो आप पॉजिटिव रीअफर्मेशन के रूप में अपने आप को ये रीअश्योरेंस दे सकते हैं, तो एंजाइटी के लिए रिप्लेसमेंट मैं दे रहा हूँ,
0: ऐसे और भी चीजें,
2: ऐसे अनेक चीजें हैं जिसके लिए आप चीजें कर सकते हैं। अक्सर एक और चीज जो मैंने अक्सर ये चीज अपने आप के लिए कहा है, कभी आपको प्यार की महसूसता कम होती है, आपको लगता है कि कोई प्यार कम करता है आपसे, या आज आपको ऐसा महसूस कर रहा है कोई मेरे प्यार से बात करे, यार सुबह से मतलब लोगों ने मेरे को परेशान किया हुआ है, प्यार से बात ही नहीं करते हैं लोग, तब उस समय पर मैंने अपने आप को याद दिलाया मैं दूसरों से प्यार की अपेक्षा क्यों कर रहा हूँ, मैं अपने आप से प्यार करता हूँ, मैंने अपने आप को कहा है, मैंने अपने आप को ये भी समझाया है कि मैं प्यार लेने वालों में से नहीं हूँ, प्यार देने वालों में मैं दाता हूँ, मेरे पास प्यार का भंडार है, मैं प्रेम से भरपूर हूँ, ये मैंने अपने आप को याद दिलाया है। बहुत बार मैंने अपने आप को याद दिलाया है कि मैं प्यार के सागर की संतान हूँ, परमात्मा भगवान प्यार का सागर है जिसके लिए हम गाना गाते हैं कि प्यार का सागर है, तो प्यार का सागर मेरे पास है, मैं दूसरों से क्यों अपनी प्यास बुझाऊं। तो अनेक ऐसी चीजें अपने आप को कहने से भी वो चीज आपका जो हाव भाव है, जो आपका फीवर चढ़ा हुआ है, नीचे उतर
0: जाता है। कितना फर्क पड़ता है खुद से बात करने से, और जिसको सेल्फ लव पे भी हमने बहुत सारे एपिसोड्स किए हैं, बातचीत की है। कल्पना जी, मैं यहाँ पे फिर से एक बार आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे लास्ट एपिसोड में भी आपने कहा था कि हम इमोशन को आइडेंटिफाई कभी कभी गलत करते हैं, मतलब वो प्यार है या सिर्फ अट्रैक्शन है या कोई और चीज है, तो वो राइट आइडेंटिफाई कैसे करें? बहुत बार प्यार को लेके ही कंफ्यूजन होता है, नहीं है, जब लोग अपने पार्टनर चूज करते हैं तब भी बहुत कंफ्यूजन होता है, कॉलेज में भी कई बार बहुत कंफ्यूजन होता है, बच्चों को भी कंफ्यूजन होता है, तो वो राइट इमोशन को आइडेंटिफाई कैसे करें, खासतौर से अगर प्यार की बात हो।
1: बिल्कुल, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, 10-12 साल की उम्र से लेकर 20-25 साल की उम्र तक प्यार वाला ये इमोशन हमारी लाइफ में एंटर होने लगता है, वो फीलिंग हमें अपोजिट सेक्स के लिए आने लगती है। सो ये चीज को अच्छी तरह से समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जैसे हम किताबों में पढ़ते हैं और ज्यादातर आजकल बच्चे फिल्मों में देखकर प्यार को समझने लगते हैं। प्यार फिल्मों में देखकर या किताबों में पढ़कर समझने की बात हालांकि है नहीं, ये बचपन से माँ बाप से हमें प्यार मिलता है, हम अपने माता पिता से प्यार करते हैं, भाई बहनों के बीच में प्यार होता है, हर रिश्ते में प्यार की बुनियाद तो होती है। परंतु एक दूसरे, अगर गर्ल है तो बॉय के प्रति, बॉय है तो गर्ल के प्रति आकर्षित होने के कई कारण होते हैं। जैसे कि कोई पढ़ाई में अच्छा है तो मुझे अच्छा लगने लगता है, जिसके अंदर कोई स्पेशल क्वालिटीज है, जैसे कोई गाने वाला है, कोई म्यूजिशियन है, उसको अलग अलग वाद्य यंत्र बजाने आते हैं और वो अच्छा परफॉर्म करता है तो मुझे अच्छा लगने लगता है और मैं समझती हूँ वो प्यार है। मतलब जनरली जब बड़े होते हुए बच्चे समझते हैं कि वो प्यार, तो वो अच्छा लगना कोई और प्यार होना, इसमें अंतर है। हमें फिल्मों के एक्टर्स भी अच्छे लगते हैं जो रोल प्ले करते हैं, हम कहते हैं हम उनके फैंस है। क्रिकेटर्स भी हमें जो अच्छे लगते हैं हम कहते हैं हम उनके पीछे पागल है। अभी फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है तो ये जब इतने सारे खिलाड़ी हैं उनके प्रति भी हमें बहुत ज्यादा आकर्षण होती है, तो हम कहते हैं हम उनके फैन हैं। तो हम ये नहीं कहते कि हमें उनसे प्यार है, पर कई बार मिसअंडरस्टूड किया जाता है इस भावना को, कहा जाता है हम प्यार करते हैं। तो बड़े होते बच्चों में आकर्षण, अट्रैक्शन और प्यार, ये चीज ना समझ में आने के कारण वो जैसे लोग आजकल फेसबुक पर मिलते हैं या किसी सोशल मीडिया पर मिलते हैं, हेलो हाय हो जाती है, कभी कभी फेक प्रोफाइल से भी बात करते हैं और बातें करते करके उनकी बातें अच्छी लगने लगती हैं। वो जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, अपने इमोशंस को वो वैलिडेट कर रहे हैं, उससे वो रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो हमें उनसे प्यार हो गया ऐसा हम समझते। कई बार उस व्यक्ति को देखा भी नहीं हुआ। तो मैं एक किस्सा सुनाना चाहूंगी कि कैसे बढ़ती उम्र के बच्चों को प्यार, आकर्षण और भुलावे में अंतर समझ में नहीं आता है। तो एक 15-16 साल की कन्या थी, कुमारी थी और गुजरात के एक गांव में रहती थी। उसे अपने मोबाइल पर सोशल मीडिया में कनेक्ट होते होते एक व्यक्ति से पहचान हुई जिसका XYZ नाम था, जिसने बताया कि मेरी ये उम्र है, मैं यहाँ रहता हूँ, मैं ऐसे मत, बातचीत में उनका सिलसिला आगे बढ़ता है। तो जब भी कभी वो उससे बात करती वो बिल्कुल फ्री होके उसकी बातें सुनता, उसकी इमोशंस को समझता। कभी भी उसका कोई मूड खराब है या लड़ाई झगड़ा हुआ है किसी से, शेयर करो तो वो ध्यान से सुनता और उसको और भी ज्यादा अच्छी तरह गाइड कर। तो उसने उसको धीरे धीरे अपना सपोर्ट सिस्टम समझना शुरू किया और घर वाले, परिवार, भाई बहन, माता पिता से ज्यादा वो व्यक्ति उसके लिए इम्पोर्टेंट हो गया, जो ऑनलाइन दूर कहाँ बैठा है पता नहीं, ऑनलाइन वो सिंपथी या एम्पथी उसको दिखा रहा है। वो उससे कहा उसने कि मुझे प्यार हो गया। अब माँ बाप को चिंता हो गई कि ये किससे प्यार कर रही है। सो चलो ठीक है, माँ बाप ने कहा मिलाओ उससे, कहाँ है मिलते। तो उसने कहा कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ और मैं आती हूँ तुम्हें मिलने के लिए। तो उस धीरे धीरे बात करना कम कर दिया और फिर उसको एक दिन बुलाया भी। और यही नहीं, वो सामने वाला व्यक्ति इस व्यक्ति को इतना मजबूर कर दिया कि रिचार्ज करना उसका, उसके खर्चे उठाना, इसके लिए भी ये लड़की तैयार होने लगी और वो करने लगी। एक जगह उसने बुलाया मिलने के लिए, वो गई वहां मिलने के लिए, लेकिन वो वहां नहीं आया, बहाना बना दिया और ऐसे ही उसको मैनिपुलेट करता गया। आखिर में वो लड़की की मानसिक अवस्था इतनी खराब हो गई, इतना डिप्रेशन में चली गई, उसने पढ़ाई छोड़ दी और आखिर उसको रिहैब में डालना पड़ा। सो हम अपने इमोशंस के साथ बहते हुए कहाँ तक पहुंच रहे हैं, क्या हम अपने जीवन को कोई किसी तरह का नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये समझ में नहीं आता है। इसीलिए लव, प्यार, हमारे प्रोग्राम का भी नाम है लव यू जिंदगी। जिंदगी से भी प्यार होता है, उस प्यार की भावना को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है।
0: फीलिंग को आपने जैसे कहा आइडेंटिफाई करना बहुत बहुत बहुत जरूरी है, नहीं तो उसके बहुत जो रिपरकशंस होते हैं वो बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकते हैं। श्रीनिधि जी, यहाँ मैं आपकी भी ओपिनियन जानना चाहूंगी। एट सच यंग एज, मतलब इतनी कम उम्र में जब हम सब कुछ सीख ही रहे होते हैं, जिंदगी को जान ही रहे होते हैं, दुनिया हमने पूरी देखी भी नहीं है, उस समय कैसे आइडेंटिफाई करें और क्या फ्रेंड्स की हेल्प लें या फिर खुद से ही जो समझ में आ रहा है समझ ले, रीच आउट करें, क्या लगता है आपको?
2: इसमें दो चीजें हैं आरुषि जी। सबसे पहले तो ये है कि जब हम ऐसे किसी सिचुएशन में होते हैं जब हम अपने इमोशंस को नहीं रीड कर पाते या समझ नहीं पाते, या हम समझते तो हैं मगर उन सिचुएशंस में स्ट्रगल कर रहे हैं, ये होता है, स्वाभाविक है कि हम अपने इमोशंस के साथ स्ट्रगल कर सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि आप छोटे बच्चे हैं तभी आप स्ट्रगल करेंगे, आप युवा होते हुए स्ट्रगल कर सकते हैं, टीनेजर होते हुए स्ट्रगल कर सकते हैं, आप उम्र के बेहतर पड़ाव पे पहुंचकर नौकरी विक्री करने के बाद भी आप स्ट्रगल कर सकते हैं। यहाँ तक भी मैं कहना चाहूंगा कि आप अधेड़ उम्र में मिड लाइफ क्राइसिस के रूप में आप इन इमोशन से स्ट्रगल कर सकते हैं, और कभी कभार बुढ़ापे में भी, इनफैक्ट जब आप लाइफ के किसी ट्रांजिशन से गुजर रहे होते हैं तब भी आप इन चीजों से स्ट्रगल कर सकते हैं। तो पहले तो ये मान लेना चाहिए कि हाँ, इमोशंस को कई बार प्रोसेस करना आसान नहीं होता या हम सक्षम नहीं होते उस घड़ी। इसमें आपकी गलती नहीं है, इस समय पर किसी दूसरे इंसान की गलती नहीं है, बस वो है, ये सच्चाई है, ऐसा होता है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि किसी को किसी चीज का इन्फेक्शन हो जाना शरीर में, वो स्वाभाविक है, मतलब वो हो सकता है। आप लाख अपने आप को स्वस्थ रखने का प्रयास करें मगर फिर भी अगर कोई वायरस कहीं से अटैक करता है या कोई महामारी जैसी चीज है या कोई ऐसी चीज है वो आपको अटैक कर सकती है। और ये चीजें हमारे इमोशंस के साथ भी होता है, जैसे हम फिजिकल हेल्थ में इन्फेक्शंस के लिए प्रोन हो जाते हैं कभी कभार, ऐसे ही हमारे मेंटल हेल्थ में भी ये चीजें हो सकती हैं, भावनात्मक रीति से इसी चीज को सहन कर सकते हैं। तो ये मान लेने से क्या होता है कि हम ये भी समझने लग जाएंगे कि अगला हिस्सा इसका ये है कि जब आप सक्षम नहीं है उस चीज को प्रोसेस करने में आप मदद लेंगे। और सबसे पहले मदद की जब बात की जाती है हम अपने स्वजनों से मदद लेते हैं, और हमारे युवा साथियों के लिए मैं समझता हूँ ये युवाओं की उम्र के साथ की बात है, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे हमउम्र लोग हमें बेहतर समझ सकते हैं और इसी वजह से हम अपने दोस्तों के साथ ज्यादा कम्फर्टेबल होते हैं। और टीनेज में आप देखेंगे कि जैसे आप टीनेजर्स में थोड़े आगे बढ़ते हैं, जब आप 16-17-18 साल के होने लगते हैं, आप ज्यादा समय अपने दोस्तों के साथ बिताना पसंद करते हैं। लोगों का कॉलेज स्कूल जल्दी खत्म हो भी जाता है तो जल्दी घर नहीं आते, वो ज्यादा टाइम दोस्तों के साथ वक्त बिताना पसंद करते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि वो मेरे जैसे ही हैं, उनके भी इमोशंस मेरे जैसे हैं, इसलिए वो मुझे बेहतर समझ पाएंगे। और ये चीज होता है बचपन में, शायद ये चीज ऐसी नहीं होती, युवा काल में खासकर बढ़ते उम्र में ही जिसमें ये चीज जरूर देखने को मिलती है। तो इसलिए दोस्तों से मदद लेने में कोई बुराई नहीं है, मगर ये भी समझने की जरूरत है कि संभव नहीं है कि आपके दोस्त जो आपके हम उम्र हैं, खासकर जब युवा काल के दहलीज पर हैं, लेटर टीनेजर्स में हैं, तो उनके अंदर उसी प्रकार की मैच्योरिटी हो, ये संभव नहीं। और हर कोई आपकी मदद करना चाहेगा, भले उसके पास वो स्किल सेट्स हो या वो भावनात्मक रूप से इतना सक्षम है या नहीं है, मदद करने का भाव आपके सच्चे मित्र हमेशा आपके लिए रखेंगे, आपके लिए अच्छा सोचेंगे, इसलिए कोशिश करेंगे कि वो आपकी मदद कर सके। अगर क्या ये गाइडेंस हमेशा सही होता है या नहीं, इस पर जरूर प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि वो अपनी प्रज्ञा, अपना विजडम, अपने अनुभव के आधार पर बताएंगे, और उनका भी अनुभव कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि वो भी आपके युवाओं साथियों के लिए ये समझने की जरूरत है कि ऐसे समय पर भले ही आप अपने दोस्तों से बातचीत करने में कंफर्टेबल हैं, बिल्कुल करें, उसमें कोई दो राय नहीं, शेयर करना ही चाहिए, मगर सही मार्गदर्शन के लिए, जो मार्गदर्शन आपके दोस्त आपको दे रहे हैं उसे किसी बड़े से वेरीफाई करके तब लागू किया जाना चाहिए। वरना क्या होता है कि अनुभव के अभाव के कारण कभी कभार हम मिसगाइड हो जाते हैं, क्योंकि उद्देश्य गलत नहीं होता दोस्तों का, वो भी आपका भला करना चाहते हैं, मगर भले उद्देश्य के साथ भी अगर हम कोई गलतियां करते हैं तो उसका खामियाजा बुरा ही निकलता है। इसलिए सोच समझ के साथ उन चीजों को करने की आवश्यकता है, और इसलिए ऐसे लोगों से जो इमोशनली मैच्योर हैं, अनुभवी हैं, उन लोगों के पास मदद लेना चाहिए। बहुत बार लोग ये सोचते हैं कि पेरेंट्स के साथ बातचीत करने में किसकी चाहत होती हो या वो क्या मानेंगे क्या कहेंगे, ये सोच लेते हैं कि इनहिबिशन क्रिएट कर लेते हैं। अक्सर बच्चे बुजुर्गों के साथ अपने दादा दादी नाना नानी उनके साथ खुलकर बात करने में विश्वास रखते हैं क्योंकि उनको लगता है कि हाँ ये हमें जज नहीं करेंगे, हम बिल्कुल ओपन रह सकते हैं इनके साथ। तो वो चीजें यहाँ मायने रखती है और मैं समझता हूँ कल्पना जी एग्री करेंगे इस बात को कि जब लोग काउंसलिंग के लिए आते हैं तो वो हमेशा ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको ये विश्वास रहता है कि जिनके साथ हम ये बातचीत कर रहे हैं उनके साथ हम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होकर बातचीत करेंगे और जो कुछ भी हम उनके सामने कहेंगे वो पूर्णतया कॉन्फिडेंशियल रहेगा, वो उन्हें जज नहीं करेंगे, वो उनके ऊपर कोई लेबल नहीं लगाएंगे, उन्हें एक खराब उदाहरण के रूप में कहीं प्रस्तुत नहीं करेंगे, उनकी एक प्राइवेसी और सीक्रेसी मेंटेन रहेगी। एक विश्वास वहां पर एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। मैं समझता हूँ कल्पना जी बेहतर बता पाएंगे इस विषय में।
0: कल्पना जी आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें?
1: जी मैं सहमत हूँ श्री दीदी जी से, उन्होंने बात बिल्कुल सही कही कि हमें जो अगर वैलिडेशन लेना है किसी से गाइडेंस लेना है तो हमारे बड़ों से चर्चा कर लेनी चाहिए। बट थोड़ा सा इससे आगे बढ़कर मैं ये कहना चाहूंगी कि जब हम अपने आप से कनेक्टेड होते हैं तब अपने लाइफ के डिसीजंस लेना हमारे लिए आसान हो जाता है। जैसे अगर हम हमारे क्रिकेट की दुनिया में अभी आजकल जो छाई हुई नई सनसनी है, हमारे वैभव सूर्यवंशी है, इनके बारे में जब हम पढ़ते हैं सुनते हैं तब ये महसूस होता है कि इस छोटे से बच्चे को अपनी लाइफ का डिसीजन लेने का ये जो हिम्मत है कितनी छोटी उम्र में आ गई। उन्होंने छोटी उम्र में उनके पिताजी की मदद से इस स्किल को समझा और उस स्किल को हासिल करने में बचपन से लेकर अब तक, मतलब अभी भी बच्चा ही है, उसके पीछे वो चले गए और इस वजह से उन्होंने, हम इमेजिन कर सकते हैं कि दोस्तों के साथ घूमना फिरना, पार्टीज में जाना, इतनी सारी बातें मिस की होगी उन्होंने, परंतु उन्हें पता था कि उनके लाइफ का डिसीजन उनके फादर ने और उन्होंने मिलके लिया है और वो बहुत सही लिया है, इसलिए उस डिसीजन के साथ वो चलते रहे। तो वैसे ही जब कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड कभी भी होता है, जैसे श्रीमती जी ने कहा कि वो किसी भी उम्र में हो सकता है, बचपन में भी हो सकता है, बड़े होने पर भी हो सकता है, तो अगर हम ऐसी प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा सा 10 मिनट्स के लिए साइलेंस में बैठकर खुद के साथ जुड़ने का अभ्यास करते हैं तो मेरी क्या कैपेसिटीज है, मेरी क्या वैल्यूज है, मेरी क्या इच्छा है, मैं क्या जानना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ, ये चीजें हमें धीरे धीरे समझने लगती हैं और अपने ख्वाब के पीछे हम अपनी एनर्जी लगाना शुरू करते हैं। और हमारे सामने उदाहरण तो है ही, छोटी सी उम्र में अपने ख्वाब के पीछे उन्होंने सही एनर्जी लगाई तो उसका रिजल्ट उनको कितना बेहतर मिल रहा है इससे अच्छी तरह हम नहीं समझ सकते।
0: जी कल्पना जी, हम अंतिम चरण में पहुंच गए आज के एपिसोड के, हम एकदम लास्ट में पहुंच गए हैं, तो मैं मेडिटेशन का तो आपसे रिक्वेस्ट जरूर करूंगी कि हमें कराएं, साथ साथ क्या कोई ऐसे प्रश्न हैं जो हम खुद से डिटैच होके पूछ सकते हैं जो हमें प्यार के इमोशन को सही आइडेंटिफाई करने में मदद करे, जो साइलेंटली बैठ के ऑब्जर्व कर सके खुद के बारे में अगर कुछ?
1: बिल्कुल, सुबह उठने के बाद जब हम अपने दिन की तैयारी, मेंटल और फिजिकल तैयारी करते हैं, मैं अपने श्रोताओं से कहना चाहूंगी कि वो थोड़ा टाइम सुबह उठने के बाद का अगर आप खुद के साथ आप बिताते हैं और ये 5 या 7 मिनट सोचने में बिताते हैं कि आज मुझे फिजिकली और मेंटली अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करना है, कैसे प्रस्तुत करना है, तो हमारा माइंड इतना सुंदर जवाब हमें देता है, वो सोचकर हमें आश्चर्य लगेगा। तो पॉजिटिव प्लान जब हम बनाते हैं तो हम अपने आप से पूछ सकते हैं, आज मैं इमोशनली किस तरह से बैलेंस्ड वे में फिजिकली और मेंटली अपने आप को प्रेजेंट करूंगा या करूंगी, ये सवाल हम पूछ सकते हैं। आज मैं अपनी भावनाओं को सही शब्दों के साथ सही व्यक्ति के सामने व्यक्त करने का प्रयास करूंगा, इस तरह से छोटे छोटे सवालों से, क्या मैंने आज ध्यान से सुना है जो लोग कह रहे हैं, लोगों की बातें सुनते समय अगर हम ध्यान से सुने और उनको समझने की कोशिश करें, उनके भावनाओं को समझने की कोशिश करें, तो वो भी एक अभ्यास होता है कि दूसरे क्या कहना चाहते हैं, शायद उनके शब्दों से व्यक्त नहीं हो रहा, भावनाओं से समझ आ रहा है। सो ये चीजें मैं पहले समझूंगा और फिर बाद में जवाब दूंगा। क्या आज किसी को मेरी बातों से खुशी मिली है? आज मैंने किसी को नाराज करने जैसा कोई काम तो नहीं किया या करूंगा? सो ये छोटे से प्रश्न है जिनके साथ हम आगे बढ़ते हैं, और मैं चाहूंगी कि हमारे युवा शांति से बैठकर ये अभ्यास करें, चाहे वो दो मिनट के लिए ही क्यों ना हो, जिसमें कुछ पॉजिटिव और पावरफुल अफर्मेशंस हो जो हमें इमोशनली मैच्योर बनाने में काम आएंगे। तो आज अभी भी मैं इस कार्यक्रम के अंत में श्रोताओं से अनुरोध करती हूँ कि एक मिनट के लिए वो शांति से बैठ जाएं। सबसे पहले तो गहरी और लंबी सांस लें और अपने को एहसास कराएं कि मैं इस एक दो मिनट के लिए बिल्कुल फुर्सत में हूँ खुद को समझने के लिए। अपने श्वासों पर ध्यान दें, उन्हें अच्छी तरह से महसूस करें। अपना राइट हैंड अपने हृदय पर रखते हुए अपने हृदय की धड़कन को सुनने का प्रयास करें। कितनी नॉर्मल है, कितनी स्टेबल है, कितनी शांत है। कानों से सुनने वाली एकदम छोटी सी आवाज जो बहुत मधुर है, उसे सुनने का प्रयास करें। और अंत में अपने मन में तीन बार दोहराएं, मैं एक शांत प्रेममय समझदार आत्मा हूं। मैं एक शांत प्रेममय समझदार आत्मा हूं। मेरे प्रत्येक शब्द में सम्मान, मधुरता और सकारात्मक ऊर्जा है। धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच कल्पना जी, थैंक यू सो मच श्रीनिधि जी। आज बहुत एक इंटरेस्टिंग चर्चा हुई और हमें समझ में आया कैसे अपने इमोशन को रेट करना है, कैसे उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, क्या क्वेश्चंस हम खुद से पूछ सकते हैं और कैसे हम दोस्तों की और कब बड़ों की मदद ले सकते हैं क्लैरिटी लाने के लिए जीवन में, और इमोशंस को बेहतर समझ के बेहतर एक्शन लेने के लिए ताकि हमारी लाइफ को वो बेहतर बनाए और हमें नुकसान ना करे। तो थैंक यू सो मच आप दोनों का इस जर्नी पे हमें लेके जाने के लिए। मुलाकात होगी लव यू जिंदगी के अगले एपिसोड में। फिलहाल के लिए लेते हैं इजाजत और जिंदगी से खुलकर कहते हैं कि लव यू जिंदगी। रेडियो मधुबन से जुड़े रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

सात तारो भरी ना मैंने तो दिन का दीपक जलाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है,

अंग्रेजों ने नाखून उखाड़े, तोड़ डाले दांत और जबड़े, खूब सताया, खूब तोड़ा, ताकि मरते वक्त ना बोल सके वंदे मातरम। पर वो था एक वीर योद्धा, चटगांव विद्रोह का नायक, सहे जुल्म सारे और जब छोड़ा प्राण तो मुख से निकले सिर्फ दो शब्द, वंदे मातरम। कुछ ऐसी प्रीत थी क्रांतिकारियों की वंदे मातरम गीत से, जिस गीत को गुनगुनाना ब्रिटिश हुकूमत की नजरों में एक संगीन अपराध था, उसे वो स्वाधीनता की लड़ाई का मूल हथियार मानते थे। उसके लिए कितने ही अत्याचार सहर्ष सह लेते थे, लेकिन अपने लबों से इन दो शब्दों को कभी जुदा नहीं होने देते थे। गीत उनकी धड़कनों में बसा था, उसके शब्द उन्हें शक्ति देते थे। असल में वंदे मातरम गीत ने देश की आत्मा में गहराई से बसी उस सोच को जीवित किया था कि धरती हमारी माँ है, जिस पर जुल्म हो रहा है, वो गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई है, उसे आजाद कराना है। इसलिए जब स्वदेशी आंदोलन को एकजुट करने का प्रश्न उठा, तब ये गीत आंदोलन का ना सिर्फ नारा बल्कि आजादी की लड़ाई लड़ रहे क्रांतिकारियों का एक जादुई मंत्र, साहस का प्रतीक भी बन गया।

0: कुछ युवाओं की आंखों में आजादी का ख्वाब अंगारा बनकर दहक रहा था। इस बारूद को चिंगारी दी थी एक स्कूल टीचर ने, जिन्हें दुनिया मास्टर दा कहकर पुकारती थी। मास्टर दा एक बेहतरीन प्लानर, ऑर्गेनाइजर और रणनीतिकार थे। उन्होंने चटगांव में 5 जगहों पर एक साथ हमला करने की योजना बनाई और उसके लिए बनाई क्रांतिकारियों की अलग अलग टीमें।
1: अनंत, लोकेनाथ, प्रीतिलता, इधर आओ। ये चटगांव का नक्शा है। हमारा मकसद सिर्फ हंगामा करना नहीं है, बल्कि हमें अंग्रेजों को यह बताना है हम उनकी सत्ता को उखाड़ फेंक सकते हैं।
2: मास्टर दा, लड़के तैयार हैं, बस आपके आदेश का इंतजार है। सरकारी शस्त्रागार पर कब्जा करना हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए।
3: बिल्कुल, अगर हथियार हमारे हाथ लग गए तो चटगांव में अंग्रेजों के पैर उखड़ जाएंगे।
1: याद रहे, तारीख होगी 18 अप्रैल 1930। हमारा हमला इतना तेज होना चाहिए कि फिरंगी संभल ना पाए। टेलीफोन और टेलीग्राफ की लाइनें काट दी जाएंगी, रेलवे ट्रैक उखाड़ दिए जाएंगे। चटगांव को पूरी तरह दुनिया से काट देना होगा।
4: मास्टर दा, मुझे क्या जिम्मेदारी मिलेगी? मैं सिर्फ घर पर बैठकर प्रार्थना नहीं कर सकती।
1: ऐसा नहीं होगा प्रीतिलता, तुम्हारी वीरता पर मुझे पूरा भरोसा है। वक्त आने पर तुम इस जंग का नेतृत्व करोगी। अभी के लिए संदेशों को सही जगह पहुंचाना तुम्हारा काम है।
0: सूर्य सेन और उनके क्रांतिकारी अंग्रेजों पर हमले की रणनीति को सफल बनाने में जुटे थे। समूह के सबसे युवा क्रांतिकारी लोकेनाथ योजना को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए तत्पर थे। इधर 21वीं सदी के बन्नो भी मास्टर दा के इस युवा क्रांतिकारी को जानने की उत्सुकता लिए संगठन की वरिष्ठ क्रांतिकारी कल्पना दत्त के पास पहुंचती है।
5: जानती हो बन्नो, मास्टर दा के संगठन में लोकेनाथ क्रांतिकारी थे, उन्हें जरा भी डर नहीं लगता था।
6: अच्छा, ऐसा क्या? उन्होंने क्या किया था?
5: 18 अप्रैल 1930 की रात, जब चटगांव की सड़कें इंकलाब जिंदाबाद और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठी थी, तो उस क्रांतिकारी समूह का नेतृत्व कोई और नहीं लोकेनाथ ही कर रहे थे। लोकेनाथ की अगुवाई में ही 10 सदस्यों के एक ग्रुप ने ऑक्सिलरी मिलिट्री आर्मरी पर धावा बोला था। इस हमले में रजत सेन, मनोरंजन सेन, जीवन घोषाल, फणी नंदी, सुबोध चौधरी और 30 अन्य लोग शामिल थे।
7: वंदे मातरम, वंदे मातरम।
8: लोकेनाथ, अंदर आओ, सारे हथियार कब्जे में ले लो, कोई भी ब्रिटिश सिपाही बचना नहीं चाहिए।
3: हमें राइफल मिल गई है रजत दा, लेकिन गोलियां नहीं मिल रही है। गोलियों का भंडार कहीं और छुपाया होगा।
8: चिंता मत करो, जितना बंदूकें हैं उन्हें उठाओ, जो काम के नहीं उन्हें आग लगा दो, यूनियन जैक को नीचे गिराओ और अपना झंडा लहराओ।
0: मास्टर दा की योजना के अनुसार चटगांव में पुलिस और सेना के शस्त्रागार पर छापा मारने के साथ ही मशीन गन व कारतूस अपने कब्जे में ले लिए जाने थे। साथ ही रेलवे लाइन और टेलीग्राफ लाइनों को नुकसान पहुंचाने, यूरोपियन क्लब पर हमला करने, यूरोपियन अधिकारियों को मार डालने या उन्हें बंधक बनाने की योजना थी। गणेश घोष के नेतृत्व में लगभग 6 क्रांतिकारियों के समूह ने सबसे पहले शस्त्रागार पर कब्जा किया। इस टीम में अनंत सिंह शामिल थे। दूसरे समूह का नेतृत्व लोकेनाथ कर रहे थे। 10 सदस्यों के उनके समूह ने सहायक सैन्य शस्त्रागार पर कब्जा किया। वहीं नांगलकोट रेलवे लाइन पर लोकेनाथ, कल्पना और लाल मोहन ने हमला किया, जब चटगांव से एक माल गाड़ी गुजर रही थी। दूसरी ओर लाल मोहन सेन, सुबोध मित्रा, सुकुमार भौमिक और हरेन दत्त चटगांव से 60 मील दूर रेलवे स्टेशन पहुंचे और उन्होंने रेल की पटरी उखाड़ दी। अंबिका दा की टीम ने टेलीग्राफ लाइनें काटी

0: ब्रिटिश छावनी पर प्रीति लता ने हमला किया, जबकि यूरोपियन क्लब पर हमले का नेतृत्व सूर्य सेन ने किया।
1: फिर आगे क्या हुआ कल्पना दीदी? क्या क्रांतिकारी पकड़े गए? उनकी योजना सफल हुई?
2: बन्नो, ये दुर्भाग्य था। खुद मास्टर दा को भी अंदाजा नहीं था कि पुलिस अथवा आर्मी के शस्त्रागार में कोई कारतूस नहीं होगा। वहाँ बहुत कम या लगभग ना के बराबर मशीन गन थी। दरअसल उन्होंने गुड फ्राइडे को ईसाइयों के शोक के दिन के बजाय एक त्योहार समझ लिया था। गुड फ्राइडे होने के कारण यूरोपियन क्लब में कोई भी यूरोपियन नहीं था।
1: कल्पना दीदी, आप कहना चाह रही है कि क्रांतिकारियों के पास पूरी खुफिया जानकारी नहीं थी?
2: हाँ बन्नो, इसलिए मास्टर दा के क्रांतिकारियों की बेहतरीन और सच्ची कोशिश के बावजूद चटगांव शस्त्रागार पर छापा पूरी तरह सफल नहीं हो सका। लेकिन इस बगावत से ब्रिटिश हुकूमत हिल गई। उन्होंने क्रांतिकारियों को पकड़ने के लिए पूरी फौज झोंक दी।
3: बागियों को जिंदा या मुर्दा पकड़ो, विशेषकर उस लीडर सूर्य सेन को। I want him anyhow।
0: चटगांव मिशन की आंशिक सफलता के बाद मास्टर दा को अपने युवा क्रांतिकारियों को चटगांव की जलालाबाद पहाड़ियों पर भेजना पड़ा। हालांकि कुछ ही समय में उस पहाड़ी को भी अंग्रेजों ने घेर लिया, लेकिन क्रांतिकारी हार मानने को तैयार नहीं थे।
4: मास्टर दा, हमारे पास गोला बारूद खत्म हो रहा है, अब क्या करें?
5: नीति लता, घबराओ मत, क्रांतिकारी कभी मरते नहीं है, वे सिर्फ अपना शरीर बदलते हैं। तुम यहाँ से निकलो, तुम्हें अभी देश के लिए और काम करना है।
4: नहीं मास्टर दा, ना, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी।
5: ये मेरा हुक्म है। प्रीति लता, जाओ और यूरोपियन क्लब पर हमले की तैयारी करो। देश को तुम्हारी शहादत की जरूरत सही वक्त पर होगी।
0: जलालाबाद पहाड़ी पर हुए इस संघर्ष में सूर्य सेन को अपने कई साथियों को खोना पड़ा। वो कुछ क्रांतिकारियों के साथ पास के गांवों में भाग गए। अगले 4 वर्षों तक अंग्रेज उन्हें पकड़ नहीं पाए, लेकिन फिर उनके ही एक रिश्तेदार नेत्र सेन ने धोखा दे दिया।
1: मास्टर जी कैसे पकड़े गए दीदी?
2: मास्टर दा जिसके घर में रह रहे थे वो उनके एक रिश्तेदार का था। उसने ही अंग्रेजों को उनके वहां होने की खबर दे दी। इस तरह 1933 में सूर्य सेन को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में नेत्र सेन को मास्टर दा के एक वफादार क्रांतिकारी ने मार डाला।
0: सूर्य सेन को गिरफ्तार कर मिदनापुर जेल ले जाया गया। फिर उन्हें रत्नागिरी ले जाया गया। जेल में उन पर अमानवीय जुल्म ढाए गए। हथौड़े से उनके दांत तोड़ दिए गए, उनके नाखून उखाड़ दिए गए, उनकी आंखें निकाल दी गई।
3: सूर्य सेन, तुम अपने घमंड की सजा भुगत रहे हो। कल सुबह तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। तुम्हारा खेल खत्म।
5: कैप्टन, खेल मेरा खत्म नहीं, तुम्हारा शुरू हुआ है। तुमने मेरे शरीर को जंजीरों में जकड़ा है, मेरी सोच को नहीं। मेरी फांसी चटगांव के हर घर में एक नया सूर्य सेन पैदा करेगी। वंदे मातरम।
6: मैं कितनी भाग्यशाली हूं, देश के इन वीर सपूतों ने मेरी मर्यादा और सम्मान की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। सूर्य सेन जैसे नायकों ने अपनी देह पर जुल्म और यातनाओं के पर्वत सहे, अपनी हर सांस को भारत मां के चरणों में अर्पित कर दिया, पर अपने मुख से उफ तक नहीं निकाली। उनकी टूटी हड्डियां और बहते रक्त से भी केवल एक ही हुंकार गूंजी, वंदे मातरम। मेरे बोल केवल गीत नहीं थे, इन वीरों के सीने में जलती हुई क्रांति की ज्वाला थे, एक ऐसी ज्वाला जिसे ब्रिटिश हुकूमत की आत्मा तक कांप उठती थी। धन्य हूं मैं जो इस महान बलिदान का स्वर बन सकी, जब तक इस मिट्टी में सूर्य सेन जैसे शूर वीरों का रक्त रहेगा तब तक मेरी हर तान पर आजादी का परचम लहराता रहेगा।
0: आजादी की लड़ाई में कुछ नायक ऐसे रहे जिनकी गाथाएं वक्त की छाती पर स्वर्णिम अक्षरों से अंकित हो गईं। सूर्य सेन एक ऐसा ही नाम थे। उन्होंने बंगाल की मिट्टी में क्रांति की जो लौ जगाई, वो बच्चों, नौजवानों और महिलाओं के दिलों में चिंगारी की तरह धधकी। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि चटगांव के नुआपाड़ा के स्कूल टीचर राम निरंजन का ये बेटा ब्रिटिश हुकूमत के लिए एक काल बनेगा। एक शिक्षक के रूप में उनकी आंखों में सिर्फ छात्रों का भविष्य नहीं बल्कि एक स्वतंत्र भारत का सुनहरा सपना तैर रहा था।
7: रजत दा, मास्टर दा तो इतने अच्छे शिक्षक थे, फिर उन्होंने क्रांतिकारी बनने का निर्णय कैसे लिया?
8: लोकीनाथ, सूर्यदा कृष्णनाथ कॉलेज से इंटरमीडिएट की पढ़ाई पढ़ रहे थे, वही एक टीचर ने उनके भीतर राष्ट्रीय भक्ति की चिंगारी सुलगाई। फिर बहरमपुर कॉलेज, अभी के मुर्शिदाबाद विश्वविद्यालय से बीए की पढ़ाई के दौरान उनका परिचय युगांतर दल के क्रांतिकारी विचारों से हुआ। यही से मास्टर दा ने कलम के साथ साथ क्रांति का पाठ सीखना और सिखाना शुरू कर दिया। उससे पहले तक सूर्यदा गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांत से प्रभावित थे, वो उनके अहिंसक असहयोग आंदोलन का हिस्सा भी रहे, लेकिन 1922 में चौड़ा चौड़ी के घटना के कारण जब बापू ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया तो उनका गांधी जी के नीतियों से मोहभंग हो गया। मास्टरदा का मत था कि आजादी क्रांति के तरीके से ही हासिल की जा सकती है। उन्हीं दिनों 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। अंग्रेजों के क्रूरता ने मास्टरदा और भगत सिंह दोनों को भीतर से परेशान कर दिया, तभी उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने के बारे में सोचा।
0: सूर्य सेन पर रूसी क्रांति, लेनिन और कार्ल मार्क्स व एंगेल्स के विचारों के अलावा आयरिश रिपब्लिकन आर्मी के कामों का भी काफी असर रहा। आयरलैंड को आजादी दिलाने के लिए आयरिश रिपब्लिकन आर्मी ने हिंसक तरीके अपनाए थे। मास्टरदा उनसे प्रेरित होकर ही भारत की आजादी के लिए क्रांतिकारी समूह अनुशीलन समिति में शामिल हो गए। बाद में उन्होंने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी शुरू की। फिर उन्होंने देश के बच्चों, नौजवानों और महिलाओं के साथ वो कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी।
1: कल्पना दीदी, मास्टरदा तो काफी दूरदर्शी सोच रखते थे।
2: दरअसल सूर्य सेन अपने समय से आगे की सोच रखते थे। आजादी की लड़ाई में बच्चों, महिलाओं और किशोरों को शामिल करने का उनका फैसला उनकी दूरदर्शी सोच को दिखाता है। जानती हो बन्नो, हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के शुरुआती दौर में महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार नहीं थे। उनकी भूमिका ज्यादातर अप्रत्यक्ष होती थी। वे फरार क्रांतिकारियों को पना देती थी या संदेश और हथियार पहुंचाने का काम करती थी। गांधीवादी आंदोलनों के दौरान महिलाएं पहली बार अपनी बंदिशों से बाहर निकलकर सार्वजनिक जीवन में शामिल हुई, लेकिन वह आंदोलन पूरी तरह से अहिंसक था।
1: कल्पना दीदी, फिर प्रीतिलता और आप कैसे बनी क्रांतिकारी?
2: चटगांव में मास्टरदा यानी सूर्य सेन बंगाल के युवाओं और महिलाओं को आजादी की लड़ाई में अपना योगदान देने के लिए प्रेरित कर रहे थे। हमने भी इस आंदोलन में भागीदार बनने का फैसला लिया, लेकिन यह राह उतनी आसान नहीं थी। उस दौर में तो किसी भी परिवार में लड़की के जन्म तक का स्वागत नहीं होता था। क्रांतिकारी के रूप में कल्पना करना तो बहुत दूर की बात थी। तुम जानती हो बन्नो, प्रीति लता के जन्म पर भी उनके घर वाले खुश नहीं थे। परिवार में कोई खुशी नहीं मनाई गई थी।
1: ओ, इतनी कमतर सोच थी लड़कियों को लेकर।
2: प्रीति लता के जन्म पर एक करीबी रिश्तेदार ने बताया है,
9: मुझे याद है कि कैसे प्रीति लता के परिवार में हर कोई लड़के के जन्म की उम्मीद कर रहा था। उन्हें लगता था कि भविष्य में वह परिवार के लिए कमाएगा और बूढ़े माता पिता की देखभाल करेगा।
1: लेकिन दीदी, प्रीति लता दीदी ने तो अपने वीरतापूर्ण कार्यों से परिवार क्या देश का नाम रोशन किया।
2: हाँ, तुमने प्रीति लता की बहादुरी के किस्से तो सुने ही है। वे निर्भीक और अपने इरादे की पक्की रही है।
0: साल 1932 में जब मास्टर सूर्य सेन ने पहाड़ तली यूरोपियन क्लब पर हमले की योजना बनाई, तो उन्होंने क्लब में विरोध प्रदर्शन करने के लिए 7 सदस्यों वाले एक समूह की कमान प्रीति लता को ही सौंपी थी। चटगांव के ही एक मध्यम वर्गीय कायस्थ परिवार में जन्मी प्रीति लता स्कूली दिनों से ही एक बुद्धिमान एवं होनहार छात्रा थी। साल 1927 में फर्स्ट डिवीजन से मैट्रिक की परीक्षा पास करने के उपरांत उनका दाखिला ढाका के इडेन कॉलेज में हुआ था। 1929 में वहां से इंटरमीडिएट करने के बाद उन्होंने कलकत्ता के बैथून कॉलेज से फिलोसफी में ग्रेजुएशन किया और वापस चटगांव आकर एक स्कूल की हेडमिस्ट्रेस बन गई। लेकिन अंदर कहीं ना कहीं आजादी के संघर्ष में योगदान देने की इच्छा काफी तीव्र थी।
2: मास्टरदार जानते थे कि बच्चों एवं युवाओं में कितनी असीम शक्ति होती है। वे जानते थे कि बच्चों को ऐसे साहसी सपनों पर यकीन दिलाना आसान होता है, जिन्हें बड़े लोग अपने तर्क के आधार पर खारिज कर देते हैं। मास्टर दानी उन्हें नेतृत्व और विजन दिया।
1: दीदी, अब सच कह रही हैं। अपने सपनों को पूरा करने के मामले में बच्चों में कहीं अधिक उत्साह होता है।
0: मास्टर दा ने बच्चों, युवाओं और महिलाओं के सहयोग से चटगांव विद्रोह की नींव रखी। वो चाहते थे कि ये विद्रोह भारत के अलग अलग प्रांतों में अंग्रेजों के खिलाफ होने वाले भविष्य के सभी विद्रोहों के लिए एक मिसाल बने। 12 जनवरी 1934 की काली सुबह को उन्हें फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। लेकिन मरने से पहले सूर्य सेन ने अपने आखिरी पत्र में देशवासियों के नाम जो संदेश छोड़ा, वो वतन पर मर मिटने वालों के जोश को बढ़ाने के लिए पर्याप्त था।
5: मैं क्या छोड़कर जा रहा हूँ, सिर्फ एक चीज, मेरा सुनहरा सपना, आजादी का सपना। मेरे प्यारे साथियों, आगे बढ़ो, कभी पीछे मुड़कर मत देखना। हमारी शहादत बेकार नहीं जाएगी। वंदे मातरम, वंदे मातरम।
0: मास्टर दा बेशक चले गए, लेकिन उनकी जलाई आजादी की मशाल ने पूरे भारत को रोशन कर दिया। चटगांव का वो सूर्य आज भी इतिहास के पन्नों में अमर है। एक गीत एक नारा, राष्ट्रगीत हमारा के आज के एपिसोड में इतना ही। अगली कड़ी में आजादी के परवानों और आंदोलनों से जुड़े कुछ और किस्सों को लेकर आपके समक्ष आएंगे। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मधुबन। वंदे मातरम।

संतान सप्तमी के पावन पर्व पर हर बच्चे के जीवन में खुशियों की बहार हो, हर बच्चे के जीवन में खुशियों की बहार हो, माता पिता का आशीष सदा साथ हो, हर आंगन में प्रेम और संस्कार हो, हर आंगन में प्रेम और संस्कार हो। तो आप सभी को संतान सप्तमी की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ समय सुबह का तब बनता है खास जब आती है उषा अचाना के साथ। आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा घणी सा। आज का दिन हर उस माँ की दुआ के नाम जिसकी दुनिया उसकी संतान से शुरू होकर उसी की मुस्कान पर खत्म होती है, कैसे जरा विचार करेंगे। और जी हाँ, दाल, दाल में मसूर, मसूर की दाल किस तरह फायदा करती है, कौन सी बीमारियां ठीक करती है, जरूर जानेंगे। और खुशनुमा जीवन की ढेर सारी बातें भी करेंगे। तो भला व्यंजन कैसे भूल सकते हैं, अभी गणपति जी के दिन चल रहे हैं तो गणपति जी के क्या चढ़ाया जाता है प्रसाद में, भोग में, वो ही रेसिपी देने वाली हूँ। अब आप थोड़ा सा अनुमान लगाइए कि आज मैं क्या सिखाने वाली हूँ। और आज का टंग ट्विस्टर तो बहुत ही सुंदर रहेगा। तो ये सब कुछ सुनेंगे आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: मैं जानकी हिमलानी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हम शपथ लें कि आज के बाद जब कभी भी हम गाड़ी चलाएंगे तो स्पीड का ख्याल रखेंगे, खुद का भी ख्याल रखेंगे और सामने वाले का भी ख्याल रखते हुए हेलमेट पहन करके ही अपनी गाड़ी को चलाएंगे।
1: रेडियो मधुबन।
2: संतान सप्तमी की पुनः आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आशियाना कार्यक्रम में फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। संतान की कुशलता और उन्नति के लिए इस व्रत का काफी महत्व होता है, उसे हम मुक्त भरण संतान सप्तमी भी कहते हैं। कैसे, तो आइए आज के विचार का विस्तार इस प्रकार करेंगे। देखिए, दुबली दुबड़ी सप्तमी को मुक्त भरण संतान सप्तमी कहा जाता है। दुबली दुबड़ी सप्तमी यानी संतान सप्तमी पर संतान की कुशलता और उन्नति के लिए व्रत किया जाता है। इस व्रत का काफी महत्व है, इसे मुक्त भरण संतान सप्तमी भी कहते हैं। ये व्रत संतान के समस्त दुख परेशानी के निवारण के उद्देश्य से किया जाता है। संतान की कुशलता और उन्नति के लिए इस व्रत का काफी महत्व होता है, इसे मुक्त भरण संतान सप्तमी भी कहते हैं। ये व्रत संतान के समस्त दुख परेशानी मिट जाए, इसके लिए मात पिता दोनों ही व्रत करते हैं। संतान सप्तमी व्रत भाद्र पद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि माने आज सप्तमी है तो मनाया जाता है। ये व्रत मुख्य रूप से विवाहित महिलाओं द्वारा ही किया जाता है और कहा जाता है कि संतान सप्तमी के दिन व्रत रखने से जिन महिलाओं को संतान नहीं है उन्हें भगवान शंकर और माता पार्वती के आशीर्वाद से गणेश जैसे तेजस्वी संतान की प्राप्ति होती है, ऐसी किंवदंति है। तो यहाँ पर मुझे एक दृष्टांत याद आ रहा जो आपको बताना चाहूँगी। एक साहूकार था, उसके साथ बेटे थे। बेटों के विवाह के फेरों के पूरा होने से पहले बेटे मर जाते थे। इस प्रकार 6 बेटे मर गए। डरते डरते 7वें बेटे का विवाह मांडा। सब बहन बेटियों को बुलाया। सबसे बड़ी बुआ पिहर आते समय मार्ग में एक कुम्हार के यहाँ रुकी। उसका मन बुझा हुआ था, कोई खुशी नहीं थी। कुम्हार ढाकनी गड़ रहा था। बुआ ने पूछा, तू क्या कर रहा है? वह बोला कि गांव के साहूकार के बेटे का विवाह है, उसी के लिए ढाकनी गड़ रहा हूँ, पर उसका बेटा मर जाएगा। बुआ ने पूछा कि बेटा नहीं मरे, इसका कोई उपाय नहीं है क्या? कुमार ने बताया कि यदि बींद की कोई बुआ दुबड़ी साते का व्रत करे, ठंडा खाए, कांटा फांसे, बींद के सारे नेग उल्टे करके गालियां देती रहे, फेरे के समय कच्चा दूध और तांत का फंदा लेकर बैठ जाए, आधे फेरे होने के बाद एक सांप बींद को डसने आएगा, तब उसके सामने कच्चा दूध का करवा रख दे, जब सांप दूध पीने लगे तो उसे तांत के फंदे में फंसा ले, जब सर्पिणी उसे छुड़ाने के लिए आए तब बुआ उससे वचन ले कि तू मेरे सब भतीजों को जिंदा कर, उनको बहुए दे, तो ही मैं तेरे पति को सांप को छोड़ूंगी। सारी बात सुनकर बुआ वहां से रवाना होकर पीहर में अपने घर में गालियां देती हुई घुसी। सब उसके इस व्यवहार से अचंभित रह गए, पर कोई कुछ नहीं बोला। आखिर बुआ जो ठहरी, सारे नेग उल्टे करती गई। घर की अन्य औरतें कोई कुछ बोलती तो भी ध्यान नहीं देती। जिद करके बारात भी पिछले दरवाजे से निकलवाई। उसी समय सामने का द्वार टूटकर गिर गया। सब उसकी प्रशंसा करने लगे। अब तो जैसा वह कह रही थी वैसे ही सब मान रहे थे। फिर जिद करके बारात में सम्मिलित भी हो गई। साहूकार फिर भी नाराज ही था। उसने कहा, यह जाएगी तो मैं नहीं जाऊंगा, वैसे भी मैं जाता हूं तो मेरे बेटे मर जाते हैं। वो नहीं गया। बारात को मार्ग में बरगद के जो बरगद का पेड़ आता है, बरगद के पेड़ की छाया में से निकालने लगे तो गालियां देते हुए उसने बारात को धूप में से ही निकालने की जिद की। उसकी जिद के चलते जब बारात को धूप में से निकालने लगे तभी एक बहुत बड़ी डाल टूटकर गिर गई। सब फिर से बुआ जी की प्रशंसा करने लगे। फिर दूल्हे को बुआ की जिद के कारण दुल्हन के घर के पिछले द्वार से अंदर ले गए, तभी आगे का दरवाजा टूटकर गिर गया। फिर वह गालियां देती हुई फेरे में भी बैठ गई। जब सांप आया तो उसने उसे फंदे में फंसा लिया। जब सर्पिणी उसे छुड़ाने आई तो बुआ बोली, है सर्पिणी, मैं तेरे पति को तब छोड़ूंगी जब तू मेरे सारे भतीजे को जीवित कर देगी, उनको बहुए भी दे देगी, तू मुझे वचन दे। सर्पिणी बोली, मैं तुझे वचन देती हूँ, ऐसा ही होगा। बुआ ने सांप को छोड़ दिया। धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। सब बुआ जी से खुश हो गए। जब बारात लौटने लगी तो मार्ग में दुबड़ी साते एक वृद्धा के रूप में मिली। उसने भी दुबड़ी साते की पूजा व्रत करने के लिए कहा। बुआ ने कहा, मैं दुबड़ी सात की पूजा करना चाहती हूँ, व्रत कराऊंगी, पर कैसे कराऊं, समझ में नहीं आ रहा है। वृद्धा मुस्कुराती हुई वहां से चली गई। उसके जाने के बाद पूजा के बारे में सोचती हुई जब बुआ गाड़ी में से उतरी तो देखा कि वहां दुबड़ी सात का पाटिया मंडा हुआ रखा था। पूजन सामग्री भी रखी हुई थी, ताजा दूब उगी हुई थी। पूजा करने की विधि तो उसे पता ही थी। उसने पूरे मनोयोग और श्रद्धा के साथ पूजा की, बायना निकाला, काटा फसाया और कथा कही। बारात गांव में पहुंची। जब सौकार ने सातों बेटों को जीवित देखा तो उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ। सारे बेटे सौकार के पैर पड़ने लगे तो सौकार बोला, बेटा आज यदि तुम पुनः जिंदा हो सके हो तो अपनी बुआ के कारण। ये जीवन तुम्हारी बुआ का दिया हुआ है, इसलिए सब इनके पैर पड़ो। बाद में सौकार ने सारे गांव में ढिंडोरी पिटवा दी कि अपने बच्चों के जीवन की रक्षा के लिए हर कोई दुबड़ी सात का पाटिया मांडेगा, व्रत करेगा, पूजा करेगा, बायना निकालेगा, कांटा फसाएगा और कहानी सुनेगा। तो इस तरह आज के दिन ये जो संतान सप्तमी दिवस है जो मनाया जाता है और माताएं बहनें इस तरह व्रत करती है। तो ये हुआ आज का विचार। और आइए सुनते फिर से एक गीत। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।
3: ओम शांति। नमस्कार, मैं आकाश मानिसार से नेशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन का एक वॉलंटियर मेंबर। आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में देंगे आपको बहुत ही सुंदर घरेलू उपाय। मसूर किस तरह फायदे करती है दाल में, देखिए मसूर भी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, मसूर की दाल। तो मसूर कैसे हमारी हेल्थ के लिए फायदा करता है, कौन सी बीमारियां ठीक करता है, जानेंगे आप। नेत्र ज्योति, ठीक है, देसी घी में मसूर की दाल छोक करके और तल कर खाइएगा, इससे नेत्रों का प्रकाश बढ़ेगा। नेत्र ज्योति बढ़ानी है तो देसी घी में मसूर की दाल को छोकिए, ठीक है, और फिर खाइएगा, इससे आंखों का प्रकाश बढ़ता है। अगर वोमिटिंग की शिकायत है, वात पित्त कफ है, तो किसी कारण से अगर वोमिटिंग होती हो, ऐसी स्थिति में मसूर का आटा, अनार का रस और शहद समान मात्रा में मिलाकर पानी के साथ लीजिएगा। वोमिटिंग होती हो किसी भी वजह से तो मसूर की दाल का आटा, अनार का रस और शहद तीनों ही बराबर मात्रा में लेनी है, फिर इनको मिला करके पानी के साथ लीजिएगा तो वोमिटिंग की शिकायत तुरंत ही बंद हो जाएगी। खूनी बवासीर की शिकायत है तो सुबह ही सुबह भोजन में मसूर की दाल के साथ खट्टी छाछ माने मट्ठा पीजिएगा, इससे खूनी बवासीर ठीक हो जाएगा। खूनी बवासीर की शिकायत है तो सुबह ही सुबह खाली पेट भोजन में, भोजन हम लेट करते हैं लेकिन भाई जब खूनी बवासीर है तो सुबह ही सुबह खाली पेट मसूर की दाल लीजिएगा और इसके साथ खट्टी छाछ पीजिएगा, इससे खूनी बवासीर ठीक हो जाएगा। सौंदर्य और चर्म रोग में भी मसूर बहुत फायदा करता है, कैसे, तो मसूर को पीस करके उसका लेप या उपटन करिएगा, इससे चेहरे का रंग निखरेगा और अनेक चर्म रोग दूर हो जाएंगे। तो मसूर पीस करके उसका लेप या फिर उपटन करिए और चेहरे मतलब लगाइएगा, ठीक है, इससे चेहरे का रंग निखरेगा और अनेक चर्म रोग ठीक हो जाएंगे। फिर लास्ट उपाय है, मसूर के सेवन से बहुमूत्र, कब्ज, गैस ट्रबल, मुख पाक या छाले मतलब मुंह के छाले समझ लीजिए आप, गले की सूजन, वेदना, प्रदर और सूजन, इन सब में राहत मिलती है मेरे प्यारे श्रोता बंधु। मसूर के सेवन से बहुमूत्र, कब्ज, गैस ट्रबल, मुख के छाले, गले की सूजन, वेदना, प्रदर और सूजन, इन सभी में काफी लाभ करता है मसूर। तो इस तरह आप मसूर को ले सकते हैं और इन बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। कैसे लेना है वो आपने जाना है। और आइए अब आज के टंग ट्विस्टर की तरफ बढ़ते हैं। आज का टंग ट्विस्टर है जो आपको अधिक से अधिक 3 बार बोल के सुनाना है और कम से कम 2 बार तो बोलना ही है। गणपति के गुण गिनते गिनते गणपति के गणपति गुण गिन गए, गणपति के गुण गिनते गिनते गणपति के गण फिर गणपति बन गए, यह आज का टंग ट्विस्टर है। जवाब देने के लिए नंबर रेडियो मधुबन का है 94-14-15-14-15। और फिर से एक ब्रेक लेकर के पुनः लौटेंगे तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

अगर कहीं भी आग लगने की देनी हो जानकारी तो तुरंत कॉल कीजिए फायर ब्रिगेड के इमरजेंसी नंबर पर. डायल कीजिए 101 अपने फोन से. सजग रहिए, सुरक्षित रहिए. रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी.

0: संतान की परवरिश किसी साधना से कम नहीं और माता पिता की सेवा किसी आराधना से कम नहीं। संतान सप्तमी की पुनः आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: आवाज आ रही है अभी?
0: हाँ जी आ रही है। सुभाष भाई
1: अभी ऑफ एयर है या ऑन एयर है?
0: अभी ऑन एयर है।
1: फिर भी से बोल दो, फिर मैं कोशिश करूँगा टंग ट्विटर के।
0: संतान की परवरिश किसी साधना से कम नहीं और माता पिता की सेवा किसी आराधना से कम नहीं, क्या कहेंगे आप?
1: तो दीदी बहुत अच्छा विषय है, पर सबसे पहले आपको सभी रेडियो मधुबन परिवार और सभी श्रोते भाई बहनों को आज की दिन के और सुभाष भाई का प्यार भरा नमस्कार, सभी को नमस्कार। और विषय के बारे में थोड़े में बोलता हूँ। देखो माता पिता तो भगवान जैसे श्रेष्ठ, उनके कारण ही ये हमें पृथ्वी और सब कुछ पृथ्वी का पांचों तत्व का सौंदर्य देखने को मिलता है, जीवन जीने को मिलता है। उनका बहुत महान है कर्तव्य, पर लेकिन संतानों ने अगर माँ बाप के कर्तव्य का पालन किया और श्रेष्ठ संस्कार धारण किया, तो माता पिता का नाम रोशन किया, तो बच्चे भी माता पिता को गर्व होगा। तो दोनों ही श्रेष्ठ है, पर माता पिता का बच्चों को बड़े करना ये कर्तव्य है, और उनकी सेवा करना बच्चों का भी कर्तव्य है। तो सभी को नमस्कार और टंग ट्विस्टर कोशिश करता हूँ गणपति के गुण गिनते गिनते, गणपति के गण फिर गणपति बन गए, गणपति के गुण गिनते गिनते, गणपति के गण फिर गणपति बन गए। तो कुछ गलती हो तो माफ कर देना
0: जी, गलती आपने दोनों लाइन सेम बोली है, फिर भी चलिए कोशिश की है, पर आपको कम से कम दो बार और अधिक से अधिक तीन बार बोल के सुनाना है। दोनों ही लाइन आपने सेम बोली है, आप ध्यान से सुनिएगा, मैं सुना रही हूँ। गणपति के गुण गिनते गिनते, गणपति के गणपति गुण गिन गए, गणपति के गुण गिनते गिनते, गणपति के गण फिर गणपति बन गए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
1: नमस्कार, ओम शांति।
0: जी ओम शांति, बहुत अच्छी कोशिश की, आभार आपका। तो ये थे सुभाष भाई महाराष्ट्र से, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में आज का विषय आपके समक्ष रख चुकी हूँ, संतान की परवरिश किसी साधना से कम नहीं और माता पिता की सेवा किसी आराधना से कम नहीं, क्या कहेंगे आप? हेलो।
2: हाँ जी नमस्ते।
0: हाँ जी नमस्ते। नमस्ते सुरेश भाई, ओम शांति, गुड मॉर्निंग।
2: बस अच्छे हैं, बैठे हैं, काम कर रहे हैं। आज गुरुवार शुक्रवार है, तो शुक्रवार तो हमारे लिए खास होता है जैसे शनिवार होता है।
0: अच्छा,
2: टंग ट्विस्टर। हाँ, टंग ट्विस्टर है दीदी, ये हमको भी बहुत अच्छा एक बोलने का तरीका सिखाता है, क्योंकि ऐसे शब्द जो बोलना कठिन है, फिर भी हम कोशिश तो हरदम करते रहते हैं कि जरूर बोलना ही चाहिए।
0: जी जी जी।
2: तो और दूसरा की बारिश के लिए, हमारी सुबह 4 बजे से शुरू हुई थी, अभी बस थोड़ी देर पहले बंद हुई, बहुत बारिश आई, बहुत बारिश
0: जी यहाँ पर भी थी।
2: हाँ यहाँ तो आपको भी, वहाँ राजस्थान में भी हमने सुना है कि बहुत बारिश है
0: जी।
2: तो चलो मैं आपको पहले टंग ट्विस्टर सुना दूँ कि बहुत अच्छा, जो गणपति जी का त्योहार भी चल रहा है, इस पर आपने गणपति का जो टंग ट्विस्टर सुनाने की
0: थैंक यू।
2: चलो हम सुना देंगे दीदी की
0: जी।
2: गणपति जी के गुण गिनते गिनते, गणपति के गणपति गुण गिन गए, गणपति के गुण गिनते गिनते गणपति गण फिर गणपति बन गए, गणपति के गुण गिनते गिनते गणपति के गणपति गुण गिन गए, गणपति के गुण गिनते गिनते गणपति गण फिर गणपति बन गए, गणपति के गुण गिनते गिनते गणपति के गणपति गुण गिन गए, गणपति के गुण गिनते गिनते गणपति गुण फिर गणपति बन गए।
0: बहुत सुंदर।
2: और विषय आज क्या है दीदी?
0: आज संतान सप्तमी दिवस है, तो संतान की परवरिश किसी साधना से कम नहीं और माता पिता की सेवा किसी आराधना से कम नहीं, क्या कहेंगे आप?
2: बिल्कुल सही बात है दीदी। आप देखो, बच्चों के लिए माता पिता इतनी कोशिश करते हैं, इतना कष्ट उठाते हैं कि जो इससे बनता है वही सभी प्रयास माता पिता करते हैं, बच्चों के लिए बड़ा करते हैं, उसको पैसे की जरूरत है पैसे ला के देते हैं, नौकरी में लगाते हैं और कितने सारे कष्ट उठाते हैं, वो उसको बनाते गिनाते और कई सारे मेहनत करके भी बच्चों को बढ़ाते हैं क्योंकि मेरा बच्चा आगे जाए और एक अच्छा जॉब करे, अच्छा उसको कोई जॉब मिले, अच्छा साहब बने, ऐसी सबको माता पिता को देती है, खुश रहती है। लेकिन बाद में वही बच्चा यदि हम हर अस्कर देखते हैं, जब कोई बच्चा बड़ा हो जाता है तो माता पिता को पहचाने के ऊपर इनकार कर देते हैं। कई कई बार ऐसा होता है वृद्धाश्रम में भेज देते हैं और माता पिता की सेवा नहीं करते दीदी, लेकिन हमको ये समझना कि इतनी कष्ट उठाए कि बच्चों को हमने बड़ा किया, तो बच्चों को समझना चाहिए कि हमारे माता पिता ने कितनी कष्ट किया हमको बढ़ाया लिखाया, तो आज इससे माता पिता की सेवा करने का मौका मिलता है तो जरूर करना ही चाहिए। क्योंकि मैंने तो दीदी मेरी बात करूँ तो मैंने मेरे माता पिता की बहुत सेवा की, मुझे कोई दीदी ऐसा नहीं है कि मैंने सब कुछ मेरे माता जी को मैंने किया है, इतना जितना बना इतना मैंने सेवा की है, इसीलिए देखो दीदी और माता पिता को भी

0: रिटायर में उसकी सेवा के लिए लास्ट तक कुछ थी, ऐसा न लगे भी मेरा बेटा ऐसा निकला
1: जी।
0: नमस्ते,
1: बहुत बहुत आभार सुरेश भाई। तो ये थे सुरेश भाई जोटाना से, बहुत ही सुंदर बात आपने कही है। अब आप भी जुड़ सकते हैं और अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं। हेलो,
2: हेलो दीदी, नमस्कार।
1: हाँ जी नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
2: बुरीलाल जी।
1: अच्छा बुरीलाल जी, कैसे हो, स्वागत आपका। जी हाँ, अब पहचानने में आई, जब आप खिलखिला के हंसते अच्छा, हैं तो अच्छा, पता अच्छा, चल
2: जाता है। बातचीत हो रही है
1: जी,
2: 4 बजे से बातचीत चालू है
1: जी।
2: और मौसम तो ऐसा ही चलता है, बरसात के अंदर बरसात, ठंड के मौसम में ठंड चलती है, गर्मी के मौसम में गर्मी चलती है। ये सब कुदरत का काम है, कुदरत करता रहता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: अपना कर्तव्य अपने को निभाना है।
1: बिल्कुल,
2: इसलिए माँ बाप का फर्ज था संतान को पैदा कर दी, और माँ बेटा संतान के फर्ज रहता है माँ बाप की सेवा करना
1: जी।
2: माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे तो उनका फर्ज कैसे निभाएंगे
1: जी,
2: और माँ बाप अपने संतान की सेवा नहीं करेंगे तो संतान कैसे उत्पन्न होगी और उनका संचालन कैसे चलाएंगे। संसार का नियम है ये तो
1: जी,
2: ये नहीं चलेगा कैसे चलेगा। इसलिए अपना परवरिश तो करते ही रहना है, दोनों का फर्ज एक दूसरे को साथ में निभाना है
1: जी,
2: जिससे ये परिपाटी चलती रहती है। और माँ बाप तो सबसे बड़े है ही है दुनिया के अंदर, जमीन है आसमान है सारा कुछ, पृथ्वी के अंदर तो बोलते है माँ बाप के अलावा दूसरी चीज है क्या
1: जी।
2: सबसे बड़ी चीज माँ बाप है, और माँ बाप का फर्ज माँ संतान को उत्पन्न करना और संतान का परवरिश करना चाहिए, माँ बाप का फर्ज है
1: जी,
2: उनका तो वही करना ही क्या कर
1: जी।
2: ये मेरे कहने का मतलब है।
1: अच्छा, और आज का टंग ट्विस्टर बोल के सुनाएंगे?
2: मुंह में दाद तो भी मैं कोशिश करता हूँ।
1: अच्छा, गणपति के गुण गिनते गिनते गणपति के गणपति गुण बिन गिन गए, ठीक है। गणपति के गुण गिनते गिनते गणपति के गण फिर गणपति बन गए।
2: गणपति के गुण गिनते गिनते गणपति बन गए,
1: गणपति के गणपति गुण गिन गए, गणपति के गुण गिनते गिनते गणपति के गण फिर गणपति बन गए।
2: गणपति के गुण के गुण गिनते गिनते गणपति बन गए, गणपति के गुण गिनते गिनते गणपति बन गए, गणपति के गुण गिनते गिनते गणपति के गुण गणपति बन गए। पूरा भी नहीं आता है मगर ठीक है
1: जी जी जी, चलिए अच्छी कोशिश की इसके लिए।
2: करके बात तो कर रहा हूँ मैं।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और कोशिश कर रहे, ये बहुत बड़ी बात है।
2: कभी हार नहीं होती है मगर क्या करें, जैसे जैसे करके समय तो पास करना, समय मिल गया तो आपसे बात कर रहा हूँ मैं।
1: जी जी, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। फिर भी आपके लिए तालियां। कहते ना कि कोशिश करना भी बहुत बड़ी बात होती है। चलिए, ये थे भूरीलाल जी मानपुर से, और आइए अब यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद पुनः लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

नमस्कार मैं हूं सुरेश कुमार जांगड़ा हरियाणा पुलिस सेवा सुरक्षा सहयोग हरियाणा पुलिस व होमगार्ड आपकी सेवा में हर समय तत्पर है आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुनते रहो मुस्कुराते रहो

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में खुशनुमा जीवन की बातें चल रही है और आज का टंग ट्विस्टर भी बहुत ही अच्छा है, तो आप जुड़ सकते हैं, टंग ट्विस्टर भी बोल के सुना सकते हैं। विषय बहुत ही सुंदर है, इसमें आप अपने बात को रख सकते हैं। आज का विषय है संतान की परवरिश किसी साधना से कम नहीं और माता पिता की सेवा किसी आराधना से कम नहीं। हेलो, हमारे श्रोता बंधु जुड़ चुके हैं। हेलो
1: हेलो उषा बहन जी, कंचन भाई बोलता हूँ।
0: हाँ जी कंचन भाई, नमस्ते, कैसे हैं आप?
1: बस बहन जी, गणपति जी का उत्सव चल रहा है हमारे यहाँ, मेरे दुकान के सामने अभी आरती की तैयारी हो रही है, लाइट चली गई थी। देखो ना, मैं खेत में जाता था तो बिल्कुल निराश था और बार बार रेडियो पे भी बातें करता था कि बारिश नहीं आई, क्या करें
0: जी।
1: तो आपने बोला था बारिश आ जाएगी, विश्वास रखिए।
0: तो देखो आ रही है बारिश,
1: तो 12 बजे से बारिश शुरू हुई, तो अभी तो ठीक है, लेकिन 8 बजे तक लगातार बारिश आई
0: है। अच्छा, चलो बारिश की जरूरत तो, भी है।
1: हाँ भी जरूरत है, तालाबों में नदियों में पानी हो।
0: जी जी जी,
1: भगवान की प्रार्थना करते हैं।
0: बिल्कुल,
1: और सिस्टम तो मैंने लिख लिया है, फिर बाद में थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा तो बाद में सुनाऊंगा, लेकिन विषय क्या है?
0: विषय है संतान की परवरिश किसी साधना से कम नहीं और माता पिता की सेवा किसी आराधना से कम नहीं, क्या कहेंगे?
1: हाँ, संतानों की परवरिश साधना से कम नहीं
0: जी, और माता पिता की सेवा किसी आराधना से कम नहीं।
1: हाँ, ये तो बिल्कुल बात है भाई, क्या है कि माता पिता की संतान, माता पिता है ना संतानों की, जब संतान छोटे होते हैं, पैदा होते हैं, सब नहीं करते, ऐसा नहीं है कि हमारे, हम जब बूढ़े हो जाएंगे तब हमारे ऐसा हमारे काम आएंगे, लेकिन हमारी फर्ज में आता है, माता पिता के फर्ज में जो आया था वो नहीं ये कर सकते थे, कितना सीने से कोरे किया, कितना चलना सिखाया, कितना ये किया है। तो जब हमारी बारी आए तब माता पिता की सेवा करनी ही चाहिए। कई लड़के ऐसे हैं, कई युवा ऐसे हैं कि कई वृद्धाश्रम में माता जी को भेज देते हैं एक बीबी के कहने पर कि भाई ये तो ऐसा कर रहे हैं, खांसते हैं, रात भर सोने नहीं देते, ऐसा कर, तो ये नहीं करना चाहिए। दीदी को भी बोलना चाहिए, पत्नी को भी बोलना चाहिए कि भाई हमारा माता पिता है, हमारे लिए उन्होंने क्या नहीं किया
0: जी,
1: तो खुल के बोलना चाहिए बहन जी, नहीं कि भाई ऐसा हो जाएगा दीजिए तो पत्नी चली जाएगी, ऐसा कहा नहीं मानूंगा तो ऐसा हो जाएगा, ये दिमाग से निकाल देना
0: जी।
1: हाँ, श्रवण कुमार को देखिए, श्रवण की तो भाई हमें ऐसा नहीं करना है, लेकिन समझाना है कि अपने माता पिता को कोई ऐसा करे तो ऐसा थोड़ी समझ देनी, ये सब समझ नहीं है, कई को समझ है। देखो हम कई सालों से हम माता पिता के कई बोलते हैं कि हम माता पिता हमारे पास, लेकिन हमने घर बनाया, संडास बाथरूम सभी की व्यवस्था की, तो हमने ये माता पिता को मैंने बोला कि इधर आ जाओ, तो ना बोले कि हमारा तो जो घर है जो नहीं पुराने पुराना घर है वही सब, तो हमने तुरंत इस घर में संडास बाथरूम की आंगन में व्यवस्था कर दी और हम ये घर बंद रखा और उसके पास हम रहे
0: जी।
1: तो माता पिता के पास नहीं रहता, माता पिता को हमारे पास नहीं रखना, इसकी पुरानी यादें है, पुराना घर है, ये उसके महल में कैसे आए, तो ये भूलना नहीं है, शॉर्ट
0: कट
1: में जी के माध्यम से। और बात तो दूसरे दोस्तों को भी सभी दोस्तों को आप
0: जी। चलिए बहुत बहुत आभार। तो ये थे कंचन भाई मंडाली से, आपने भी अपनी बात को अच्छी तरह रखी है, अब आप भी जुड़ सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। आज संतान सप्तमी दिवस है और विषय भी आज का बहुत ही सुंदर है कि संतान की परवरिश किसी साधना से कम नहीं और माता पिता की सेवा किसी आराधना से कम नहीं। आज का टंग ट्विस्टर भी बहुत ही सुंदर है, गणपति के गुण गिनते गिनते गणपति के गणपति गुण गिन गए, गणपति के गुण गिनते गिनते गणपति के गण फिर क्या बन गए, गणपति बन गए। हेलो,
2: हाँ नमस्कार दीदी, पानीपुर से फिरोज भाई बोल रहा हूँ।
0: हाँ जी नमस्ते फिरोज भाई, कैसे हैं आप?
2: बस एकदम अच्छे हैं
0: जी।
2: और गणपति के गुण गिनते गिनते गणपति के गण गिनते गिनते फिर गणपति बन गए, गणपति के गुण गिनते गिनते गणपति के गण गिनते गिनते फिर गणपति बन गए
0: जी। तीन बार बोलना है, दो बार और बोलिए।
2: गणपति के गुण गिनते गिनते गणपति के गण गिनते गिनते फिर गणपति बन गए, गणपति के गुण गिनते गिनते गणपति के गण गिनते गिनते फिर गणपति बन गए, गणपति के गुण गिनते गिनते गणपति के गण गिनते गिनते फिर गणपति बन गए।
0: काफी फिर भी चलिए कोशिश अच्छी की है, शब्दों का तो बहुत ही ऊपर नीचे हुआ है। लाइन पूरी उड़ा दी। हाँ जी
2: हेलो।
0: हाँ जी
2: तो के दूसरा के देखो के अपने चारों धाम की यात्रा मक्का मदीना हज पढ़ने को जाओ उससे भी बेहतर अपने माँ बाप की सेवा करने में है, और माँ बाप की सेवा करने से इनके इनके इनके पैरों के नीचे जन्नत है, इनके पैरों के नीचे स्वर्ग है। जी
0: जी
2: हेलो।
0: हाँ जी सुन रही
2: हूँ। जिसने भी माँ बाप को सर छोड़ा है उनका भी वही हाल होता है कि के पीपल पान खरंता हस्ती कुपड़ियो मुझ विच विच से धीरे बापुड़ियो
0: जी।
2: तो एक गीत बोलता हूँ।

0: बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज भाई, बहुत सुंदर है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे फिरोज भाई पालनपुर से, बहुत ही सुंदर आपने गीत भी सुनाया है। और आज का टंग ट्विस्टर अलका जी काबरा कपासन से सुनाना चाहते हैं, उनके द्वारा सुनेंगे।
1: गणपति के गुण गिनते गिनते गणपति के गणपति गुण गिन गए, गणपति के गुण गिनते गिनते गणपति के गण फिर गणपति बन गए, गणपति के गुण गिनते गिनते गणपति के गणपति गुण गिन गए, गणपति के गुण गिनते गिनते गणपति के गण फिर गणपति बन गए, गणपति के गुण गिनते गिनते गणपति के गणपति गुण गिन गए, गणपति के गुण गिनते गिनते गणपति के गण फिर गणपति बन गए।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर। अलका जी के लिए भी ढेर सारी तालियां। और अब आप भी जुड़ सकते हैं, विषय में भी आप अपनी बात रख सकते हैं। नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और आज के विषय में भी आप अपनी बात रख सकते हैं। संतान की परवरिश किसी साधना से कम नहीं और माता पिता की सेवा किसी आराधना से कम नहीं। बहुत सुंदर विषय है, क्या सोच रहे हैं आप लोग? इतना सुंदर विषय है कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ना चाहिए आप सभी को। चलिए खैर, तो संतान की परवरिश किसी साधना से कम नहीं, बिल्कुल सही है। बच्चे को पालना, जन्म दे करके बड़ा करना कोई मासी का घर नहीं है। कहना बहुत सरल लगता है लेकिन बच्चे के पालना करना बहुत, उसमें पूरा ही वो कहते हैं ना कि अपना जीवन लग जाता है। बच्चा बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद भी बच्चे को परवरिश देनी ही पड़ती है। सही रास्ते पर चल रहा है नहीं चल रहा है उसका मार्गदर्शन करना पड़ता है। बाकी बच्चा जन्म लेता है तब से लेकर देखो, सबसे ज्यादा त्याग कौन करते आप सभी जानते हैं, माँ करती है ना। हला गिला में सूती माता, सुखा में थने सुलायो रे, सारा घर को काम बिगाड़ियो, थने कदी न रुलायो रे, लूण मरच सू रोटिया खादी, पायो दूध मलाई को, माँ बाप की सेवा कर ले, मत बन दासिल गाय को। तो मतलब कितना त्याग करना पड़ता है, समय पर बच्चे को निलाना धुलाना खिलाना पिलाना सुलाना, हर बात का अटेंशन देना पड़ता है। कहीं बच्चे ये तो नहीं कर रहा है, कहीं मिट्टी तो नहीं खा रहा है, कहीं वो तो नहीं कर रहा है, चौकीदारी करनी पड़ती है कि खेल रहा है बच्चा तो कहीं इधर उधर गिर न जाए, कहीं ठोकर न लग जाए। एक माँ का तो कलेजा कैसा होता है आप सभी जानते हैं ना। तो ये एक बहुत बड़ी साधना है, खुद के नींद का त्याग करके, खुद के सुख सुविधाओं का त्याग करके पूरा अटेंशन अपने बच्चे के प्रति रहता है। तो ये एक साधना ही है। और जब बच्चे बड़े होते हैं, समझदार होते हैं, उनकी शादी करवा दी जाती है, माता पिता धीरे धीरे वृद्ध होने लगते हैं, तो वो ही वापिस रिटर्न शुरू हो जाता है। बच्चों को माता पिता का ख्याल रखना पड़ता है। कहते हैं ना बच्चे और बुजुर्ग एक जैसे होते हैं, बच्चों को भी प्यार और विश्वास चाहिए और बुजुर्गों को भी प्यार और विश्वास चाहिए। बुजुर्गों को यह नहीं कि आप इतनी महंगी साड़ी या इतने महंगे कपड़े लेके आ जाओ, ये फैसिलिटी दे दो वो फैसिलिटी दे दो, नहीं। बुजुर्गों को क्या चाहिए? आपका प्यार, आपका विश्वास, आपका साथ। थोड़ा समय उनको भी दीजिए भाई। माता पिता ने पूरा जीवन बच्चों को दिया है और बुढ़ापे में क्या करते हैं बच्चे? समय नहीं है हमारे पास, किट्टी में जाएंगे, उधर उधर जाएंगे, पहले पार्टियों में जाएंगे, घूमने जाएंगे, लेकिन माता पिता के साथ बैठने का टाइम नहीं होता है। तब सबसे ज़्यादा दुख माता पिता को इसी बात का होता है कि बच्चे कम से कम बैठ कर इतना तो कहे कि कैसे हो बाबू जी, कैसी हो मम्मा, खाना खाया और सब ठीक चल रहा। अरे इतना सा पूछ लो तो माता पिता का तो दिल वैसे ही गदगद हो जाता है कि बहुत हो गया, हमारे बच्चे ने हमको पूछ लिया। ये सबसे बड़ी खुशी है, भले वो उन्होंने खाया नहीं खाया, भले सुख सुविधा है नहीं है, लेकिन उनको क्या लगता है कि चलो हमारे बच्चे ने पूछा हमें से। तो ये एक आराधना है कि जब आपको जरूरत पड़ी तो माता पिता ने पूरा समय दिया आपको, तो अब माता पिता को जरूरत है तो आप भी थोड़ा सा बोलिए। समय की व्यस्तता है सभी समझते हैं, माता पिता भी समझते हैं, वो भी चाहते हैं कि बच्चे बहुत तरक्की करें, बहुत आगे जाए, लेकिन उसी में से कुछ पल आप निकाल करके अपने माता पिता को दीजिएगा। तो दिल से आशीर्वाद निकलेगा, अंदर से दुआएं निकलेगी कि हमारा बच्चा हमारी केयर करता है। खाली पूछ के चले गए ना, किया तो कुछ नहीं, लेकिन कितना दिल में ठंडक पहुंच गई कि वाह चलो हमारा बच्चा हमसे बातचीत करता है, हमारे पास चलो 5 मिनट बैठता है, ये हमारे लिए बहुत है। इसलिए पूरे दिन आप कुछ भी करिए, काम करिए, काज करिए, टाइम मिले ना मिले, रात को जब घर में आते हैं तो एक बार अपने माता पिता के पास जरूर बैठिएगा, उनसे जरूर पूछिएगा कि कैसे हो बाबूजी, कोई तकलीफ तो नहीं ना, कोई दवाइयाँ चल रही हो तो पूछिए कि भाई आपके दवा है, ख़त्म तो नहीं हुई, ख़त्म हुई हो तो आप बोल देना, मैं ले आऊँगा। कितनी खुशी मिलती है। और खाना नहीं खाया तो प्यार से थोड़ा डांट भी लीजिए, समय पर खाना खाइए, दूध पिया कि नहीं पिया, दूध पिया करिए आप, बुढ़ापे में दूध की बहुत ज़रूरत रहती है। ऐसे आप थोड़े से अधिकार से अपने माता पिता के साथ इस तरह प्यार से पेश आएंगे तो माता पिता को अच्छा लगेगा कि देखो हमारे बच्चा कितनी केयर करता है। अब इसमें आपका गया क्या है, कुछ गया नहीं ना, क्योंकि माता पिता की परवरिश मतलब उनका ख्याल तो आपको रखना ही है। लेकिन जब आप बैठते हैं, बोलते हैं तो दिल से आशीर्वाद उनका निकलता है। तो कहते हैं कि किसके भाग्य की रोटी किसको मिलती, कुछ नहीं कह सकते। मैं कितनी भी कमाती हूँ लेकिन ज़रूरी थोड़े ना है कि मेरे भाग्य की मुझे मिल रही है। घर में पहले देखे संयुक्त परिवार थे, तब कोई एक भाई, जैसे चार चार बेटे होते थे, एक बेटा थोड़ा सा भोला निकल जाता था, वो कामकाज नहीं कर पाता था, तो फिर भी पूरा परिवार उसको निभाता था। क्या कहते थे, अरे भाई किसके भाग्य की रोटी मिल रही क्या पता। इसलिए माता पिता के साथ भी आप अच्छी तरह मतलब रहिए, उनको वृद्धाश्रम भेजने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि आज हम कर रहे कल हमारे साथ भी हो सकता है। और समय निकाल करके माता पिता के साथ बैठिए, उनसे पूछिए, उनका हाल पूछिए, यही आराधना है। इसलिए अभी फिरोज भाई ने कहा ना कि भाई मक्का मदीना जाओ या नहीं जाओ, माता पिता के चरणों में चारों धाम है। तो बिल्कुल चारों ही धाम माता पिता के चरणों में ही है। आप नहीं जाओगे एक समय कहीं देव स्थान पर तो भी चलेगा, वो ईश्वर को भी पता है कि वो अपने माता पिता के सेवा में व्यस्त है, कोई बात नहीं। और उल्टा ईश्वर को भी खुशी होती है कि चलो अपने माता पिता की केयर कर रहा है। ठीक है, तो बस इस विषय को यही समाप्त करते हैं और आइए आज के टंग ट्विस्टर की तरफ बढ़ते हैं। आज का टंग ट्विस्टर है, बहुत ही सुंदर है, जिसको मैं दोहरा रही हूँ। गणपति के गुण गिनते गिनते गणपति के गणपति गुण गिन गए। ध्यान दीजिएगा, लाइनों में मिस्टेक हो रही है तो आप सुनिएगा अच्छी तरह, फिर से स्टार्ट कर रही हूँ। गणपति के गुण गिनते गिनते गणपति के गणपति गुण गिन गए। गणपति के गुण गिनते गिनते गणपति के गण फिर गणपति बन गए। ठीक है, क्योंकि टंग ट्विस्टर में एक शब्द भी आगे पीछे हो जाता है तो वो फिर टंग ट्विस्टर का मजा ही किरकिरा हो जाता है। टंग ट्विस्टर का मतलब ही है कि आप थोड़ा सा फास्ट बोले और थोड़ा सा नीट एंड क्लीन बोले, बाकी कोई बात नहीं। बहुत जने अटक जाते हैं, अटक रहे हैं, फिर भी कोशिश करते रहिएगा, हम तो यही कहेंगे। ठीक है, और आइए फिर से एक ब्रेक लेकर के लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: बहू बहू जल्दी तैयार हो जा, हमें डॉक्टर के पास जाना है।
1: जी आई माँ जी।
0: अरे जल्दी कर, इतनी देर से अभी अभी लगा रखा है।
1: जी माँ जी आ गई, चलिए।
0: नमस्ते डॉक्टरनी जी।
2: नमस्ते नमस्ते, बैठिए। जच्चा बच्चा दोनों ठीक है?
0: डॉक्टरनी साहिबा, हमें अपनी बहू का वो क्या कहते हैं जो टीवी पर देखकर पता चल जाता है कि लड़का है या लड़की, अपनी बहू का पता करना है।
2: सोनोग्राफी? मगर क्यों?
0: लड़की हमको नहीं चाहिए ना, इसलिए। अगर पता चल जाएगा तो तुरंत निपटा देंगे।
2: मगर ऐसा करना तो गलत है। और बहू क्या तुम भी यही चाहती हो?
1: जी वो न, न,
0: अरे तू चुप रह बहू, तू क्या जाने।
2: देखिए भ्रूण हत्या एक कानूनन जुर्म है, इससे आपको उम्र कैद भी हो सकती है। और आजकल तो लड़कियां लड़कों से आगे बढ़कर काम कर रही हैं, जैसे सुनीता विलियम, कल्पना चावला, इंदिरा गांधी और मैं खुद एक सफल डॉक्टर हूँ।
3: आजकल हमारे समाज में भ्रूण हत्या तेजी से बढ़ रही है, उसे हमें रोकना होगा। यह कानूनी अपराध है, इसके लिए आप सभी को उम्र कैद भी हो सकती है।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में समय हो चला है आप सभी से आप सभी को बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी सिखाने का। तो जैसा कि आपको बताया था कि अभी गणपति के दिन चल रहे हैं, तो गणपति जी के भोग में क्या चढ़ता है वो ही रेसिपी आपको सिखाऊंगी। लेकिन आपने तो ऑप्शन ही नहीं दिया, चले हम अपनी पसंद की सिखा देते हैं। हेलो,
1: हाँ नमस्ते, ओम शांति जी।
0: हाँ जी नमस्ते सगुना बहन, ओम शांति। हाँ जी कैसे हो?
1: बहुत अच्छे हैं अभी तो
0: जी। तो आज का टंग ट्विस्टर सुनाएंगे?
1: विषय तो समाप्त हो गया।
0: हाँ जी विषय तो समाप्त हो गया।
1: यार अभी हाल में बैठी हूँ, आराम से अब मैं फोन करूँ तो विषय समाप्त हो।
0: जी तो
1: टंग ट्विस्टर सुनाने की कोशिश करती हूँ।
0: हाँ जी करिए।
1: गणपति के गुण गिनते गिनते गणपति के गणपति गुण गिन गए। गणपति के गुण गिनते गिनते गणपति के गण फिर गणपति बन गए। गणपति के गुण गिनते गिनते गणपति के गणपति गुण गिन गए। गणपति के गुण गिनते गिनते गणपति के गण फिर गणपति बन गए।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत बहुत आभार आपका। बहुत ही अच्छा सुनाया आपने सगुना बहन।
1: हाँ दीदी अब क्या है कि लिख के सुनाना पड़ता है, ऐसे तो याद नहीं रहता है।
0: जी जी जी
1: तो लिख के भी सुना देती।
0: चलिए अच्छी बात है, थैंक यू। हाँ जी तो ये थे सगुना बहन झोटाना से, और अब आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ पेड़ा। गणपति जी के पेड़े का भी प्रसाद चढ़ता है, ठीक है? तो पेड़े के लिए सामग्री आप ले लीजिए, मावा लेना है, और फिर आप लीजिएगा शक्कर, और बस चारोली लेनी है आपको, ठीक है? तो ये हो गई सामग्री, जिसको मैं फिर से दोहरा रही हूँ। मावा, थोड़ा सा घी भी ले लीजिएगा, और आपको शक्कर लेनी है, पीसी हुई भी लेनी है शक्कर, दो पीसी हुई लेनी है, ठीक है? और चारोली। अब बनाने का तरीका भी साथ ही साथ आपको सिखा रही हूँ। आप क्या करेंगे, जो मावा आपने लिया है, ठीक है, उसको आप अच्छी तरह कद्दूकस कर लीजिए। या फिर मावा बनाने का भी तरीका आपको सिखाई देती हूँ। आप कढ़ाई, मोटे पेंदे वाली कढ़ाई रखिएगा गैस पर, दूध डालिएगा, दूध को हिलाते जाइए हिलाते जाइए हिलाते जाइए, वो जब तक गाढ़ा नहीं हो जाए तब तक हिलाते जाइए, ठीक है? और जब सारा दूध सूख जाए और वो गाढ़ा हो जाए तो मावा हो गया, ठीक है? तो फिर ये मावा बन गया है। बहुत टाइम लगता है इसमें और बहुत ध्यान रखना पड़ता है, थोड़ा सा भी नीचे चिपक गया तो फिर वो जलने की स्मेल आएगी, इसलिए मोटे पेंदे वाली ही कढ़ाई लेनी है। लोहे की हो तो अच्छी बात है, दूसरी हो तो भी मोटा पेंदा हो, ठीक है? और हिलाते रहे लगातार। फिर ये मावा बन गया, अब इसमें आप पीसी हुई शक्कर मिला दीजिएगा और मस्त मिक्स कर दीजिएगा। मिक्स करने के बाद देखिए संचा आता है पेड़ा बनाने का, उस संचे में थोड़ा थोड़ा मावा भरते जाइए और बस वो पेड़े का आकार ले लेगा। उसके बाद आप चारोली चिपका दीजिए, तो ये बन गए पेड़े। सारे पेड़े इस तरह बनाना है आपको। फिर अगर संचा नहीं है तो आप छोटे सी, जैसे चूड़ी होती ना सिंपल, वो पतली होती है लेकिन उभरी हुई चाहिए, तो ऐसी कोई रिंग हो, ऐसा कोई, भले आप ढक्कन ले सकते हैं, डीप ढक्कन, उसमें भी आप मावा भर सकते हैं। और मावा भर करके उसमें से निकाल दीजिए, पहले आप चिकनाई लगा दीजिए घी की, फिर उसमें मावा भरिए, फिर निकालिएगा और फिर आप चारोली चिपका दीजिए, तो भी बन गया पेड़ा। तो बनाने कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, पर बस मावा बनाने की मेहनत है। अगर सीधा मावा ला रहे हैं तो इस तरह आप बना सकते हैं, ठीक है? और अपने इष्ट देव को भोग लगाकर, गणपति जी को भोग लगा करके आप फिर ग्रहण कर सकते हैं। आइए फिर से एक ब्रेक लेकर के लौटते हैं। तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: को रखना मेरे प्रयोजन।
1: प्यारे श्रोता बंधुओं, समय हो चला है आप सभी से अनुमति लेने का। आज का कार्यक्रम तो आपने सुना ही है, काफी अच्छे रहे हैं। सुंदर सा जो विचार दिया है उस पर जरूर गौर करेंगे, और नुस्खे भी बहुत ही सुंदर दिए हैं कि मसूर के दाल कैसे फायदा करती है, कौन सी बीमारियां ठीक करती है, आपने जाना है। खुशनुमा जीवन की बातें भी बहुत ही अच्छी हुई, तो रेसिपी में जो आपको पेड़े बनाना सिखाया है जरूर बना करके खाइएगा, बच्चे बहुत पसंद करते हैं पेड़े को। और आज का टंग ट्विस्टर भी बहुत ही सुंदर था, गणपति के गुण गिनते गिनते गणपति के गणपति गुण गिन गए, गणपति के गुण गिनते गिनते गणपति के गण फिर गणपति बन गए, गणपति के गुण गिनते गिनते गणपति के गणपति गुण गिन गए, गणपति के गुण गिनते गिनते गणपति के गण फिर गणपति बन गए, गणपति के गुण गिनते गिनते गणपति के गणपति गुण गिन गए, गणपति के गुण गिनते गिनते गणपति के गण फिर गणपति बन गए। तो मैं खुद के लिए भी तो तालियां बजाऊंगी, कभी कभी खुद के लिए भी बजा देना चाहिए, है ना। तो बजा दी, आप देखिए बहुत ही अच्छी तरह सुनाया है सुरेश भाई जोटाना से, तीन बार पूरा बोला आपने और एकदम सही बोला है। और सगुना बहन ने और अलका जी काबरा कप्पासन से, तो आप तीनों के लिए, सगुना बहन ने दो बार बोल के सुनाया लेकिन कहीं अटके नहीं और स्पीड में बोले, अच्छा बोले। और फिर कोशिश की है सुभाष भाई महाराष्ट्र से, भूरीलाल जी मानपुर से, और कंचन भाई मंडाली से, कंचन भाई ने तो नहीं सुनाया, फिरोज भाई पालनपुर से, फिरोज भाई भी पूरी लाइन भूल गए थे, लेकिन आप सभी के लिए और आप सभी विषय में जुड़े इसके लिए ढेर सारी तालियां। आज का मीठा मोती है, जीवन में आए तनाव के लिए किसी की शिकायत न करें, बल्कि स्वयं के मन को उस विपरीत परिस्थिति के लिए तैयार करें, ठीक है। और अब मैं आप सभी से अनुमति चाहूंगी, कल फिर मिलेंगे। कल क्या है, जी हाँ कल शनिवार है, गणपति के दिन भी चल रहे हैं और कल राधा अष्टमी भी है, तो कल भजन की थीम रहेगी गणपति और राधा रानी के भजन, ठीक है। तो आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ करके भाग लीजिएगा और भजन जरूर सुनाइएगा। और अभी मैं आपको एक गीत सुनाऊंगी, आप लेंगे गीत का आनंद और मुझे देंगे अनुमति। आप सभी को राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, घनी खम्मा सा, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 107.8 FM। माता पिता परमात्मा मिलते ना बारंबार है, मात पिता परमात्मा मिलते ना बारंबार है, जिसने दुखाई आत्मा वो डूबते मंझधार है, जिसने करी सेवा वो हो जाते भव से पार है, मात पिता परमात्मा को वंदन बारंबार है, वंदन बारंबार है। लोक और परलोक सुधर गया, लोक और परलोक सुधर गया, मत कर काम।

मत बन दास बुराई को। बड़ो हुओ जद आस बंधी रे, सारा ही दुख मिट जावेला। बड़ो हुओ जद आस बंधी रे, सारा ही

तो करता न काम सगाई को, माँ बाप की सेवा कर ले मत बन दास बुराई को, मत बन दास।

0: सेवा कर ले मत बन दास बुराई को, मत बन दास बुराई को। लोक और पर लोक सुधर गया मत कर काम बुराई को। माँ बाप की सेवा कर ले मत बन दास बुराई को, मत बन दास बुराई को।
1: आप हो रेडिया रेडियो मधुबन 107.8 FM हबरता रेडियो ने मुस्कुराता रेडियो।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया जब गाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो तब मेहरबानी करके शौचालय का उपयोग ना करें, जिससे स्टेशन परिसर में गंदगी फैलती है। इसमें रेलवे की सहायता करें।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए। दोस्तों, जीवन में मुस्कुराना कितना जरूरी है और मुस्कुराते हुए लोग कितने अच्छे लगते हैं। कभी कोई उदास होता है तो ढूंढते हैं कुछ ऐसे लोगों के पास जाएं ताकि हमारी चेहरे की रेखाएं बदल जाएं, मुस्कान आ जाए। ऐसे लोग हमारे इर्द गिर्द होते हुए भी हम कभी ये नहीं सोचते हैं उनके जीवन में उन्होंने ऐसा क्या किया जो उनका जीवन इतना सुखमय है या फिर इतना खुशहाल है या सदा मुस्कुराहट उनके चेहरे पे होती है। यही सारी रहस्यों को जानने के लिए आज हम कार्यक्रम लेके आए हैं। जीना इसी का नाम है। दोस्तों, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर लगातार आप इस कार्यक्रम के जरिए कुछ योगियों के अनुभवों को सुन रहे हैं। उनके जीवन में वो परिवर्तन कैसे आया और वो अपने जीवन को इस तरीके से कैसे बनाया ताकि लोगों को लगे कि वाह क्या जीवन जिया इन्होंने। तो दोस्तों, आज हम स्वागत करते हैं आदरणीय रुपेश भाई जी को। आप ब्रह्म कुमारी मुख्यालय में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और उनकी जो अलौकिक यात्रा है कब और कैसे कहां शुरू हुई जानते हैं। रुपेश भाई, आपको रेडियो मधुबन में बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और हमारे सुनने वाले सभी श्रोताओं को भी मैं दिल से नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ आज के सुंदर से कार्यक्रम में।
0: जी, तो रुपेश भाई, हम सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि आप अभी वर्तमान में तो एक अलौकिक जीवन जी रहे हैं, लेकिन आपकी जो जीवन की यात्रा कब और कहाँ से कैसे शुरू हुई, आपने कौन से परिवार में जन्म लिया, आपके भाई बहने, और आपने जब जन्म लिया तो समय का क्या माहौल था, आपके परिवार में धार्मिक थे या अध्यात्म के रुचि रखने वाले थे, तो ये सारी बातें हम जानना चाहेंगे।
2: जी जी, मेरा जन्म छत्तीसगढ़ बिलासपुर में हुआ। तब तो MP हुआ करता था मध्य प्रदेश। 8 फरवरी 1976 में बर्थ हुआ मेरा और एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। पिताजी अकाउंटेंट थे और घर का माहौल ठीक है, सामान्य रूप से भक्ति भाव वाला ही था। माताजी बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक थे और हम चार भाई बहन हैं, 3 भाई 1 बहन और मैं सबसे छोटा हूँ उनमें, तो छोटा होने के नाते वैसे सबका लाडला रहा। छोटे को वैसे भी बहुत प्यार मिलता है। तो बिलासपुर में रहना हुआ, उसके बाद पिताजी का ट्रांसफर हो गया तो हम अंबिकापुर चले गए, वो भी छत्तीसगढ़ में ही है, तो वहीं मेरी स्कूलिंग आदि सभी अंबिकापुर में ही हुई। और जब मैं 10th standard में था तभी एक जैसे एक परिवर्तन का भाव जीवन में अचानक से आने लगा। मन में एक प्रश्न उठने लगा कि आखिर ये संसार है क्या, किसने रचा है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो वैसे तो माताजी के साथ थोड़े से आध्यात्मिक स्थानों पे जाना होता था लेकिन उतना ज़्यादा भी नहीं। और पढ़ाई में वैसे मेरी बहुत रुचि थी, मेडिकल करने का लक्ष्य था, इसीलिए मैंने बायो भी लिया था। लेकिन वही 10th के बाद थोड़ा थोड़ा एक वैचारिक परिवर्तन आने लगे। मुझे लगा कि नहीं, संसार को समझना और संसार के लिए मैं ऐसा क्या करूं जो जिसकी आज संसार को ज़रूरत है। तो एक चीज़ विशेष लगती थी कि आज जैसे एक नैतिक मूल्यों का ह्रास होता चल रहा है समाज में। आज धन है, वैभव है, भौतिकता से हम संपन्न होते चल रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं आध्यात्मिक रूप से, कहीं ना कहीं नैतिक रूप से एक मनुष्य नीचे की ओर जा रहा है। तो इस बात की ओर ज्यादा ध्यान जाने के कारण लगा कि क्यों ना कुछ नैतिक या आध्यात्मिक रूप से किया जाए, लेकिन उसका मार्ग क्या हो ये पता नहीं था। और ईश्वर की भी एक तलाश, सत्य की एक तलाश बहुत तीव्र रूप से मेरे अंदर आ गई थी, ना जाने कहाँ से। वो कहते हैं ना, कई बार गॉड का कुछ कॉल होता है तो एक भूमिका वो बना रहे होते हैं, तो सत्य क्या है, ईश्वर क्या है, ये जानने की बहुत ज्यादा इच्छा उत्पन्न होने लगी। तो कभी मैं पहाड़ पे चला जाता था, कभी एकांत में चला जाता था और अपने अंदर से ही कोशिश करता था कि वो चीज निकल करके आए। कभी गुरुओं से मिलना होता था लेकिन वो चीज आ नहीं पा रही जिसकी मुझे तलाश थी। जानता भी नहीं था कि क्या चाहिए एग्जैक्टली, लेकिन फिर भी जिससे मुझे संतोष मिले, तृप्ति मिले। और तभी एक प्रदर्शनी लगी हुई थी ब्रह्मा कुमारीज की ओर से। मम्मी तो वैसे भी इन सब चीजों में रुचि रखती थी, तो उन्होंने वो देखा, प्रवचन हुआ, फिर उन्होंने कहा कि यहाँ ऐसा ऐसा है, आप चलें। फिर जब ब्रह्मा कुमारीज में आना हुआ तो पहले दिन से ही एक परिवर्तन,
0: मम्मी के साथ साथ में
2: जी वो लेकर के आई, तो हम फिर साथ आए, फिर ब्रह्मा कुमारीज के बारे में जाना, और जिसकी फिर तलाश थी ना, एक कहें कि प्यास थी, एक अतृप्ति थी अंदर जो जागृत हुई थी, वो लगा कि नहीं वो यहीं से मुझे सब कुछ प्राप्त होगा, तो अंदर की एक तृप्ति, अंदर की जो एक प्यास का बुझना, उसकी अनुभूति मुझे यहाँ।
0: जी तो जैसे आप आए थे ब्रह्मा कुमारीज के संपर्क में, तो उस समय आपकी क्या उम्र थी?
2: उस समय मैं था 15-16 ईयर्स की एज थी मेरी, और उसके 2 साल के बाद ही फिर मैंने निर्णय कर लिया कि मुझे अब जैसे पूरी तरह से अध्यात्म के रंग में रंगना है, अपने जीवन को इस मार्ग में, क्योंकि एक था एक जो चाहना थे कि नहीं कुछ ऐसा किया जाए जिसकी जरूरत है आज समाज को। अंदर से मेरी भी एक रुचि अध्यात्म की ओर एक बढ़ ही गई थी, तो भगवान को जानना, खुद को जानना और खुद को विश्व की सेवा में लगाना, ये
0: आदर्श भी थे आपके जीवन।
2: वैसे विवेकानंद जी को मैं बहुत पढ़ा करता था और वो बहुत ही जैसे प्रभावित किया करते थे, लगता था कि जीवन हो तो ऐसा जैसे ईशो का नाम ही है ना, जीना इसी का नाम है, तो लगता था कि सच में जीना तो इनका ये है, ऐसा होना चाहिए जीवन जो अपने लिए नहीं, क्योंकि कितने सक्षम थे, कितने योग्य थे, कितने बुद्धिमान थे विवेकानंद जी, लेकिन बचाते तो क्या कर सकते थे, लेकिन उन्होंने समाज की सेवा को चुना या मानव जाति की सेवा को चुना और अध्यात्म को के पद को चुना, क्योंकि उन्हें भी लगता था कि अध्यात्म ही हमारी नींव है, यही हमारी संस्कृति है, और ये जब तक भारतवासियों के लोगों के जीवन में नहीं आएगा तब तक हम भारत को विश्व गुरु नहीं बना सकते, एक विकसित राष्ट्र नहीं बना सकते। बाहरी तौर से विकसित भले हो जाएं, लेकिन पहले विकसित तो अंतर मन से होना है, तो मेरे आदर्श रहे, उनको मैं बहुत पढ़ा करता था। और यहाँ विद्यालय से जुड़ने से पहले एक बार मन ये भी मैंने बना लिया था मैं रामकृष्ण मिशन ज्वाइन करूँ, क्योंकि वो मेरे आदर्श थे, मुझे अच्छा लगता था, लगता था कि उनकी एक बात, वैसे बहुत सारी बातें हैं उनकी, लेकिन एक बात बहुत दिल को छूती थी, वो कहा करते थे कि हम इंसान हैं और यदि हम भी जीव जंतुओं की तरह, वनस्पतियों की तरह पैदा हुए हैं, हम भी बड़े हुए, हमारा भी विवाह हुआ, हमारी भी 2-4 संतानें हुई और हम भी काल कल्वित हो गए, मृत्यु के ग्रास बन गए, तो हमें और जीव जंतुओं में क्या अंतर रहा? आप इंसान हैं, मानव हैं और जीव मंडल के सर्वोच्च प्राणी हैं, तो जरूर आपको जीवन में कुछ ऐसा करना चाहिए जो लगे कि मैंने समाज के लिए, मानव जाति के लिए कुछ किया। तो वो बात बहुत छूती थी और इसीलिए संन्यास या अध्यात्म की ओर चलने की और रुझान जो है वो तेज हो गए थे मेरे।
0: So, जब आप और आपकी माताजी दोनों कोर्स वगैरह करने लगे और ज्ञान मार्ग में चलने लगे, तो फिर बाकी आपके पूरी परिवार वाले आपके सपोर्ट में थे?
2: धीरे धीरे उन सब ने ज्वाइन कर लिया।
0: अच्छा, क्योंकि माँ की बात माननी पड़ेगी।
2: हम लोगों का पूरा परिवार, हमारा कोर्स जो है लगभग 1 महीने चला। अच्छा। वो इसलिए क्योंकि जस्ट 2-3 दिन का कोर्स होता था, उसके बाद एक ज्वाइन कर लेता था, तो फिर से पहले से वो कहते थे अच्छा ये आ गया, फिर से पहले से शुरू करते हैं, फिर 3-4 दिन के बाद दूसरा, तो ऐसे करके लगभग 1 महीने तक वो पूरा ही साप्ताहिक कोर्स हम लोगों का चलता रहा। और सभी ने बहुत हृदय से स्वीकार किया, क्योंकि लगता है सत्य को सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती, सत्य में शक्ति होती है, सत्य हमें अनुभूति कराता है, सत्य हमारे हृदय को छूता है। तो वही स्थिति हम सबकी थी, कोई मन में द्वंद नहीं, कोई मन में प्रश्न नहीं, सभी ने सत्य को हृदय से स्वीकार किया कि नहीं सचमुच यही जीवन जीने का सही मार्ग है और इसी की आवश्यकता आज हर एक इंसान को है।

0: का जब एक बुलावा होता है ना, एक जो गॉड्स कॉल है वो इतना तीव्र होता है कि उसके रास्ते में आने वाले सारे व्यवधान दूर हो जाते हैं। जैसे हम भक्ति में देखा करते थे ना कि जस्ट श्री कृष्ण के फादर उनको लेके बस यमुना में चल पड़ते हैं बस, और वो यमुना नीचे रास्ता बनाती चलती है क्योंकि वो एक ईश्वरीय लीला दिखाते हैं। तो यहाँ पे भी मुझे लगता है कि ये मेरा अपना प्रयास नहीं था, ठीक है अंदर की मेरी एक चाहना एक प्यास थी जो मुझे ये मार्ग मिला, लेकिन ईश्वर की कहीं ज्यादा इच्छा थी। मुझे वो लगता है कि नहीं ये मेरा है और इसकी जरूरत मुझे है, मुझे ऐसा लगता है, इसलिए वो इतना प्रबल था। मैं आपको बताऊं, मैं बुक वर्म था, मतलब मेरे हाथ में किताब होती ही होती थी। इवन प्ले ग्राउंड में भी ना, मैं जब फुटबॉल खेला करते थे हम लोग तो मैं गोलकीपर बन जाता था, वो इसलिए ताकि मैं अपने किताब के साथ
1: गोल फुटबॉल
0: अब जो बॉल है नहीं नहीं वो तो यदा कदा ही आएगा, वो कभी बीच में रहता यहाँ वहां रहता, जब मेरे पास आएगा तो मैं अलर्ट हो जाऊंगा। तो कभी हमारे टीचर भी कहा करते थे, किसी कोई पूछता था कि रुपेश कहाँ मिलेगा, तो कहते थे कि देख लेना जा करके, जिसके हाथ में किताब हो वो रुपेश है। मतलब ऐसी मेरी छवि थी, किताब से जुड़ा हुआ, इतना बुक वर्म, और ऐसा कि नहीं बनना है तो एक अच्छा डॉक्टरी का भी पेशा, इसलिए कि वो सेवा भाव है ना, कि औरों के लिए सेवा है, औरों के हम काम आते हैं। लेकिन वही मैंने कहा ना, जो ऐसा बुक वर्म हो, किताब से इतना चिपका हुआ हो, जिसको ऐसा उसके अंदर ये भाव डाल देना कि नहीं इससे भी कहीं ज्यादा जरूरत किसी और चीज की है, मुझे या संसार को है, क्योंकि नैतिकता और आध्यात्मिकता आज के समय की पुकार है। और जब जब समय की पुकार होती, कितने ऐसे युवक थे जो अच्छे अच्छे फील्ड में रहे होंगे, जब देश को आवश्यकता थी, महात्मा गांधी जी ने या सुभाष चंद्र बोस ने जब पुकारा कि अब मातृभूमि को तुम्हारी जरूरत है, उन्होंने भी तो त्याग किया ना, उनके भी मन में सपने थे, कोई डॉक्टर बनना चाहता होगा, कोई और कुछ करना चाहता होगा। यदि उन्होंने वो त्याग नहीं किया होता तो देश आज भी आजाद नहीं होता। तो यही भाव मन में था कि आज संसार को, वो भी एक विकृतियों से जकड़ी हुई है ना, अब उसे भी आजाद कराने की जरूरत है, तो किसी ना किसी को तो सामने आना पड़ेगा, क्यों नहीं मैं।
1: मुझे तो कोई भी द्वंद नहीं लगता है इस बात में, क्योंकि भले आप फिजिकल डॉक्टर नहीं बन पाए, लेकिन आप एक स्पिरिचुअल डॉक्टर बन पाए, लोगों की चेहरे पे मुस्कुराहट से दिल की दर्द को दूर करने का काम करते हैं।
0: जी शुक्रिया, ये भी परमात्मा का आशीष है।
1: जी, तो जैसे आप अभी समर्पित हुए हैं और आपको वो प्रेरणा थी कि मुझे देश की सेवा करना है, जब समय के अनुसार जब देश ने जिसको जैसे पुकारा और वो देश की सेवा करने चले, तो जब आप ईश्वरी विश्वविद्यालय में आए और अब बहुत ही छोटी उम्र में थे, वेरी यंग एज, उसमें बहुत ही रेबेलियस थिंकिंग भी होती है, क्रांतिकारी विचार ऊर्जामयी होते हैं, और ऊपर से आप मेडिटेशन करते हैं तो और भी ज्यादा ऊर्जा का संचार होता है।
0: जी जी।
1: तो क्या कार्य करते थे आप और क्या क्या सीखा आपने समर्पित जीवन में?
0: जब मैं वहां से चला था, मन में एक भाव आया, जैसे हमने इस सत्य ज्ञान को समझा, तो कि अब ये जीवन ईश्वर के लिए या विश्व सेवा के लिए है। तो जब मैं वहां से चला छत्तीसगढ़ से माउंट आबू के लिए कि अब समर्पित होना है, तो मन में एक ही भाव था कि वहां ईश्वर के घर में जो भी कार्य मिलेगा, जो भी सेवा मिलेगी, वो सेवा हम करेंगे, लेकिन रहेंगे ईश्वर के पास ही, उसके साथ ही, खुद को जानेंगे समझेंगे, ईश्वर को समझते हुए ईश्वर की सेवा करेंगे। तो कोई ऐसी चीज थी नहीं कि हम पर्टिकुलर कि हाँ ये चीज हमें मिले तो हम जाएंगे, या हमें ये स्थान मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मन में यही था कि जो होगा ईश्वर जो देंगे, जो कहते हैं ना कि ईश्वर जैसे बिठाए जो खिलाए, ऐसा एक भाव मन में था। तो आए तो किचन से शुरुआत है, जैसे हमारे यहाँ उस समय ज्ञान सरोवर का निर्माण हो रहा था, और जो भी आते थे पहले किचन में ही जाते थे, तो किचन की सेवाएं, तो वहां पे किचन में रह करके मैंने अपनी सेवाएं शुरू की। और बड़े भाग्यशाली रहे कि हमारे वरिष्ठ भ्राता आदरणीय सूर्य भाई जी, उनकी देखरेख में इस अध्यात्म की गहराई में उतरने का बहुत सुंदर अवसर मिला। तो किचन की सारी सुंदर सेवाओं को सीखते सीखते वही सेवाएं करते करते आगे बढ़ते चले, फिर तो और बहुत सारी आप जानते हैं कि मुझे लगता है कि जो ईश्वर को समर्पित रहते हैं ना, इस भाव से रहते हैं कि आपको मुझे जैसे यूज करना है आप करो, तो वो उसके लिए खुद ही मार्ग

0: बोलने लगते हैं और मुझे ऐसा लगता है जैसे नहीं एक छोटा बच्चा होता है वो नहीं सोचता कि उसको क्या करना है, ज्यादा नहीं सोचता, उसके पेरेंट्स सोचते हैं कि हाँ मतलब इसको किस स्कूल में डालना है, कहाँ ले जाना है, क्या कराना है, तो पेरेंट्स सोचते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मैंने खुद को ऐसे अर्पित करके रखा भगवान को कि आपको जो कराना हो आप कराना, मैं अर्पित हूँ। तो उन्होंने हर प्रकार के और मार्ग खोलते गए मेरे लिए, चाहे वो अच्छा प्रवचन करने की बात हो, लोगों के बीच जाने की बात हो, और मैं उतना नहीं किया करता था, लेकिन हाँ अलग अलग जो रैलियां होती हैं उन सब में भाग लेने की बात हो, इन सब का द्वार उन्होंने खोला। तो मुझे लगता था कि मेरा एक दोस्त आया जब मैं यहाँ सरेंडर हो गया था, तो 3-4 साल के बाद, वो भी थोड़ा सा जुड़ा हुआ था, उसने देखा कि मैं किचन में काम कर रहा हूँ, तो उसने कहा रुपेश तू जीवन भर किचन में ही काम करता रहेगा ऐसे। तो मैंने तो खैर इस विषय में सोचा नहीं था, लेकिन मुझे ये लगा कि शायद इसने भगवान को, अध्यात्म को, सेवा भाव को नहीं समझा है। जहाँ सेवा भाव होता है ना, वहाँ छोटे कार्य बड़े कार्य ये नहीं होते, वहाँ छोटा बड़ा कुछ होता ही नहीं, सेवा अपने आप में ही बड़ी चीज है, समर्पण अपने आप में ही बड़ी चीज है। तो ईश्वर ने फिर बहुत कुछ दिया, बहुत आगे बढ़ाया, मैं समझता हूँ कि विश्व के मंच पर आने का उन्होंने भाग्य दिया। तो आप ईश्वर को अर्पित होते हैं, ईश्वर आपके लिए सारे मार्ग खोल देता है, मैं तो ऐसा अनुभव करता
1: हूँ। तो रुपेश भाई ये बताइए कि आपको कौन सी ऐसी चीजें लगी कि अगर मैं संस्था में नहीं आया होता तो शायद ही मैं ये चीजें सीख पाता, और ये आपकी योगी जीवन की ये जो 40 वर्ष रहे हैं इसमें आपने कौन सी ऐसी प्राप्तियां या अपने जीवन में वो परिवर्तन देखते हैं?
0: देखिए यदि जीवन में अध्यात्म नहीं है तो भले ही आप संसार में हैं, अच्छे से आप आगे बढ़ जाते हैं, बड़े पदों पर पहुंच जाते हैं, आपके पास धन धान्य हो सकता है, सुविधाएं हो सकती हैं आपकी योग्यता के आधार पर, लेकिन मुझे लगता है जब तक जीवन में अध्यात्म नहीं होता या ईश्वर नहीं होते तो वो चीजें आपको सुकून नहीं देती, वो आपके अहम को बढ़ाती हैं, वो आपके मैंपन को बढ़ाती हैं, वो आपकी तृष्णाओं इच्छाओं को और भी ज्यादा बढ़ाती चलती हैं। फलतः व्यक्ति भागता ही रहता है उन चीजों के पीछे, 99 का चक्कर जिसको कहते हैं, एक और चाहिए, एक और चाहिए, थोड़ा और चाहिए, थोड़ा और चाहिए, ये सारी चीजें उसके अंदर आ जाती हैं। लेकिन जैसे ही व्यक्ति इस मार्ग से में से जुड़ता है तो वैसे ही ना उसके अंदर एक तृप्ति और संतोष आ जाता है, वो आगे से आगे बढ़ता ही है, उन्नति करता है, लेकिन संतोष के साथ करता है, खुशी के साथ करता है, इच्छा और चाहनाओं के साथ नहीं करता। मुझे लगता है कि यहाँ आने के पश्चात वहां मैं जितना ज्यादा महत्वाकांक्षी था तो यहाँ भी वो उसका रूप परिवर्तित हुआ, लेकिन उसमें एक समर्पण का भाव, उसमें एक ये भाव जागृत अवश्य हो गया कि नहीं ईश्वर को अर्पित करके अब मुझे जीवन को आगे बढ़ना है। तो ये जो समर्पणता का भाव है, ये जो नम्रता का भाव है, या जहां से आपने शुरुआत की थी कि आप मुस्कुराते रहते हैं या आपके जीवन में एक सुंदर मुस्कान है जिसे आप बांटते रहते हैं, तो मुझे लगता है ये चीजें शायद मैं यदि यहाँ नहीं होता तो ये चीजें मेरे जीवन में नहीं होती, जो निरंतर मुझे लगता है ये भगवान के द्वारा दिया हुआ एक गिफ्ट है, बहुत बड़ी गिफ्ट है। बहुत सारी लिस्ट हो सकती है कि उन्होंने क्या क्या दिया, लेकिन एक ये चीज जिसे मैंने कहीं पढ़ा था कि आपके चेहरे पे जो आपकी मुस्कान है वो ईश्वर का हस्ताक्षर है, इसे किसी भी कारण से मिटने ना दें। तो मुझे लगता है कि भगवान ने परमानेंट मार्कर से ये हस्ताक्षर मेरे चेहरे पे कर दिया है, और ये प्राप्ति मुझे यही हो सकती थी, आध्यात्मिक जीवन से ही हो सकती थी, वहां मैं ये नहीं कर सकता था।
1: अगर ऐसा गिफ्ट मिलना है, परमात्मा का हस्ताक्षर आपके चेहरे पे, तो लोगों को क्या करना चाहिए?
0: मुझे लगता है कि केवल एक चीज यदि सभी कर लेना, अपने आप को अर्पित करें उन्हें मन से, हम तेरे हैं, भक्ति में वैसे भी हम गाते थे ना, तेरा तुझको अर्पण, और ये भी कहते हैं जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम, लेकिन केवल गाते हैं। मुझे लगता है केवल एक चीज ये कर लेना, अपने आप को अर्पित कर दे, हम तेरे हैं, तुम्हारे हैं, ये भाव ही मुस्कान ले आता है। फिर वो कहते हैं कि ठीक है तू चिंता मत कर, मैं बैठा हुआ हूँ। तो कोई आपके लिए सब कुछ कर रहा है, नहीं बड़े से बड़ा कार्य है, जिम्मेवारी है, और भगवान कह रहे हैं तू चिंता मत कर, मैं बैठा हुआ हूँ, तो क्या होगा, चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी, आप हल्के हो जाएंगे, क्योंकि व्यक्ति बोझिल होकर के अपने मुस्कान को भूल गया है ना, कि ये काम है, वो काम है, ये करना है, वो करना है, और इसने हमारी मुस्कान को छीन लिया है। बस इसने जीवन दिया है उसे करने दें, और निमित्त भाव से ट्रस्टी बनकर के चलते चले ना, आपकी मुस्कान हमेशा कायम रहेगी।
1: वो कौन सा मोड़ था या कौन सा पल था जिस दिन आपको या उस समय आपको लगा कि यही जीना है, इसी को जीना कहते हैं या जीना इसी का नाम है?
0: शुरुआत में मैं पुनः चलूंगा, जब मुझे ये ज्ञान प्राप्त हुआ, हम लोगों का कोर्स जैसे मैंने कहा थोड़ा सा लंबा ही चला, लेकिन मुझे लगता है पहले ही दिन जब कोर्स हुआ और मैं बाबा के रूम में बैठा, मेडिटेशन रूम में, जहां परमात्मा से एक रूबरू, मुझे एक गहरी फीलिंग थी कि ये ट्रांसलेट नहीं है लेकिन खुद भगवान ही सामने बैठे हुए हैं। और आपको विश्वास नहीं होगा, और शायद लोगों को भी, अपने हमारे दर्शकों को भी हो सकता है इन पे विश्वास हो ना हो, लेकिन अध्यात्म में ये चीजें बहुत होती हैं कि बस वहां मेडिटेशन करते करते ना इतने आंसू मेरे अंदर से आने लगे, इतना आंसू, इतना आंसू, इतना आंसू, मुझे खुद भी लग रहा था कि आंसू क्यों आ रहे हैं। लेकिन बाद में ये रियलाइज हुआ कि व्यक्ति के आंसू राइट तभी आते हैं जब उसका मिलन उस चीज से हुआ हो जिसकी तलाश उसको सदियों से हो। आपका बच्चा यदि वर्षों से बिछड़ गया है और जब वो आपको मिलेगा तो आपकी फीलिंग कैसी होगी? क्या आप अपने आंसू रोक पाएंगे? कोई कहे ना कहे लेकिन वो स्वतः ही बाहर आते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि जिस ज्ञान के, जिस सत्य के, जिस परमात्मा को मुझे तलाश थी ना, वो मुझे मिल गया। और सचमुच वो मिला तभी वो आंसू आए ना। किसी ने कहा नहीं कि चलो तुम रो, क्योंकि मेडिटेशन में बैठने के बाद रोना होता है, ये किसी ने कहा नहीं, ये स्वतः स्फूर्त था। और उसी दिन मैंने ये निर्णय कर लिया कि नहीं, कि यही सत्य और इसी मार्ग पर चलते हुए इस सत्य का साक्षात्कार सभी को कराना है। वो एक सबसे बड़ी एक टर्निंग पॉइंट थी मेरी लाइफ की, जो एक मेडिकल की ओर बढ़ने वाला एक स्टूडेंट एक ऐसे आध्यात्मिक डॉक्टर बनने की ओर बढ़ चला, जो मन में जो विकृतियां है लोगों के उसे दूर करने में कुछ अपना योगदान दे सके।
1: बहुत सुंदर। मुझे लगता है आंखों की जो आंसू है वो हमारी इमोशन का एक एक्सप्रेशन है
0: जी।
1: जरूरी नहीं व्यक्ति दुखी होता है तभी वो आंसू बहाता है, कभी खुशी में भी आंसू आते हैं, कभी जब संतुष्ट हो जाता है, जैसे आपने कहा जिनसे हम बिछड़े हुए हैं और ढूंढ रहे ढूंढ रहे ढूंढ रहे, और जब अचानक मिलता है तो वो शब्द नहीं आते हैं, वो इमोशन आंसू के रूप में एक एक्सप्रेशन होता है कि आपसे मिलके हमें खुशी हुई या तृप्त हुए हैं, और जो हमारा जो खोज था वो खत्म हुआ है और हम अभी मिल गए हैं। बाद में धीरे धीरे फिर वो बातें आने लगती है।
0: वो पहले तो वो जो भाव है उस भावना में हम बह जाते हैं और वो बहुत सुखद अनुभूति होती है। हाँ। क्योंकि उसमें कोई व्यापार नहीं है, वो कोई लेन देन नहीं है, वो बहुत शुद्ध, जैसे एक स्मृतियां हैं, शुद्ध भाव है, हृदय के भाव है, जिसमें बहना व्यक्ति के लिए यादगार होता है और जीवन को बदलने वाला होता है पूरी तरह से।
1: So, अगर आप अपनी पूरी जीवन यात्रा को देखते हैं और कोई एक शब्द से अगर आप कहते हैं कि आपका पूरा जीवन उसे जुड़ा हुआ है, तो वो कौन सा शब्द है जो आपके पूरे जीवन को दर्शाता है?
0: एक शब्द यदि ढूंढ के मैं कहूँ तो मुझे लगता है कि परमात्मा साथ,
1: कंपेनियन ऑफ गॉड
0: जी। ये मुझे लगता है कि मैं अपने पूरे जीवन को यदि थोड़ा सा डिस्क्राइब, मतलब इस रूप में करना चाहूँ कि कौन सी ऐसी चीज रही जिसने मुझे छुआ, मुझे बदला, या जिसके साथ मैं हमेशा रहना चाहूंगा, या जिसे मैं अपनी पहचान बनाना चाहूंगा, वो यही एक ऐसा शख्स जो भगवान के साथ रहता है, जो भगवान का दोस्त है, जो भगवान का मददगार है, जो भगवान की इच्छाओं आशाओं को पूर्ण करने वाला है, या फिर जैसे ईश्वर की जो सृष्टि है, ईश्वर चाहते हैं कि मेरे सभी बच्चे सुखी हों, संसार स्वर्ग हो, तो उसके उस कार्य में मदद करने वाला। तो मैं सोचता हूँ कि इस रूप में मैं खुद को ज्यादा कनेक्टेड फील करता।
1: थैंक यू सो मच रूपेश भाई, बहुत ही लाइट मोड में बहुत ही गहरी बातों को, और जीवन की वो चंद पल जहाँ पे भी आपकी टर्निंग पॉइंट्स रहे हैं आपके जीवन को दर्शाने वाले, उन सारी बातों को हमारे साथ शेयर किया, और मैं समझती हूँ कि आज के युवा भी उन चीजों से कनेक्ट कर पाते हैं और प्रेरणा ले पाते हैं आपके जीवन से। बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस कार्यक्रम में आने के लिए।
0: जी, दिल से आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मुझे स्टूडियो में बुलाने के लिए, और हमारे सभी रेडियो मधुबन के श्रोताओं से जुड़ने के लिए दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी श्रोताओं का भी दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू सो मच। तो दोस्तों यहीं पे हम विराम लेते हैं, फिर मिलते हैं अगली कड़ी में। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो, रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माय विलेज माय एरिया, और अपना लोक भाषा में कहते हैं मारो गांव मारो अंचल। सही में कार्यक्रम का नाम ही अपना गाँव और अपना अंचल। जिस गाँव और जिस अंचल में रहते हैं, पले बड़े और यहाँ तक पहुंचे, वो गांव और अंचल कभी नहीं भूल पाते। तो सरकार का जो मंशा है, जो रेडियो स्टेशन दिया है, आसपास में जो गतिविधि हो रही सब तक पहुंचाने के लिए एक मंच आज राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय चंडला में, और बच्चों का बारी बारी हुनर और प्रतिभा सुनने को मिलेगा। पहला प्रस्तुति हम सुनने जा रहे हैं एक प्रार्थना के रूप में, और इस कार्यक्रम को साधने के लिए हमारे साथ 6 छात्राएं हैं, तो वो भी अपना बात को रखेंगे नाम का साथ, अपना नाम और वो कौन सा गांव से आते हैं और कौन सा क्लास।
1: मेरा नाम सुपना कुमारी है, मैं कक्षा 9 में पढ़ती हूँ, मैं अंबावेली से आती हूँ।
2: मेरा
3: नाम अंजू कुमारी है, मैं कक्षा 11 में पढ़ती हूँ, मैं बघेरी से आती हूँ। मेरी स्कूल का नाम भारतीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चंडीगढ़।
0: तो चलिए, बहुत सुंदर प्रस्तुति के लिए हम आज आपका पास आ रहे हैं, खासकर ईश्वरीय विश्वविद्यालय और राजकीय विद्यालय का सहयोग से। तो जैसे बच्चे अपना प्रस्तुतियाँ देंगे, सुगना रेडी?

0: बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए। कार्यक्रम का पहला गीत में ही बच्चे अपने के रूप में अपना देश का अपना भाव और भावना को माँ सरस्वती तक पहुँचा दिए और इस तरह कार्यक्रम का लोग होता है बच्चे पढ़कर भाग लेते हैं और अपना भाव और भावना को देते हैं अर्पण करते हैं तो समर्पित रूप में अपना जीवन को जब क्या करते हैं तब भगवान भी खुश हो जाते हैं बच्चों का गीत को देखकर उनका सुर ताल का साथ लय का साथ भावना भी है भाव भी है जैसे घर में अगरबत्ती करते हैं नमस्ते करते हैं पूजा पाठ करते हैं तो हमारा छह छात्र जो सुकुना एंड अंजू सभी को नाम का साथ धन्यवाद देते हैं पहला प्रस्तुति के लिए और छोटे बच्चे भी हमारे साथ इस कार्यक्रम को जोड़ेंगे लेकिन और कुछ विराम के बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गाँव मेरा आंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। तो खास कर अंजू बड़े होकर क्या बनेगी
1: टीचर
0: क्यों टीचर क्यों क्योंकि पढ़ाते हैं तो बच्चा मिट्टी को जैसे रूप देंगे उस तरह बनता है जैसे कारीगर क्या करता है कारीगर अच्छा से सुंदर देते हैं लकड़ी हो चाहे मिट्टी हो उसको सुंदर रूप दे देते हैं तो शिक्षक भी बच्चों को सुंदर रूप में रूप देकर डॉक्टर इंजीनियर टीचर बना देते हैं तो इसलिए टीचर शिक्षक का महत्व ज़्यादा है सैनिक टीचर और किसान ये तीनों देश का ज़्यादा और पूरा मेन रोल करते हैं पूरा पिलर है उनका बिना हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा। सैनिक जो कि बॉर्डर में सैनिक काम क्या करता है जो फौजी में देश को रक्षा करते हैं हाँ और किसान हमको अन्न देते हैं और शिक्षक हमें अच्छा शिक्षित कराते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद लेते हैं छोटा सा।

0: चले कार्यक्रम को आगे बढ़ाते
1: हैं। अच्छा गीत सुने प्रार्थना के रूप में और हमारे रेडियो मधुबन तरफ से भी गीत सुने, तत्पश्चात और एक प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए गोड्डा गुडिया दोनों आए हैं, तो सुनते हैं उनका आवाज से क्या बोलना चाहेंगे। अपना नाम बताएंगे, हेलो नाम बताइए, कौन सा क्लास? पहले का प्रस्तुत सुनेंगे, सभी बच्चे साथ दे रहे हैं हमारा कार्यक्रम को सुनकर, अपने को कंट्रोल करके बैठे हैं चुपचाप, और हमारा तीन छात्र और छात्रा दोनों मिलकर गीत गाएंगे, सुना।
2: पहुंच गई चंडीगढ़ से जयपुर से रामेश्वर से चलते चलते लौट चली।

भी नहीं गए, सब घूम कर आकर अपना घर में पहुंच गए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला कार्यक्रम के लिए हमारा और छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनको भी स्वागत कर रही है कि बच्चे सच्चे होते हैं, मन के सच्चे, दिल के सच्चे, प्यारे प्यारे लगते हैं। और बच्चे भी आए, हम भी कभी बच्चे थे लेकिन आप तो बड़े हो गए, हमारा बच्चे कम नहीं है। अपना अपना नाम बताएंगे प्लीज, अपना नाम बताओ। हेलो जी, हाँ यशोदा, चेतना, आत्मा तो चेतना है कि नहीं? अरे यशोदा बिना हमारा कुशला अस्तित्व नहीं है। मधु, वाह मधुबन, रेडियो मधुबन से हम आए और मधु हमारा इस कार्यक्रम को सजा रहे। और एक गुड़िया किंजल, बस सभी के लिए ताली बजा दो भाई, ये तीनों बच्चे के लिए। सुना कौन सा गीत सुनाएंगे? कविता हाथी राजा, वाह हाथी तो राजा है, जंगल का राजा हाथी है, जंगल का राजा हाथी है। हाथी कभी देखा है? चित्र में नहीं, फोटो में नहीं। हाथी देखा है? कितना पैर है उसके हाथी का? चार। कितना पैर है? सभी बच्चे हाथी देखें? असली असली असली देखें? कब? जंगल में ना गांव में? गांव में हाथी आता है? अरे क्योंकि जंगल का बाजू में तो बड़ा बड़ा पहाड़ है, जंगल है, हो सकता आ सकता है, लेकिन कोई भी पालतू हाथी भी आता है। चलिए हाथी राजा के बारे में सुनेंगे, सभी सुनेंगे बच्चे? चलिए सुनते हैं हाथी राजा।

0: तुम्हारा नाम बताओ?
1: राजकुमार।
0: अरे वाह राजकुमार, राजकुमार हमारा होबनहार बच्चा है और राजा बनेगा। बड़े होकर क्या बनेगा? राजा बनेगा ना? डॉक्टर बनेगा? क्या बनेगा?
1: डॉक्टर।
0: हाँ हाँ, राजकुमार हमारा राजा बनेगा और डॉक्टर भी बनेगा। डॉक्टर का काम क्या होती है?
1: सुई लगाता।
0: अरे बाप रे सुई। बहुत होशियार बच्चा हमारा राजकुमार। अरे बैठ जाता है सिर्फ, राजा तो बैठता नहीं है, राजा तो पूरा शासन करता है ना। तुम्हारा अच्छा मैम कौन है?
1: ममता मैडम।
0: अच्छा क्या बात है, ममता मैम उनका अच्छा मैम है। क्या ममता मैम क्या सिखाते हैं?
1: गिनती।
0: गिनती सिखाते हैं और राजा बनने के लिए तरीका बताते, डॉक्टर बनने के लिए तरीका बताते है ना। बहुत अच्छा है। राजकुमार के लिए क्या करेंगे, जोर से ताली बजाएंगे। राजकुमार हमारा खुशी खुशी लग रहा है तुमको? सब ताली बजा कर खुशी करा दिए। ताली बजाने से कोई पैसा नहीं लगता है, एक्सरसाइज हो जाता है और चेहरा में गोलाप फूल जैसे खिलता है। सबका चेहरा देखो कितना खिलखिला रहा है ना, जैसे कमल फूल खिलता है ना। कमल फूल कैसे खिलता है देखो बच्चे, ऐसे करो हाथ। अरे वाह कमल फूल, दो दो हाथ अंगुली से इस तरह से करो, देखो कितना सुंदर लग रहा है ना। कमल फूल ऐसे खिलता है, कमल फूल जैसे हमको भी बनना है। कैसे बनना है? कमल फूल जैसे
1: बनना है।
0: हाँ देखो बच्चे आज कितना खुशी से बोले, कमल फूल जैसे सब सहन करता है, कीचड़ पानी सब उनके साथ रहकर पूरा उपराम, सबसे अलग। हमारा राजकुमार भी सबसे अलग है, सभी मैम उनको याद करते, सभी सर उनको याद करते ना
1: जी।
0: क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास गुण है, विशेषता है। बहुत अच्छा बच्चे, बहुत बहुत धन्यवाद और हमारा इस कार्यक्रम को सजाने के लिए। और दो बच्चे है, तीन बच्चे, वो भी सुनाएंगे, लेकिन आओ और बच्चे सुनाएंगे कुछ।
2: हसीना
0: सुनाएंगे कुछ इस कार्यक्रम को, अगला कड़ी में सुनाएंगे हसीना हमारा साथ। कौन सा क्लास में हसीना है?
1: फाइव।
0: फिफ्थ क्लास। तो सुनाओ
1: ना।

0: क्या बात, प्यार प्यार मतलब कितना खुशी का बात, ताली बजा प्यार के लिए। प्यार में सब कुछ समय होता है, जब प्यार से कोई काम करेंगे, प्यार से याद करेंगे, प्यार से पढ़ेंगे, प्यार से बुलाएंगे, चुटकी में सब काम हो जाता है। और हमारा गुड़िया, हमारा परी आज प्यार सबको लुटा रहा है, गीता माध्यम से, कविता का माध्यम से। कौन सा फलिपा, कौन सा गांव से आती गुड़िया, तुम कहाँ से आती?
1: गिरवर बोर्ड से।
0: अरे बाप रे, गिरवर बोर्ड से आती, इतना दूर से आती है, वाह, गिरवर बोर्ड से। और बड़े होकर क्या बनेगी गुड़िया तुम?
1: डॉक्टर।
0: हाँ डॉक्टर, डॉक्टर का काम सुई लगाना होता है, इंजेक्शन देना होता है। और इस कार्यक्रम को सुंदर रूप में सजाए, और प्यार प्यार भरा, दिल भरा कविता का माध्यम सबका मन मुग्ध कर दिया। हमारा श्रोता सुन रहे इस कार्यक्रम को, और ये तो चंडला का आवाज, विद्यालय के भुवनहार बच्चे ममता मैम और एक मैम हमारा साथ इस कार्यक्रम में आए हैं, तो उनको भी हालो करेंगे। मैम आप अपना परिचय देंगे?
2: मेरा नाम संगीता शर्मा है और मैं इसी विद्यालय में अध्यापिका हूँ, पहले से पांचों को हिंदी पढ़ाती हूँ। और ये बच्चे अच्छे अच्छे कविता बोल रहे हैं, इनको सिखाइए मैंने। और मुझे पढ़ाने का बहुत ही शौक है, मुझे पढ़ाना बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, छोटे छोटे बच्चों से पढ़ाना है, इनको नॉलेज देना। और इनको, मैं से सांस्कृतिक प्रभारी भी हूँ, तो नाच गाने वगैरह करवाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं खुद भी गायिका हूँ, गाती हूँ गाना।
0: बच्चों का आवाज को सुनकर मैम भी अपने आवाज को रोक नहीं पाएंगे क्योंकि मुझे मालूम है, क्योंकि बच्चे सच्चे होते हैं और बड़े भी तो सच्चे बना देते हैं। और इस कविता का माध्यम से प्यार कितना सीमेंट का काम करता है, जोड़ना है प्यार, जैसे ईंट और रेती को सीमेंट दे देंगे तो दोनों को पूरा बराबर जोड़ देता है, कभी टूटता। तो इस कविता का माध्यम से सभी बच्चे भाग लिए। और मैम इस कविता का माध्यम से कुछ कहना चाहेंगे? मैम एक जो कविता सुनाई बच्ची, प्यार वाला कविता, वो कविता का महत्व थोड़ा बताइए, आपका, आप तो बच्चों को सिखाते हैं।
2: ये कक्षा 5 का पहला ही पाठ है, तो मैं इनको मैंने पढ़ाया और रोज ही प्रार्थना के जस्ट बाद ये कविता मैं बुलवाती हूँ। तो ये बच्चे क्या है, इन कविताओं को बोलते हैं और इनको सबको करीब करीब याद हो चुकी है। तो इसमें नानी का जो प्यार वो बताया है, नानी दादी हमें पहले कैसे कहानी सुनाती थी, प्यार करती थी, है ना। तो उससे बच्चों का क्या होता था, संस्कार के विकास होते थे, है ना। जैसे उन्होंने, नानी हमें प्यार से बताती थी कि ये संसार पूरा किसने बनाया, ईश्वर ने, ईश्वर ने बनाया ना। और ईश्वर, तो ईश्वर को हमको ध्यान रख करना चाहिए, ईश्वर ही हमको सबसे जुड़ने का और इस संसार से जुड़ने का प्रेम सिखाता है ना। तो इसलिए नानी का और दादी का बच्चों के संस्कार निर्माण में बहुत ज्यादा अहम रोल होता है। और इसी में दो लाइन मैं बच्चों के ऊपर गाना गा देती हूँ, क्योंकि बच्चे मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं बच्चों के लिए ही गाना गा रही हूँ।

0: के सच्चे धन्यवाद।
1: चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बच्चे का शुरुआत कर दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैम को भी धन्यवाद और हमारा ममता मैम को भी धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए। ममता बहन का आवाज भी लेंगे अंतिम समय में।
2: लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक बाद पुनः मिलेंगे सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा आंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: ओए रुक, ओए रुक रुक, कुछ सुनाई नहीं देती। और ये पुकार है आपकी गड्डी की, तो कह रही है कि बिना पिए मेरे को चलाओ। और ये पुकार आपके बच्चों की भी हो सकती है, तो जो सलामत घर पहुंचना हो तो बिना पिए गाड़ी चलाना, समझे? चलो निकल लो अब। और हाँ, हैप्पी जर्नी मेरी तरफ से अवलदार कड़क। हाँ, जो आपको कहता है डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। और ठीक ना? ठीक।
1: ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
2: नमस्ते, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए और एक बोलते बोलते फिर और एक प्रस्तुति करने के लिए हम आगे बढ़ रहे, तो हमें खुशी मिल रहा है। बच्चे सच्चे होते हैं और बढ़ चढ़ कर अपना भाव और भावना को देते हैं, क्योंकि उनको मौका मिलता नहीं। आज मौका मिला है रेडियो मधुबन उनका बात को रखने के लिए एक मंच दे रही है, जिस मंच का माध्यम से, जिस स्टेज का माध्यम से अपना भाव को जन जन तक पहुँचाते हैं। और आदिवासी गांव में रहते बच्चे इस तरह आकाशवाणी में आने के लिए उनको कोई पूछता नहीं था, तो रेडियो मधुबन ब्रह्मा कुमारी आज उनका बात को रखने के लिए उनको मंच दे रहे, माइक दे रहे, तो पुनः और एक प्रस्तुति के लिए रेडी है। हमारा सभी गुड़िया आए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे सभी? अपना नाम क्या बताया था?
3: अंजू
2: शुभना। चलिए सभी मिलकर एक प्रस्तुति करेंगे। ओके।

0: वाह वाह बोलने से बच्चे बहुत अच्छा सुंदर प्रस्तुति के धन्यवाद देते हैं।
1: इस तरह बच्चे को जब मान के मिलते बनेंगे सभी बड़े होकर,
0: लेकिन मेहनत जरूरी है। विद्यार्थी जीवन में मेहनत करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, बिना मेहनत से कुछ नहीं होने वाला है।
1: पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई तब तक विद्यार्थी पढ़ाई का जीवन में पढ़ाई करना है और बड़ों का बात मानना चाहिए, है ना।
0: छोटा सा ब्रेक के बाद और एक प्रश्न सुनेंगे, लेकिन अल्प विराम के बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

अगर आपातकालीन स्थिति में किसी को अस्पताल ले जाना हो तो घबराइए नहीं, डायल कीजिए एम्बुलेंस का इमरजेंसी नंबर 102 या फिर 108। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अंतिम प्रस्तुति की ओर हम चल रहे और आप सब सुन पा रहे रेडियो मधुबन पर राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय चंडला का आवाज अंतिम प्रस्तुति में उन्होंने स्वागत करते हैं, शुरू करेंगे।
1: चंडा पड़ा अंबर

धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए और आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किसी बात को लेकर। बहुत खुशी लगा, सभी को नाम का साथ धन्यवाद देते हैं। सभी बच्चे बोलो रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो और मुस्कुराते रहो। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद।

नमस्कार, मैं हूँ शिप्ला, डिस्ट्रिक्ट मोहाली, स्टेट पंजाब से। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहें, मुस्कुराते रहें।

0: अभी आप सुनेंगे रेडियो मधुबन पर साप्ताहिक अंत कार्यक्रम का पुनः प्रसारण। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज हम सभी के मध्य बहुत दिनों के बाद दीदी उर्मिला जी जुड़े हैं, और दीदी जी को तो आप सभी जानते ही हैं, लेकिन थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय इस प्रकार से है कि दीदी ने MA इन इंग्लिश किया है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में, और आप प्रजापिता ब्रह्म कुमारीज के साथ 1981 में जुड़ी, और 1985 से समर्पित रूप से आप सेवाएं कर रहे हैं लगातार 41 वर्षों से। वर्तमान समय आप माउंट आबू में राजयोग शिक्षिका, संपादिका ज्ञानामृत मासिक पत्रिका और सह संपादिका हैं आप त्रैमासिक हरियाली पत्रिका के। तो बहुत सारे युवाओं को आप प्रेरित करते हैं देश के कोने कोने में तथा विदेशों में भी जा करके आपने आध्यात्मिक यानी कि हमारे सनातन संस्कृति को जन जन तक आपने पहुंचाया। तो बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम फिर से दीदी से अभी जुड़ चुके हैं, और बात करेंगे हम समाने की शक्ति के बारे में, क्योंकि कल है गणेश पूजा। गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य पर हम गणेश जी को घर लेकर के आते हैं, उनकी पूजा करते हैं, और उनका बड़ा पेट भी होता है, और कहते हैं कि वो सब बातें शायद समा लेते हैं, या फिर लड्डू खा कर के बड़ा पेट है, ये हम दीदी जी से जानेंगे। और समाने की शक्ति और सामना करने की भी जो शक्ति है, पावर टू फेस भी है, तो उसके लिए क्या क्या जरूरत है उसके बारे में हम जानेंगे, यानी कि गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य पर खास ये कार्यक्रम है जीवन रोशनी। उर्मिला दीदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: शुक्रिया जी, आपने हमें याद किया।
0: जी दीदी, बहुत देर से याद किया इसलिए क्षमा चाहिए, लेकिन सौभाग्य की बात है कि खास मौके पर आपके मार्गदर्शन हम सभी श्रोताओं तक पहुंचाएंगे। तो आपसे जानना चाहेंगे, जैसे गणेश जी को बुद्धि की देवता के रूप में और माना जाता है, इसके साथ साथ विघ्न विनाशक के रूप में, शिव जी के पुत्र के रूप में हम उन्हें जानते हैं, तो उनके अंदर पावर टू फेस सामना करने की शक्ति के साथ साथ समाने की शक्ति भी होता है, तो आप इसे कैसे डिफाइन करना चाहेंगे?
1: ओम शांति। हमारे एक वरिष्ठ भ्राता जी
0: जी
1: रमेश शाह, उन्होंने एक बार एक आर्टिकल लिखा था। उन्होंने कहा था कि गणेश जी का गणेश जी नाम तो बहुत अच्छा है, लेकिन इनका नाम असल में गुणेश होना चाहिए। गुणेश मतलब गुणों का देवता
0: जी,
1: क्योंकि इनके हर एक्शन में कोई ना कोई गुण, कोई ना कोई शक्ति झलकती है
0: जी।
1: अभी जैसे अभी आपने पेट की बात की थी कि इतना बड़ा पेट है, समाने की शक्ति है। लड्डू खाते हैं तो हजम हो जाते हैं, पेट इतना बड़ा नहीं होता है
0: जी।
1: लेकिन वास्तव में तो ये सब कुछ अपने भीतर समाने की शक्ति का प्रतीक, और ये शक्ति बहुत बड़ी है
0: जी।
1: समाने की शक्ति की एक्सप्लेनेशन ये नहीं है कि आप बात को भीतर ले जाओ और भीतर ही भीतर घुटते रहो। एक्सप्लेनेशन ये है कि आप बात को भीतर ले जाओ और उसको ऐसी गहराई में दबा दो कि जब तक उसकी जरूरत ना हो तब तक आपको वो दिखाई ना दे
0: जी।
1: जैसे समुद्र में कितना सारा कचरा जाता है, समुद्र ना तो उसको ऊपर रखता ना दिखाई देता, समुद्र एकदम स्वच्छ अपना तल रखता है
0: जी।
1: तो इसी तरह हमारा फेस एकदम शाइनिंग हो, पॉजिटिव हो, मुस्कुराता हुआ हो, बेशक हमें हर बात का पता हो। कोई व्यक्ति है, हमें उसकी कमजोरी का पता है कि जो सामने से आ रहा है ना, इसमें ये कमजोरी है, लेकिन हमारे फेस में बिल्कुल ना दिखाई दे कि हमको इसकी कमजोरी का पता है, जिसको कहते हैं समाने की शक्ति, क्योंकि उस समय जरूरत ही नहीं है उस बात को उभारने की
0: जी।
1: हाँ, कभी हमें उसको कोई शिक्षा देनी है मीठी सी, मौके पे प्यार से, तो वो एक मीठी गोली की तरह से हम बहुत प्यार से उसको वो चीज देंगे, उसको भी वो मीठी लगी, कड़वी ना लगे। कड़वी लगेगी तो फेंक देगा, एक्सपेक्ट नहीं करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा
0: जी। तो उस समय अपने मन में क्या चिंतन चलाना होगा जब उसको सामने देखते हुए पता होते हुए भी?
1: वो क्या है कि मन में ये चिंतन रहता है कि ये भी एक आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, परमात्मा का बच्चा है, और मुझे भगवान ने आज्ञा दी है कि सबके गुण देखो, किसी में 99 अवगुण हो तो एक गुण जरूर होता है, तो अगर मैं सचमुच बुद्धिमान हूँ तो मैं इसमें से कोई गुण ढूंढ के दिखाऊं, ये मेरे लिए एक चुनौती है। दुनिया कहती है कि इसमें बड़े अवगुण है, पर मैं इस चुनौती को स्वीकार करूं कि मैं इसमें से गुण ढूंढूं और उस गुण का चिंतन करूं और उस गुण के आधार पर इसको अप्रिशिएट करके इसको आगे बढ़ाऊं
0: जी बिल्कुल, तो इस चिंतन के साथ उस आत्मा से, उस व्यक्ति से हमें मिलना है,
1: उसे मिलना है, बात करनी है, पास बिठाना है, जो भी है।
0: जी, और दीदी गणेश जी को विघ्नहर्ता भी कहते हैं, तो लेकिन जीवन में जब कोई विघ्न सामने आता है तो क्या हर बार वो विघ्न बाहर से हटेगा या फिर हमें उसके सामने खड़े होने की शक्ति भी अपने अंदर जगाना पड़ेगा?
1: क्या है कि विघ्न वैरायटी होती है, लेकिन किसी भी विघ्न को हम किसी भी स्थूल या भौतिक शक्ति से अगर हटाएंगे तो वो टेम्परेरी हटेगा, फिर वापस आ जाएगा। हमें या तो विघ्न को जंप मार के पार करना है, एक तरीका तो ये, जैसे भाई जहाज ऊपर उड़ता है, पहाड़ों को क्रॉस कर जाता है, पहाड़ देखता ही रह जाता है, सोचता था मैं इसके आगे आऊंगा, उसकी मनसा ही पूरी नहीं हुई, बहुत बड़ा पेड़ है, हवाई जहाज उसके ऊपर से भी क्रॉस कर गए। या तो हमारे में ये वाली शक्ति, दूसरी ये शक्ति है कि हम अपना कोई एक्शन ना लें लेकिन हमारे वाइब्रेशन, हमारे नयन, हमारी मुस्कान इतनी पॉजिटिव और इतनी पावरफुल हो कि सामने वाला सामने खड़ा ही ना रह सके, उसको लगे कि अरे मैं किसका विरोध कर रहा हूँ और क्यों विरोध कर रहा हूँ, इस विरोध का तो कोई मीनिंग ही नहीं, तो वो अपने आप ही हट जाए। और तीसरा तरीका ये है, ये सबसे अच्छा है, कि हर समय अगर हमारी सबके लिए शुभकामनाएं हैं तो विघ्न आएगा ही नहीं, ये गारंटी है।
0: ओके, सबके लिए शुभकामनाएं, कैसे? अपने जो शत्रु भी है, मतलब जिसने जो,
1: हाँ हाँ,
0: उसके लिए भी,
1: उसके लिए भी अगर हम अच्छा सोचते हैं, उसके लिए भी कहते हैं कि तुमने जो किया वो बहुत अच्छा किया, क्योंकि तुम्हारे क्रम से मेरी बड़ी प्रोग्रेस हो गई, तुम्हारी निंदा से मैं बड़ी मजबूत हो गई, और तुम्हारे विघ्न डालने से मेरा हतम्बल बहुत बढ़ गया, तुम बहुत अच्छे हो, बेशक ऐसे दो चार कर्म और करो ताकि मैं और आगे बढ़ू। हम उसको ऐसे वाइब्रेशन देते हैं ना तो वो आता ही नहीं है सामने।
0: सही बात है, तो इस प्रकार से हम अपने स्मृति पटल पर ये सारे विचार चला सकते हैं। जी, और गणेश चतुर्थी और पावर टू फेस, जैसे सामना करना है परिस्थितियों को, तो किस तरह से ये आध्यात्मिकता और मानवीय संबंध इसके साथ जुड़ी हुई है?
1: जब हम किसी भी चीज का सामना करते हैं तो हमको एक बात का ध्यान रखना है, व्यक्ति का सामना कभी भी नहीं करना है, क्योंकि जो व्यक्ति है वो संसार की बहुमूल्य दौलत है, प्रॉपर्टी है। मान लीजिए मैं उस व्यक्ति का कुछ नुकसान करता हूँ तो संसार का नुकसान होता है, चोट पहुंचाई तो भी नुकसान है, हर्ट किया उसको तो भी नुकसान है, और उसको छीना झपटी की तो भी संसार का ही नुकसान है, संसार की एक एसेट है, संसार का एक व्यक्ति है, तो फिर हम सामना कैसे करें? असल में हमको सामना करना उसके भीतर जो दुर्गुण है उसका।
0: ओके जी।
1: अगर मैं कुछ बिगाड़ना ही चाहती हूँ तो उसके भीतर मौजूद दुर्गुण का बिगाड़, मेरे में इतनी सूक्ष्म संपर्क शक्ति होनी चाहिए। अब जैसे मेरे सामने एक पेशेंट है, मैं डॉक्टर हूँ, अगर मैं पेशेंट को कहूँ तुम्हारी आंख में दर्द है, चलो आंख ही खत्म कर देते, कान में दर्द है कान ही खत्म कर देते, मैंने बड़ा नुकसान कर दिया, मुझे तो आंख की बीमारी खत्म करनी, कान की बीमारी खत्म करनी, कान रहे तो वो व्यक्ति रहे, लेकिन उस व्यक्ति के भीतर कुछ ऐसी नेगेटिविटीज है जिनके कारण वो मुझे भी और किसी और को भी तंग करता होगा
0: जी,
1: तो मेरा फोकस उस नेगेटिविटी के ऊपर, मुझे उसको खत्म करना
0: जी, ना कि व्यक्ति को दूर कर देना है,
1: हाँ,
0: उसको गलत समझना,
1: ना उससे घृणा करनी है, ना उसको दूर करना है, ना उसकी कोई किसी से चुगली करनी है, ना किसी और का सहयोग लेकर के उसका कोई अहित करना है, क्योंकि मैं संसार का कल्याण करने वाली हूँ, अहित करने वाली नहीं। मुझे तो एक तिनका भी नहीं तोड़ना संसार का, अगर मैं एक फूल का पत्ता भी तोड़ती हूँ तो भी संसार का नुकसान, तो मैं नुकसान करने नहीं आई हूँ, मैं इसका फायदा करने आई हूँ, और मनुष्य का तो मैं नुकसान कर ही नहीं सकती क्योंकि वो तो एक बहुत बहुमूल्य चीज है, परमात्मा की प्रकृति के बने संसार, तो उसके भीतर कुछ जो नेगेटिविटी है मुझे उसको खत्म करना है। अब उसको खत्म करने के लिए अब आपको तरीके ढूंढने, आपको पहले तो ये देखना है कि आप इसको कैसे खत्म कर सकते हो, क्योंकि हर एक की बुराई एक तरीके से खत्म नहीं होती है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, बहुत बहुत साल पहले की बात है, मैं एक बार बस में सफर कर रही थी, उस जमाने में अपनी गाड़ियां अपने पास नहीं होती थी, कहीं भी आना जाना बसों में होता था
0: जी।
1: मेरे आगे वाली सीट पे एक व्यक्ति बैठा था और बीड़ी या सिगरेट कुछ पी रहा था
0: जी।
1: तो जब बस चलती है ना तो आगे का धुआं पीछे आता है
0: जी,
1: और वो

0: टोक करती है, मैं पीछे बैठी बैठी सोचती थी, मैंने कहा बाबा ये आपका बच्चा है, धुएं से इसका भी नुकसान हो रहा है, मेरा तो हो रहा है, मेरे से ज्यादा तो इसका हो रहा है, तो इसको सद्बुद्धि मिले तो ये इसको त्याग करे। और बहुत सारी बस में और भी सवारियां हैं, बेशक बोली नहीं लेकिन बस में पॉल्यूशन तो फैल ही रहा है
1: जी,
0: तो इसको सद्बुद्धि मिले, इसका पुण्य का खाता जमा हो, ये भी तो एक अच्छी आत्मा है, परमधाम से आई थी तो बहुत अच्छी आत्मा थी
1: जी।
0: ऐसे में चिंतन करती रही करती रही। कुछ समय बीता और उसने जेब से बंडल भी निकाला, माचिस भी निकाली और मुझे दिखा के कहता देखो बहन जी मैं इनको बस बाहर फेंक रहा। तो उसने मुखवाली तो बीड़ी फेंकी फेंकी, वो बंडल और माचिस भी फेंक। तब मुझे लगा कि व्यक्ति के लिए हम अगर शुभ सोचते हैं तो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, टाइम तो लगता है
1: जी।
0: एक तो होता है कि आपने थप्पड़ मारा और आदमी ने तुरंत काम कर दिया, लेकिन वो प्रभाव अच्छा नहीं है, उसके मन में आपके लिए घृणा आ जाती है, आपके नजदीक जीवन में वो कभी नहीं आएगा। लेकिन ये जो तरीका है इसमें आपने उसका दिल जीता है, आपने उसके दिल में अच्छाई को एक तरह से इंजेक्ट किया है और बुराई को बाहर निकाला है और वो अपने आप इसके लिए तैयार हुआ है, मेरी तरफ से कोई जबरदस्ती नहीं, अब वो जीवन भर ये काम दोबारा नहीं करेगा। तो ये तरीका सबसे बेस्ट है, बुराई का सामना करो, बुरे व्यक्ति का नहीं। कहते हैं जेल में लिखा होता है पाप को मारो पापी को नहीं
1: जी, बिल्कुल बिल्कुल, पाप को मारो पापी को नहीं को। जी बहुत सुंदर बात है दीदी। दीदी अक्सर हम चाहते हैं कि जीवन में जो मुश्किलात हैं वो समाप्त हो जाए, लेकिन क्या वास्तविक शक्ति मुश्किल के समाप्त होने में है या फिर उसके रहते हुए भी शांत रहने में और मजबूत बनने में है?
0: हाँ, क्योंकि जीवन की मुश्किलातें कभी खत्म नहीं होती हैं, ये तो आप पक्का रख लो जब तक आप जिएंगे
1: जी।
0: आपके अगर एक आंख ठीक हो गई तो दूसरी में दर्द हो जाएगा, अगर आपका एक बच्चा ठीक हो गया तो दूसरे की प्रॉब्लम आ जाएगी, इधर वाला पड़ोसी ठीक है तो इधर वाला कुछ कटर पटर कर देगा, और ऑफिस में सब कुछ ठीक है तो घर में कुछ हो जाएगा, एक रिश्तेदार ठीक है तो दूसरे रिश्तेदार में कुछ हो जाएगा, समस्याएं चलती रहेगी, समस्याओं के चलते हुए जीना सीखो और खुश होकर के जीना सीखो। एक व्यक्ति था, एक महात्मा जी के पास गया, उसने कहा महात्मा जी मेरे जीवन में बहुत समस्याएं हैं, मैं क्या करूं, आप कोई तरीका बताओ ना समस्याएं खत्म हो जाए, मुझे रात को नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, चैन नहीं मिलता। तो महात्मा जी ने कहा तुम पहले मेरा एक काम करो फिर मैं तुम्हारा करूंगा। तो क्या करना है? तो बोला कि एक बाड़ा है बहुत बड़ा, उसमें मेरे 100 ऊंट खड़े हुए
1: जी,
0: तो कुछ ऊंट बैठे हैं तो सबको बिठा दो और जब सारे बैठ जाए तो आके सो जाना
1: जी।
0: तो व्यक्ति गया, जब गया तो 20 ऊंट बैठे हुए थे और बाकियों को नकेल पकड़ के बिठाने लगा, कच कच करके बिठाना पड़ता है ना ऊंट को थोड़ी आवाज करके, तो 20 में से 10 ऊंट खड़े हुए
1: जी।
0: अभी 10 बैठे नहीं थे, उससे पहले 10 खड़े हो गए। अब फिर उसने जोर लगाया कि किसी तरह से, तो अभी 15 बैठे तो वो पहले के 10 बैठे और खड़े हो गए, तो 15 ही बैठे। फिर जोर लगाता रहा, कभी इधर से बिठाए कभी उधर से बिठाए, तो ले दे के सुबह तक केवल 40 ऊंट बैठे, सुबह हो गई सोया नहीं
1: जी।
0: और महात्मा जी ने जब उसके सामने गया तो पूछा ऊंट बैठ गए? बोला नहीं बैठा, सारी रात में लगा रहा। बोला समस्याएं भी ऐसी है, 2 को बिठाओगे 4 खड़ी हो जाएंगी, 4 को बिठाओगे 6 खड़ी हो जाएंगी, अगर तुम सारी समस्याएं बैठ जाए फिर मैं चैन से सोऊं, ये इंतजार करोगे तो कभी नहीं सो सकोगे, समस्याओं को रहने दो, तुम चैन से सोना सीखो, जितनी तुमसे मैनेज होती है मैनेज करो, बाकी उनको छोड़ दो, कुछ समस्याएं तुम्हारे मैनेज करने से होंगी, कुछ समस्याएं अपने आप होंगी और कुछ समस्याएं किसी और के सहयोग से होंगी, सारी समस्याएं तुमसे नहीं सुलझेगी, इसलिए डिटैच रहो।
1: तो ये याद रखना है,
0: ये याद रखना कि सारे ऊंट कभी नहीं बैठेंगे,
1: सारे ऊंट कभी नहीं बैठेंगे, ये हमें याद रखना। कितना प्यारा एग्जाम्पल और इजी एग्जाम्पल है, ये याद रखने के लिए सहज है एकदम जी। अगर पावर टू फेस को सरल भाषा में समझना है और इसे डेली लाइफ में कैसे हम पहचान सकते हैं कि कहाँ पर सामना करना है कहाँ पे संभालना है?
0: मान लीजिए आप रास्ते चल रहे हो, प्रकृति का भी तो कई बार सामना होता है ना, तेज आंधी आ गई, तब तो आपको सामना करना है, सामना करने का मतलब है अपना बचाव करना है। अच्छा, कोई सांप बिच्छू आ गया, बचाव करना है, समाना थोड़े उस समय। लेकिन मान लीजिए किसी व्यक्ति ने चलते हुए आप पे ताना मार दिया कि देखो कैसे घोड़े की तरह से उछलता हुआ जा रहा है, उस बात को आपको समझना है
1: जी,
0: उस बात को आपको एक तरह से लेट गो कर देना है
1: जी,
0: उस बात को चित्त पे नहीं रखना है। करोड़ों मुख हैं, करोड़ों बातें, मैं किस किस को चित्त पे रखूं, मेरा चित्त इतना बड़ा है ही नहीं, काम की बातें रखूं कि फालतू बातें रखूं
1: जी,
0: तो कोई बात नहीं है, उसको मैं जैसा दिख

0: उसने बोल दिया, तो लेकिन मैं जो हूं वही हूं, उसके कहने से थोड़े मैं कुछ बन जाऊंगा। तो ये बात को आपको समझना है। अच्छा, मान लीजिए कोई व्यक्ति बिना ही बात आपके सामने आपके रास्ते में टेढ़ी बाकी गाड़ी चला रहा है, तो अब आप क्या करेंगे? अब उसका आप सामना नहीं कर सकते। तो गाड़ी पे टेढ़ा स्कूटर यूं ले जा रहा है, यूं ले जा रहा है, आपको किनारा पकड़ना है। आप समझ जाओ कि इसका बैलेंस नहीं है माइंड का, सामना करूंगी तो नुकसान मेरा होगा, मुझे किनारा पकड़ के जो पैसेंजर रोड पड़ा है मैं वहां से निकल जाऊं चुपचाप। तो अगर कोई ऐसा टेढ़ा बांका आदमी है तो किनारा करने में कल्याण, सामना मत करो, मैं कोई कम हूं क्या, मैं भी तुमको देख लूंगा,
1: आपको ओवर स्पीड के कारण खुद
0: एक्सीडेंट हो सकता है, आपका नुकसान हो जाएगा
1: जी। तो इस तरीके से आप परख सकते हैं डेली लाइफ में कहां पर आपको फेस करना है
0: और कहां पे आपको समाना
1: है जी। दीदी, जैसे विघ्नहर्ता हमारे बप्पा हैं, गणपति जी हैं, हम पूजा करते हैं तो हम उनसे ये सब सीखते हैं, भगवान से सीख के अपने गुण अपने अंदर धारण करनी होती है। तो देवी देवताएं जो दिखाया गया है कि वो भी युद्ध कर रहे थे असुरों से, दानवों से, तो उसके लिए भी साहस की जरूरत पड़ती होगी, धैर्यता की जरूरत पड़ती होगी। तो साहस का मतलब क्या, डर का बिल्कुल नहीं होना है या फिर डर के बावजूद भी सही कदम उठाना, इसको साहस कहते हैं?
0: देखो, साहस का मतलब ये होता है कि किसी भी काम को करने के लिए एक दृढ़ संकल्प और प्लस आत्मविश्वास कि मैं ये काम कर सकता हूं। जैसे कोई व्यक्ति डूब रहा है और मैं किनारे खड़ा देख रहा हूं, तो मेरे में एक तो ये आत्मविश्वास है कि मैं बहुत अच्छा तैराक हूं, मैं डूब नहीं सकता
1: जी,
0: और दूसरा मेरे में ये साहस है, मेरे में हिम्मत है कि मेरा शरीर बहुत स्वस्थ है, मैं इसको पकड़ करके अगर कंधे पे भी लादना पड़े, पेट पे बिठा तो मैं इसको बिठा के ला सकता हूँ, मेरे में शारीरिक मजबूती भी है, मेरे पास अच्छी तैराकी भी है, और प्लस मेरे भीतर एक दया और एक परोपकार का भाव भी है, कल्याण का भाव भी है, डूबते को बचाना ये मेरा कर्तव्य है। ये सारी भावनाएं मिक्स होती है, हिम्मत भी है, कौशल भी है, कल्याण की भावना भी है, तब वो साहस पैदा होता है। मान लो मैं तैराक हूं ही नहीं, साहस नहीं पैदा होगा। मान लो मेरे में दया भावना नहीं है, मरता है तो मरने दो, तो भी मैं वो काम नहीं करूंगी। मान लो मैं बहुत किसी जमाने में तैराक थी और अब बहुत शारीरिक रूप से कमजोर हूं, तो भी मैं नहीं कर पाऊंगी। तो साहस के लिए कई चीजें चाहिए, युक्ति भी चाहिए, कौशल भी चाहिए, दृढ़ संकल्प भी चाहिए, और एक ऊंचा लक्ष्य भी चाहिए। जैसे मुझे एक राक्षस को मारना है, तो क्यों मारना है, क्योंकि वो कईयों को खा रहा है, रोज उसको एक आदमी चाहिए खाने के लिए, रोज एक आदमी 365 दिन के 365 आदमी मरे, इससे अच्छा ये एक ही ना मर जाए
1: जी।
0: तो मेरे सामने एक ऊंचा लक्ष्य है, तो उस ऊंचे लक्ष्य के कारण मैं उस राक्षस को मारने को तैयार हुई। अगर आप स्थूल रूप में भी राक्षस मारने की बात सोचे, तो मेरे अंदर साहस है, मेरे अंदर युक्ति भी है, मुझे उसकी कमजोरी का पता है, तो मैं उस युक्ति को, उसकी कमजोरी को ध्यान में रख करके और उससे भिड़ जाती हूँ और मान लो उसको मार देती हूँ, तो ये मेरा साहस है। लेकिन साहस के साथ एक शब्द है दुस्साहस
1: जी। ओके जी,
0: तो दुस्साहस क्या होता है? कोई काम करने का मेरे अंदर दृढ़ संकल्प भी है, उमंग भी है और मेरे में ताकत भी है, लेकिन वो कर्म गलत है। जैसे चार लड़के आपस में बात कर रहे हैं कि आज ना अपन रात को 12 बजे ये जो मॉल है ना इसमें घुसेंगे और कुछ ना कुछ तो सामान लेके आएंगे, तो उनमें से एक लड़का अलग खड़ा हो जाता है, कहता है मैं नहीं जाऊंगा। तो ये चारों कहते हैं क्यों भाई, तेरे में इतना भी साहस नहीं, क्या तू इतना डरपोक है? वो कहता है मेरे में साहस तो है पर मेरे में दुस्साहस नहीं
1: जी,
0: क्योंकि ये दुस्साहस का काम चोरी करना। अच्छा, मान लीजिए क्लास के दो स्टूडेंट कहते हैं कि अभी जब टीचर आएगा ना तो उस टीचर का ना एक नाम निकाला है, वो उसके सामने बोलेंगे, बोलते हुए निकलेंगे, वो सुनेगा। एक कहता है मैं नहीं बोलूंगा। वो पूछते हैं क्यों तुम टीचर से इतना डरते हो? हम तो इससे बिल्कुल भी नहीं डरते। वो कहता है मैं डरता नहीं हूं लेकिन मैं ये दुस्साहस नहीं करूंगा, आखिर तो मेरा गुरु है, पूजनीय है, तो मैं ये दुस्साहस नहीं करना चाहता। तो अगर वो काम नैतिकता के विरुद्ध है, अगर मैं फिर भी उसे करती हूँ तो वो दुस्साहस है, वो साहस नहीं। साहस वो तब तक है जब तक वो कर्म नैतिक।
1: जी, तो इससे परख के हमें डिसाइड करना
0: है। हाँ, अपने साहस को तब
1: यूज करना है। जी बिल्कुल। और इसके साथ साथ कई बार हमें पता होता है कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन जैसे दोस्तों के प्रेशर में आकर के, फेल्यूर या फिर रिजेक्शन के डर से, और फिर लोगों की ओपिनियन का डर, ईगो के कारण भी हम रुक जाते हैं। तो उस समय अपने इस करेज, साहस को कैसे फिर एक्टिवेट करें, अपने आप को अपना सोमान कैसे याद दिलाएं?
0: हाँ, पहले मुझे एक घटना ये याद आ गई कि आज ही मैं एक समाचार सुन रही थी। दिल्ली में कोई प्रोफेसर था जो गाना बजाना करता था, और उसके घर के नीचे कुछ लोग 7-8 बैठ के शराब वराब पी रहे थे और हल्ला मचा रहे थे। तो जो नीचे आया और उसने बोला कि भाई तुम यहाँ हल्ला मत मचाओ, ऊपर पढ़ने में बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, तो वो आठों ही उसको मारने लग पड़े और पीट पीट के उसको मारी थी।
1: जी,
0: कल की खबर है। अब ये आठों लड़के, क्योंकि कोई 19 साल का था, 20 साल का था, 22 का था, शरीर ताकत तो थी लेकिन, और वो प्रोफेसर तो थोड़ा एज वाला था। अब इनके इस क्रम को हम साहस का क्रम नहीं कह सकते, क्योंकि इन्हें तो पकड़ा जाएगा, जेल हो जाएगी। साहसी व्यक्ति की तो महिमा होती है, कई लोग आग में जलते व्यक्ति को अंदर जाके बचा के ले आते हैं।
1: जी,
0: आपने देखा होगा कई बार कई लोग कोई फिसल करके गिर गया, उसको तुरंत उठा लेते हैं, हॉस्पिटलाइज कर लेते हैं। ये साहस का कर्म है, तो बचाने वाला कर्म साहस का माना जाएगा, मारने वाला। हाँ, अगर आप दुश्मन को मार रहे हो बॉर्डर के ऊपर, चार दुश्मन आपके सामने और आप अकेले हो, अकेले ने चारों को मार गिराया, तब वो साहस माना जाएगा, क्योंकि आप देश की रक्षा कर रहे हो। लेकिन आप देश के नागरिक को, जो आपको एक अच्छी बात सिखा रहा है, और फिर आप अपने अहंकार, अपनी इंद्रियों की गुलामी, उसके कारण अगर किसी का नुकसान करते हो, तो वो साहस नहीं माना जाता है। अभी आपने कहा कि साहस के लिए वो मनोबल या स्वमान कैसे पैदा करें। एक तो हमारे ना कुछ संस्कार होते हैं जन्मजात, जो हमें मोटिवेट करती है। मान लो हमने अपने पिता को ऐसे करते देखा, मान लो हमने अपने दादा के बारे में ऐसी स्टोरी सुनी है, तो हमारे खून में वो चीज होती है। बाकी कोई करे या ना करे, लेकिन मैं जरूर करूँगा, ये मन में आता है। दूसरा, अगर हमने कुछ ऐसा पॉजिटिव साहित्य पढ़ा होता है
1: जी,
0: और उस समय कोई घटना याद आ जाती है कि अमुक समाज सेवी ने उसको कैसे बचाया था, या अमुक देशभक्त ने कैसे किसी को बचाया था, तो वो घटना भी हमें मोटिवेट करती है
1: जी।
0: और कई बार अगर हम ऐसे चिंतनशील, जो मतलब जब हमारे सामने सिचुएशन नहीं है, पर तब भी हम मन में चिंतन कर रहे होते हैं कि देखो इस जीवन की वैल्यू क्या है, इस जीवन की वैल्यू यही है कि हम किसी के काम आए। अगर हम किसी के काम ही नहीं आए, तो ये तो पत्थर ही है, पत्थर किसके काम आता है, पड़ा रहता है। तो अगर हमारा चिंतन श्रेष्ठ है, तो उस समय उस चिंतन की बदौलत भी हम अकेले भी उस कर्म में कूद जाते हैं। अगर ये चीजें नहीं है, तो फिर हम किसी के बहकावे में भी आ जाते हैं, देखा देखी किसी बाकी भाग गए तो मैं भी भाग जाऊं, फिर हम ये भी कर लेते हैं।
1: जी बिल्कुल। तो इस प्रकार से जैसे दीदी ने कहा, तो आप अच्छे साहित्य पढ़िए, अच्छे लोगों की स्टोरीज पे ध्यान दीजिए, ताकि आपके
0: अंदर साहस पैदा
1: हो। यस जी। दीदी, क्या अपनी गलती स्वीकार करना, किसी को माफी मांगना, या जरूरत पड़ने पर ना कहना भी हिम्मत का हिस्सा है?
0: बहुत बड़ी हिम्मत का हिस्सा है अपनी गलती को एक्सेप्ट करना। मैंने अभी एक आर्टिकल लिखा है
1: जी,
0: कि मैं एक स्कूल में गई, तो वहां एक बहन थी जो ब्रह्मा कुमारी की स्टूडेंट नहीं थी, पर जुड़ी हुई थी
1: जी।
0: तो हमें देखते ही हमारे पास आ गई, दीदी दीदी, तो उसका मुंह देख के हमको लगा है थोड़ी उदास है। हमने कहा भी क्या हुआ? तो उसने कहा, दीदी बात ये है कि आज मैं स्कूल में 10 मिनट लेट आई
1: जी,
0: और प्रिंसिपल ने मुझे कहा कि तुम 10 मिनट लेट आई है तो अच्छी बात नहीं है, थोड़ा सख्त लहजे में बोला, तो मुझे रोना आ गया
1: जी।
0: तो मैं तब से अभी तक रो ही रही थी, अभी जब आप आए तो आपको देख करके मैं आपके पास आ गई
1: जी।
0: तो हमने उसको तो थोड़ा उस समय तो प्यार दिया, पुचकारा, कोई बात नहीं है, कल से तुम टाइम पे आना, ऐसे ऐसे। पर बाद में मेरा चिंतन चला कि एक तो हमने गलती की और ऊपर से हम रोए, तो डबल गलती हो गई
1: जी।
0: अगर हम गलती करते हैं तो हमको कहना चाहिए कि सर आपने मेरा ध्यान खिंचवाया, कल से मैं 5 मिनट पहले हूँ, मैं आपकी बड़ी आभारी, जो हमारा ध्यान खिंचवाता उसके लिए तो हम थैंकफुल होते
1: राइट।
0: और अगर हम रोते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि देखो आगे से मुझे कुछ मत कहना, नहीं तो मैं रो पड़ूंगी। मैं चाहे गलत करूं या कुछ भी करूं, पर मुझे कहना मत
1: जी,
0: छुई मुई। तो वो व्यक्ति तो आधारित है, कोई मुझे पुचकारे, कोई मुझे प्यार दे, मेरे आंसू पोंछे, मुझे धैर्य बंधाए। तो मैंने मन में सोचा 25 साल की हो गई है, लेकिन रोने का काम तो 2 साल का बच्चा भी कर लेता है, तो इसने अभी तक वही सीखा, तो 25 साल में और क्या सीखा।
1: जी सही बात है, तो जब भी हम रोए तो इस कहानी को हम याद करें।
0: तो इसलिए रोना बहादुरी नहीं है, आंसू पोंछना बहादुरी है।
1: सही बात,
0: रोने वालों की तो लंबी लाइन, हम भी उसमें लग गए तो आंसू कौन पहुंचे।
1: अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी,
0: एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी, रियलाइज करना और सामने वाले को थैंक्स देना कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने आज मेरी जिंदगी की एक कमी निकाल दी, जैसे कांटा निकाल दिया, आगे से मैं कभी भी लेट नहीं
1: होंगी।
0: तो ये बहुत जरूरी,
1: मतलब अपने नजरिया परिवर्तन करना बहुत जरूरी है। ये सब घिसा पीटा चीजें, रोना
0: रोना धोना, शिकायत करना, हमारा प्रिंसिपल बड़ा सख्त है, पता है डांट मार दी, अरे तुम टाइम पे नहीं आओगे, टीचर होगे तो बच्चे टाइम पे कैसे आए,
1: तो कंप्लेंट्स नहीं,
0: हाँ कंप्लेंट्स नहीं करने।
1: जी दीदी, नो कहना कई बार डिफिकल्ट लगता है, इसके लिए भी हिम्मत चाहिए, तो कैसे पता चलेगा कहाँ नो करना है और कैसे करना है।
0: भाई मैं अपने जीवन का आपको एक एग्जांपल दे सकती हूँ।
1: जी,
0: जिन दिनों में कॉलेज में थी तो मेरी एक सखी थी, बड़ी अच्छी प्यारी पक्की सखी थी, सामने उसका घर ए गली में, बीच में सड़क जाती थी।
1: जी,
0: संस्कार तो ओपोजिट थे एक दूसरे के, मैं ज्ञान में चलती थी, सिंपल थी, वो बड़े घर की, बड़े अमीर घर की थी, तो पैसे वाली थी, तो प्यार बहुत था, कोऑपरेटिव थे एक दूसरे के, उसके दिल की बात वो मुझे ही आके सुनाती थी, मैं उससे 1-2 साल बड़ी और 1-2 क्लास आगे थी।
1: जी,
0: तो पहले हम क्या करते थे कि कॉलेज जाते थे तो टिफिन नहीं लेके जाते थे, केले खाते थे, 50 पैसे में, उस जमाने में 4 केले आते थे बड़े बड़े, 2 केले वो खाती थी, 2 में हमारा पेट भर जाता।
1: जी,
0: फिर उसने कहा नहीं अपन टिफिन लेके आया करेंगे, ठीक है फाइनल हो गया, टिफिन लेके आई वो, मैं भी लेके आई, दोनों ने खोला, लोन में बैठे रिसेस में, मैंने पूछा तुम क्या लेके आई हो, मैंने झांक के देखा, समझ में नहीं है वो क्या लेके आई, और उसने देखा तो मेरा तो पराठा था और आलू की सब्जी थी, तो मैंने कही क्या चीज है, कुछ नहीं लग रही, बोलिए ना अंडे का कुछ बनाओ, तो मेरे पास मत बैठ, कहती क्यों, मैंने कहा देख हवा तेरे अंडे को छू के फिर मेरे पराठे को छूएगी, तो मैं तो नहीं बैठूंगी, तो बोली मैं तो तुमको छोड़ के नहीं जाऊंगी, मैंने कहा मैं तेरे को छोड़ के जाऊंगी, तो मैं उठ के ना दूर एक पेड़ था उसके नीचे जाके बैठ गई शांति से।
1: जी,
0: बाबा के याद में मैंने खाया और फिर टिफिन धुलाई करके फिर मैं आई, तो मुझे कहती है ना खाने में बिल्कुल मजा नहीं आया, मैंने कहा क्यों क्या हुआ, कहती है कि तू उठ के चली गई, मैंने कहा दोनों में से एक चीज चुन ले, चाहे अंडा चाहे मैं, कौन प्रिय, अंडा प्रिय है तो मैं कभी पास नहीं बैठूंगी, मैं प्रिय हूँ तो अंडा नहीं लाई, बोले मैं अंडा छोड़ दूंगी, ठीक है कल से हम साथ साथ बैठे, अंडा छोड़ दिया। तो ये ना कहने की आप में ताकत होनी चाहिए, जो चीज मेरे अनुकूल नहीं है मुझे नहीं चाहिए, चाहे मेरी फास्ट फ्रेंड है चाहे कोई भी हो, अंडे के साथ मेरा समझौता जीवन में कभी हो ही नहीं सकता।
1: जी,
0: तो जब मेरी दृढ़ता होगी तो वो व्यक्ति झुकेगा, और अगर मैं झुक गई तो वो तो और ज्यादा अकड़ेगा, आज अंडा लाई कल नॉनवेज भी लाएगी।
1: जी बिल्कुल, तो इस प्रकार से
0: अपने उसूलों पे दृढ़ रहिए, जिंदगी उसूल का नाम है, जिंदगी कोई लिज लीजिए चीज थोड़ी है कि आप इधर लुढ़क गए उधर लुढ़क गए,
1: दृढ़ता अपनी धारणाओं पे दृढ़ता। जी, तो हम सिर्फ फेस्टिवल्स में भगवान को देवी देवताओं को याद नहीं करते, लेकिन उनके गुणों को समझ के अपने अंदर धारण करने की बात है।
0: बिल्कुल, अबे आप देखिए ना देवी देवताओं के सामने भी कैसी कैसी बातें हैं, ये दुर्गा मैया बैठी हुई है, राक्षस आता है कहता है तू मेरे महल की रानी बन जा, मैं तेरे को जेवर दूंगा, मैं तेरे को सैकड़ों दासियां दूंगा, तुम ये हथियार क्यों लेके बैठी हुई हो, वो अपने लक्ष्य पे दृढ़ है, उसे ना महल चाहिए ना दासियां चाहिए ना सोना जेवर चाहिए ना 36 प्रकार का व्यंजन चाहिए, उसको चाहिए नैतिकता की स्थापना,
1: जी
0: उसको चाहिए असुरों का संहार, तो वो किसी प्रलोभन में नहीं आती, अपनी लक्ष्य पे दृढ़ और वो असुरों का संहार करती है। अगर वो लिजलिजी हो छुई मुई हो तो एक मिनट में उनके पंजे में आ जाएगी, फिर वो करे क्या की मानवता की।
1: जी,
0: तो देवताओं के जीवन में आप देखोगे श्री कृष्ण जी गेंद चली गई यमुना में, बच्चे कहते हैं गेंद चाहिए गेंद चाहिए, अब वो साहसी है और पता है इसमें कालिया नाग है, उसके कारण सारा यमुना का जल जहरीला हो गया, गांव वाले इस पानी को यूज नहीं कर सकते, कालिया नाग को मारना बहुत जरूरी है।
1: जी,
0: तो वो एक नैतिक उद्देश्य को लेकर के यमुना जी में प्रवेश करता है।
1: जी,
0: और अपने साहस के कारण उसको मारता भी है और वो मुक्त होती है जहर से। तो मान लीजिए हमने स्टोरी को सिर्फ सुना, सुना अच्छी बात है ना, सुनने वालों से तो सुनने वाले भी अच्छे हैं, पर अगर मैं ऐसा साहस अपने जीवन में पैदा करूं कि मेरा इष्ट श्री कृष्ण अगर ऐसा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती
1: जी,
0: तो तब हम कहेंगे कि हमने कृष्ण जी को इष्ट सही तरीके से माना है, दुर्गा जी को इष्ट सही तरीके से माना है।
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए गणेश चतुर्थी के दौरान आप अपने इष्ट के लिए क्या करना चाहते हैं, उनसे क्या सीख रहे हैं, वो भी आप हमें ज़रूर बता सकते हैं 9414151415 इस नंबर पर व्हाट्सअप करके। और दीदी पूछना चाहेंगे कि अगर कोई व्यक्ति लगातार मान लीजिए क्रिटिसिज्म कर रहा है या हम अपोजिशन फेस कर रहे हैं और उस समय अपने जो कॉन्फिडेंस है, साहस है, धैर्यता है, उसे कैसे बना के रखें।
0: कई लोग हमारी क्रिटिसिज्म अपने स्वार्थ के कारण करते हैं। जैसे मान लीजिए ऑफिस में दो लोग हैं, वो व्यक्ति मेरी क्रिटिसिज्म करता है कि कल को इसकी प्रमोशन ना हो, या तो ये थोड़ा सा डाउन आ जाए, या तो ये लेट आए, या तो कोई गलती करे, या तो अपना काम करना बंद कर दे ताकि इसकी शिकायत हो और इसकी जगह मेरी प्रमोशन हो जाए। ये स्वार्थ होता है। कई बार घरों में भी कई लोग ऐसे स्वार्थी होते, इसको जो चीज़ मिल रही है वो मुझे मिल जाए, और हमारे कई बार वो प्रूफ बना लेते हैं कि देखो ये गलती कर रहा है, मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ। लेकिन ऐसा व्यक्ति खुद गलती प्रूफ नहीं होता है, उसके भी जीवन में बहुत गलतियां होती हैं और मैंने भी वो गलतियां नोट कर रखी, लेकिन मैं उसकी तरह चीप नहीं हूँ कि मैं उसकी भी गलती जगह जगह उड़ाऊं या मैं उसका वीडियो बनाऊं। तो मैं क्या करती हूँ, उचित समय की प्रतीक्षा करती हूँ। ठीक है, ये जो करता है इसको करने दो, मेरा कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मैं अपने काम में एक्यूरेट हूँ, मैं अपनी हर चीज में एक्यूरेट हूँ, और ये एक मेरे धैर्य की परीक्षा है। तो मैं उतावली नहीं बनूंगी, मैं बदला नहीं लूंगी, प्रतिशोध नहीं लूंगी, इस वाले आचरण को फॉलो नहीं करूंगी, ये मेरा गुरु थोड़े है जो मैं इसको फॉलो करूं। मेरे गुरु तो मेरे उसूल है, या मेरे से और बहुत बड़े लोग हैं जिनसे मैंने अच्छी बातें सीखी
1: जी।
0: तो उन्होंने मुझे यही सिखाया कि किसी की चीप हरकत से ना तो इरिटेट हो, ना अपनी हिम्मत छोड़ो, और ना ही अपने लक्ष्य से डामाडोल हो, और ना ही उस व्यक्ति से बदला लो
1: जी।
0: उचित समय की प्रतीक्षा करो धैर्य से, और उसके लिए सुभावना रखो
1: जी,
0: ये भटका हुआ इंसान है, इसके लिए सुभावना रखो, एक समय आएगा वो जरूर बदलेगा, हो ही नहीं सकता कि वो ना बदले। तो आप थोड़ा सा जल्दबाजी से रुकिए, थोड़ी सी प्रतीक्षा कीजिए, हो सकता है भगवान ने आपके लिए कोई और बड़ी अपॉर्चुनिटी डिस्गाइस में भेजी हो। ये जो व्यक्ति है ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन के आया है। जैसे मैंने आपको बताया था एक बार कि हमारे यहाँ एक रामलोचन भाई था
1: जी।
0: तो रामलोचन भाई जब ज्ञान में चला कलकत्ता में, तो उसके बाद दिल्ली में आया
1: जी।
0: दिल्ली में एक जगह इसकी नौकरी लगी, अब ऑफिसर का ऑफिस था उसमें इसको थोड़ा बहुत कुछ काम था। तो ये बाबा का पक्का बच्चा था, और जैसे ही 10:30 बजते थे जहां भी होता था योग में बैठ जाता था
1: जी।
0: तो कुछ लोगों ने कहा चलो इसकी शिकायत करते हैं, इसको निकलवा देते हैं, किसी और कोई नौकरी मिल जाएगी। तो अफसर को बता दिया कि आपने किस बाबा को रख लिया है, तो जब देखो ध्यान में बैठा रहता है, काम धाम क्या करेगा। बोला अच्छा ऐसा है, कब कब ध्यान में बैठता है। बोला आज आप आ जाना 10:30 बजे, आपको दिखाएंगे। 10:30 बजे वो कुछ काम कर रहा था और ऐसे ध्यान में बैठ गया
1: जी।
0: और अफसर ने देख लिया, तो अफसर ने उसको बुलाया, तो तुम क्या कर रहे थे। बोला देखो जी, इस ऑफिस के बड़े आप हो, हम आपको सलाम करते हैं ना, दुनिया का बड़ा परमात्मा, तो दिन में 3-4 बार उसको भी हम सलाम करते हैं, 10:30 बजे, 12 बजे, 5 बजे, तो उसको सलाम करने का टाइम था, मैं तो उसको सलाम करने गया था, 2 ही मिनट का टाइम होता है, सलाम करके मैं वापस आ गया। तो बोले ये तुम कैसे सलाम करते हो, तो थोड़ा ज्ञान सुनाया। पर तो ऑफिसर ने क्या कहा, तू वहां की नौकरी छोड़ के ना तू मेरी पर्सनल सेवा में आ जा, उसकी प्रमोशन कर दे। लोगों ने तो सोचा था इसको नौकरी से हटवा देंगे
1: जी,
0: पर हो गई उसकी प्रमोशन
1: जी।
0: तो कई बार क्रिटिसिज्म गुप्त रूप में आपकी उन्नति का साधन बन जाता है।
1: इसीलिए आप
0: घबराइए मत,
1: घबराइए मत, धैर्य रखिए। और उस
0: अगर वो क्रिटिसिज्म राइट है, जैसे मान लीजिए मेरा ऑफिस में आने का टाइम 10:00 बजे का है, मैं रोज 10:30 बजे आती हूँ, तो मुझे बदलना पड़ेगा क्योंकि मैं गलत
1: हूँ। गलत है,
0: लेकिन मैं गलत नहीं हूँ, फिर भी मेरी स्वार्थवश शिकायत हो रही है, तो फिर मुझे मस्त रहना है, निश्चिंत रहना
1: जी। अगर जो बार बार अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, उससे मैं अपने आप से कैसे बात करेंगे, क्योंकि

0: धैर्य स्थिति के साथ रखना है। धैर्य को अगर हमने खो दिया, हमारे चेहरे पे शिकन आ गई, तो वो खुश हो जाएंगे कि देखो हमने इसको हिला दिया, हमारी जीत हो गई। तो धैर्य ऐसे रखना है बहन जी कि जीवन में पेपर तो आते ही, एक बात तो ये भी मेरा पेपर है, दूसरी बात बोया हुआ बीज उगता है। हो सकता है मैंने पिछले जन्म में किसी को ऐसे किया होगा, वो बीज उग गया, जितने दिन मैंने किया उतने दिन करके वो फल भोग करके मेरी मुक्ति हो जाएगी। तीसरी बात, मालूम नहीं कब कौन शरीर छोड़ दे, क्या पता है कृष्ण जन्म करने वाला कल सुबह उठे ना उठे, तो कोई बात नहीं, सहन करने में क्या जाता। चौथी बात, क्या पता मैं रहूं ना रहूं, तो क्या जाता है सहन करने, कुछ भी स्थाई नहीं है यार। सूर्य उगता है, दोपहर होती है, सांझ हो जाती है, तो जीवन में कोई भी बात स्थाई नहीं है, ना महिमा स्थाई है, ना ग्लानी स्थाई, तो फिर मैं क्यों भयगा।
1: सही बात है, तो अपने आप से ऐसे बातें करनी है। लेकिन जब चीजें हमारे हिसाब से नहीं होता है तो सबसे पहले धैर्य क्यों टूट जाता है? धैर्य रखने और चुपचाप सब कुछ सहन करने में क्या अंतर है?
0: चलो आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ
1: जी।
0: धैर्य मानव की पहचान है, धैर्य टूटना मतलब मानव जाति से डाउन आ जाना। एक किसान बीज बोता है, कितना धैर्य रखता है
1: जी।
0: एक माँ बच्चे को जन्म देती है, पालती है, कितना धैर्य रखती है कि एक दिन ये 20 साल का बड़ा होगा। जब वो जन्मा तब तो बिल्कुल छोटा सा है, पर उसको धैर्य, ये तो नहीं कहती है कि दिन में 20 साल का हो जाए। हर रोज कितनी मेहनत करती है, पेड़ को सींचने वाला कितनी मेहनत करता है, किसी बीमार की सेवा करने वाला कितना धैर्य रखता है, नहीं नहीं इसका घाव ठीक होगा, मुझे रोज दवा लगानी, धैर्य से चलेगा
1: जी।
0: एक बार एक बंदर आदमी के बगीचे में घुस गया और उसने बहुत सारे आम तोड़ ली, तो आदमी ने उसको बहुत पीटा
1: जी।
0: तो बंदर ने अपने सरदार से जाके शिकायत की कि आदमी ने मुझे बहुत मारा। तो बंदर ने कहा आज से आदमी के बगीचे में जाना बंद, हम अपना बगीचा लगाएंगे। तो जंगल के सारे बंदरों को इकट्ठा किया और सबको काम दिया सरदार ने, एक एक गड्ढा खोदो। तो जंगल में तो फ्री जगह पड़ी होती है, एक एक बंदर ने अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा गड्ढा खोद लिया। फिर बोला पेड़ों के नीचे जो आम की गुठलियां पड़ी वो चुनके लाओ। सब चुनके ले आए, बोला एक एक गड्ढे में एक एक गुठली डालो और जो पेड़ों के नीचे मिट्टी खाद वाली मिट्टी पड़ी है वो उठा उठा करके गुठली के ऊपर डालो
1: जी।
0: वो काम भी कर दिया। फिर बोला नदी से पानी लेके आओ, अब इसमें पानी डालो
1: जी।
0: और एक गड्ढे का मालिक एक बंदर
1: जी,
0: उसमें पेड़ उगेगा, उसी को देखभाल करनी है, उसी को उसकी खाद निकालनी है, उसी को पानी डालना है, और फिर जब फल लगेंगे तो वो वही खाएगा। आदमी के बगीचे में जाने की जरूरत ही नहीं। तो बंदर बैठ गए, सुबह हो गई कुछ नहीं निकला गड्ढे में से, अगली शाम हो गई कुछ नहीं निकला, अगली सुबह हो गई, बोला हमारे साथ धोखा हुआ है, अरे हमारी तो गुठली भी गई, कम से कम हम गुठली को तोड़ के उसकी गिरी तो खा लेते। तो सारे बंदरों ने फटाफट वो गुठली निकाली, गिरी निकाली, खा गए और फिर भाग गए
1: जी।
0: आज तक बंदर बगीचा नहीं लगा पाए
1: जी।
0: बंदरों को कोई काम नहीं है
1: जी।
0: स्कूल उनको नहीं जाना, सिलेंडर उनको नहीं भरवाना, बिजली बिल उनको नहीं देना, किसी की ब्याह शादी में नहीं जाना, गर्मी सर्दी के कपड़े नहीं बनवाना, खाली घूमते, जंगल खाली पड़ा है, पानी भी है, खाद भी है, गुठली भी है, क्यों नहीं लगा पाते
1: जी।
0: सिर्फ एक ही चीज नहीं, धैर्य।
1: धैर्य
0: और आदमी में धैर्य। मैं उस दिन दिल्ली में थी तो गाड़ी में बैठी थी, तो ड्राइवर बैठा था
1: जी,
0: भयंकर भीड़ थी, कहता है दीदी ड्राइवर में कुछ और हो या ना हो धैर्य बहुत अच्छी। मैंने कहा तुमने 16 आने की बात कही,
1: सही बात है,
0: अगर धैर्य नहीं होगा ना वो रोज गाड़ी ठोकेगा, और धैर्य होगा तो इतना धीरे धीरे निकालेगा, कभी उसकी गाड़ी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, और एक्सीडेंट होते ही तब जब धैर्य नहीं,
1: तो जीवन भी वैसा ही,
0: जीवन भी वैसा ही,
1: एक्सीडेंट तब होगी अगर धैर्य नहीं होगा तो जी। दीदी जैसे आपने बंदर की बात कही और परिणाम तुरंत नहीं मिलता, पेशेंस बनाए रखने चाहिए, तो इसके लिए मन को ट्रेन कैसे किया जा सके, धैर्यता रखो?
0: हाँ, क्योंकि मन बहुत जल्दी उतावला हो जाता है, मन को तुरंत चाहिए, और आज के जमाने में तो जल्दबाजी इतनी है, बात मत पूछो, क्योंकि साइंस ने दिखा दिया बटन दबाओ चीज हाजिर, तो वो व्यक्ति भी सोचता है मैं संकल्प करूं और चीज हाजिर हो जाए
1: जी।
0: फिर हम कहानियां सुनते हैं, भारत में तो एक परी थी, उसने कहा कि तुम इस कागज को ऐसे मोड़ दो तो तुम्हारी सब चीजें, तो हम कहानियां सुन सुन के भी हम थोड़े से ऐसी हो गई कि शायद चीजें फटाफट हाजिर हो जाती है, लेकिन वो कहानियों की बात अलग है, साइंस की बात अलग है, रियल जिंदगी की बात अलग है। तो हमको ये देखना है कि रोज के जीवन में कितनी चीजें बटन दबाते ही नहीं होती हैं। रोटी को आप पहले आटा गूंथते हो, तवे पे डालते हो, पलटते हो, फिर फूलती है, टाइम तो लगता है ना। चावल चूल्हे पे रखते हो, धीरे धीरे पकते हैं, अगर आपने तेज आंच कर दी तो जल जाएंगे पर पकेंगे नहीं। सब्जी भी ऐसे ही होती है, कपड़े भी ऐसे ही धीरे धीरे धुलते हैं, कोई भी काम, झाड़ू भी ऐसे धीरे धीरे लगती है। अगर आप मकान को पेंट करवा रहे हो तो ब्रश से धीरे धीरे करते हो, ऐसे थोड़े है कि पूरा कनस्तर दीवारों पे उलेंड दिया और पेंटिंग हो गई, ऐसे कभी नहीं होता है। जीवन की कितने खाना खाते हो, चबा चबा के एक एक टुकड़ा खाते हो, ऐसे थोड़े है कि पूरी रोटी निगल जाते हो, नुकसान हो जाए। तो जीवन की हर क्रियाएं धीरे धीरे पेशेंस के साथ।
1: जी, तो ऐसे हम बात कर सकते हैं अपने आप से, कि दीदी ने जैसे कहा एक साथ अगर खाना पूरा खा ले तो भी तबीयत खराब, तो ये बहुत बड़ा एग्जांपल है, धीरे धीरे चीजें करनी है।
0: धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल दिए।
1: जी बिल्कुल। तो रिश्तों में जो सामने वाला अगर हमारी बात नहीं समझ रहा है, तुरंत रिएक्शन देने के बजाय जैसे आपने कहा कि पेशेंस को बना के रखना है, तो पेशेंस का अर्थ है इंतजार करना, इंतजार के दौरान अपनी इनर स्टेबिलिटी को बना के रखना। तो इनर स्टेबिलिटी को बना के रखने के लिए, क्योंकि इंसान है और मन जैसे भटकता है तो बार बार उस इंसान के बारे में सोचना, उस स्मृतियों में जाना, या अगर धोखा दिया है या किसी ने चीटिंग किया है तो उन बातों के ऊपर मन चला जाता है। तो कैसे अपने इनर स्टेबिलिटी को बना के रखें?
0: जाता है, मन तो बार बार जाता है। देखो, कल मैं क्लास कराने गई तो किंदौर की बहन आई हुई थी, उसने कहा कि मेरा पति 2.5 महीने मैं उसके साथ रही, पर वो तो बिल्कुल ही राक्षस आदमी था, मारपीट बहुत करता था, मैं उसको छोड़ के आ गई। छोड़ के तो आ गई हूँ, मैं जाना भी नहीं चाहती, लेकिन बार बार मेरा मन कहता है मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो मैंने उसको कहा कि देखो, व्यक्ति चलते चलते ठोकर खाता है, गिर जाता है, तो गिरने के बाद क्या करता है, फिर खड़ा होकर के दौड़ता है। अगर वो वहीं खड़ा होकर कहता रहा इस पत्थर ने मुझे ठोकर क्यों मारी, इसने ठोकर क्यों मारी, तो उसकी तो गति ही रुक जाएगी। ठोकर लग गई, लग जाती है, जीवन है, गलतियां हम भी कर देते हैं, दूसरी भी हिसाब किताब भी होती है। लेकिन गिरना बुराई नहीं है, पर गिर के उठना अगर हम छोड़ देते हैं तो वो बुराई है।
1: जी,
0: गिर के उठो और फिर दौड़ो, अभी जिंदगी बहुत शेष है, क्योंकि तो आई 20-22 साल तक मैंने, डॉक्टर थे रेडियोलॉजिस्ट
1: जी,
0: और अपनी जॉब भी करती है। मैंने कहा तुम तो अपने पांव पे खड़ी हुई हो, तो तुमको बार बार उस बात को याद करने की क्या आवश्यकता है, जो बीत गया उसको फुल स्टॉप लगाओ, आगे बढ़ो। लेकिन व्यक्ति आगे तब बढ़ता है जब आगे उसको कुछ सार्थक कर्म दिखाई देता है।
1: जी,
0: अगर वो किसी सार्थक लक्ष्य को नहीं लिए हुए ना, तो फिर पीछे मुड़ता है। एक कोरबा की बहन आई थी हमारे पास
1: जी,
0: 50 साल की उम्र में डॉक्टर पति ने उसको तलाक दे दिया। 50 साल की उम्र कोई तलाक देने की होती है? 2 बच्चे, एक बेटा एक बेटी, वो भी जॉब कर रही थी, मतलब बड़े हो गए थे
1: जी।
0: तो मैंने पूछा क्यों दिया, बोला हॉस्पिटल में कोई नर्स थी, उसने इनको बहला लिया, फुसला लिया, इनका पैसा देखा और तलाक हो गया। तो बोली तलाक के बाद मैं ना तो दुखी हुई ना रोई, ठीक है जाओ। और मैंने अपने जीवन का एक लक्ष्य लिया, इधर एमपी में और छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसे एरियाज हैं जिनको हम कहते हैं आदिवासी एरिया
1: जी।
0: तो बोली मैंने अपने बच्चों को कहा बेटा तुम जॉब कर रहे हो, दोनों भाई बहन घर संभालो, मैं आदिवासियों की सेवा में जा रही हूँ। तो कुछ महिलाओं को हमने ग्रुप बनाया
1: जी,
0: और हम आदिवासी बस्तर एरिया में एक बिल्कुल इंटीरियर जगह में गए, वहाँ की जो महिलाएं थी उनको पढ़ना सिखाया, सिलाई सिखाई, और जब प्रसूति होती थी तो वो कुछ और ही तरीके से प्रसूति करवाते थे, बड़ा तकलीफ देह तरीका था, तो वो भी इजी तरीके से बच्चे के जन्म के टाइम कुछ करना होता है, वो भी सिखाया। तो ये सब मैं करती रही, कई समय बीत गया। कुछ लोग ऐसे भी थे जो थोड़ा सा नमक उनको दे जाते थे, बदले में शहद ले जाते थे। हमने उनको बताया शहद बहुत महंगा है, नमक के बदले शहद मत दो
1: जी।
0: तो ऐसे करके उनका जीवन स्तर उठाया, तो गवर्नमेंट तक हमारी बात पहुंची और फिर राष्ट्रपति ने हमको पुरस्कार दिया। तो अगर मैं वहां बैठी रोती रहती तो क्या होता,
1: राष्ट्रपति पुरस्कार नहीं,
0: नहीं मिलता। हमारी पूरी टीम को मिला, वो मधुबन आई, पूरी उसने स्टोरी सुनाई। तो बोली उस जगह का हमने नाम रखा अबूझमाड़, जहाँ मैंने काम किया। अबूझमाड़ मतलब जिसको कोई पूछता ही नहीं था, जिसकी कोई जान पहचान ही नहीं थी। और वो एक लक्ष्य पूरा करके उस जगह का मैं फिर घर आई। घर आई तब तक वो जो नर्स थी उसने पति को छोड़ दिया था
1: जी,
0: तो वो फिर आया भटकता हुआ कि मुझे रख लो। तो मैंने बच्चों को कहा भाई तुम्हारा बाप रखो, तो उसको हमने फिर जगह दे दी, बैठक में ठीक है रहो, पहले जैसा तो अभी नहीं रहेगा संबंध, लेकिन दो रोटी मिलती रही। वो तो चली गई सब कुछ लेकर के, पैसा वैसा
1: जी।
0: तो जिस व्यक्ति के जीवन में एक लक्ष्य होता है, समाज की सेवा करूं, दूसरों के दुख दूर करूं, वो अपना दुख भूल जाता है। नहीं तो वो बैठा बस बार बार ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, भाई सोचने से क्या होगा, कहीं जीवन को अच्छे लक्ष्य में नियोजित करो ना।
1: जी जी बिल्कुल। तो इस प्रकार से आप दूसरा रास्ता ढूंढना शुरू करिए, और यूनिवर्स हो या भगवान, जिनके ऊपर भी आप विश्वास करते हैं, वो आपके लिए ज़रूर दूसरा रास्ता खोल के रखे होंगे। जी तो दीदी, गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य पर पावर टू फेस और समाना और धैर्यता, इन सभी चीज़ों को हमें अपनाना है, इसके साथ साथ करेज भी चाहिए। एक बात पूछना चाहेंगे कि अगर कोई वर्क प्लेस में या घर पे कोई बार बार ना हमारे कंधे पर बंदूक चला रहा है, हमें प्रोवोक कर रहा है कि आपको गुस्सा है या आपके द्वारा किसी और को नुकसान पहुंचाने की कोशिश, तो उस समय हमें कैसे जवाब देना है, कैसे फेस करना है उस परिस्थिति?
0: महाराष्ट्र में एक संत हुए
1: जी,
0: नामदेव जी, शायद नामदेव जी उनका नाम।
1: हाँ जी, नामदेव जी।
0: तो कुछ लोगों ने कहा कि नामदेव को गुस्सा नहीं आता पर इनको गुस्सा दिलाना है। तो एक दिन वो जो एंटी पार्टी था उनके पास एक गरीब आदमी आया, बोला मेरी बेटी की शादी है, मुझे पैसा चाहिए। बोला पैसा हम तेरे को भरपूर देंगे, तू नामदेव को गुस्सा दिलवा दे
1: जी।
0: तो बोला ठीक है। तो था ब्राह्मण, सुबह सुबह गया नामदेव के पास, खाना खाना है खाना खाना है। नामदेव ने कहा आजा भैया बैठ जाओ, सबका स्वागत करते थे, बिठाया पत्नी ने खाना परोसा। अब हुआ क्या कि पत्नी खाना परोसने के लिए ऐसे झुकी तो वो आदमी कूद करके पत्नी की पीठ पे बैठ गया, क्योंकि उसको तो गुस्सा दिलाना था। तो जैसे ही वो पीठ पे बैठा, पत्नी ने उसको ऐसे पीछे से संभाल लिया जैसे बच्चे को संभालती, और नामदेव भी पास में ही बैठा था, इसको गिरने मत देना। बोला हाँ जैसे मैं अपने बच्चे को संभालती हूँ ना ऐसे संभालूंगी, गिरने नहीं दूंगी, गुस्सा फिर भी नहीं है। तो उस आदमी को तो आखिरी तरीका अपनाने पे भी गुस्सा नहीं आया, तो उसने फिर माफी मांगी, बोला असली बात ये है कि मुझे पैसा चाहिए था और उन्होंने ये शर्त रखी थी, तब मैंने ये तकनीक अपनाई कि जब पत्नी की पीठ पे बैठूंगा तो गुस्सा आएगा, तो बहुत ही बेहुदी हरकत है, फिर भी आपको गुस्सा नहीं आया। तब नामदेव ने कहा कि तुम उनको जाकर के बोल देना कि नामदेव को गुस्सा आया था, ताकि तेरे को पैसे मिल जाए
1: जी। तो ये है जीवन की महानता है।
0: हाँ।
1: और इसके साथ साथ गुस्सा कैसे ना आए, कैसे हम रिएक्ट ना करें, रिस्पॉन्ड करें।
0: हाँ।
1: वो कला सीखने की बात है। दीदी लगता है कि फ्यूचर तो अनसर्टेनिटी है ना, तो धैर्यता रख के क्या होगा और पेशेंस रख के, मतलब धैर्यता रख के क्या होगा, अगर सामने वाला ने आज हमें कुछ बोला, इंसल्ट किया है, तो ईंट के जवाब तो पत्थर से देना चाहिए।
0: देखिए मेरे लिए सबसे अमूल्य चीज मेरी मानवता, मेरे गुण और मेरी आंतरिक शांति
1: जी।
0: अगर मैंने इनको ही बेच दिया तो फिर मेरे पास बचेगा कि, तो सामने वाला तो बेच के खड़ा हुआ है और मेरे लिए ये चीजें बड़ी अमूल्य हैं, तो बेशक मुझे सहन करना पड़े, झुकना पड़े, लेकिन मुझे अपनी इन चीजों को बचा के रखना है, अपनी मानवता को, अपने मूल्यों को, अपनी आंतरिक स्टेबिलिटी को। और फ्यूचर अनसर्टन नहीं है, जिसका आज अच्छा है उसका कल भी अच्छा हो
1: जी,
0: क्योंकि कल आज की ही परछाई है।
1: तो इसलिए आज को अच्छा करना
0: है, आज को अच्छा करना है, आज को मुझे बिगाड़ना नहीं है, आज बिगड़ गया तो कल भी बिगड़ेगा,
1: कल या फिर कोई भी जन्म हो सकता
0: हाँ,
1: है। इसलिए इस जन्म में और आज
0: आज आज को मुझे मूल्यों के आधार पे, मानवता के आधार पे, अपनी कॉन्शियसनेस के आधार पे अच्छे से जीना
1: जी। तो दीदी राजयोग मेडिटेशन भी क्या हमारे सामना करने की शक्ति, समाने की शक्ति, साहस, धैर्यता, इसको बढ़ाने में सहायक है?
0: हाँ बहुत सहायक है, क्योंकि राजयोग मेडिटेशन की सबसे बड़ी खूबी ये है कि हम इसमें अंतर्मुखी होकर के सबसे पहले अपने आप की चेकिंग करते हैं, दूसरे ने क्या किया वो बात बाद में है, पहले मैं अपने को देखूं कि मेरे भीतर क्या चल रहा है, मैं क्या सोच रहा हूँ और क्या मेरी सोच ठीक है। अगर यही सोच लोगों को दिख जाए तो वो लोग मुझे किस श्रेणी में रखेंगे। तो मेडिटेशन अंदर शक्ति पैदा करता है, पॉजिटिव सोच देता है, बात को उलझाना नहीं लेकिन बात का समाधान करना है इसके ऊपर हमारा फोकस करवाता है। अगर मैं उलझाने लगूं, जैसे ईंट का जवाब पत्थर से मान लो हम देते हैं, तो वो तो और ज्यादा उलझ गई, पीढ़ियों की दुश्मनी हो गई। अब उसमें मेरा बेटा आपका बेटा इन्वॉल्व हो जाएगा, मेरी अगली पीढ़ी आपकी पीढ़ी इन्वॉल्व हो जाएगी। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे इसको यहीं स्टॉप करना है। कीचड़ उछाला, आपने उछाला, मैंने उछाला, ये तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, मुझे लंबी नहीं करनी है, मुझे उसको स्टॉप करना है। तो मेडिटेशन कहता है स्टॉप, स्टॉप करो और मित्रता का हाथ बढ़ाओ।
1: जी बिल्कुल।
0: तो हाँ, तो इससे क्या होता है कि हमारा मनोबल बढ़ता है, परमात्मा के प्रति हमारा विश्वास है, तभी मेडिटेशन होता है। और हमको अच्छाई में विश्वास है, अच्छाई जीतेगी।
1: जी,
0: मेडिटेशन कहता है भले थोड़ा टाइम लगेगा पर जीतेगी अच्छाई।
1: बिल्कुल। तो इस विश्वास के साथ अपने जीवन को निखारने की कोशिश करेंगे। और दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य पर हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने सिखाया और गाइड किया।
0: सभी भाई बहनों को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई, और इस गणेश चतुर्थी पे कुछ नवीनता करें ऐसी हमारी शुभकामना है, क्योंकि सदा की तरह मनाते आएंगे तो वही पाएंगे जो हमेशा पाते आए। लेकिन इस बार कुछ नवीनता करना, गणेश जी का कोई ना कोई गुण अपने जीवन में धारण करने का दृढ़ संकल्प अवश्य कर।
1: जी, तो श्रोताओं दीदी जी का यहीं पर धन्यवाद करते हैं। दीदी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हम सभी के साथ दीदी उर्मिला जी थे। और आज के कार्यक्रम से आपने क्या सीखा या क्या अच्छा लगा, या आप क्या करने वाले हैं, हर परिस्थिति में आप नहीं डरेंगे या साहस रखेंगे, धैर्य रखेंगे, तो इस प्रकार से अगर आपके मन में कोई संकल्प है तो आप हमें 94-14-15-14-15 पर भेज सकते हैं। तो आप अपने इनर पावर को बिल्कुल कमजोर करने नहीं दीजिएगा। और जब जब अगर आपको लगे कि कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा अपने आप को डाउन महसूस कर रहे हैं, तो ये कार्यक्रम आप बार बार सुन सकते हैं। सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM। मुस्कुराते रहिए। नमस्ते।
2: अभी आप सुन रहे थे साप्ताहिक अंत कार्यक्रम का पुनः प्रसारण। रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। ध्यान मन को स्थिर करता है और आत्मा की गहराई में झांकने का मार्ग दिखाता है। मैं हूं आपका हम सफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, मेरा नाम है अमन वर्मा और इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि आपका अपने घर पर कोई इंतज़ार कर रहा है, इसलिए कृपया हेलमेट लगाकर अपनी मोटरसाइकिल चलाएं। याद रखिएगा,

नमस्कार, मैं हूं अनूप जलोटा और आप मुझे इस वक्त सुन रहे हैं रेडियो मधुबन में। भक्ति भजन आप सुनते हैं, उसका आनंद लेते हैं। एक भजन जो मैं बहुत प्रेम से गाता हूं, उसकी एक लाइन आपको सुनाता हूं। मैया मोरी मैं नहीं मांगने खायो, ये भजन मुझे बहुत प्रिय है। आप भी सुनिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हॉस्पिटल्स में एडमिट होने वाले ज्यादा केसेस रोड एक्सीडेंट्स यानी सड़क दुर्घटना की वजह से होते हैं। इसलिए अपनी रफ्तार पर नियंत्रण रखें, सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

मैं जानकी हिमलानी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हम शपथ लें कि आज के बाद जब कभी भी हम गाड़ी चलाएंगे तो स्पीड का ख्याल रखेंगे, खुद का भी ख्याल रखेंगे और सामने वाले का भी ख्याल रखते हुए हेलमेट पहन करके ही अपनी गाड़ी को चलाएंगे। रेडियो मधुबन 90.4।

शांति। आज 19 सितंबर 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को प्रेरणा देते हैं, बच्चे तुम्हें रूप बसंत बनना है, सबको सुख देना है, सदैव मुख से ज्ञान रत्न निकलने चाहिए। बाबा कहते हैं ये कॉलेज है और यहां तुम हर कोई स्टूडेंट्स हो, पढ़ाई पढ़ रहे हो नई दुनिया के लिए। तुम्हें महामंत्र मिलता है या संजीवनी बुटी मिलती है मन मना भव की। बाबा कहते हैं जैसे दुनिया के क्लास में भी जब बच्चे बैठते हैं पढ़ाई पढ़ने के लिए तो वहां उनको बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट रहती है। बैरिस्ट्री कॉलेज में पढ़ने वाले को लगेगा मैं बैरिस्टर बन रहा हूं, एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में है। बाकी हाँ जब सत्संग में जाते हैं तो वहां शास्त्र आदि सुनाए जाते हैं तो वहां कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इसीलिए बाबा कहते ये तुम्हारा भी पाठशाला कहो कॉलेज कहो यूनिवर्सिटी है जहां तुम पढ़ते हो और तुम्हारी बुद्धि में भी एम ऑब्जेक्ट क्लियर है कि इस पढ़ाई से हम दैवी कुल के बन रहे हैं। साथ ही बाबा कहते हैं तुम बच्चों को अपने मन के अंदर हमेशा ज्ञान रत्न को भरना है और सबको ये ज्ञान रत्न दान करना है। कभी भी आपस में कोई बात में रूठना नहीं है लेकिन सबके साथ प्यार से चलना है। तो बाबा आज हम बच्चों को कहते हैं तुम्हारी इस पढ़ाई से तुम सर्वश्रेष्ठ देवता बनते हो। बाबा कहते हैं लेकिन उसके लिए हमेशा ये समझो कि हम स्टूडेंट हैं। बाबा की क्लास में हर प्रकार के बच्चे बैठते हैं, कोई मिठाई बनाने वाला बैठा होगा, बाबा कहते हैं मिठाई बनाने वाला है लेकिन इस समय क्या समझता है, अपने को स्टूडेंट समझता है, पढ़ाई कर रहा है। बाकी हाँ धंधा दोरी में भी रहना है, अपना कर्म भी करना है लेकिन यहां जब बैठो तो स्टूडेंट समझ करके ही बैठना है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे तुम गॉड फादरली स्टूडेंट्स हो। आज यही सारा दिन नशा रहे हम कौन है, हम गॉड फादरली स्टूडेंट्स हैं। तुम्हें सच्चा सच्चा रूप बसंत बन, अपने मुख से सदैव ज्ञान रत्न ही निकालने हैं। आज की मुरली से प्रश्न है बाबा बच्चों को सुरजित करने के लिए कौन सी संजीवनी बुट्टी देते हैं। उत्तर है मन मना भव अर्थात बाप को याद करो। नशा रहे परमात्मा द्वारा हम देवता बनने के लिए अथवा राज्य पद पाने के लिए ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं। ये स्मृति ही संजीवनी बुटी है जो सुरजित कर देती है, उनकी अवस्था कभी मुरझा नहीं सकती। जिसको ये संजीवनी बुटी मिली है बाबा कहते उनकी अवस्था कभी मुरझा नहीं सकती है। वे सदा अपनी जांच करते दूसरों को भी सावधान करते रहेंगे। ओम शांति। ये कॉलेज है ना, जैसे स्कूल में स्टूडेंट बैठते हैं तो समझते हैं हम टीचर के आगे बैठे हैं, कौन सा इम्तिहान पास करने बैठे हैं वह भी बुद्धि में है। सत्संग आदि में जहां वेद शास्त्र आदि सुनाते हैं वहां कोई एम नहीं रहती, वह शास्त्र आदि तुम्हारी बुद्धि से निकल गए हैं। तुम जानते हो कि हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। भविष्य 21 जन्मों के लिए स्टूडेंट घर में बैठा होगा अथवा कहां भी जाएगा, बुद्धि में ये रहता है हम फलाना इम्तिहान पास करेंगे।
तुम बच्चे भी क्लास में बैठे हुए ये जानते हो कि हम देवता बन रहे हैं। तुम भी अपने को विद्यार्थी तो समझते हो ना। हम रूह है, इस शरीर द्वारा हम पढ़ रहे हैं। रूह जानती है कि ये शरीर छोड़ भविष्य में हम नया शरीर लेंगे। उनको देवता कहा जाता है। यह तो विकारी पतित शरीर है, हमको फिर नया शरीर मिलेगा। ये समझ अभी मिली है। मैं आत्मा पढ़ रहा हूं, ज्ञान सागर पढ़ा रहे हैं। यहां तुमको गृहस्थ व्यवहार का होना यानी चिंता है नहीं। मधुबन में आते हैं तो कोई चिंता नहीं होती है। बुद्धि में यही रहता है कि हम भविष्य के लिए मनुष्य से देवता बन रहे हैं। देवताएं रहते हैं स्वर्ग में। ये घड़ी घड़ी चिंतन करने से बच्चों को खुशी रहेगी और पुरुषार्थ भी करेंगे। मनसा वाचा कर्मणा पवित्र भी रहेंगे। सबको खुशी का संदेश सुनाते रहेंगे। ब्रह्मा कुमार तो बहुत है ना। सब स्टूडेंट लाइफ में है। सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां स्टूडेंट लाइफ में है। ऐसे नहीं कि धंधे धोरी में जाने से वह लाइफ भूल जाएगी। जैसे ये मिठाई वाला है, बाबा के सामने कोई मिठाई वाला बैठा होगा, समझेगा ना कि हम स्टूडेंट है। स्टूडेंट को कभी मिठाई बनानी होती है क्या? यहां तो तुम्हारी बात ही न्यारी है। स्कूल में स्टूडेंट भी है तो धंधा धोरी भी करना है, शरीर निर्वाह के लिए धंधा भी करना है। साथ साथ बुद्धि में ये याद रहे कि हम परमपिता परमात्मा द्वारा पढ़ रहे हैं। तुम्हारी बुद्धि में रहता है कि इस समय सारी दुनिया नरकवासी है, परंतु ये कोई समझते नहीं है कि हम भारतवासी नरकवासी है। हम भारतवासी ही स्वर्गवासी थे। तुम बच्चों को भी सारा दिन ये नशा रहता नहीं है। बाबा कहते तुम बच्चों को भी सारा दिन ये नशा रहता नहीं है, घड़ी घड़ी भूल जाता है। बल तुम बीके हो, टीचर्स हो, शिक्षा देते हो, मनुष्य को देवता, नरकवासी को स्वर्गवासी बना रहे हो, फिर भी भूल जाता है। तुम जानते हो इस समय सारी दुनिया आसुरी संप्रदाय है। आत्मा भी पतित तो शरीर भी पतित है। अब तुम बच्चों को इन विकारों से ग्लानि आती है। काम क्रोध आदि सब ग्लानि की चीजें हैं। सबसे ग्लानि की चीज है विकार। सन्यासियों में भी थोड़ा क्रोध रहता है, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। गृहस्थियों का ही खाते हैं, कोई अनाज नहीं खाते लेकिन पैसे तो लेते हैं ना। पतितों का उस पर प्रभाव तो रहता है ना। धन के ऊपर भी मन का प्रभाव तो रहता है। पतित का अन्न पतित ही बनाएगा। पवित्रता के ऊपर तुम विशेष जोर देते हो। तुम्हारा ये प्रचार बढ़ता जाएगा। सब चाहेंगे हम पवित्र बने। ये बात दिल से लग जाएगी, क्योंकि पवित्र बनने बिगर तो स्वर्ग का मालिक बन नहीं सकेंगे। धीरे धीरे सबकी बुद्धि में आता जाएगा, जो स्वर्गवासी बनने होंगे वही बनेंगे। कहेंगे हम तो पवित्र बन पवित्र दुनिया के मालिक जरूर बनेंगे। यह कल्याणकारी संगम युग है, जबकि पतित दुनिया पावन होती है, इसलिए इसको पुरुषोत्तम युग कहा जाता है। यह कल्याणकारी है। मनुष्य सृष्टि का कल्याण होता है। बाप कल्याणकारी है तो बच्चों को भी बनाएगा। बाप कल्याणकारी है तो बच्चों को भी बनाएंगे। आकर योग सिखाए मनुष्य से देवता बनाते हैं। तुम जानते हो यह है हमारा हेड स्कूल। मधुबन है हमारा हेड स्कूल। यहाँ कोई उल्टे धंधे भी किसको नहीं है। कोई गृहस्थ धर्म की धंधे धोरी की बातें नहीं है। बाहर जाने से धंधे धोरी में लग जाते हैं।
तो यह याद नहीं रहता कि हम स्टूडेंट हैं, वो नशा ही उतर जाता है। हम नर्कवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं। ये ख्यालात बुद्धि में तब चलते जब फुर्सत हो। कोशिश कर टाइम निकालना चाहिए, बुद्धि में याद रहना चाहिए कि हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रहे हैं। एक बाप को ही याद करना है। धंधे में भी फ्री टाइम मिलता है, बुद्धि में ये याद कोशिश कर लानी चाहिए कि हम गॉड फादरली स्टूडेंट्स हैं। आजीविका के लिए यह धंधा आदि करते हैं, वह है मायावी धंधा, यह भी तुम्हारी आजीविका है। भविष्य के लिए सच्ची कमाई तो यह है, इसमें बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए। अपने को आत्म समझ परम पिता परमात्मा को याद करना है, समझाना है, अब हम आत्माओं को जाना है घर। बाबा हमको लेने के लिए आए हैं। सारा दिन बुद्धि में विचार सागर मंथन चलना चाहिए। जैसे गाय खाना उगारती रहती है, ऐसे उगारना है। ज्ञान की बातों को भी उगारना है। बच्चों को अविनाशी खजाना मिलता है, यह है आत्माओं के लिए भोजन। ज्ञान है आत्माओं के लिए भोजन। यह याद आना चाहिए, हम परम पिता परमात्मा द्वारा पढ़ रहे हैं, देवता बनने के लिए व राज्य पद पाने के लिए। यह याद करना है। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, फिर खुशी के बदले अवस्था मुरझाई रहती है। ये संजीवनी बुट्टी है ना, जो अपने पास रखनी है और औरों को भी देनी है सुरजीत करने के लिए। शास्त्रों में तो लंबी चौड़ी कहानियां लिख दी है, बाबा इन सब का रहस्य बैठ बताते हैं। मन मनाभाव अर्थात बाप को याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। अपने दिल से पूछते रहो, जांच करते रहो, एक दो को सावधान करते रहो। कोई खिटपिट होती है तो बुद्धि उसमें लग जाने के कारण किसी का कहना मीठा नहीं लगता। माया तरफ बुद्धि लग जाने से फिर वही फिक्रात रहेगी, फिर वही फिक्रात रहेगी। तुम बच्चों को तो खुशी रहनी चाहिए। बाप को याद करो, परंतु अपनी ही उलझन में होंगे तो वह दवाई लगेगी नहीं, याद की दवाई भी लगेगी नहीं। गुटके खाते रहेंगे, ऐसा करना नहीं चाहिए। स्टूडेंट पढ़ाई को थोड़ी छोड़ जाते हैं, दुनिया में भी स्टूडेंट पढ़ाई को छोड़ते हैं तो उसको ही नुकसान होता है। तुम बच्चे जानते हो, यह हमारी पढ़ाई है भविष्य के लिए, इसमें ही हमारा कल्याण है। धंधा धोरी आदि करते हुए भी कोर्स लेना है। ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, यह भी नॉलेज बुद्धि में रखनी है। याद है संजीवनी बुट्टी, एक दो को याद दिलाना चाहिए। स्त्री पुरुष एक दो को याद कराते रहे। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ये पढ़ा रहे हैं। शिव बाबा के रथ का श्रृंगार कर रहे हैं तो शिव बाबा की याद रहनी चाहिए। सारा दिन याद रहना तो मुश्किल है, वह अवस्था तो अंत में ही होनी है। जब तक कर्मातीत अवस्था हो तब तक रुस्तम से माया लड़ती रहेगी। गाया भी है, एक दो को सावधान कर उन्नति को पाओ। ऑफिसर लोग नौकर को भी कह देते हैं कि हमको ये बातें याद कराना। बाबा कहते ऑफिसर लोग भी नौकरों को कह देते, क्या कहते हैं, कि हमको ये बातें याद कराना। तुम भी एक दो को याद कराओ, बाबा की याद दिलाना हमें, ये उनको भी कहते हैं। मंजिल बहुत ऊंची है। बाप कहते मुझे याद करने से पावन बन जाएंगे। यह बाप कोई नई बात नहीं सुनाते हैं, तुमने लाखों करोड़ों बार ये ज्ञान सुना है, फिर ये सुनेंगे। ऐसे कोई भी सत्संग में कहने वाला नहीं होगा कि हमने कल्प कल्प सुना है,
अब सुन रहे हैं, फिर सुनेंगे, कल्प कल्प सुनते आए हैं, ऐसे कोई कह नहीं सकेगा। बाप समझाते हैं, तुमने आधा कल्प भक्ति की है, अब फिर तुमको ज्ञान मिला है जिससे सदगति होती है, बाप को याद करने से पाप कट जाएगा। यह तो समझने की बात है ना, पुरुषार्थ करना है। जज व बड़े आदमी का बच्चा कोई उल्टा कर्म करे तो नाम बदनाम हो जाए। यहां तुम भी बाप के बने हो तो ऐसा कोई कर्म नहीं करना है, नहीं तो बाप की निंदा कराएंगे। सतगुरु के निंदक ठौर न पाए अर्थात उच्च पद पा न सके। ईश्वर की संतान होकर आसुरी कर्म से डरना चाहिए। ईश्वरीय संतान होकर के आसुरी कर्म से डरना चाहिए। श्रीमत पर चलना होता है, अपनी मत पर चलने से धोखा खाएंगे, पद भ्रष्ट हो जाएगा। पूछ भी सकते हैं, आपकी मत पर ठीक चल रहे हैं? बाप की पहली पहली मत है कौन सी? बच्चे बाप को याद करो, कोई विकर्म नहीं करो। बाबा कौन से विकर्म करता हूं आपको कुछ मालूम हो तो बताओ। कहीं बच्चे बाबा से पूछते हैं, बाबा मैं कौन सा विकर्म करता हूं आपको कुछ मालूम हो तो बताओ। बाबा कहते मालूम होगा तो बता देंगे। यह तुमसे भूल होती है, उनको विकर्म कहा जाता है। सबसे बड़ा विकर्म है काम विकार का। जास्ती झगड़ा उस पर चलता है। बच्चों को हिम्मत आनी चाहिए, विचार करना चाहिए, कुमारियों का झुंड होना चाहिए। जो कहे कि हमको शादी करनी ही नहीं है, अब है कल्प का संगम युग जिसमें पुरुषोत्तम बनना है। इस लक्ष्मी नारायण को पुरुषोत्तम कहा जाता है, विकारी को थोड़ी पुरुषोत्तम कहेंगे। अब तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो, सबको हक है बनने का। पुरुषोत्तम मास पर तुम कितनी सर्विस कर सकते हो, बड़ी धूमधाम मचानी चाहिए। ये पुरुषोत्तम युग ही उत्तम युग है, जबकि मनुष्य नरकवासी से स्वर्गवासी बनते हैं। ये कॉमन बात है, तुम बच्चों को अच्छी रीति समझाना है। पुरुषोत्तम होते हैं सतयुग में, यहां तो कोई पुरुषोत्तम नहीं। पुरुषोत्तम होते सतयुग में, कलयुग में कोई उत्तम पुरुष होते ही नहीं। यह है ही पतित दुनिया, वहां तो पवित्र ही पवित्र है। यह सब बातें बाप बच्चों को समझाते हैं, औरों को समझाने के लिए मौका देख समझाना चाहिए। तुम यहां बैठे हो, समझते हो हमको निराकार बाबा परम पिता परमात्मा राजयोग सिखा रहे हैं। हम स्टूडेंट्स हैं, इस पढ़ाई से स्वर्ग के देवी देवता बन रहे हैं। सब इम्तिहान से बड़ा इम्तिहान है, सब इम्तिहान से बड़ा इम्तिहान है कौन सा? ये राजाई प्राप्त करने का इम्तिहान, जो परमात्मा के सिवाय कोई पढ़ा न सके। बाबा कह सब इम्तिहान से बड़ा इम्तिहान है ये राजाई प्राप्त करने का इम्तिहान, जो परमात्मा के सिवाय कोई पढ़ा न सके। बाबा खुद परोपकारी है, खुद स्वर्ग का मालिक नहीं बनता है, स्वर्ग का प्रिंस श्री कृष्ण की ही बनता है। स्वर्ग का प्रिंस श्री कृष्ण ही बनते हैं, निष्काम सेवा बाबा करते हैं। कहते हैं मैं राजा नहीं बनता हूं। शिव बाबा राजा नहीं बनते, तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं। ये बातें किसकी बुद्धि में नहीं है, ऐसे बहुत है। भल यहाँ शाहूकार है, वहां गरीब बन जाएंगे, और जो अभी गरीब है वो बहुत शाहूकार वहां बनते हैं। विश्व का मालिक बनना ये बेहद की बात है ना। गाया भी हुआ है, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। स्वर्ग का मालिक ही बनाएगा, तुम जानते हो हम स्वर्ग का मालिक बन रहे हैं, तो कितना फकूर होना चाहिए।
हमको पढ़ाने वाला परमपिता परमात्मा है। हम अब नरकवासी से स्वर्गवासी देवता बनते हैं। यह भी याद रहने से खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। स्टूडेंट लाइफ इज दी बेस्ट, बाबा कहते स्टूडेंट लाइफ इज दी बेस्ट। पुरुषार्थ करके बनना तो राजा रानी चाहिए ना, ऐसे नहीं बताना चाहिए कि हम राजा बनकर फिर रंक बनेंगे। बाबा के ये बातें नहीं बतानी चाहिए, ये नहीं बताना होता है। पूछना है क्या बनना चाहते हो, सब कहेंगे हम विश्व के मालिक बनेंगे। सो तो भगवान बाप ही बना सकते हैं। कहते हैं मामेकम याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। कितनी सहज बात है, कोई भी बन सकता है, बल कितना भी गरीब हो, इसमें पैसे की बात ही नहीं। इसलिए बाप को कहते हैं गरीब निवास। बाप को याद करके पापों का घड़ा खाली करना है। बाप को याद करके क्या करना है, पापों का घड़ा खाली करना है। जितना जो मेहनत करेंगे सो पाएंगे। सीढ़ी से देखते हो कितना ऊंच चढ़ते हैं। चढ़े तो चाखे राजाई रस, गिरे तो चकनाचूर। चढ़े तो चाखे राजाई रस, गिरे तो चकनाचूर। विकार में गिरा पार्गति दी तो बाबा कहते एकदम नीचे गिर पड़ते हैं। सपूत बच्चे तो पुरुषार्थ कर अपना हीरे जैसा जन्म बनाएंगे। बच्चों को पुरुषार्थ बहुत करना है। अब जो करेगा सो पाएगा। सबको कहते हैं माता पिता को फॉलो करो, आप समान बनाओ। जितना जितना रहम दिल बनेंगे उतना तुमको ही फायदा है। टाइम वेस्ट नहीं करना है, औरों को युक्ति बताते रहना है, नहीं तो इतना उच्च पद पा नहीं सकते। पिछाड़ी में तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। बाबा क्या कहते, पिछाड़ी में तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे, फिर उस समय तुम कुछ कर नहीं सकेंगे। उस समय तुम कुछ कर नहीं सकेंगे। इम्तिहान में नापास हुआ सो हुआ, ऐसा न हो जो पिछाड़ी में पछताना पड़े। फिर तो पुरुषार्थ कर नहीं सकेंगे। इसलिए जितना अपना और दूसरों का कल्याण करना है उतना करो। अंधों की लाठी बनो। कल्प कल्पांतर स्वर्ग की स्थापना की है, जरूर करेंगे। ड्रामा में नूंद है। अब जो करेगा सो पाएगा। बाबा के लाल छिपे नहीं रह सकते, बाबा के लाल छिपे नहीं रह सकते। रूप बसंत मिसल मुख से रत्न ही निकले। धोती नहीं बनना है। धोती माना इधर की बात उधर, उधर की बात उधर करके नुकसान करना दूसरे का। तो बाबा कहते धोती नहीं बनना है, दूसरे का नुकसान नहीं करना है। तुमको कोई उल्टा सुल्टा सुनाए तो समझो ये धोती है। उनसे संभाल रखनी, अपना बेहद का वर्षा बाप से लेने में पूरा तत्पर रहो। अपना बेहद का वर्षा बाप से लेने में पूरा तत्पर रहो। अच्छा मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, अपना और दूसरों का कल्याण करना है। अंधों की लाठी बनना है। कभी कोई उल्टी बातें सुनाए तो उनसे सावधान रहना है। दूसरी पॉइंट, मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना है। हम स्टूडेंट्स हैं, भगवान हमें देवता बनने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, इसी खुशी में रहना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, साथी और साक्षीपन की स्मृति द्वारा
सब बंधनों से मुक्त होने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। साथी और साक्षीपन की स्मृति द्वारा सब बंधनों से मुक्त होने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। सर्वशक्तियों से संपन्न बन अधीनता से परे होने लिए दो शब्द सदा याद रहे, कौन से? एक साक्षी, दूसरा साथी। इससे बंधन मुक्त अवस्था जल्दी बन जाएगी। सर्वशक्तिवान बाप का साथ है तो सर्व शक्तियां स्वतः प्राप्त हो जाती है, और साक्षी बनकर चलने से कोई भी बंधन में फंसेंगे नहीं। निमित्त मात्र इस शरीर में रहकर कर्तव्य किया और साक्षी हो गए, इसका विशेष अभ्यास बढ़ाओ। इसका विशेष अभ्यास बढ़ाओ साक्षी और साथीपन का। आज का स्लोगन है, अशुद्ध और शुद्ध दोनों की युद्ध है तो ब्राह्मण के बजाय क्षत्रिय हो। अशुद्ध और शुद्ध दोनों की युद्ध है तो ब्राह्मण के बजाय क्षत्रिय हो। आज का व्यक्ति इशारा है, अब अपने दाता स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, तड़पती हुई या भिखारी प्यासी आत्माओं की प्यास मिटाने के लिए अपने को अतींद्रिय सुख व सर्व शक्तियों से भरपूर करो। जितना सर्व शक्तियों का खजाना, अतींद्रिय सुख का खजाना इकट्ठा होगा तो अपनी स्थिति कायम रहेगी और अन्य आत्माओं को भी संपन्न बना सकेंगे। आप सर्व की झोली भरने वाले दाता के बच्चे हो, सबको देना है। यह देने का दृश्य बहुत जल्दी सामने आएगा। यह देने का दृश्य बहुत जल्दी सामने आएगा। अच्छा,